0: क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
1: हमारा जो AITC के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम कर चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
0: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
0: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
3: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
0: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
0: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
4: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
0: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो JDU से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में JDU के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
0: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री दो हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
0: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय। वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी हैं और विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है।
6: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने चंपत राय से प्रशासनिक निर्णयों, चढ़ावा प्रबंधन, कर्मचारियों की जवाबदेही और शिकायतों के निस्तारण से जुड़े कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया। इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
7: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
6: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। यही बयान चंपत राय के गले की फांस है। 5 जून को चंपत राय के निर्देश पर पुलिस चढ़ावा चोर और चढ़ावे में हुई चोरी की रकम बरामद करती है। मतलब चंपत राय को बखूबी पता था कि चढ़ावे की चोरी का खेल चल रहा है। 5 जून को पुलिस रेड डालती है, लेकिन 7 जून को चंपत पूरे मामले को हजम कर जाते हैं, ये दावा करते हुए कि ऑडिट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है।
8: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।
6: 7 जून को राम मंदिर के बही खाते के ऑडिट में कुछ खामी नहीं थी तो 5 जून को चढ़ावे की गिनती में शामिल अविनाश शुक्ला के घर छापा क्यों पड़ा था, 13 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को SIT क्यों बनानी पड़ी, और तो और 25 जून को चढ़ावा चोरी मामले में FIR क्यों दर्ज हुई जिसके बाद 8 आरोपियों की गिरफ्तारी तक हुई। साफ है दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। चंपत राय के बाद पुलिस ने पूछताछ के लिए अनिल मिश्रा गोपाल राव के साथ साथ 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। इनमें ट्रस्ट से जुड़े अधिकारी कर्मचारी और दूसरे लोग शामिल हैं। इसके साथ साथ 140 गवाहों के बयान दर्ज करने की तैयारी है।
9: इसका दायरा यहां तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। पुलिस पड़ताल और पूछताछ अब अनिल मिश्रा गोपाल राव समेत 70 और ऐसे सदस्य हैं जिनसे होनी है। इसके अलावा राम मंदिर के अन्य कार्यों से जुड़े 140 लोग ऐसे भी हैं जिनसे पुलिस पूछताछ आने वाले वक्त में कर सकती है। इस बीच में SIT जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद लखनऊ लौटी थी वो भी अपनी फाइनल रिपोर्ट के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंच सकती है।
5: उत्तर प्रदेश के शामली जिले का एक दवा कारोबारी आयुष मलिक इस्लाम धर्म अपनाकर और मोहम्मद अली बनकर सबको उसने पहले चौंका दिया और अब मोहम्मद अली से आयुष मलिक बनकर यानी कि हिंदू धर्म में वापसी करके फिर से आयुष ने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है आयुष से अली और अली से आयुष बनने की पहेली, अभी देखिए।
6: आयुष से अली और अली से फिर आयुष। पहले इस्लाम धर्म अपनाया अब हिंदू धर्म में वापसी। पहले नमाज पढ़ी निकाह किया अब फिर से पूजा करने लगा। आयुष के धर्मांतरण और घर वापसी की पूरी कहानी डीकोड। अली का पासवर्ड 2047 डायरी में I am ऑन मिशन का सच। ये वही आयुष है जिसके अली बनने पर उत्तर प्रदेश से लेकर समूचे देश में धन परिवर्तन की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन जो आयुष पहले इस्लाम धर्म अपनाकर अली बना अब वो घर वापसी यानी फिर से हिंदू धर्म अपनाकर आयुष बन गया है। आयुष ने घर के मंदिर में पूजा की, आरती का दीपक जलाया और बजरंग बली के सामने आयुष अली से फिर आयुष हो गया। साथ ही आयुष फिर से हिंदू धर्म अपनाने की बात भी कर रहा है।
10: मेरा नाम आयुष मलिक, मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। मैंने धर्म बदल लिया था लेकिन मैंने आपकी परेशानी को देखते हुए परिवार के हिसाब से अपने मन से परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
11: बेटा कैसा है अभी आपका, क्या कर रहा है?
12: बिल्कुल स्वस्थ है।
11: पूजा पाठ करा, मस्जिद तो नहीं जाता?
12: नहीं नहीं, कहीं नहीं पूजा पाठ किया। आपके सामने फोटो है वो सत्य है, बिल्कुल जो है वो सब सत्य है। मेरे साथ में बैठ के पूजा, मेरे सामने बैठ के पूजा कर रहा हूँ।
13: संस्कारों का पोषण व्यवस्थित रूप से होगा तो हमें नहीं लगता है कि कोई हमको परिवर्तित कर पाएगा, और उसका स्वागत।
6: आप आयुष के अली बनने और अली से फिर आयुष बनने की इन तस्वीरों को देख सकते हैं। आज आयुष पूजा कर रहा है, माँ का आशीर्वाद ले रहा है और ना चेहरे पर दाढ़ी है, माथे पर तिलक लगा है। जबकि 8 जून को जब आयुष अली बनकर सबके सामने था तो उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, उसकी नमाज पढ़ने की तस्वीरें भी सामने थी और अली बनने की कहानी खुद आयुष ने अपनी जुबानी सुनाई थी।
14: धर्म परिवर्तन कहीं पर नहीं होता, धर्म परिवर्तन तो अंदर से होकर कभी भी करवा कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। अच्छा। कि कोई मौलवी आपका निकाह पढ़ाएगा, मौलवी किसी का जनाजा पढ़ाएगा या मौलवी आपका धर्म परिवर्तन कराएगा। अगर आप खुद से सीखने के काबिल है तो आप खुद से सीखो, खुद से सीखना चाहिए।
11: अच्छा, और किसका वीडियो, किस पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो देखते थे? मतलब
14: देखता था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी का देखता था। डॉक्टर इशारे मत का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा।
11: अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो
14: धर्म परिवर्तन क्यों कराते
11: हैं? अच्छा,
14: धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुनकर उससे प्रभावित हो गए और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कह सकोगे?
11: तो पाकिस्तानी मौलाना इशरार अहमद से आप प्रभावित हैं?
14: प्रभावित सभी से हूँ, प्रभावित मैं इस्लाम से हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हूँ।
6: उत्तर प्रदेश में शामली के दवा कारोबारी आयुष मलिक के मोहम्मद अली बनने का खुलासा उस वक्त हुआ जब आयुष मलिक शामली के एक जाने

0: धर्म बदल लिया है।
1: हमने 4 जून को आवाज उठाई थी कि आयुष मलिक अपने सनातन धर्म को छोड़कर के इस्लाम मजहब में चला गया। हमें आशा थी कि वो वापिस सनातन धर्म में अवश्य आएगा।
0: जब आयुष मलिक से सवाल हुए तो उसने बताया कि वो चांदनी कुरैशी नाम की लड़की से 4 साल पहले निकाह भी कर चुका है। आयुष ने चांदनी कुरैशी की पूरी कहानी भी बताई।
2: आयुष मलिक नाम है, डॉक्यूमेंट्स में वही नाम है, मोहम्मद अली जो मैंने नाम अपनाया।
3: अच्छा, तो किस तरह से आप मोहम्मद अली बने, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए।
2: मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया।
3: अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं। आप
2: फिजियोथेरेपिस्ट थी, वो शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था, कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में, पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है बस।
0: आपको बता दें कि 6 जून को आयुष मलिक के पिता ने शामली पुलिस में आयुष के अली बनने पर मुकदमा दर्ज करवाया था और कहा था कि चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी ने आयुष की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके बेटे का धन परिवर्तन करवाया और फिर फर्जी निकाह भी किया।
4: चांदनी कुरैशी उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्य स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी, क्योंकि आयुष के पास नाम काम दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है। फर्जी निकाह नामा करा कर और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है।
0: चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम कुरैशी को शामली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और अब आयुष ने फिर से हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। तो मौलानाओं का कहना है कि आयुष और चांदनी कुरैशी की शादी भी खत्म हो चुकी है।
1: जैसा कि वो अब वापस हुआ है, अब उसका चांदनी कुरैशी से कोई ताल्लुक नहीं रहा, कोई निकाह नहीं रहा, वो उसका खत्म हो गया। जिस दिन उसने वापसी मजहब किए तो उसका मसला उस चीज से खत्म हो गया, मियां बीवी का ताल्लुक ही खत्म हो गया है।
5: अब तक यही जानकारी थी कि चांदनी का पिता जूस का ठेला लगाया करता था और चांदनी कुरैशी का भाई अमन आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम किया करता था। आयुष के पिता के मुताबिक आयुष की संपत्ति को हड़पने के लिए एक मौलाना के साथ मिलकर उसका ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया। लेकिन आयुष की हिंदू धर्म में वापसी के साथ ही कई और बड़े खुलासे हुए हैं।
0: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बन जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली?
6: आयुष मलिक ने घर वापसी करते हुए दोबारा सनातन धर्म अपना तो लिया है, लेकिन शामली पुलिस अभी भी इस धर्मांतरण केस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। जब पुलिस को पहली बार जानकारी मिली कि आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और अब वो मोहम्मद अली बन गया है, उस दौरान पुलिस टीम आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली के घर पर पहुंची थी, सर्च ऑपरेशन चलाया था। जिस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उस दौरान एक बड़ा चाकू और एक डायरी मिली थी। डायरी में आयुष मलिक ने लिखा था आई एम ऑन मिशन।
0: शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 पीएफआई का कोड वर्ड है। जब एनआईए समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने पीएफआई के बरामद किए दस्तावेज में

0: 2047 का जिक्र पाया। पीएफआई ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि पीएफआई ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है।
1: आयुष मलिक के धर्मांतरण के बाद उसके पिता देवराज मलिक ने शामली पुलिस को शिकायत दी थी और ये आरोप लगाया था कि चांदनी कुरैसी नाम की एक फिजियोथेरेपिस्ट और उसके परिवार वालों ने एक प्लान के तहत आयुष मलिक का धर्म परिवर्तन करवाया था और उनकी नजर उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर थी। उसके बाद इसी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच हुई थी। जांच के बाद जो चांदनी कुरैशी थी उसको शामली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके पिता को गिरफ्तार किया था।
0: आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली आज तक।
2: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: Summer hits, blends old school jams with fresh favorites, so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack, made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्किन से पीएम मोदी ने की बात। मिडिल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, स्थिरता पर भारत का जोर। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा। जनरल धीरज सेठ बने देश के नए सेना प्रमुख। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह संभाली कमान। रेगिस्तान से लेकर कश्मीर तक का लंबा अनुभव। भारी बारिश के बीच सिक्किम में बिगड़े हालात। पहाड़ दरकने से भारी तबाही। मुंबई में बारिश के दौरान स्कूल बस पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत, 5 छात्र घायल। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।

0: नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, क्या केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। दरअसल इन अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक अहम बैठक बुलाई। सभी केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के सचिव इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री का मंत्र इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन पे हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। तो क्या ये वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दे सकता है?
1: तारीख 21 मई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल के अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
2: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
3: जनता की आकांक्षाएं हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
1: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
1: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
4: सांसद थे, उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद है हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
5: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
5: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
6: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
5: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए, उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
5: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
7: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
5: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
5: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल 1 मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्री परिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
5: अब तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए, तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है
1: जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: उधर अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों से चंपत राय से पूछताछ की है। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल ये भी है कि चढ़ावा चोरी के गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे की चोरी कितने के हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ किया है, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का एक हिस्सा पहुंच रहा था। अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था? जांच एजेंसियों को मिले सबूत इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
8: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
9: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई, या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है, ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
8: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों के निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जाँच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
10: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है, जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं, एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी, इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
8: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
11: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मैं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे, बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
8: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
12: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
13: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
12: वही कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके जाए ले जाएगा।
13: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
12: हाँ,
13: कौन हो सकता
12: है? देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
0: एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के दौसा में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक बस ट्रेलर से टकराने के बाद अनियंत्रित हो गई, आग की चपेट में आ गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, 17 लोग इसमें घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची हैं, घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, इंदौर से ये बस जा रही थी दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग, जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है दौसा के पास, ये ट्रेलर था जिससे ये बस टकरा जाती है और इसमें 17 यात्री घायल हुए हैं। और जैसे ही ये टकराती है बस, उसके तुरंत बाद बस में आग लग जाती है और प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 2 यात्रियों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं। बेहद दर्दनाक हादसा, इंदौर से बस जा रही थी और वहीं पर टकरा जाती है, भीषण सड़क हादसा यह हुआ। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना भयावह यह हादसा हो सकता था, आप इसकी तस्वीरें देख रहे हैं। बस जाती है और ट्रॉलर से टकराती है। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जानकारी दीजिए इसके बारे में।
14: आशुतोष, ये रात 2:30 की घटना है और जैसा कि आपने बताया कि हरिद्वार से इंदौर जा रही थी। अभी इसमें ताजा अपडेट ये है कि 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 22 लोग घायल हैं। कुल 37 से 39 लोग बताए जा रहे थे बस में। कलेक्टर SP मौके पर है। डेड बॉडी जो है दौसा अस्पताल में लाई गई है। आग लगने की जो प्राथमिक जानकारी आ रही है, ट्रॉलर से टकराने की आ रही है, उसके बाद आग लगी है बस में। अब बस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, किसी से आग लगी है अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, मगर ये बहुत दर्दनाक हादसा है जिसमें धार्मिक यात्रा से लोग लौट रहे थे और इस तरह से करीब करीब आप देखिए 22 और 7 29 जो लोग हैं वो इसमें प्रभावित हुए हैं, जले हैं, उलझे हुए हैं, घायल हैं, उन सबको भर्ती किया गया। 7 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है। तो निश्चित रूप से ये काफी दर्दनाक हादसा है और ये एक्सप्रेस वे पे हुआ है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, वहां पर दौसा में हुआ है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। इंदौर जा रही है बस जो है हादसे का शिकार हो गई, 17 लोग घायल हुए हैं, कुल 37 लोग इस बस में सवार थे और ये तस्वीरें आ रही हैं कि जैसे ये बस ट्रेलर से टकराती है और उसके बाद बस भी देखिए आग के लपटों की चपेट में आ जाती है। 7 यात्रियों की मौत हुई है इसमें और इंदौर से ये बस जा रही थी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग का इलाका है, 6 लेन लंबी एक तरफ की सड़क है, तो कई बार दिल्ली मुंबई जो नया राष्ट्रीय राजमार्ग बना है यहाँ पर रफ्तार भी ज्यादा होती है। हालांकि जानकारी के बाद ये पता चलेगा कि ये टक्कर आमने सामने हुई है। शरद अगर आप हमारे साथ बने हो तो ये भी बताएं क्या इनमें से कोई गाड़ी ऐसी थी जो विपरीत दिशा से आ रही थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है दौसा या इसके पास धौलपुरी या जितने ऐसे रास्ते जहां से हम बाईपास लेते हैं वहां पर अक्सर कई गाड़ियां विपरीत दिशा से आती हैं और ये हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है। क्या ये प्राथमिक वजह लग रही है हादसे की या किसी और वजह से टक्कर हुई है? आप देख रहे हैं कई बार जैसे आप समझते हैं कि जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़े होते हैं वहां अक्सर बाईपास होते हैं, शहरों का एग्जिट होता है और उसी एग्जिट से कई बार आसपास की जो स्थानीय गाड़ियां होती हैं वो विपरीत दिशा में भी चलने लगती हैं, 1 या 2-3 किलोमीटर की दूरी के लिए वो विपरीत दिशा से चली जाती है और अक्सर हादसे ऐसे होते हैं। हालांकि ये हादसा भी क्या उसी वजह से हुआ है इसकी जानकारी जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन आप देख रहे हैं तमाम चाहे फायर टीम हो, पुलिस हो, स्थानीय प्रशासन हो मौके पर पहुंचा है। इस हादसे के बाद लोगों को बचाया गया, बचाने की कोशिश की गई, तो जो घायल थे उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। ये धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे, हरिद्वार से इंदौर दौसा में ये ट्रेलर से बस टकरा गई और उसी के बाद बस जो है वो सीधा आग की लपटों का शिकार हो गई। कुल 39 लोग अब तक जानकारी के मुताबिक बस में सवार थे, जिसमें 17 लोगों को निकाला गया जो घायल थे, उन्हें अस्पताल ले जाया गया इलाज के लिए, लेकिन 7 लोग इस दर्दनाक हादसे में मारे गए। अगर बस का आगे का हिस्सा ट्रेलर से टकराया है तो जाहिर है ज्यादातर वो यात्री होंगे जो आगे के हिस्से पर बैठे होंगे। इसी के साथ रुपये छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
16: आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से है संबंध? आषाढ़ के महीने का माता दुर्गा से क्या संबंध है? आषाढ़ के महीने में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा और नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
17: Jazz fans, rejoice! Stingray Jazz offers riveting concert films and documentaries from the world's most prestigious stages. Whether you're a lifelong connoisseur or just getting up to tempo, Stingray Jazz, now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.

0: ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं आशुतोष मिश्रा। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के दौसा इलाके से, जहां दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा हुआ है। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक बस ट्रेलर से टकराने के बाद यह नियंत्रित होकर आग की चपेट में आ गई। 7 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई है, 17 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। दौसा का इलाका है दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, दौसा से होकर के गुजरता है और उसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर संभवतः हरिद्वार से इंदौर के बीच जा रही है बस जो कि एक ट्रेलर से टकराई है। मौके पर बचावकर्मी पहुंचते हैं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, तमाम टीमें पहुंचती हैं और कोशिश की गई, जिसके चलते 17 यात्रियों को निकाला गया जो कि घायल अवस्था में, उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है। कुल 39 लोग सवार थे और देखिए अब जो जानकारी आ रही है, इस हादसे में घायलों की संख्या भी बढ़ गई है, तो घायलों की संख्या 22 हो गई है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत है, लेकिन अब मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। कुल 7 यात्रियों की मौत हुई है, वहीं घायलों की संख्या भी बढ़कर अब 17 से 22 हो चुकी है। तो बेहद दर्दनाक हादसा और यह संभवतः रात के 2 से 3 बजे की घटना है। अभी जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसके मुताबिक ये बस जो कि यात्रा पर जा रही थी ट्रेलर से टकराती है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि बस जिस दिशा में जा रही थी उसी दिशा में टकराई है ट्रेलर से या उसकी विपरीत दिशा से ट्रेलर आ रहा था। आमतौर पर जहां भी राजस्थान में इस तरह के बाईपास बने हैं इलाकों पर, कई बार स्थानीय गाड़ियां उसी दिशा में विपरीत दिशा में चलती हैं और इसके चलते भी हादसे होते हैं। इस मामले की जाँच भी शुरू हो गई है। बात करेंगे बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। हाईवे, यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात हैं। ड्रोन, फेशियल रिकॉग्निशन से लैस सीसीटीवी, बुलेट प्रूफ वाहन और विशेष क्विक रिस्पॉन्स टीम कमांडो हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए कैसे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन शिवा जो बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है।
1: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
2: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
1: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं, लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: उधर जून भले ही पिछले एक दशक में सबसे सूखा साबित हुआ हो, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सिक्किम में कई जगह भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। सिंगताम के 20 माइल इलाके में एक वाहन मडस्लाइड में फंस गया। डिंगचू में सड़क पर विशाल बोल्डर गिरने से यातायात ठप हो गया। कई मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को भारी बारिश का समय परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन राहत टीम में मलबा हटाकर सड़क खोलने और यातायात बहाल करने के प्रयास में जुटी है। लगातार बारिश के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। और अब खबर देश की राजनीति से, केंद्र की सरकार से, जहां कुछ बदलाव होने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई। सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया, विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी अब दिखाई दे सकता है?
3: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
4: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
5: जनता की आकांक्षाएं हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
3: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे?
5: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।

0: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है, जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
1: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
0: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
2: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
0: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
3: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
0: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
2: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
0: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
4: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
0: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
2: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
0: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री 2 हैं, एक

0: कैबिनेट और एक राज्य, शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
1: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
0: अब तक मोदी सरकार के दो कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए, तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों ने चंपत राय से पूछताछ की। सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से राज उगलवाने के लिए पुलिस पूछताछ करने वाली है। सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी गैंग में कौन कौन शामिल है, चढ़ावे की चोरी के कितने हिस्सेदार हैं, गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरी ने कितने करोड़ की रकम पर हाथ साफ किया है, क्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों तक चोरी की रकम का हिस्सा पहुंच रहा था, और अगर पदाधिकारी पूरे खेल से बेखबर थे तो लंबे वक्त से चढ़ावे की चोरी का धर्म कैसे चल रहा था। पुलिस को मिले सबूत इशारा कर रहे हैं कि चढ़ावे की चोरी में कई बड़े नाम शामिल हैं।
3: क्या 74 करोड़ का चढ़ावा चुरा ले गए चोर? क्या हर साल करोड़ों का चढ़ावा हुआ चोरी? चढ़ावा चोरों की गुप्त तिजोरी से खुला राज। चढ़ावे का बही खाता खुला तो निकली सच्चाई। क्यों चढ़ावे के सवालों में फंस गए चंपत राय? चढ़ावा चोरी की चंपत लीला। आज चंपत राय से चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लंबी पूछताछ हुई। 3 घंटे तक चली पूछताछ में चंपत राय से 12 से ज्यादा सवाल पूछे गए। पूछताछ के दौरान चंपत राय ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए, जबकि चढ़ावा चोरी में खुद को बेकसूर बताया। चंपत राय ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के सिर पर चोरी का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। मतलब चंपत राय ने चढ़ावे में चोरी हुई ये कबूला, लेकिन खुद को पाक साफ बताया। वहीं जेल में कैद चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जांच टीम ने पूछताछ की। ये वही आरोपी अविनाश है जिसके घर पर 5 जून को पुलिस ने रेड की थी और लाखों का कैश बरामद किया था। बड़ी बात यह है कि चंपत राय से पूछताछ के बाद पुलिस ने जेल में अविनाश से पूछताछ की है। क्या चंपत राय ने जांच टीम को जितना बताया उससे कहीं ज्यादा छिपाया? क्योंकि चंपत राय ने मंदिर के चढ़ावे में आई कमी को लेकर कोई जवाब नहीं दिया। ये तब है जब बीते 1 साल में राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे में 50% की कमी दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82 करोड़ 78 लाख का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है, क्योंकि तब 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल यही है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर लिया?
4: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई, या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है, ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
3: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जाँच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का पता चला है।
5: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया।

0: गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं, एक दो मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी, इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
1: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा।
2: मैं राम के लिए लड़ा हूं, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, एक इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
1: संतोष दुबे की तरह ही अयोध्या के साधु संतों का सीधा आरोप है कि चढ़ावे में चोरी हुई, राम के धन को लूटा गया, तो सीधे तौर पर दोषी चंपत राय हैं। मांग यही है कि चंपत राय पर कानूनी शिकंजा कसा जाना चाहिए।
3: हमारा एक चीज कहना है कि जितने लोग उसमें भर्ती किए गए वो कौन एजेंसी भर्ती किया, इन लोगों के चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये इनको के भर्ती किया, के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया, ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है, रहन सहन है, कुछ है, ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने।
4: आपने कहा चंपत राय खुद से तो कुछ करेंगे नहीं, तो कौन करवाएगा या कौन कहेगा?
3: वही करे कराएगा जब कोई आदमी तो करेगा। अभी हम एक बड़ा गेहूं लेके जा यहाँ से चोरी भया तो हम लेके जाएंगे कि कोई ना कोई एजेंसी से लेके ले जाएगा।
4: तो आपका कहना है कि चंपत राय भी अगर कुछ करते हैं तो उनके ऊपर भी कोई गाइडिंग फोर्स है, कोई है जो बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है?
3: हाँ,
4: कौन हो सकता है?
3: देखिए चंपत राय गाइडिंग फोर्स है कि नहीं, हेड इंचार्ज वही है जिसको दर्शन करावे, जिसको नहीं करावे, जिसको व्यवस्था करे, जिसको नहीं करे। ये जितना लोग चोरी किए चाहे चंपत राय जानते हो चाहे न जानते हो, उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है, उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है, जिसके मैनेजमेंट पे भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है।
5: राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सवालों के कटघरे में खड़े हैं चंपत राय, वही चंपत राय जिनकी इजाजत के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता, क्योंकि चंपत राय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं। माना जा रहा है कि चढ़ावा चोरी से खड़े हुए बवंडर में चंपत राय पर शिकंजा कसना तय है। वजह है, ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते चंपत राय ही मंदिर प्रबंधन को देखने वाली टीम में सबसे अहम कड़ी है, लेकिन बाकियों का क्या?
1: चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से आज 3 घंटे तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया। पुलिस ने कई बिंदुओं पर सवाल पूछे। अब चंपत राय के बयान का मिलान दूसरे गवाहों और मौजूद दस्तावेजों से किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ में चंपत कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ऐसे में चंपत राय से दोबारा पूछताछ होगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चंपत राय ने यही कहा कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे ही उन्हें चढ़ावे में चोरी की जानकारी मिली, संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो गई और FIR भी दर्ज करवाई गई। आरोपी टिन्नू को लेकर सफाई देते हुए चंपत राय ने यही दावा किया कि टिन्नू को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन उसने गलत काम किया जिसकी उम्मीद उन्हें नहीं थी। पुलिस ने पूछा, रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया? चंपत राय ने कहा, जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के दूसरे सदस्यों की भी भूमिका रही है। चंपत राय ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव का जिक्र किया।
6: 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई है,

0: उस पूछताछ के कंटेंट्स हम सबको कैसे मालूम पड़े ये मुझे पता नहीं, पर मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं कि उनसे पूछताछ हुई है। आपके बयान के हिसाब से पुलिस इसको इवेल्युएट करेगी और अगर वो पाएगी कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं तो उसको भी इवेल्युएट करेगी और जो दोषी होंगे उनको पूरा दंड मिले, ये विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया है।
1: दरअसल चंपत राय के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत 7 जून को दिया वो बयान है जिसमें चंपत राय चीख चीख कर दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर के बही खाते में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई गड़बड़।
2: रुक रहे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: आषाढ़ के महीने का किस नक्षत्र से है संबंध? आषाढ़ के महीने का माता दुर्गा से क्या संबंध है? आषाढ़ के महीने में कौन सा फल नहीं खाना चाहिए? क्या है आषाढ़ के महीने की महिमा और नियम? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकन से पीएम मोदी ने की बात। मिडिल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, स्थिरता पर भारत का जोर। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा। राजस्थान के दौसा में ट्रक से टकराई बस। हादसे में 7 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। भारी बारिश के बीच सिक्किम में बिगड़े हालात। पहाड़ दरकने से भारी तबाही। मुंबई में बारिश के दौरान स्कूल पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की मौत, 5 छात्र घायल। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है और आज हम बात करेंगे आषाढ़ के महीने के महिमा की। इस महीने का

ध्यान रखना चाहिए इन विषयों पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन

यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं आषाढ़ महीने के बारे में। ज्योतिष और धर्म शास्त्र आषाढ़ महीने के बारे में क्या कहते हैं उसको समझते हैं। देखिए, हिंदू पंचांग का चौथा महीना आषाढ़ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और चौथा आषाढ़, ये संधि काल का महीना है। गर्मी समाप्त होती है और लगभग इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सबसे ज्यादा होता है क्योंकि बारिश शुरू होती है, बीच बीच में धूप भी तेज निकलती है, तो लोग जल्दी जल्दी और ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी आनी शुरू हो जाती है। आषाढ़ के महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस बार आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक रहेगा, जिसमें आषाढ़ के महीने के नियमों का पालन किया जाएगा। इस महीने का नाम आषाढ़ इसलिए है क्योंकि लगभग आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, तो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंध होने की वजह से इस महीने का नाम आषाढ़ है। आषाढ़ के महीने पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल।

मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा। गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं। देखिए, नियम ये कहता है कि आषाढ़ मास के पहले दिन खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को करना चाहिए। इसी महीने में, आषाढ़ के महीने में, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। इस महीने में सूर्य देव की विशेष पूजा होती है और भगवती की, देवी की उपासना भी की जाती है। इस महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयनी एकादशी कहते हैं और इसी महीने से भगवान विष्णु शयन के लिए चले जाते हैं और भगवान विष्णु के योग निद्रा में जाने पर देवोत्थान एकादशी तक यानी अगले 4 महीने तक शुभ कार्य मना होते हैं, शुभ कार्य बंद होते हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव मनाया जाता है। ईश्वर के समतुल्य गुरु की उपासना की जाती है और गुरु से आशीर्वाद लिया जाता है। आषाढ़ पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।

कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।

कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाएं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रजनीश जी ने लिखा है, इंदौर से लिखते हैं। 18 अप्रैल 1973 का जन्म है, जन्म का समय है रात में 9 बजे, जन्म स्थान है इंदौर। रजनीश जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है जिस वजह से मेरे व्यापार में भी अड़चन आती है, मैं काम ठीक से नहीं कर पाता हूं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। रजनीश जी अभी जून 2027 तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए और ज्यादातर आपको ध्यान रखना है अपने डाइजेशन का। अगर आप अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखें, खान पान को थोड़ा सिस्टम में ले आए तो आप जल्दी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जून 2027 तक सावधानी बनाए रखें। उसके बाद का समय आपकी कुंडली में बेहतर दिखाई दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह 1 बार नारायण कवच का पाठ या तो करें या तो सुने। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। अब आपको बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करने से लाभ होगा। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा फलदायी उपासना गुरु की होती है। इसके अलावा आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि भी आती है जिसमें तंत्र साधना

ती है जिसमें देवी की उपासना करना शुभ होता है। आषाढ़ के महीने में भगवान विष्णु की उपासना अगर आप करें तो संतान की प्राप्ति का वरदान आपको मिलेगा। अगर आप आषाढ़ के महीने में जल देव की, वरुण देव की उपासना करें तो धन की प्राप्ति आसानी से होगी। आषाढ़ के महीने में मंगल ग्रह की और सूर्य ग्रह की उपासना करनी चाहिए। अगर आप आषाढ़ में सूर्य देव और मंगल देव की उपासना करेंगे तो आपकी ऊर्जा का स्तर बेहतर होगा। और विशेष रूप से अगर आप सूर्य देव की उपासना आषाढ़ के महीने में करेंगे तो आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। आषाढ़ में आप कुछ करें या ना करें, आषाढ़ के अंतिम दिन अपने गुरु की पूजा जरूर करिएगा ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो और आपके प्रारब्ध कटें। अगर अब तक कोई गुरु नहीं है आपके पास तो भगवान शिव या भगवान कृष्ण को गुरु मानकर उनकी पूजा आषाढ़ में करने से आपको लाभ होगा। आषाढ़ पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

धन की समस्या हल होगी। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। धन लाभ के अच्छे योग बने हुए हैं। करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। देखिए, हिंदू पंचांग के जितने भी महीने होते हैं उनको आयुर्वेद के हिसाब से और स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाता है और उस हिसाब से खाने पीने के नियम बनाए जाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में खान पान में किन बातों

का ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ के महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए, तरबूज, खरबूज, खीरा ये खाना चाहिए। आषाढ़ के महीने में बेल का फल बिल्कुल भी मत खाइए, ये स्वास्थ्य को बुरी तरह बिगाड़ सकता है। जहां तक हो सके आषाढ़ के महीने में तेल वाली चीजें कम खाइएगा। आषाढ़ के महीने में सौंफ, हींग और नींबू का प्रयोग करना लाभकारी होता है। चूंकि यहां से वर्षा की शुरुआत हो जाती है, इसलिए भोजन को पकाकर या उबाल कर खाइए। कच्ची चीजों को खाने से इस समय से थोड़ा परहेज करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता के योग हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सफेद कपड़ा पूरी तरह से सफेद नहीं पहनना चाहिए। जब आप पूरी तरह से सफेद पहनने जा रहे हैं तो उसके किनारे हल्दी लगा लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, पूरी तरह से सफेद कपड़ा मृत्यु हो जाने के बाद पहनाया जाता है परंपरा के अनुसार। जीवित अवस्था में अगर आप पूरा सफेद कपड़ा पहनने जा रहे हैं, सफेद कुर्ता, धोती, सफेद शर्ट या टी शर्ट, तो जरा सा किसी कोने में हल्दी लगा लेनी चाहिए ताकि उसकी शुभता बनी रहे और वो मृत्यु का वस्त्र ना समझा जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी तौर से कोरा सफेद वस्त्र सामान्य

अतः नहीं पहनना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर एक से लेके नंबर नौ तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर एक, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर दो, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, काम की अधिकता रहेगी। नंबर चार, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर पांच, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर छह, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। नंबर सात, करियर की समस्या हल होगी। नंबर आठ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न दीपशिखा ने हमें लिखा है और दीपशिखा हमें पुणे से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 June 1982। जन्म का समय शाम के 6:55। जन्म का स्थान है भोपाल, मध्य प्रदेश। मेल लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मेरी एक शादी होकर के टूट चुकी है, आगे मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीपशिखा जी, आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का समय चल रहा है और इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आप दूसरी शादी करेंगी स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। और ऐसा लगता है कि सेकेंड मैरिज करने के बाद आपका चेंज ऑफ प्लेस भी होगा, पुणे से स्थान आपको बदलना पड़ेगा। आपके दूसरे विवाह में ज्यादा कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैं इतना तो कहूंगा ही कि एक बार कुंडली जरूर दिखा करके बालक की उसके हिसाब से अगर निर्णय लिया जाए तो बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो हरी धनिया खाकर घर से जाइए।

करेगा सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, हरी सौंफ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज, तो गणेश जी को दूर्वा अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है, तो जरा सा चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है, तो हरा रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि

धनु राशि के लिए करियर में सफलता मिलेगी, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि को, तनाव बढ़ सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। अब जान लेते हैं आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज आषाढ़ का पहला दिन है। अन्न और वस्त्र का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें और आज थोड़ा सा समय निकालकर सुबह या शाम जब भी मौका मिले गणपति की, गणेश जी की आरती करिएगा, आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

तो बात करेंगे बड़ी खबर की, एक ऐसी राहत जो राजधानी दिल्ली को सुबह सुबह मिली है। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे हैं। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 183.50 रुपए की भारी कटौती की गई है। 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब सस्ता होकर 2,930 रुपए का मिलेगा। पहले इसकी कीमत 3,113.50 रुपए थी। जाहिर है 183 रुपए की कटौती के बाद रेस्टोरेंट और ढाबा मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कटौती दिल्ली में देखी गई है, अभी तक इसके बारे में जानकारी आई है, और इसके चलते रेस्टोरेंट ढाबा मालिकों को बड़ी राहत मिली है। तो कमर्शियल सिलेंडर में ये कटौती भारी राहत देगी, और इसी के साथ आज की सुबह एक अच्छी खबर लेकर। लेकिन दिल्ली में इस वक्त एक और बड़ी खबर, दिल्ली के नजफगढ़ रोड इलाके में एक भीषण आग लगी है। नजफगढ़ रोड के एक शोरूम में आग लगी है। आग लगने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर एक शोरूम है जिसमें आग लग गई है, और उसके बाद दमकल विभाग की टीमें जो है आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है, लेकिन जाहिर है शोरूम है, आग लगी है तो मालमत्ता संपत्ति का काफी नुकसान हुआ है। देखिए पूरी इमारत आग के शोलों में तब्दील हो गई है। फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो आग की लपटों को बुझाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली का नजफगढ़ का इलाका है और बिल्कुल सड़क पर ही ये शोरूम बना हुआ है, और आग बुझाने की कोशिशें वहां से जारी है। और आइए अब देखते हैं नॉन स्टॉप 100।

प्रधानमंत्री मोदी के सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। बोले, सीधे जनता तक पहुंचे योजनाओं का असर। आज से 3 दिन के असम दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, तेलंगाना सरकार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। आज दिल्ली में डेंगू पर जेपी नड्डा की मीटिंग होने वाली है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, एनडीएमसी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। एसआईआर और चुनाव आयोग पर विपक्ष भड़का हुआ है। 23 पार्टियों ने सीजीआई को चिट्ठी भेजी। दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के एसआईआर के तीसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। 13,000 से ज्यादा बीएलओ की इस काम में ड्यूटी लगाई गई है। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुर्शिदाबाद के 2 थानों से नोटिस जारी हो गया है। सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर एक्शन में पुलिस। पश्चिम बंगाल 2023 रामनवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शक्ति लली को एनआईए ने गिरफ्तार किया। इलाके में भारी तनाव देखने को मिला। कोलकाता में 60 दिन तक रैली और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। 21 जुलाई को होने वाली शहीद दिवस रैली से पहले टीएमसी को बड़ा झटका। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने शुभेंदु सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज अब बीजेपी की राजनीति की भेंट चढ़ गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की आज बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच गई। एसबीआई समेत 6 बैंकों को नोटिस जारी किया गया है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घमासान मचा है। कांग्रेस का बीजेपी पर, आरएसएस पर पलटवार हुआ, कहा मुंह में राम और बगल में चोरी। चढ़ावा चोरी पर हनुमानगढ़ी की महंत धर्मदास ने कहा कि चंपत राय ने गड़बड़ी की है, राम मंदिर को लूटा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायशी दिल्ली पहुंच रही हैं। आज शाम 7 बजे 3 दिवसीय दौरे पर वो भारत आ रही हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात होगी। द्विपक्षीय बातचीत में इंडिया जापान समिट में भी जापान की पीएम हिस्सा लेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की नजरबंदी खत्म हो गई। अजय राय ने रामलला और हनुमानगढ़ी में अपने तमाम साथियों के साथ दर्शन किए। यूपी में समाजवादी पार्टी में किचकिच जारी है। सांसद रुचि वीरा से तनाव की चर्चा के बीच विधानसभा चीफ व्हिप से कमल अख्तर को इस्तीफा देना पड़ा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में आवास के नमूने की फॉरेंसिक जांच पर सुनवाई होगी। आज पवन सिंह निशांत कुमार लेंगे एमएलसी की शपथ। शाम 4 बजे से विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 1 जुलाई यानी आज से नए टैक्स सिस्टम भी लागू हो चुके हैं। सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दी है। आज से कई वित्तीय नियम भी बदल रहे हैं। आधार में ईमेल अपडेट करना अनिवार्य होगा। फ्री पासपोर्ट बनवाना भी महंगा होगा। डीजल निर्यात शुल्क में 14 रुपए से घटाकर 8.5 रुपए प्रति लीटर किए गए। एटीएफ पर 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है।

कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम जारी हुए। यूपीआई से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा, पासपोर्ट बनवाने की फीस में भी आज से बढ़ोतरी। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाएगा। आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट 31 दिसंबर तक मुफ्त। कई बैंकों ने लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदले। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को होगी हरियाणा टीटी की परीक्षा। जिला कलेक्टर ने धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पीडीए केक काटा गया। सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने सरकार पर निशाना साधा। कमाल अख्तर के इस्तीफे पर सांसद रुचि वीरा का पहला बयान, बोली मैंने अखिलेश यादव से शिकायत की थी, उन्होंने जो उचित समझा वही किया। भरत तिवारी के भाई ने कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएगा परिवार। भरत तिवारी मामले में आंदोलन तेज।

0: करने का ऐलान किया गया। 17 जुलाई को जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शन होगा। बिहार में चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, जांच कराई जा रही है, कोई भी दोषी हो बख्शा नहीं जाएगा। रोहतास इलाके के 13 शिक्षकों पर गाज गिरी, अमान्य डिग्री पर नौकरी करने का आरोप लगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 13 शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, पिछले महीने भी 142 शिक्षकों को हटाया गया था। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ है, एक गाड़ी मलबे में फंस गई, बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। पहली बारिश में ही दरभंगा नगर डूब गया, निगम का दफ्तर मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों ने दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कागजों पर सिर्फ होता है काम, पिछले कई वर्षों से दरभंगा का बुरा हाल बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के पांपारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान मचा, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गर्मी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर है, अगले 2-3 दिनों में मॉनसून दस्तक देगा, गर्मी और उमस से मिलेगी निजात। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दमन के कई हिस्सों में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी है, दिल्ली के साथ उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में भी मॉनसून जल्दी दस्तक देगा। उधम सिंह नगर में मूसलाधार बारिश के चलते भारी जल जमा हुआ, घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। बागेश्वर में भी आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों को बंद करने के आदेश दिए। स्मार्ट सिटी सतना में आफत की बारिश देखने को मिली, सड़कें समंदर बन गई, नाले उफनते दिखे, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सीहोर में झमाझम बारिश के चलते मेन मार्केट में पानी भरा, सड़कों पर 2 फीट तक पानी भरा। शहर में भरे पानी में खेलते दिखे लोग, दुकानों और घरों में गंदा पानी घुसा। नवसारी में मौसम की पहली बारिश में 20 से अधिक घरों में पानी घुसा, जल जमाव से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई। सूरत में मानसूनी बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, दरारें पड़ गई, 20 सड़क पर गड्ढे में कार फंस गई। सूरत में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए, जल भराव के बीच केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत मच गई। मंडी पुलिस का पूर्व जवान अजय पिछले 5 सालों से लापता, गुस्साए ग्रामीणों ने मंडी जिला प्रशासन को घेरा, शहर में आक्रोश रैली निकाली। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 52,000 रूपए के नकली नोट भी बरामद किए गए। उड़ीसा के भद्रक में एक तरफा जुनून का सनसनीखेज मामला सामने आया, आरोपी ने 15 साल की स्कूली छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने और जहर पिलाने की कोशिश की। मोतिहारी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की आड़ में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर में 7 महीने की गर्भवती की हत्या की गई, बंद ईंट भट्टे से शव मिला, दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा। पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर माफियाओं ने फायरिंग की, बाल बाल जवान बचे। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या की गई, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई, 9 लोग हिरासत में। छत्रपति संभाजीनगर में पूर्व छात्र ने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, टीसी को लेकर चल रहे विवाद के चलते छात्र ने हमला किया। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर के आपस में भिड़े लोग, देखते ही देखते हिंसक रूप मामूली बदला मामूली विवाद। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लगी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक से भिड़ंत के बाद बस में आग लगी, हादसे में 8 की मौत, कई घायल। उड़ीसा के भुवनेश्वर मार्केट की बिल्डिंग में लगी भयंकर आग, 15 से ज्यादा कपड़ों की दुकानें जलकर खाक। कर्नाटक के दावणगिरी में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट, बाद में आग से अफरा तफरी मची। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईसेल के ओपन कास्ट कोयला खदान से उठा धुएं का गुबार, खदान में ब्लास्ट की घटनाओं से इलाके में दहशत। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित परिक्रमा रेस्टोरेंट में आग लगी, किचन से उठ रहा था धुआं, कोई हताहत नहीं हुआ। मसूरी के मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटक ने दंपति पर प्लास्टिक क्रेट से हमला किया, महिला का सिर फोड़ दिया। असम के गोलाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक आए हाथियों का उत्पात, जंगली हाथी ने सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को सूंड से उठाकर तोड़ दिया। गाजियाबाद में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद रोडरेज का मामला बना, कार सवारों ने युवक की पीट पीट कर हत्या की। हरियाणा के अंबाला में 220 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का मासूम, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, फिर भी जान नहीं बचा सके। पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचला, गुस्साए लोगों ने चालक की जमकर पिटाई। दिल्ली में सोने की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, करीब 21 करोड़ का सोना जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार, थाईलैंड से आए कुरियर की जांच में खुलासा। नोएडा सेक्टर 100 की लोटस स्पेशिया सोसाइटी में 18वीं मंजिल से महिला ने कूदकर आत्महत्या की। मानसिक तनाव के चलते योगा इंस्ट्रक्टर ने जान ली। बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवान, समंदर में फंसे 6 नाविकों की जान बचाए, रेस्क्यू का वीडियो जारी किया। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर गिरा एक मेडिक, बच्चे की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती, 12 का रेस्क्यू किया गया। हादसे के समय 18 छात्र बस में सवार थे। आज से इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज का आगाज होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 टी20 मैच। चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे मुकाबला। श्रेयस अय्यर की पहली कप्तानी में टी20 आई सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजर। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में हिस्सा। हार्दिक पंड्या ने करियर के लिए बड़ा फैसला लिया, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी किया। टीवी पर लाइव दिखाए वाले मैचों की संख्या भी बढ़ाई गई। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित की गई, सितंबर से जापान में आयोजित होगा ये टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को टीम में कमान मिली, स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया। खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर यास्तिका भाटिया को टीम से ड्रॉप किया गया, उनकी जगह 17 साल की युवा विकेटकीपर जी कमलनी को मौका दिया गया है। स्पिन ऑलराउंडर श्रृंखला पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह दी गई। टी20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड के खिलाफ टकने में चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे श्रृंखला। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद है। इमरान हाशमी स्टार फिल्म आवारा पंतू का टीजर रिलीज हो चुका है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सनी देओल अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म एक्का का ट्रेलर भी रिलीज हो गया, 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर आएगी। फिल्म अल्फा को सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। फिल्म हेरा फेरी 3 को झटका लगा है, प्रियदर्शन ने निर्देशन छोड़ा। पंजाबी फिल्म कैरी ऑन जट्टा 4 ने कमाल किया जबरदस्त कलेक्शन। रूसी सेना ने यूक्रेन इलाकों पर बड़ा हमला किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने दूसरी बार मॉस्को में रूस के सैटेलाइट संचार केंद्रों पर हमला किया। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्ला अमेरिका में इसराइल लेबनान समझौते को नहीं मानता। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ईरान मुद्दे पर बातचीत के लिए दोहा पहुंचेंगे अमेरिकी विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर। गाजा पर इसराइल का भीषण हमला, बेतलाहिया पर इसराइली सेना ने बम गिराए। ब्रिटिश पीएम केस स्टार्मर ने ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र पर बड़ा खर्च करने की बात कही, बोला भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार 15 अरब पाउंड देगी।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Acoje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: TuneIn has all of your favorite audio in one spot. So, you can enjoy listening to anything, anywhere. From breaking news.
3: After multiple assassination attempts, they can't even get.
4: They're reliable.
5: Always when I need them.
2: To live sports action.
6: One hand jam by LeBron on the break.
7: That's another three, Steph Curry.
2: And your favorite music.
8: Well, the dawn begins to crack.
2: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: इन एसोसिएशन विद
11: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
12: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

मैं इस्लाम धर्म में चला गया था। परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।

एक चेहरे दो पहचान, सही सुना सही देखा सही पहचाना इस युवक को। नाम है आयुष मलिक। यूपी के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष। करीब 20 दिन पहले आपने आज तक पर मोहम्मद अली बने आयुष को देखा था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे आयुष मलिक का

0: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: मैं इस्लाम में चला गया था, परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वह पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
1: एक चेहरे दो पहचान, सही सुना सही देखा सही पहचाना इस युवक को। नाम है आयुष मलिक। यूपी के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष। करीब 20 दिन पहले आपने आज तक पर मोहम्मद अली बने आयुष को देखा था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे आयुष मलिक का धर्मांतरण कराया गया, उसे मोहम्मद अली बना दिया गया। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कैसे धर्मांतरण के बाद उसका निकाह रचा दिया गया। लेकिन अब वो मोहम्मद अली से दोबारा आयुष मलिक बन चुका है। इस बार बकरीद पर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले अली अब फिर से आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और अब वो पूजा पाठ में मगन है। ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के बाद आयुष पूरी तरह बदल गया था, या यूं कहें कि बदलने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन वो ज्यादा देर तक मजहबी बहकावे में नहीं रह सका। उसके घर वापसी के बाद की ये तस्वीरें देखिए। अब वो अपने घर में अपनों के साथ पूजा पाठ में लीन है। वो मंत्रोच्चार कर रहा है और अपने पुराने दिनों को भुलाने में जुटा है। धर्मांतरण को ठोकर मारते हुए आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। वो पूरी तरह से अपने घर लौट चुका है। परिवार वाले उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका मुंह मीठा कर रहे हैं। शामली के रहने वाले देवराज मलिक अपने बेटे आयुष के धर्मांतरण के बाद से परेशान थे। उन्होंने कई बार अपने बेटे के मजहब को बदलने का विरोध किया था, लेकिन शामली के रहने वाले मुस्लिम परिवार की साजिशों के चंगुल में फंसकर वो खुद को बदल चुका था। आयुष मोहम्मद अली बन चुका था। शहर में उसका मेडिसिन स्टोर है। मलिक परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तमाम संपत्ति का इकलौता वारिस है आयुष मलिक। उसी संपत्ति को हड़पने की साजिश थी। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की ने संपत्ति हड़पने के लिए ही आयुष को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। आयुष के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। आरोप लगाया था कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली की चांदनी और उसके परिवार की नजर है। धर्मांतरण के बाद कई बार आयुष को समझाने की कोशिश की गई थी। परिजनों के साथ साथ पुलिस ने भी पहल की थी, लेकिन आयुष दलील देता रहा कि उस पर किसी का दबाव नहीं था। लेकिन कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। आयुष मलिक के लौट आने के बाद से पिता देवराज मलिक भावुक है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, उनका बेटा अब उनके साथ है। आयुष के धर्मांतरण के खिलाफ उसके परिवार ने FIR दर्ज कराई थी। उस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। बाद में एक और गिरफ्तारी हुई और अब तक धर्मांतरण की साजिश को लेकर जांच जारी है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

आयुष मलिक के खिलाफ बड़ी साजिश हुई थी। ये साजिश थी 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हड़पने की, उसके बिजनेस पर कब्जा जमाने की। शामली के मलिक परिवार का आयुष सॉफ्ट टारगेट बन गया था। उसे साजिश में फंसाने के लिए गिरफ्तार आरोपी चांदनी और उसके परिवार ने जाल बिछाया। परिवार ने चांदनी को आगे कर दिया। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी मौके की तलाश में जुटी रही और इस साजिश में चांदनी के पिता इस्लाम कुरैशी और भाई भी मदद करते थे। साजिशन चांदनी को पहली बार मौका मिला 2018 में। आरोपों के मुताबिक उसी साल आयुष से चांदनी पहली बार मिली, तभी से वो संपत्ति हड़पने के लिए संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगी। आयुष के धर्मांतरण और निकाह की साजिश कैसे आगे बढ़ी, इसकी कड़ियों को भी समझ लीजिए और जान लीजिए। दरअसल आयुष शामली में अपने मेडिकल स्टोर संभालता रहा है। उस मेडिकल स्टोर पर गिरफ्तार चांदनी का भाई आस मोहम्मद भी काम करता था। आस मोहम्मद को पता था कि आयुष अकूत संपत्ति का मालिक है। तभी 2018 में आयुष के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसी के इलाज के सिलसिले में वो स्थानीय अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में ही बतौर फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी ड्यूटी कर रही थी। फिजियोथेरेपिस्ट के बहाने चांदनी कुरैशी आयुष मलिक से मिली और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। चांदनी जिम ट्रेनर भी थी, तो दोनों की मुलाकात का सिलसिला आने वाले दिनों में जिम में भी जारी रहा। समय बीतता रहा, नजदीकियां बढ़ती गई, अब बात निकाह तक आ गई। आरोपों के मुताबिक 5 साल की दोस्ती के बाद 2023 में चांदनी का परिवार आयुष को लेकर दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली में ही आयुष मलिक को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था। उसे मोहम्मद अली के रूप में नई पहचान दी गई। लगे हाथ चांदनी से उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को कोई निकाह नामा नहीं मिला था। आयुष मलिक अली मोहम्मद बन चुका था। जब परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी तो उसने आज तक से खास बातचीत में बताया था कि वो पाकिस्तान के मौलाना की तकरीरें भी सुनता था। और शामली में धर्मांतरण के इस मामले के खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया था। अब परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पुलिस ने SIT गठित की थी, जिसकी तफ्तीश अब तक जारी है। दिल्ली में आयुष का धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलाना की तलाश तेज है। माना जा रहा है कि फरार मौलाना अंडमान या चेन्नई में कहीं छिपा हुआ है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: जुलाई का महीना शुरू होते ही कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती। दिल्ली में 183 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। कमर्शियल सिलेंडर आज से पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी। आधार कार्ड अपडेट करने की फीस खत्म हुई। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकन से पीएम मोदी ने की बात। मिडिल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा स्थिरता पर भारत का जोर। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा कसा। राजस्थान के दौसा में ट्रक से टकराई बस। हादसे में 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। और अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 8 बजे हैं और वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें होंगी, आपको बताएंगे। राजस्थान के दौसा में कैसे बस बन गई आग का शोला, ये भी दिखाएंगे कि अंबाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नहीं बच पाई जान। खबर मौसम की भी दिखाएंगे, मुंबई का हाल दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे सिक्किम में लैंडस्लाइड से बेहिसाब खतरा। तस्वीरें बिहार में प्री मानसून बारिश से संकट की भी दिखाएंगे और एक बड़ा खुलासा चढ़ावा चोरी पर भी करेंगे। आज अखिलेश यादव के जन्मदिन पर योगी ने क्या कहा यह भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कहां कहां से आज होने वाली है अमरनाथ यात्रा के लिए रवानगी। तो इस बुलेटिन की शुरुआत एक राहत भरी खबर से। अमेरिका और ईरान में तनाव के बाद राहत मिलने लगी है और एक अहम खबर यह है कि कमर्शियल सिलेंडर आज से सस्ता हो गया है। दिल्ली में प्रति सिलेंडर अब 183 रुपए आज से सस्ता हो गया है, जिसके बाद नई कीमत हो गई है 2930 रुपए। यानी आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2930 रुपए। तो लगातार बढ़ती दरों के बाद ये भाव 3113 रुपए प्रति सिलेंडर पहुंच गया था, जिसके बाद अब दामों में कटौती की गई है। तो 19 किलो का जो नीला कमर्शियल सिलेंडर है ये कीमत अब 183 रुपए घटी है, 183 रुपए 50 पैसे ये असली कीमत। ये घटने के बाद अब नई कीमत हो जाएगी 2983 रुपए 930 रुपए। तो इसका सीधा असर क्या होगा कि खाना पीना रेस्टोरेंट में, ढाबों में, होटलों में अब सस्ता हो जाएगा। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक बस ट्रेलर से टकरा गई, जिसके बाद अनियंत्रित होकर बस आग की चपेट में आ गई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हो चुकी है जबकि कई अन्य यात्री घायल हैं। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 यात्री सवार थे। आग की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल कर्मी, अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया लेकिन तब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी और अब मरने वालों का आंकड़ा 8 हो चुका है, जबकि कई यात्री इस दर्दनाक हादसे में घायल हुए हैं।
2: बड़ी दर्दनाक घटना अभी हुई रात को करीब 3 बजे के आसपास, जिसमें एक्सीडेंट से बस में आग लग गई। अभी ये पता नहीं लग रहा है टोटल सवारी कितनी थी उसमें। अभी तो 8 तो डेड बॉडी मिली जो बिल्कुल जल गई और 11 आदमी यहाँ एडमिट है, एक आदमी जयपुर रेफर कर दिया। हो सकता है कि और भी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए। ये सब लोग हरिद्वार से आ रहे थे, इसमें लोग ज्यादातर मध्य प्रदेश के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं और हमारा सारा प्रशासन, जिला कलेक्टर, SP, सारे डॉक्टर सब लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं।
0: हमारे वरिष्ठ सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, जानकारी मिल पाई है हादसा कैसे हुआ और अब क्या पूरी तरह से जो लोग थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है?
3: आशुतोष, हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह के हालात हैं। अभी भी धुआं यहां पर निकल रहा है और ये बस को देखिए, ये बताया जा रहा है कि बस ये जो है हरिद्वार से आ रही थी और जयपुर की तरफ जा रही थी और इसी में ये बस के ड्राइवर को झपकी आ गई और बस के ड्राइवर ने इस ट्रोला, जो धुआं निकल रहा है आप देख रहे हैं, उस ट्रोला को घसीटते हुए लेकर आया और इसमें ज्वलनशील पदार्थ आप देख सकते हैं पूरे बस में। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको इस तरह से सिगरेट ही सिगरेट के पैकेट नजर आएंगे। ऐसा लग रहा था कि बस कम है और सिगरेट ज्यादा यहां पर लेके जाया जा रहा है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है, 22 लोग घायल हैं आशुतोष, बस की हालत को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस हालात में यहाँ पर आग लगी हुई है। रात के ढाई बजे का समय था। रात के ढाई बजे का समय ऐसा होता है जब जो यात्री हैं वो सो रहे होते हैं, और उस समय ये हादसा हुआ है। आप देखते जाइए, बाहर दिखाया, आप अंदर देखिए किस तरह से सिगरेट ही सिगरेट के सारे यहाँ पर पैकेट्स आपको मिलेंगे, और इस तरह से कागज के बंडल हैं ये भी लेके जाए जा रहे थे, जहां पर आपको दिखाई देगा। हम आपको इधर दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बार बार सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठता है, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह से बस यहां पर यमदूत बनके दौड़ रहे हैं सड़कों पर। ये देखिए, रेस्क्यू का काम अभी भी चल रहा है, कुछ फंसा हुआ है, कोई लोग हो सकते हैं, ये खोजबीन यहां पर चल रही है। जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, ये सारे लोग यहां पर अभी भी बस में सर्च का काम कर रहे हैं। और ये ट्रोला है, देखिए इस तरफ से आ रही थी ये, हरिद्वार से बस और जयपुर की तरफ जा रही थी। बस के ड्राइवर को झपकी आई है और उसने ट्रोला को घसीटते हुए यहां पर लेकर आया है। अभी भी यहां पर जो है काम चल रहा है, और बचाव का जो पुलिस अधिकारी हैं आप देख सकते हैं।
0: ठीक है शरद, आप पूरी घटना पर नजर बनाए रखें, इससे जुड़ी आगे की जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा जो घटनास्थल पर मौजूद थे। लेकिन मुंबई में बीती रात कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। इतनी बारिश की मायानगरी में मुसीबत की तस्वीरें दिखने लगी हैं। वैसे तो बारिश का सिलसिला कल से चल रहा है, कल शाम भी भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर हालात बिगड़े हैं। बीती रात भी झमाझम बारिश से स्थिति और बिगड़ी है, कई इलाकों में पेड़ धराशायी हुए हैं, कहीं पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो अंधेरी, बीकेसी ईस्टर्न फ्रीवे और डीबी नगर समेत कई इलाकों में संकट गहराया। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी बारिश फिलहाल बंद है, लेकिन मानसून की दस्तक के बाद से ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में लगातार आफत की बारिश। तो कहीं जल जमाव, कहीं गाड़ियां तबाह, कहीं जल भराव से संकट, तो कहीं पेड़ गिरे हैं। और डीबी नगर की आप तस्वीरें देखें तो ये मुंबई माया नगरी, देश की आर्थिक राजधानी की तस्वीर, बारिश और बारिश के बाद रफ्तार थमती हुई। बीकेसी, वडाला और इसी के साथ ईस्टर्न फ्रीवे, अंधेरी, डीबी नगर, मुंबई के पांच अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने कि कैसे बारिश के बाद हालात बिगड़ने लगे, रफ्तार पर ब्रेक लगी, जल जमाव की तस्वीर सामने आई है। तो मूसलाधार बारिश मुंबई में हो रही, जिसके बाद कई जगहों पर संकट देखने को मिला। हालांकि अभी तक हाई टाइड का अलर्ट नहीं है, जो वरना ऐसी स्थिति होती तो निचले इलाकों में पानी निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो मुंबई से अभी जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक लगातार बरसात हुई है, और उस बरसात के बाद जल जमाव और मुंबई सबर्बन, और ये देखिए इसी आंधी बारिश के चलते जहां पर एक बच्चे की मौत हो गई थी, चेंबूर का संभवतः यह इलाका, जहां पर एक पेड़ गिर गया, बस उस पेड़ के नीचे दब गई, एक बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद दमकल कर्मियों ने आकर के मदद की, पेड़ को काटा गया, हटाया गया, कई बच्चे इसमें घायल हुए, उन्हें वहां से निकाला गया। मुंबई का चेंबूर इलाका मंगलवार की दोपहर भारी बारिश की वजह से ऐसे हालात बने कि भारी भरकम पेड़ धराशायी हो गए। ऐसे ही एक पेड़ की चपेट में ये स्कूल बस भी आ गई। चेंबूर के रोड नंबर 11 पर यह हादसा हुआ, और इस घटना में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की जान चली गई। ये मासूम भी स्कूल बस में ही सवार था। हादसा करीब 3 बजे दोपहर को हुआ। स्कूल बस में 18 बच्चे सवार थे, इस पर पेड़ गिरा तो कई अन्य छात्र जख्मी हो गए। हादसे के बाद मुंबई के मेयर रितु तावड़े भी मौके पर पहुंची।
4: नहीं, बहुत ही दुखदायक ऐसी घटना है। मुझे महापौर ने एक माँ के नाते भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए, या खुद स्कूल से घर पे जा रहे थे, और इस तरह से ये पेड़ गिरा। मुझे उस माँ को फेस करने के लिए डर लग रहा है जिसका बच्चा आज गया है।
5: हादसे के बाद वहाँ लंबा जाम लग गया। बीएमसी ने क्रेन के जरिए राहत अभियान चलाया, स्कूल बस और पेड़ को रास्ते से हटाया, उसके बाद ही आवाजाही शुरू हो सकी। लतीफ शेख के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
0: तो एक तरफ पश्चिम में मुंबई में बरसात हो रही है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्य भी बारिश और प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। अरुणाचल के बाद सिक्किम में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इसका गंभीर असर एक दिन पहले सिंगताम और दिक्षु इलाके में दिखा। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से सिंगताम इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से भारी तबाही मची है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े, जिसकी वजह से आवाजाही बाधित हो गई। इस घटना में कई गाड़ियां कुछ फंसी रही, और इनको बाद में मशक्कत के बाद वहां से निकाला गया। दो तस्वीरें आप सिक्किम की देख रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई, तो कहीं पर लैंडस्लाइड के बाद जल जमाव के चलते दलदल बन गया, जिसके चलते गाड़ियां वहां फंसी रहीं। अगली खबर बिहार और मध्य प्रदेश से। भारी बारिश से अभी से हालात बिगड़ने लगे हैं। ठीक से मानसून ने अभी दस्तक दी भी नहीं है। मानसून ने पूरी तरह दोनों राज्यों को अपनी चपेट में लिया भी नहीं है, लेकिन प्री मानसून बारिश के चलते दोनों राज्यों के कुछ शहरों में संकट गहरा गया। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले आप बिहार के दरभंगा के हालात देखिए। ये पहली मूसलाधार बारिश के बाद के हालात हैं। दरभंगा नगर निगम का दफ्तर, मेन मार्केट, टावर चौक, अस्पताल और गली मोहल्लों में यही हाल दिखा। स्थिति ऐसी हो गई कि घुटने भर पानी में डूबकर लोग आते जाते दिखे। दरभंगा नगर निगम के मुख्य दफ्तर का पूरा परिसर पानी में डूबा हुआ है। पानी की निकासी नहीं होने से स्थिति बदतर है। मार्केट पहुंचने वाले लोग परेशान हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के सीहोर की तस्वीर। वहां भी हालात बिगड़े हैं। आष्टा इलाके में मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। बुधवार दोपहर शुरू हुई झमाझम बारिश से मुख्य बाजार पानी में तैरने लगा। शहर के मुख्य सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं इछावर इलाके में भी स्थिति गंभीर दिखी। इससे नाराज कांग्रेस पार्षद ने अनोखे तरीके से भरे पानी में ट्यूब पर बैठकर और उसे नाव की तरह चलाकर विरोध किया। लाड़कू इलाके में भी 2 से 3 फीट तक पानी सड़क पर भरा दिखा। मध्य प्रदेश के सतना में भी हालात गंभीर हो गए हैं। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले सतना में आफत की बारिश हुई तो सड़कें समंदर बन गई। नालों में उफान आ गया। नालों का पानी ओवरफ्लो कर घरों और दुकानों में घुस गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर जाने की वजह से दोपहिया और चार पहिया वाहनों को निकलने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। एक जलमग्न अंडरपास में स्कूल बस भी फंस गई। बस का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। उसमें अंदर मासूम बच्चे फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी फंसे बच्चों को स्कूल बस से बाहर निकाला। दरभंगा से प्रहलाद कुमार और सीहोर से नावेद जाफरी के साथ वेंकटेश द्विवेदी, सतना आज तक।
6: सोचिए शहरों का ये हाल है जबकि अभी मानसून ने तो पूरी तरह दस्तक नहीं दी है। गनीमत ये मान लीजिए कि मानसून कमजोर है इसलिए शहर शायद बच भी जाएं। लेकिन आपने बिहार और मध्य प्रदेश के हालात देख लिए। उधर गुजरात और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से स्थिति बिगड़ी है। लगातार तेज बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको।

0: अभी मानसून ने ठीक से दस्तक दी भी नहीं कि बारिश ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश कितनी भारी रही। सड़कें देखते ही देखते तालाब में बदल गई। गलियों में तेजी से बहता पानी, पानी में डूबी गाड़ियां और घुटनों तक भरे पानी के बीच निकलते लोग। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नवसारी में बारिश का पानी सीधे घरों के अंदर घुस गया। कमरों में फैला पानी, भीगा हुआ घरेलू सामान और घरों से पानी बाहर निकालने की कोशिश करते लोग। पहली ही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। कई परिवार घंटों तक पानी के बीच फंसे रहे। उधर ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें भी कम डराने वाली नहीं है। आवासीय विद्यालय के डाइनिंग हॉल, क्लासरूम, स्टोर और कमरों में पानी भर गया। सामान पानी में भीग गया, जबकि स्कूल परिसर किसी झील जैसा दिखाई देने लगा। गांव में भी हालात बिगड़ गए। घरों के आंगन से लेकर कमरों तक गंदा पानी भर गया। तेज बहाव ने ट्रैक्टर को भी पलट दिया। कई रास्ते पानी में डूब गए और प्रशासन को पानी निकालने के लिए जेसीबी मशीनें लगानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। उधर दिल्ली एनसीआर में पिछले तीन दिनों से भीषण गर्मी उमस से जूझ रहे थे, तो हुआ क्या कि दिल्ली एनसीआर में बीती रात कई जगहों पर तेज बूंदाबांदी हुई, बारिश हुई और अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं। अच्छी खबर यह है कि ये प्री मॉनसून गतिविधियां हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए फिलहाल एक येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते कई इलाकों में तेज आंधी तूफान और बारिश हो सकती है। ये अलर्ट सभी इलाकों के लिए है। चेतावनी ये भी है कि आंधी तूफान, जोरदार बारिश होगी। वहीं अगले 48 घंटे में यानी एक से दो दिनों में मॉनसून की दस्तक देश की राजधानी दिल्ली में होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्री मॉनसून गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मॉनसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जो अब गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, दमन के कई हिस्सों को पार कर चुका है और अगले एक से दो दिनों में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। तो आज उमस से राहत मिल सकती है। दोपहर के बाद तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसके बाद कम से कम गर्मी तो कम महसूस होगी। लेकिन हां, अगले 24 घंटों में अब बरसात। और अब खबर राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने कोर्ट की अनुमति के बाद मंगलवार को जेल में चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब दो घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश शुक्ला से की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया। आरोपियों ने बताया कि दान राशि की गणना संबंधित प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। आपको यह भी बता दें कि शुक्रवार को सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद मंगलवार को जेल जाकर पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक बरामदगी अविनाश शुक्ला के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। चढ़ावा चोरी पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि एसआईटी फिर से जल्द अयोध्या जाने वाली है। हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, आम तौर पर चोरी और जब इतनी गंभीर लूट का मामला हो कि जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, पुलिस रिमांड लेती है। यहां एक अलग ही जांच चल रही है। जेल जाने दिया जाता है, रिमांड मांगते नहीं है, उसके बाद जेल जाकर आप पूछताछ करते हैं। लेकिन अब तक कम से कम यह पता चला है कि इसमें जो अविनाश शुक्ला उसके पास बरामदगी हुई है, उससे पूछताछ हुई है। कुछ नाम अभी भी बचे हुए हैं जिनके बारे में सिर्फ सूत्रों से जानकारी की पूछताछ हुई है। आगे क्या?
1: आशुतोष, जैसे जब यहाँ मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, कई साधु संतों से जब हमारी बातचीत यहाँ हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि छोटी मछलियां तो पकड़ ली गई हैं, लेकिन कई ऐसी बड़ी मछलियां हैं जो अभी भी बाहर हैं और जिनके इशारों पर सारा काम हुआ है और छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया और उन्हें फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। हालांकि पुलिस की कोशिश ये है कि जल्दी ही उनकी पुलिस रिमांड भी ली जाए। कोर्ट के से आदेश लेने के बाद जो है कल पूछताछ भी पुलिस ने जेल में जाकर की है और खासकर जो अविनाश शुक्ला है उसने कई राज खोले हैं। ये भी बताया गया है कि अनिल मिश्रा जो है, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है, उनका भी रोल कई चीजों में सामने आया है। 100 के ऊपर ऐसे कर्मचारी बंदी ट्रस्ट में है जिन्हें उन्होंने भर्ती कराया था। हालांकि चंपत राय और गोविंद राव के भी कई ऐसे लोग हैं जो भर्ती हुए, लेकिन अनिल मिश्रा का रोल बहुत अहम इसमें सामने आ रहा है इस कड़ी में। आपको बता दें, जब उस वक्त लैंड स्कैम हुआ था 2021 में, तब भी ऋषिकेश उपाध्याय जो पूर्व मेयर अयोध्या के थे, उनका नाम और उसके बाद अनिल मिश्रा का नाम सामने आया था। बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस जो है वो जो मनी ट्रेल है उसको एस्टैब्लिश करने में लगी हुई है।
0: ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस पूरी जांच पर नजर बनाए रखें क्योंकि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ लगातार सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इस बीच आज तक की टीम लगातार आरोपियों के ठिकानों पर जाकर ये बता रही है कि कैसे उन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई।
2: राम मंदिर के चढ़ावे से शुरू हुई जांच अब प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में हुए घोटाले तक जा पहुंची है। अब तक गिरफ्तार आरोपियों के घर की गई छापेमारी और पूछताछ में बैंक खातों, गाड़ियों और दूसरे सबूतों से जुड़ी जानकारी सामने आई है। जेल में बंद अविनाश शुक्ला से इस मामले में पूछताछ की गई। इस बीच आज तक की टीम चिंटू तिवारी के शीश महल तक पहुंची, जो राम मंदिर से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल चिंटू तिवारी ने 2021 में कुसुम से 2 करोड़ रुपए में जमीन खरीद कर मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेची थी। आरोप है कि उसी पैसे से ये शीश महल बनवाया गया है।
1: टेंपल ट्रस्ट ने वही जमीन चिंटू तिवारी से महज 10 मिनट के अंतराल में 2 करोड़ के बजाय 18.5 करोड़ में खरीदी, जिसमें गवाह बने थे तब के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। अगली तस्वीरें उस आलिशान शीश महल की आप देखें। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसी पैसे से चिंटू तिवारी द्वारा ये पूरा शीश महल खड़ा किया गया है।
2: जमीन खरीद फरोख्त में धांधली के आरोपों को ट्रस्ट ने उस वक्त सिरे से खारिज कर दिया था। चंपत राय ने दावा किया था कि एग्रीमेंट सालों पहले हुआ था और बाजार दर पर जमीन खरीदी गई। जांच में प्रशासन ने ट्रस्ट को क्लीन चिट दी थी। तत्कालीन मेयर इस मामले में खुद गवाह बने थे। अब एक बार फिर जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े तमाम मामले जांच एजेंसी के रडार पर हैं। ये रिपोर्ट आज तक।
0: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग शहरों में एक दिन पहले ही जन्मदिन मनाया। कानपुर, मुरादाबाद में केक काटे गए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटकर अखिलेश को शुभकामनाएं दी, तो इधर सीएम योगी ने भी अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके कहा कि प्रभु श्रीराम से आपके लिए आरोग्यता और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूं। तो बुधवार का दिन लग रहा है एक और अच्छी खबर लेकर के आया है। नायरा एनर्जी ने लोगों को बड़ी राहत दी है। भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की गई है। पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नायरा एनर्जी ने देश भर में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर कम करने का ऐलान कर दिया है और ये नई कीमतें 1 जुलाई यानी आज अभी से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। पिछले 2 साल से अधिक समय में किसी भी कंपनी द्वारा किया गया ये पहला बड़ा खुदरा ईंधन मूल्य कटौती का फैसला है। तो इसके पहले हमने देखा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कटौती हुई और अब नायरा एनर्जी, जिसके देश भर में लगभग 7,000 ऐसे पेट्रोल पंप हैं, उसने डीजल और पेट्रोल के दामों में कटौती कर दी है और ये बड़ी राहत है 5 रुपए पेट्रोल में, डीजल की कीमतों में। और ये कटौती अपने आप में सामान्य लोगों को, अगर आप उस इलाके में रहते हैं, तो पेट्रोल पंप पे बड़ा फायदा। अगली खबर पुणे से जुड़ी हुई। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में आज जांच का अहम दिन है। वो इसलिए क्योंकि पुणे ग्रामीण पुलिस मुख्य आरोपी चेतन चौधरी के साथ दोहागढ़ किले फिर पहुंच गई है। एक बार फिर से रिक्रिएशन की तैयारी है। पूरे घटनाक्रम को दोबारा रिक्रिएट किया जा रहा है। हाल ही में सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने रिक्रिएशन किया था और आज चेतन चौधरी को लेकर पहुंची है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस प्रक्रिया से वारदात से जुड़े अहम तथ्यों की पुष्टि की जाएगी। देखिए सीधे ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लोहागढ़ फोर्ट की। पुलिस पहुंची है चेतन को लेकर के। सिया का वो प्रेमी जिन दो लोगों ने मिलकर के केतन को मारा, हत्या की साजिश रची और अब रिक्रिएशन से दरअसल पुलिस को चार्जशीट में मदद मिलती है कि हत्या को इसको किस तरह से अंजाम दिया गया। उधर हरियाणा के अंबाला से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। करीब 21 घंटे लंबे चले चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम निर्भय सिंह को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बेहद दुखद खबर। मंगलवार सुबह करीब 6:30 बजे अंबाला के धनोरा गांव में 220 फीट गहरे खुदे बोरवेल में निर्भय गिर गया था। इसके बाद एनडीआरएफ, सेना, प्रशासन और तमाम एजेंसियों ने उसे बचाने के लिए दिन रात लगातार अभियान चलाया। रेस्क्यू के दौरान कई बार हुक, रस्सी, एल्यूमिनियम पाइप की मदद से उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई। बोरवेल में पानी भरने और बच्चे के नीचे खिसक जाने के अभियान से लगातार ये अभियान मुश्किल होता गया और करीब तड़के सुबह 3:40 पर बुधवार को निर्भय को बोरवेल से बाहर तो निकाला गया। एम्बुलेंस में अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 3 जुलाई से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है और इसी के साथ पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग के दर्शन को लेकर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब बॉर्डर तक व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी बढ़ाई गई है और हर वाहन की सघन जांच की जा रही है।
2: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
3: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं, लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और आइए अब सुपर 8 में देखते हैं फटाफट खबरें। करनाल में अपने मालिक को बचाने के लिए ब्लैक कोबरा से भिड़ी पालतू फीमेल डॉग, सांप के काटने के 8 मिनट बाद ही डॉग की जान चली गई। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर आपस में भिड़े लोग, देखते ही देखते हिंसक रूप में बदला मामूली विवाद। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में दिन दहाड़े व्यस्त मार्ग पर युवक की सरेआम हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात। सूरत में कार चालक ने 3 सेकंड में ली 5 साल के मासूम बच्ची की जान, CCTV में कार चालक की लापरवाही कैद हुई। कर्नाटक के दावणगेरे में जिला अस्पताल ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट हुआ, बाद में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ECL की ओपन कास्ट कोयला खदान से उठा धुएं का गुबार, खदान में ब्लास्ट की घटनाओं से इलाके में दहशत मच गई। वलसाड में नेशनल हाईवे पर धू धू कर जली एक कार, अचानक लगी आग से इलाके में अफरा तफरी मची, कोई जनहानि नहीं हुई। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकोजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
3: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
4: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
5: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
6: मतलब
5: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
5: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: देख इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
3: अच्छा सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
2: ओ अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह
4: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
5: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि,
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हर मोर्चे पर मुस्तैद है सुरक्षा बल। जमीन से लेकर आसमान तक, तलाशी से लेकर तकनीक आजमाने तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

आज से नायरा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। आज से पासपोर्ट फीस में बढ़ोतरी, आधार कार्ड में फ्री अपडेट। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किन से पीएम मोदी ने की बात। मिडिल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा स्थिरता पर भारत का जोर है। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा। राजस्थान के दौसा में ट्रक से टकराई बस। हादसे में 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।

सिक्किम में हो रही लगातार बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ। एक गाड़ी मलबे में फंस गई तो बोल्डर गिरने से सड़क बंद हो गई। पहली बारिश में डूबा दरभंगा नगर, नगर निगम का दफ्तर मुख्य सड़क पर पानी घुटनों तक भरा। लोगों ने दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल उठाए, कहा कागजों पर सिर्फ होता है काम। पिछले कई सालों से दरभंगा का बुरा हाल बना है। अरुणाचल प्रदेश के पामपारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान मचा, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। मंगलुरु में भारी बारिश के बीच कंपाउंड वॉल ढहने से भूस्खलन हुआ, घर मलबे में दबा, दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत, तीन को सुरक्षित निकाला गया। गुजरातों ने कई बार शॉपिंग मॉल वालों को शिकायत की थी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुंबई में बारिश के बीच डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास पेड़ गिर गया, रास्ता जाम हुआ, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सीहोर में झमाझम बारिश, मेन मार्केट में पानी भरा, सड़कों पर दो फीट तक जल जमाव। शहरों में भरे पानी में बच्चे खेलते दिखे, दुकानों और घरों में गंदा पानी घुसने लगा। गुजरात के नवसारी में मौसम की पहली बारिश से 20 से अधिक घरों में पानी घुसा, जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। सूरत में भी मानसूनी बारिश के बाद सड़कों पर गड्ढे के बीच दरारें बनी, 20 सड़क पर गड्ढे में फंस गई कार। सूरत में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हुए, जलभराव के बीच केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से लोगों में भी दहशत। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए कहा कि जनता को योजनाओं का सीधा फायदा पहुंचे। आज से 3 दिनों के असम के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। आज दिल्ली में डेंगू के मसले पर जेपी नड्डा की मीटिंग होगी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, एनडीएमसी, एनसीडी के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। एसआईआर और चुनाव आयोग पर विपक्ष भड़का हुआ है, 23 पार्टियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी भेजी है, दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने कहा है कि एसआईआर के तीसरे चरण में सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी कहा कि सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा, 13,000 से ज्यादा बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, मुर्शिदाबाद के 2 थानों से नोटिस जारी हुआ है, सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर एक्शन में है पुलिस। पश्चिम बंगाल 2023 रामनवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शकील अली को एनआईए ने गिरफ्तार किया है, इलाके में अब भारी तनाव है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची दिल्ली पहुंच रही है, आज शाम 7 बजे 3 दिवसीय दौरे पर वो भारत आ रही है। गुरुवार को पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत होगी, इंडिया जापान समिट में भी जापान की प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक और तंज भरी सलाह दी, कहा एसी और पीसी वाली राजनीति का जल्द त्याग करना बेहतर होगा। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे। तेलंगाना सरकार ने 9 दिन में किसानों के खातों में 9,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में आवास के नमूने की फॉरेंसिक जांच पर सुनवाई होगी। पवन कुमार के साथ निशांत कुमार भी एमएलसी पद की शपथ लेंगे, शाम 4 बजे विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज से नए टैक्स व्यवस्था लागू होगी, सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दी है। आज से कई वित्तीय नियम भी बदल जाएंगे, आधार में ईमेल अपडेट करना फ्री हो जाएगा लेकिन पासपोर्ट बनवाना आज से महंगा होगा। वहीं डीजल निर्यात शुल्क 14 रुपए से घटकर अब 8.5 रुपए प्रति लीटर होगा, तो ATF पर 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटकर दाम 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिए जाएंगे। दिल्ली में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के नए दाम भी जारी हो चुके हैं, UPI से PF का पैसा निकालने की सुविधा भी शुरू होने वाली है, पासपोर्ट बनवाने की फीस में आज से बढ़ोतरी की जाएगी। भारतीय रेलवे 1 जुलाई से नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती भी बढ़ाएगा, आधार कार्ड पर ईमेल अपडेट 31 दिसंबर तक मुफ्त है, कई बैंकों ने लाउंज एक्सेस और रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम भी बदल दिए हैं। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को हरियाणा TET की परीक्षा होगी, जिला कलेक्ट्रेट ने धारा 163 लागू करने के निर्देश दिए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर PDA केक काटा गया, सपा प्रदेश अध्यक्ष रामलाल पाल ने सरकार पर निशाना साधा।
कमाल अख्तर के इस्तीफे पर सांसद रुचि वीरा ने बयान देते हुए कहा कि मैंने अखिलेश यादव से इसकी शिकायत की थी, जो उन्होंने जो उचित समझा वही किया। बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में उनके भाई ने कहा कि न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाएंगे। भरत तिवारी मामले में आंदोलन तेज करने का ऐलान किया गया, 17 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन। एनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि घटना बेहद दुखद है, जांच कराई जा रही है। रोहतास में 13 शिक्षकों पर गाज गिरी, अमान्य डिग्री पर नौकरी करने का आरोप लगा। डीईओ ने 13 शिक्षकों को हटाने का निर्देश दिया, पिछले महीने 142 शिक्षकों को हटाया गया था। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, हरिद्वार से इंदौर जा रहे बस ट्रेलर से टकराई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत हुई, 22 यात्री घायल हुए, बस में करीब 40 यात्री सवार थे। मंडी पुलिस का पूर्व जवान अजय पिछले 5 सालों से लापता था, गुस्साए ग्रामीणों ने मंडी जिला प्रशासन को घेरा। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उड़ीसा के भद्रक में एक तरफा जुर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया, आरोपी ने 15 साल की स्कूली छात्रा पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। मोतिहारी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की आड़ में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुजफ्फरपुर में 7 महीने की गर्भवती की हत्या की गई। पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंचे आबकारी विभाग की टीम पर हम माफियाओं ने हम फायरिंग की। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या की गई। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई की गई। छत्रपति संभाजीनगर में एक पूर्व छात्र ने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर आपस में लोग भिड़ गए, हिंसक रूप ले लिया। गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद आग लग गई। ओडिशा के भुवनेश्वर मार्केट की बिल्डिंग में भयंकर आग लगी, 15 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। कर्नाटक के दावणगेरे में जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट। आसनसोल में ईसीएल की ओपन कास्ट कोयला खदान से धुएं का गुबार उठा। दिल्ली के कनॉट प्लेस में परिक्रमा रेस्टोरेंट में आग लगी, किचन से उठा था धुआं। मसूरी के मॉल रोड पर हरियाणा के पर्यटक ने दंपत्ति पर प्लास्टिक क्रेट से हमला किया। असम के गोलाघाट में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक आए हाथियों ने उत्पात मचाया। गाजियाबाद में कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद रोड रेज का मामला आया सामने। हरियाणा के अंबाला में 200 फीट गहरे बोरवेल में 4 साल का मासूम गिरा, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मुजफ्फरनगर में बेकाबू ट्रक ने महिला को कुचल दिया, गुस्साए लोगों ने चालक की पिटाई की। दिल्ली में सोने की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ, 21 करोड़ का सोना जब्त किया गया। नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस स्पेशिया सोसाइटी में 18वीं मंजिल से महिला ने कूदकर खुदकुशी की। बेंगलुरु में देवदूत बने कोस्ट गार्ड के जवानों ने समंदर में 6 नाविकों की जान बचाई। मुंबई के चेंबूर में स्कूल बस पर पेड़ गिरा, 1 बच्चे की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती। आज से इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज होगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 आई सीरीज जीतने पर होगी टीम इंडिया की नजरें। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए बड़ा फैसला लिया, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सलेंस को अपना ट्रेनिंग बेस बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी कर दिया है। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित की गई है, सितंबर से जापान में टूर्नामेंट होगा। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को टीम में जगह मिली, स्मृति मंधाना को कप्तान बनाया गया। खराब फॉर्म से जूझ रहे विकेटकीपर वस्तिका भाटिया को टीम से ड्रॉप किया गया। स्पिन ऑलराउंडर श्रेयंसा पाटिल को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह दी गई है। T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड के खिलाफ टकने में चोट के कारण बाहर थी। ICC रैंकिंग में टॉप टीमों में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद दी है। रूसी सेना ने जापोरिजिया में रिहायशी इमारत अमले बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन सेना ने दूसरी बार मॉस्को में रूस के सैटेलाइट सिस्टम पर हमला किया। हिजबुल्ला प्रमुख नईम कासिम ने अमेरिका में इसराइल लेबनान के बीच समझौते को मानने से इनकार किया। कतर के विदेश मंत्रालय ने का बड़ा बयान है कि अमेरिका ईरान मुद्दे पर बातचीत के लिए दोहा पहुंचेंगे दोनों देशों के नेता। गाजा पर इसराइल ने भीषण हमला किया है, बेतलाहिया पर इजरायली सेना ने बम गिराए। ब्रिटिश पीएम की स्टामर ने ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने की बात कही, बोला भविष्य के युद्धों की तैयारी के लिए 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त फंडिंग होगी। मोनाको में एक रिहायशी इमारत के बाहर हुए विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ी नाराजगी दिखी, लोगों का आरोप दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे अवैध प्रवासी।
हेग में फुटबॉल फैंस की हिंसा और हुड़दंग देखने को मिला। फीफा विश्व कप में मोरक्को की जीत के जश्न के दौरान हंगामा। यूरोपीय देशों में भारी गर्मी पड़ रही है, जर्मनी में भी बर्लिन समेत कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जुलाई 2026 दिन बुधवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः काल 7:38 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:51 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 1:30 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है

यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, गणेश जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कर्क राशि, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा,

कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। लिखा पढ़ी में सावधानी रखेंगे। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिक्षा में सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: फिर चुनावी धुरी का केंद्र राम मंदिर ही होगा, क्योंकि चंदा चोरी के आरोपों के बाद सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट और मंदिर से संबंधित कई जिम्मेदार पदों पर संघ के लोगों को जानबूझकर जगह दी गई और कांग्रेस मंदिर ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर रखने पर भी सवाल उठा रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी चंदा चोरी पर मचे बवाल के बीच दलबल के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। वहीं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जांच एजेंसियों को इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। उधर एफआईआर में नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने चंपत राय से कई घंटे पूछताछ की जिसमें कई अहम खुलासे हुए। सूत्रों की माने तो चंपत राय ने पुलिस से कहा कि चढ़ावा चोरी में मेरी कोई भूमिका नहीं, चढ़ावा चोरी की जानकारी मिलते ही मैं सक्रिय हो गया, संदिग्धों को पकड़ा, एफआईआर भी कराई। हाँ, मैं मानता हूँ कोई हेरफेर ना हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मेरी थी। टिन्नू यादव बहुत पहले से जुड़ा था, उसने गलत किया इसकी उम्मीद नहीं थी। पुलिस ने पूछा रिश्तेदार या जानने वालों को काम पर किस तरह रखा गया, इस पर चंपत राय का जवाब था जरूरतमंदों को काम दिया, इसमें केवल मैं ही नहीं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों की भी भूमिका रही। जांच में जुटी पुलिस ने 7 बैंकों से 5 साल का रिकॉर्ड मांगा है, ये रिकॉर्ड ट्रस्ट के खाते और आरोपियों के निजी खाते से जुड़े हैं। एसबीआई ने 3 महीने पहले ही कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की सिफारिश की थी लेकिन तब ट्रस्ट किसी भी बदलाव के लिए तैयार नहीं हुआ। ट्रस्ट ने कैश काउंटिंग स्टाफ को बदलने की इजाजत नहीं दी। एसबीआई की सिफारिश के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसी ने कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी थी लेकिन ट्रस्ट के अधिकारियों ने कर्मचारियों का बचाव किया और उन्हें नौकरी से निकाले जाने से बचा लिया। अयोध्या में एसबीआई की नया घाट ब्रांच भी पुलिस के रडार पर है। पुलिस ने सोमवार को बैंक अधिकारियों से 4 घंटे तक पूछताछ की। इस ब्रांच में 8 में से 7 आरोपियों और मंदिर ट्रस्ट के खाते भी हैं। अब ये किसी से छिपा नहीं कि जिन पर राम भक्तों की आस्था की रक्षा की जिम्मेदारी थी उन्हीं ने इससे खिलवाड़ किया, खुलेआम चढ़ावा और दान के पैसे की लूट होती रही। राम भक्तों के पैसे धड़ल्ले से चंदा चोरों की तिजोरियों में ठूंसे जाते रहे और ट्रस्ट आंखें बंद किए चुपचाप देखता रहा। इसीलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चढ़ावा चोरों को संरक्षण दिया गया, इसीलिए लंबे वक्त तक चंदा चोरी के मामले को दबाया गया। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यकारिणी की 6 जुलाई को होने वाली बैठक में उम्मीद है कि ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र को बुलाकर उनका पक्ष भी सुने। कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

फटे 5 किलो तक, छोटा सिलेंडर सस्ता। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से प्रधानमंत्री मोदी ने की बात। मिडिल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा स्थिरता पर भारत का जोर। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ावे में 50% गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में शिकंजा। राजस्थान के दौसा में ट्रक से टकराई बस। हादसे में 8 की मौत, 22 यात्री घायल। देर रात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ सड़क हादसा। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का आगाज। 3 जुलाई को कैंप से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से, विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर, पूछताछ में आरोपियों ने मानी चोरी की बात। पुणे के बहुचर्चित केतन मर्डर केस में आज फिर क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा, लोहगढ़ किला लाया गया चेतन चौधरी। इस बार सख्त सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा हो रही है, दिखाएंगे पूरा अपडेट ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत करें राजस्थान के दौसा में हुए एक भीषण हादसे की खबर के साथ, क्योंकि दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ जिसमें ट्रेलर से ट्रक की टक्कर हो गई। हरिद्वार से इंदौर जा रही बस में आग लग गई। इस हादसे में 8 यात्रियों की जान चली गई है जबकि 11 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा देर रात 2:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में करीब 40 यात्री सवार थे। आग की खबर मिलते ही पुलिस, दमकल कर्मी और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 40 यात्रियों में 8 की मौत बताई जा रही है। ट्रेलर से टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई जिसकी वजह से काफी यात्री झुलस गए, 11 जख्मी बताए जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब हादसा हुआ था, आप देख सकते हैं हादसा इतना भीषण कि दूर तक आग की लपटें देखी जा सकती हैं जो इस बस में लगी थी। दरअसल ये एक्सप्रेसवे हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है, इसमें कई बार इस तरह के हादसे इसलिए पेश आते हैं, ड्राइवर की लापरवाही इसमें सामने आती है और हो सकता है यही वजह रही हो इस हादसे की भी। और ऐसे में अब क्रेन के जरिए इस पूरे रास्ते को क्लियर किया जा रहा है ताकि पीछे से आने वाले वाहन बाधित ना हो। आप देख सकते हैं यही वो बस और ट्रेलर है जिनके बीच आपस में टक्कर हुई। कई बार इन ट्रेलर्स पर लाइट्स नहीं लगी होने की वजह से ये दिखाई नहीं देते हैं और अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं। पूरी की पूरी बस जलकर खाक हो चुकी है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीरें किसी ने मोबाइल में कैद की, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भीषण आग की लपटें, 11 लोग झुलस गए हैं, 8 लोगों की जान चली गई है। और ऐसे में बड़ा सवाल इन बसों की सुरक्षा को लेकर भी कि अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो क्या किसी तरीके से आग लगने से बचाया जा सकता है या फिर नहीं। शरद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, ये जो घायल हैं इनकी क्या हालत है, क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम बस की हालत देख रहे हैं पूरी बस तबाह हो चुकी है आग में।
1: बिल्कुल नहीं, बेहद दर्दनाक हादसा है ये। आप देखिए किस तरह से बस की हालत देखिए, किस तरह से ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। जो 8 लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल राख हो गई थी, कपड़ों में बटोर कर यहाँ से लेकर जाना पड़ा है। अभी जो 8 लोग मरे हैं इनके अलावा जो बाकी घायल हैं 22, उसमें एक दो लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, बाकी सब ठीक है। प्रशासन का कहना है ये बस का ड्राइवर जो है वो रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। और ये देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ पर रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। ये हरिद्वार से दर्शन करा के तीर्थ यात्रा करा के इंदौर लेके जा रहा था सभी यात्रियों को, और जैसे ही झपकी आई ये आगे ये ट्रोला चल रहा था, इसमें अभी भी धुआं उठ रहा है आप देखेंगे नेहा, इस ट्रोला को उसने टक्कर मारी और आगे से टक्कर मारी है। और आगे से टक्कर मारने के बाद अब ये देखिए कि यहां पर जो एसी का कंप्रेसर था उसमें ब्लास्ट हुआ है, उस पर उधर ब्लास्ट हुआ है और वहां से पूरा ये चला गया है। आप इस बस को देखिए और किस तरह से राख बन गए थे लोग। लेकिन बड़ा सवाल ये सुरक्षा को लेकर है, और नेहा दिखाना चाहूंगा सिगरेट के पैकेट हैं, जहां देखिए वहां सिगरेट के पैकेट हैं, जिस तरफ से देखिए यानी कि गलत तरीके से इलीगल तरीके से ज्वलन से आ रही थी। ये पीछे का दृश्य है, आप दिखाना चाहेंगे हम आपको, जो जहां ब्लास्ट हुआ है उस तक समान है। और ये सारा देखिए आप, ये देखिए सारे पूरे डिक्की में बस में सिगरेट भरे हुए थे, यानी अवैध तरीके से बस संचालक इसमें सिगरेट का परिवहन कर रहा था, ज्वलनशील पदार्थ का। और ये हादसा हुआ है इतना दर्दनाक, यहाँ पर 8 लोग
2: अंदर गैलरी में
1: उतर के लौट रहे थे। इस दृश्य को देखने के बाद दिल दहल जाता है। लोग कह रहे हैं कि अचानक से 2:30 बजे सब कुछ सामान्य चल रहा था और ये आग लग जाती है, और आग लगने के बाद एक घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात की जाती है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सब कुछ यहां पर एक्सप्रेसवे संचालन करने वाला शानदार काम करके रखता है, मगर यहां पर दौसा से पुलिस प्रशासन पहुंचता है और एक्सप्रेसवे पे कोई सुविधा नहीं होती है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह के हादसे अगर हो जाते हैं तो एक्सप्रेसवे पर कोई सुविधा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहाँ बचाव काम में जो पुलिसकर्मी रात से लगे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं।
0: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शरत, आप नजर बनाए रखिए। लेकिन दौसा में जिस बस में हादसा हो उसी बस के पीछे ऋषिकेश से 4 लोग एसयूवी से जा रहे थे, हादसे में उन्होंने क्या कुछ देखा आज तक संवाददाता शरद कुमार ने उनसे बातचीत की।
3: 2:30 से 3 बजे के लगभग ये घटना हुई। एक तेज धमाका की आवाज हमको सुन के हम यहाँ पर दौड़े तो क्या नाम से ट्रक बस वालों को झपकी आने से ट्रक के ठकोरा दिया, ठकोरा देने से ट्रक को धकेल के डिवाइडर के बीच में ले आया।
1: ये बस वाले ने ट्रक को टक्कर
3: मारी है और लगभग 5 मिनट में आग को काबू नहीं कर पाए। 5 मिनट में बस धधक हो गई।
1: 5 मिनट
3: में बस धधक निकाले तो सवारियों को लगभग 8 से 9 लोग लगभग जिंदा जल गए और
1: 8 की पुष्टि हुई है। हाँ, लेकिन ये किस तरह से पीछे से आ रही थी?
3: ये पीछे दिल्ली की तरफ से बस आ रही थी
1: और बस आगे चल रही थी,
3: पीछे चल रही थी, पीछे ट्रोला आगे चल रहा था,
1: ट्रोला
3: को टक्कर मारी बस ने।
0: हादसे में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज तक संवाददाता शरद कुमार ने बस के भीतर का जायजा लिया और जाना कितनी क्षति हुई।
1: बस के अंदर से बस की हालत क्या है आप देखिए, यहाँ पर ड्राइवर बैठता है और ड्राइवर के बैठने की जगह किस तरह से पूरी की पूरी बस पिघल गई है और इस तरह से जितने भी सीट हैं या जो भी फोम था वो सब पिघल गया है, बस लोहे लोहे बचे हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए ये सारे सिगरेट के आपके पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस मलबे में कि कहीं कोई कुछ बचा तो नहीं है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सर्च का काम चल रहा है और पूरी की पूरी बस जो है जल गई है। बताया जाता है ये एसी की जो जगह थी वहीं पर आग लगी है और उसके बाद ये आग नीचे की तरफ आई है और इतनी तेज आग थी कि महज 10 मिनट के अंदर कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी बस जो है वो खत्म हो गई है। क्या खोज रहे हैं आप?
4: कोई देख रहे हैं सर, कोई पार्ट्स वगैरह कुछ कोई रह गया हो।
1: अच्छा,
4: कोई और कोई
1: तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोई पार्ट्स रह गया हो उसका भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बस में कुछ भी नहीं बचा है और एसी में ब्लास्ट की खबर कही जा रही है। प्रथम दृष्टया जहां पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से इस तरह से आग लगी है। आग कितनी भयावह है इसका अंदाजा आपको इस बस को देखकर हो सकता है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, दौसा बांदी कोई आज तक।
0: वही दौसा के सांसद मुरारीलाल मीणा ने हादसे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
5: बड़ी दर्दनाक घटना अभी हुई है रात को करीब 3 बजे के आसपास, जिसमें एक्सीडेंट से बस में आग लग गई। अभी ये पता नहीं लग रहा है टोटल सवारी कितनी थी उसमें। अभी तो 8 तो डेड बॉडी मिली जो बिल्कुल जल गई और 11 आदमी यहाँ एडमिट है, एक आदमी जयपुर रेफर कर दिया। हो सकता है कि और भी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए। ये सब लोग हरिद्वार से आ रहे थे, इसमें लोग ज्यादातर मध्य प्रदेश के हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र के हैं और हमारा सारा प्रशासन जिला कलेक्टर SP सारे डॉक्टर सब लोग लगे हुए हैं, सारे हमारे जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं।
0: और अब बात उत्तर प्रदेश के उन्नाव की करेंगे जहां पर एक और हादसा हुआ है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई है, 5 घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में हरियाणा से बिहार जा रही स्लीपर बस कार में टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर खेत में गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। मृतकों में बच्चियां, 2 महिलाएं, कार चालक शामिल है। बस और कार के कई अन्य लोग घायल है, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक चालक की आंख लगने से यानी कि झपकी आने से यह हादसा हुआ। और अब बात अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। आज तक इस सूत्र के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी ये मिली है कि कल चढ़ावा चोरी के आरोपियों से जेल में पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात मान ली है। आरोपियों ने विस्तार से बताया कि कैसे चोरी को बेहद आराम से अंजाम दिया गया। आरोपियों के मुताबिक ट्रस्ट पदाधिकारियों के करीबी इसमें शामिल थे, इसलिए कोई चेकिंग ही नहीं होती थी। आरोपियों ने भी बताया कि चढ़ावा चोरी की रकम पहले बाथरूम में छिपाई जाती, फिर मौका मिलने पर उसे ठिकाने लगाया जाता था।

0: चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों ने कबूली चोरी, पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज, अनिल मिश्रा का नाम फिर आया सामने। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने कल जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 2 घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश से की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गणना संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सबसे अधिक बरामदगी अविनाश के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिली भगत से रकम पार की जाती थी। टिन्नू व बैंक कर्मी चोरी की रकम में हिस्सा लेते थे। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज किया था। शुक्रवार को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमा शंकर मिश्रा, करुणेश और अविनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक जेल में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था। उनको पता था कि कैमरे कहां कहां लगे हैं, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम देते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे, फिर रकम बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से कहीं पर उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम के इस्तेमाल पर आरोपियों ने जमीन और मकान में रकम खपाने की बात कबूली है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा खेल इतनी जल्दी खुल जाएगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, जाहिर तौर पर आरोपियों ने बताया है कि कैसे वो चोरी को अंजाम देते थे। बाथरूम में पैसे छिपाए जाते थे, उसके बाद वहां से उन्हें आगे ले जाया जाता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस चोरी में है कि ट्रस्ट के किन किन लोगों को पता था। क्या किसी नाम के बारे में उन्होंने जानकारी दी है कि उनकी सब जानबूझकर उनके नॉलेज में हो रहा था और फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया?
2: नेहा, देखिए इस पूरे मामले में कई परतें हैं और कुल मिलाकर पूछताछ की प्रक्रिया कल से शुरू हुई है कि कोर्ट के ऑर्डर का पुलिस वेट कर रही थी। कोर्ट की तरफ से हामी भरी गई तो पुलिस ने जेल पहुंचकर पूछताछ की है। खासकर अविनाश शुक्ला की जो पूछताछ जो हुई है उसमें काफी चीजें निकलकर सामने आई हैं। चोरी तो उन्होंने एक्सेप्ट की ही है, किस तरीके से उन्होंने अपना जो अमाउंट है उसको जहां जहां लगाया है उसको लेकर भी बातें बताई हैं। सूत्रों के मुताबिक अहम जानकारी ये भी मिली है कि अनिल मिश्रा का नाम एक बार फिर सामने आया है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं। चंपत राय जितनी पावर उनकी ट्रस्ट में कही जाती रही है। आपको याद होगा 2021 में जब लैंड को लेकर स्कैम हुआ था, उस वक्त भी अनिल मिश्रा के करीबियों की बात सामने आई थी। तब के पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भी नाम उसमें सामने आया था और एक बार फिर अब वो नाम दोबारा सामने आ रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ट्रस्ट में 100 से ज्यादा भर्तियां अपने करीबियों की अनिल मिश्रा ने कराई हैं, जबकि लवकुश मिश्रा और अन्य कुछ ऐसे हैं जो उनके रिश्तेदार भी सूत्रों के मुताबिक बताए जा रहे हैं। पुलिस फिलहाल मनी ट्रेल पर काम कर रही है। जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, पैसा कहां कहां इन आरोपियों ने लगाया है, उस पर पुलिस इस वक्त काम कर रही है। बड़ी बात कुल मिलाकर ये भी है, कई फोन कॉल्स जो आए हैं उनको लेकर भी इस वक्त चर्चा अयोध्या में गरमाई हुई है। पुलिस की अगर आप बात करें तो फिलहाल पुलिस रिमांड में लड़ने की अगली प्रक्रिया होने वाली है। SIT की जांच जो है वो प्रारंभिक तो पूर्ण हो चुकी है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होनी है उसको लेकर SIT अयोध्या में कभी भी आ सकती है, जिसके बाद जांच प्रक्रिया में और तेजी आएगी। इस बीच में SBI बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ की गई है, कुछ अन्य बैंक से भी पूछताछ की गई है। जो मनी ट्रेल अकाउंट्स हैं अक्यूज के, वो लगातार निकाले जा रहे हैं।
1: इस बीच राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले का खुलासा बैलेंस शीट से भी सामने आया। पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में चढ़ावे में भारी गिरावट दर्ज की गई।

0: राम मंदिर के चढ़ावे में गिरावट, क्या गिरावट के पीछे चढ़ावा चोरी? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया के राम भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया अयोध्या, लेकिन पहले साल धुआंधार दान बरसने के बाद राम मंदिर के चढ़ावे में अगले साल भारी गिरावट दर्ज हो गई। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक करीब 82,78,00,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ रुपए कम है। 2024-25 में 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ा था। अब सवाल ये है कि राम मंदिर के चढ़ावे में आई कमी की वजह क्या है? क्या ये वही रकम है जिसे चढ़ावा चोरों ने चोरी कर ली?
1: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर जांच एजेंसियों और पुलिस सक्रिय हो गई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट के चलते हुई, या फिर राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में भारी भीड़ और भक्तों के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी और कैश कलेक्शन सिस्टम की जांच कर रही है। साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का मिलान किया जा रहा है ताकि इस कमी या कथित गड़बड़ी के कारण का पता लगाया जा सके।
0: अब तक चोरी में शामिल आरोपियों की निशानदेही पर लाखों का कैश बरामद हो चुका है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। यही नहीं, बीते कुछ महीनों में आरोपियों की तरफ से खरीदी गई जमीन की डिटेल भी पुलिस जांच का हिस्सा है। जांच के दौरान पुलिस को लवकुश मिश्रा की एक कोठी का भी पता चला।
2: पहले मेरे पीछे आप इस मकान को देखिए, ये मकान है, ये अभी बन रहा है। लगभग 1,000 स्क्वायर फीट का ये मकान है। अभी इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन इसकी डिजाइन देख करके लग रहा है कि बहुत अच्छा मकान ये तैयार होने वाला था। अब इस मकान के बारे में बता दूं कि ये मकान है सुप्रिया मिश्रा, पत्नी लवकुश मिश्रा। जी हाँ, उसी लवकुश मिश्रा का ये मकान बताया जा रहा है जिसको अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। पहले थोड़ा मकान के अंदर का भी दिखाते हैं कि ये बाकायदा स्टेयर्स बन गई हैं और इसके बाद कमरे हैं। एक 2 मंजिला मकान ये बनाया गया है, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम हो गया है, कुछ काम बाकी है, ऊपर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इस पूरे मकान को सुप्रिया मिश्रा के नाम पर दर्ज है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके अनुसार 6 मार्च 2026 को इस जमीन की दाखिल खारिज हुई थी। इस प्लॉट को सरकारी दस्तावेजों में दाखिल खारिज किया गया था।
0: मतलब यही है कि आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे को लूटा और उसे खर्च किया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संतोष दुबे की मांग है कि जब तक चंपत राय की गिरफ्तारी नहीं होगी, चढ़ावा चोरी का पूरा सच दुनिया के सामने नहीं आएगा।
3: मैं राम के लिए लड़ा हूँ, मुझे राम जी का धन वापस चाहिए, राम जी का आभूषण वापस चाहिए, राम जी की प्रतिष्ठा वापस चाहिए, अयोध्या का सम्मान वापस चाहिए। मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा, 1 इंच नहीं हटूंगा। बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमारी आस्था लूट ली गई। गजनी गोरी ने जो छोड़ा था उसको ये ये ये संघ परिवार के लुटेरे चंपत राय ने लूट लिया। मैं, मेरी आवाज को आप दबा नहीं पाएंगे, हम खोलने पर उतरेंगे बहुत दूर तक आवाज जाएगी, बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अभी समय है कि गिरफ्तार करके जेल में डालो इन चोरों को। अनिल मिश्रा से रिश्ता न निभाओ, गोपाल राव से रिश्ता न निभाओ, चंपत राय चोर से रिश्ता न निभाओ। हमारा क्या करोगे आप? हम मरने के लिए तैयार हैं, हम बोलेंगे, हम सच कहेंगे और राज खोलेंगे।
0: आरोप संगीन है, जांच जारी है, उम्मीद है जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। सिमर चावला के साथ संतोष शर्मा, अयोध्या आज तक।
4: और अब बात पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर मामले की। इस पूरे हत्याकांड को लेकर आज चेतन चौधरी को लोगर किले पर क्राइम सीन के रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया है। ये रिक्रिएशन अहम माना जा रहा है क्योंकि 2 से 3 दिन पहले सिया का के साथ भी इसी तरह का क्राइम रिक्रिएशन किया गया था। तो इस पूरे मर्डर मामले में ये 2 आरोपी हैं जिनको अलग अलग दिन पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया जा रहा है। रिक्रिएशन के वक्त ये जानने की कोशिश पुलिस की रहेगी कि आखिरकार किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों इस वक्त पुलिस रिमांड पर हैं, दोनों से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन ये रिक्रिएशन बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें दूसरे आरोपी चेतन चौधरी को लेकर अब पुलिस पहुंची है लोहगढ़ किले पर। इस वक्त पुलिस की मौजूदगी,
5: चेतन को चेतन और सिया ने जो है लोहगढ़ पर धक्का दिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी लोहगढ़ से 300 से 350 मीटर तक नीचे जो है उसको धकेला गया था और एक दो से तीन दिन पहले जो है सिया का जो है रिक्रिएशन हुआ था और उसके बाद जो है उसको वडगांव सत्र न्यायालय में जो है हाजिर किया गया था और उसके बाद चेतन चौधरी का जो है रिक्रिएशन बाकी था, इसके लिए जो है पुलिस कस्टडी जो है मांगी गई थी। और अभी हम देख सकते कि ये जो लोहगढ़ किला है यहाँ से उसको लेके गए, आज सुबह से यहाँ पर पुलिस तैनात थी, कम से कम 25 से 30 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे तैनात है और ये जो रिक्रिएशन है जो अहम माना जा रहा है और इसके बाद ही जो है अगली जांच होने वाली है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ श्रीकृष्ण पांचाल, लोनावड़ा, लोहगढ़।
4: और इस बीच इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस को दर्ज कराई शिकायत में केतन के पिता ने कहा कि उनके बेटे केतन को सिया पर पहले से शक था। केतन ने कई बार सिया के अफेयर पर शक जताया और पूछा कि सिया का बैकग्राउंड चेक हुआ है या फिर नहीं। सिया का फोन बार बार बिजी रहने पर भी केतन ने शिकायत की, लेकिन केतन के पिता ने यह कहकर केतन की शिकायत अनदेखी कर दी कि सिया की उम्र कम है इसीलिए उसका ऐसा बर्ताव है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, अब इस पूरे मामले में दो अहम किरदार हैं, एक सिया है और एक चेतन चौधरी है। रिक्रिएशन के बाद किस हद तक पुलिस को स्थिति स्पष्ट नजर आएगी, क्योंकि दोनों को अलग अलग दिन अलग अलग बार ले जाया गया है।
6: जी बिल्कुल, दरअसल अगर आप देखें दोनों का स्टेटमेंट काफी अलग अलग है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ये तोहमत लगा रहे हैं कि आमने वाले ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, सिया को एक बार ले जाया गया था ताकि उसका जो वर्जन है किस तरह से क्या हुआ था वो रिक्रिएट कर सकें और उसको समझ सकें। और देखिए, चेतन जो है उसके एक अहम एविडेंस ये था कि याद है अगर आपको तो एक सीसीटीवी कैमरे में वो कैद हुआ था, वो भी टिकट काउंटर के पास। तो वहाँ पर उसको मूवमेंट किस तरह से था, ये वही शख्स है सीसीटीवी में, ये बताने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही किस तरह से चेतन के अनुसार किस तरह से क्या हुआ था, ये सब बातें रिक्रिएशन के दौरान समझने की कोशिश की जाएगी। स्टेटमेंट दोनों का रिकॉर्डेड है, लेकिन क्या हुआ था इस पर पुख्ता करने के लिए ये रिक्रिएशन बहुत एक अहम होता पार्ट होता है इन्वेस्टिगेशन का।
4: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात अमरनाथ यात्रा की, 3 जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है और इस बार सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा इंतजामों पर देखिए जितेंद्र सिंह की ये रिपोर्ट।
7: अमरनाथ की यात्रा को लेकर के बड़े स्तर पर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूएटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने बड़े स्तर पर यहाँ पर वैली क्यूएटी के कमांडोज को तैनात किया है। जी हाँ, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए 670 से ज्यादा कंपनियां सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनात की गई है। ऊंचाई जो जंगल वाले इलाके हैं उन जंगली इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है जो ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद रहेंगी स्नाइपर्स के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वैली क्यूएटी के कमांडोज यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। अमरनाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से हो रही है और इसकी तैयारियां भी चारों तरफ अलग अलग तरीके से किया गया है। बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों, जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से, आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं, और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहां पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहां पर स्थिति पैदा होती है, उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहां पर मौजूद रहते हैं। डल लेक से कैमरामैन संजय कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
4: अरे बात वैभव सूर्यवंशी की, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, सबकी निगाहें वैभव पर हैं कि आज उन्हें खेलने का मौका मिलेगा या नहीं।
8: क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज होगा वैभव सूर्यवंशी का पदार्पण? इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट में आज रात 10 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज हो रहा है, लेकिन टीम की जगह चर्चा में है सिर्फ एक खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल और श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक प्रदर्शन के बावजूद वैभव को मौका ना दिए जाने पर क्रिकेट पंडितों से लेकर उनके फैंस तक में जबरदस्त चर्चा है। वैभव के फैंस कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठा रहे हैं।
9: हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है, और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
10: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
11: लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं।
8: आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी वैभव को अंतिम एकादश में रखने का समर्थन कर चुके हैं।
12: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप कर दिया, नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। ये जरूरी नहीं कि वैभव सूर्यवंशी होता तो मैच जिता देता, क्या पता कि शायद वो भी 8-10-15 रन करके आउट हो जाता। पर अगर आपको युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना था तो ये दो मैचेस आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका था ट्राई करने के लिए आउट ऑफ।
4: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सस्ता, देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183 रुपए घटी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर सस्ता। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां से प्रधानमंत्री ने की बात, मिडल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मस की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा, पीएम मोदी ने कहा स्थिरता पर भारत का जोर। एक साल में राम मंदिर चढ़ावे में 50% गिरावट पर एसआईटी की नजर, पूछताछ पर चोरी का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की होगी जांच। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 की मौत, 22 लोग झुलसे, यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट, 5 की मौत। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ यात्रा का शुभारंभ, 3 जुलाई को कैंप से रवाना होंगे भक्त, जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा। साढ़े 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, हरिद्वार से इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, नियंत्रित होकर आग की चपेट में आई, हादसे में 8 यात्रियों की मौत, 22 घायल, बस में करीब 40 यात्री सवार थे। उन्नाव से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 5 घायल, मृतकों में 2 बच्चियां, 2 महिलाएं और कार चालक शामिल। उन्नाव हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को घायलों का पूरा उपचार करवाने के लिए दिए निर्देश। भटिंडा के डब्बाली रोड पर भीषण सड़क हादसा, घोड़ा ट्रॉला और मेटाडोर की टक्कर में 3 की मौत। सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन कई जगह पर, एक गाड़ी मलबे में फंस गई, बोल्डर गिरने से सड़क बंद, पहली बारिश में डूबा दरभंगा नगर निगम का दफ्तर, मुख्य सड़क पर भरा घुटनों तक पानी। लोगों ने दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा कागजों पर सिर्फ होता है काम, पिछले कई वर्षों से दरभंगा का बना दिया है बुरा हाल। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, नुकसान का लिया जायजा। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन। मैंगलुरु में भारी बारिश के बीच कंपाउंड वॉल ढहने से भूस्खलन, घर मलबे में दबा, 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 3 को निकाला गया सुरक्षित। गुजरात के भरूच में तेज बारिश के बीच निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरी, पिता और बेटे की मौत। स्थानीय लोगों का आरोप, कच्चे मकान में रह रहे लोगों ने कई बार शॉपिंग मॉल वालों से की शिकायत। मुंबई में बारिश के बीच डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता जाम, लोगों की बड़ी मुसीबत। मध्यप्रदेश की सत्ता में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों का रेस्क्यू। सीहोर में झमाझम बारिश, मेन मार्केट में भरा पानी, सड़कों पर 2 फीट तक भर गया पानी। शहर में पानी भरने से लोग परेशान, दुकानों और घर में घुस रहा है गंदा पानी। नवसारी, मौसम की पहली बारिश, 20 से अधिक घरों में घुसा पानी, जलभराव से थमी ट्रैफिक की रफ्तार। सूरत में मॉनसून बारिश के बाद सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और दरारें, बीच सड़क गड्ढे में फंसी कार। सूरत में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न, जलभराव के बीच केमिकल युक्त पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच में काउंटिंग व्यवस्था बदली गई थी, अब सीसीटीवी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया, 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सुरक्षा सख्त, काउंटिंग कक्ष में मल्टी लेवल तलाशी और ड्रेस कोड लागू, 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा, एक साल में चढ़ावे में 50% गिरावट पर एसआईटी की नजर। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जांच तेज, जेल में बंद 8 आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल, रिश्तेदारों की वित्तीय लेन देन की भी जांच होगी। महंगी जमीन खरीद मामले में शिकंजा, मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रुपए से अधिक की जमीन की मिली जानकारी। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी, पीडब्ल्यू द्वारा खरीदी गई 5 मस्जिदों को संबंधित लोग हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की, 6 मस्जिदें परियोजना की जद में, 52 भवनों पर तोड़फोड़ जारी। गाजियाबाद में पेट्रोल डीजल पर लगी पाबंदी हटी, अब बिना सीमा मिलेगा ईंधन, आज से वाहनों और उद्योग के अनलिमिटेड फ्यूल सप्लाई की मंजूरी। अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक और तंज भरी सलाह दी, एसी और पीसी वाली राजनीति को जल्द त्याग करना होगा। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे, जेडीयू नेता निशांत कुमार भी एमएलसी पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, बोले सीधे जनता तक पहुंचे योजनाओं का असर। आज से 3 दिवसीय असम दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले सरकार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। अयप्पा स्वामी मंदिर पर हुए हमले का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। आज दिल्ली में डेंगू पर जेपी नड्डा की मीटिंग, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, एनडीएमसी, एमसीडी के अधिकारी रहेंगे मौजूद। एसआर और चुनाव आयोग पर भड़का विपक्ष, 23 पार्टियों ने सीजीआई को भेजा पत्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआर प्रक्रिया शुरू। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के एसआर के तीसरे चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई से चलेगा और 5 अगस्त को जारी की जाएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले सभी मतदाताओं के फॉर्म भरना अनिवार्य, 13,000 से ज्यादा बीएलओ की लगाई गई ड्यूटी। भड़काऊ बयान मामले में मायू कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार, मुर्शिदाबाद के 2 थानों को नोटिस जारी। पश्चिम बंगाल 2023 रामनवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शकील अली को एनआईए ने किया गिरफ्तार, इलाके में भारी तनाव। राहुल गांधी खिलाफ मानहानि मामला, आज स्पेशल रिविजनल कोर्ट में आवास के नमूने की फोरेंसिक जांच होगी। आज पवन सिंह निशांत कुमार लेंगे एमएलसी की शपथ, शाम 4 बजे से विधान परिषद में शपथ ग्रहण समारोह। आज से नए टैक्स लागू, सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 4 रुपए लीटर कर दी है। आज से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम, आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा। डीजल निर्यात शुल्क 14 रुपए से घटकर 8.5 रुपए प्रति लीटर, एटीएफ पर 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच टायर एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए लीटर सस्ता किया। 2 साल से अधिक समय बाद निजी कंपनी ने घटाया खुदरा ईंधन के दाम, सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में नहीं किया कोई बदलाव। आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली में प्रति सिलेंडर अब 183 रुपए सस्ता होकर 2,930 रुपए में मिलेगा। आज जुलाई के पहले दिन देश भर में कई बदलाव लागू, पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे आधार, बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं आज से बहाल होंगी, आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू होगा। तेलंगाना सरकार कल 9 दिन से किसानों के खातों में ट्रांसफर होंगे 9,000 करोड़ रुपए। जापान की पीएम सनाई ताकाइची दिल्ली पहुंच रही हैं, आज शाम 7 बजे 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत होगी। इंडिया जापान समिट में जापान की पीएम हिस्सा लेंगी। अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के अनोखे अंदाज विधि शुभकामनाएं, 53 पुशअप्स लगाकर अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। भरत तिवारी के भाई बोले न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाएंगे। भरत तिवारी मामले में आंदोलन तेज करने का ऐलान, 17 जुलाई को जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। बिहार में चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा घटना बेहद दुखद है, जांच कराई जा रही है। रोहतास क्षेत्र के 13 शिक्षकों पर गिरी गाज, अमान्य डिग्री पर नौकरी करने का लगा आरोप, पिछले महीने भी 142 शिक्षकों को हटाया गया था नौकरी से। श्रीगंगानगर दुष्कर्म मामले में बुलडोजर की कार्रवाई, होटल में नाबालिग से कथित दुष्कर्म हुआ, उसे प्रशासन ने ढाया, अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। मंडी पुलिस का पूर्व जवान अजय पिछले 5 साल से लापता, गुस्साए ग्रामीणों ने घेरा मंडी जिला प्रशासन, शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार, 52,000 रुपए के नकली नोट बरामद। उड़ीसा के भद्रक में एक तरफा जुनून का सनसनीखेज मामला, 15 साल की स्कूली छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने और जहर पिलाने की कोशिश की गई। मोतिहारी पुलिस ने महिला और बच्चों की आड़ में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया। मुजफ्फरपुर में 7 महीने की गर्भवती की हत्या, बर्न ईट भट्टे से मिला शव, दहेज उत्पीड़न का मामला। पटना में वैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर माफियाओं ने की फायरिंग, बाल बाल बचे जवान। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर किया हंगामा। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर में कूट छात्र शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, तीसरी को लेकर चल रहे विवाद के चलते छात्र पर हमला। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर आपस से भिड़े लोग, देखते देखते हिंसक रूप में बदल गया विवाद। आज इंग्लैंड खिलाफ T20 सीरीज का होगा आगाज, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 T20 मैचेस। श्रेयस अय्यर की कप्तानी, पहली T20 आई सीरीज जीतने पर होगी नजर, तिलक वर्मा है टीम के उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें, आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में हिस्सा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया ट्रेनिंग बेस। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या बढ़ाई। एशियन गेम्स के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम घोषित, सितंबर से जापान में आयोजित होगा टूर्नामेंट। एशियन गेम्स के लिए हरमनप्रीत को मिली टीम में कमान, स्मृति मंधाना को बनाया गया उपकप्तान। खराब फॉर्म से जूझ रही विकेटकीपर यास्तिका भाटिया को टीम ने किया ड्रॉप, उनकी जगह 17 साल की युवा विकेटकीपर कमलिनी को दिया गया है मौका। स्पिन ऑलराउंडर श्रियंका पाठक को फिटनेस क्लियरेंस मिलने के बाद टीम में जगह। आईसीसी रैंकिंग में टॉप टीम्स में शामिल होने के कारण भारतीय महिला टीम को सीधे क्वार्टर फाइनल या नॉकआउट स्टेज में एंट्री मिलने की उम्मीद। रूसी सेना का यूक्रेनी इलाकों पर बड़ा हमला, यूक्रेन का आरोप, सूमी और ज़ापोरिज़्या में रिहायशी इमारतों बुनियादी ढांचों को बनाया गया निशाना। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा यूक्रेनी सेना ने दूसरी बार मॉस्को क्षेत्र में रूस के सैटेलाइट संयंत्र के संचार केंद्रों पर किया हमला। बीते कुछ महीनों के अंदर मॉस्को पर बढ़े हैं यूक्रेन के हमले। हिज़्बुल्लाह प्रमुख नईम कासिम का बड़ा बयान, कहा हिज़्बुल्लाह नहीं मानता अमेरिका में हुआ इसराइल लेबनान समझौता। कतर के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, अमेरिका ईरान मुद्दे पर बातचीत के लिए दोहा पहुंचेंगे अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर। गाजा पर इसराइल का भीषण हमला, बित लाहिया पर इजरायली सेना ने गिराए बम, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। 8 महीने पहले हुए दुर्घटना के बाद अब तक 1,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रिटिश पीएम के सोमर ने ब्रिटेन के रक्षा क्षेत्र पर बड़ा खर्च करने की बात बोली, कहा भविष्य के युद्ध की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार देगी 15 अरब पाउंड की अतिरिक्त फंडिंग। मोनाको में एक रिहायशी इमारत के बाहर हुए विस्फोट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद संदिग्ध हमलावर सीमा पार कर फ्रांस भाग गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अवैध प्रवासियों के खिलाफ दिखी बड़ी नाराजगी, लोगों का आरोप दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं अवैध प्रवासी। नेदरलैंड के द हेग में फुटबॉल फैंस की हिंसा और दंग, फीफा विश्व कप मैच में मोरक्को की जीत में जश्न के दौरान हंगामा। यूरोपीय देश जर्मनी में पड़ रही भीषण गर्मी, राजधानी बर्लिन समेत इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब। अरे बात एक ऐसी खबर की जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे, कुछ को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ सोचेंगे कि क्या इस हद तक लोग जा सकते हैं। आपने सुना होगा ठेका पुल बनाने का, सड़क बनाने का, लेकिन राजस्थान में नकल कराने का ठेका उठा। 45 छात्रों को पैरामेडिकल परीक्षा पास करानी थी, जयपुर के कॉलेज में सब कुछ सेट कर दिया गया था, लेकिन एक टेंट ने नकल का खेल उजागर कर दिया।
1: जगह जयपुर कॉलेज प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज, मौका पैरामेडिकल परीक्षा का। अचानक यहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, नाराज छात्र कुर्सियां उठाकर फेंकने लगते हैं, जानते हैं क्यों? जयपुर के इस परीक्षा केंद्र पर नकल करवा के पैरामेडिकल के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ। लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहां परीक्षा पास करवानी थी, लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुलकर सामने आ गई। कैसे, इसलिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। यहां कॉलेज में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे सैकड़ों छात्र देखिए नीचे जमीन पर लगे टेंट पर ऊपर से कुर्सियां फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि इसी टेंट के नीचे झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के एस करंट कॉलेज के 45 फर्स्ट ईयर छात्रों को पैरामेडिकल एग्जाम में सामूहिक नकल करा के पास कराना था, जिनकी बैक आई हुई थी।
2: जयपुर का प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज पहले से ही पेपर लीक को लेकर विवादों में रहा है। वहां पर टेंट के नीचे 45 छात्रों को भीषण गर्मी में बैठाया गया था, क्योंकि कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में सामूहिक नकल कैद ना हो सके। सभी वहां पर जो टीचर कॉलेज में मौजूद थे वो सामूहिक नकल कराने में लगे हुए थे। इस बीच वहां पर परीक्षा दे रहे 3,000 छात्रों का पासवर्ड देने वाला कोई नहीं था, ऑनलाइन परीक्षा थी और प्रश्न पत्र डाउनलोड करना था। 1 घंटा बीत जाने के बाद छात्रों ने हंगामा किया, पुलिस बुलाई और उसके बाद पथराव किया, तब जाकर ये पूरा मामला खुल सका।
1: पुलिस आती उससे पहले जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देना चाहते थे उनको भनक लग गई थी कि जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में 5.5 लाख रुपए लेकर दूसरे कॉलेज के 45 लोगों को टेंट के नीचे अलग बैठा कर नकल कराई जानी है। पूरा कॉलेज ससम्मान इन बच्चों को नकल कराने में जुट गया, बाकी बच्चों की परीक्षा तक लेट करा दी, इसके बाद हंगामा हुआ।
3: थोड़ी बातचीत कर देगी ये मुझको, कभी भी नहीं करेगी, सच्चाई के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ, खड़ा होता हूँ। एजुकेशन और करूंगा, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम पर इन्होंने जो ये माहौल बनाया है इतने खराब, यहाँ पर कोई नहीं है, एक बात यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं है, स्टूडेंट कोई कॉलेज का अध्यापक नहीं है।
1: पुलिस आई तो पता चला हाई प्रोफाइल नकल गैंग है जिसे मामा भांजे और चाचा भतीजे चलाते हैं। चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरे खेल में दो कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल हैं।
4: कुल पूरे मामले में अभी तक छात्रों से करीब 3 लाख कुछ रुपए इनके पास आना प्राप्त हुआ है और जिन छात्रों के नाम आए उनके बारे में भी अनुसंधान चल रहा है। इस पूरे परीक्षा में, क्योंकि आज परीक्षा आज कल और परसों ये परीक्षा चलेगी, तो संबंधित विभाग को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया था और उनके द्वारा भी जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स बनाने की बात सामने आई है। तो इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इसमें प्रकरण दर्ज करके आगे की कार्रवाई चल रही है।
1: जिस कॉलेज के बच्चों को नकल करानी थी उस कॉलेज के एचओडी कृष्ण कुमार अपने सगे भांजे संग साजिश रच रहे थे और जिस कॉलेज में नकल होनी थी वहां के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल अपने भतीजे संग खेल खेल रहे थे। चारों की गिरफ्तारी करके पुलिस पता कर रही है कितना बड़ा ये नकल का रैकेट है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: वक्त इशू से ब्रेक का उस लाभ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: दे ट्रैक, दे टारगेट That hotel, those shoes, your searches, your clicks, every time you come back. Prices can change when websites know you want something. Look again and all of a sudden it costs more. And they saw you coming. Startpage, the private search engine, helps keep what you look up online from becoming a price tag. Nothing saved, nothing to use against you. What you search for is your business. Try Startpage, the private search engine, at startpage.com. That's startpage.com.
8: Back to the songs that never left. Jukebox Oldies is your favorite jukebox for 70s and 80s favorites that still feel young. From Madonna to George Michael to Hall & Oates and Eurythmics, the hits live on. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Jukebox Oldies to start listening now.
9: In association.
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी

0: Ever look something up online and then see ads for it everywhere? That's not a coincidence. Startpage is the private search engine that finds what you need without anyone finding out you asked. Try startpage.com. That's startpage.com.
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: आगे आगे करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये देखो एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
3: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से? तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
4: वाह वाह वाह वाह।
3: सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
5: समझकर इन्वेस्ट कर।
6: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
8: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
9: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: इन एसोसिएशन विद
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
15: हमने तब भी सवाल किया था।
16: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
15: हम आज भी सवाल करते हैं।
16: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
15: ऑपरेशन अग्नि,
16: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
15: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: Flowers fade, cards get tossed, but a personalized song, that lasts forever. Surprise someone you love with a custom song made just for them with Joybox. Visit joybox.com to get started on your personalized song today. Don't just say I love you, sing it with Joybox.
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
7: परिवार के मूल धर्म हिंदू धर्म में आकर आपके वे पापा के प्यार की छाव में रहना चाहता हूँ, तो आप मुझे माफ करना।
8: एक चेहरे दो पहचान, सही सुना सही देखा सही पहचाना इस युवक को। नाम है आयुष मलिक। यूपी के शामली के रहने वाले मलिक परिवार का इकलौता बेटा आयुष। करीब 20 दिन पहले आपने आज तक पर मोहम्मद अली बने आयुष को देखा था। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि कैसे आयुष मलिक का धर्मांतरण कराया गया, उसे मोहम्मद अली बना दिया गया। इस बात का भी खुलासा हुआ था कि कैसे धर्मांतरण के बाद उसका निकाह रचा दिया गया। लेकिन अब वो मोहम्मद अली से दोबारा आयुष मलिक बन चुका है। इस बार बकरीद पर मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने वाले अली अब फिर से आयुष मलिक ने घर वापसी कर ली है और अब वो पूजा पाठ में मगन है। ब्रेन वॉश और धर्मांतरण के बाद आयुष पूरी तरह बदल गया था, या यूं कहें कि बदलने पर मजबूर कर दिया गया था। लेकिन वो ज्यादा देर तक मजहबी बहकावे में नहीं रह सका। उसके घर वापसी के बाद की ये तस्वीरें देखिए। अब वो अपने घर में अपनों के साथ पूजा पाठ में लीन है। वो मंत्रोच्चार कर रहा है और अपने पुराने दिनों को भुलाने में जुटा है। धर्मांतरण को ठोकर मारते हुए आयुष ने दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया है। वो पूरी तरह से अपने घर लौट चुका है। परिवार वाले उसका स्वागत कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उसका मुंह मीठा कर रहे हैं। शामली के रहने वाले देवराज मलिक अपने बेटे आयुष के धर्मांतरण के बाद से परेशान थे। उन्होंने कई बार अपने बेटे के मजहब को बदलने का विरोध किया था, लेकिन शामली के रहने वाले मुस्लिम परिवार की साजिशों के चंगुल में फंसकर वो खुद को बदल चुका था। आयुष मोहम्मद अली बन चुका था। शहर में उसका मेडिसिन स्टोर है। मलिक परिवार की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। तमाम संपत्ति का इकलौता वारिस है आयुष मलिक। उसी संपत्ति को हड़पने की साजिश थी। चांदनी कुरैशी नाम की लड़की ने संपत्ति हड़पने के लिए ही आयुष को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। आयुष के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की थी। आरोप लगाया था कि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर शामली की चांदनी और उसके परिवार की नजर है। धर्मांतरण के बाद कई बार आयुष को समझाने की कोशिश की गई थी। परिजनों के साथ साथ पुलिस ने भी पहल की थी, लेकिन आयुष दलील देता रहा कि उस पर किसी का दबाव नहीं था। लेकिन कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। आयुष मलिक के लौट आने के बाद से पिता देवराज मलिक भावुक है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। उनका बेटा अब उनके साथ है। आयुष के धर्मांतरण के खिलाफ उसके परिवार ने FIR दर्ज कराई थी। उस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार किया था। बाद में एक और गिरफ्तारी हुई और अब तक धर्मांतरण की साजिश को लेकर जांच जारी है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

नायरा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्किया से प्रधानमंत्री मोदी ने की बातचीत। मिडल ईस्ट में शांति से लेकर हॉर्मुज की आजादी तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा, स्थिरता पर भारत का जोर। एक साल में राम मंदिर चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर। पूछताछ में चोरी का कबूलनामा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की होगी जांच। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा। ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग। 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट, 5 की मौत। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। इस खास पेशकश को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि क्या क्या स्पेशल है। आगे बात होगी मोदी कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट की, बताएंगे कि दिल्ली के पावर कॉरिडोर में क्या चल रहा है, क्या बड़ा होने वाला है। मोदी 3.0 के 2 साल हो गए हैं, जैसा कि रस्म रहा है अब बदलाव की घड़ी आ गई है। हम बताएंगे कि कौन अंदर हो सकता है और कौन बाहर। साथ ही रुक करेंगे अयोध्या का, जहां राम मंदिर दान चोरी में जांच का दायरा बही खाते तक पहुंच गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सवालों की बौछार के बाद बैंक खातों की हो रही है पड़ताल। और आधे घंटे बाद देखिए अमरनाथ यात्रा पर हमारा स्पेशल शो ऑपरेशन शिवा ठीक 10:30 बजे। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। आरोपियों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात कबूल ली है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस ने जेल के अंदर आरोपियों से पूछताछ की है। आरोपियों ने चोरी की बात मान ली है। सवाल जवाब में एक बार फिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम सामने आया और चंपत राय के साथ इस्तीफा देने वालों में अनिल मिश्रा भी शामिल थे। तो सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश शुक्ला से की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया। आरोपियों ने बताया कि दान राशि की गणना संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सबसे अधिक बरामदगी अविनाश शुक्ला के पास से हुई, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। चढ़ावा चोरी पर एक और बड़ी खबर यह भी है कि SIT फिर से जल्द अयोध्या का रुख कर सकती है। और आइए अब देखिए कि राम मंदिर में लूट के कबूलनामे पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो बताती है कि चोर कैसे CCTV को धोखा देते रहे, कैसे चढ़ावे के नाम पर अपनी चोरी को छुपाते रहे।
1: चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों ने कबूली चोरी। पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज। अनिल मिश्रा का नाम फिर आया सामने। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने कल जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 2 घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश से की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गणना संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सबसे अधिक बरामदगी अविनाश के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिली भगत से रकम पार की जाती थी। टिन्नू व बैंक कर्मी चोरी की रकम में हिस्सा लेते थे। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज किया था। शुक्रवार को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमा शंकर मिश्रा, करुणेश और अविनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक जेल में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था। उनको पता था कि कैमरे कहां कहां लगे हैं, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम देते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे, फिर रकम बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से कहीं पर उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम के इस्तेमाल पर आरोपियों ने जमीन और मकान में रकम खपाने की बात कबूली है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा खेल इतनी जल्दी खुल जाएगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: और इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। अविनाश शुक्ला योग केंद्र और राम मंदिर ट्रस्ट का रहस्यमय बक्सा, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। चोरी में नाम आते ही एक योग केंद्र से भगाए गए थे अविनाश और अभिषेक। झोला भरकर मिली थी राम मंदिर के चढ़ावे की रकम इस बक्से में से। आपको बता दें कि जो खबर आ रही है ये राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले से ही जुड़ी हुई है। अविनाश, जिसका नाम लगातार सामने आया और उससे सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ भी की गई थी, उसी के बारे में पता चल रहा है कि योग केंद्र और राम मंदिर ट्रस्ट का एक रहस्यमयी बक्सा है। और अब पता चल रहा है कि चोरी का नाम आते ही योग केंद्र से भगाए गए थे अविनाश और अभिषेक। तो ये आरोपी जिनका नाम राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सामने आया था, और चलिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव का, जो उसी योग केंद्र के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या है ये मामला, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दीजिए।
2: देखिए, इस वक्त अयोध्या पुलिस की लगातार धरपकड़ जारी है और इस बीच में हम पहुंचे हैं योग केंद्र, जहां पर अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था। अभिषेक तो 10 साल से था, लेकिन अविनाश शुक्ला 1.5 साल पहले आया और उसके बाद सब कुछ बिखर सा गया। कैसे, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पुलिस टीम्स भी कल 2-3 दिन पहले पहुंची हैं, और यहाँ पर आप अगर कागजों को देखेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को भी तलाशा गया है। यहाँ आपको SBI की कुछ बुकलेट्स भी दिखाई पड़ेंगी, यानी कि जो बैंक अकाउंट्स डिटेल्स हैं उनको खंगाला यहाँ पर गया है। ये सबूत है उस चीज का कि जब पुलिस टीम्स आई हैं तो चाहे IDs हो चाहे बैंक डिटेल्स हो। अब आप ये देखें, इस तरह की जो IDs, सरयू आरती, ये आपको अन्निधि पदाधिकारी यानी कि अभिषेक जो इसका अविनाश शुक्ला का भाई है, उसकी IDs वगैरह यहाँ पर है। सबसे बड़ी बात जिस पर नजर सबकी है, वो एक रहस्यमय बक्सा है। वो रहस्यमय बक्सा आपको तस्वीरें दिखाएंगे उस बक्से की, और वो ये है। अगर आप इस बक्से को देखें तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है राम राज्य कोष, और एक पेटीएम का QR यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर श्री रामचंद्र की तस्वीर बनी हुई है और राम राज्य प्रशासन www यानी कि जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पर दी गई है। अब अगर इस बक्से को आप देखें ध्यान से तो इसमें आपको एक छोटा सा ताला लगा दिखाई पड़ेगा, ये एक ताला है, और ये बक्सा फिलहाल बंद है, यानी कि ये बक्सा अभी नहीं खुल सकता है। तो कहानी कुल मिलाकर ये है कि आखिर इस बक्से का राज क्या है, क्या जो बरामदगी नगद की यहां से पुलिस टीम्स ने की है, क्या वो इसी बक्से में थी या कहीं और थी। और बड़ी बात यह है, अगर ये किसी प्रशासनिक तौर पर ट्रस्ट या मंदिर के यूज होता भी था तो क्या ये सही स्थान है योग केंद्र इसको यहां रखने का। मैं अगर इसको थोड़ा सा उठाऊंगा तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है खाली है, लेकिन क्या ये पहले था। आइए QR की ओर एक बार देखते हैं, और मैं अपने मोबाइल फोन को अपने हाथ में लेता हूं और मैं भी अपनी UPI आप खोलता हूं, देखता हूं कि आखिर इसमें आता क्या है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये है पेटीएम का QR, और मैंने अपने मोबाइल फोन में QR ओपन किया है और अब मैं इसको स्कैन कर रहा हूं, और जब मैं स्कैन करता हूं तो स्कैन कर यहां पर मेरे फोन में आता है राम राज्य कोष, यानी कि जो मैं अमाउंट या डोनेशन या चढ़ावा मैं रामचंद्र को देना चाहता हूं वो राम राज्य कोष में जाएगा। आप सवाल ये है कि राम राज्य कोष क्या है, क्या ये ट्रस्ट जुड़ा हुआ कोई सेंटर है, क्या ये ट्रस्ट की ही चीज है। हालांकि यहाँ राम राज्य कोष लिखा हुआ है, यानी कि ये इसके जरिए यहाँ पर डोनेशन कलेक्शन होता था। जिस वक्त घर घर जाकर डोनेशन कलेक्शन की बात चल रही थी, आपको हम और लोगों से बात कराएंगे जो यहाँ पर योगा केंद्र में मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहानी कुल मिलाकर क्या है। आप लोग बताएं मुझे कि यहाँ पर अविनाश शुक्ला कब से रह रहा था, कैसा नेचर था, क्या आप लोगों को कभी शक था कि इतने बड़े चढ़ावा चोरी में उसका नाम सामने आएगा और वो जेल के पीछे जाएगा।
3: भैया, ये अभिषेक शुक्ला तो 10 साल से रहे थे, अब उनके भाई वो 1.5 साल से यहाँ आए हैं, 1.5 साल से, लेकिन हम लोग से उससे ज्यादा कोई उतनी लगाव नहीं थी हमसे कोई बात।
2: ऐसा क्यों?
3: मंदिर में अब वो, हम तो अपना क्लास चलता था, हमारी सुबह 5 बजे आते थे, हम अपना काम करते क्लास।
2: आपको शक नहीं हुआ कि वो इस तरह की चोरी में इन्वॉल्वमेंट?
3: पहले तो पानी वानी बेचता था, उसके बाद गणना में लगा दिया उसको, लेकिन सर हमें ये शक नहीं।
2: बक्सा मैं देख रहा हूँ सामने, रहस्यमय बक्सा, ये क्या है, इसमें क्या है, यहाँ रखा?
3: तो ये बक्सा तो आपसे शुक्ला जाप जब उनको मिली तो अपना खरीद के लाए हैं बक्सा, इसमें अपना कपड़ा रजाई वगैरह सब रखते थे, अब उनके भाई आ गए उसी में, वो भी अपना कपड़ा वपड़ा रखते।
2: मैं इस बक्से की बात कर रहा हूँ जिसमें ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है।
3: ये जो QR कोड लगा है, ये जो राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी है, ये जब राम मंदिर के 2017-18 में बनने की तैयारी हो रही थी तो ये 71 दिन की यात्रा निकली थी
2: डोनेशन एक्सेप्शन के लिए, डोनेशन के लिए।
3: हाँ,
2: जब पुलिस यहाँ आई थी तब आप यहाँ मौजूद थे
3: उस दिन 5 जून को?
2: जी।
3: हाँ, 5।
2: क्या हुआ था उस दिन बताइए।
3: उस दिन 5 जून को तो हम चाय बना रहे थे, उसके बाद पुलिस आई अविनाश को लेके, तो फिर अपना चाबी लाए, ताला खोले, ताले
2: कौन सा ताला खोला,
3: इसी में ताला बंद,
2: बड़े बक्से का ताला खोला,
3: बड़े बक्से में वो ताला वो लोग अपना बंद।
2: आइए दिखाते हैं बड़ा बक्सा एक बार हम, की जिसका ताला खोला गया है, कैमरा मैन नीरज दिखाएंगे एक बार। इस बड़े बक्से का जिक्र कर रहे हैं आप,
4: इसका जिक्र कर रहे हैं,
2: ये बक्सा किसका है?
3: इसी का।
2: किसका बक्सा है?
3: ये अभिषेक शुक्ला का,
2: अभिषेक शुक्ला का बक्सा, यानी कि अविनाश शुक्ला का भाई अभिषेक शुक्ला। एक बार हम इसको खोलने की कोशिश करते हैं। ये आप इसमें कपड़े दिखाई देखेंगे, तमाम बुकलेट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये कौन कौन से कागज पड़े हैं यहाँ पर?
3: उन्हीं के पढ़ाई लिखाई के कागज और कागज जो है जो कुछ अपना वो रखते।
2: अविनाश शुक्ला जो मुख्य आरोपी है उसका भी सामान इसी बक्से में है?
3: अब दोनों भाई इसी में अपना कपड़ा वगैरह रखते थे सर, एक साथ में रहते थे दोनों लोग, अपना रखते।
2: ये जो बक्सा है इसका क्या कनेक्शन?
3: इसका तो वही जो है, जब 17-18 में चल रहा था या 71 दिन की यात्रा, तभी हमारे गुरुजी को अपना मिला था ये दान के लिए।
2: आपने कहा कि आप यहाँ पर सामने चाय बना रहे थे, यहीं चाय बना रहे थे?
3: हाँ जी जी जी।
2: पीछे दिखाइए गैस, यहाँ पर एक चाय बन रही थी आपकी।
3: जी जी।
2: पुलिस टीम आती है।
3: हाँ।
2: तो उसके बाद क्या हुआ?
3: उसके बाद में पुलिस टीम आई, हमसे पूछी कि जो है आप क्या कर रहे हैं अंकल, हम चाय बना रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि जो है आप बाहर जा सकते हैं। हम गए, हम बिल्कुल जा सकते हैं।
2: पुलिस ने आपसे कहा कि आप बाहर जाइए कुछ देर?
3: आप बाहर जाइए। तो फिर अविनाश अपना ताला खोले, बक्से से बैग निकाले, उसके बाद हमें।
2: अविनाश ने इस बड़े बक्से का ताला खोला था?
3: बक्से का ताला खोला, उसके बाद बैग निकाले, दोनों लोग अपना पुलिस खड़े थे। हमको कहे बाहर जाइए, फिर जो है एक जो उनके साथ में थे हमें बाहर करके।
2: कौन साथ में था?
3: वो दो लोग और थे ना उनके साथ।
2: ट्रस्ट के थे?
3: ट्रस्ट के थे।
2: सीनियर लग रहे थे या उसी की उम्र के थे?
3: हाँ,
2: उम्र दराज लग रहे थे या उसी की उम्र के?
3: उम्रदार थे,
2: दराज लग रहे थे।
3: हाँ।
2: कभी आपने देखा था उनको?
3: नहीं नहीं, कभी नहीं देखा था।
2: क्या कह रहे थे?
3: तो वो कुछ नहीं कहा, बस वो लोग अपना, हम बाहर चले गए, दरवाजा बंद कर लिए। उसके बाद अब क्या
2: की बात है?
3: 5 जून की।
2: कितनी देर पुलिस यहाँ रही?
3: 7:30 बजे पुलिस आई थी, उसके बाद शाम को।
2: और वापस कितने बजे गई?
3: उसके बाद जो है 8 बजे हम यहाँ से चले गए, लेकिन सीसी फुटेज में दिखा रहा है कि 8:12 पर वो गाड़ी में बिठाए हैं।
2: बताया गया कि यहाँ से 5 लाख रुपए बरामद किए हैं पुलिस ने।
3: 5 लाख रुपए तो उनके अकाउंट से बता रहे हैं बरामद हुई, इसमें दिखा रहा कि अकाउंट से बरामद हुई है।
2: यहाँ से कुछ बरामदगी हुई है?
3: अब 2 बैग निकले हैं, अब वही लेके गए, उसमें जो कुछ हो हमें।
2: अक्सर 1.5 साल वो बंदा यहाँ रहा, कभी किसी को शक नहीं हुआ कि वो इस तरह की गतिविधि में इन्वॉल्व है?
3: कोई सन न, तो वो क्लास में जाता था, इधर अपना रहता था, हम लोग आते थे, वो 7-8 बजे तक सोता ही रहता था। 8 बजे तक
2: योगा केंद्र में 7-8 बजे तक सोता रहता था?
3: जी,
2: योगा केंद्र में 7-8 बजे तक सोना तो एक अनयूजुअल चीज है।
3: यहाँ तो वहाँ तो लोग नहीं, इस कमरे में अपना सोता रहा जो है। और हम कभी कभी जब जग जाए तो हम लोग कहें क्लास में चलिए, तो कहे हमारा मन नहीं करता।
2: मतलब कुल मिलाकर अभिषेक योग सीखता था, और अभिषेक जो कि
3: जो है अभिषेक 5 बजे उठता था, हम आ जाते थे, उसके बाद वो उठता था, ताला खुले रहता था, उसके बाद वो अपना योग कराता था।
2: अविनाश शुक्ला योग नहीं सीखता था, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस यहाँ रह रहा था।
3: वो यहाँ रह रहा था। अभिषेक शुक्ला तो ऑनलाइन क्लास चला रहा था, योग कर रहा था, योग क्लास में भी
2: जाकर हम दिखाते हैं योग सीखते कहाँ थे। ये तो वो जगह हमने आपको दिखाई जहाँ पर वो रहता था, सोता था अपने भाई के साथ, वो बक्सा, वो रहस्यमय बक्सा। QR कोड भी स्कैन किया हमने आपको दिखाया, आपको हम दिखाएंगे। ये आप बाहर की लोकेलिटी अगर दिखा पाए एक बार, दिखाएंगे फ्रेम यहाँ पर, दिखाइए एक बार किस तरीके का यहाँ की लोकेलिटी है। यहाँ पर सामने एक बेड पड़ा है, बताया जा रहा है यहीं पर अभिषेक और अविनाश शुक्ला इसी बेड पर जो है यहीं सोता, और सुबह 7-8-9 बजे आराम से उठता। योग केंद्र में 7-8 बजे 9 बजे उठना एक यूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि योगा का असल समय अगर खासकर अगर आप योगा केंद्र में रहते हैं, सुबह 4-5-6 होता है। आपको मैं उस जगह ले जाता हूँ जहाँ पर योग सिखाया जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए तमाम दरियाँ बिछी हुई हैं, ये वो योगा सेंटर है, इसकी खास तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और यहीं पर अभिषेक शुक्ला जो है योग सीखता था, उसका भाई। लेकिन जो आरोपी इस पूरे मामले में है यानी कि अविनाश शुक्ला, उसका योगा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो केवल यहां पर रह रहा था, और जो चढ़ावा चोरी की गतिविधियां थी उनको यहीं से रहकर संचालित कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी बात है। और पुलिस की टीम यहां पर आई, और जैसा कि योगा केंद्र के लोग बताते हैं कि यहां पर उस ट्रस्ट के भी 1-2 अधिकारी पहुंचे हुए थे। क्या मामला था ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ये वो स्पॉट है, वो जगह है। आपको मैं यहाँ भी टेबल दिखा देता हूँ, यहाँ भी कुछ बुकलेट्स पड़ी हुई हैं, इसको भी आप देख ही लें। यहाँ पर ये सारी बुक्स हैं, ये पदावली है, इसमें ये सारी डिटेलिंग है, यानी कि ये तो कुल मिलाकर जो है इसमें शिव स्तुति वगैरह लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बुक्स भी हैं, और ये PSC वगैरह के एग्जाम्स की, यानी कि जो अभिषेक कुल मिलाकर जितना योगा सेंटर से हमारी बातचीत हुई है, अभिषेक शुक्ला जो कि अविनाश का भाई था, वो पढ़ने में भी तेज था, उसकी नौकरी भी लग गई थी, और वो 10 साल से योगा सेंटर में रह रहा था। लेकिन अविनाश शुक्ला 1.5 साल पहले आया था। अब यहाँ पर भी देखिए कुछ कागज़ आपको दिखाऊंगा मैं, ये भी देखिए कुछ कागज़ हैं, आधार कार्ड्स वगैरह डिटेल्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ जो अन्य लोग रहते थे उनको लेकर डिटेलिंग है, यानी कि पुलिस तफ्तीश जो हुई है उसने सारी ही चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व किया है। ये एक बड़ी बात कहानी है। इसके अलावा अगर आप पूरे योगा सेंटर का वाइड व्यू दिखा दें एक बार, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है योगा सेंटर, और यहाँ की तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा था। हालांकि योगा सेंटर का कहना है कि हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, और जब भी चीज़ें हुई हैं हमने तुरंत ही दोनों ही भाइयों को यहाँ से निकाला। हम बात करेंगे जो योगाचार्य यहाँ पर हैं उनसे भी बात करेंगे
0: जी।
2: आप बताएं मुझे कि अविनाश शुक्ला का क्या रोल रहा, आप लोग जब वो पहली दफा यहाँ आया तो उसने कैसे रिएक्शन दिया, क्या कुछ?
4: वो देखने में तो बहुत सीधा साधा, दीदी प्रणाम जब भी मिलता था बहुत अच्छे से मिलता, कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सीधा सा पागल सा दिखने वाला लड़का ऐसा भी कर सकता है।
2: योगा सेंटर में सुबह 7-8-9 बजे सोकर उठना एक आम बात तो नहीं है मैम।
4: हाँ वो थोड़ा लेट सो, इसके लिए अभिषेक उसको बहुत डांटता था। अभिषेक उसको कहता था कि इस तरह का यहाँ पे नहीं चलेगा, उसको बहुत डांटता था। और उसका थोड़ा सा था कि बहुत आलसी प्रवृत्ति का था, लेकिन ये कांड कर डालेगा इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था।
2: पुलिस यहाँ जब आई है तो क्या आप लोगों को जानकारी बाद में हुई होगी, क्या कुछ रिकवर किया यहाँ से?
4: हाँ बाद में पता चला हमें कि पुलिस आई थी, सुंदर ने बताया तो, लेकिन ये कि इतनी रिकवरी हुई ये हमें जब सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया तब पता चला कि इतना पैसा यहाँ से मिला।
2: आप लोगों से कुछ जानकारी ट्रस्ट ने ली है, पुलिस ने ली?
4: किसी ने कोई जानकारी नहीं ली, ट्रस्ट ने तो कुछ भी नहीं पूछा, अभिषेक से चाहे जो पूछा हो, पुलिस ने भी अभिषेक से ही पूछा।
2: आप लोगों ने कभी उनसे उससे सवाल नहीं किया शो था?
4: दूसरे ही दिन हम लोगों ने उसको फोन करके बता दिया था कि आप अपना सामान यहाँ से उठा ले जाइए और हम नहीं चाहते कि ये सेंटर की बदनामी हो।
2: दोनों भाइयों?
4: हाँ दोनों से।
2: अभिषेक का क्या रिएक्शन था? जो
4: अभिषेक ने कहा कि दीदी ऐसा कुछ नहीं है और अभी बात सामने आने दीजिए, जांच होने दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है।
2: अविनाश से बातचीत हुई थी?
4: अविनाश से मेरी कोई बातचीत नहीं।
2: पिछले 1.5 साल से अविनाश आपके साथ यहाँ, मतलब आप लोगों के सेंटर में रहता था, योगा भी नहीं करता था, इसको लेकर कभी आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये तो अनयूजुअल सी चीज है कि योगा सेंटर में रह रहा है, योगा सीख भी नहीं रहा है?
4: नहीं नहीं, सुबह के बैच में कभी कभी जाता था। और दूसरा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे गुरुदेव का सेंटर है, गुरुदेव का सेंटर है और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, गुरुजी से मिलने आते थे, वो काउंसलिंग भी करते थे गुरुजी हमारे, तो कभी हमें ऐसा नहीं
2: लगा। बक्सा जैसे कि मैं देख रहा हूँ सामने जो कोष का बक्सा है वो योगा सेंटर में रखना क्या न्याय संगत है उसके द्वारा?
4: कौन सा बक्सा?
2: सामने एक बक्सा
4: वाला, ये छोटा वाला बक्सा है, ये हमने आपको पहले भी बताया, ये 71 दिवसीय यात्रा थी हमारी, हम लोग विवेक सृष्टि गुरुजी का आश्रम वहां से पैदल जाते थे राम मंदिर तक, ये बहुत बड़ा जन आंदोलन था, आप इसे सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये उस समय का। फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि मंदिर बनेगा तो हम लोगों ने दान इकट्ठा शुरू करा, ये उस समय का बक्सा, मतलब ये हाँ काफी पुराना, इसका इस से तो कोई संबंध मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए।
2: आप ही लोग उससे है या अभिषेक
4: के टाइम का है? ये अभिषेक का नहीं है, ये गुरु जी के टाइम का है।
2: पुलिस जब यहाँ आई है तलाशी लेने तो क्या वो जो बक्सा बड़ा वाला है उसमें खंगाला है चीजों को?
4: हाँ सारा उन्होंने सब कुछ पलटा था, जहाँ जहाँ वो चेक कर सके उन्होंने पूरा चेक किया, सब कुछ देखा था और बक्सा तो पूरा पलटा था। और ये जो ब्लैंकेट्स है हमारे इसी बक्सों में रखे जाते हैं, अब उसमें उसने क्या छिपाया किसी को कुछ पता ही नहीं।
2: क्या चाहती है?
4: देखिए हम सब इस बात से बहुत आहत हैं, सबसे बड़ी चीज तो एक राम मंदिर से उन्होंने चोरी की, दूसरा एक पवित्र जगह पर उसने ये पैसा लाकर रखा, ये योग साधना केंद्र है, गुरुजी का सेंटर है, हम लोग इसे पूछते हैं, यहाँ आते हैं योग साधना कर, हम इतना आहत हुए इस बात को लेकर कि पहले मैं मीडिया पे नहीं आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा जो सही चीजें हैं उसे मुझे सामने रखना है तो फिर सामने आना पड़ेगा, और मैं इस बात को लेकर बहुत आहत हूँ और मैं चाहती हूँ उसने जो अपराध किया उसका उसे कड़े से कड़ा दंड मिले।
2: पुलिस ने उसके बाद से कोई बातचीत की आप लोग?
4: नहीं किसी से कोई बातचीत नहीं, कोई बातचीत नहीं।
2: योगाचार्य अपना परिचय दे दीजिए।
4: सीमा तिवारी योगाचार्य।
2: योगाचार्य सीमा तिवारी जी हैं। हालांकि इसमें योगा सेंटर की कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती है, वो अभिषेक को लेकर जो बातें हैं वो साफ हैं। आप अगर यहाँ पर विजुअल्स देखते रहे तो ये एक टेबल है, बताया जा रहा है यहीं पर जो थोड़ा बहुत पेपर वर्क वगैरह होता था यहीं इसी चेयर पर बैठता था और यहीं पर पेपर वर्क सारा होता था, काफी किताबें, इसलिए जब पुलिस की टीम से यहाँ पर पहुंची तो ये सारी किताबें सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर से नीचे आगे पीछे किए गए। और ये ड्रॉर्स वगैरह आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कागजात भरे हुए हैं, ये देखिए किस तरीके से तो टूटा भी हुआ है, काफी कागज अंदर भी है, तो पुलिस ने ये भी कोशिश की पता करने की कि कहीं कुछ ऐसी चीज तो यहाँ नहीं छिपाई गई है। ये देखिए ये एक के बाद एक पढ़ते हैं यहाँ पर कई, ये देखिए एक और बैंक का डिटेल, यानी SBI जो है उसके कार्ड, उसके क्रेडिट कार्ड, उसके तमाम चीजें आपको यहाँ इनके ड्रॉर में मिलेंगी। और ये कुल मिलाकर अभिषेक और अविनाश शुक्ला, अविनाश शुक्ला वो जो इस वक्त जेल के अंदर है, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स, उसकी तमाम बैंक डिटेल्स, यानी कि पुलिस जो मनी ट्रेल पर काम कर रही है उसकी एक प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई, जिसके तहत SBI के जो तमाम कार्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तमाम बैंक डिटेल्स, पासबुक्स, वो सब यहाँ पर दिखाए गए। और इसके अलावा सेंटर को मैं बाहर से भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जहाँ से यहाँ तो यानी कि जो अभिषेक है जो कि पढ़ाई में बेहतर था, सारी चीजें थी, जो उसका सगा भाई भी था, लेकिन अविनाश का मन कभी भी ना पढ़ाई में लगा ना योगा में लगा, कभी कभार वो एक आध सेंटर से क्लास करता था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर का रास्ता है योगा सेंटर का, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नीचे का रास्ता योगा केंद्र का है, और यहाँ की तस्वीरें जहां पर योग सिखाया जाता था। तो कुल मिलाकर तस्वीरें ये बता रही हैं कि एक बड़ा बड़ा गेम यहां पर चल रहा था, योगा सेंटर ने पल्ला झाड़ा है, उनका कहना है कि हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बाहर की लोकेलिटी, बाहर अगर आप यहां पर आएंगे आपको रत्ती भर शक नहीं होगा कि यहाँ पर इस तरह का घटनाक्रम और चढ़ावे चोरी का इतना बड़ा आरोपी यहाँ आराम से 1.5 साल से रह रहा था और वो नाक के नीचे सब कुछ कर रहा था। कई बार सवाल पूछे गए उसके नेचर को लेकर भी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, यानी कि वो साइलेंटली सब कुछ करता रहा। और ऐसे कई किरदार हैं जहाँ धीरे धीरे पुलिस पहुंच रही है। तस्वीरें आप दिखाते रहे इस पूरे जगह की, इस पूरे सेंटर की, जहां से इस वक्त हम आपको लाइव रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, जहां जहां वो पहुंचा, जहां जहां वो रहा। आप समझिए यहीं पर 3-4 बेड्स पड़े हुए हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं, यहीं पर बेसिन बना हुआ है, बाहर खिड़कियां लगी हुई हैं, पूरा एक मोहल्ला है, रेसिडेंशियल प्रॉपर एरिया है। आप दिल्ली के लाजपत नगर में जाएंगे, आप बाहर निकलेंगे, आपको लगेगा कि आप वहीं आ गए हैं।
0: समर्थ, एक सवाल ये भी बनता है कि इस तरह के लोगों की फिर नियुक्ति कैसे हो गई गणना के लिए?
2: नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। आप समझे कि जिस योगा सेंटर में वो 1.5 साल पहले आया, किस बिना पर इन लोगों को रखा गया है। जो हमने सुबह से हम खबर एक बात बता रहे हैं कि जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है कल की पूछताछ में, खासकर जो अविनाश शुक्ला जिस जहां सेंटर से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां वो रहता था, प्रमुखता से सबसे ज्यादा बड़ी पूछताछ अयोध्या पुलिस ने कल की है जेल में, कोर्ट परमिशन के बाद अविनाश की ही की है। और बड़ी बात यहां पर यह है, अविनाश ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि किस तरीके से वो बाथरूम में ले जाकर पहले जो चढ़ावा चोरी का पैसा होता था उसे छुपाते थे, फिर धीरे से एक आदमी ले जाता था, क्योंकि चाबी जो थी वो टिन्नू यादव के पास थी। टिन्नू यादव के पास चाबी होने से सबसे बड़ा सेफ पॉइंट यह था कि कोई फंसेगा नहीं। इन सभी को, क्योंकि लंबे समय से कार्यरत थे, तो इन सबको इस बात का आइडिया था कि जो फुटेजेस लगे हैं वो कहां कहां लगे। सपोज मैं ये डोनेशन कैंप में मौजूद हूं और ऊपर मेरे फुटेज कैमरा लगा हुआ है और मुझे पैसा यहां से उठाना है, तो 3 आदमी एक आदमी को यहां घेरते थे और फिर एक आदमी यहां से निकलता था। तो तस्वीरें आप इस तरीके से देखें, और सामने बना एक वॉशरूम मैं एस्टैब्लिश करूं अगर उस सीन को, सामने बने वॉशरूम, मुझे पैसा ले आना है, मैं सीसीटीवी से छुप कर जाऊंगा और यहां से उस पैसे को वॉशरूम में ले जाता था, फिर वॉशरूम से धीरे से 2-3 व्यक्ति मिलकर उस पैसे को उठाते थे और यहां से ले जाते थे, और फिर उस पैसे को कहां स्टोर किया जाता था, यह एक बड़ा सवाल है। और बड़ी बात तो यह है, जैसा कि आपने सवाल किया कि जो लोग यहां पर मौजूद थे वो कैसे हुए, तो यह बताया जा रहा है इसमें अनिल मिश्रा के भी लोग थे, चंपत राय के भी कुछ लोग थे और कुछ गिरी के भी लोग थे, तो ये एक बड़ा सवाल अपने आप में
0: जी, बिल्कुल समर्थ, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
8: अरे यात्री ध्यान दे।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Akajay, the number 1 Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र में पहुंचा आज तक क्यूआर कोड वाले बक्से में अभिषेक और अविनाश शुक्ला वॉशरूम में ले जाकर चुराते थे पैसे, पूछताछ में हुआ खुलासा। एक साल में राम मंदिर चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर, पूछताछ में चोरी का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की होगी जांच। नायरा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता, देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल, यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट, 5 की मौत। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, 3 जुलाई को कैंपों से रवाना होंगे भक्त, जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
0: और अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खास खबरें।

0: आस्था का महासफर बाबा बर्फानी का बुलावा 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां हर कदम पर परीक्षा है लेकिन हर कदम पर महादेव का भरोसा भी है। बस मंजिल यही है कि बर्फ से बने बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजने वाले ये रास्ते अब फिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बार बाबा बर्फानी का स्वरूप भी भव्य है। गुफा तैयार है, रास्ते तैयार हैं, टेंट सिटी तैयार है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का अभेद्य कवच भी तैयार है।
1: जी हां, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है, कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
0: आज तक आपको दिखाएगा बाबा बर्फानी तक जाने वाले रास्ते का पूरा सच, ग्राउंड रिपोर्ट, सुरक्षा तैयारी और अमरनाथ यात्रा की पूरी कहानी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
2: प्रथम दर्शन के साथ ही बाबा बर्फानी की ओर श्रद्धालु निकल पड़े। 3 जुलाई से श्रद्धालुओं का पवित्र गुफा तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों पर बाबा बर्फानी का जय घोष है, भक्ति है। भोले शंकर का नाम लेकर श्रद्धालु अमरनाथ के लिए निकल पड़े हैं। इस बार सुरक्षा भी अभूतपूर्व है, जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर पहरा है। अट्ठाईस जून को पवित्र गुफा का प्रथम दर्शन हुआ। जय बाबा बर्फानी के साथ जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा की। इस साल पहली बार श्रद्धालुओं ने बर्फ के सफेद शिवलिंग को पहली बार देखा। अब चलो अमरनाथ की जयकारे के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। 3 जुलाई से श्रद्धालुओं के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। देखिए बालटाल और पहलगाम रूट से अमरनाथ यात्रा की ग्राउंड रिपोर्ट।

0: जिस पल का करोड़ों श्रद्धालु इंतजार करते हैं वो घड़ी आ गई है। प्रथम पूजा के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बालटाल तैयार है, पहलगाम तैयार है, जम्मू तैयार है, रजिस्ट्रेशन जारी है, तैयारी पूरी है। अब बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी है।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर, और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है साथी में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है।
0: इस बार सिर्फ श्रद्धालु नहीं चलेंगे, उनके साथ चलेगी देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पहरा है, पूरे रूट पर चौकसी है, सिर्फ जमीन से ही नहीं आसमान और पानी में भी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है।
2: जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुँचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं।
0: इस बार ऐसी सुरक्षा है कि परिंदे भी पर ना मार पाए। 670 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियों की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी है, QAT, ऑपरेशन डाल, हाईटेक सर्विलांस और मल्टीलेयर सुरक्षा के साथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: अमरनाथ की यात्रा को लेकर के बड़े स्तर पर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली QAT के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं।
0: अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोगों को हिमालय की गोद तक खींच लाती है। पहाड़ बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सुरक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। माँ तवी की आरती से पूरा जम्मू शिवमय हो चुका है।
3: इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। इस बीच प्रथम पूजा के बाद अब पूरे कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों का इंतजार हो रहा है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले कई यात्री जम्मू, बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप्स पर पहुंच चुके हैं।
4: ओम वंदे देवम।
0: अब सिर्फ इंतजार है 3 जुलाई का, जब बाबा अपने भक्तों को बुलाएंगे। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
5: अमरनाथ यात्रा मार्ग में जबरदस्त सुरक्षा है। ऑपरेशन शिवा की बानगी श्रीनगर बालटाल रूट पर देखा जा सकता है। और देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं।
2: अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कुछ इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने बड़े स्तर पर यहां पर वैली QAT के कमांडोज को तैनात किया है। जी हां, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है, कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए 670 से ज्यादा कंपनियां सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनात की गई हैं। ऊंचाई जो जंगल वाले इलाके हैं, उन जंगली इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेज को लगाया गया है, जो ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद रहेंगी स्नाइपर्स के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वैली क्यूएटी के कमांडोज यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। अमरनाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से हो रही है और इसकी तैयारियां भी चारों तरफ अलग अलग तरीके से किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस बात का एहसास लोगों में दिला रही हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और वो बड़े स्तर पर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों, जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके। तो इस तरीके की तैयारी अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया गया है, जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। कैमरामैन संजय के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सड़कों पर जहां एक तरफ नजर रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी और जंगली इलाकों में किस तरीके से नजर रखना है, उसके लिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। सुनील कुमार जो कमांडो हैं, जो कि पूरी तरीके से इस ड्रोन को ऑपरेट करते हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के ऐसी तैयारियां हैं, हाईटेक तैयारियां हैं, तो किस तरीके से आप लोग ऊंचाई वाले इलाकों में नजर रखते हैं?
6: जी सर, हम रोड के साथ साथ जंगल इलाकों, पहाड़ी इलाकों में भी ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखते हैं। ड्रोन को हम 500 मीटर हाइट पे और 5 किलोमीटर जो है दूरी पे इससे जो है इसकी मदद से नजर रखा जा सकता है।
2: इसके साथ ही इसको जो ऑपरेट आप करते हो, तो इसके फुटेज भी आप लोग सेव करके रखते हो कि अगर बाद में कहीं संदिग्ध गतिविधि दिखी तो उस पर नजर रखी जा सके?
6: जी सर, जी सर, इसको जो है इसमें सर फोटो क्लिक और जो है वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों होती है सर, जो बाद में हमें किसी भी जरूरत के समय पे हमें हेल्प करता है सर।
2: और ये सड़कों में आप जैसे देख रहे हैं दूर तरफ और ऊंचे पहाड़ हैं, तो उसमें किस तरीके से देखा जा सकता है, कितनी हाइट तक?
6: 500 मीटर हाइट तक इसको देखा जा सकता है सर, और 5 किलोमीटर जो है दूरी तक इसको जो है ले जाया जा सकता है।
2: तो आप यहां तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है सीआरपीएफ अलग अलग स्थानों में इस वक्त कर रही है अमरनाथ यात्रा के दौरान। और ये ड्रोन ऑपरेटर जो है ये बता रहे हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो 500 मीटर ऊपर तक और कई किलोमीटर दूर तक इसको ले जाकर के इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस रखा जा सकता है, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख के अगर कोई मूवमेंट होता है तो उसको वहीं पर ध्वस्त किया जा सकता है। कैमरामैन संजय के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।
5: सुरक्षा श्रीनगर डल लेक पर भी है। अमरनाथ यात्रियों और सैलानियों की वजह से यहां भी पूरा हुजूम रहता है। जाहिर है यहां भी जबरदस्त पहरा है।
2: डल लेक में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम सीआरपीएफ के कमांडोज के द्वारा यहां पर किया गया है। जी हां, सुरक्षा इसलिए क्योंकि इस पूरे इलाके में जो पहाड़ी इलाका है, यहां से खतरा किसी भी तरीके का ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर निगरानी डल लेक में सीआरपीएफ के द्वारा, जो वाटर विंग है सीआरपीएफ का, उसके द्वारा किया जा रहा है। यहां पर जानते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी इस वक्त की जा रही है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई है और इन सब के बीच बड़े स्तर पर निगहबानी इस वक्त की जा रही है। सर, ये बताइए कि किस तरीके की तैयारी चल रही है?
7: यहाँ 24x7 लगातार पेट्रोलिंग चलती है, डल डोमिनेशन चलता है। जल में, चूंकि बहुत तरह के हाउस बोट यहाँ पे लगे हुए रहते हैं जिसमें सुरक्षा थ्रेट भी रहता है, जिस कारण से हम इस पूरे एरिया को डोमिनेट करते हैं। और हमारी ये जो ये वाटर बोट है और वाटर विंग के द्वारा और ये कमांडोज के द्वारा इसका लगातार डोमिनेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो।
2: और भी हमारे साथ इस वक्त जो कमांडो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरीके की निगरानी आप लोग यहाँ पर करते हैं, क्या खतरा होता है, कैसे निगरानी।
8: यहाँ पर हमारे प्रसिद्ध शंकराचार्य का मंदिर भी है, उसकी भी सिक्योरिटी की जाती है। और यहाँ पर डल लेक में वाटर बोटिंग के थ्रू 24 घंटे कमांडो तैनात रहते हैं। यहाँ सब पूरी सिक्योरिटी 24 घंटे देखी जाती है वाटर बोटिंग के द्वारा।
2: बिल्कुल, तो ये वाटर विंग जो है सीआरपीएफ का, पीछे दूसरी बोट देख रहे हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका एक खतरनाक जोन में आता है और इस वजह से किसी भी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा में चूक ना हो, इस वजह से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। और ये वाटर विंग खास तौर से डल लेक की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात की गई है, जिससे कि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश विदेश से टूरिस्ट भी आते हैं। इसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, उनकी जब यात्रा खत्म होती है तो उसके बाद इस पूरे इलाके में हाउस बोट हैं और इसके अलावा शिकारा भी है, उसमें घूमने के लिए आते हैं। तो इस वजह से सुरक्षा के यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही यहाँ पर पेट्रोलिंग 24 घंटे होती रहती है डल लेक में, जिससे कि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो। डल लेक से कैमरामैन संजय के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहाँ पर करती है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं, वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं, वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहाँ पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहाँ पर स्थिति पैदा होती है, उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
5: और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट का ही। तो सुनील जी, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है, आप वहां क्या देख रहे हैं?
1: जी, मैं आपको बता दूं, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर। और यहां पर जो पहला जत्था कल सुबह तड़के रवाना होगा, वो तमाम यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर एक एक करके जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये पहले जत्थे के श्रद्धालु है और पहला जत्था जो है कल सुबह यहां से रवाना होगा। जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी है, वो पहले जत्थे को रवाना करेंगे कल सुबह तड़के। और उससे पहले जो पहले जत्थे के जो श्रद्धालु हैं, जिनका पंजीकरण हो चुका है, जिनको आज का नंबर भी अलॉट हो चुका है, वो अब यात्री निवास भवन के अंदर जो है प्रवेश कर रहे हैं। हम यहाँ पर सीधा श्रद्धालुओं से बात करते हैं। जी, आप बताइए आपका नाम?
9: ललित अग्रवाल।
1: कहाँ से आ रहे हैं?
9: पीलीभीत।
1: मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति है?
9: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। हर हर महादेव।
1: आप बताइए आपका नाम?
10: कंकरखेड़ा से, श्री कृष्ण।
1: कहाँ से आए?
10: कंकरखेड़ा। बहुत ज्यादा अपार प्रसन्नता है। हर हर महादेव।
1: पर जो है लंबी लंबी कतारें हम देख सकते हैं कि जो पहले जत्थे के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर यात्री निवास भवन में पहुंच रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखें सुरक्षा की दृष्टि से भी कड़े कदम उठाए गए हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो यात्री निवास भवन का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी है जो कि सभी श्रद्धालुओं के कागजात देख रहे हैं, उनकी जाँच कर रहे हैं, पंजीकरण की जो स्लिप है, जो पर्ची है, उसको देखा जा रहा है। और उसके बाद ही उनके सामान की तलाशी ली जा रही है एक्सरे स्कैनिंग मशीन से, उसके बाद ही यात्री निवास भवन में इनको प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही में यहाँ पर अगर हम देखें जो पूरा यात्री निवास भवन है इसको अगर हम देखें तो एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान जो हैं भारी संख्या में तैनात हैं, मोर्चे बनाए गए हैं, हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं। प्राथमिकता यही है कि ये जो श्रद्धालु यहाँ आए उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई समस्या का सामना न करना पड़े और यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे। फिलहाल अगर हम देखें तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यात्री निवास भवन है। फिलहाल यहाँ पर केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को जाने की मिल रही है जो कि पहले जत्थे में
5: जी। बिल्कुल सुनील, शुक्रिया आपका ये पूरी तस्वीर दिखाने के लिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
12: पेप्सी प्रीबायोटिक कोला इन ओरिजिनल एंड चेरी वनीला, that Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
13: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance, and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's global hits to start listening now.
14: In association.
15: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
16: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
17: सोच बदलो और बैंक भी।
18: हमने तब भी सवाल किया था,
19: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
18: हम आज भी सवाल करते हैं,
19: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
18: ऑपरेशन अग्नि
19: आज तक के

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

2027 यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सियासी पिच पर चढ़ावा चोरी पर सियासी बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम योगी भी अब हिंदुत्व की पिच पर चौके छक्के मारने उतरे हैं। अखिलेश ने अयोध्या को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दे दिया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घिरी बीजेपी 2027 की राजनीति में मथुरा की एंट्री करवा रही है। 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से चुनावी शंखनाद करना चाहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सीएम योगी ने क्यों उछाला, इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझाते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट भी 87-89% तक पहुँचे।

चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर सरकार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपत राय पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

0: चढ़ाव वसूली की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र तक पहुंचाच तक क्यूआर कोड वाले बक्से में अभिषेक और अविनाश शुक्ला वॉशरूम में ले जाकर चुराते थे पैसे, पूछताछ में खुलासा।
1: एक साल में राम मंदिर चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर, पूछताछ में चोरी का कबूलनामा, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच होगी।
0: नायरा एनर्जी के 7,000 पंप्स पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183 रुपए तक घटी। 5 किलो का छोटा सिलेंडर सस्ता।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर दौसा के पास भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट, 5 की मौत।
0: अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंप से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शतक आजता के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच के बाद काउंटिंग व्यवस्था बदली। अब सीसीटीवी निगरानी होगी पूरी प्रक्रिया। 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सुरक्षा सख्त, काउंटिंग कक्ष में मल्टी लेवल तलाशी और ड्रेस कोड लागू। 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर डोनेशन घोटाले में नया खुलासा। एक साल में चढ़ाव में 50% गिरावट पर एसआईटी की नजर। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में जांच तेज। जेल में बंद 8 आरोपियों की संपत्तियों की पड़ताल। रिश्तेदारों के वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। महंगी जमीन खरीद मामले में शिकंजा। मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रुपए से अधिक की जमीन की मिली जानकारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और खुलासा। अविनाश शुक्ला और अभिषेक पर आरोप के बाद योग केंद्र से निकाले जाने की जानकारी सामने आई। राम मंदिर से जुड़े कथित खुलासे पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज 1 बजे। कहा, जानकारी की जांच के बाद अब सार्वजनिक करूंगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासी बयानबाजी तेज।
1: वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी। पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीदी गए 5 मस्जिदों को संबंधित लोग खुद हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की। 6 मस्जिदें परियोजना की जद में है। 52 भवनों पर भी तोड़फोड़ जारी है। अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक और तंज भरी सलाह दी कि राजनीति का जल्द ही त्याग करना होगा बेहतर। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे। बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता निशांत कुमार भी एमएलसी पद की शपथ ग्रहण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर। बोले कि सीधे जनता तक पहुंचे योजनाओं का इम्पैक्ट। आज से 3 दिन के असम के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तेलंगाना राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बोले कि तेलंगाना सरकार ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। अयप्पा स्वामी मंदिर पर हुए हमले का भी जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी। आज दिल्ली में डेंगू पर जेपी नड्डा की मीटिंग। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, एनडीएमसी, एमसीडी के अधिकारी रहेंगे मौजूद।
0: एसआईआर चुनाव आयोग पर भड़का विपक्ष। 23 पार्टियों ने सीजीआई को भेजा पत्र। दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू। 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के एसआईआर के तीसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले, सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। 13,000 ज्यादा बीएलओ की लगाई गई है ड्यूटी। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार। मुर्शिदाबाद के 2 थानों में नोटिस जारी। पश्चिम बंगाल 2023 रामनवमी हिंसा मामले में टीएमसी पार्षद शकील अली को एनआईए ने किया गिरफ्तार। राहुल गांधी खिलाफ मानहानि मामला, आज स्पेशल डिविजनल कोर्ट में आवास के नमूने की फॉरेंसिक जांच पर होगी सुनवाई। आज पवन सिंह निशांत कुमार लेंगे एमएलसी पद की शपथ। शाम 4 बजे विधान परिषद में होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज से नए टैक्स लागू। सरकार ने पेट्रोल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 4 रुपए प्रति लीटर कर दी है। आज से बदल जाएंगे कई वित्तीय नियम। आधार में ईमेल अपडेट करना होगा फ्री। पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा। डीजल निर्यात शुल्क 14 रुपए से घटाकर 8.5 रुपए कर दिया गया है प्रति लीटर। एटीएफ पर 12.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 7.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया।
1: नीट यूजी रवि एग्जाम मामले में संसदीय शिक्षा समिति की बैठक, डीजीएनटीए अभिषेक सिंह और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को तलब किया गया। नीट यूजी ने एग्जाम प्रक्रिया की समीक्षा के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी सक्रिय, पूर्व इसरो प्रमुख को एनडीए सुधारों की चर्चा के लिए बुलाया गया। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में जांच तेज, आरोपी चेतन चौधरी को लोहागढ़ किले में क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया। केतन अग्रवाल मर्डर केस में कानूनी लड़ाई तेज, वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस जारी किया। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी की आवाज से नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए जबकि डीजल 3 रुपए प्रति लीटर किया सस्ता। देश भर के 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर नई दरें लागू। 2 साल से ज्यादा समय के बाद निजी कंपनी ने घटाए खुदरा ईंधन दाम, सरकारी तेल कंपनी से कीमतों में नहीं किया कोई भी बदलाव। आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली में प्रति सिलेंडर अब 183 रुपए सस्ता होकर 2930 रुपए में मिलेगा। आज जुलाई के पहले दिन से देशभर में कई बड़े बदलाव लागू, पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे, आधार, बैंकिंग से जुड़े हुए नियम प्रभावी। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं आज से फिर से बहाल हुई और आरबीआई का नया फ्रेमवर्क भी लागू।
0: बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय में खोलने की केंद्र सरकार ने दी अनुमति, सभी 18 जिलों में बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय के लिए देगी जमीन। भरत तिवारी के भाई बोले, न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट जाएंगे। भरत तिवारी मामले में आंदोलन तेज करने का ऐलान, 17 जुलाई को जंतर मंतर पर होगा प्रदर्शन। रोहतास क्षेत्र के 13 शिक्षकों पर गिरी गाज, अमान्य डिग्री पर नौकरी कराने का लगा आरोप, पिछले महीने भी 142 शिक्षकों को हटाया गया था नौकरी से। श्रीगंगानगर दुष्कर्म मामले में बुलडोजर की कार्रवाई, जिस होटल में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ उसे प्रशासन ने ढाया। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, हरिद्वार से इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, हादसे में 8 यात्रियों की मौत, 22 यात्री घायल, बस में करीब 40 यात्री थे सवार। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 5 घायल, मृतकों में 2 बच्चियां 2 महिलाएं शामिल। उन्नाव हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करने के दिए निर्देश। बठिंडा से डबवाली रोड पर भीषण सड़क हादसा, घोड़ा ट्रॉला और मेटाडोर की टक्कर में 3 की मौत।
1: मंडी पुलिस का पूर्व जवान अजय पिछले 5 सालों से लापता, गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन मंडी में घेरा किया, शहर में आक्रोश। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 52,000 रुपए के नकली नोट बरामद। ओडिशा के भद्रक में एक तरफा जुनून पर सनसनीखेज मामला सामने आया, आरोपी ने 15 साल की स्कूली छात्रा पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की, जहर पिलाने की कोशिश की। मोतिहारी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की आड़ में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया, 3 तस्करों को अरेस्ट किया गया। मुजफ्फरपुर में 7 महीने की गर्भवती की हत्या, बंद ईंट भट्टे से शव मिला, दहेज उत्पीड़न का आरोप। पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची आबकारी टीम के टीम पर माफियाओं ने फायरिंग की, बाल बाल बचे जवान। बिजनौर में युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 9 लोगों को हिरासत में लिया। छत्रपति संभाजीनगर में एक पूर्व छात्र ने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, टीसी को लेकर चल रहे विवाद के चलते इस वारदात को दिया अंजाम। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर आपस में भिड़े लोग, देखते देखते हिंसक रूप धारण किया।
0: सिक्किम में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन, एक गाड़ी मलबे में दबी, वहीं बोल्डर गिरने से सड़क बंद। पहली बारिश में डूबा दरभंगा नगर निगम का दफ्तर, मुख्य सड़क पर भरा घुटनों तक पानी। दरभंगा नगर निगम की व्यवस्था पर उठाए गए सवाल, कागजों पर सिर्फ होता है काम, पिछले कई वर्षों से दरभंगा का बना दिया है बुरा हाल। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, नुकसान का जायजा लिया। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन। मैंगलुरु में भारी बारिश के बीच कंपाउंड वॉल ढहने से भूस्खलन, घर मलबे में दबा, 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 3 लोग सुरक्षित। गुजरात के भरूच में तेज बारिश के बीच निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरी, पिता और बेटे की मौत। स्थानीय लोगों का आरोप, कच्चे मकान में रह रहे लोगों ने कई बार शॉपिंग मॉल वाले उससे की शिकायत। बारिश के बीच डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता जाम, लोगों की बड़ी मुसीबत। मध्यप्रदेश के सत्ता में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों का रेस्क्यू।
1: सीहोर में झमाझम बारिश, मेन मार्केट में पानी भरा, सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा दिखा। शहर में भरे पानी के चलते पानी में खेलते दिखे लोग, बच्चे दुकानों और घरों में भी गंदा पानी घुस गया। नवसारी में मौसम की पहली बारिश, 20 से ज्यादा घरों में घुसा बाढ़ का ये बारिश का पानी, जल भराव के चलते ट्रैफिक की रफ्तार थमी। पठानकोट में जुलाई की पहली बारिश से नगर निगम के दावों की खुल गए बोल, शहर के मुख्य बाजारों समेत 1 से 2 इलाकों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा है। लगातार बारिश के चलते पठानकोट भी जलमग्न, गांधी चौक और मेन बाजार समेत कई सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाई दिया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, श्रद्धालुओं के लिए इस बार 650 सुरक्षा बल की कंपनियां लगाई गई। कल रवाना होगा बाबा बर्फानी भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी, बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में अमरनाथ यात्रा होगी, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, हर पड़ाव और हर रास्ते को लेकर सभी संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी नजर, बिना किसी भय के बाबा के दर्शन कर सकेंगे भक्त। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं, चाक चौबंद बालटाल रोड पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसीज के साथ मिलकर मॉकड्रिल की।
0: बड़गाम रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों के लिए किया मॉकड्रिल। पुंछ में आगामी मॉनसून के चलते सुरक्षा बलों ने किया मॉकड्रिल, आपदा की तैयारियों की जांचने के लिए किया अभ्यास। बाढ़ के दौरान पानी फंसे लोगों की रस्सी और विशेष उपकरणों से मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास। एसडीआरएफ सीआरपीएफ पुलिस के जवान शामिल। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़े संख्या में शामिल हुए लोग। सैलानियों से गुलजार हुआ पुंज, बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट ट्रेलर जारी, फिल्म में महेश मांजरेकर, जयाप्रदा, जरीना वहा, विक्रम कोचर की अहम भूमिका। नई फिल्म अल्फा का प्रोमो लॉन्च, 3 जुलाई को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी, फिल्म की आज से एडवांस बुकिंग। फिल्म तेरा यारू में का दूसरे गाने तुम ही से प्यार है रिलीज, 24 जुलाई को सिनेमाघर में देगी दस्तक। देहरादून में बाबा नीम करौली पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के देश भर में सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया। आज से इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का होगा आगाज, भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 T20 मैचेस। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजर, तिलक वर्मा है टीम के उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें, आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में हिस्सा।
1: ईरान के प्रमुख वार्ताकार खालिद बाफ ने लेबनान में लड़ाई खत्म करने के लिए संयुक्त कमेटी गठित की बात कही, ईरान अमेरिका और लेबनान होंगे इसमें शामिल। इसराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिण लेबनान का दौरा किया, हिजबुल्ला का खतरा खत्म होने तक दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना ने बने रहने का ऐलान किया। नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरे गाजी और इसराइल को अलग थलग करने की नीति को खतरनाक बताया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जन्म सिद्ध नागरिकता पर रोक लगाने की कोशिश को खारिज किया, 6-3 से फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के निर्देश को संविधान का उल्लंघन सीधा बताया। यूक्रेन के ज़ापोरिज़्या पर रूसी ग्लाइडेड बम हमले में 2 लोगों की मौत, क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक इसमें कम से कम 15 लोग घायल हुए।
0: और बात केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की, इन अटकलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई, इसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री इस बैठक में उन्होंने मंत्र दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ईज ऑफ लिविंग का और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन भी किया गया। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र हैं जो मंत्रिमंडल विस्तार में दिख सकते हैं?
3: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
4: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
5: जनता की आकांक्षाएं हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
3: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: तो मोदी कैबिनेट में आखिर बदलाव क्या होगा, कौन अंदर होगा, किसे बाहर किया जाएगा, क्या पाला बदलने वालों की भी लॉटरी खुलेगी और पुरानों पर भरोसा दिखेगा या नयों को मौका मिलेगा, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
3: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो NCPI नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
6: के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके NDA के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
3: TMC के बागी सांसद 20 हैं, जिनकी NCPI इस वक्त NDA को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
4: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। TMC के 20 बागी सांसदों ने NCPI में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर NDA को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
3: तो क्या लीडरशिप साफ ना होने वाला सियासी संकट केजरीवाल का साथ छोड़कर राज्यसभा में बगावत करके BJP में शामिल हुए राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों पर भी रहेगा?
7: आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे, या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें।
3: लेकिन जो सांसद राघव चड्ढा के साथ टूट कर आए उनको लेकर भी प्रश्न यही है कि इनका लीडर कौन है, कौन बड़ा है जिसे जगह मंत्रिमंडल में अगर देनी हुई तो दे दी जाएगी।
4: स्वाति मालीवाल ने राघव चड्ढा के साथ आए सांसदों से पहले ही अपनी लाइन लेंथ तय कर ली थी। ऐसे में कहा नहीं जा सकता कि राघव चड्ढा ही सबके नेता हैं। अब देखना यह है कि केजरीवाल का पाला बदलने वालों में किसको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये सवाल अभी भी कायम रहने वाला है।
3: इस बीच 6 चेहरे और देख लीजिए जो जून के महीने में पलटी मार चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी छोड़कर शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हुए, जिनकी पार्टी की ताकत बढ़ने पर मुहर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक लगा चुके हैं।
5: पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है।
3: खुद बगावत करके सत्ता मजबूत पाने वाले एकनाथ शिंदे की ताकत को और बागियों ने बढ़ा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में क्या शिंदे के खाते में नए मंत्री पद वाली ताकत बढ़ेगी?
4: शिंदे शिवसेना के अब 13 सांसद हो चुके हैं जो जेडीयू से ज्यादा हैं। मंत्री परिषद में जेडीयू के कोटे से एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। सवाल यह है कि शिंदे की पार्टी का कोटा क्या बढ़ाया जाएगा? अगर बढ़ाया जाएगा तो पुराने सांसदों में से क्या किसी को जगह मिलेगी, या फिर नए बागी जो सांसद शिंदे ग्रुप में शामिल हुए हैं उनको जगह मिलेगी? इस पर अभी धर्म संकट बना हुआ है।
3: एनडीए के बड़े सहयोगी दल का मंत्रिमंडल में अभी हिस्सा देखें तो जेडीयू से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। टीडीपी से मंत्री 2 हैं, एक कैबिनेट और एक राज्य। शिवसेना से केवल एक मंत्री है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो क्या पुराने सहयोगियों की पावर मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
4: टीडीपी और जेडीयू भी चाहेंगे कि कैबिनेट विस्तार में मंत्रिपरिषद में उनका कोटा बढ़े। अजीत पवार की पार्टी भी चाहती है कि मंत्रिपरिषद में उनको जगह मिले। इन सभी सवालों को लेकर चर्चा चल रही है। चुनौती ये है कि पुराने साथियों को ज्यादा मौका दिया जाए या फिर नए साथियों को।
3: अब तक मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुए तब बीजेपी खुद अपने दम पर बहुमत वाली सरकार चलाती आई। सहयोगियों को सम्मान और पद जरूर दिया गया, लेकिन अब की बार एनडीए सरकार का वो मंत्रिमंडल विस्तार है जहां सहयोगियों की सियासी ताकत भी बीजेपी के लिए जरूरी है। ऐसे मंत्रिमंडल फेरबदल में क्या चुनौती पुराने साथी बनाम नए साथी के बीच सामंजस्य बनाने की भी होगी? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर एकजे द नंबर 1 कोरियन। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
8: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
9: TuneIn has got your favorite podcast. From sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the 3 little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
10: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: इन एसोसिएशन विद
13: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
12: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
14: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
15: हमने तब भी सवाल किया था,
16: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
15: हम आज भी सवाल करते हैं,
16: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
15: ऑपरेशन अग्नि,
16: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
15: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।

0: 36 बरस बाद जागी है इंसाफ की उम्मीद। 36 बरस बाद कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा। जी हां, जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के 36 साल पुराने अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले को सुलझा लिया है। टाडा कोर्ट में 700 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर कर दी गई है।
1: कोर्ट में जो है ट्रायल होना है, यानी कि कोर्ट में अब ट्रायल होगा, उसके बाद ही जो है निर्णय होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो 5 अभियुक्तों को नामजद किया गया है इस चार्जशीट में, जिसमें JKLF का खूंखार आतंकी कमांडर यासीन मलिक भी शामिल है। और SIA ने साफ तौर पर कहा है कि यासीन मलिक ही इसमें मुख्य अभियुक्त है। और जो इस पूरे मामले में जो 5 अभियुक्तों के नाम रखे गए हैं, उनमें से 3 जो है उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। एक आतंकी जो है वो एब्सकॉन्डिंग है, यानी कि वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भाग गया था, वो वहीं पर छिपा हुआ है। और यासीन मलिक जो है इस समय तिहार जेल में है।
0: 18 अप्रैल 1990 को श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी स्किम्स परिसर के पास से JKLF के आतंकवादियों ने स्टाफ नर्स सरला भट्ट का अपहरण कर लिया था। अपहरण के बाद सरला से मारपीट और गैंग रेप किया गया। इसके बाद श्रीनगर की उमर कॉलोनी यानी मालबाग में ऑटोमेटिक राइफल से गोली मारकर सरला की हत्या कर दी गई। डाउनटाउन श्रीनगर में उनकी क्षत विक्षत लाश मिली थी।
1: SIA ने जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किया, और वो क्या था? वो था इंडिया टुडे आज तक ग्रुप का जो न्यूज ट्रैक था 1990 में, जो उस समय न्यूज ट्रैक के पत्रकारों ने जो रिपोर्टिंग की, उसका एविडेंस सामने रखा गया। और खासतौर पर जो JKLF का तबका जो आतंकी कमांडर था फारूक अहमद डार उर्फ बिटा कराटे, उसका जो इंटरव्यू न्यूज ट्रैक ने किया था, वो वीडियो भी अदालत में पेश किया गया है। और इस वीडियो में फारूक अहमद डार ने साफ तौर पर कबूला था कि उसने 20 कश्मीरी पंडितों की निर्मम हत्या की थी। अब कश्मीरी पंडित समुदाय की मांग है कि एक व्यापक तौर पर सभी मामलों में जांच होनी चाहिए, ताकि वो तमाम दोषी जो है जिन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के ऊपर अत्याचार किया, उनको सजा मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट तिलकराज शर्मा के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र में पहुंचा आस्था। QR कोड वाले बक्से में अभिषेक और अविनाश शुक्ला वॉशरूम में ले जाकर चुराते थे पैसे। पूछताछ में हुआ खुलासा।
1: एक साल में राम मंदिर चढ़ावा में 50% की गिरावट पर SIT की नजर। पूछताछ में चोरी का कबूलनामा। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की चेकिंग। SIT को एक्स्ट्रा 15 दिन का समय।

0: रुपए तक घटी, 5 किलो का छोटा सिलेंडर सस्ता।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी हादसा, 5 की मौत।
0: अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ, 3 जुलाई को कैंप से रवाना होंगे भक्त, जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।

0: और अब बात अयोध्या में चढ़ावा चोरी मामले की करेंगे, जिसमें हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खबर यह है कि पुलिस ने जेल जाकर 8 आरोपियों से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध कबूल लिया है।
1: अब जांच में ट्रस्ट के 3 बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर भी बड़े खुलासे हो रहे हैं, खासकर अनिल मिश्रा को लेकर, जिनसे नियुक्तियों के संबंध में बहुत सारे गंभीर उन पर आरोप हैं, क्योंकि नियुक्तियों में अपनी मर्जी उन्होंने चलाई, अपनी पसंद के लोगों को पदों पर भर दिया। लेकिन बड़ा खुलासा आज तक ने किया है। आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव उस रहस्यमय योग सेंटर पर पहुंचे जहां अविनाश मिश्रा ठहरता था। वहां उन्हें एक रहस्यमय बक्सा मिला जिसके बारे में शक यह है कि वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ हो सकता है।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जांच तेजी से बढ़ रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद 8 आरोपियों को जेल भेजा गया था। इसी से जुड़ा प्रमुख आरोपी अविनाश शुक्ला कौशलपुरी में एक प्रतिष्ठित योग केंद्र में अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था।
1: आज तक जब योग केंद्र पर पहुंचा तो यहां पर एक रहस्यमय बक्सा पाया जिस पर राम राज्य कोष और राम राज्य प्रशासन के साथ पेटीएम का एक QR कोड चिपका हुआ था, लगा हुआ था। आज तक ने अपने पेटीएम से उस QR कोड को स्कैन किया, राम राज्य कोष में पैसा जाने का ऑप्शन भी उसमें दिखाई दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर यह बक्सा यहां पर क्या कर रहा है? क्या पुलिस ने रख दी इसी बक्से से बरामद की, और क्या यह बक्सा राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है?
0: आपको बता दें कि 5 जून को जब चढ़ावा चोरी की पहली कड़ी सामने आई, उसी रात राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इशारे पर पुलिस ने योग केंद्र पर छापेमारी की। वहां झोला भरकर धनराशि बरामद की गई, उसके साथ ही ये बक्सा भी।
2: कुछ शाम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहां हो रही है, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से यहां पर चीजें रही हैं। आपको हम खास तस्वीरें दिखा रहे हैं उस योगा केंद्र की जहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी और कुल मिलाकर ये पूरा एक्शन यहां पर हुआ था। यहां पर पहले आपको दिखा दें तस्वीरें जहां पर योगा सिखाया जाता था। ये वो जगह, वो स्थान है जहां गद्दे पड़े हुए हैं, जहां पर योग सीखते थे, सिखाते थे। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकलकर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको एक सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है। जो जानकारी फिलहाल मिली है वो ये सामने आई है कि ये बक्सा उस वक्त इस्तेमाल होता था जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर जो है एक डोनेशन जो कैंप स्टार्ट हुआ था वो लिया जा रहा था। लेकिन सच्चाई क्या है इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, आप अगर देखेंगे तो ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ के लोगों के। ये अभिषेक शुक्ला यानी कि अविनाश शुक्ला का भाई है जो कि पदाधिकारी इसमें है श्री राम जन्मोत्सव समिति का, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जहां पर देखिए जब पुलिस की टीम यहां पर आई है जांच पड़ताल करने के लिए तो कई आपको ये SBI के कार्ड्स हैं, SBI की बुकलेट्स हैं, पासबुक्स हैं, यानी कि जो बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं वो भी खंगालने का प्रयास किया गया था। जो अन्य डॉक्यूमेंट्स आपको मैं दिखाता हूं यहां पर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, तमाम चीजें, मतलब कुल मिलाकर जो है सारी चीजें जो है खंगाली यहां पर गई हैं और कई और डॉक्यूमेंट्स जो है जो खंगाले गए हैं ये सब देख सकते हैं आप यहां पर। तो कुल मिलाकर पुलिस ने पूरी तफ्तीश की है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो इस बक्से को लेकर है। और 5 लाख की रिकवरी कहां से हुई, इस बक्से में क्या है या इस बक्से में क्या था, फिलहाल ये लॉक्ड है। लेकिन आप देखें, लेकिन ये जो राम राज्य कोष यहां पर लिखा होता है ये साफ बताता है कि कितना एक्टिव अविनाश शुक्ला जो इस वक्त जेल में है वो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि एक योगा सेंटर जहां पर वो रहता था उसका भाई अभिषेक बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा है और योग सीखता था, वो अपने भाई को 1.5 साल पहले यहाँ पर लाया, तो आखिर यहीं पर रहकर ये सारी चीजें की गई। और आप अंदाजा लगाएं श्री रामचंद्र की आस्था को लेकर जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया उस पैसे को यहाँ स्टोर किया गया। हालांकि इसमें जो योगा कर्मी है यहाँ सिखाने वाले हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको इस बारे में मालूम नहीं था, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अविनाश शुक्ला कैसे यहाँ पर ये सारी चीजें करता रहा और नजरों से पुलिस की बचा रहा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है विचलित करने वाले खुलासे हो रहे हैं। मंगलवार को पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की, शुक्रवार को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, करुणेश और अवनीश शुक्ला को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पुलिस ने मंगलवार को जेल जाकर इन आरोपियों से पूछताछ की।
0: सूत्रों के मुताबिक सबसे अधिक बरामदगी अविनाश शुक्ला के घर से हुई, इसीलिए उससे लंबी पूछताछ हुई। कहा यह जा रहा है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल लिया है और पूरी डिटेल बताई कि चोरी को कैसे अंजाम दिया गया, किस तरीके से पूरा लिंक था, कहां पर पैसे छुपाए जाते थे। चढ़ावा चोरी को लेकर उन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया है।

0: भाई। भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
1: भाजपा का नाम भाचा पा नाम रख देना चाहिए।
2: लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी बाबर जनता पार्टी हो गई।
0: अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है, अभी प्रभु श्री राम और भी पोल खोलेंगे। कौन कौन लोग सामने?
3: राम मंदिर में कैसे होती थी चढ़ावे की चोरी? कैसे काउंटिंग रूम से उड़ाई जाती थी रकम? कैश रूम से चोरों तक कैसे पहुंचती थी नकदी? चोरी के चक्रव्यूह में कौन कौन चेहरे? चढ़ावा चोरी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। राम भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले ये चेहरे अब जेल की सलाखों में हैं। चंदा चोरी का ये गिरोह पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, लेकिन इनके कारनामों का खुलासा खलबली मचा देने वाला है। जेल में बंद इन आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी की इस कहानी की तमाम परतें खुद ब खुद खुलती जा रही हैं। आज तक को इन आरोपियों से पूछताछ में हुए अहम खुलासों का पता चला है। जरा आप भी गौर कीजिएगा कि ये गिरोह कितनी बेफिक्री से चंदे की रकम पर हाथ साफ करता आ रहा था। पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। बैंक कर्मियों की मिली भगत से चंदे की चोरी होती थी। एक आदमी चोरी करता, बाकी उसे घेर कर खड़े होते। चोरों को पता था कैमरे कहां कहां लगे हैं। कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम दिया जाता। पहले चोरी की रकम बाथरूम में छिपाए जाते, मौका देकर बाथरूम से पैसे निकाले जाते।
4: चोरों के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल बन गया था। वो कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। काउंटिंग करने वाला इन्वॉल्व, जांच करने वाला इन्वॉल्व, मॉनिटरिंग करने वाला इन्वॉल्व, वहीं कंट्रोल रूम देखने वाला भी इन्वॉल्व। यानी कि जब सभी शामिल तो कौन पकड़ेगा और कौन रोकेगा?
3: यानी कि चढ़ावा चोरों के लिए मैदान खाली वाली स्थिति थी। वो बड़े आराम से बड़े मौज में चंदे की रकम मंदिर के भीतर से उड़ाते रहे और मेहरबान ट्रस्ट के पदाधिकारी आंखें मूंदे देखते रहे। चोरी की रकम की बंदरबांट होती रही, आरोपी जमीन मकान जायदाद खरीदते रहे, धरना सेठ बनते रहे। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपियों ने चोरी की रकम से जायदाद करना कबूल किया है। ये भी माना कि उन्हें इतनी जल्दी भंडाफोड़ होने की उम्मीद नहीं थी। चोरी के इस पूरे खेल में ट्रस्ट का किरदार भी सवालों के घेरे में है। पूछताछ में पुलिस को अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर कई अहम बातों का पता चला है। यानी कि आगे हिसाब सबका होना है, पूरे गिरोह पर काज गिरना तय है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
5: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब दान पर जांच कर रही है एसआईटी। 15 दिन की और मोहलत उन्हें मिली है। जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। जांच का दायरा अब इसीलिए और बढ़ाया जाएगा ताकि सभी पहलुओं की गहन जांच हो। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, यह आश्वासन दिया जा रहा है। एसआईटी मामले की निष्पक्ष और व्यापक जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई अब जारी रखेगी।
6: हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस खबर पर लाइव जुड़ गए। समर्थ, अगर एसआईटी को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, इसका मतलब इतना आसान भी नहीं है एसआईटी को 15 दिन के भीतर अपनी डिटेल रिपोर्ट देनी थी। यानी कि मामला बहुत ज्यादा गहरा है।
4: राजीव, मामला बहुत गहरा है और देखिए अभी तक जितनी अरेस्टिंग्स हुई हैं, ये लगातार अयोध्या के साधु संत या ट्रस्ट से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो दबी जबान बोल रहे हैं कि ये केवल छोटी मछलियां हैं, अभी बड़ी मछलियां बाहर ही हैं, बाहर घूम रही हैं। कई ऐसे भी पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, पूछताछ भी हुई है, लेकिन बहुत पुख्ता सबूत जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई अरेस्टिंग आगे पुलिस नहीं कर सकती है। इसी को लेकर SIT चाहती थी थोड़ी और मोहलत मिले, जो मोहलत सरकार की तरफ से दी गई है, यानी कि 15 दिन का अतिरिक्त समय SIT को दे दिया गया है। प्रारंभिक जांच हो चुकी है, जो फाइनल रिपोर्ट पेश करनी है उसके लिए 15 दिन का समय और है। इसमें जो आरोपियों का मनी ट्रेल है या फिर जो संपत्तियां उन्होंने अर्जित की हैं या फिर जो ये भी जो भी डिस्काउंट ये अमाउंट था उससे इन्होंने क्या कुछ खरीदा है, कहां कहां लगाया है, इवन जो UPI पेमेंट्स इनके द्वारा किए गए हैं,
5: मनी ट्रेल वो भी एस्टैब्लिश हो जाएगा। वो आज के डिजिटल दुनिया में बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस बीच समर्थ ये भी आपसे जानना होगा कि जिस बक्से तक आप पहुंचे वहां पर QR कोड की एक मिस्ट्री है, ये QR कोड बक्से पर क्यों लगाया गया?
4: नहीं, देखिए हम लोग उस योगा सेंटर पहुंचे जहां पर जो आरोपी इस वक्त हिरासत में है, अरेस्ट है, वो 1.5 साल रहा है, अविनाश शुक्ला। तो कुल मिलाकर अपने भाई अभिषेक के साथ वो यहाँ रहता था, और जब हम वहां से रिपोर्ट कर रहे थे तो वहां एक बक्सा दिखाई पड़ा जिस पर QR कोड लगा था और उसमें श्री राम मंदिर का कोष था। हालांकि वो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ बक्सा नहीं लगता है, लेकिन जो कोष है यानी कि जो डोनेशन होता है उसका वो QR कोड है। हमने उसको अपने मोबाइल फोन से जब स्कैन किया UPI ऐप से तो उस पर बकायदा वही जो उसके भीतर लिखा हुआ है वही चीज लिख कर आएगी, यानी कि जो मनी ट्रांसफर हो रहा है वो श्री रामचंद्र के कोष में हो रहा है। अब ये कोष कौन चला रहा था, ये पैसा कहां जा रहा था, ये अपने आप में एक सवाल है। हालांकि कई यहां वहां मौके पर मौजूद लोगों ने ये भी कहा कि ये बक्सा यहां काफी वक्त से है और ये तब से है जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर डोनेशन मांगे जा रहे थे। अब सच्चाई किस बात में है ये जांच एजेंसियां बेहतर जानती है, बेहतर बता पाएंगी, लेकिन इतना तो साफ है जिस जगह पर अविनाश शुक्ला जो आरोपी पूरे मामले में है वो 1.5 साल से रह रहा था, उसी स्थान पर जहां वो सोता है उससे महज 6 कदम की दूरी पर एक ऐसा बक्सा पाया जाना जिसमें ताला लगा है और एक QR कोड डोनेशन को लेकर लगा है, वो भी तब पाया जाता है जब इस वक्त गतिविधियां SIT की जांच, पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है।
6: बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चढ़ावा प्रकरण उजागर होने के बाद से मंदिर परिसर में काउंटिंग व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई है। अब पूरी प्रक्रिया CCTV कैमरों की कड़ी निगरानी में कराई जा रही है। बड़ी खबर, CCTV पर लगातार नजर रखी जा रही है। 12 अतिरिक्त कर्मचारियों को अब इसमें लगाया गया है।
5: काउंटिंग कक्ष के प्रवेश और बाहर निकलने वाले हर कर्मचारी की तलाशी ली जा रही है, हर स्तर पर तलाशी हो रही है। ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है, यानी कि जो पहले खामियां थी उन्हें पूरी तरीके से अब दूर कर दिया गया है।
6: पहले जो SOP बनाई गई थी उन SOP का पालन नहीं हो रहा था, क्योंकि चोरी करवानी थी तो वो SOP बनाई तो गई थी लेकिन से पेपर में, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनका पालन भी शुरू हो गया।
5: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा खास तौर पर हैं। पता चला है कि अनिल मिश्रा की नियुक्तियों में जमकर चली, उन्होंने चुन चुनकर अपने लोगों की राम मंदिर में नियुक्तियां कराई हैं।
7: इन तीन चेहरों पर टिकी है चढ़ावा चोरी की पूरी पड़ताल। इन तीन चेहरों को पता है चढ़ावा चोरी की पूरी हकीकत। जांच एजेंसियों के रडार पर तीन बड़े किरदार, चंपत राय महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, इन तीन किरदारों की भूमिका अहम से अहम होती जा रही है। कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तथ्यों को आपको बताते हैं। आरोपी अनुकल्प और लवकुश मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी रहा है। एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मी है और बाकी बचे 5 की नियुक्ति भी ट्रस्ट के किसी न किसी पदाधिकारी की सिफारिश पर हुई थी।
4: सूत्रों की माने तो ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा के सबसे अधिक 100 के ऊपर सदस्य ट्रस्ट में भर्ती करवाए थे, यानी कि उनका दबदबा ट्रस्ट में था और उनके कहने से भर्ती भी होते थे और निकाले भी लोग जा सकते थे। जो जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है उसमें अनिल मिश्रा से जुड़ी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा अनिल मिश्रा की भर्तियों का है उसके मुकाबले चंपत राय और अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आधा भी नहीं है। इस बात से साफ होता है कि कि अनिल मिश्रा की ट्रस्ट में कितनी चलती थी और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें क्या अनिल मिश्रा का भी रोल आने वाले वक्त में सामने आने वाला है, जांच बताएगी।
7: अब तक के खुलासों से साफ होता जा रहा है कि ट्रस्ट को अपनी मर्जी से चलाया जा रहा था। इन तीन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। सेटिंग करने में नंबर वन थे अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जिसको चाहते थे उसको नौकरी दे देते और कोई हो हल्ला भी नहीं होता। मंदिर प्रबंधन के हर एक लेवल पर अनिल मिश्रा ने अपने लोगों को फिट कर रखा था। जब बैंक ने गणना कर्मियों को हटाने की कोशिश की तो अनिल मिश्रा ही सबसे ज्यादा अड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गाज उनके लोगों पर ही गिरेगी।
8: देश को बताऊंगा कि इस सिस्टम ने किस तरह से नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम इस सिस्टम ने किस तरह से भगवान राम के आभूषण, उनके नगदी, उनका खजाना, उनकी रामशिलाएं लूटने वालों को किस तरह बचाया गया है। ये आठ चोरों को पकड़ा आपने, ये गैंगस्टर लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इन देशद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही लोगों को बजाय जेल भेजने के आप बताते हैं बड़े त्यागी हैं।
7: अगर चंदा चोरी का मामला तूल नहीं पकड़ता तो ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठते। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अनिल मिश्रा सीधे सीधे एसआईटी के निशाने पर है। एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में पता चला है। एसआईटी ये भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी। सूत्र बताते हैं कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है जो सामान्य नहीं है। जब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी तो उसमें इसकी कई परतें और खुलेंगी। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
6: तो पूरा ट्रस्ट ही संदेह के घेरे में, और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी जुड़ गए। कुमार अभिषेक, क्या क्या भूमिका रही है, किस किस का नाम किस भूमिका में आ रहा है, ट्रस्ट के किस सदस्य का नाम किस भूमिका में है चंदा चोरी में?
9: देखिए राजीव, चूंकि आठ जो आरोपी है वो जेल भेजे जा चुके हैं, एक एक करके सबसे पूछताछ होनी शुरू हो चुकी है। लेकिन जो तीन लोग बाहर हैं, खास करके चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, अब इनकी भूमिका की जांच चल रही है। इनसे पूछताछ हो चुकी है, इनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। चंपत राय को पूरे इस महासचिव होने के नाते पूरे परिसर या यूं कह ले राम मंदिर का सारा प्रबंधन उनके जिम्मे था। लेकिन अनिल मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि जो दान की पूरी प्रक्रिया है, दान का को की राशि गिनने वाले, बैंक ले जाने वाले, इसके अलावा जो प्रबंधन में लगे हुए जितने कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति इन्होंने या इनके रिकमेंडेशन पर ही हुई। तो चंपत राय के बाद जो सबसे बड़ी भूमिका थी वो अनिल मिश्रा की थी, और अनिल मिश्रा के जो करीबी हैं, कहा जा रहा है कि उनकी बड़ी तादाद में भर्तियां की गई। ठीक है, मंदिर में बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, लेकिन जब ये मामला खुल करके आया है तो अब इसकी जांच शुरू हो गई है कि इसमें किन किन लोगों के कौन कौन से भर्ती किए हुए लोग थे।
5: तीन और मुख्य नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि फौरी तौर पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने इस्तीफा जरूर दे दिया है। इस बीच राम मंदिर में काम कर रहे 12 कर्मचारियों से पुलिस ने घंटों पूछताछ की और पूछा कि उन्हें भनक क्यों नहीं लगी। तो वहीं पुलिस अभी तक चढ़ावा प्रकरण में 26 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है।
6: चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस एक्शन भी ले रही है, पूछताछ भी कर रही है। संदेह के घेर में कर्मचारी हैं। अभी 12 कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की है और सवाल यही था कि चोरी की भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस इस पर हैरान है और अब तक 29 लोगों के बयान भी इसमें दर्ज किए गए।
5: 1:11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

आयुष मलिक के खिलाफ बड़ी साजिश हुई थी। ये साजिश थी 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति हड़पने की, उसके बिजनेस पर कब्जा जमाने की। शामली के मलिक परिवार का आयुष सॉफ्ट टारगेट बन गया था। उसे साजिश में फंसाने के लिए गिरफ्तार आरोपी चांदनी और उसके परिवार ने जाल बिछाया। परिवार ने चांदनी को आगे कर दिया। पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी मौके की तलाश में जुटी रही और इस साजिश में चांदनी के पिता इस्लाम कुरैशी और भाई भी मदद करते थे। साजिशन चांदनी को पहली बार मौका मिला 2018 में। आरोपों के मुताबिक उसी साल आयुष से चांदनी पहली बार मिली, तभी से वो संपत्ति हड़पने के लिए संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाने लगी। आयुष के धर्मांतरण और निकाह की साजिश कैसे आगे बढ़ी, इसकी कड़ियों को भी समझ लीजिए और जान लीजिए। दरअसल आयुष शामली में अपने मेडिकल स्टोर संभालता रहा है। उस मेडिकल स्टोर पर गिरफ्तार चांदनी का भाई आस मोहम्मद भी काम करता था। आस मोहम्मद को पता था कि आयुष अकूत संपत्ति का मालिक है। तभी 2018 में आयुष के पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसी के इलाज के सिलसिले में वो स्थानीय अस्पताल पहुंचा। उस अस्पताल में ही बतौर फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी ड्यूटी कर रही थी। फिजियोथेरेपिस्ट के बहाने चांदनी कुरैशी आयुष मलिक से मिली और उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी, उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। चांदनी जिम ट्रेनर भी थी, तो दोनों की मुलाकात का सिलसिला आने वाले दिनों में जिम में भी जारी रहा। समय बीतता रहा, नजदीकियां बढ़ती गई, अब बात निकाह तक आ गई। आरोपों के मुताबिक 5 साल की दोस्ती के बाद 2023 में चांदनी का परिवार आयुष को लेकर दिल्ली पहुंचा था। दिल्ली में ही आयुष मलिक को हिंदू से मुस्लिम बनाया गया था। उसे मोहम्मद अली के रूप में नई पहचान दी गई। लगे हाथ

0: चांदनी से उसका निकाह करा दिया गया। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को कोई निकाह नामा नहीं मिला था। आयुष मलिक अली मोहम्मद बन चुका था। जब परिवार ने पुलिस से शिकायत की थी तो उसने आज तक से खास बातचीत में बताया था कि वो पाकिस्तान के मौलाना की तकरीरें भी सुनता था। और शामली में धर्मांतरण के इस मामले के खुलासे के बाद से हड़कंप मच गया था। अब परिवार वालों ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पुलिस ने SIT गठित की थी जिसकी तफ्तीश अब तक जारी है। दिल्ली में आयुष का धर्मांतरण और निकाह कराने वाले मौलाना की तलाश तेज है। माना जा रहा है कि फरार मौलाना अंडमान या चेन्नई में कहीं छिपा हुआ है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र में पहुंचा आज तक क्यूआर कोड वाले बक्से से चुराते थे पैसे। चंपत और अनिल मिश्रा के खाते की चेकिंग, एसआईटी को एक्स्ट्रा 15 दिनों का समय। नायरा एनर्जी के 7000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी सस्ता हुआ। पुणे मर्डर केस में आरोपी चेतन को किले में ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। नया खुलासा, चेतन को पहले से था सिया पर शक, सगाई के बाद कई बार की शिकायत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के बाद भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट, 5 की मौत। अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। 3 जुलाई को कैंपस से रवाना होंगे भक्त। जमीन से आसमान तक भक्तों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। और शुरुआत राजस्थान के दौसा से आए एक दर्दनाक रिपोर्ट से करते हैं। आज तड़के राजस्थान के दौसा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ और इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है, 24 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक बस के बस जो है बड़े ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस बस में आग लग गई। पुलिस के मुताबिक 5 लोग इसमें जिंदा चल गए, जबकि 2 लोगों के सिर में गंभीर चोट आई है और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई। एक व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान जान चले गई। हादसे की शिकार बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी, लेकिन तभी एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है। हादसे का मंजर भयानक था, खौफनाक था। आज तक संवाददाता शरद कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2: बस के अंदर से बस की हालत क्या है आप देखिए। यहाँ पर ड्राइवर बैठता है और ड्राइवर के बैठने की जगह किस तरह से पूरी की पूरी बस पिघल गई है, और इस तरह से जितने भी सीट हैं या जो भी फोम था वो सब पिघल गया है, बस लोहे लोहे बचे हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए ये सारे सिगरेट के आपके पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस मलबे में कि कहीं कोई कुछ बचा तो नहीं है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी सर्च का काम चल रहा है और पूरी की पूरी बस जो है जल गई है। बताया जाता है ये एसी की जो जगह थी वहीं पर आग लगी है, और उसके बाद ये आग नीचे की तरफ आई है, और इतनी तेज आग थी कि महज 10 मिनट के अंदर कहा जा रहा है कि पूरी की पूरी बस जो है वो खत्म हो गई है। क्या खोज रहे हैं आप?
3: कोई देख रहे हैं सर, कोई पार्ट्स वगैरह कुछ कोई रह गया हो?
2: अच्छा,
3: कोई और कोई
2: तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कोई पार्ट्स रह गया हो उसका भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बस में कुछ भी नहीं बचा है, और एसी में ब्लास्ट की खबर कही जा रही है। प्रथम दृष्टया जहां पर कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से इस तरह से आग लगी है।
0: भयानक मंजर था। बस में आग लगी तो जो लोग एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे उन्हें खुद समझ में भी नहीं आए। उनकी आंखों के आगे ये मुसाफिर जलते चले गए। चश्मदीदों ने क्या देखा उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं।
4: लगभग 2:30 से 3 बजे के लगभग ये घटना हुई। एक तेज धमाका की आवाज हमको सुन के हम यहाँ पर दौड़े तो क्या नाम से ट्रक बस वालों को झपकी आने से ट्रक के ठकोरा दिया। ठकोरा देने से ट्रक को धकेल के डिवाइडर के बीच में ले आया।
5: बस वाले ने ट्रक को
4: टक्कर मारी है, और लगभग 5 मिनट में आग को काबू नहीं कर पाए। 5 मिनट में बस धधक हो गई।
5: 5
4: मिनट में बस धधक निकाले तो सवारियों को लगभग 8 से 9 लोग लगभग जिंदा जल गए, और
5: 8 की पुष्टि हुई है।
4: हाँ,
5: लेकिन ये किस तरह से पीछे से आ रही थी?
4: ये पीछे दिल्ली की तरफ से बस आ रही थी,
5: और बस आगे चल रही थी,
4: पीछे चल रही थी, पीछे ट्रक ट्रोला आगे चल रहा था। ट्रोला को टक्कर मारी बस ने
5: जबकि आने से। हाँ,
0: आज ये लोग एक और एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, और ये खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव की है जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, इसमें 2 बच्चियां भी शामिल हैं। हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे के शिकार कार सवार गोरखपुर से मथुरा की ओर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक बिहार नंबर की स्लीपर बस हरियाणा से बिहार जा रही थी। अचानक बस उन्नाव के लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर पर चढ़कर दूसरी ओर जा गई और अर्टिगा कार से टकरा गई, जिसमें 12 फीट ये नीचे जा गिरी। बस की टक्कर से कार सवार 9 लोगों में से 5 की मौत हो गई।
6: उत्तर प्रदेश की चर्चा एक्सप्रेस वेज के लिए हो रही है, यानी कि इसे एक्सप्रेस वे का प्रदेश कहा जाने लगा है, लेकिन ये एक्सप्रेस वे मौत के एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं। न जाने कितनी मौतें इन एक्सप्रेस वेज पर हर रोज हो रही हैं। पिछले अगर 24 से 36 घंटों की बात की जाए तो 2 बड़े हादसे मथुरा एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुए हैं और इसमें मरने वालों की तादाद दर्जन भर से ज्यादा पहुंच चुकी है। आज सुबह अर्टिगा जो कार है वो वॉल्वो बस से टकरा गई, 7 लोगों की मौत, 12 घायल। कल एक बस एक ट्रेलर से टकरा गई और उसमें 5 लोगों की मौत और 19 घायल हो गए। हर आए दिन ये एक्सप्रेसवे मौत का एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं।
0: 12:12 रिपोर्टर में अब अगली खबर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना को लेकर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन और दिए गए हैं। 15 दिनों का अतिरिक्त समय, जांच का दायरा अब और बढ़ाया जाएगा ताकि सभी पहलुओं की जांच गहनता से हो सके। अयोध्या से एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। अयोध्या के योग केंद्र में एक रहस्यमय बक्सा मिला है। बक्से में राम राज्य कोष के नाम का QR कोड बना हुआ था। चढ़ावा चोरी केस में आरोपी अविनाश शुक्ला इसी केंद्र में रहता था और इस बीच जेल में कल रात को अविनाश शुक्ला और अन्य आरोपियों से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की बात कबूल कर ली है।
7: अयोध्या चंदा चोरी मामले में कल आरोपी अविनाश शुक्ला की जेल में पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की है। गहन पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। अविनाश ने सूत्रों के मुताबिक पूरा मोडस ऑपरेंडी बताया है और बताया है कि किस तरीके से अंदर काउंटिंग के दौरान गुटबाजी कर चोरी होती थी, कैसे सीसीटीवी से बचकर ये सभी लोग बाथरूम में पैसा ले आते थे और फिर धीरे से कुछ और लोग इन्वॉल्व होकर उस पैसे को बाहर ले आते थे। एक सीरीज में ये काम काफी वक्त से हो रहा था। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी मिल रही है कि यह केवल छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां अभी भी खुली घूम रही हैं और पुलिस की नजर अब उन बड़ी मछलियों पर है, क्योंकि सरकार का साफ निर्देश है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। SIT भी किसी भी क्षण अयोध्या आ सकती है। यहां आने के बाद, तफ्तीश करने के बाद, बैंक डिटेल्स, मनी ट्रेल सब कुछ खंगालने के बाद SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपने वाली है, जिसके बाद बड़ा एक्शन इस पूरे प्रकरण में हो सकता है।
0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बैलेंस शीट भी सामने आ गए है। पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में चढ़ावा में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राम मंदिर के चढ़ावे की बैलेंस शीट के मुताबिक अप्रैल 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक लगभग 82,78,00,000 का चढ़ावा चढ़ा। ये चढ़ावा अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक चढ़े चढ़ावे से 74 करोड़ कम है। 2024-2025 में 157 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। और पूरी खबर बता रहे संवाददाता सिमर चावला।
8: राम जन्मभूमि ट्रस्ट के चढ़ावे में आई गिरावट को लेकर पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक 2024-25 में ट्रस्ट को 157 करोड़ रुपए का चढ़ावा मिला, जिसके बाद अगले 11 महीनों में यह चढ़ावा मात्र 82 करोड़ रुपए ही रह गया। कुल 50% की गिरावट देखी गई, जिसके बाद पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या यह कमी श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट की वजह से हुई या फिर राम मंदिर के निर्माण के शुरुआती दौर में अधिक भीड़ और श्रद्धालुओं के उत्साह की वजह से ज्यादा चढ़ावा आया। फिलहाल पुलिस बैंक रिकॉर्ड्स, CCTV और कैश कलेक्शन सिस्टम की गहन जांच कर रही है और साथ ही साथ डोनेशन रजिस्टर और बैंक कलेक्शन का भी मिलान किया जा रहा है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यह कमी या कथित गड़बड़ी का आखिर कारण क्या है।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट वाराणसी से। वाराणसी की दाल मंडी में चल रहे डेमोलिशन ड्राइव में एक नया मोड़ आया है। सड़क चौड़ीकरण के लिए जिन मस्जिदों को हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, उनमें से कुछ मस्जिदों को मस्जिद से जुड़े हुए लोग खुद ही तोड़ते नजर आए। दाल मंडी चौड़ीकरण के जद में कुल 6 मस्जिदें हैं। इन पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां हो रही थी, लेकिन अब मस्जिद से जुड़े हुए लोग इन्हें खुद हटा रहे हैं।
9: वाराणसी के मुस्लिम बहुल दाल मंडी में लगातार एक्शन जारी है, जिसके तहत आज बड़ा एक्शन मस्जिदों पर चलते हथौड़ों की तस्वीरों से देखा जा सकता है। और इस चौड़ीकरण की जद में कुल 187 भवन आ रहे थे, जिसमें कुल 6 मस्जिदें भी शामिल हैं, और 6 मस्जिदों में से 5 मस्जिदों पर सहमति बन गई और उनकी रजिस्ट्री भी हो गई, PWD ने उनको क्रैक कर लिया। तो आज 1 जुलाई को मस्जिदों पर हथौड़े कोई और नहीं, प्रशासन नहीं, बल्कि खुद मस्जिद से जो जुड़े जिम्मेदार लोग हैं उनकी सहमति से चलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चौड़ीकरण की जद में मस्जिद का जो अगला हिस्सा है काफी हिस्सा वे आ रहा था। और इस समय हमारी मौजूदगी ठीक चौक थाने के बगल में जो दालमंडी का एंट्री पॉइंट है वहां पर पहली मस्जिद है वहां पर है, देख सकते हैं मस्जिद का नाम मिर्जा करीमुल्ला बेग बताया जा रहा है और लगातार हथौड़ों से कार्रवाई की जा रही है, मैनुअली इस मस्जिद के अगले हिस्से को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा दालमंडी का इलाका है यहाँ चौक इलाके से शुरू होकर नई सड़क तक जाता है और 650 मीटर तक इस पूरी लंबाई को चौड़ा होना है।
0: अब बात करते हैं पुणे में केतन अग्रवाल मर्डर केस की। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर आज चेतन चौधरी को लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया है। ये रिक्रिएशन अहम माना जा रहा है। 2 से 3 हफ्ते पहले सिया को लोहगढ़ किले में ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था।
10: केतन को चेतन और सिया ने जो है लोहगढ़ पर धक्का दिया था और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी लोहगढ़ से 300 से 350 मीटर तक नीचे जो है उसको धकेला गया था। और एक 2 से 3 दिन पहले जो है 2 से 3 दिन पहले जो है सिया का जो है रिक्रिएशन हुआ था और उसके बाद जो है उसको वडगांव सत्र न्यायालय में जो है हाजिर किया गया था और उसके बाद चेतन चौधरी का जो है रिक्रिएशन बाकी था। इसके लिए जो है पुलिस कस्टडी जो है मांगी गई थी और अभी हम देख सकते कि ये जो लोहगढ़ किला है यहाँ से उसको लेके गए हैं। आज सुबह से यहाँ पर पुलिस तैनात थी, कम से कम 25 से 30 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पे तैनात है और ये जो रिक्रिएशन है जो अहम माना जा रहा है और इसके बाद ही जो है अगली जांच होने वाली है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ श्रीकृष्ण पांचाल, लोनावड़ा, लोहगढ़।
0: जुलाई का पहला दिन देशवासियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से सस्ता हो गया है। दिल्ली में प्रति सिलेंडर अब 183 रुपए ये सस्ता होकर 2930 रुपए में मिलेगा। लगातार बढ़ती दरों के बाद ये भाव 3113 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच गया था। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
11: इफेक्टिव 1st of July यानी कि आज से 19 kg के जो ब्लू कमर्शियल सिलेंडर्स है, 5 kg के मिनी सिलेंडर्स जो माइग्रेंट वर्कर्स काफ़ी यूज़ करते हैं अक्रॉस इंडिया, आपने देखा होगा वेस्ट एशिया क्राइसिस के दौरान इनके प्राइसेस जो है कई दौरान बढ़ाए गए थे और उसके प्राइसेस अब कुछ फेजेस में घटाए जाएंगे, ऐसा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का कहना है। आज से जो 19 kg के ब्लू LPG सिलेंडर्स है, कमर्शियल सिलेंडर्स है, वो 2930 रुपीज़ प्राइस्ड है, यानी कि 183 रुपीज़ लगभग इसका कट किया गया है। जो 5 kg के सिलेंडर्स है उनका दाम 13 रुपए घटा है, करीब 808 रुपए तक। इसके अलावा हम कुछ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इंडस्ट्री के सोर्सेज से ये भी जानकारी पा रहे हैं कि ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल या जेट फ्यूल जिसको कहा जाता है, उनके डोमेस्टिक प्राइसेस में भी कट्स या स्लैश आपको दिखाई देंगे।
0: राहत की इस खबर के बीच में आपके काम की एक और खबर, पासपोर्ट से लेकर आधार तक आज नियमों में हुए हैं कई बदलाव और इस पर और ज्यादा जानकारी देने आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल।
12: बैंकिंग सर्विसेज में आज से एक बड़ा बदलाव किया गया है। बैंक्स एज अ कस्टमर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर किसी ने आपको कोई गलत पॉलिसी बेची है तो अब उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। बैंक्स कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचाया जा सके। दूसरी बात करेंगे हम आधार की। अगर आप अपना ईमेल आईडी अब अपडेट करना चाहते हैं तो 31 दिसंबर तक आप फ्री में उसे कर सकते हैं। पहले इसके लिए 75 रुपए लगते थे। तीसरी बात हम करेंगे आईटीआर की। आईटीआर को अगर आपको आईटीआर 1 और आईटीआर 2 दोनों को अगर आपको सबमिट करना है तो 31 जुलाई तक कर दीजिए। अगर आप 31 जुलाई की बात करते हैं और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको पेनल्टी लगेगी 5000 रुपए की, और अगर 5 लाख रुपए से कम है आपकी इनकम तो 1000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप पासपोर्ट रिन्यूअल कराना चाहते हैं, पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब वो थोड़ा सा महंगा हो जाएगा क्योंकि आज से पासपोर्ट सर्विसेज का रेट भी बदल रहा है। और अगर आखिर में गाड़ियों की बात करें तो कुछ कंपनियों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अपना जो रेट है वो बढ़ाने वाली है। अगर हम किया की बात करें तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2% उनके हर मॉडल के ऊपर रेट बढ़ेगा। टाटा ने भी कहा है कि उनके इंजन के ऊपर लगभग 1.5% तक रेट बढ़ सकता है।
0: और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको देते हैं, भारत और पाकिस्तान के 100 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को साझा पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों से शांति, सामान्य स्थिति, संवाद और सहयोग की बहाली की दिशा में सार्थक और सतत कदम उठाने की अपील की गई है। भारत पाकिस्तान की राजनीतिक हस्तियां समेत कुल 117 लोगों ने यह अपील की है। इन नामों में भारत की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, आरजेडी सांसद मनोज झा, पूर्व टीएमसी मंत्री और वर्तमान एजेयूडी नेता हुमायूं कबीर, भारत के पत्र पर 61 हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची में ये शामिल है। और भी बहुत सारे नाम इसमें हैं जिन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं और दोनों ही देशों के बीच में स्थिति सामान्य करने की वकालत की है। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी भट्ट, कुछ नाम तो हमने बताया, कुछ और बड़े नाम बताए, कौन कौन है और क्या एग्जैक्टली मांग की गई है इस पत्र में?
13: जी बिल्कुल राजीव, हम ये खबर ब्रेक कर रहे हैं आज तक पर। दरअसल 117 व्यक्तियों ने भारत और पाकिस्तान से, जिनमें 61 जो हैं भारत से शामिल हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है और कहा है कि जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में उनको सामान्य किया जाना चाहिए, जो उच्चायुक्त हैं उनकी नियुक्तियाँ होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये जो 117 लोग हैं इनमें से 61 जो हैं भारत से हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला है, पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती है, साथ ही में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक है और कांग्रेस के जो नेता रहे हैं मणिशंकर अय्यर, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, साथ ही में जम्मू कश्मीर से ही एक और बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सैफुद्दीन सोज, और इसी प्रकार के बड़े नाम हैं इस सूची में। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है राजीव कि आखिर इस समय में ऐसी मांग क्यों की गई है, जबकि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रायोजित करता है, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन 117 लोगों ने, जिनमें 61 जो है भारत से हैं, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, और मांग की है कि जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में वो सामान्य होने चाहिए और जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो दोबारा बहाल होने चाहिए, जम्मू कश्मीर पर बातचीत होनी चाहिए और दोनों देशों में जो है उच्चायुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए, वीजा वाले इशू पर भी पहल करनी होगी, ऐसी उन्होंने मांग की है इस पत्र में।
0: बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए। 12:12 रिपोर्टर में अब अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली से, जहां आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ 31वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने अपने पिता को सैल्यूट किया, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया।
14: जनरल धीरज सेठ ने 31वें सेना प्रमुख के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। यहाँ साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, आधिकारिक गार्ड ऑफ ऑनर, और अब 31वें सेना प्रमुख के तौर पर वो सेना की कमान संभाल रहे हैं। इससे पहले वाइस चीफ के तौर पर वो साउथ ब्लॉक में उनका कार्यकाल रहा है, लेकिन अब सेना प्रमुख के तौर पर तो करेंगे। और यहाँ पर एक तरह से आप देखें तो ये साउथ ब्लॉक का एक ऐतिहासिक क्षण है, एक तरह से आखिरी गार्ड ऑफ ऑनर्स को कह सकते हैं आप साउथ ब्लॉक के इस प्रांगण में, क्योंकि बहुत जल्द जो सेंट्रल विस्टा प्लान के तहत साउथ ब्लॉक को खाली किया जा रहा है, उसके बाद जो भारतीय सेना का जो मुख्यालय है वहाँ पर आने वाले दिनों में गार्ड ऑफ ऑनर होगा। और जहाँ तक बात जो नए सेना प्रमुख धीरज सेठ, उनके सामने चुनौतियों की बात करें, इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि जारी है और पाकिस्तान के खिलाफ या चीन के खिलाफ जो चुनौतियां हैं उनको लेकर प्रत्येक बड़ी चुनौती इस वक्त देश और दुनिया में जो युद्ध का माहौल है उसमें कैसे स्वदेशी हथियारों के दम पर आने वाले दिनों की लड़ाई को लड़ना है, आत्मनिर्भरता पर कैसे जोर देना है, इसको लेकर उनकी प्राथमिकता होगी। दिल्ली से मंजित नेगी आज तक।
0: अब आते हैं अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार सुरक्षा के सख्त इंतजाम हैं। सुरक्षा इंतजामों पर देखिए हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
15: अमरनाथ की यात्रा को लेकर के बड़े स्तर पर सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। गृह मंत्रालय ने अलग अलग स्थानों पर मीटिंग करके जो तैयारी की है उसके मुताबिक 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां जो बालटाल रूट और पहलगाम रूट में तैनात की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ वैली क्यूएटी के जो कमांडोज हैं वो आप सड़कों पर देख सकते हैं कि सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। ये कमांडोज जो खतरनाक हथियार हैं उससे तो लैस ही हैं, साथ ही अगर किसी भी तरीके की आतंकी घटना होती है तो उससे निपटने के लिए ये तमाम कमांडो जो हैं वो एक्शन में इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं।
0: अगली रिपोर्ट मुंबई से है। मुंबई में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। स्कूल बस पर पेड़ गिरा, इसमें 11 साल के बच्चे की मौत हो गई और इसमें 4 लोग जख्मी भी हो गए।
16: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर है उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहाँ इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया था। कॉन्क्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक्य के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मॉनसून से पहले, दरअसल हर साल मॉनसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क में कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जाँच पड़ताल अच्छे से हो जाए ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे।
0: जम्मू कश्मीर के डोडा से एक बड़ी खबर इस समय मिल रही है जहां पर बादल फटा है। बादल फटने से तबाही मची है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे भी बादल फटने के बाद से बंद हो गया है। डोडा जिले के कलाल गिसर इलाका है जहां पर बादल फटा है, वहीं पर ही घटना हुई है। ये कलाल गिसर इलाके में बादल फटने से तबाही मची है। हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। अचानक फ्लैश फ्लड आया और भारी मलबे के चलते ये हाईवे भी इसके चलते बाधित हुआ है। जनजीवन इसने प्रभावित कर दिया है। ये हम आपको तस्वीर और डरा देने वाली तस्वीर सामने है। जब बादल फटता है तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी एक जगह पर गिरता है, फिर उसके साथ मलबा और तमाम चीज़ें अपने साथ बहा कर ले जाता है और सब कुछ डैमेज तोड़ता फोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। और यही तस्वीरें सामने आई है। भलेसा इलाका इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। अंदरूनी गाँवों को भी जोड़ने वाले कई सड़क मार्ग बताया जा रहा है कट गए हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ मलबा बहा कर लाया है जिससे ये संपर्क टूट गया है। स्थानीय प्रशासन ने रास्ता साफ करने, नुकसान का आकलन करने का काम भी शुरू कर दिया है। लोगों को सलाह इस समय दी गई है कि जब तक हालात काबू में ना आए वो तब तक यात्रा ना करें। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में 12 साथ में पुलिस ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। लुंगी या बरमुडा में ऑटो ई रिक्शा चलाने वाले चालकों को समझाया जा रहा है कि वो पूरे कपड़े पहनकर ही वाहन चलाएं। यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे अनुपम मिश्रा।
17: उत्तर 24 परगना के 12 सात में जब इस पुलिस सर्जेंट ने ये कदम उठाया तो हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही है आजकल। इस सर्जेंट ने जो लुंगी पहने हुए थे, जो हाफ पैंट पहने हुए थे, खासतौर पर दोपहिया और ई रिक्शा जो होता है जिसे टोटो कहते हैं यहाँ पर, वहाँ सबको मना किया, कहा इससे महिलाएं जो हैं वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पाती हैं। और ज़्यादातर जो ड्राइवर्स थे जो ई रिक्शा चला रहे थे या जो दोपहिया वाहन चला रहे थे वो इस बात से सहमत दिखे और उन्होंने इस सर्जेंट से वादा किया कि आने वाले दिनों में वो लुंगी या हाफ पैंट पहनकर, खासतौर पर जो ई रिक्शा होता है कमर्शियल रिक्शा जहाँ पर कम से कम 4 या 5 लोगों को भाड़े पे इधर से उधर पहुँचाया जाता है, वो ऐसा नहीं करेंगे।
0: अब बात करते हैं खेल की, खेल की दुनिया में क्या चल रहा है, इस पर और ज्यादा जानकारी देने संवाददाता नितिन श्रीवास्तव।
18: भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ आज से 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। आयरलैंड से मिली 2 मैचों की हार शायद टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वैभव का डेब्यू आज कराया जाए। और अगर ऐसा है तो देखना यह पड़ेगा कि कौन आज बाहर बैठेगा, क्या वो अभिषेक शर्मा होंगे या फिर संजू सैमसन। लेकिन टॉस के वक्त इंटरेस्टिंग होगा टीम शीट देखना कि वहां वैभव का नाम है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो भारतीय टीम की बैटिंग मजबूत हो जाएगी। ये तो बात रही क्रिकेट की। अब अगर क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों की बात की जाए तो फीफा वर्ल्ड कप में काफी इंटरेस्टिंग रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। कल के मुकाबले की अगर बात की जाए तो नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराया, फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हराया, और सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला मैक्सिको और इक्वाडोर का रहा, जहां मैक्सिको 40 साल के बाद वर्ल्ड कप में किसी नॉकआउट मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। ये मुकाबला 2-0 से मैक्सिको ने जीता, और इसी के साथ एक बार फिर से इस राउंड से आगे बढ़ने की उम्मीदें भी मैक्सिको ने जिंदा रखी हैं।
0: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
19: Akajay, the number one Korean skincare brand.
20: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes, and dive deep with Dan Levitard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
1: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
19: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
21: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
22: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
23: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
24: कुछ तो बात है इस दिल में।
25: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
26: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
27: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
26: अर्ज किया है दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें। वाह,
28: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
29: एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
30: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
31: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
32: सोच बदलो और बैंक भी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जांच तेज, एसआईटी को 15 दिनों का एक्सटेंशन मिला, सभी पहलुओं की विस्तृत पड़ताल जारी। राम मंदिर चंदा घोटाले में नया खुलासा, एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट, एसआईटी की नजर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की भी जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा, मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन की जानकारी मिली। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा के मामले में जांच के बाद काउंटिंग व्यवस्था बदली गई, अब सीसीटीवी निगरानी में पूरी प्रक्रिया, 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सख्त सुरक्षा, काउंटिंग कक्ष में मल्टी लेवल तलाशी और ड्रेस कोड लागू, 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक और बड़ा खुलासा, अविनाश शुक्ला और अभिषेक पर आरोप के बाद से योग केंद्र से निकाले जाने की जानकारी सामने आई। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबियत अचानक बिगड़ी है, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। राम मंदिर से जुड़े कथित घोटालों पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1 बजे कहा कि जानकारी की जांच के बाद अब सार्वजनिक करूंगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासी बयानबाजी थे, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप, क्या राम मंदिर के भी चौकीदार चोर निकले? राजीव राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया, कहा कि धर्म का इस्तेमाल सत्ता और कमाई के लिए इन्होंने किया। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी, पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीदे गए 5 मस्जिदों को संबंधित लोग खुद ही हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की, 6 मस्जिदें परियोजना की जद में है, 52 भवनों पर तोड़फोड़ जारी। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जोरदार उत्साह, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक और तंज भरी सलाह दी कि एसी और पीसी वाली राजनीति का जल्द त्याग करना बेहतर होगा। बिहार विधान परिषद में नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे, जेडीयू नेता निशांत कुमार भी एमएलसी पद की शपथ ग्रहण करेंगे।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
2: Accuje, the number one Korean skincare brand, now in India.
1: यूपी में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। 20,000 करोड़। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया है। रामगोपाल यादव ने कहा कि ये चंदा और चढ़ावा चोरी मामूली नहीं है, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का ही घोटाला है। रामगोपाल यादव ने पूरी जांच को सिर्फ लीपापोती की कार्रवाई करार दिया है।
3: ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी।
1: चढ़ावा चोरी कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे इस शोर गैंग की करतूतों का पर्दाफाश होता जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच और पूछताछ में हुए खुलासों के बाद एक बार फिर एसआईटी जल्द ही अयोध्या आने वाली है। उम्मीद है कि आरोपियों की रिमांड लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी।
4: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपित अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेन देन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
5: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा, ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
4: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है, क्या ये मंदिर प्रशासन का है, और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि डॉक्टर चेतन का योग केंद्र है। यहाँ की प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही अविनाश के भाई अभिषेक को शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
6: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर, और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दे ताकि वो भी कुछ।
5: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
6: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।
4: इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है, उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने की, चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों ने बताया है कि टीम जांच की समीक्षा करेगी, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें कथित गबन की वित्तीय, फॉरेंसिक और डिजिटल विश्लेषण शामिल होगा। माना जा रहा है कि SIT जल्द ही अयोध्या दौरे पर आने वाली है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: यूपी पुलिस ने जिस अविनाश शुक्ला से जेल में जाकर पूछताछ की है, जिसके अयोध्या वाले ठिकाने पर अभी भी मंदिर ट्रस्ट के स्टिकर वाला बक्सा पड़ा हुआ है, उस अविनाश शुक्ला के बारे में और ज्यादा जानकारी यह है कि अविनाश शुक्ला प्रतापगढ़ के महेशगंज थाने के नरियावा बाबूपुर गांव का रहने वाला है। और यह जो कच्चा छोटा सा मकान हम आपको भी दिखाएंगे, यहां पर उसके पिताजी सजीवन शुक्ल का ही ये मकान, देखिए तस्वीर है घर के। इसी घर में पहले अविनाश अपने 5 भाइयों के साथ रहा करता था और सजीवन शुक्ल 14 बीघे की खेती पर गुजारा करते थे। 2021 में अविनाश के बड़े भाई अभिषेक के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी लगी थी, जिसके पास अविनाश फिर रहने के लिए गया था। लेकिन सजीवन शुक्ल के इसी कच्चे मकान से थोड़ी ही दूर पर हाल ही में पक्का एक आधुनिक सुख सुविधाओं वाला एक नया मकान भी इनके बेटों के पास में है। सजीवन शुक्ल बताते हैं कि अभिषेक और अविनाश से बड़े 3 बेटे और बहुएं उस नए मकान में रहते हैं। दरअसल पुलिस की जांच अब आरोपियों के बयान से आगे सबूतों की ओर बढ़ रही है और यही वजह है कि पुलिस ने अयोध्या में 3 बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा को नोटिस भेजकर आरोपियों के खातों की जानकारी मांगी थी। और राम मंदिर ट्रस्ट के खातों में होने वाले लेन देन और जमा होने वाली दान राशि का पूरा ब्यौरा भी मांगा गया था। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के सूत्रों की ओर से हुए कुछ खुलासों के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के सूत्रों से पता चला है कि सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट को QR कोड से मिलने वाले पैसे ही इसमें आते थे, नकद का लेन देन बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं होता था। बैंक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रस्ट को मिले कुल दान का लगभग 10-15% की जो राशि है वो बैंक ऑफ बड़ौदा और PNB के जरिए मिलते थे, बाकी मुख्य बैंकिंग चैनल SBI था। पता चला है कि चंपत राय का बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, जो कुछ साल पहले दिल्ली से ट्रांसफर कराया गया था, लेकिन उसमें बेहद मामूली रकम है। अनिल मिश्रा का भी खाता उसी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, जिसमें ई व्हीकल खरीदने के लिए हाल ही में 20 लाख रुपए का लोन भी लिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अविनाश शुक्ला, टीनू के भतीजे मनीष यादव और लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के खाते की भी जानकारी मांगी थी। बैंक सूत्रों से पता चला है कि अविनाश शुक्ला और मनीष यादव का बैंक में खाता है, सुप्रिया मिश्रा का कोई खाता नहीं है। मनीष यादव के खाते में 1400 रुपए दिख रहे थे और पिछले महीने से कोई लेन देन भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा था। चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ लगातार चल रही है, 12 घंटों से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, 26 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। अब खबर है कि बहुत जल्द अनिल मिश्रा के बयान भी दर्ज करवाए जा सकते हैं, क्योंकि अब तक की पूछताछ में अनिल मिश्रा का नाम कई आरोपियों ने लिया है, जिन्होंने अपनी सिफारिश से दान की गिनती के काम में लोगों को रखा था।
7: चढ़ावा चोरी केस में आरोपियों ने कबूली चोरी, पूछताछ में आरोपियों ने उगले कई राज, अनिल मिश्रा का नाम फिर आया सामने। कोर्ट की इजाजत के बाद पुलिस ने कल जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब 2 घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश से की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गणना संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सबसे अधिक बरामदगी अविनाश के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिली भगत से रकम पार की जाती थी। टिन्नू व बैंक कर्मी चोरी की रकम में हिस्सा लेते थे। चढ़ावा चोरी केस में पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज किया था। शुक्रवार को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और गणना कर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमा शंकर मिश्रा, करुणेश और अविनेश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक जेल में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था। उनको पता था कि कैमरे कहां कहां लगे हैं, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम देते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे, फिर रकम बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से कहीं पर उनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम के इस्तेमाल पर आरोपियों ने जमीन और मकान में रकम खपाने की बात कबूली है। किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा खेल इतनी जल्दी खुल जाएगा। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
1: इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड में चंपत राय के सिर भले ही ठीकरा फोड़ा जा रहा हो, लेकिन दरअसल चोर गैंग की भर्ती करने वालों की जांच अभी बाकी है और अब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का जांच का दायरा बढ़ रहा है। चढ़ावे से आगे मंदिर के प्रबंधन, उससे पहले मंदिर निर्माण और उससे भी पहले ट्रस्ट के नाम जमीन की खरीद फरोख्त तक जा पहुंचे हैं। इस बीच अयोध्या में रहने वाले वालों के लिए ये दो इमारतें चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसमें एक इमारत अनिल मिश्रा की है, जो ट्रस्ट में आने से पहले एक मामूली होम्योपैथी डॉक्टर हुआ करते थे। दूसरा मकान रवि मोहन उर्फ चिंटू तिवारी का बताया जाता है, जिसके बारे में चर्चा है कि वो राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचकर 5 मिनट में करोड़पति बन गए थे। इसमें से चिंटू तिवारी के घर पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे।

0: 5 मिनट का जमीन सौदा और उस सौदे ने करोड़पति बना दिया और उसके बाद का जो मकान है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन सब अब जांच के दायरे में आ गए।
1: हम इस वक्त चिंटू तिवारी की उस प्रॉपर्टी पर मौजूद हैं। आप यकीन माने, ये शीश महल उस चिंटू तिवारी का है जिसने उस वक्त जमीन कुसुम पाठक और उसके पति से एक जमीन 2 करोड़ में ली और 10 मिनट के भीतर वही जमीन टेम्पल ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी, या यूं कहें टेम्पल ट्रस्ट ने वही जमीन चिंटू तिवारी से महज 10 मिनट के अंतराल में 2 करोड़ के बजाय 18.5 करोड़ में खरीदी, जिसमें गवाह बने थे तब के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। अगली तस्वीर है उस आलिशान शीश महल की, आप देखें। आरोप ये भी लग रहे हैं कि उसी पैसे से चिंटू तिवारी द्वारा ये पूरा शीश महल खड़ा किया गया है। अब इसे आलिशान महल का सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि मामला केवल दान पात्र का या दान चोरी का या चंदे चोरी का ही नहीं बल्कि जमीन को लेकर भी बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। हालांकि ये बात भी बता दें कि 2021 में भी जांच कमेटी बनाई गई थी लेकिन कुछ साक्ष्य नहीं मिले थे और ट्रस्ट की तरफ से तब यह कहा गया था कि रजिस्ट्री पहले हो रखी थी और रेट उस वक्त जो था उसके हिसाब से जमीन ली गई थी, लेकिन बड़ा सवाल तब भी यही उठा था, आज भी यही उठ रहा है कि आखिर 10 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कैसे बिक जाती है और उसके बाद इस तरीके के आलिशान शीश महल कैसे कुछ ही साल में खड़े हो जाते हैं। कैमरामैन नीरज कुमार और सहयोगी मयंक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र गोपाल दास, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी, राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज भी कर रही है, निगरानी लगातार रखे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, महेंद्र गोपाल दास की तबीयत बिगड़ी है और चूंकि उम्र दराज भी है ऐसे में उनको मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उनका उपचार इस समय चल रहा है। डॉक्टर की एक टीम है जो निगरानी रखे हुए है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। समर्थ, क्या जानकारी मिल रही है उनके तबियत के संबंध में?
1: देखिए, महंत नृत्य गोपाल दास का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन में। अभी फिलहाल की अगर आप बात कर लें तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। जनवरी के महीने में भी उन्हें मेदांता अस्पताल लखनऊ में भर्ती होना पड़ा था, तब भी उनकी तबीयत बिगड़ी और आज फिर उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो यहां पर उनके शिष्य उन्हें लेकर लखनऊ पहुंचे जहां उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछली दफा जब वो भर्ती हुए थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे थे और आज भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ क्षणों में या आज शाम तक मुख्यमंत्री कुल मिलाकर नृत्य गोपाल दास महाराज से अस्पताल में जाकर मिल सकते हैं और उनका हालचाल जान सकते हैं। उनका लगातार जो ट्रीटमेंट है वो मेदांता अस्पताल में चल रहा है, पहले भी कई दफा वो एडमिट हुए हैं लेकिन समय सही से उपचार उनका हुआ और उसके बाद वो वापस अयोध्या के लिए आए हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी बताऊं तो जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें चाहे सड़क पर आंदोलन की बात हो, कोर्ट कचहरी हो या जितनी भी चीजें रही हैं उनमें नृत्य गोपाल दास का प्रमुखता से रोल रहा,
0: इसीलिए यहां बहुत बड़ा नाम है। समर्थ, आपसे यह भी जानना चाह रहे हैं क्योंकि अभी राम मंदिर ट्रस्ट पूरा का पूरा सवालों में है, तो क्या ये जो आरोप चंदा चोरी के तमाम तरह की चीजें, क्या उनकी सेहत पर इसका तो इंपैक्ट नहीं पड़ा?
1: राजीव, ये देखिए, ये कहना तो बहुत ही जल्दीबाजी होगा क्योंकि ये डॉक्टर्स बेहतर बता पाएंगे कि क्या क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से उनकी उनकी हालांकि उम्र भी आप अगर देखें तो काफी ज्यादा उम्र है और कई बीमारियों से वो ग्रसित हैं जिनका ट्रीटमेंट उनका पहले से चल रहा है, तो ऐसे में ये डॉक्टर्स ही फाइनल वर्ड बता पाएंगे इस मामले में कि आज जब उन्हें भर्ती किया गया है तो उन्हें क्या परेशानी है। जो मेडिकल बुलेटिन मेदांता की तरफ से है वो फिलहाल अभी नहीं आया है, वो जल्दी ही मेदांता की तरफ से रिलीज किया जाएगा जिसमें ये बात साफ होगी कि आखिर किन्हीं कारणों की वजह से नृत्य गोपाल दास को अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि ये बात भी सही है कि वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और उनको भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ट्रस्ट के भीतर ये सारी ही चीजें चल रही थी, उनकी आंख के नीचे सारी ही चीजें चल रही थी क्योंकि उनका तो वो रोल ट्रस्ट में रहा है, चाहे निर्माण की बात हो चाहे आंदोलन की बात हो।
0: बिल्कुल समर्थ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या में जिस तरह से चोरी हुई है उससे यूपी और देश में राम के नाम की राजनीति करने वालों पर बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हुए हैं और अब ये सवाल वो साधु संत भी उठा रहे हैं जिन्होंने अयोध्या से लेकर दिल्ली तक राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने में पीढ़ियां खपा दी। वैसे ही एक संत निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास हैं, उनसे हमारे संवाददाता समर्थ ने बातचीत की, सुनाते हैं आपको।
2: इतने लोग उसमें भर्ती किए गए, वो कौन एजेंसी भर्ती किया इन लोगों के, चाहे तीनू से लेकर के जितने लोग भये, इनको के भर्ती किया के उसमें पुलिस वेरिफिकेशन सबको भया ये कितना इनका कैसा जीवन चरित्र है रहन सहन है कुछ है ऐसा ही भर्ती कर करके जो भर्ती किया वो जाने उनका मैनेजमेंट में चोरी भया है उनका मैनेजमेंट में अव्यवस्था भया है जिसके मैनेजमेंट में भया है वो मैनेजमेंट के हेड इंचार्ज दोषी है बस। अनिल मिश्रा कहिया के साधु रहा क्यों करा के चोर कहते हो साधु कभी तो रहा नहीं साधारण होम्योपैथी के डॉक्टर किसी तरह से घर मकान बन गया जाए तो ब्राह्मण के खाए दो भाई उन लोगों को परेशान न कर। अरे गोविंद गिरी ये क्या है कहिया अयोध्या रहे उनका बाप दादा कब रहा है अयोध्या अब वो कब रहे हैं लेकिन गोविंद गिरी के लिए आकर बैठा दिए सब।
1: आप मानते हैं बड़े नामों की गिरफ्तारी हुई होनी चाहिए जैसे कि बाकियों की हुई
2: सबकी गिरफ्तारी हमको नहीं मानते हैं। आदित्यनाथ ऐसा नहीं है मुख्यमंत्री कि चोरी पर किसी को बख्शेंगे ये हम पेपर के सामने कह रहा वो किसी के दबाव में नहीं आकर के चोरी के विषय में नहीं दबेंगे वो डंडा मरी है इन लोगों पर।
0: बढ़ते आगे आज 1 जुलाई है और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है। इस मौके पर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा है। पार्टी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अखिलेश का जन्मदिन मना रहे हैं। खबर है कि दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में जोशो खरोश के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन इस जन्मदिन के जश्न के आगे एक जश्न मुरादाबाद जिले में भी मनाया जा रहा है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। अखिलेश यादव का यह जन्मदिन मुरादाबाद के सांसद रुचि वीरा अपने समर्थकों के साथ मना रहे हैं। वो भी ठीक उस खबर के बाद जब उनका अपमान करने वाले कमाल अख्तर को अखिलेश यादव ने ठीक अपने जन्मदिन से एक दिन पहले विधानसभा के चीफ व्हिप पद से हटा दिया था। रुचि वीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और यही वजह है कि रुचि वीरा ने आधी रात को ही सबसे पहले अखिलेश यादव का जन्मदिन मना दिया और 51 फीट लंबा बर्थडे केक काटकर अखिलेश यादव को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे डाली। लेकिन इन तमाम बधाइयों से आगे एक दो बधाइयां और भी हैं जो अखिलेश यादव को मिली हैं। इनमें एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बधाई भी चर्चा के लायक है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए प्रभु राम से प्रार्थना की तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बधाई संदेश में अयोध्या मथुरा काशी तीनों तीर्थों के आराध्यों का जिक्र करते हुए प्रार्थना की।
3: आज अखिलेश यादव का जन्मदिन है और सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के जन्मदिन के जश्न में है। कोई केक ला रहा है, पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी दफ्तर में जमे हैं। अखिलेश यादव सुबह सुबह दफ्तर पहुंचे हैं और अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया है। लेकिन जो सियासी बड़े नेता हैं उन्होंने भी बधाई संदेश देना शुरू कर दिया। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही ट्विटर पर अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। मायावती ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जन्मदिन था। अमूमन हर साल अखिलेश यादव उन्हें जन्मदिन की बधाई देते रहे हैं लेकिन इस साल ये बधाई संदेश ट्विटर पर कहीं दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है कि उस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के कार्यक्रम में बोलते हुए टोटी शब्द का इस्तेमाल किया और इशारों में अखिलेश यादव को घेरा था जिससे अखिलेश यादव खफा थे। उन्होंने ट्विटर पर मुख्यमंत्री का जवाब तो दिया था लेकिन कोई बधाई संदेश नहीं। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह ही अखिलेश यादव को बधाई संदेश दे दिया है। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
0: अब समाजवादी सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम मौर्य के बधाई संदेशों को बधाई कम लेकिन सियासी तंज ज्यादा समझ रहे हैं।
4: सर, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आज जन्मदिन है। ट्विटर एक्स पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है लेकिन बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री का जन्मदिन था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से इस तरह का कोई मैसेज नहीं गया था।
5: पता नहीं, इतना ध्यान देते होंगे, मैं जानकारी नहीं देता। हम तो उनके नफरतों के भाषणों से उबर नहीं पाते हैं। क्या बोलेंगे, देख रहे हैं राम मंदिर के पर्व का बोले झूठ फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। अब पकड़े गए तो बोलते हैं हर महीने जाते थे, क्या करने जाते थे।
0: वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
7: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life.

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

काटने की पाकिस्तानी की तड़भपकी के बीच बातचीत की वकालत में आ गया है दोनों मुल्कों के 117 नामचीन लोग। पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए, योग केंद्र पहुंचा आज तक क्यूआर कोड वाले बक्से से चुराते थे पैसे। चंपत और अनिल मिश्रा के खाते की चेकिंग, एसआईटी को एक्स्ट्रा 15 दिन का समय। नायल एनर्जी के 7,000 पंप से पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183 रुपए घटी, 5 किलो का छोटा सिलेंडर सस्ता। पुणे मर्डर मामले में आरोपी चेतन को किले में ले जाकर क्राइम सीन का रिक्रिएशन, नया खुलासा। चेतन को पहले से था सिया पर शक, सगाई के बाद कई बार की शिकायत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त हो गया है नॉर्थ स्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच तेज, एसआईटी को 15 दिन का एक्सटेंशन मिला, सभी पहलुओं की विस्तृत पड़ताल जारी। राम मंदिर चंदा घोटाले में नया खुलासा, एक साल से चढ़ावे में 50% गिरावट पर एसआईटी की नजर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में शिकंजा, मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रूपये से अधिक की जमीन की मिली जानकारी। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा मामले में जांच के बाद काउंटिंग व्यवस्था बदली, सीसीटीवी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया, 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सुरक्षा सख्त, काउंटिंग कक्ष, मल्टी लेवल तलाशी और ड्रेस कोड लागू, 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा, अविनाश शुक्ला और अभिषेक पर आरोप के बाद योग केंद्र से निकाले जाने की जानकारी सामने आई। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबियत अचानक बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। राम मंदिर जुड़े कथित खुलासे पर अरविंद केजरीवाल की प्रेस वार्ता आज 1 बजे, कहा जानकारी की जांच के बाद अब सार्वजनिक करूंगा। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की सियासी बयानबाजी तेज, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप, क्या राम मंदिर के भी चौकीदार चोर निकले? राजीव राय ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले धर्म का इस्तेमाल सत्ता और कमाई के लिए किया जा रहा है। वाराणसी के दाल मंदिर चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी, पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीदी गई 5 मस्जिदों को संबंधित लोग खुद हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की, 6 मस्जिदें परियोजना की जद में, 52 भवनों पर तोड़फोड़ जारी है। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जोरदार उत्साह, कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़, शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची अखिलेश के घर। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान, सभी सरकारी अस्पतालों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सख्त निगरानी और अनियमितताओं की कार्रवाई का वादा। नीट यूजी री एग्जाम मामले पर संसदीय शिक्षा समिति की बैठक, डीजी एनटीए अभिषेक सिंह और शिक्षा सचिव विनीत जोशी को किया गया तलब। नीट यूजी री एग्जाम की समीक्षा के लिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी सक्रिय, पूर्व इसरो प्रमुख को एनटीए सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। केतन मर्डर मामले पुलिस ने लोगर किले पर किया क्राइम रिक्रिएशन, पुतले को 300-400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर घटनाक्रम दोहराया गया है। केतन अग्रवाल मर्डर मामले में कानून लड़ाई तेज, वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया गोयल के भाई साहिल को 10 करोड़ का मानहानि नोटिस जारी किया है। एसआईआर चुनाव आयोग पर भड़का विपक्ष, 23 पार्टियों ने सीजीआई को भेजा पत्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के एसआईआर के तीसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा, 5 अगस्त को जारी की जाएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य, 13,000 से ज्यादा बीएलओ की लगाई गई ड्यूटी। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर पर गिरफ्तारी की तलवार, मुर्शिदाबाद के 2 थानों में नोटिस जारी, सीएम शुभेंदु अधिकार के आदेश पर एक्शन में पुलिस। पंजाब में एसआर हुआ शुरू, बीएलओ ने एसआर के तहत पंजाब के सीएम और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर को फॉर्म सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी की सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत पर दिया जोर, बोले सीधे जनता तक पहुंचे योजनाओं का असर। भारत पाक रिश्तों को समान बनाने की अपील, 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पीएम शहबाज शरीफ को लिखा पत्र, भारत ने से 61 पाकिस्तान से 56 हस्ताक्षर, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर समेत कई प्रमुख नाम शामिल। भारत पाक रिश्तों पर मनोज झा का सवाल, दुबई में क्रिकेट हो सकता है तो संवाद पर आपत्ति क्यों है, बोले कला और संगीत को वीजा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोटा बनेगा स्पोर्ट्स हब, 100 करोड़ से जेके पवेलियन होगा इंटरनेशनल स्टेडियम, ओम बिरला ने 5.25 करोड़ की खेल सुविधाएं जनता को सौंपी। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय में खोलने के केंद्र सरकार की अनुमति, सभी 18 जिलों में बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय के लिए देगी जमीन। दिल्ली में सर्दियों के लिए सबसे बड़ा प्रदूषण एक्शन प्लान, बिना पीयूसी नहीं मिलेगा पेट्रोल, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। भरत तिवारी के भाई बोले न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रहेगी, जरूरत पड़े तो हाईकोर्ट जाएंगे। श्रीगंगानगर दुष्कर्म मामले में बुलडोजर कार्रवाई, होटल में जिस नाबालिग से दुष्कर्म हुआ उसे प्रशासन ने ढाया, अब 12 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा, हरिद्वार से इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, नियंत्रित होकर आग की चपेट में आई। हादसे में 8 यात्रियों की मौत, 22 यात्री घायल, बस में करीब 40 यात्री सवार थे। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसे में 5 की मौत, 5 घायल, मृतकों में 2 बच्चियां 2 महिलाएं शामिल। उन्नाव हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार करवाने हेतु दिए निर्देश। बठिंडा के डब्बाली रोड पर भीषण सड़क हादसा, घोड़ा ट्रॉलर और मेटाडोर की टक्कर में 3 की मौत। मंडी पुलिस का पूर्व जवान अजय पिछले 5 साल से लापता, गुस्साए ग्रामीणों ने घेरा, मंडी जिला प्रशासन शहर में आक्रोश रैली निकाली। हरिद्वार में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, 52,000 रुपए के नकली नोट बरामद। उड़ीसा के भद्रक में एक तरफा जुनून का सनसनीखेज मामला, 15 साल की स्कूली छात्रा पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की और पेट जहर पिलाने की कोशिश की गई। मोतिहारी पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की आड़ में शराब तस्करी के गिरोह का भंडाफोड़ किया, तस्करों को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 7 महीने की गर्भवती की हत्या, बंद ईंट भट्टे में मिला शव, दहेज उत्पीड़न का मामला। पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करनी पहुंची आबकारी विभाग की टीम पर माफियाओं ने किया फायरिंग, बाल बाल बचे जवान। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। छत्रपति संभाजी नगर में एक पूर्व छात्र ने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, टीसी को लेकर चल रहे विवाद के चलते छात्र ने किया हमला। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर आपस में भिड़े लोग, देखते देखते हिंसक रूप इस लड़ाई ने ले लिया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच कंपाउंड वॉल ढहने से भूस्खलन, घर मलबे में दबा, 2 बच्चों समेत 3 की मौत, 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुजरात के भरूच में तेज बारिश के बीच निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरी, पिता और बेटे की मौत। स्थानीय लोगों का आरोप, कच्चे मकान में रह रहे लोगों ने कई बार शॉपिंग मॉल वालों को की थी शिकायत। मध्यप्रदेश के सत्ता में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों का रेस्क्यू। मुंबई में बारिश के बीच डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता जाम। मध्यप्रदेश के सत्ता में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भरा, स्कूल बस डूबने के बाद बच्चों का रेस्क्यू। मुंबई में बारिश के बीच डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास गिरा पेड़, रास्ता जाम। सिक्के में लगातार हो रही बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन, एक गाड़ी मलबे में फंस गई, बोल्डर गिरने से सड़क बंद। पहली बारिश में डूबा दरभंगा नगर निगम का दफ्तर, मुख्य सड़क तक घुटनों तक भरा पानी। दरभंगा नगर निगम को व्यवस्था को लेकर उठाया गया सवाल, कहा कागजों पर सिर्फ हो रहा है काम, कई वर्षों से दरभंगा का कर दिया है बुरा हाल। अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ प्रदर्शन। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच नायर एनर्जी ने पेट्रोल की कीमतें 5 रुपए और डीजल की 3 रुपए प्रति लीटर घटाई। देश भर के 7,000 से अधिक पंपों पर नई दरें लागू। 2 साल में अधिक समय बाद निजी कंपनी ने घटाया है खुदरा ईंधन का दाम। सरकारी तेल कंपनी ने कीमतों में नहीं किया कोई बदलाव। आज से कमर्शियल सिलेंडर सस्ता, दिल्ली में प्रति सिलेंडर 183 रुपए की कटौती। आज जुलाई के पहले दिन देश भर में कई बड़े नियम और बदलाव लागू। पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे आधार बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं आज से बहाल, आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू। वहां बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का हो रहा है शुभारंभ। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लगाए गए 650 सुरक्षा बल के जवान। कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलजी मनोज सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी। बड़ी संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते को लेकर संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाहें। संख्या में अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात। हर पड़ाव और हर रास्ते को लेकर संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाहें। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद। बालटाल रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और दूसरी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की गई। बड़गाम रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों के लिए किया मॉक ड्रिल। पुंछ में आगामी मॉनसून में मौसम को लेकर सुरक्षा बलों ने किया मॉक ड्रिल। आपदा की तैयारियों को जांचने के लिए अभ्यास किया गया। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को रस्सी और विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास। एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और के जवान हुए शामिल। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। सैलानी से गुलजार हुआ पुंछ, बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक जारी। फिल्म में महेश मांजरेकर, जया प्रदा, जरीना बहार, विक्रम कोचर की अहम भूमिका। अक्टूबर में फिल्म होगी लॉन्च। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो लॉन्च 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरा गाना तैयार, 24 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। देहरादून में बाबा नीम करौली पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देशभर में सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया। आज से इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हो रहा आगाज। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज में खेले जाएंगे 5 T20 मैचेस। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज जीतने पर होगी इंडिया की नजरें। तिलक वर्मा है उपकप्तान। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर सबकी नजरें। आयरलैंड दौरे पर नहीं मिला था वैभव को प्लेइंग 11 में हिस्सा। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए लिया बड़ा फैसला, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में BCI के सेंटर ऑफ एक्सलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर किया जारी। टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचेस की संख्या बढ़ाई।

0: और अब आज देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भारी बारिश का दौर वहां जारी और कई इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। अंधेरी, जोगेश्वरी, गोरेगांव, मलाट, कांदीवली, बोरीवली, दहीसर, विलेपाले में बारिश के बाद पानी भर गया है। अंधेरी सबवे में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। अंधेरी सबवे से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। कुल्ला में भारी बारिश के चलते कई गाड़ियों पर पेड़ गिर गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में आधी रात को भारी बारिश हुई, उसके बाद सुबह फिर से बारिश तेज हो गई। पश्चिमी उपनगरों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुस्तफा, वैसे तो ये आम है मुंबई में मॉनसून के सीजन में पानी भरना, लेकिन कौन से इलाके अब तक सबसे ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मुंबई में जो उपनगर इलाका है, अंधेरी की तरफ हो, कुर्ला की तरफ हो, उन इलाकों में बारिश जो है, बरसात जो है ज्यादा हो रही है। मुंबई के टाउन की तरफ कोलाबा इलाके में बारिश थोड़ी धीमी गति से हो रही है। आज एक वर्किंग डे था, सुबह से ही तेज बारिश की वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और शाम तक इसी तरह की बारिश अगर चलती रहती है तो ऑफिस से आने समय में भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मुंबई में तकरीबन 20-22 दिन बाद बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो बारिश अपना बैक लॉग है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट पूरा करती हुई दिख रही है। कल से ही मुंबई में तेज बारिश शुरू है, बरसात शुरू है, उसके साथ साथ कई इलाकों में पेड़ गिरना, पानी भरना, इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो भी सामने आ रहे हैं।
0: ठीक है, इसके अलावा एक बार फिर से उन चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। अमूमन हमने देखा है कि कई सारे हादसे हो जाते हैं, कई कल भी एक स्कूल वैन पर पेड़ गिरने से एक बच्चे की जान चली गई थी। क्या स्कूलों को बंद किए जाने की वाकई वहां पर जरूरत है, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश और उसके चलते दुर्घटनाएं हो रही है?
1: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से सही समय पर एक तरह से अलर्ट जो है वो मुंबईकरों को नहीं मिल पाता है। जब बारिश तेज होती है तब कहीं ना कहीं मैसेज आता है ऑरेंज अलर्ट और ये सारी चीजों का, तो इसी वजह से स्कूल्स भी एक कॉल नहीं ले पाती है कि बारिश, आप एक दिन पहले ये कॉल लेना होता है कि सुबह में अगले दिन स्कूलें बंद होनी चाहिए या नहीं। आज सुबह से ही तेज बारिश है, कल शाम को भी तेज बारिश थी, लेकिन अभी भी स्कूलें बंद होने तक लेकर किसी भी तरह का निर्णय जो है वो दिखाई नहीं पड़ा है। और इसीलिए फिर ऑफिस जाने वाले लोग हो या फिर स्कूल जाने जाने वाले बच्चे, दिक्कतों का सामना सबको करना पड़ता है। आजकल जिस तरह के इंसिडेंट मुंबई में हो रहे हैं, लोगों को, पेरेंट्स को और भी ज्यादा डर लगने लगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं देहरादून की बात करेंगे, जहां आज मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, पहले दिन इंतजामों की पोल खुल गई। इस बीच डोडा की बात कर लेते हैं, जहां पर अचानक बादल फटने से तबाही मच गई है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। डोडा जिले के कलाल गिसर क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद अचानक फ्लैश फ्लड आया, भारी मलबे ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। डोडा में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति है। भलेसा इलाके में सबसे ज्यादा इसका असर देखा जा रहा है। अंदरूनी गांव को जोड़ने वाले कई सड़क के कट गई हैं। बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ और मलबा लेकर आया, जिससे संपर्क टूट रहा है। स्थानीय प्रशासन ने रास्ता साफ करने और नुकसान का आकलन करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक हालात पर काबू ना आए तब तक वो यात्रा ना करें।

0: वहीं देहरादून की अब बात कर लेते हैं, जहां मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। पहले दिन इंतजामों की पोल खुल गई। मूसलाधार बारिश से आईटीबीपी सीमा द्वार इलाके में जलभराव हो गया है।
1: मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और देहरादून का जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहां के हालात आपको दिखाते हैं। पिछले साल भी आज तक ने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया था और यहां की जो समस्या है उसको उजागर किया था, लेकिन इसके बावजूद आपदा के समय में या फिर तेज बरसात के समय में जब जल भराव हो जाता है, तब प्रशासन को सुख लेनी पड़ती है, क्योंकि देखिए किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर, और लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनको किस तरीके का सामना करना पड़ता है। काफी जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, और कई लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। सामने देखा जा सकता है है, और लोग किस तरह से यहाँ जोखिम भरे इस माहौल में पानी लेकर करीब काफी इसमें जो दुकानें हैं उनकी डूबती नजर आ रही है, क्योंकि डेप्थ पे है। और आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर कई कई जगह पर कोने में गड्ढे और नालियां भी हैं, और इतना जोखिम भरा है अगर जरा सी चूक हो जाए तो आदमी सीधे नाली या गड्ढे में जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम ब्लॉकेजेस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय प्रशासन जो है आके मूंद लेता है, और हर बार ये होता है। पिछले साल भी आज तक ने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था और दिखाया था कि किस तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और सामने देखिए जिस तरह से कॉलोनी में पानी घुस रहा है, और लगातार देखिए ट्रैफिक जो है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है।
0: इस बीच बड़ी खबर, भारत और पाकिस्तान के 117 लोगों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक साझा पत्र लिखा है। पत्र लिखकर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से शांति, समान स्थिति, संवाद और सहयोग की बहाली की दिशा में सार्थक और सतत कदम उठाने की अपील की गई है। भारत पाकिस्तान की राजनीतिक हस्तियां समेत कुल 117 लोगों ने अपील की है, जिसमें चिट्ठी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसमें जो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक हैं, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं, आरजेडी सांसद मनोज झा, आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर का नाम शामिल है। मणिशंकर अय्यर ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

0: एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन बड़े मतलब पड़ोसी हैं कह सकते हैं, हमने युद्ध भी देखा है। अब आपका भी नाम उस चिट्ठी में है जो लिख रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए।
1: नहीं, आप एक बात रखिए, आपने अभी ओपनिंग लाइन में पहलगाम का जिक्र किया, पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेल रहे थे ना, बीसीसीआई का निर्णय कौन ले रहा है? हम में से तो कोई फेवर में नहीं था उस वक्त, जो आक्रोश था देश में, आज तक हम नहीं जान पाए कि पहलगाम किसने किया, कौन कल्प्रिट है, कौन अकाउंटेबल है, किसके सर पे तलवार लटकनी चाहिए। चुप्पी साध ली। चलिए पहलगाम से थोड़ा पीछे जाते हैं, पुलवामा, उसका कुछ पता चला? सदन में 3 दफे मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं, शून्य, सन्नाटा। महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य और वहां के नागरिक में फर्क, ये महात्मा गांधी बता के गए थे। गांधी से तो बड़ा कोई दार्शनिक भी नहीं हुआ इस देश में, वो बता के गए थे। ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब, सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए, लिटरेचर को नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं, और अगर सिविल सोसाइटी के और कुछ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ और ने पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की, तो मैं देख रहा हूं कि उसको तील का तार बनाए हुए हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, राम माधव वाले पे कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। 6 महीने इंतजार करिए, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने, ये भी पता चल जाएगा किसके इशारे पे ये तथा कथित ट्रैक टू बातचीत हो रही थी। हम तो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस।
2: देखिए पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर, जो इस वक्त इख्तलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबुल्ले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजाही होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी का था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा, उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए।
3: आज जो आलमी अमन की हम बात कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कोशिशें हो रही हैं, खासकर अमेरिका ईरान के दरमियान, आपने सुना होगा कि एक बार फिर बातचीत होने जा रही है इस हफ्ते, तो हमने इसको हमेशा सपोर्ट किया है। और इसी तनाजुर में मैंने पिछले जुमा को भी जो बात कही कि अगर ईरान और अमरीका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं, और हम तवक्का रखते हैं कि मैंने उसी तनाजुर में जो है वो जो इंडिया की जो लीडरशिप है उनको भी अपील की है कि वो भी डायलॉग की जो है वो राह उसको इख्तियार करें, क्योंकि जंगों से मसले हल नहीं होते, जो मसले हल होते हैं वो जो है बातचीत से होते हैं।
4: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Hey sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
8: Swing and a foul out of play off to the left.
7: Big 12 Radio.
9: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
7: Talk Sports.
10: Yes, TalkSport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
7: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
11: Sokudo.
12: Aage, aage. Correct, correct.
13: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
7: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
10: बीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: इस बीच राम मंदिर चौराहा चोरी बाब में बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी महासचिव राम गोपाल यादव ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए कहा कि चंदा और चौराहा चोरी मामले नहीं, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। राम गोपाल यादव ने पूरी जांच को सिर्फ लीपापोती की कार्रवाई करार दिया है।
3: ऐसा है, वो तो केवल सुपरफिशियल है, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी।
2: वक्त इशू से ब्रेक का हौसला, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंद बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं।
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण, 140 करोड़ देशवासी।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: पानी पर भारत का आंख काटने की पाकिस्तानी गीदड़ भपकी के बीच बातचीत की वकालत में आ गया है दोनों मुल्कों के 117 नामचीन लोग। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने के इस्तेमाल हुए योग केंद्र पहुंचा आज तक क्यूआर कोड वाले बक्से से चुराते थे पैसे। चंपत और अनिल मिश्रा के खाते की चेकिंग। एसआईटी को एक्स्ट्रा 15 दिन का समय। नायरा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए, डीजल 3 रुपए सस्ता। देशभर में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। मर्डर मामले में आरोपी चेतन को किले में ले जाकर हुआ क्राइम सीन रिक्रिएट। नया खुलासा, चेतन को पहले से था सिया पर शक। सगाई के बाद कई बार की शिकायत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा। ट्रक से टकराते ही बस पर लगी आग। 8 की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के नाम में एक्सीडेंट, 5 की मौत।
1: Thank you.

0: नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बादल। द बर्निंग बस। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के दौसा में एक ऐसा हादसा हुआ जो रूह कपाने वाला है। हरिद्वार से इंदौर जा रही एक बस की टक्कर ट्रॉला से हो गई। देखते देखते 8 जिंदगियां उस आग में झुलस गईं और खत्म हो गईं। बस में सवार यात्रियों में से कई को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आग इतनी तेजी से फैली कि लोग उसमें फंस गए। कई लोग इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। तो किसी एक की लापरवाही कितनों की जान पर भारी पड़ सकती है। दौसा का यह हादसा इसकी गवाही दे रहा है। ड्राइवर की आंख लगी, रात के अंधेरे में एक्सप्रेसवे पर हड़कंप मच गया, मौत की चीत्कार वहां फैल गई। बचाने वाले अपनी आंखों के सामने लोगों को तड़पते देख रहे थे, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे।
1: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ उसकी ये मार्मिक हाहाकारी तस्वीरें देखिए। एसी बस शोलों में तब्दील हो चुकी है, साथ ही बस से टक्कर के बाद ट्रॉला भी दहक उठा है। जब हर कोई नींद के आगोश में था, तब दौसा का ये इलाका इन दहकते शोलों के खौफ में था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तड़के करीब 2:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ। उस वक्त चंद लोग मौजूद थे जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे को अपनी आंखों से देखा, बेबसी के साथ देखा कि कैसे लोग झुलसती बस में बेदम हो रहे हैं। चश्मदीद बता रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी उसमें सवार यात्री जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन आग की लपटों के आगे उनकी एक न चली। शोले डरा रहे थे, चश्मदीद लाचार थे।
2: जैसे हम पुलिया के पास से आ रहे थे तो हमें ऑल क्लियर, मतलब रोड क्लियर दिख रहा था। अच्छा। जैसे ही 20 मीटर आ गए हमें धुआं धुआं सा लगा और इसके पार्ट्स टूटे हुए थे, मतलब ये चद्दर वगैरह जो भी ट्रक का सामान था। तो हमारी गाड़ी, हमने सोचा अनकंट्रोल होगी। उसके बाद में जैसे ही देखा तो फिर गाड़ी का, हमने खुद अपनी गाड़ी का बैलेंस बनाने की सोची। हमारी गाड़ी का आगे वाला टायर फट गया, पता नहीं कितनी तो टूटी है, अभी देखी नहीं हमने। साइड में गाड़ी खड़ी की लोग करके, जैसे हम इनकी हेल्प के लिए आए और देखा यहाँ मतलब लोग हाहाकार मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तब तक आग लग चुकी थी गाड़ी में। मतलब ये मानो कि रियल आंखों देखा जैसा हाल हो गया।
1: जिस वक्त एक खौफनाक हादसा हुआ उस वक्त रिंकू सैनी अपनी कार से ऋषिकेश घर के लिए लौट रहे थे। परिवार के दूसरे सदस्य भी साथ थे, लेकिन हालत ऐसी थी कि ये कुछ नहीं कर सके। करीब 1.5 घंटे तक बस धधकती रही।
3: ये तक ये आग लगी होगी
4: समथिंग 1.5 आवर समथिंग तक जली है बस। अच्छा। उसके बाद में दमकल वगैरह आई है।
1: हादसे के समय मौके पर पहुंचने वाले चश्मदीद बता रहे हैं कि आग से हालात कैसे थे। वो बता रहे हैं कि आग की वजह से उनकी गाड़ी को भी नुकसान हुआ।
3: क्या आप मौके पर थे?
4: हाँ, हमारी गाड़ी पीछे थी, इनके
3: पीछे ही थी।
4: हाँ,
3: क्या हुआ आपने देखा?
4: हम समथिंग इस पुलिया के पास थे, तब तक कुछ नहीं हो रखा था। जैसे क्रॉस किया तो अचानक से मिट्टी और धूल, धुआं का गुब्बार और ये सारा मलबा था इस गाड़ी का, वो नीचे था और हमारी गाड़ी नीचे से हिट हुई
5: पड़ा हुआ है।
4: और उसी से हमारी गाड़ी हिट होके टायर वगैरह ब्लास्ट हुए, बम्पर वगैरह टूट गए,
3: आपकी गाड़ी डैमेज हो गई।
4: हाँ,
3: तब से आप यहीं पर हो?
4: हाँ, क्योंकि क्रेन अभी आई है हमारी।
3: अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप?
4: हम ऋषिकेश से आ रहे थे।
1: बस में 39 यात्री सवार थे। ट्रॉला से टक्कर के बाद उसमें आग लगी तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। चश्मदीद बता रहे हैं कि तब स्थिति कैसी थी।
6: आग इतनी पकड़ गई एकदम, जो पास नहीं जा सकते, हमारे आंखों के सामने लोग जल जिंदा जल गए बस के अंदर। बहुत भयंकर, बड़ा भयंकर हादसा था।
3: अचानक से आग लगी।
6: पीछे के शॉर्ट सर्किट लगाया है बस में, फिर वो 5 मिनट में पूरी को कवर कर गया। एसी बस थी तो हो सकता है फिर वो एसी ऑन है, सबने पकड़ लिया उनको, टायर पकड़ लिया, तेल का टैंक था उन्होंने पकड़ लिया, दोनों के टायर हैं, दोनों के टैंक था, एसी था, होम था, वो सब जलने लग गए। तो एकदम बहुत भयंकर आग थी।
1: बस और ट्रॉला तब तक दहकते रहे जब तक दोनों पूरी तरह खाक नहीं हो गए। करीब 1.5 घंटे तक स्थिति ऐसी ही बनी रही। आग पर काबू पाया गया, उसके बाद बस की हालत देखिए, पूरी एसी बस खाक हो चुकी है।
3: आप देखिए किस तरह से बस की हालत देखिए, किस तरह से ये पूरी तरह से राख में तब्दील हो गई है। जो 8 लोग मरे हैं उनकी डेड बॉडी जो है वो बिल्कुल राख हो गई थी। कपड़ों में बटोर कर यहां से लेकर जाना पड़ा है। अभी जो 8 लोग मरे हैं इनके अलावा जो बाकी घायल हैं 22 उसमें एक दो लोग थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है, बाकी सब ठीक है। प्रशासन का कहना है ये बस का ड्राइवर जो है वो रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। और ये देखिए आपको दिखाना चाहूंगा, ये मुंबई एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहां पर रात को 2:30 बजे उसे नींद आ गई। ये हरिद्वार से दर्शन करा के तीर्थ यात्रा करा के इंदौर लेके जा रहा था सभी यात्रियों को, और जैसे ही झपकी आई ये आगे ये ट्रोला चल रहा था, इसमें अभी भी धुआं उठ रहा है, इस ट्रोला को उसने टक्कर मारी और आगे से टक्कर मारी है। और आगे से टक्कर मारने के बाद आप ये देखिए कि यहां पर जो एसी का कंप्रेसर था उसमें ब्लास्ट हुआ है, उस पर उधर ब्लास्ट हुआ है।
1: इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल उठे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश का अहम रूट है, ये रूट कई राज्यों को जोड़ता है, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तैयारी का दावा भी किया जाता है, फिर भी ऐसे हादसे का होना और उसमें 8 लोगों की मौत गंभीर सवाल या निशान छोड़ जाता है।
3: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर कहा जाता है कि सारी सुविधाएं मौजूद है, और इतने बड़े हादसे के बाद भी अगर 1 घंटे तक कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है तो ये भी बड़ा सवाल है कि जिस एक्सप्रेसवे को लेकर इतनी बड़ी बातें कही जाती है वहां पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो बचाव में कितना वक्त लग जाता है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, बांदीकुई, दौसा आज तक।
0: तो दौसा में हुए इस हादसे को लेकर कई महकमों पर सवाल उठ रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर तो पहुंची लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सवाल यही कि क्या और लोगों की जान बचाई जा सकती थी।
1: एक गलती और वो खौफनाक हादसा, दूसरी गलती और खत्म होगी जिंदगियां। पहली गलती बस के ड्राइवर की, बताया जा रहा है कि तड़के हुए हादसे की असल वजह ड्राइवर की लापरवाही। जब दौसा के इस इलाके में बस पहुंची तो ड्राइवर को नींद आ रही थी, फिर भी वो बस ड्राइव करता रहा। उसने बस के यात्रियों की सुरक्षा को ताक पर रख दिया, बस की टक्कर हो गई और फिर जो कुछ हुआ वो आपकी आंखों के सामने है।
5: सर ये नाइट को 2:30 बजे के करीब की बात है, सूचना मिली कि एक ट्रेलर और बस आपस में भिड़ंत हो गई है और आगजनी हो रही है, तो मौके पर जब से ही लगे हुए हैं इसमें।
3: अभी तक आग के कारणों का पता चल पाया
5: नहीं, जांच जारी है।
1: हादसे की खबर लगते ही तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, उस वक्त रेस्क्यू टीमें लगी हुई थी लेकिन अधिकारियों के पास आंकड़े बताने के सिवा कुछ भी नहीं था।
7: रात के अराउंड 3:15-3:30 बजे दुर्घटना हुई, हमारे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेस वे से सूचना आई कि एक ट्रॉली और एक पैसेंजर बस के बीच में टक्कर हो गई, बस ने आग पकड़ ली। मौके पे एसपी साहब और चीफ ऑफिसर को आग भी कंट्रोल कर लिया गया था और हम 24-25 लोग तो सकुशल बस से रेस्क्यू हो गए थे, उसमें से 11 लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी लोगों को कोई इंजरीज नहीं थी तो उनको रिलीज कर दिया है।
1: जब बस की आग बुझाई गई तो वहां का मंजर झकझोर देने वाला था, सिर्फ बस की लोहे की बॉडी बची हुई थी और मौके पर दिख रहे थे कुछ जले बुझे सामान। यात्रियों के लगेज राख बन चुके थे, कुछ अब जले सामानों को बस से निकाला जा रहा था। पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे।
3: पुलिस वाले हैं जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सामान निकाल रहे हैं, जो डिक्की में सामान रखा हुआ था, बहुत सारे वैल्यूएबल्स हैं वहां पर जो रखे हुए थे, ये सारे देखिए ये सारे यहाँ पर पार्सल में जा रहे थे जो दिखाई दे रहा है। और अपने आप में बड़ा सवाल है कि सुरक्षा को लेकर बार बार ये सवाल उठता है, और इस तरह से इस तरफ से ये बस आ रही थी और बस के ड्राइवर के झपकी आने के बाद उसने ट्रोला को टक्कर मारा है, जिसके बाद ये हादसा हुआ है। और ये पूरा का पूरा हादसा जो है दिल दहला देने वाला था।
1: लेकिन असल में सवाल है कि क्या इस हादसे के बाद कुछ और लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कहां चूक हो गई। चश्मदीद हादसे के बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो रेस्क्यू में लेट लतीफी पर सवाल या निशान लगाते हुए कह रहे हैं कि प्रशासन तेजी दिखाता तो इतनी जाने नहीं जाती।
8: अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो मुश्किल से 2 जाने बच सकती थी, एक ड्राइवर और एक अदर आदमी। हमने देखा ड्राइवर हमारी आंखों के सामने जिंदा जल रहा था, उसको बस निकालना बाकी था, बाकी वो निकल सकता था।
1: इस घटना से हर कोई हैरान है। 20 से ज्यादा यात्रियों की जान बचाई गई है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना ने देश को झकझोर दिया है। जरूरत है इस हादसे से सबक लेने की, ताकि भविष्य में किसी और को जान न गंवानी पड़े। संदीप मीणा के साथ शरद कुमार, दौसा आज तक।
0: बात पुणे के केतन अग्रवाल मौत मामले की। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर आज चेतन चौधरी की मौजूदगी में क्राइम सीन पर रिक्रिएशन किया गया है। लोगढ़ किले में आज सुबह चेतन को ले जाया गया। 18 जून को इस वारदात को लेकर कई तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट कर पुलिस ने जांचा कि केतन उस दिन कैसे उसे धक्का दिया गया था, इसमें कौन शामिल था, सिया शामिल थी या फिर चेतन चौधरी।

0: पुणे पुलिस पहली दफा चार दिन पहले इस लोहगढ़ किले में सिया के साथ पहुंची थी और अब आज दूसरी बार चेतन को लेकर पहुंची। लोकेशन वही, मर्डर मिस्ट्री वही, सवाल भी करीब वही जो सिया से हुए थे। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस आज सुबह करीब 8 बजे लोहगढ़ किले में पहुंची। जांच अधिकारी चेतन को लेकर सीन पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की पड़ताल की। सोमवार को जब चेतन और सिया को पुणे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था तो दलील दी थी कि अभी लंबी जांच करनी है और सबसे अहम ये कि चेतन को क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह सिया की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। अदालत से रिमांड मिलने के 2 दिन बाद आज पुलिस सुबह लोकगढ़ किले में पहुंची। पुलिस के साथ आज भी एक पुतला था। पुतले का वजन ठीक केतन के जितना, लंबाई भी ठीक उतनी ही, बस फर्क सिर्फ ये था कि आज सिया की जगह चेतन था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आज पुलिस ने चेतन से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। उसने डमी को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। तब पुलिस ने बारीकी से सिचुएशन को समझा, देखा और जाना। ठीक यही प्रक्रिया सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने दोहराया था। एक बार फिर उस जांच प्रक्रिया के जरिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि केतन को किसने खाई में धक्का दिया था। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को दोहराया जिसमें केतन और सिया के पीछे पीछे चलते हुए चेतन उनका पीछा कर रहा था।
1: सिया जो है उसका ऑलरेडी रिक्रिएशन हुआ है और उसके बाद यानी वड़गांव सत्र न्यायालय में सिर्फ चेतन के रिक्रिएशन के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और आज उसको सुबह 8 बजे यहां पर लाया गया। पूरी तरह पुलिस बंदोबस्त था और उसके बाद यानी 2.5 घंटे तक ये जो क्राइम रिक्रिएशन है चला है। इसके बाद इस चेतन को जो है लोनावला ग्रामीण पुलिस ने पुलिस संरक्षण में अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और भी उससे पूछताछ होगी क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस कस्टडी जो है खत्म होने वाली है और उसके बाद ही मतलब अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे और कुछ बातें जो है सामने आ सकती है।
0: 28 जून को पुणे पुलिस सिया को लेकर किले में पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक वहां रिक्रिएशन किया था। अब चेतन के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद पुलिस को भरोसा है कि कई अहम तथ्य सामने आएंगे जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2: चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे, उसने सभी सीक्वेंस इवेंट्स बताए हैं क्या क्या हुआ था उसकी अभी तपास आगे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी तपास कर रहे हैं।
3: लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन किया गया?
2: चेतन की बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था, बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया।
0: इस तफ्तीश के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने पहले से ही यह तय कर रखा था कि अगर दोनों इस मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है, क्या बताना है और किन बातों का खुलासा नहीं करना है। तय प्लान के मुताबिक दोनों खुद को तैयार कर चुके थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि पूछताछ के दौरान दोनों के दिए जवाब भी उसी साजिश के तहत हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
1: अभी रिक्रिएशन किया गया, क्या क्या हुआ है और कितने घंटे तक
4: मेमोरेंडम हुआ है और कुछ नहीं, बस
1: कितने का पुतला लेके गए?
4: नहीं वो बात की अलग होती है, वो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है।
1: तो लेकिन ऊपर जाके क्या किया है, मतलब
4: मेमोरेंडम हुआ और कुछ नहीं,
5: गेट एनालिसिस किया गया?
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, वो बात की इन्वेस्टिगेशन की बात है, दैट एज पर रिक्रिएशन जो होता है वो सिचुएशन एज पर हिज लीड्स।
1: कितने किलो का ये पुतला था और किस प्रकार से मतलब ऊपर से धक्का दिया,
4: दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज, ऐसा नहीं कर सकते।
0: सिया और चेतन ने जो किया उस पर जांच जारी है, लेकिन ये भी सामने आया है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले जनवरी महीने में दोनों की कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके लिए परिवार के ज्योतिषी को बुलाया गया था। ज्योतिषी ने बताया कि दोनों की कुंडली में 27 गुण मिल रहे हैं तो ये आदर्श विवाह हो सकता है। इसी वजह से दोनों परिवार रिश्ते को लेकर सहमत हो गए। लेकिन यहाँ कुंडली काम ना आई, केतन को सिया और चेतन ने मिलकर मार डाला। अब पुलिस दोनों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है। श्री कृष्ण पंचाल, पुणे, आज तक।
6: वहीं लोहगढ़ किले में रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को जो भी कामयाबी हासिल हो, वो जो भी सुराग मिले हो, सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जांच के दौरान ये सामने आया कि केतन को पहले से सिया पर शक था। वो अपनी मंगेतर और चेतन के करीबी के बारे में जान चुका था। उसने अपने परिजनों से शादी तय करने को लेकर भी सवाल पूछे थे।
7: सिया पर केतन का शक बना उसकी हत्या की वजह। सिया बेनकाब हुई तो रची हत्या की साजिश। सिया चेतन एक दूसरे के करीब, केतन को लगाया ठिकाने। हत्या के 12 दिन बाद एक ऐसा खुलासा जो इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में काफी अहम है। खुलासा ये कि केतन अग्रवाल जान गया था कि सिया की असलियत क्या है। वो जान चुका था कि उसकी मंगेतर उसे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती है। केतन को पता लग चुका था कि सिया चेतन के बहुत करीब है। इसी साल केतन और सिया की शादी तय हुई थी। फरवरी में सगाई हो चुकी थी। नवम्बर में दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, अटूट रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे। लेकिन सगाई के बाद केतन को ऐसे सच का पता चला जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर रहा था। लिहाजा वो मौत से पहले बार बार घरवालों से सवाल पूछ रहा था। उसने अपने घरवालों से सिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो केतन ने सिया के बैकग्राउंड के बारे में अपने घरवालों से पूछा था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत पत्र में यह दावा किया है। अपने बेटे का जिक्र करते हुए विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सिया चेतन के बहुत करीब थी। केतन को इसका शक हो चुका था। केतन ने आशंका जताई थी कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती है। उसने परिवार वालों से ये भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। केतन ने घर वालों से बताया था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का नाम लेती थी। केतन ने ये भी कहा था कि जब भी वो सिया को कॉल करता था उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था।
8: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
7: जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों के हवाले से खबर है कि 6 जून को बाली ट्रिप रद्द होने के बाद केतन ने अपने पिता से बात की थी। शिकायत की थी कि सिया छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। तब विशाल अग्रवाल ने केतन से कहा था कि अभी कम उम्र है इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। तब विशाल अग्रवाल ने केतन को भरोसा दिया था कि वो उसे समझाएंगे। सिया पर केतन का शक गहरा हो चुका था। शायद यही उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि 18 जून को हत्या से 4 दिन पहले भी सिया और केतन लोहगढ़ किले में उसी जगह गए थे। उस दिन भी केतन को चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि 14 जून को केतन ने झाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचा ली थी। हालांकि तब केतन के सवाल करने पर सिया ने सांप होने का झूठा शोर मचाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने केतन को बचाया है। सिया और केतन का परिवार एक दूसरे को पहले से जानता था। इसी भरोसे पर दोनों के रिश्ते तय हुए थे, लेकिन सिया चेतन को चाहती थी। पुलिस की जांच में भी इसकी पुष्टि हुई है। सिया का भाई साहिल और चेतन अक्सर साथ साथ क्रिकेट मैच खेलते थे। उन्हीं मैच को देखने सिया भी अपने भाई के साथ जाती और तभी उसकी जान पहचान चेतन से हुई थी। 2025 में दोनों की पहली मुलाकात हुई। एक कॉमन फ्रेंड की दिवाली पार्टी में दोनों दोबारा मिले। तब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उसके बाद सिया चेतन की बातचीत काफी बढ़ गई। फोन कॉल डिटेल्स से खुलासा हुआ है कि सिया और चेतन ने इस साल जनवरी से लेकर अब तक 2004 कॉल किए और कुल टॉक टाइम 238 घंटे था। पुलिस सिया और चेतन दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है और दोनों के रिश्ते को लेकर लगातार सच सामने आते जा रहे हैं। लेकिन असल चुनौती उन तथ्यों की पुष्टि कर हत्या मामले में सजा दिलाना है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे, आज तक।
6: अरबाज वैभव सूर्यवंशी की आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है। सबकी निगाहें वैभव पर हैं, क्या आज उन्हें खेलने का मौका दिया जाएगा?
9: क्या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आज होगा वैभव सूर्यवंशी का पदार्पण? इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट में आज रात 10 बजे भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज हो रहा है, लेकिन टीम की जगह चर्चा में है सिर्फ एक खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल और श्रीलंका ए के खिलाफ विस्फोटक प्रदर्शन के बावजूद वैभव को मौका ना दिए जाने पर क्रिकेट पंडितों से लेकर उनके फैंस तक में जबरदस्त चर्चा है। वैभव के फैंस कोच गौतम गंभीर पर सवाल उठा रहे हैं।
10: हमको उम्मीद लगता है कि अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है, और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
11: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
12: लेकिन वैभव जैसे हीरे को तराशने के लिए उन्हें मैदान पर खिलाना बहुत जरूरी है। ये तो टीम मैनेजमेंट का अपना फैसला है, लेकिन पूरी दुनिया के लोग उन्हें मैदान पर, उस नन्हे सितारे को मैदान पर खेलते हुए देखना चाहते हैं।
9: आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी वैभव को अंतिम एकादश में रखने का समर्थन कर चुके हैं।
13: एक महीने पहले से मैं कह रहा था कि ये आयरलैंड की जो दो मैचेस है वहां पे जिस तरह के वैभव सूर्यवंशी का फॉर्म था तो उसको दोनों मैचेस में खिलाया जा सकता था, क्योंकि एक मैच में आप अभिषेक शर्मा को लेते और सूर्य के साथ ओपनिंग करने के लिए, और दूसरे मैच में आप अभिषेक को ड्रॉप करते या नीचे करके सैमसन को लेते, वैसा आप कर सकते थे, पर वैसा हुआ नहीं। ये जरूरी नहीं कि वैभव सूर्यवंशी होता तो मैच जिता देता, क्या पता कि शायद वो भी 8-10-15 रन करके आउट हो जाता। पर अगर आपको युवा खिलाड़ियों को ट्राई करना था तो ये दो मैचेस आपके लिए सबसे बड़ा अच्छा मौका था ट्राई करने के लिए। आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है, उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाए, बस। बिन

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
3: In association with
4: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल

पानीपत भारत का हाथ काटने की पाकिस्तानी गीदड़ भभकी के बीच बातचीत की वकालत में आगे आए दोनों मुल्कों के 117 नामचीन लोग, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। चढ़ावा चोरी की रकम छुपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र में पहुंचा आज तक। क्यूआर कोड वाले बक्से से चुराते थे पैसे। चंपत और अनिल मिश्रा के खाते की चेकिंग, एसआईटी को एक्स्ट्रा 15 दिन का वक्त। नायरा एनर्जी के 7,000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 183 रुपए तक घटी। 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी सस्ता। पुणे मर्डर केस में आरोपित चेतन को किले में ले जाकर हुआ क्राइम सीन का रिक्रिएशन। नया खुलासा, चेतन को पहले से था सिया पर शक, सगाई के बाद कई बार की शिकायत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा, ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग, 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी एक्सीडेंट में 5 की मौत।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ मानसु दीक्षित। दो बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। और न्यूज रूम लाइव में कौन सी खबरें हैं, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं जैसे हर बार आपको बताते हैं। सबसे पहले न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे पाकिस्तान पर पीएम के नाम क्या पैगाम, कौन से वो लोग हैं जो भारत और पाकिस्तान की और उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि दोनों देशों में प्यार मोहब्बत बढ़े, डिटेल में आपको बताएंगे। जो दूसरी हमारी बड़ी खबर होगी उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। चंदा चोरी में रहस्यमय खुलासे का क्या राज है, क्या क्या नया सामने आ रहा है, अब कौन सा नया बक्सा सामने आया, कहां था, कहां से तार जुड़े, ये भी हम आपको बताएंगे। जो तीसरी हमारी बड़ी खबर रहने वाली है वो तीसरी बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। पहली बारिश हुई और बारिश के बाद क्या हुआ, पोल खुल गई जैसा हमेशा होता है, लेकिन नुकसान कितना हुआ, कितने लोगों की जान गई, ये हम आपको बताएंगे। और ठीक 2:30 बजे हम आपको बताएंगे बाबा बर्फानी का बुलावा आया है। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर कहां से है, बड़ी खबर मुंबई से है जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जो कहते हैं ना आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई है और जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों की समस्या बढ़ गई। आप देखिए अंधेरी, जागेश्वरी, गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, दहिसर, विलेपार्ली में बारिश के बाद पानी भरा। अंधेरी सब्वे में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। अंधेरी सब्वे में वाहनों से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए आवाजाही पर रोक लगा दी है। कुर्ला में भारी बारिश के चलते कई गाड़ियों पर पेड़ गिरी। अब ये देखिए जब इतनी जोरदार बारिश होगी तो लोगों का क्या हाल होगा। मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में आधी रात को भारी बारिश हुई, उसके बाद फिर से सुबह तेज बारिश हो गई, यानी आराम नहीं मिला, बारिश पे बारिश। पश्चिमी उपनगरों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। अब ये हालात आप देखिए, ये देखिए झमाझम बारिश किसे कहते हैं, ये मुंबई वाले लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे, क्योंकि मुंबई में जब जोरदार बारिश होती है तो उसके बाद सब कुछ थम सा जाता है और ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए सब कुछ यहाँ पर थम सा गया है और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुंबई की है, सामने से आप देखिए लोकल निकल रही है और नीचे जो निचली इलाकों में जो लोग रहते हैं, बस्तियों में जो लोग रहते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। देखिए जूते तो है ही नहीं, पैंट ऊपर करते हुए लोग अपने दफ्तरों की ओर पहुंच रहे हैं, दफ्तर जाना जरूरी है तो ऐसे में हर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। अब ये देखिए पेड़ गिर गया, ये गाड़ी के ऊपर गिर गया पेड़, गाड़ी हो गई क्षतिग्रस्त और साथ ही रास्ता भी यहां पर आवाजाही रोक दी गई है। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधानी से निकलिए, क्योंकि कभी भी कोई मुश्किल आपके सामने आ सकती है। जैसे कार मालिक को नहीं पता था कि उनकी गाड़ी के ऊपर इस तरह से एक बड़ा सा पेड़ गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश के साथ हवाएं चल रही हैं और इस वजह से कई जगह पेड़ भी गिर रहे हैं। अब एक और तस्वीर आती है मुंबई में अलग अलग जगह की, तस्वीर आपके सामने। और हर जगह लोगों से सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देख ली, हमारी सहयोगी विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे उनसे हम बात करते हैं। विद्या, मुंबई में हमने देखा जब भी बारिश होती है लोगों की परेशानियों में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है और अभी भी वही तस्वीरें बता रही हैं, हालात क्या हैं अभी?
1: जी बिल्कुल, अभी भी बरसात तो हो ही रही है। इनफैक्ट मैं अभी इस वक्त लालबाग फ्लाईओवर के नीचे हूँ, इसकी वजह से मुझे छाता नहीं पकड़ना पड़ रहा है। बट अगर आप देखें पूरा का पूरा ट्रैफिक बहुत बुरी तरीके से, अभी हम लोग खुद इस ट्रैफिक सिग्नल पे तकरीबन 10-15 मिनट से अटके हुए थे, ट्रैफिक बहुत स्लो मूविंग है और यही वजह है कि पूरे हाईवेज पर भी काफ़ी समय से, मतलब अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि रश आवर के समय में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लोग आते हैं उसके उस समय में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोगों को देखने मिल रहा है। और यही वजह है कि देखिए कल भी देखिए हमने येलो अलर्ट था, कल आज तो ऑरेंज अलर्ट है, कल येलो अलर्ट था, उस दौरान भी जब शाम को अचानक से तेज़ बारिश शुरू हुई थी तकरीबन 4:30 के बजे, वो रश आवर वापस लोगों के घर जाने के समय से ठीक पहले, तो लोग जो तकरीबन 5 बजे दफ्तरों से निकले थे वो रात के 8-9 बजे तक घर नहीं पहुंच पाए थे। तो यही वजह है कि जहां थोड़ी सी ज्यादा तेज बारिश होती है मुंबई में जहां तहां पानी भर जाता है और उसकी वजह से काफी ज्यादा ट्रैफिक स्लो हो जाता है, लोगों को परेशानियां। बट अच्छी चीज ये है कि जो मुंबई की लाइफ लाइन है वो चलती रहती है, बस आप स्टेशन अगर किसी तरह पहुंच गए तो आप अपने घर की तरफ या फिर अपने दफ्तर की तरफ पहुंच सकते हैं, ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन जहां आप स्टेशन पे ट्रेन से उतरेंगे फिर आपको वही ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा और ये तमाम दिक्कतें मानसून के समय में जरूर देखने को मिलती है। लेकिन खासतौर से इस बार की मानसून में, हालांकि पहले शुरुआत में मानसून की बारिश तो आ ही नहीं रही थी, जब लोगों ने बहुत प्रार्थना वार्थना की तो जरा बारिश जब शुरू हुई तो इस तरह के हालात हो गए कि कहीं जगह जगह पे पेड़ गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि बीएमसी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। आज भी हमने देखा चेंबूर इलाके में जहां एक बच्चे की मौत।
0: ये तो सही है, आपने सही बताया विद्या, कुछ लोगों के लिए ये बारिश राहत भरी होती है लेकिन कुछ लोगों का सब कुछ छीन लेती है। ऐसी ये खबर मुंबई से आई। मुंबई में एक स्कूल की बस पर पेड़ गिर जाता है और उसके बाद क्या होता है, 11 साल का एक छात्र जिसका नाम विहान, उसकी जान चली जाती है। और दुखद खबर यह है कि वो माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी कई घंटों तक, जब मौत की खबर मिल जाती है उसके बाद भी कई घंटों तक वो माँ अपने बेटे का बैट लेकर इंतजार करती रही कि वो आएगा और उनके साथ बैट बॉल खेलेगा। उनकी आंखें बिल्कुल शून्य हो गई थी, बिल्कुल टिकी हुई थी शून्य पर। आसपास मौजूद लोग उन्हें संभालने की कोशिश करते रहे। परिवार और पड़ोसियों के मुताबिक विहान रोज स्कूल से लौटने के बाद अपनी माँ के साथ क्रिकेट खेलने जाता था, लेकिन अब यही वजह है कि उनकी माँ अब भी उस बैट को छोड़ नहीं पा रही है। और ये तस्वीर जो भी कोई देख रहा है उसका दिल पसीज के बाहर आ रहा है।
1: इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहां पर ये पेड़ जो है वो अचानक कल एक स्कूल बस पे गिर गया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाके के लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये पेड़ अच्छा खासा था पहले?
2: अच्छा था, लेकिन अभी आधा ना सूख गया था। ये
1: सूख गया था
2: नीचे से, ये देखो ना आधा से बाद खराब हो गया है, पूरा बाद हो गया है। नहीं ऐसा बड़ा था लेकिन पोखल हो गया था आधा, ऐसा लग रहा था गिरेगा कभी भी ये
1: लग रहा है। तो कुछ कंप्लेंट हुआ?
2: दिया था सोसाइटी वाले ने, दिया था कंप्लेंट, बोल रहे थे।
1: अच्छा, कि आप लोगों ने नहीं दिया था?
2: हम लोग तो काम करते इधर तो,
1: लेकिन ये ऐसा सूखा हुआ लग रहा था।
2: हाँ लग रहा था।
1: आप लोगों ने देखा था ये पेड़ को?
3: हम दर दिन आते ना इधर से।
2: दो मिनट में इतने रुकाया, लड़के आ गए थे, मैं जाने होते ऐसा पड़ गया था इतना।
1: कल आप थे यहाँ पर?
2: इधर रुका था मैं, लड़के आए थे ऊपर पोरगीशी बात के लिए मैं, अनि पुढे तिथे गेली गाड़ी पर्यंत नहीं, इकड़े बस वरती ये झाली।
1: बस
2: चल रहा था और पेड़ गिर गया।
4: मुझे बहुत दुख लग रहा है इस घटना को। बच्चे को भी मैंने जाके देखा जैन हॉस्पिटल में, बच्चे के माँ पिताजी को मैं जाके मिल के आई। कुल मिला के 13 स्टूडेंट वैन में थे, उसमें के जो 12 स्टूडेंट है अभी वो आउट ऑफ डेंजरस है, एक जो बच्चा है वो एक्सपायर हुआ है। बच्चे को मैं देख के आई, माँ पिताजी को मिल के आई मैं, लेकिन बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखते हुए। एक बात मुझे वहाँ पे पता चली कि स्थानिक लोगों ने उधर अगर कंप्लेंट दी थी अगर उस पेड़ के बारे में, तो भी पालिका प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ऑब्वियसली जो भी पालिका प्रशासन का उधर अधिकारी है, वार्ड ऑफिसर है, उसके ऊपर जवाबदारी निश्चित की जाएगी।
5: बहुत ही दिल दहलाने वाली ये घटना है। पेड़ गिरने के कारण उस स्कूल के बच्चों को ले जाने वाली वो जो गाड़ी है उसकी क्षति हुई, कई सारे बच्चे उसमें घायल हुए। पेड़ गिरने जैसी हालात में है तो वहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने उसके पहले ही उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। पर खैर कि कई बार ऐसा भी हो जाता कि भारी वर्षा होने के कारण, तूफान के कारण पैर अच्छे भी होते हैं पर गिर पड़ते हैं, तो ये देखना होगा कि किस कारण की वजह से वो पेड़ गिरा है।
0: तो देखिए बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। महाराष्ट्र मुंबई का हाल आपने देख लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा के बारे में आपको बताते हैं। अचानक बादल फटता है, वहाँ बादल फटता है तो क्या होता है, हर जगह प्रलय की तस्वीर आती है, कहीं पर मिट्टी धंसती हुई दिखाई दे रही है। अब ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, और ये तस्वीरें जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बारिश कैसी तबाही लेकर आती है। जब बादल फटता है तो कितनी तबाही होती है, और पिछले कुछ सालों में हमने उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या जम्मू कश्मीर हो, हमने देखा है हर जगह कि कैसे बादल फटने के बाद हर जगह तबाही बर्बादी की तस्वीर आती है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसकी वजह से बताया जा रहा है कि किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। फ्लैश फ्लड, भारी मलबे से जनजीवन प्रभावित हो गया है, सड़कें कट गई हैं, बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ मलबा बहा कर ले आया। स्थानीय प्रशासन ने रास्ता साफ करने और नुकसान का आकलन करने का काम शुरू कर दिया है। और अब गुजरात के नवसारी की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। गुजरात के नवसारी में भी जलभराव देखने को मिला, और यहाँ भी हालात कुछ ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, यहाँ भी लोगों की परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यहाँ भी लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। देखिए घरों से बाहर पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, यहाँ करीब 20 घरों में बरसाती पानी घुसने पर लोग काफी परेशान हैं, और उनका कहना है कि पिछले 4 सालों से हालात यही हैं, हर बार बारिश होती है, घरों में पानी जमा होता है लेकिन कोई इंतजाम नहीं होता है। ये हालात आपने देख लिए, तो वहीं दरभंगा में भी हालात कुछ अलग नहीं है। बिहार के दरभंगा में पहली बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया, जो दावे किए जाते थे। हर बार ये कहा जाता था कि जब भी बारिश होगी उसके बाद पानी की निकासी के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। बिहार के दरभंगा से वो तस्वीरें आप देखेंगे, तो दरभंगा की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरभंगा नगर निगम के दफ्तर में पानी घुस गया है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है शहर भर की, अब वही पानी पानी हो गया है। और ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही हैं। अब देखिए लोग निकले कहां, उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि रास्तों में पानी जमा हुआ है। अब जहां पर कोई गड्ढा हो तो उसके बाद पता भी नहीं चलेगा। बिहार का दरभंगा आपने देख लिया, अब आपको सीधे देहरादून लिए चलते हैं। देहरादून में भी बारिश हुई और बारिश के बाद क्या हुआ, लोगों की परेशानियां बढ़ गई, जैसे बाकी जगह पर आप देख रहे थे, बिल्कुल कुछ वैसा ही हुआ। ये देखिए, ये देहरादून मानसून की जबरदस्त एंट्री हुई, और फिर जैसा होता है, जो हर बार कहा जाता है कि बारिश आई और पोल खोल के चली गई, नगर निगम के दावों की हकीकत बता के चली गई। मूसलाधार बारिश से ITBP सीमा द्वार इलाके में जल भराव हो गया है, और उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
6: मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और देहरादून का जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है, वहां के हालात आपको दिखाते हैं। पिछले साल भी आज तक ने यहां से ग्राउंड रिपोर्ट किया था और यहां की जो समस्या है उसको उजागर किया था, लेकिन इसके बावजूद आपदा के समय में या फिर तेज बरसात के समय में जब जल भराव हो जाता है, प्रशासन को सुख लेनी पड़ती है, क्योंकि देखिए किस तरह के हालात हैं यहाँ पर, और लगातार जो यहाँ से आने जाने वाले लोग हैं उनको किस तरह का सामना करना पड़ता है। काफी जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है, और कई लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। सामने देखा जा सकता है है, और लोग किस तरह से यहाँ जोखिम भरे इस माहौल में पानी लेकर करीब काफी इसमें जो दुकानें हैं उनकी डूबती नजर आ रही है, क्योंकि डेप्थ पे है। और आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर कई कई जगह पर कोने में गड्ढे और नालियां भी हैं, और इतना जोखिम भरा है अगर जरा सी चूक हो जाए तो आदमी सीधे नाली या गड्ढे में जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो तमाम ब्लॉकेजेस हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय प्रशासन जो है आके मूंद लेता है, और हर बार ये होता है। पिछले साल भी आज तक ने यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया था और दिखाया था कि किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और सामने देखिए जिस तरह से कॉलोनी में पानी घुस रहा है, और लगातार देखिए ट्रैफिक जो है वो बहुत धीमी गति चल रहा है,
0: जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ, क्या वो आने वाले वक्त में हो सकता है? अब आप कहेंगे ऐसा क्या, तो वो है भारत पाकिस्तान के रिश्तों में, संबंधों में सुधार। देखिए 117 लोग हैं भारत की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 117 लोगों ने पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को एक साझा पत्र लिखा है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों से शांति, सामान्य स्थिति, संवाद, सहयोग की बहाली की दिशा में सार्थक और एक सही कदम उठाने की अपील की है। राजनीतिक हस्तियों समेत कुल 117 लोग हैं भारत पाकिस्तान के, जिन्होंने अपील की और चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में साइन किए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हैं, अलगावादी नेता मीरवाइज उमर फारूक हैं, PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती हैं, RJD सांसद मनोज झा हैं, आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में, जिनको आप जानते हैं, वो भी शामिल हैं। मणिशंकर अय्यर का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। और ये देखिए वो लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी शहबाज शरीफ को ये चिट्ठी लिखी है साझा कर।
7: भारत और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन बड़े पड़ोसी हैं कह सकते हैं, हमने युद्ध भी देखा है। अब आपका भी नाम उस चिट्ठी में है जो लिख रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए?
8: नहीं नहीं, आप एक बात रखिए, अपने अभी ओपनिंग लाइन में पहलगाम का जिक्र किया, पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेल रहे थे ना, BCCI का निर्णय कौन ले रहा है? हम में से तो कोई फेवर में नहीं था उस वक्त, जो आक्रोश था देश में। आज तक हम नहीं जान पाए कि पहलगाम किसने किया, कौन कल्प्रिट है, कौन अकाउंटेबल है, किसके सर पे तलवार लटकनी चाहिए। चुप्पी साध ली। चलिए पहलगाम से थोड़ा पीछे जाते हैं, पुलवामा, उसका कुछ पता चला? सदन में 3 दफे मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं, शून्य, सन्नाटा। महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य और वहां के नागरिक में फर्क, ये महात्मा गांधी बता के गए थे। गांधी से तो बड़ा कोई दार्शनिक भी नहीं हुआ इस देश में, वो बता के गए थे। ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब, सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए, लिटरेचर को नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है।
9: देखिए पीडीपी का एजेंडा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो इस वक्त इख्तलाफ है दो मुल्कों के बीच में, हमारे और पाकिस्तान के बीच में, इसको एक दोस्ती का पुल बनना चाहिए और उसके लिए बातचीत जरूरी है। मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडरशिप है, जिसमें हसबोले हैं, जिसमें मोहन भागवत जी हैं, और भी कई लीडरों ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजाही होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए। बिल्कुल जो वाजपेयी जी कहा था कि आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं, मुझे लगता है उस चीज को एंडोर्समेंट मिल रही है। तो आज हमने ये लेटर भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, ये जानते हुए कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर कितना भी ताकतवर हो, उसकी जो लेगेसी है वो ये नहीं होती वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहा, उसकी लेगेसी इससे देखी जाती है कि उसने अपने वक्त में कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए।
0: और देखिए अयोध्या की बात करने वाले थे और अखिलेश यादव अयोध्या मंदिर में दान चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो सुनते हैं, बात करेंगे इस पर। लेकिन आप देखिए कि अयोध्या में जब दान चोरी के मामले में जांच हो रही है तो रोज नए खुलासे हो रहे हैं, और जब खुलासे हो रहे हैं तो परतें भी सामने आ रही हैं। जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की गई और उसके बाद अब और भी कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं, कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है। आप देखिए जेल में पूछताछ होती है, तीन बड़े किरदारों का जिक्र होता है जांच में, ट्रस्ट के तीन बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर खुलासे हो रहे हैं, खासतौर पर अनिल मिश्रा जिसने नियुक्तियों में अपनी मर्जी चलाई और अपनी पसंद के लोगों को पदों पर भर दिया। लेकिन बड़ा खुलासा आज तक ने किया, आज तक संवाददाता समर श्रीवास्तव उस रहस्यमय योग सेंटर तक पहुंचे जहां अविनाश मिश्रा ठहरता था, वहां उन्हें एक रहस्यमय बक्सा मिला जिसके बारे में शक है कि वो राम मंदिर से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और अविनाश शुक्ला के ठिकानों तक आज तक पहुंच चुका है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। योग सेंटर से ही बरामद हुई थी चोरी की रकम और यहां पर एक बक्सा भी मिला है। अब यहां पर एक क्यूआर कोड है और ऊपर राम राज्य की बात कही गई है, राम राज्य कोष के नाम से एक क्यूआर कोड बनाया गया था जो उस बक्से पर चस्पा था।
10: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब दो घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
11: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
10: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है, क्या ये मंदिर प्रशासन का है और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है, उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने की चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों ने बताया है कि टीम जांच की समीक्षा करेगी, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें कथित गबन की वित्तीय, फॉरेंसिक और डिजिटल विश्लेषण शामिल होगा। माना जा रहा है कि एसआईटी जल्द ही अयोध्या दौरे पर आने वाली है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: और देखिए, जैसा आपको पता है इस मामले में जांच चल रही है, जांच के बाद हो रहे हैं खुलासे। अब जो आरोपियों थे उनसे जेल के अंदर जाकर पूछताछ हुई। अब पूछताछ में अविनाश शुक्ला, उससे भी पूछताछ की गई। सबसे ज्यादा बरामदगी किसके पास से हुई है? अविनाश शुक्ला के पास से हुई है। अब अविनाश शुक्ला से जब पूछताछ हुई तो उसने कबूल भी किया और ये भी बताया कि कैसे चोरी होती थी, क्या तरीका था। पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
12: राम मंदिर में कैसे होती थी चढ़ावे की चोरी? कैसे काउंटिंग रूम से उड़ाई जाती थी रकम? कैश रूम से चोरों तक कैसे पहुंचती थी नकदी? चोरी के चक्रव्यूह में कौन कौन चेहरे? चढ़ावा चोरी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। राम भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले ये चेहरे अब जेल की सलाखों में हैं। चंदा चोरी का ये गिरोह पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, लेकिन इनके कारनामों का खुलासा खलबली मचा देने वाला है। जेल में बंद इन आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी की इस कहानी की तमाम परतें खुद ब खुद खुलती जा रही हैं। आज तक को इन आरोपियों से पूछताछ में हुए अहम खुलासों का पता चला है। जरा आप भी गौर कीजिएगा कि ये गिरोह कितनी बेफिक्री से चंदे की रकम पर हाथ साफ करता आ रहा था। पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी, बैंक कर्मियों की मिली भगत से चंदे की चोरी होती थी।
0: और यहाँ पर कहेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
17: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
16: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and non-stop sports talk so you don't miss a section of action.
17: They score!
16: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
18: Sokudo.
19: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
20: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
21: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
22: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। सेबी और एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
23: समझ कर, इन्वेस्ट कर।
24: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU, सोच बदलो और बैंक भी।
7: हमने तब भी सवाल किया था,
8: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
7: हम आज भी सवाल करते हैं,
8: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
7: ऑपरेशन अग्नि,
8: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
7: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
9: In association with
10: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: In association with
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
9: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: राम मंदिर चंदा मामले की जांच तेज, एसआईटी के 15 दिनों का एक्सटेंशन मिला, सभी पहलुओं की विस्तृत पड़ताल जारी। राम मंदिर चंदा घोटाले में नया खुलासा, एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की नजर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में भी शिकंजा, मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रुपए से अधिक की जमीन की मिली जानकारी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा मामले की जांच के बाद काउंटिंग व्यवस्था बदली, अब सीसीटीवी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया, 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सुरक्षा सख्त, काउंटिंग कक्ष में मल्टी लेवल तलाशी और ड्रेस कोड लागू, 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक और बड़ा खुलासा, अविनाश शुक्ला और अभिषेक पर आरोप के बाद योग केंद्र से निकाले जाने की जानकारी सामने आई। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासी बयानबाजी तेज, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप, क्या राम मंदिर के भी चौकीदार चोर निकले? राजीव राय ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले धर्म का इस्तेमाल सत्ता और कमाई के लिए किया गया। सहारनपुर में सीएम योगी का विकास दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी, पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीदी गई 5 मस्जिदों को संबंधित लोग खुद हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की, 6 मस्जिदें परियोजना की जद में, 52 भवनों पर भी तोड़फोड़ जारी। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जोरदार उत्साह, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ शुभकामनाएं देने के लिए पहुंची। अखिलेश यादव को जन्मदिन के मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने राजनीतिक और तंज भरी सलाह दी, एसी और पीसी वाली राजनीति का जल्द त्याग करना होगा बेहतर। बिहार विधान परिषद के नव निर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे, जदयू नेता निशांत कुमार भी एमएलसी पद की शपथ ग्रहण करेंगे।

0: तो प्रथम पूजा और बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा, जिसका इंतजार करोड़ों श्रद्धालुओं को बड़ी बेसब्री से रहता है, वो अब शुरू हो गई है। कतारें जत्थियां पहुंचने लगे हैं और पूरी सुरक्षा का इंतजाम यहां पर किया गया है। प्रथम दर्शन एलजी की भक्ति यहां पर देखी गई। अब बालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों पर बम बम भोले और हर हर महादेव की जय घोष गूंज रहे हैं। भोलेनाथ का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु आस्था के इस कठिन लेकिन पवित्र सफर पर निकल पड़े हैं। और इस बार सिर्फ भक्ति का उत्साह ही नहीं है, सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं और हर आने जाने वाले पर नजर इस वक्त रखी जा रही है। तो देखिए, यात्रा में हर जगह बाबा बर्फानी के जयकारे गूंज रहे हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाबा अमरनाथ के ये यात्राएं और ये नारे गूंज रहे हैं। अब भीड़ लोगों की बढ़ती जा रही है, इसके साथ ये भी खबर सामने आ रही है कि जो श्रद्धालु हैं वो पहलगाम हो या फिर बालटाल हो, हर जगह से वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जत्थों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है।
1: आस्था का महासफर, बाबा बर्फानी का बुलावा, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सफर। बाबा बर्फानी का बुलावा, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां हर कदम पर परीक्षा है लेकिन हर कदम पर महादेव का भरोसा भी है। बस मंजिल यही है कि बर्फ से बने बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजने वाले ये रास्ते अब फिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। इस बार बाबा बर्फानी का स्वरूप भी भव्य है। गुफा तैयार है, रास्ते तैयार हैं, टेंट सिटी तैयार है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का अभेद कवच भी तैयार है।
2: जी हाँ, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहाँ पर सुरक्षा की चौकसी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है, कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
1: आज तक आपको दिखाएगा बाबा बर्फानी तक जाने वाले रास्ते का पूरा सच, ग्राउंड रिपोर्ट, सुरक्षा तैयारी और अमरनाथ यात्रा की पूरी कहानी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: देखिए, 28 जून की तारीख आपको याद होगी, जब एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के वो गए थे, उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और अच्छे तरीके से संपन्न हो अमरनाथ यात्रा, इसकी उन्होंने कामना भी की थी, आशीर्वाद भी भगवान से मांगा था। अब जब जत्थे यहाँ से निकलना शुरू हो गए हैं, हर जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 3 जुलाई से औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर वहां पर श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो जाएगा और एक बार फिर से वही पवित्र गुफा बाबा बर्फानी के लिए जो विश्वास है, उस यात्रा का आगाज हो जाएगा।

0: जिस पल का करोड़ों श्रद्धालु इंतजार करते हैं वो घड़ी आ गई है। प्रथम पूजा के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बालटाल तैयार है, पहलगाम तैयार है, जम्मू तैयार है, रजिस्ट्रेशन जारी है, तैयारी पूरी है। अब बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी है।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर, और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है।
0: इस बार सिर्फ श्रद्धालु नहीं चलेंगे, उनके साथ चलेगी देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पहरा है, पूरे रूट पर चौकसी है, सिर्फ जमीन से ही नहीं आसमान और पानी में भी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है।
2: जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं।
0: इस बार ऐसी सुरक्षा है कि परिंदे भी पर ना मार पाए। 670 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियों की तैनाती है। इस बार ऐसी सुरक्षा है कि परिंदे भी पर ना मार पाए। 670 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियों की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी है, QAT, ऑपरेशन डाल, हाईटेक सर्विलांस और मल्टी लेयर सुरक्षा के साथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: अमरनाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से हो रही है और इसकी तैयारियां भी चारों तरफ अलग अलग तरीके से किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस बात का एहसास लोगों में दिला रही हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और वो बड़े स्तर पर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं।
0: पहलगाम रूट पर हर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है। डॉग स्क्वाड मुस्तैद है। डिग्गी के अंदर क्या है इसका जायजा डॉग स्क्वाड ही लेता है।
3: हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं। व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोगों को हिमालय की गोद तक खींच लाती है। पहाड़ बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सुरक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास। हर हर महादेव, बम बम भोले। श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। माँ तवी की आरती से पूरा जम्मू शिवमय हो चुका है।
4: जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। उस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे है। दरअसल कुछ खुफिया जानकारी मिली है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को कि आतंकी संगठन यात्रा में खलल डालने के लिए कोई खराफात कर सकते हैं। उसी के चलते इस पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जहां जहां से अमरनाथ यात्रा को गुजरना है वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल न सिर्फ तैनात है बल्कि मुस्तैद भी हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पहले जत्था जो है उसने जम्मू पहुंचना शुरू कर दिया है। कश्मीर के भी अलग अलग जो बेस स्टेशंस हैं वहां पर कुछ यात्री जमा हैं और उन्हें अब कुछ घड़ियों का इंतजार है ताकि वो बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ सकें और सबसे पहले दर्शन कर सकें।
5: ओम वंदे देव महापति।
0: अब सिर्फ इंतजार है 3 जुलाई का, जब बाबा अपने भक्तों को बुलाएंगे। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
6: और देखिए, पहलगाम से बालटाल तक और जम्मू कश्मीर से डल झील तक हर जगह सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि इस बार की यात्रा सबसे अलग होगी। जो पहले यात्रा होती है उससे बिल्कुल अलग। और ऑपरेशन शिवा क्या है इस यात्रा से जुड़ा हुआ, खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह की, आपको दिखाते हैं।
2: सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है। यहां सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं।
7: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की शुरुआत वहीं से हो जाती है जहां से श्रद्धालुओं का काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर पड़ता है। नेशनल हाईवे 44 यानी यात्रा की लाइफलाइन, यहीं तैनात है वैली क्विक एक्शन टीम QAT। ये ऐसे कमांडो हैं जिनकी जिम्मेदारी किसी भी आतंकी खतरे पर सबसे पहले और सबसे तेज कार्रवाई करना है। पूरे हाईवे पर लगातार गश्त, हर वाहन की जांच और हर गतिविधि पर पैनी नजर, यहीं से ऑपरेशन शिवा की पहली सुरक्षा परत शुरू होती है।
2: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी हां, 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां इस बार अमरनाथ यात्रा की गुफा के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसके लिए तैनात की गई हैं।
7: दूसरी सुरक्षा परत, बालटाल और पहलगाम पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्ते, बालटाल और पहलगाम दोनों को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सील कर दिया गया है। संवेदनशील पहाड़ियों पर अतिरिक्त तैनाती है, हर पड़ाव पर सुरक्षा बल मौजूद है। यात्रियों की आवाजाही पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तैयार हैं।
2: यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है, इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी है और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसका सीधा मकसद ये है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया है। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम कमांडो आप देखिए कि सड़कों पर लगे हुए हैं और हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी होती है और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम इनके द्वारा किए गए हैं।
7: अगर कोई खतरा जमीन पर नहीं तो क्या पहाड़ों या जंगलों से आ सकता है? इसी सवाल का जवाब है ड्रोन सर्विलांस। ऊंची चोटियां, घाटियों, घने जंगलों और यात्रा मार्ग के हर संवेदनशील हिस्से पर 24 घंटे ड्रोन उड़ रहे हैं। इनकी नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन है।
2: बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हां, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके।
7: इस बार सिर्फ जवान ही नहीं, तकनीक भी मोर्चे पर है। पूरी यात्रा मार्ग पर लगाए गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, हजारों सीसीटीवी कैमरे, हर आने जाने वाले पर नजर है, हर संदिग्ध चेहरे की पहचान और जरूरत पड़ने पर उसी व्यक्ति पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक अब बाबा बर्फानी की यात्रा की सुरक्षा का अहम हिस्सा है।
8: अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है और यहाँ पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके।
7: सिर्फ तकनीक ही नहीं, मानव शक्ति भी पूरी क्षमता के साथ तैनात है। 670 से ज्यादा पैरामिलिट्री कंपनियां जम्मू से लेकर श्रीनगर तक, बालटाल से लेकर पहलगाम तक, हर कैंप, हर चेक पोस्ट, हर मोड़ और हर संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां लगातार गश्त कर रही हैं। रोड ओपनिंग पार्टियां हर सुबह पूरे रास्ते की जांच करती हैं ताकि श्रद्धालुओं का काफिला पूरी तरह सुरक्षित आगे बढ़ सके।
2: यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षा का एहसास कुछ इस तरीके से होना चाहिए क्योंकि सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ ने बड़े स्तर पर यहां पर वैली क्यूएटी के कमांडोज को तैनात किया है। जी हां, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। इसके लिए 670 से ज्यादा कंपनियां सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनात की गई हैं। ऊंचाई जो जंगल वाले इलाके हैं उन जंगली इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है जो ऊंचाई वाले इलाकों में मौजूद रहेंगी स्नाइपर्स के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वैली क्यूएटी के कमांडोज यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो।
7: अमरनाथ यात्रा खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु डल झील और श्रीनगर घूमने निकलते हैं। यही वजह है कि सुरक्षा सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं है। डल झील में सीआरपीएफ की वाटर विंग 24 घंटे गश्त कर रही है। स्पीड बोट, हथियारों से लैस जवान और हर गतिविधि पर पैनी नजर। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन डल।
2: सीआरपीएफ डल लेक की भी सुरक्षा यहाँ पर करती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खास तौर पर डल लेक में। इसलिए जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहां पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहां पर स्थिति पैदा होती है उससे बचाने के लिए तमाम सीआरपीएफ के कमांडो यहां पर मौजूद रहते हैं।
6: यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: राजस्थान के दौसा में भीषण भिड़ंत की खबर सामने आई है जहां पर ट्रक और बस की भीषण भिड़ंत हो गई और यह बताया जा रहा है इसमें 8 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि स्लीपर एसी बस थी जो कि ऋषिकेश से इंदौर की ओर जा रही थी और मध्य प्रदेश के 40 अलग अलग जगहों से इस बस में यात्री इस सवार थे जिनमें से कई लोग घायल हैं जिनके अस्पताल में इलाज चल रहा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Today's match day preview is presented by Fanatics Sportsbook. Download the Fanatics Sportsbook app today. Winning hits different here. Spain faces Austria and Inglewood, California as a minus 900 favorite to qualify for the next round. Meanwhile, Portugal faces Croatia in Toronto, with markets giving the match a 28% chance to end in a draw and go in extra time. This has been your official Odyssey Sports Match Day preview brought to you by Fanatics Sportsbook. Winning hits different here. Listen in ahead of each match day for the latest betting insights from Fanatics all tournament long.
1: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you nonstop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
2: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारम्भ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
3: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं, जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
2: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे, वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं, लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पानी पर भारत का हाथ काटने की पाकिस्तानी गीतड़ भभके के बीच में बातचीत की वकालत में आगे आए दोनों ही मुल्कों के 117 नामचीन लोग पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी। चढ़ावा चोरी की रकम छिपाने में इस्तेमाल हुए योग केंद्र तक पहुंचा आज तक क्यूआर कोड वाले बक्से से चुराते थे पैसे। चंपत और अनिल मिश्रा के खाते की चेकिंग, एसआईटी को एक्स्ट्रा 15 दिनों का टाइम। नायरा एनर्जी के 7000 पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल 3 रुपए सस्ता हुआ। देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 183 रुपए तक घटी। 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर भी सस्ता। पुणे मर्डर केस में आरोपी चेतन को लेकर किले में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया नया खुलासा। केतन को पहले से सिया पर शक था। सगाई के बाद कई बार शिकायत भी की। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास भीषण हादसा। ट्रक से टकराते ही बस में लगी आग। 8 लोगों की मौत, 22 यात्री घायल। यूपी के उन्नाव में भी हादसा, 5 लोगों की मौत।

0: राम मधेचंदा चोरी के मामले में जांच तेज, एसआईटी को 15 दिनों का एक्सटेंशन, सभी पहलुओं की विस्तृत पड़ताल जारी। राम मंदिर चंदा घोटाले में नया खुलासा, एक साल में चढ़ावे में 50% की गिरावट पर एसआईटी की अब नजर, चंपत राय और अनिल मिश्रा के खातों की जांच। महंगी जमीन खरीद मामले में अभिषेक अंजा मुख्य आरोपी से जुड़ी 23 लाख रुपए से ज्यादा की जमीन की जानकारी मिली है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा मामले में जांच के बाद काउंटिंग व्यवस्था बदली गई, सीसीटीवी निगरानी में होगी प्रक्रिया, 12 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात। राम मंदिर में सुरक्षा सख्त, काउंटिंग कक्ष में मल्टी लेवल तलाशी, ड्रेस कोड लागू, 26 लोगों के बयान दर्ज। राम मंदिर चढ़ावा मामले में एक और बड़ा खुलासा, अविनाश शुक्ला और अभिषेक पर आरोपों के बाद से योग केंद्र से निकाले जाने की भी जानकारी। जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्रनेत्र गोपाल दास की तबियत अचानक बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सियासी बयानबाजी, समाजवादी पार्टी सांसद राजीव राय का आरोप, क्या राम मंदिर के भी चौकीदार चोर निकले? राजीव राय के द्वारा बीजेपी पर गंभीर आरोप, बोले कि धर्म का इस्तेमाल कर सत्ता और कमाई के लिए किया इन्होंने। सहारनपुर में सीएम योगी का विकास का दौरा, कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास, जनसभा को संबोधित भी किया। वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण अभियान में कार्रवाई जारी, पीडब्ल्यूडी द्वारा खरीदे गए 5 मस्जिदों को संबंधित लोग ही हटा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी ने 5 मस्जिदों की रजिस्ट्री पूरी की, 6 मस्जिद परियोजना की जद में है, 52 भवनों पर तोड़फोड़ जारी। लखनऊ में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जोरदार उत्साह, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ शुभकामनाएं देने के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्य आज शपथ लेंगे, बीजेपी नेता पवन सिंह पहली बार एमएलसी पद की शपथ लेंगे तो जेडीयू नेता निशांत कुमार भी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का ऐलान, सभी सरकारी हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, सख्त निगरानी होगी, अनियमितताओं पर कार्रवाई का वादा। नीट यूजीडी एग्जाम मामले में संसदीय शिक्षा समिति की बैठक, डीजीएनटीए अभिषेक सिंह और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को तलब किया। नीट यूजीडी एग्जाम प्रक्रिया की समीक्षा के बाद संसद की स्टैंडिंग कमेटी अब सक्रिय है, पूर्व इसरो प्रमुख को एनटीए सुधारों पर चर्चा के लिए बुलाया गया। केतन मर्डर केस में पुलिस ने लोहागढ़ किले पर क्राइम रिक्रिएट किया, पुतले को 300 से 400 फीट की गहराई पर धक्का देकर घटनाक्रम को दोहराया गया। केतन अग्रवाल मर्डर केस में कानूनी लड़ाई तेज, वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सीए गोयल के भाई को 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस भेजा। एसआईआर चुनाव आयोग पर भड़का विपक्ष, 23 पार्टियों ने सीजीआई को लिखा पत्र, दिल्ली समेत 5 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने एसआईआर के तीसरे चरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बोले सत्यापन का पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा, 5 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बोले सभी मतदाताओं के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है, 13,000 से ज्यादा बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई। भड़काऊ बयान मामले में हुमायूं कबीर की गिरफ्तारी, उन पर गिरफ्तारी की तलवार, मुर्शिदाबाद के 2 थानों से नोटिस जारी, सीएम शुभेंदु अधिकारी के आदेश पर पुलिस का एक्शन। पंजाब में भी एसआईआर की शुरुआत, बीएलओ ने एसआईआर के तहत पंजाब के सीएम भगवंत मान और उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर का फॉर्म जमा किया। पीएम मोदी के सभी विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य पर चर्चा। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, बोले कि सीधा जनता तक योजनाओं का असर पहुंचे। भारत पाक रिश्तों को सामान्य बनाने की अपील, 117 हस्तियों ने पीएम मोदी और पीएम शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है। भारत से 61 तो पाकिस्तान की तरफ से 56 हस्ताक्षर हैं, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर समेत कई प्रमुख नाम इसमें शामिल। भारत पाकिस्तान पर मनोज झा का सवाल कि दुबई में क्रिकेट हो सकता है तो संवाद पर आपत्ति क्यों है, बोले कि कला और संगीत को वीजा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कोटा बनेगा स्पोर्ट्स हब, 100 करोड़ से जेके पवेलियन होगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ओम बिरला ने लगभग 4.25 करोड़ की सुविधाएं जनता को सौंपी। बिहार के 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय खोलने की केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति, सभी 18 जिलों में बिहार सरकार केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देगी। बिहार सरकार ने 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, इसमें डीजी रैंक से लेकर एसडीपीओ रैंक के अधिकारी भी शामिल। दिल्ली में सर्दियों के लिए सबसे बड़ा प्रदूषण एक्शन प्लान है, बिना पीयूसी नहीं मिलेगा कोई भी पेट्रोल, 50% कर्मचारी घर से ही करेंगे काम। श्रीगंगानगर दुष्कर्म मामले में बुलडोजर कार्रवाई, जिस होटल में नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म हुआ वहां प्रशासन ने कार्रवाई की, 12 आरोपी गिरफ्तार थे। राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, हरिद्वार से इंदौर जा रही बस ट्रेलर से टकराई, इसमें कई लोगों की मौत। हादसे में 8 यात्रियों की जान गई, 22 यात्री घायल भी हैं, बस में लगभग 40 यात्री सवार थे। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी हादसा, 5 लोगों की मौत, 5 घायल भी हैं, मृतकों में 2 बच्चियां भी शामिल। उन्नाव हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को तुरंत घायलों को समुचित उपचार के निर्देश। बठिंडा के डबवाली रोड पर भीषण सड़क हादसा, घोड़ा ट्रॉला और मेटाडोर की टक्कर में 3 लोगों की मौत। पटना में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने के लिए पहुंचे आबकारी विभाग की टीम पर माफिया ने की फायरिंग, बाल बाल बचे जवान। बिजनौर के युवक की हापुड़ में पीट पीट कर हत्या, ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। हरिद्वार में मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई, 9 लोगों को हिरासत में लिया गया। छत्रपति संभाजीनगर में एक पूर्व छात्र ने शिक्षक पर चाकू से जानलेवा हमला किया, टीसी को लेकर चल रहा था विवाद। अलीगढ़ में घर के बाहर चारपाई रखने को लेकर भीड़े लोग देखते देखते हिंसक रूप धारण कर ले। बेंगलुरु में भारी बारिश के बीच में कंपाउंड वॉल ढहने से भूस्खलन मलबे में घर भी दब गया, 2 बच्चियों समेत 3 लोगों की मौत, 3 घायल। गुजरात के भरूच में तेज बारिश के बीच निर्माणाधीन मॉल की दीवार गिरी, पिता और बेटे की इसमें मौत। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कच्चे मकान में रह रहे लोगों ने कई बार शॉपिंग मॉल वालों से शिकायत भी की थी। मध्य प्रदेश के सतना में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, स्कूल बस डूबने से हालात खराब, लेकिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई में बारिश के बीच में डीएन नगर मेट्रो स्टेशन के पास में गिरा पेड़, रास्ता जाम, लोगों की मुश्किल बढ़ी। मुंबई में भारी बारिश के चलते अंधेरी सबवे फिर जलमग्न, आवाजाही प्रभावित हुई। मानसून की पहली मूसलाधार बारिश से चंबा बेहाल, सलूणी तीसा भूस्खलन से यहां जनजीवन प्रभावित। डोडा में बादल फटा, अचानक बाढ़ और बलेसा सबसे ज्यादा प्रभावित है, संपर्क मार्ग कई बंद। पठानकोट में जुलाई की पहली बारिश में नगर निगम के दामों की पुल खुली, मुख्य बाजारों समेत कई जगहों पर 1 से 2 फीट तक पानी भरा। बारिश के चलते पठानकोट भी जलमग्न, गांधी चौक मेन बाजार समेत कई इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। सिक्किम में लगातार बारिश के चलते हालात खराब, कई जगहों पर भूस्खलन, एक गाड़ी मलबे में फंस गई। पहली बारिश में डूबा दरभंगा नगर निगम का दफ्तर भी, मुख्य सड़क पर घुटनों तक पानी भरा। लोगों ने दरभंगा नगर निगम की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े, कहा कागजों पर सिर्फ काम होता है, बाकी कोई काम नहीं। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किरण रिजिजू के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, नुकसान का आकलन भी। सोनीपत में गंदे पानी पर घमासान, शहर में पेयजल सप्लाई में मिल रहे गंदे पानी और जल भराव के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच में नायरा एनर्जी ने पेट्रोल 5 रुपए तो डीजल 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया, देश भर में 7,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर दर लागू। 2 साल से ज्यादा समय के बाद निजी कंपनी ने घटाए खुदरा ईंधन दाम, सरकारी तेल कंपनियों ने कीमतों में नहीं किया कोई भी बदलाव। आज से कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता, दिल्ली में प्रति सिलेंडर अब 183 रुपए ये सस्ता होकर 2930 रुपए में मिलेगा। आज जुलाई के पहले दिन से देश भर में कई बड़े बड़े बदलाव लागू, पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे आधार बैंकिंग से जुड़े हुए नियम प्रभावी होंगे। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं आज से फिर बहाल, आरबीआई ने नया फ्रेमवर्क लागू किया। बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा की तैयारियां पूरी, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, श्रद्धालु उत्साहित। कल रवाना होगा बाबा बर्फानी के भक्तों का पहला जत्था, एलिमनो सिन्हा दिखाएंगे हरी झंडी, अमरनाथ बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालु। ऑपरेशन शिवा की सुरक्षा में होगी अमरनाथ यात्रा, जमीन से लेकर आसमान तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। हर पड़ाव और हर रास्ते को लेकर संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा एजेंसीज की पैनी निगाह, बिना किसी भय के दर्शन कर सकेंगे भक्त। अमरनाथ यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद बालटाल रूट पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने, दूसरी संबंधित एजेंसीज ने मॉकड्रिल किया। बड़गांव रेलवे स्टेशन पर एसडीआरएफ और सुरक्षा बलों ने आपातकालीन तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किए। पुंछ में आगामी मॉनसून के मौसम को लेकर सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल किया है और आपदा की तैयारियों को जांचने के लिए भी अभ्यास किया गया। बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों को रस्सी और विशेष उपकरणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकालने का अभ्यास किया गया। एसडीआरएफ इसके साथ साथ सीआरपीएफ पुलिस के जवान इसमें शामिल हुए। अगरतला में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सैलानियों से गुलजार हुआ पुंछ, बड़ी संख्या में पीर की गली पहुंचे सैलानी। चमोली स्थित फूलों की घाटी में पहुंचे रिकॉर्ड पर्यटक, अब तक 7,000 से ज्यादा सैलानियों ने दीदार किया। 34 विदेशी सैलानियों ने फूलों की घाटी का दीदार किया, पिछले साल के मुकाबले इस बार 1.5 गुना ज्यादा लोग पहुंचे। दिल्ली के चित्रंजन पार्क में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन, पश्चिम बंगाल के 12 किस्म के आमों की प्रदर्शनी, 5 जुलाई तक चलेगा फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल के साथ साथ हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट से बनी हुई चीजों के भी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ धीरज सेठ को साउथ ब्लॉक में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को भी याद किया। फिल्म जय हिंद जय सिंध का फर्स्ट लुक हुआ जा रही फिल्म में महेश मांजरेकर, जयप्रदा, जरीन वहाब, विक्रम कोचर अहम रोल में। फिल्म अल्फा का नया प्रोमो रिलीज, 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज, फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू। फिल्म तेरा यार हूं मैं का दूसरा गाना तुम ही से रिलीज हुआ, 24 जुलाई को रिलीज हो रही फिल्म। देहरादून में बाबा नीव करौरी पर आधारित फिल्म हनुमान अंश के निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए देश भर में सामुदायिक भंडारे का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए। आज इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज में खेले जाएंगे कुल 5 T20 मैच और सबसे बड़ा सवाल वैभव क्या होंगे शामिल। 10 बजे से खेला जाएगा मैच रात को और शहर की कप्तानी में पहली T20 सीरीज जीतने पर टीम इंडिया की निगाह होगी। इंग्लैंड दौरे पर एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर नजर, आयरलैंड के दौरे पर मौका नहीं मिला। हार्दिक पांड्या ने करियर के लिए एक बड़ा फैसला लिया, मुंबई छोड़कर बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को अपना स्थायी ट्रेनिंग बेस बनाया। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027-28 के लिए अपना नया वर्ल्ड टूर कैलेंडर जारी किया, टीवी पर लाइव दिखाए जाने वाले मैचों की संख्या भी बढ़ाई गई। और अब बड़ी खबर आपको देते हैं, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने आस्था के साथ निर्माण किया है। मेरे पोस्ट के बाद ही मामला सामने आया, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, हिम्मत जुटाकर और प्रभु श्री राम का असली भक्त होकर मैंने फैसला किया और पोस्ट किया। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं, एक बार फिर से उन्होंने घेरा और इस विषय को उठाने का क्रेडिट भी एक तरीके से अखिलेश यादव लेते हुए दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने पोस्ट भी किए थे, पोस्ट के बाद से बहुत तरह के सवाल उठे और उन सवालों के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें SIT के गठन की मांग की गई मुख्यमंत्री से, फिर SIT का गठन भी हुआ और अब अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत हिम्मत जुटाकर यह काम मैंने किया।
1: मैंने जो कुछ किया, और मैं फिर बोलता हूं आपको, जब मैं इटावा का मंदिर निर्माण कराने जा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि ये जो मंदिर निर्माण होगा ये शिव शक्ति अक्ष रेखा पर आ जाएगा, न मुझे ये जानकारी थी कि जमीन उसी पर है। लेकिन जब निर्माण शुरू होना हुआ और जब जो बनाने वाले लोग हैं वो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी पर जो दोनों चीजों को जानकारी रखते हैं, उन्होंने जब चीजों को देखा और नापा और बताया, तो ये मैं नहीं करा रहा हूं, हम तो माध्यम हो सकते हैं। इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया।
0: सहारनपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं।
2: मुख्यमंत्री जी बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत।
0: तो सहारनपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां पर सभा को संबोधित उन्होंने किया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस के। केतन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर आज चेतन चौधरी की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। लोहगढ़ किले में आज सुबह चेतन को लेकर पुलिस पहुंचे थे और 18 जून की उस वारदात को लेकर कई तथ्य सामने जो आए उनकी पड़ताल की गई। क्राइम सीन रिक्रिएट करके पुलिस ने यह जांचा कि केतन को उस दिन धक्का कैसे दिया गया था, कौन किस पोजीशन पर खड़ा था, वो तमाम चीजें जो सवाल इस पूरे के पूरे केस से जुड़े हुए हैं उन सवालों को एक बार फिर से दोहराया गया।

0: पुणे पुलिस पहली दफा चार दिन पहले इस लोहगढ़ किले में सिया के साथ पहुंची थी और अब आज दूसरी बार चेतन को लेकर पहुंची। लोकेशन वही, मर्डर मिस्ट्री वही, सवाल भी करीब वही जो सिया से हुए थे। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस आज सुबह करीब 8 बजे लोहगढ़ किले में पहुंची। जांच अधिकारी चेतन को लेकर सीन पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की पड़ताल की। सोमवार को जब चेतन और सिया को पुणे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था तो दलील दी थी कि अभी लंबी जांच करनी है और सबसे अहम ये कि चेतन को क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह सिया की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। अदालत से रिमांड मिलने के 2 दिन बाद आज पुलिस सुबह लोकगढ़ किले में पहुंची। पुलिस के साथ आज भी एक पुतला था। पुतले का वजन ठीक केतन के जितना, लंबाई भी ठीक उतनी ही, बस फर्क सिर्फ ये था कि आज सिया की जगह चेतन था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आज पुलिस ने चेतन से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। उसने डमी को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। तब पुलिस ने बारीकी से सिचुएशन को समझा, देखा और जाना। ठीक यही प्रक्रिया सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने दोहराया था। एक बार फिर उस जांच प्रक्रिया के जरिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि केतन को किसने खाई में धक्का दिया था। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को दोहराया जिसमें केतन और सिया के पीछे पीछे चलते हुए चेतन उनका पीछा कर रहा था।
1: सिया जो है उसका ऑलरेडी रिक्रिएशन हुआ है और उसके बाद यानी वड़गांव सत्र न्यायालय में सिर्फ चेतन के रिक्रिएशन के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और आज उसको सुबह 8 बजे यहां पर लाया गया। पूरी तरह पुलिस बंदोबस्त था और उसके बाद यानी 2.5 घंटे तक ये जो क्राइम रिक्रिएशन है चला है। इसके बाद इस चेतन को जो है लोनावाला ग्रामीण पुलिस ने पुलिस संरक्षण में अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और भी उससे पूछताछ होगी क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस कस्टडी जो है खत्म होने वाली है और उसके बाद ही मतलब अभी भी पुलिस पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे और कुछ बातें जो है सामने आ सकती है।
0: 28 जून को पुणे पुलिस सिया को लेकर किले में पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक वहां रिक्रिएशन किया था। अब चेतन के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद पुलिस को भरोसा है कि कई अहम तथ्य सामने आएंगे जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
2: चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गया था। उसने सभी इवेंट्स बताए हैं, क्या क्या हुआ था उसके, उसकी अभी तपास आगे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, अभी तपास कर रहे हैं।
3: लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था, किस प्रकार से रिक्रिएशन किया गया है?
2: चेतन के बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया।
0: इस तफ्तीश के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने पहले से ही यह तय कर रखा था कि अगर दोनों इस मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है, क्या बताना है और किन बातों का खुलासा नहीं करना है। तय प्लान के मुताबिक दोनों खुद को तैयार कर चुके थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि पूछताछ के दौरान दोनों के दिए जवाब भी उसी साजिश के तहत हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
1: अभी रिक्रिएशन किया गया, क्या क्या हुआ है और कितने घंटे तक
4: मेमोरेंडम हुआ है और कुछ नहीं, बस
1: कितने का पुतला लेके गए?
4: नहीं, वो बात की अलग होती है, वो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है।
1: तो ऊपर जाके क्या किया है, मतलब
4: मेमोरेंडम हुआ और कुछ नहीं,
5: गेट एनालिसिस किया गया था?
4: नहीं, वो बात की इन्वेस्टिगेशन की बात है, दैट एज पर रिक्रिएशन जो होता है वो सिचुएशन एज पर हिज लीड। सर,
1: कितने किलो का ये पुतला था और किस प्रकार से मतलब ऊपर से धक्का दिया,
4: दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज। ऐसा नहीं कर सकते।
0: सिया और चेतन ने जो किया उस पर जांच जारी है, लेकिन ये भी सामने आया है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले जनवरी महीने में दोनों की कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके लिए परिवार के ज्योतिषी को बुलाया गया था। ज्योतिषी ने बताया कि दोनों की कुंडली में 27 गुण मिल रहे हैं तो ये आदर्श विवाह हो सकता है। इसी वजह से दोनों परिवार रिश्ते को लेकर सहमत हो गए। लेकिन यहाँ कुंडली काम ना आई, केतन को सिया और चेतन ने मिलकर मार डाला। अब पुलिस दोनों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है। श्री कृष्ण पंचाल, पुणे, आज तक।
6: लोहगढ़ किले में रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को जो भी कामयाबी मिली हो जो भी सुराग मिले हो, लेकिन सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जांच के दौरान सामने आया कि केतन को पहले से सिया पर शक हो चुका था। वो अपने मंगेतर और चेतन की करीबी के बारे में जान चुका था। उसने अपने बकायदा परिजनों से शादी तय करने को लेकर भी सवाल पूछे थे।
7: सिया पर केतन का शक बना उसकी हत्या की वजह। सिया बेनकाब हुई तो रची हत्या की साजिश। सिया चेतन एक दूसरे के करीब, केतन को लगाया ठिकाने। हत्या के 12 दिन बाद एक ऐसा खुलासा जो इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में काफी अहम है। खुलासा ये कि केतन अग्रवाल जान गया था कि सिया की असलियत क्या है। वो जान चुका था कि उसकी मंगेतर उसे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती है। केतन को पता लग चुका था कि सिया चेतन के बहुत करीब है। इसी साल केतन और सिया की शादी तय हुई थी। फरवरी में सगाई हो चुकी थी। नवंबर में दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, अटूट रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे। लेकिन सगाई के बाद केतन को ऐसे सच का पता चला जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर रहा था। लिहाजा वो मौत से पहले बार बार घरवालों से सवाल पूछ रहा था। उसने अपने घरवालों से सिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो केतन ने सिया के बैकग्राउंड के बारे में अपने घरवालों से पूछा था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत पत्र में यह दावा किया है। अपने बेटे का जिक्र करते हुए विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सिया चेतन के बहुत करीब थी। केतन को इसका शक हो चुका था। केतन ने आशंका जताई थी कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती है। उसने परिवार वालों से ये भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। केतन ने घर वालों से बताया था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का नाम लेती थी। केतन ने ये भी कहा था कि जब भी वो सिया को कॉल करता था उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था।
6: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
8: आज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, इन एसोसिएशन विद भारत।
9: Turn your TV into a portal to serenity with Zen Life by Stingray. Enjoy wellness videos for yoga, sleep, meditation, and more. Tailored to every moment of your day. Zen Life by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
8: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
11: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1936।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं,
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: भारत पाकिस्तान के 117 दिग्गज पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योग केंद्र से क्यूआर कोड वाले बक्से बरामद। चंपत राय अनिल मिश्रा के खातों की भी जांच तेज। एसआईटी जांच 15 दिन बढ़ी। समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा कि उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेस वे, 2017 से पहले होते थे सिर्फ दंगे। पुणे मर्डर केस में आरोपी चेतन को किले पर ले गई पुलिस, रिक्रिएट हुआ क्राइम सीन। केतन को पहले से सिया पर था शक, कई बार की थी शिकायत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ट्रक से टकराई बस, आग लगने से 8 जिंदा जले। यूपी के उन्नाव में भी भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर रोजाना खलबली मचाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने जेल जाकर 8 आरोपियों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। जांच में ट्रस्ट के 3 बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, खासकर अनिल मिश्रा को लेकर, जिन्होंने नियुक्तियों में अपनी मनमर्जी चलाई, अपनी पसंद के लोगों को पदों पर भर दिया। इधर आरोपी अविनाश शुक्ला के एक ठिकाने का भी पता चला है जहां वो लूट का धन रखता था। आज तक उस योग सेंटर तक पहुंचा जो जेल जाने से पहले अविनाश शुक्ला का ठिकाना हुआ करता था। तो चढ़ावा चोरी कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रहे हैं, इस चोर गैंग की करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है और सूत्रों के हवाले से कई बड़ी खबरें हैं। और पुलिस की जो जांच चल रही है, पूछताछ में कई बड़े खुलासों के बाद एक बार फिर से एसआईटी जल्द ही अयोध्या आने वाली है और उम्मीद है कि आरोपियों के रिमांड लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले जो ताजा खुलासा हुआ है उस पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेन देन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार एफआईआर दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
2: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टीकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है। क्या ये मंदिर प्रशासन का है और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि डॉक्टर चैतन्य का योग केंद्र है। यहाँ के प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही अविनाश के भाई अभिषेक को शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
3: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दे ताकि वो भी कुछ
2: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
3: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।
1: इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है, उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब इस पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने की, चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों ने बताया है कि टीम जांच की समीक्षा करेगी, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगी जिसमें कथित गबन की वित्तीय, फॉरेंसिक और डिजिटल विश्लेषण शामिल होगा। माना जा रहा है कि SIT जल्द ही अयोध्या दौरे पर आने वाली है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: मंगलवार को पुलिस ने जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक क्योंकि सबसे ज्यादा बरामदगी अविनाश शुक्ला के पास से हुई थी इसलिए सबसे लंबी पूछताछ भी उससे की गई। ये कहा जा रहा है कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पूरी डिटेल बताई कि चोरी को कैसे अंजाम दिया जा रहा था।
4: चोर चोर सौतेले भाई, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है।
5: भाजपा का नाम भाजपा नाम रख देना चाहिए।
6: लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी बाबर जनता पार्टी हो गई।
4: अभी तो भगवान ने सच्ची चोरी की पोल खोली है, अभी प्रभु श्रीराम और भी पोल खोलेंगे। कौन कौन लोग शामिल हैं?
7: राम मंदिर में कैसे होती थी चढ़ावे की चोरी? कैसे काउंटिंग रूम से उड़ाई जाती थी रकम? कैश रूम से चोरों तक कैसे पहुंचती थी नकदी? चोरी के चक्रव्यूह में कौन कौन चेहरे? चढ़ावा चोरी के नेटवर्क पर बड़ा खुलासा। राम भक्तों की आस्था पर डाका डालने वाले ये चेहरे अब जेल की सलाखों में हैं। चंदा चोरी का ये गिरोह पूरी तरह बेनकाब हो चुका है, लेकिन इनके कारनामों का खुलासा खलबली मचा देने वाला है। जेल में बंद इन आरोपियों से पूछताछ के बाद चोरी की इस कहानी की तमाम परतें खुद ब खुद खुलती जा रही हैं। आज तक को इन आरोपियों से पूछताछ में हुए अहम खुलासों का पता चला है। जरा आप भी गौर कीजिएगा कि ये गिरोह कितनी बेफिक्री से चंदे की रकम पर हाथ साफ करता आ रहा था। पूछताछ में पता चला कि चिन्नू यादव के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। बैंक कर्मियों की मिली भगत से चंदे की चोरी होती थी। एक आदमी चोरी करता, बाकी उसे घेर कर खड़े होते। चोरों को पता था कैमरे कहां कहां लगे हैं। कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम दिया जाता। पहले चोरी की रकम बाथरूम में छिपाए जाते, मौका देकर बाथरूम से पैसे निकाले जाते।
8: चोरों के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल बन गया था। वो कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। काउंटिंग करने वाला इन्वॉल्व, जांच करने वाला इन्वॉल्व, मॉनिटरिंग करने वाला इन्वॉल्व, वहीं कंट्रोल रूम देखने वाला भी इन्वॉल्व। यानी कि जब सभी शामिल तो कौन पकड़ेगा और कौन रोकेगा।
7: यानी कि चढ़ावा चोरों के लिए मैदान खाली वाली स्थिति थी। वो बड़े आराम से बड़े मौज में चंदे की रकम मंदिर के भीतर से उड़ाते रहे और मेहरबान ट्रस्ट के पदाधिकारी आंखें मूंदे देखते रहे। चोरी की रकम की बंदरबांट होती रही, आरोपी जमीन मकान जायदाद खरीदते रहे, धरना सेठ बनते रहे। सूत्रों की माने तो पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपियों ने चोरी की रकम से जायदाद करना कबूल किया है। ये भी माना कि उन्हें इतनी जल्दी भंडाफोड़ होने की उम्मीद नहीं थी। चोरी के इस पूरे खेल में ट्रस्ट का किरदार भी सवालों के घेरे में है। पूछताछ में पुलिस को अनिल मिश्रा की भूमिका को लेकर कई अहम बातों का पता चला है। यानी कि आगे हिसाब सबका होना है, पूरे गिरोह पर गाज गिरना तय है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में बड़े बड़े चेहरों की भूमिका को लेकर अहम खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा खास तौर पर हैं। पता चला है कि अनिल मिश्रा की नियुक्तियों में जमकर चली, चुन चुन कर उन्होंने अपने लोगों को, मनपसंद लोगों को राम मंदिर में उनकी नियुक्तियां करवाई।
9: इन तीन चेहरों पर टिकी है चढ़ावा चोरी की पूरी पड़ताल। इन तीन चेहरों को पता है चढ़ावा चोरी की पूरी हकीकत। जांच एजेंसियों के रडार पर तीन बड़े किरदार, चंपत राय महासचिव, ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ट्रस्टी गोपाल राव। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, इन तीन किरदारों की भूमिका अहम से अहम होती जा रही है। कैसे ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले कुछ तथ्यों को आपको बताते हैं। आरोपी अनुकल्प और लवकुश मिश्रा अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी रहा है। एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव रिटायर्ड बैंक कर्मी है और बाकी बचे पांच की नियुक्ति भी ट्रस्ट के किसी न किसी पदाधिकारी की सिफारिश पर हुई थी।
8: सूत्रों की माने तो ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा के सबसे अधिक 100 के ऊपर सदस्य ट्रस्ट में भर्ती करवाए थे, यानी कि उनका दबदबा ट्रस्ट में था और उनके कहने से भर्ती भी होते थे और निकाले भी लोग जा सकते थे। जो जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है उसमें अनिल मिश्रा से जुड़ी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा अनिल मिश्रा की भर्तियों का है उसके मुकाबले चंपत राय और अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आधा भी नहीं है। इस बात से साफ होता है कि अनिल मिश्रा की ट्रस्ट में कितनी चलती थी और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें क्या अनिल मिश्रा का भी रोल आने वाले वक्त में सामने आने वाला है, जांच बताएगी।
9: अब तक के खुलासों से साफ होता जा रहा है कि ट्रस्ट को अपनी मर्जी से चलाया जा रहा था। इन तीन लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया था राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। सेटिंग करने में नंबर वन थे अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जिसको चाहते थे उसको नौकरी दे देते और कोई हो हल्ला भी नहीं होता। मंदिर प्रबंधन के हर एक लेवल पर अनिल मिश्रा ने अपने लोगों को फिट कर रखा था। जब बैंक ने गणना कर्मियों को हटाने की कोशिश की तो अनिल मिश्रा ही सबसे ज्यादा अड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गाज उनके लोगों पर ही गिरेगी।
10: देश को बताऊंगा कि इस सिस्टम ने किस तरह से नीचे से ऊपर टॉप टू बॉटम इस सिस्टम ने किस तरह से भगवान राम के आभूषण, उनके नगदी, उनका खजाना, उनकी रामशिलाएं लूटने वालों को किस तरह बचाया गया है। ये आठ चोरों को पकड़ा आपने, ये गैंगस्टर लोग हैं, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, इन देशद्रोही, रामद्रोही, धर्मद्रोही लोगों को बजाय जेल भेजने के आप बताते हैं बड़े त्यागी हैं।
9: अगर चंदा चोरी का मामला तूल नहीं पकड़ता तो ट्रस्ट के कामकाज के तरीकों पर कभी सवाल नहीं उठते। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अनिल मिश्रा सीधे सीधे एसआईटी के निशाने पर है। एसआईटी अनिल मिश्रा पर कमीशन लेने के आरोपों की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उनकी कई संपत्तियों के बारे में पता चला है। एसआईटी ये भी आकलन कर रही है कि ट्रस्टी बनने के बाद उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी। सूत्र बताते हैं कि इसमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है जो सामान्य नहीं है। जब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपेगी तो उसमें इसकी कई परतें और खुलेंगी। समर श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अहम बैठक बुलाई। इसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिव शामिल हुए। प्रधानमंत्री का मंत्र इस बैठक में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर मंथन हुआ। विभागों के बीच तालमेल पर जोर दिया गया। क्या यही वो मंत्र है जो मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिख सकता है?
11: तारीख 21 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहम मीटिंग में पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की इस बैठक में सरकार के कामकाज, मंत्रालयों की प्रदर्शन और आगे की योजनाओं पर चर्चा होती है। पीएम मोदी ने तब अपने मंत्रियों से तेजी से काम करने और फाइलों में देरी नहीं होने देने को कहा। इसके 37 दिन बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के विदेश दौरे से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद फिर दिल्ली में सेवा तीर्थ में एक अहम बैठक शुरू करते हैं। इस बार बैठक में उनके मंत्री नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार फेरबदल की अटकलों के बीच केंद्रीय सचिव शामिल हैं। खबरदार करता सवाल है, केंद्रीय सचिवों संग प्रधानमंत्री की बैठक का जल्द होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या केंद्रीय सचिवों से उनके विभागों का रिपोर्ट कार्ड पीएम ले रहे हैं ताकि पता चले एक महीने में किस मंत्री ने कितना कदम उठाया, या फिर केंद्रीय सचिवों को आगे के रोड मैप के लिए प्रधानमंत्री तैयार कर रहे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए नया मंत्रिमंडल आने वाला है?
12: एक महीना पहले भी मंत्री परिषद के साथ सचिवों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि सरकारी कामकाज को और आसान बनाया जाए, आर्थिक सुधारों पर और ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। इस बार भी बैठक में आर्थिक सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, नियमों में ढील और विकसित भारत 2047 मुख्य एजेंडा है।
13: जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे तभी निर्णय प्रभावी होंगे।
11: आज तक आपको सोमवार को बता चुका है, मानसून सत्र से पहले या तो 5 जुलाई या फिर मोदी के 3 देशों की यात्रा से 11 जुलाई को लौटने के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। ऐसे में केंद्रीय सचिवों की बैठक करते प्रधानमंत्री क्या ये भी तय कर रहे हैं कि जो जिम्मेदारी वो मंत्रिमंडल फेरबदल करके देने वाले हैं उससे पहले सचिवों की टीम पूरी तरह तैयार रहे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब मोदी कैबिनेट में क्या बदलाव होगा, कौन अंदर होगा, किसे बाहर किया जाएगा, क्या पाला बदलने वालों की लॉटरी खुलेगी, पुराने पर भरोसा होगा या नए को मौका मिलेगा, एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
13: नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, यह हमारी कार्य संस्कृति है। यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं।
11: सेवा तीर्थ से जो बात प्रधानमंत्री ने फरवरी महीने में कही, क्या उसी को पालन कराने वाला मंत्रिमंडल विस्तार जल्द नजर आ सकता है? और तब सवाल आता है, पुराने सहयोगियों के पद ज्यादा बढ़ेंगे या नए समर्थक सांसदों के? जो बागी सांसद समर्थन कर चुके हैं उनको कितना मंत्री पद मिलेगा? इन दो सवालों के साथ सबसे पहले ये वीडियो याद आता है जब ममता बनर्जी के पार्टी के 20 बागी लोकसभा सांसद स्पीकर से मिलकर बताते हैं कि वो एनसीपीआई नाम की पार्टी में शामिल हो चुके हैं और देश के विकास में योगदान के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन करते हैं।
14: हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में।
11: टीएमसी के बागी सांसद 20 हैं जिनकी एनसीपीआई इस वक्त एनडीए को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि इनके सांसद नीतीश और नायडू की पार्टी से भी ज्यादा हैं। क्या इन बागी सांसदों को मंत्री पद मिलेगा, और अगर हाँ तो वो किसको? काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, माला रॉय, यूसुफ पठान, अरूप चक्रवर्ती या फिर बागी सांसद में से कोई और? लेकिन सवाल तो यह है कि इनमें से क्या कोई एक बड़ा नेता है जो इन सब का नेतृत्व करते हुए मंत्री पद हासिल कर सके?
12: सबकी नजर इस बात पर है कि नए समर्थन देने वाले दल और पुराने सहयोगी दलों में किसकी संख्या ज्यादा मंत्री परिषद में होगी। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनसीपीआई में विलय कर स्पीकर को समर्थन पत्र भले ही दे दिया हो, लेकिन स्पीकर का फैसला आना अभी बाकी है। ममता बनर्जी के 20 बागी सांसदों ने एक छतरी के नीचे आकर एनडीए को समर्थन तो दे दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि इनमें नेता कौन है।
11: तो क्या
0: और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो. Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits...
1: Somebody save me.
0: ...to timeless favorites.
2: And life is like a song.
0: And new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
0: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: Oral health ka sa.
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
6: तो
8: बात है B-Mark, the mustard specialist since 1933.
9: गुंडा करती बताते एक सरकार है।
10: जगह जयपुर कॉलेज प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज मौका पैरामेडिकल परीक्षा का अचानक यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो जाती है नाराज छात्र कुर्सियां उठाकर फेंकने लगते हैं जानते हैं क्यों जयपुर के इस परीक्षा केंद्र पर नकल करवा के पैरामेडिकल के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहाँ परीक्षा पास करवानी थी लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुलकर सामने आ गई कैसे इसलिए इस वीडियो पर गौर करिएगा यहाँ कॉलेज में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे सैकड़ों छात्र देखिए नीचे जमीन पर लगे टेंट पर ऊपर से कुर्सियां फेंक रहे हैं पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि इसी टेंट के नीचे झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के एस करण कॉलेज के 45 फर्स्ट ईयर छात्रों को पैरामेडिकल एग्जाम में सामूहिक नकल करा के पास कराना था जिनकी बैक आई हुई थी पुलिस आती उससे पहले जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देना चाहते थे उनको भनक लग गई थी कि जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में 5.5 लाख रुपए लेकर दूसरे कॉलेज के 45 लोगों को टेंट के नीचे अलग बैठाकर नकल कराई जानी है पूरा कॉलेज ससम्मान इन बच्चों को नकल कराने में जुट गया बाकी बच्चों की परीक्षा तक लेट करा दी इसके बाद हंगामा हुआ पुलिस आई तो पता चला हाई प्रोफाइल नकल गैंग है जिसे मामा भांजे और चाचा भतीजे चलाते हैं चौंकाने वाली बात यह कि इस पूरे खेल में दो कॉलेज के संचालक एचओडी और लेक्चरर तक शामिल हैं। जिस कॉलेज के बच्चों को नकल करानी थी उस कॉलेज के एचओडी कृष्ण कुमार अपने सगे भांजे संग साजिश रच रहे थे और जिस कॉलेज में नकल होनी थी वहाँ के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल अपने भतीजे संग खेल खेल रहे थे चारों की गिरफ्तारी करके पुलिस पता कर रही है कितना बड़ा ये नकल का रैकेट है शरद कुमार जयपुर आज तक

0: पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच आ गया है भारत और पाकिस्तान के 117 दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र से क्यूआर कोड वाला बक्सा बरामद। चंपत राय अनिल मिश्रा के खातों की जांच तेज। एसआईटी जांच 15 दिन और बढ़ी। समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा उनके समय में कब्रिस्तान पर बाउंड्री पर होता था खर्चा, आज बन रहे एक्सप्रेसवे। 2017 से पहले होते थे दंगे। पुणे मर्डर केस में आरोपी चेतन को किले पर ले गई पुलिस। रिक्रिएट हुआ क्राइम सीन। केतन को पहले से था सिया पर शक, कई बार की थी शिकायत। थलसेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पिता को किया सैल्यूट, पैर छू कर लिया आशीर्वाद। छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी रहे मौजूद।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। हम सबसे पहले बात करेंगे आतंकिस्तान की। जी हां, आतंक के आका पाकिस्तान की, जो पानी रोकने पर भारत के हाथ काटने की गीदड़ भभकी समय दे रहा है, जो पानी रोकने के बदले परमाणु ब्लैकमेल का अपना खोटा सिक्का एक बार फिर चलाने की साजिश रच रहा है। और भारत में लोग उस पाकिस्तान से शांति की उम्मीद कर रहे हैं, बातचीत की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, वो भारत में नरेंद्र मोदी सरकार से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारा जाए, बातचीत की जाए, संबंधों को एक बार फिर सामान्य बनाया जाए। ये वो दिग्गज हैं जो भूल गए कि पाकिस्तान ने कितनी ही बार भारत की पीठ में खंजर भोंका है। वो भूल गए कि भारत ने कितने बेगुनाह नागरिकों को उसी पाकिस्तान के पाले पोसे और भेजे गए आतंकवादियों ने मार दिया है। कितने हमारे देश में हमारे परिवार आतंकवादियों ने, वो कट्टर इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान से आता है, हमारे लोगों का लहू बहाता है, हमारे परिवारों को नष्ट करता है। ये वो लोग हैं जो संसद पर हुए हमले को भूल गए, जो मुंबई में 26/11 के हमले को भूल गए। जम्मू हो, पठानकोट हो, पहलगाम हो, एक के बाद एक हमारे मंदिरों पर हमले हुए, ये लोग भूल जाते हैं। हमारे बाजार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे सेना के कैंप्स पर, उनके परिवारों पर जो हमले होते हैं, कौन है ये लोग जो वो सब भूल जाते हैं? भूल जाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस देश को केवल ब्रह्मोस की भाषा समझ आती है, उससे अमन की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो गजवाए हिंद में विश्वास रखता है। वो देश, वो हिंदुस्तान को एक मुसलमान देश बनाना चाहता है, एक इस्लामी देश बनाना चाहता है पाकिस्तान। ये उनका डीएनए है। क्यों नहीं हम ये बात समझ पाते? ये सुनकर आपको भी कड़वा लगेगा, झटका लगेगा, लेकिन यही कड़वा सच है। पाकिस्तान और भारत के ये 117 कौन है? ये कथित बुद्धिजीवी कौन है? ये राजनेता जो मिलकर भारत पर दबाव बना रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कठपुतली प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को उनके साथ बातचीत करें। हम आतंकवाद के विक्टिम हैं, वो पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, दोनों को एक साथ खड़ा कर रहे हैं। क्यों? क्या है इनकी ये मांग? मांग ये कि पाकिस्तान के साथ सब कुछ भूल कर, मतलब 1993 जो मुंबई में धमाके हुए, 257 लोग मारे गए सीरियल ब्लास्ट मुंबई में, कश्मीर में जो आतंकवाद फैलाया, पंजाब में जो आतंकवाद फैलाया, देश के अलग अलग हिस्सों में, आप एक राज्य का नाम बताइए जहां पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हमारा लहू नहीं बहाया। वो कह रहे हैं सब भूलकर रिश्तों को सामान कर दीजिए, पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू कर दीजिए, सीमाएं खोल दीजिए, ट्रेन और बसें फिर से चला दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान का लाभ है। कौन है ये लोग जो भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान के हित की बात करते हैं। अच्छा, कमाल की बात देखिए, अमन का राग अलापने वाले 56 लोग पाकिस्तान के हैं। हैरानी की बात यह कि इस चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले 61 लोग, 61 बुद्धिजीवी भारत के हैं। जी हां, 61 नामी गिरामी भारतीय चेहरे। सोने पर सुहागा ये, इसमें अलगाववादी हुर्रियत के नेता भी हैं। मीरवाइज उमर फारूक बकायदा बयान जारी करके अपनी छाती चौड़ी करके कह रहे हैं, हां मैंने साइन किया है, पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। अरे एक बार सोचा, कभी एक बार कहा कि जिन कश्मीरी भाइयों पर पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में हमले हो रहे हैं वो हमले रुके? कभी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जिस तरह का अत्याचार पाकिस्तान की सेना कर रही है, एक बार वो मुद्दा उठाया? कभी नहीं। क्यों? ये डर है या कुछ और कारण है? कभी भी ये जो सफेदपोश है, पूछिए, जब प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा करने गए, रिश्ते सुधार नहीं गए थे ना, पाकिस्तान क्या कर रहा था? खंजर भोंक रहा था हमारी पीठ में, कारगिल पर हमला कर रहा था वो। उसी समय फरवरी 1999, एक तरफ यहां पर बस जा रही थी लाहौर और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना कारगिल की ऊंचाइयों पर हमला कर रही थी। और ये सिर्फ पहली बार नहीं है, तब कहां थे अमन के आशा वाले जब 550 हमारे सैनिक शहीद हो गए थे, जब मनमोहन सिंह ने शांति वार्ता के बीच, जब 2004 और 2007 का जब ये लोग जिक्र करते हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर 2004 और 2007 के बीच वाली वार्ता शुरू हो जाए, डीमिलिटराइज कर दिया जाए, पाकिस्तान का कितना हित साधेंगे ये लोग? डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में, सियाचिन ग्लेशियर पर, वो भी 2020 गलवान के बाद डीमिलिटराइजेशन की बात करते हैं ये लोग। मुंबई में कसाब और उसके आकाओं ने 2008 में 166 बेगुनाहों को भून दिया था। कब? जब ये लोग बातचीत कर रहे थे कि शांति होगी, एक 4-पॉइंट एजेंडा बनेगा, कश्मीर को डीमिलिट्राइज किया जाएगा। ये किस तरह की बातें हैं? जब 26/11 हो रहा था कहां गई थी ये चिट्ठियां? क्यों नहीं एक बार पाकिस्तान से कहा जाता, एक बार? इन सभी बुद्धिजीवियों से एक प्रश्न है, एक बार क्यों नहीं पाकिस्तान से कहा आतंकवाद छोड़ो, हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करो, उस आतंक के मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करो? एक बार तो कहते, उस समय क्यों इनके मुंह में दही जम जाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रिश्ते सुधारने का प्रयास किया। अफगानिस्तान से भारत आते समय वो लाहौर गए, अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा उन्होंने रिस्क लिया था। क्या किया पाकिस्तान ने? उनकी भी पीठ पे खंजर भोंका, पठानकोट पर हमला हुआ, उरी पर हमारे जवानों पर हमला हुआ, तब कहां गए थे ये लोग? उसके बाद केवल एक भाषा समझते हैं ये लोग, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले उनको बता दी। पहले सर्जिकल स्ट्राइक, फिर पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक, फिर भी जब नहीं ये लोग सुधरे, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि पाकिस्तान जो भारत में गजवाए हिंद करना चाहता है, सबको, सबको, हम लोग को काफिर मानता है, वो गजवाए हिंद करके सबका धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो पाकिस्तान केवल ब्रह्मोस की भाषा समझता है। 61 इन लोग को यह बात समझ नहीं आती है? 1947 से इतिहास उठा के देख लीजिए, यह एक चिट्ठी नहीं है, यह केवल एक चिट्ठी नहीं है, यह पाकिस्तान की वो न्यूक्लियर धमकी है। क्योंकि जो लोग इस समय सत्ता में नहीं है पाकिस्तान में, हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान में ही यह कहा जाता है कि सत्ता को पाने के लिए जो बिछ जाता है पाकिस्तान की सेना के आगे, आसिफ मुनीर के आगे, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भारत को गाली दे रहा है, परमाणु ब्लैकमेल कर रहा है, कंगाली को, पाकिस्तान की कंगाली है ना ये, भारत ने जिस तरह से दबाव बनाकर रखा है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान में इस समय बहुत समस्याएं हैं। हमारे ही देश के कुछ लोग अब पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, ये भाईचारा नहीं है। पाकिस्तान के मुंह में राम तो नहीं है लेकिन बगल में छुरी जरूर है, जो बार बार हमारी पीठ पर पाकिस्तान भोंक देता है। और ये जो फेक अमन की आशा गैंग है ना, आज इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये जो चिट्ठी लिखी जा रही है ना, अपील टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बाय कंसर्न्ड सिटीजंस, भाई साहब किसके लिए कंसर्न है आप लोग? आप लोग केवल पाकिस्तान के लिए कंसर्न है। अगर भारत के लिए कंसर्न होते तो इसमें एक लाइन तो आपने लिखी होती कि हाफिज सईद को जेल बंद कर दो, कि हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करो। हमारी संसद पर हमला हुआ, हमारी सड़कों पर हमला हुआ, हमारे रेलवे स्टेशन पर, हमारे मंदिरों पर हमला हुआ, हमारी इकोनॉमिक सेंटर्स पर एक नहीं कई हमले हुए, लेकिन ये जो फेक अमन की आशा का गैंग है ना, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल के आगे झुकता है? या फिर प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए और जांच होनी चाहिए, क्या ये गुलाम नबी फाई का कोई इकोसिस्टम है? कौन है गुलाम नबी फाई? वो पाकिस्तान की आईएसआई का वो आदमी था जिसको अमेरिका की एफबीआई ने पकड़ा था और उससे पता चला कि वो भारत, पाकिस्तान और कई ऐसे देशों के ऐसे ही महानुभावों को फाइव स्टार होटलों में बुलाता था, बिजनेस क्लास टिकट देता था। क्यों? ताकि वो भारत को गाली दे और वो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाए। भारत एक बात साफ कर चुका है, अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो वो केवल आतंकवाद के मुद्दे पर होगी और पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को वापस लेने पर होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जो धमकी दे दे, अरे जो अपने देश में दो वक्त रोटी नहीं खा पाते, वो भारत से जंग लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे। जमीनी स्थिति क्या है, देखिए ये रिपोर्ट।

0: एक तरफ कंगाली से बिलबिलाता पाकिस्तान भारत को परमाणु युद्ध की खोखली धमकियां दे रहा है, तो दूसरी तरफ शांति के कुछ स्वयंभू ठेकेदारों ने भारत के आत्मसम्मान का सौदा करने की नई मुहिम शुरू कर दी है। ओपी शाह की अगुवाई वाले सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की तरफ से दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को एक साझा चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें पाकिस्तान के साथ फिर से पींगे बढ़ाने की वकालत की गई है। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि भारत पाकिस्तान के बीच पूर्व राजनयिक संबंध बहाल हों, वीजा सेवा शुरू की जाए और व्यापारिक रास्ते खोल दिए जाएं। हद तो तब हो जाती है जब इस अमन राग में कश्मीर पर 2004 से 2007 के बीच बने पुराने फॉर्मूले को टटोलने और सैन्य तैनाती कम करने के साथ ही भारतीय सेना के हाथ बांधने की पैरवी की जाती है। लेकिन इस तथाकथित अमन की अपील का सबसे हैरान करने वाला सच इसके हस्ताक्षरों की सूची में छिपा है। इस एजेंडे को हवा देने वाले कुल 117 नाम हैं, इनमें से 56 तो पाकिस्तानी हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सीमा पार के इन चेहरों के सुर में सुर मिलाने वाले 61 भारतीय भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और मणिशंकर अय्यर जैसे राजनेताओं के साथ साथ अलगाववादी नेता मीर वाइज उमर फारूक का नाम सबसे ऊपर चमक रहा है। मीर वाइज उमर फारूक बाकायदा बयान जारी कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी ही चाहिए, लेकिन इन सफेद पोशों को कौन समझाए कि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले मुल्क के साथ भारत अब किसी फेक अमन की मेज पर बैठने वाला नहीं है। जो देश सिर्फ ब्रह्मोस और सर्जिकल स्ट्राइक की भाषा समझता है, उसके सामने इस तरह घुटने टेकने की वकालत करने वाले 61 भारतीयों की नियत पर आज पूरा देश सवाल उठा रहा है। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।
1: सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी भट्ट, कौन है ये स्वयंभू शांति के ठेकेदार जिनको समझ नहीं आ रहा कि 1990 से ही अगर इतिहास खंगाला जाए जम्मू और कश्मीर का, तो इस तरह से कश्मीरी पंडितों को वहां की मस्जिदों से जो नारे लगे थे रलिव गलिव या सलिव, आज तक वो कश्मीरी पंडित लौट नहीं पा रहे हैं। कौन है ये शांति के ठेकेदार जो पाकिस्तान पर दबाव नहीं बना पा रहे कि पहले आतंकवाद पर लगाम लगाई जाए?
2: बिल्कुल गौरव, जो इस सूची में नाम है आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, मणिशंकर अय्यर हो, ए एस दुल्लत हो, इन्होंने पहले भी जो है पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की है। लेकिन गौरव, जो सबसे गंभीर विषय है कि इन्होंने कहा है कि डीमिलिटराइजेशन होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर के विषय में वार्ता होनी चाहिए भारत और पाकिस्तान के बीच में, और किस फॉर्मूले पे? मुशर्रफ के 4 सूत्री फॉर्मूले पे, जो 2004 और 2007 में जिस पर बातचीत हो रही थी। और वो फॉर्मूला क्या है? सेल्फ रूल की बात हो रही है और ओपन बॉर्डर्स की बात हो रही है, और उसमें ज्वाइंट करेंसी की भी बात हो रही थी कि शेयर्ड करेंसी हो, शेयर्ड सॉवरेनिटी हो। गौरव, आप जरा समझिए कि मीरवाइज उमर फारूक तो अलगाववादी नेता है, लेकिन इसमें वो लोग भी हैं जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने शपथ ली है कि वो भारत की संप्रभुता, भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखेंगे। और अगर वही लोग बात करेंगे कि सॉवरेनिटी शेयर की जाए किसी और दूसरे देश से, और जो 1994 में जो सर्वसम्मति से भारत की संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया था कि समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर भी शामिल है, पूरा गिलगित बाल्टिस्तान जो पूरा क्षेत्र शामिल है, वो भारत का अटूट अंग है। और अगर जम्मू कश्मीर पर कभी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी, वो सिर्फ एक विषय पर होगी कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को वापस देना होगा भारत को, और उसी चीज पर बातचीत होगी। लेकिन ये जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि मुशर्रफ के 4 सूत्री कार्यक्रम की अब बात हो रही है आज के समय में, 2026 के समय में, ये काफी गंभीर विषय है। और ये सभी
1: बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं
2: गौरव,
1: ये बड़ी बात है।
2: कई बड़े
1: जी, सबसे बड़ी बात ये कि सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज करने की जो बात चल रही है, इससे बड़ी साजिश भारत के खिलाफ नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लान है, लेकिन कौन है ये 61 भारतीय जो पाकिस्तान के उस प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं कि कश्मीर में डीमिलिटराइजेशन हो, सियाचिन ग्लेशियर में डीमिलिटराइजेशन हो? ये इतने बड़े बड़े नाम जो है, एस दुलत रॉ चीफ रह चुके हैं, जवाहर सरकार आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, 117 लोगों ने। अच्छा, और ये दो तस्वीरें अगर आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी का बूट पॉलिश। बूट पॉलिश पाकिस्तान में कहा जाता है शहबाज शरीफ को। क्या वो चुने हुए नेता है? बिल्कुल नहीं, फॉर्म 47 के प्रधानमंत्री, ये पाकिस्तान में उनको कहा जाता है। ये तुलना कर रहे हैं आप, एक पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट की तुलना आप भारत से करते हैं। भारतीय होने के बावजूद पाकिस्तान का इतना एजेंडा, इतना खुला एजेंडा कैसे कोई फॉलो कर सकता है? यह सबसे बड़ी बात है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आप पहलगाम को तो नहीं भूल सकते, किस तरह से पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, और वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के इशारे पर, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा और फिर उनकी पत्नियों से कहा, उनके बच्चों से कहा, जाओ मोदी को बताओ। आप याद कीजिए एयर मार्शल ए के भारती का वो बयान जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था, जिन्होंने रामचरितमानस की वो पंक्तियां दोहराई थी, भय बिन होए न प्रीत। ये बहुत जरूरी है, आप ये सुनिए और मैं भय बिन होए न प्रीत का अर्थ क्या, आपको बिल्कुल विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले एयर मार्शल भारती को सुनिए।
3: बिना न माने जल्दी जड़, भय तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बिनय न माने जल्दि जड़, भय तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी।
1: ये भारत की फिलॉसफी है, ये रामचरितमानस में बहुत साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि रामचंद्र जी ने भी तीन दिन तक हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की थी कि मुझे मार्ग दे दो, मुझे लंका जाना है, मां सीता को बचाकर लेकर आना है वापस। लेकिन समुद्र ने उस समय मार्ग नहीं दिया। तीन दिन के बाद रामचंद्र जी ने भी अपना धनुष बाण उठा लिया था और उसके बाद समुद्र सामने आया और दास्ता ग्रहण की। तब कहा गया विनय न मानत जल्दी जड़, गए तीन दिन बीत, बोले सकोप राम तब, भय बिन होए न प्रीत। अगर भय नहीं है तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। वैसे आतंकवादियों के साथ अमन की आशा रखने वाले जो लोग हैं उनमें फारूक अब्दुल्ला शामिल है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जब कश्मीर में हिंदुओं को मारा जा रहा था तो ये चले गए थे। वो महबूबा मुफ्ती हैं जो मुख्यमंत्री तो रह चुकी हैं, लेकिन अलगाववाद कितना बढ़ा ये जग जाहिर है। मणिशंकर अय्यर जो वो भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान को बहुत मधुर लगती है, अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की बात करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहे, आप फिर भी बातचीत करते रहिए पाकिस्तान के साथ, क्यों? वरिष्ठ सांसद मनोज झा, वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल, अच्छा और इसमें और कई नाम है, विस्तार से आपको इनके बारे में बताऊंगा। इसमें बहुत जरूरी उनका भी नाम लेना है जो रॉ के चीफ भी रह चुके हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले सांसद मनोज झा से एक्सक्लूसिव बातचीत की आज तक ने, क्या है उनका सोचना सुनिए।
4: भारत और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन बड़े मतलब पड़ोसी हैं कह सकते हैं, हमने युद्ध भी देखा है। अब आपका भी नाम उस चिट्ठी में है जो लिख रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए।
5: नहीं नहीं, आप एक बात रखिए, अपने अभी ओपनिंग लाइन में पहलगाम का जिक्र किया, पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेल रहे थे ना, बीसीसीआई का निर्णय कौन ले रहा है? हम में से तो कोई फेवर में नहीं था उस वक्त, जो आक्रोश था देश में। आज तक हम नहीं जान पाए कि पहलगाम किसने किया, कौन कल्प्रिट है, कौन अकाउंटेबल है, किसके सर पे तलवार लटकनी चाहिए, चुप्पी साध ली। चलिए पहलगाम से थोड़ा पीछे जाते हैं, पुलवामा, उसका कुछ पता चला? सदन में तीन दफे मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं, शून्य सन्नाटा। महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य और वहां के नागरिक में फर्क, यह महात्मा गांधी बता के गए थे। गांधी से तो बड़ा कोई दार्शनिक भी नहीं हुआ इस देश में, वो बता के गए थे। ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब, सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए, लिटरेचर को नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं, और अगर सिविल सोसाइटी के और कुछ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ और ने पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की, तो मैं देख रहा हूं कि उसको तिल का ताड़ बनाए हुए हैं।
1: वैसे आपके लिए सच जानना जरूरी है, पुलवामा में बकायदा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद की भूमिका एक बहुत डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका आकलन भी हो चुका है। लेकिन खैर, सच्चाई आपको आज तक पर पता चलती है, नेताओं से क्या पता चलेगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या चाहता है पाकिस्तान, मैं आपको वो बताता हूं। और क्यों हो रही है पाकिस्तान की हिमायत, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं? पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल हो, उच्चायुक्त नियुक्त हो। पाकिस्तान ने उच्चायुक्त अपना बुला लिया था वापस, अब हम बोल रहे हैं कि नियुक्त हो, राजनयिक बहाली हो। फिर और क्या कहा जा रहा है, सामान्य वीजा सर्विस फिर से शुरू हो जाए, ताकि वो और आतंकवादी भेजते रहे हमारे देश में और हमारे देश को अंदर से भीतर से कमजोर करते रहे। सभी मुद्दों पर व्यापक द्विपक्षीय बातचीत हो। क्यों आतंकवाद पर कार्रवाई क्यों ना हो पहले? क्यों नहीं कोई एक बोलता कि पहले आतंकवाद पर कार्रवाई करो, भारत का हित साधो, पाकिस्तान का हित साधने में क्यों लगे रहते हैं हमेशा? नीलम घाटी में शारदा पीठ को खोल दिया जाए, आतंकवाद बंद करो, अपने आप खुल जाएगा ये पूरा रास्ता, और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर तो हमारा है। सामाजिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंध बहाल हो, आतंकवाद के समाप्त होने पर क्यों नहीं दबाव डाला जाता आतंकवाद पहले समाप्त हो? बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन भारत ने पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान ने कभी नहीं दिया भारत को। क्यों? उन्होंने कहा वो एक मुसलमान देश है, एक हिंदू देश को कैसे वो मोस्ट फेवर्ड नेशन दे सकते हैं। अब वो चाहते हैं, अब जब कंगाली आ गई, हाथ में कटोरा आ गया, तो उनको भारत के साथ व्यापार भी चाहिए क्योंकि यहां से सस्ता सामान मिल जाएगा, उनको हमसे बिजली भी चाहिए। तब अब उनको ये नहीं दिख रहा कि भारत हिंदू यहां बहुल देश है, ये उनको अब बिल्कुल नहीं दिख रहा। अटारी बॉर्डर, वाघा बॉर्डर खुल जाए, श्रीनगर मुजफ्फराबाद दिल्ली लाहौर बस सेवा फिर से चले, चल रही थी ना पहले, क्यों भेजे आतंकवादी? फिर आतंकवाद पर क्यों नहीं कोई लगाम लगाने का दबाव डालता इनमें से? और एस दुलत साहब जो रॉ चीफ रह चुके हैं, एक आतंकवादी के बच्चे के दाखिल कॉलेज में मेडिकल में दाखिले के लिए और सीट ट्रांसफर के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, आतंकवाद रुकवाने के लिए क्या किया? समझौता, थार एक्सप्रेस वे, ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो जाए, पीपल टू पीपल की बात करते हैं। वो लोग जो भारत में गजवाए हिंद करना चाहते हैं, हम पीपल टू पीपल चाहते हैं। कमर्शियल विमानों के लिए हवाई क्षेत्र फिर से खुल जाए, व्यापार वाणिज्य, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय पैसे चाहिए, पाकिस्तान को इस समय सस्ता अनाज चाहिए, पाकिस्तान भूखमरी कंगाली की कगार पर है, इसीलिए पाकिस्तान का भला हो जाए, हम लोग एक बार फिर पाकिस्तान का भला करें। हर बार भारत पाकिस्तान का भला करे, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कोई दबाव भी उस पर ना बनाए। ये क्या मानसिकता है भारत की, ये भारत के कुछ लोगों की, ये जानने की आवश्यकता है। और इस बड़ी खबर पर लगातार रहेगी नजर, क्योंकि याद रखिए पाकिस्तान हमें परमाणु गीदड़ भपकी देता है। पाकिस्तान की नई गीदड़ भपकी भी मैं आपको सुनवाऊंगा। खुद के पैरों में बेड़ियां हैं, अर्थव्यवस्था कंगाली की कगार पर है, लेकिन भारत के खिलाफ परमाणु राग अलापने लगा है पाकिस्तान। इस्लामाबाद में सिंधु जल समझौते के स्थगित होने पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई दुनिया को दिखाने के लिए। फिर कुछ विदेशी चेहरे आ भी गए, पैसा तो पाकिस्तान जो भीख में भी मिलता है विदेशों में बांटता है, लेकिन पूरी फ्लॉप कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा वैश्विक चेहरा तो नहीं नजर आया। मंच पर पाकिस्तान की फौज का हुक्म बजाने वाले नेता थे, खुद को शांति दूत बता रहे थे, शांति का ढोंग करने वाले पाकिस्तान का मुखौटा तब उतरा जब पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत को न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भपकी दे डाली। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान अपनी परमाणु नीति बदल देगा। दो दिन पहले उनके क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मुसादिक मलिक भारत को हाथ काटने की धमकी दे रहे थे, अब परमाणु बटन दबाने की बात बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तानी सेना सुन ले, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल के सामने कभी ना झुकने का न केवल प्रण किया था बल्कि उसको कर दिखाया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं भारत के योद्धाओं की। हम आपको भारत में शौर्य की परंपरा की एक बहुत अद्भुत तस्वीर दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में आज नए थल सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपने पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल के एम सेठ के पैर छुए। ये देखिए अद्भुत तस्वीर है। जनरल के एम सेठ आर्मी वेटरन है और जनरल धीरज सेठ के छोटे भाई, उन्होंने भी उनको सैल्यूट किया। रियर एडमिरल रवनीश सेठ ये नौसेना में एक वरिष्ठ अधिकारी है। भारत माता की रक्षा के लिए असंख्य सैन्य परिवार अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। और इस तस्वीर को देखिए, एक पिता, पुत्र और भाई, ये है भारत की वो गौरवशाली सैन्य परंपरा जिसके ये तीनों प्रतीक हैं। जेलसेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क, the mustard specialist since 1933.
5: सरसों से सरसों। जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: हमने तब भी सवाल किया था,
7: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
6: हम आज भी सवाल करते हैं,
7: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
6: ऑपरेशन अग्नि,
7: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
6: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
8: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

नरेंद्र मोदी सरकार ने दो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़क। राजधानी में बनाया जाएगा 6 लेन का टनल। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योग केंद्र से क्यूआर कोड वाले बक्से बरामद। चंपत राय अनिल मिश्रा के खातों की जांच तेज। एसआईटी जांच 15 दिन और बढ़ी। समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेसवे। 2017 से पहले होते थे दंगे। थलसेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपने पिता को किया सैल्यूट। पैर छूकर लिया जनरल सेठ का आशीर्वाद। छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी रहे मौजूद। पाकिस्तान की परमाणु गीदड़ भपकी के बीच आगे आए भारत और पाकिस्तान के 117 दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की।

0: प्रथम पूजा और बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। अब श्रद्धालुओं के जत्थे बाबा बर्फानी के धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। 3 जुलाई से श्रद्धालुओं का पवित्र गुफा तक पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। पालटाल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों पर बम बोले और हर हर महादेव के जय घोष गूंज रहे। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर लाखों श्रद्धालु आस्था के इस बेहद कठिन लेकिन पवित्र यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस बार सिर्फ भक्ति का उत्साह नहीं बल्कि सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा मार्ग के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। हर तरफ बाबा बर्फानी के जयकारे इस समय सुनाई दे रहे हैं। यात्री निवास से लेकर बेस कैंप तक शिव भक्तों का इस समय सैलाब सा उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 3 जुलाई को बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पहला जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। इसी दिन श्रद्धालु बाबा बर्फानी के पावन दर्शन भी कर पाएंगे। यानी महीनों के लंबे इंतजार के बाद अब आस्था का यह महापर्व अपने सबसे पवित्र पड़ाव में प्रवेश कर रहा है।
1: आस्था का महासफर, बाबा बर्फानी का बुलावा, 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है, जहां हर कदम पर परीक्षा है लेकिन हर कदम पर महादेव का भरोसा भी है। बस मंजिल यही है कि बर्फ से बने बाबा बर्फानी का दर्शन हो जाए। बम बम भोले, हर हर महादेव के जय घोष से गूंजने वाले ये रास्ते अब फिर श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार हैं। इस बार बाबा बर्फानी का स्वरूप भी भव्य है। गुफा तैयार है, रास्ते तैयार हैं, टेंट सिटी तैयार है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षा का अभेद्य कवच भी तैयार है।
2: जी हाँ, आज तक की टीम बालटाल के उस रूट पर मौजूद है जहां पर सुरक्षा की चौकसी यहां पर दिखाई पड़ रही है। चप्पे चप्पे पर कमांडोज को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि जितना खतरा आतंकवादियों का होता है कुछ उसी हिसाब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है।
1: आज तक आपको दिखाएगा बाबा बर्फानी तक जाने वाले रास्ते का पूरा सच, ग्राउंड रिपोर्ट, सुरक्षा तैयारी और अमरनाथ यात्रा की पूरी कहानी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: जम्मू और कश्मीर में इस समय आस्था का सैलाब साया हुआ है। 28 जून को पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन हुए। जय बाबा बर्फानी के जय घोष के बीच जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की और यात्रा के सकुशल आरंभ और फिर संपन्न होने की कामना भी की। इसी के साथ इस वर्ष श्रद्धालुओं को पहली बार बर्फ से प्राकृतिक रूप से बने पवित्र हिम शिवलिंग के दर्शन भी होंगे। अब चलो अमरनाथ के जयघोष के साथ जो श्रद्धालु हैं वो जम्मू से पहले कश्मीर और फिर कश्मीर मतलब श्रीनगर और श्रीनगर से फिर बालटाल के रास्ते या पहलगाम के रास्ते बाबा बर्फानी के धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। 3 जुलाई से पवित्र गुफा में श्रद्धालुओं के दर्शन औपचारिक रूप से शुरू हो जाएंगे। लाखों शिव भक्त, बहुत वर्षों पुराना है, यूं कहें सदियों पुराना है विश्वास है कि एक बार फिर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए उनकी गुफा तक जाएंगे। एक तपस्या है ये, लेकिन एक बार दर्शन हो जाए तो आनंद बहुत आता है।

0: जिस पल का करोड़ों श्रद्धालु इंतजार करते हैं वो घड़ी आ गई है। प्रथम पूजा के साथ बाबा बर्फानी की यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पवित्र गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। बालटाल तैयार है, पहलगाम तैयार है, जम्मू तैयार है, रजिस्ट्रेशन जारी है, तैयारी पूरी है। अब बाबा बर्फानी के दर्शन की बारी है।
1: इस समय हम मौजूद हैं जम्मू शहर के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास भवन के बाहर, और श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो है शुक्रवार को शुरू होने जा रही है। बृहस्पतिवार को यात्रियों का पहला जत्था यही जम्मू के यात्री निवास भवन से रवाना होगा। अगर हम देखें यात्री निवास भवन में जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरा है, चाहे केंद्रीय सशस्त्र बल हो, केंद्रीय बल जो है साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, चप्पे चप्पे पर पहरा है और यहाँ की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और ये जो यात्री निवास भवन है अगर हम देखें तो इसको सीआरपीएफ के हवाले कर दिया गया है, और खासतौर पर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है।
0: इस बार सिर्फ श्रद्धालु नहीं चलेंगे, उनके साथ चलेगी देश की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पहरा है, पूरे रूट पर चौकसी है, सिर्फ जमीन से ही नहीं आसमान और पानी में भी सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है।
2: जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ सीआरपीएफ के कमांडो 24 घंटे निगरानी करते हैं, क्योंकि यहाँ खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं।
0: इस बार ऐसी सुरक्षा है कि परिंदे भी पर ना मार पाए। 670 से अधिक अर्धसैनिक कंपनियों की तैनाती है। ड्रोन से निगरानी है, QAT, ऑपरेशन डाल, हाईटेक सर्विलांस और मल्टी लेयर सुरक्षा के साथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
2: अमरनाथ यात्रा इस बार भव्य तरीके से हो रही है और इसकी तैयारियां भी चारों तरफ अलग अलग तरीके से किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस अब इस बात का एहसास लोगों में दिला रही हैं कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी और वो बड़े स्तर पर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं।
0: पहलगाम रूट पर हर गाड़ियों की तलाशी की जा रही है, डॉग स्क्वाड मुस्तैद है। डिग्गी के अंदर क्या है इसका जायजा डॉग स्क्वाड ही लेता है।
3: हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सीधा पहले व्हीकल्स आती हैं, व्हीकल्स आने के बाद एक तो हमारे पास DSMD होता है और एक दूसरा डॉग होता है। तो डॉग जो है स्मेल करता है और कुछ भी अगर संदिग्ध वस्तु अगर पाई जाती है तो वो तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, और साथ में उसी के साथ में हमारे BDDS का जो HSMD होता है वो भी एक टूल होता है, अगर कुछ भी होता है तो वो डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहता है।
0: अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये विश्वास की वो डोर है जो हर साल देश के कोने कोने से लाखों लोगों को हिमालय की गोद तक खींच लाती है। पहाड़ बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, सुरक्षा के तौर तरीके बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलता तो सिर्फ एक विश्वास। हर हर महादेव, बम बम भोले, श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। माँ तवी की आरती से पूरा जम्मू शिवमय हो चुका है।
4: जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है, मात्र अब कुछ घंटे बचे हुए हैं। उस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पे है। दरअसल कुछ खुफिया जानकारी मिली है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों को कि आतंकी संगठन यात्रा में खलल डालने के लिए कोई खराफात कर सकते हैं। उसी के चलते इस पैमाने पर जम्मू कश्मीर में जहां जहां से अमरनाथ यात्रा को गुजरना है वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल न सिर्फ तैनात है बल्कि मुस्तैद भी हैं। इस बीच अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और पहले जत्था जो है उसने जम्मू पहुंचना शुरू कर दिया है। कश्मीर के भी अलग अलग जो बेस स्टेशंस हैं वहां पर कुछ यात्री जमा हैं और उन्हें अब कुछ घड़ियों का इंतजार है ताकि वो बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ सकें और सबसे पहले दर्शन कर सकें।
5: ओम वंदे देवा उमा।
0: अब सिर्फ इंतजार है 3 जुलाई का, जब बाबा अपने भक्तों को बुलाएंगे। बालटाल से जितेंद्र बहादुर सिंह, जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
5: और जैसा मेरे सहयोगी अशरफ वानी बता भी रहे थे कि कुछ आतंकवादी संगठन है जो इस पवित्र यात्रा में आतंक फैलाना चाहते हैं, बेगुनाहों को मारना चाहते हैं। पहलगाम से बालटाल, जम्मू से श्रीनगर, और कई श्रद्धालु उसके बाद पर्यटन के लिए श्रीनगर भी आना चाहते हैं, डल लेक भी जाना घूमना चाहते हैं, और पवित्र गुफा के दर्शन तो करते ही हैं। इस बार सुरक्षा के मल्टी टीयर सिस्टम को तैनात किया गया है, और इस बार जितनी सुरक्षा है, खासतौर पर पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवाद के हमले के बाद, इतनी सुरक्षा पहले नहीं थी। आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ग्राउंड जीरो पर है, दिखा रहे हैं ऑपरेशन शिव की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, मल्टी टीयर सिक्योरिटी कैसे तैनात की गई है।
2: सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जहां सीआरपीएफ के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं।
6: अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की शुरुआत वहीं से हो जाती है, जहां से श्रद्धालुओं का काफिला जम्मू से कश्मीर की ओर पड़ता है। नेशनल हाईवे 44 यानी यात्रा की लाइफलाइन, यही तैनात है वैली क्विक एक्शन टीम QAT। ये ऐसे कमांडो हैं जिनकी जिम्मेदारी किसी भी आतंकी खतरे पर सबसे पहले और सबसे तेज कार्रवाई करना है। पूरे हाईवे पर लगातार गश्त, हर वाहन की जांच और हर गतिविधि पर पैनी नजर, यहीं से ऑपरेशन शिवा की पहली सुरक्षा परत शुरू होती है।
2: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर, और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जी हां, 670 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां इस बार अमरनाथ यात्रा की गुफा के लिए जो तैयारियां की गई हैं उसके लिए तैनात की गई हैं।
6: दूसरी सुरक्षा परत, बालटाल और पहलगाम पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों रास्ते, बालटाल और पहलगाम दोनों को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सील कर दिया गया है। संवेदनशील पहाड़ियों पर अतिरिक्त तैनाती है, हर पड़ाव पर सुरक्षा बल मौजूद है। यात्रियों की आवाजाही पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पांस टीमें तैयार हैं।
2: यहाँ मैं श्रीनगर में मौजूद हूँ, और जो ये रास्ता बालटाल के लिए जाता है, इस रास्ते में ऐसे ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क्समैन जो व्हीकल है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बुलेट प्रूफ गाड़ी है, और 360 इससे चारों तरफ जो कमांडो इसमें बैठे हुए हैं वो देख सकते हैं। इसका सीधा मकसद यह है कि सुरक्षा का कड़े इंतजाम इस बार सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमरनाथ यात्रा को लेकर के किया है। 3 जुलाई से चलने वाली ये अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी, और इसके लिए जो कड़े इंतजाम किए गए हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम कमांडो आप देखिए कि सड़कों पर लगे हुए हैं, और हर एक गाड़ियों की चेकिंग भी होती है, और इसके साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम इनके द्वारा किए गए हैं।
6: अगर कोई खतरा जमीन पर नहीं तो क्या पहाड़ों या जंगलों से आ सकता है? इसी सवाल का जवाब है ड्रोन सर्विलांस। ऊंची चोटियां, घाटियों, घने जंगलों और यात्रा मार्ग के हर संवेदनशील हिस्से पर 24 घंटे ड्रोन उड़ रहे हैं। इनकी नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन है।
2: बालटाल और पहलगाम रूट के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, उन इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इस ड्रोन का इस्तेमाल इस वक्त पहाड़ी इलाकों में किया जा रहा है, जिससे ये पता चल सके कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों में किस तरीके से कोई संदिग्ध व्यक्ति तो वहां पर मौजूद नहीं है। इसके साथ ही कमांडोज को भी यहां सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसका सीधा मकसद यह है कि ऐसे एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जहां नजर रखी जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडोज मौजूद हों, जिससे कि सुरक्षा का एहसास लोगों के बीच में हो सके। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी व्यवस्था इस बार ये की गई है कि सीसीटीवी कैमरे हर एक अमरनाथ यात्रा रूट पर लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में पहुंचता है तो उसको फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम से सीधे वहां पर इंफॉर्मेशन आ सके।
6: इस बार सिर्फ जवानी नहीं, तकनीक भी मोर्चे पर है। पूरी यात्रा मार्ग पर लगाए गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे, हजारों सीसीटीवी कैमरे, हर आने जाने वाले पर नजर है, हर संदिग्ध चेहरे की पहचान और जरूरत पड़ने पर उसी व्यक्ति पर ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक अब बाबा बर्फानी की यात्रा की सुरक्षा का अहम हिस्सा है।
7: अमरनाथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए वैली क्यूएटी पूरी तरह से कृत संकल्पित है और यहाँ पे जितने भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, काउंटर फिदाइन ऑपरेशन, स्मॉल टीम ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन, ये सभी तरह के ऑपरेशन वैली क्यूएटी के द्वारा संपादित की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी घटना न हो और किसी भी आतंकवादी संबंधी घटना को निगेट किया जा सके।
5: इस समय एक दुखद खबर नवी मुंबई से आ रही है। यहां पर नेरुल ब्रिज के नीचे कुछ युवतियों को बिजली का झटका लगा है। बाइक चलाते समय झटका लगने से वो सड़क पर गिर गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर इस समय आ रही है कि मेयर सुजाता पाटिल इस समय मौके पर पहुंच गई हैं। मेयर ने इमरजेंसी हालात को अपनी आंखों से देखा। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पूरी मशीनरी इस समय सड़क पर तैनात की गई है। भारी बारिश की वजह से बिजली पानी में आई, शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के समय कुछ युवतियां जो अपने टू व्हीलर पर थीं उससे चोटिल हो गई हैं। दो लड़कियों को जबरदस्त बिजली का झटका लगा, वो सड़क पर गिर गई और इस समय मेयर वहां पर मौजूद है। बिजली इलाके की काटी गई है, उस तार को अलग किया जा रहा है। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
2: हमने तब भी सवाल किया था।
3: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
2: हम आज भी सवाल करते हैं।
3: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
2: ऑपरेशन अग्नि,
3: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
2: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
4: In association with
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर सरकार। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है। चंपत राय पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अखिलेश यादव ने सियासी पिच पर चढ़ावा चोरी पर सियासी बाउंसर मारना शुरू कर दिया है। ऐसे में सीएम योगी भी अब हिंदुत्व की पिच पर चौके छक्के मारने उतरे हैं। अखिलेश ने अयोध्या को मुद्दा बनाया तो सीएम योगी ने मथुरा में कृष्ण भूमि वाला चैलेंज दे दिया। अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर घिरी बीजेपी 2027 की राजनीति में मथुरा की एंट्री करवा रही है। 12 जुलाई को बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी मथुरा में ही आयोजित की जा रही है, क्योंकि 2027 के रण में बीजेपी अपने सबसे मजबूत ब्रज के किले से चुनावी शंखनाद करना चाहती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सीएम योगी ने क्यों उछाला, इसकी कैलकुलेशन भी अब आपको समझाते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र की 65 में से 53 सीटें जीती थी, जबकि अखिलेश को सिर्फ 12 सीटें मिली थी, वो भी 82-85% यादव वोटों की बदौलत। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद इस क्षेत्र की हवा भी बदली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 53 की जगह सिर्फ 42 विधानसभा सीटों पर आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 12 की जगह 23 विधानसभा सीटों पर आगे आ गई और अखिलेश को मिलने वाले यादव वोट भी 87-89% तक पहुँचे।

0: मोदी सरकार ने दो बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़कें। राजधानी में बनाया जाएगा 6 लेन का टनल। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में योग केंद्र से क्यूआर कोड वाले बक्से बरामद। चंपत राय अनिल मिश्रा के खातों की जांच तेज। एसआईटी जांच 15 दिन और बढ़ी। समाजवादी पार्टी पर बरसे योगी आदित्यनाथ। कहा, उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेसवे। 2017 से पहले होते थे दंगे। थलसेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपने पिता लेफ्टिनेंट जनरल सेठ को किया सैल्यूट। पैर छू कर लिया आशीर्वाद। छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी रहे मौजूद। पाकिस्तान की गीदड़ भपकी के बीच आगे आए भारत और पाकिस्तान के 117 दिग्गज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल हम एक चिट्ठी पर करेंगे। दरअसल ये चिट्ठी भारत और पाकिस्तान के बीच सिविल सोसाइटी ने दी हुई चिट्ठी है, और ये चिट्ठी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी भेजी गई। और इस चिट्ठी में 66 लोग ऐसे हैं जो भारत की तरफ से हस्ताक्षर कर चुके हैं, 56 लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर कर चुके हैं, जिसमें भारत के कुछ राजनीतिक नेता भी उसमें शामिल हैं। भारत के इन लोगों में चिट्ठी का जो मजमा है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जमी जो बर्फ है वो पिघले, बातचीत, कारोबार, व्यापार चालू हो जाए, लगे हाथ जम्मू कश्मीर की भी चर्चा की जाए। देश के लोगों को लग रहा है कि ये सिविल सोसाइटी की लेटर डिप्लोमेसी वाली बेमौसम बारिश अचानक कहां से शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता दें, दरअसल पिछले कुछ दिनों में श्रीलंका में एक सम्मेलन हुआ था जिसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, और खबरें ऐसी थी कि चिट्ठी का सूत्रपात जो है वो वहां से हुआ है। लेकिन जैसे ये चिट्ठी सामने आई है, इसे लेकर दो तरह की राजनीति भारत से पाकिस्तान तक हो गई है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फिक्र सिद्धू के पानी की है, तो भारत को अलगाववादियों की, कश्मीर के नाम पर जो राजनीति चल रही है उसकी भी है। उधर सिंधू समझौता ठप पड़ जाने के बाद भारत रोज पाकिस्तान के लिए दबाव बन रहा है। पाकिस्तान रोज कभी एटम बॉम्ब मारने की धमकी दे रहा है, कभी सिंधु के दरिया में खून बहा देने की धमकी दे रहा है, तो कभी भारत का हाथ काट देने की धमकी दे रहा है। एक इंटरनेशनल कोर्ट तक दौड़ लगा चुका है, लेकिन उसके बावजूद पानी का समझौता नहीं हो पाया। और इसी वक्त ये चिट्ठी सामने आती है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी यानी दोनों देशों के बीच में सीधी बातचीत के बजाय सिविल सोसाइटी आपस में बातचीत शुरू करे। उसकी बात संघ की ओर से भी कही जा रही थी, खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसा कहते थे, इसीलिए बातचीत क्या होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेता कहते हैं कि कुछ नहीं, ये सारे पाकिस्तान के पिट्टू है जो वेस्टेड इंटरेस्ट में ऐसी चिट्ठियों की शुरुआत कर रहे हैं।

तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस चिट्ठी का ये आइडिया है किसका और क्या इस जरिए भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि चिट्ठी में यह भी दावा किया गया है कि अगर अमेरिका और ईरान आपस में बातचीत कर सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में नरसंहार कराया, जिस पाकिस्तान ने धर्म पूछकर गोलियां बरसाई, जिस पाकिस्तान पे टूटा था फौजे हिंद का कहर, जिस पाकिस्तान के आतंकियों पर टूटी थी कयामत, जिस पाकिस्तान से जंग में शहीद हुए हिंद के 6 सुरमा, उस मुल्क के सूखते हलक, सुलगते फलक, धधकती सरहदें, खोखले खजाने और चरमराती हुकूमत के चौतरफा चक्रव्यूह में घिरे पाकिस्तान की जान बचाने के लिए दौराए खत और दरियाफ्त सियासत शुरू हुई है। दरअसल एक चिट्ठी चर्चा में है, जो यूं तो भारत और पाकिस्तान के 117 शहरियों की ओर से भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम है, लेकिन दरअसल इस चिट्ठी का मकसद पाकिस्तानी मुसीबतों को कम करने के लिए भारत की ओर से अमन का हाथ बढ़ाने की वकालत करना है। क्योंकि इस चिट्ठी में लिखा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हो, दोनों देशों के उच्चायुक्त तो नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, कारगिल स्कर्द रूट पर यात्रा, हवाई क्षेत्र खोला जाए, MFN दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाएं, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। जब PM मोदी दर्जनों बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब PM मोदी बार बार कह चुके हैं खून और पानी साथ नहीं बहेगा, जब हुकूमत हिंदुस्तान ऐलान कर चुकी है कि गोली और बोली साथ नहीं हो सकती, तब आखिर ये खत का फितूर आया कहां से? ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन OP शाह की ओर से लिखी गई, जो भारत की ओर से 61वें दस्तखतगार हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, RJD के मनोज झा, TMC के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत के हस्ताक्षर हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। खबर यह है कि पिछले हफ्ते श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। इसी सम्मेलन के साइडलाइन में ट्रैक 2 डिप्लोमेसी को लेकर कुछ चर्चा हुई और फिर एक चिट्ठी सामने आई। हालांकि भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
1: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे, रास्ते और खोलिए। जो RSS की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
2: जो घटनाक्रम आज घटित हो रहा है, ये बिल्कुल विचित्र इसलिए लग रहा है मुझे, क्योंकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग, एग्जोडस जिसे कहेंगे, कश्मीरी पंडित का किया।
0: इस खत के कातिबों पर सियासी सवाल इसलिए मौजूद लगते हैं क्योंकि सियासतदानों की जुबान बदस्तूर जहर उगल रही है। सूखते हलक वाले मुल्क का नेता दरियाए सिंध में पानी की जगह खून बहाने की धमकी देता है, तो कभी एटमी अटैक की गीदड़ भभकी।
3: Strangling Pakistan's economy, strangling our waterway, triggers one of the rare cases where Pakistan has stated that this would trigger a nuclear war.
0: एक तरफ जब 56 पाकिस्तानी बातचीत के लिए खत लिखते हैं, उसी वक्त पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार और उनके मंत्री भारत को धमकी दे रहे थे कि अगर सिंधु का पानी रुका तो हिंदुस्तान के हाथ काट देंगे।
4: हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे, और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे।
0: तो दरअसल पाकिस्तान पानी के लिए छटपटा रहा है और किसी भी कीमत पर भारत से राब्ता चाहता है, और उसके इस मंसूबे को पूरा करने में इधर हिंदुस्तान में बैठी सियासी कायनात पूरी मशक्कत से जुटी है।
2: हमें पहले इनसे निपटना होगा जो देश के अंदर देश को खोखला करने में तुले हुए हैं, चाहे कभी पत्राचार करके, चाहे कभी फजूल बकवास करके, इन लोगों को इस वक्त सख्ती से निपटने की आवश्यकता है।
5: ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं।
0: चिट्ठियां चाहे जितनी लिखी जाए, भले ट्रैक टू डिप्लोमेसी की दुहाई देकर बातचीत शुरू करने की वकालत की जाए, लेकिन पीएम मोदी ने कह दिया सिंधु समझौता ठप है तो ठप है।
6: और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है। पसीना छूट रहा है।
0: सिंधु का पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन भारत ने सपोर्ट सिस्टम और डेटा शेयरिंग बंद कर दी। बाढ़ से पहले की चेतावनियां अब पाकिस्तान को नहीं मिलती। भारत से बैराज खोलने बंद होने का समय पाकिस्तान को पता नहीं चलता। डैम की साफ सफाई की सूचना भारत पाकिस्तान को नहीं देता है। पानी के लिए परेशान पाकिस्तान हेग इंटरनेशनल कोर्ट तक बेवजह दौड़ लगा रहा है, क्योंकि उसकी 90% खेती सिंधु के पानी पर ही टिकी है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, पूरब की ओर बहने वाली नदियों का पूरा पानी भारत को मिला था और सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था। लेकिन संधि की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को भी नदियों का निर्बाध पानी नहीं मिलने वाला, क्योंकि भारत इस समय सिंधु, झेलम और चिनाब पर 5 मेगा प्रोजेक्ट्स और छोटे बड़े करीब 50 हाइड्रो पावर डैम्स और टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। श्रीनगर से मीर फरीद और दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: तो कई बार ये कोशिशें की गई है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने के बाद सुधरने के लिए सिविल सोसाइटी आपस में बातचीत करे और कहीं ना कहीं ये बातचीत शुरू हो, ताकि दोनों देशों के बीच में एक नॉर्मलसी लौटने की कोशिश करवाई जाए। लेकिन इसके बावजूद कई बार भारत इसमें धोखा खा चुका है। इसके लिए जब जब इस बातचीत की बात शुरू होती है, तब कई सारे सवाल भी इसमें खड़े हो जाते हैं। इस सारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन है, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। संजय सराफ पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भी इस पर अपनी भूमिका रखेंगे। श्रीनगर से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इमरान काजी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने इसमें पहल की है। वन ऑफ द सिग्नेटरीज फारूक अब्दुल्ला भी इस चिट्ठी में दिखाई दे रहे हैं। कृष्णा हेगड़े शिवसेना के प्रवक्ता, एकनाथ शिंदे की यानी एनडीए के एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रतिनिधि के रूप में इस पर इस चर्चा में शामिल होंगे। तो तीन सवाल मैं इस पैनल के सामने रखूंगा और उसके बाद इस चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल हमारा यह है कि इस चिट्ठी के पीछे दरअसल क्या है, कौन इस चिट्ठी के पीछे है, पाकिस्तान से बातचीत की अपील करने वाली चिट्ठी के पीछे कौन है? 66 नाम भारत से दिखाई दे रहे हैं, 56 नाम पाकिस्तान से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली ये अकल किसकी है, कौन इसके पीछे है? दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान से बातचीत के लिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी की कोशिश चल रही है? कई बार ट्रैक टू की बात की जाती है, हालांकि भारत सरकार के तरफ से यह साफ किया गया है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी से नहीं चलेगा। जो भूमिका ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत की रखी थी, वही भूमिका अभी भी कायम है। और तीसरा अहम सवाल, सिंधु के पानी के लिए एटमी धमकी देने वाले पाकिस्तान से क्या बातचीत होनी चाहिए? कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं, इमरान काजी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इमरान काजी की पार्टी के नेता इस पूरी चिट्ठी में वन ऑफ द सिग्नेटरीज है, और जो मुख्य मुद्दे इस चिट्ठी में लिखे गए हैं वो ये कहना है कि कम से कम लोगों में आपसी बातचीत शुरू हो जाए, आवाजाही शुरू हो जाए, और उसमें से ज्यादातर ट्रेड रूट्स जो है वो बॉर्डर इलाके में, यानी जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन इलाकों में जो बॉर्डर रूट्स है वहां पर से भी ट्रेड शुरू किया जाए। ये सारी बातें उसमें लिखी गई है, लेकिन सवाल यह है टाइमिंग को लेकर, क्या हो गया इमरान जी अचानक ये चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ रही है? क्या श्रीलंका में जो बातचीत हुई, ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हुई, उसके बाद ये चर्चा की शुरुआत की गई है? क्या कारण है इसके पीछे और कौन है इस चिट्ठी के पीछे, कहां इस चिट्ठी की शुरुआत हुई थी?
8: देखें, सबसे पहले ये जो सिविल सोसाइटी ने लेटर इनिशिएट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे पहले वेलकम करती है और अप्रिशिएट करती है इस चीज को। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कंसिस्टेंटली स्टैंड रहा है कि पीस, प्रॉस्पेरिटी और डायलॉग से ही हर एक चीज का सलूशन हो सकता है। आप पूरे वर्ल्ड में देख लीजिए, वॉर कभी भी किसी भी चीज का सलूशन नहीं बना है, आफ्टर ऑल आप टेबल पे आना पड़ता है। और ये दोनों रीजन्स के लिए है कि अगर दोनों रीजन्स पीस चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तो डायलॉग्स और डिप्लोमेसी ही एक सूटेबल रास्ता है। बाकी रही बात, ये सिर्फ सिविल सोसाइटी की बात नहीं है, आपने यहाँ पे मेंशन किया कि सिविल सोसाइटी ने ये लेटर इनिशिएट किया और इसके पीछे कौन है। कोई भी इनिशिएटिव जो सिंसियरली लिया जाए हमें उस चीज का वेलकम करना चाहिए और उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ आपके जनरल सेक्रेटरी अभी रिसेंटली आप उनका स्टेटमेंट सुनेंगे, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने भी इस चीज को मेंशन किया कि बातचीत होनी चाहिए। आप रिटायर्ड जनरल आप एमएम नरवानी की बात कर लीजिए, उन्होंने इस चीज को अभी पीछे एक स्टेटमेंट दिया कि बातचीत होनी चाहिए। और इसी भाजपा के जब ये भाजपा की सरकार थी पीछे, जब अटल बिहारी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने भी उन्होंने सोच समझ के एक स्टेटमेंट दिया था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता था। और इम्पोर्टेंस ऑफ पड़ोसी क्या है वो हमें समझना चाहिए थोड़ा सा। देखिए हम कितनी जगह लड़ ले, कितनी ही तबाही कर ले, उससे कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ आप रिसेंटली अभी देखेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान ने एक दूसरे की तबाही कर दी।
7: ये तो बात कही जाती है, ये तो इमरान जी, ये बात तो मैं मानता हूं कि ये बात कही जाती है कि आप अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। जो पड़ोसी आपको दिए गए हैं वो पड़ोसी वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद में, उसके बाद जो भारत सरकार ने भूमिका ली कि इसके बाद जब भी इस देश की धरती पर कोई भी टेररिस्ट अटैक होगा वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, क्या उसके बाद ये बातचीत संभव है?
8: नहीं, देखिए आफ्टर ऑल आपको लोगों के बारे में सोचना है, अपने मुल्क के बारे में सोचना है। उसके लिए बहुत सारी, देखिए बड़े इंसान ने बड़ा दिल रखना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है और कंटिन्यूअसली टॉक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जब ये होगा कंटिन्यूअसली, देखिए एक टाइम पे हमें उम्मीद है जब हम इस रास्ते पे चलेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। अगर हम उसी तरीके से सोचेंगे जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे बारे में सोच रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान
7: सिविल सोसाइटी के 66 मेंबर ऐसे हैं भारत के जिन्हें अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चीजें बदल पाएंगे, और उसमें जो मुख्य सिग्नेटरी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिनका मैंने जिक्र किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, मिरवाइज उमर फारूक है, पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा इसमें शामिल है, तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री इसमें शामिल है, और मणिशंकर अय्यर उनका भी नाम इसमें शामिल नजर आ रहा है। जो बात इमरान काजी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो यह बातचीत शुरू करनी होगी, और इसके लिए उन्होंने जिक्र किया दत्तात्रेय होसबले का जिक्र किया, मोहन भागवत कह चुके हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारा सांस्कृतिक रिश्ता है और उनसे हमें बातचीत करनी होगी। क्या लगता है कि इसी के तर्ज पर यह आगे बातचीत हो रही है, पहले बैंकॉक में फिर श्रीलंका में और उसके बाद चिट्ठी के रूप में अधिकृत तौर पर इसकी गुंजाइश क्या नजर आ रही है?
9: मेरे से बात कर रहे हैं आप
7: जी?
9: मेरे लिए है ना सवाल ये संजय? हाँ, देखिए इसमें जी, कोई जी, शक जी. नहीं है, बातचीत की जहां पर बात हो रही है, बातचीत हम किसके साथ करें, वहां रूल किसका है? वहां आर्मी का रूल है, वहां सिविल सोसाइटी का रूल है, वहां डेमोक्रेटिक रूल है, किसके साथ बातचीत करें? अभी तक हमने कितनी बातचीतें की, जब जब हमने बातचीत स्टार्ट की वाजपेयी जी ने बातचीत की वो यहां पर पहुंचे नहीं, पीछे से कारगिल वार हो गया। उसके बाद में जब बातचीत स्टार्ट की तो ये लोग पहलगाम में आ गए, हमारे इतने लोगों को वहां पर मारा, पूरा देश को उन्होंने दहला दिया उस वक्त। कौन से बातचीत, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ये सब लीडर जो या जितने भी सिविल सोसाइटी लोग हैं या सब मेंबर पार्लियामेंट से, क्या ये राइटिंग में दे सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी दहशतगर्दी वाला वाका नहीं होगा? अगर वो लिख के देते हैं, खाली बातचीत की बात नहीं है, वो ये भी लिख के दे दे कि कोई भी वाका ऐसा नहीं होगा, हम कहेंगे चलिए हम फिर बातचीत के लिए तैयार है। कौन बातचीत नहीं करना चाहता अपने हमसाया के साथ? हमने कितने मौके दिए बातचीत के, क्या निकला वहां से? वहां से हमारे युवा नौजवान बच्चों के हाथ में, इन्होंने कश्मीर के बच्चों के हाथ में गन देने का काम कर दिया, अपने बच्चों को लंदन में पढ़ाने के लिए भेजा पाकिस्तान ने और हमारे बच्चों के हाथ में गन कल्चर क्रिएट कर दिया। बड़ी मुश्किल से ऑनरेबल पीएम और ऑनरेबल होम मिनिस्टर की बदौलत और ऑनरेबल एलजी साहब की बदौलत, इवन पीपल ऑफ द प्लेस, पीपल ऑफ कश्मीर, दे हैव सपोर्टेड फॉर पीसफुल एटमॉस्फेयर। बड़ी मुश्किल से पीसफुल एटमॉस्फेयर आज आया है। और मैं तो खुद परेशान हूं आज इस बात पर, जब बाबा अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट हो रही है 3 दिन के बाद, यही कब यही माहौल क्यों स्टार्ट हो गया आज ही? इन्होंने अगर बातचीत का ये ड्रामा स्टार्ट करना था ये दो महीने के बाद भी स्टार्ट करते, ये प्रोसेस और भी कभी, आज पूरा फोर्स आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस पीपल ऑफ
7: इमरान काजी होटल जवाब दीजिए,
9: सिविल सोसाइटी के लोग सब
7: टाइमिंग को लेकर सवाल,
9: ये
7: चिट्ठी लिखी नहीं कि उसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसको लेकर भावनाएं तीव्र है इस देश में, इस सारी बातचीत को लेकर भावनाएं तीव्र। इससे पहले भी आप देखिए ना, जब जब बातचीत हुई है उसके बाद क्या हुआ है, इसके कई उदाहरण हमें सामने दिखाई देंगे। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, कारगिल वॉर हमको मिला था, आगरा समिट हुई थी, पार्लियामेंट का अटैक उसके बाद हुआ था, सितंबर 2008 में ट्रेड रूट इनिशिएट किए गए थे, उसके बाद मुंबई के हमले हो जाते हैं, मोदी शरीफ एक अग्रीमेंट होती है, वापस बातचीत के लिए बातचीत शुरू हो जाती है, गुरदासपुर का टेरर अटैक होता है, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी लाहौर की विजिट करते हैं, उसके बाद पठानकोट के एयरबेस पर स्ट्राइक किया जाता है, कांग्रेचुलेटरी लेटर भेजा जाता है इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारियों की हत्या की जाती है, तमाम इसकी फहरिस्त मिल जाएगी। और जो सवाल संजय सराफ यहां पर उठा रहे, इमरान काजी
8: जी, सराफ साहब ने यहां पर कुछ चीजें रखी, हमारे यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये इशू बॉइलिंग रहना चाहिए, पूरा नहीं मानना मेरी बात का, जो भड़काना चाहते हैं इन इश्यूज को, जो कभी नहीं चाहते हैं कि यहां पे अमन हो। आप उन लोगों से पूछिए जो सफर हुए, शिकार हुए इन सब चीजों के, हम चाहते हैं, हम सफर हुए, हम चाहते हैं। संजय जी
7: भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक मिनट जरा दोनों को शांत करिएगा। रविंद्र रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रतिक्रिया इस पर क्या रहेगी ये भी जरा सुनना जरूरी है। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं इसके लिए। इस पूरी चिट्ठी को लेकर आपको क्या लगता है, कई बार ये बातचीत हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में शांति लौटाने के लिए, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर के नेता ही सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, क्या इस तरीके की सिविल सोसाइटी के बीच में जनता टू जनता बातचीत की जरूरत आ पड़ी है, ये टाइमिंग सही है, और ये चिट्ठी कहां से आई आपको लगता है?
10: यहां तक बात है भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत का विषय, वो भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार का विदेश मंत्रालय तय करेगा कि कब कहां किससे बात करनी है तो किससे नहीं करनी है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिल्ली से लाहौर बस में गए थे दोस्ताना ताल्लुकात बनाने के लिए। फिर वाजपेयी साहब के दौर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को यहां जो आगरा बुलाया गया,
7: ठीक है,
10: उसके बाद
7: दो चीजें इससे
10: उसके बाद मोदी जी ने भी प्रयास किए, जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ली, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी भी आए थे सार्क देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ, लेकिन हर बार पीठ पर खंजर घोंपेंगे और फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती साहिबा यहां बैठ के चिट्ठियां लिखेंगे और कांग्रेस के लोग सपोर्ट करेंगे कि बातचीत होनी चाहिए। एक तरफ आप जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करेंगे, जम्मू कश्मीर के नागरिकों का खून बहाएंगे, और दूसरी तरफ यहाँ के ही नेता कहेंगे कि बातचीत होनी चाहिए,
7: लेकिन ये
10: डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। महबूबा मुफ्ती और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं
7: ये पहली बार नहीं है, नहीं एक मिनट रविंद्र रैना जी मैं दो चार स्टेटमेंट्स की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, जरा एक
10: डॉक्टर,
7: मैं इसी पर सवाल पूछूंगा ना, क्योंकि क्या है ऐसा लग रहा है कि जी
10: डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहिबा से पूरा देश एक सवाल पूछता है। आज जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है, पिछले दो महीने में वहां कत्लेआम हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन है, पाकिस्तान ने
7: ठीक है
10: वहां राशन की सप्लाई बंद कर दी है, बिजली बंद, पानी बंद, दवाइयां बंद, बेगुना लोगों का कत्ल हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, और सांप सूंघ गया है इनको वहां की बात करने में। क्यों नहीं बात की जाती पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर?
7: आपको क्या लगता है ये सिंधु जल समझौता जो भारत के तरफ से रद्द कर दिया गया था, उसी बात को लेकर ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू करने की बात की जा रही है? कि आपको लगता है इसी वजह से ये चिट्ठी निकली है, या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के भीतर आर्टिकल 370 के बाद
10: बिल्कुल स्थिति बदली है,
7: वहां पर कहीं सुधारने के लिए ये चिट्ठी की गुंजाइश की गई है?
10: ये चिट्ठी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी।
7: बोलिए रविंद्र,
10: अगर चिट्ठी लिखने का दम था तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को लिखते पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। आज तक ने ये खबर चलाई है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हजारों बेगुना लोगों को मार दिया गया है। कल रात वहां के एक सामाजिक नेता शौकत मीर साहब, जो अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन है,
7: रविंद्र जी आप जो बातें कह रहे हैं वो सारी बातें मीडिया में भी रिपोर्ट हो चुकी है, और इसी बात को लेकर ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार ये क्या हो गया कि अचानक ये खत यहां पर भेजा गया है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स का की तरफ मैं आपका ध्यान देखना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दत्तात्रेय होसबले हैं, उनका एक इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट आया था कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, लोगों के बीच, भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच की बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए और ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए डेडलॉक खत्म करने के लिए, क्योंकि आज की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच में अधिकृत तौर पर कोई बातचीत नहीं चल रही है, तो ये डेडलॉक खत्म हो इसके लिए बातचीत होनी चाहिए, खुद कह रहे हैं। मोहन भागवत कह चुके हैं कि हमारे पड़ोसियों से हमारी बातचीत सुधरनी चाहिए। क्या इसी की गुंजाइश के आधार पर यह चिट्ठी की पहल की गई है?
10: भारत ने हमेशा विश्व शांति की और आपसी सौहार्द की बात की है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तक बार बार प्रयास किए गए कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हों, क्योंकि भारत की संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। लेकिन ये निर्णय भारत सरकार का, भारत के विदेश मंत्रालय का है कब कहां बातचीत होगी या नहीं होगी। लेकिन चिट्ठी लिख के, और चिट्ठी वो लोग लिख रहे हैं जिनका अपना दामन दागदार है, जिनके अपने दामन में कई दाग है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए नहीं बोल रहे
7: ठीक है,
10: जिस जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को पाकिस्तान के बंदूक वालों ने, आतंकवादियों ने मौत के घाट उतारा, उन जम्मू कश्मीर के लिए कोई
7: कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए। रविंद्र रैना जी, कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच की बातचीत खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि यह भी बात कही जा रही है कि अगर ईरान और अमेरिका बातचीत कर सकते जी,
10: ये भारत सरकार का निर्णय होगा। हमारे विदेश मंत्रालय, जयशंकर साहब है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, हमारी केंद्र की सरकार है, ये उनका प्रेरोगेटिव है, वो इस पर क्या निर्णय लेते हैं
7: ठीक है।
10: लेकिन चिट्ठी लिखने वाले लोग
7: नवल किशोर जी,
10: वो पहले अपने दामन को अपने आईने में,
7: डॉक्टर नवल किशोर आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि चिट्ठी की पहल बेमानी है, कोई जरूरत नहीं है, सरकार तय कर लेगी जब भी बातचीत करनी है, और मनोज झा उसमें शामिल है, इसीलिए आरजेडी को भी सवाल पूछना कि विपक्ष की भूमिका क्या है, क्योंकि लालू जी काफी पॉपुलर थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गए थे लाहौर के बस में वहां पाकिस्तान में।
11: जी बिल्कुल, देखिए साहिल जी बात बिल्कुल सही है कि जब अगर हम देखते हैं सरकार को, और सरकार के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पूरे राज्य में वो है पॉपुलेशन, नागरिक, तो सरकार और नागरिक की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो नॉर्मेलसी है, जो पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट है वो आज का थोड़े है, इनको पढ़ना चाहिए। पाक इंडिया पीपुल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी आज से थोड़ा चल रहा है, दशकों से चल रहा है, उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन पढ़ा है क्या? गुजराल डॉक्ट्रिन की सफलता है, बातचीत शुरू हुआ था, कई सारे समझौते हुए थे, तो इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी, वो समझ पाएगी यही बात कि चोरी सी जाके बिरयानी खा लेना है और कहना है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो पहलगांव का नाम लेते हैं और पहलगांव के बाद आप क्रिकेट खेलते हैं और नाटक करते हैं कि हम हाथ नहीं मिलाएंगे, ये तो उनकी सच्चाई है, इसलिए जो चिट्ठी लिखी गई है वो तो अपील है और अपील दोनों सरकार से है। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी और उनके पीछे आरएसएस है कि एक तरफ कुछ बात कहते हैं, अखंड भारत का बात कौन कहता है? पाकिस्तान और इंडिया को अगर आप देखेंगे तो इसका तो कॉमन हिस्ट्री है। आप देखिए कि पूरा पूरा जो पड़ोसी राज्य है सार्क का, सबसे हमारे संबंध खराब है। यही तो सरकार का अचीवमेंट है। अगर नागरिक दोनों देश के अगर ये लिख रहे हैं कि दोनों का संबंध ठीक होना चाहिए तो इसमें दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को क्यों होना चाहिए? ये तो सरकार को मदद करने की बात हुई कि भाई आप चूंकि कुछ मुद्दों पर आप सुझाव नहीं सकते हैं, सरकार की अपने तरीके होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उसके आधार पर आप काम कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। आपके कहां संबंध अच्छा है बताइए? नेपाल से ठीक है कि बांग्लादेश से ठीक है कि
7: श्रीलंका गठबंधन
11: कि पाकिस्तान से ठीक है? अगर भारत का
7: आनंद दुबे
11: अगर
7: आप भी आपकी भी सहमति है क्या?
11: सबसे
7: नहीं, क्योंकि इंडिया अलायंस के तीन नेताओं के हस्ताक्षर इस पे दिखाई दे रहे हैं। इंडिया अलायंस के चार नेताओं के, एक टीएमसी के मंत्री भी है, तीन दलों के नेता है और उसके कई नेता है, उनके हस्ताक्षर उस पे दिखाई दे रहे हैं। और नवल किशोर जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि भाई इससे पहले भी तो कोशिश की गई थी, दोबारा कोशिश कर रहे हैं, जनता को लगता है तो क्या बुरा है?
12: साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, बातचीत और आतंकवाद साथ में नहीं होगा। हमने आजादी के बाद 1965 देखा, 1971 देखा, 1999 देखा, फिर 22 अप्रैल का वो दिन आया, सभी के हृदय पर बहुत बड़ी चोट लगी। हमने उसी समय फैसला किया, पूरे देश ने, पक्ष ने, विपक्ष ने एक साथ आकर, ठीक उसी प्रकार जैसे सुदर्शन चक्र निकाला था श्री कृष्ण भगवान ने जब शिशुपाल ने 100 गाली पूरी कर दी। अब 100 गाली पूरी हो गई है शिशुपाल की। यहां शिशुपाल का अर्थ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जब तक घुटने पर गिर के क्षमा याचना करके ये कसम नहीं खाता है कि हम जीवन भर कभी आतंकवाद को प्रोत्साहन नहीं देंगे, आतंकवादी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, तब तक बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। इस देश के 140 करोड़ देशवासियों की यही इच्छा है। ठीक है, कुछ लोगों की चिट्ठी लिखने से देश नहीं बनता, वो चिट्ठी लिखे, जितना प्यार न्योछावर करना उतना प्यार न्योछावर करें, लेकिन पाकिस्तान
7: चिट्ठी लिखना गलत मानते हैं कि सही मानते हैं आप?
12: बिल्कुल गलत मानते हैं। इस समय चिट्ठी लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों लिखी जा रही है चिट्ठी? भूल गए 22 अप्रैल 2025?
11: एक साल श्रीलंका में बात करने का क्या प्रयोजन है?
12: आज भी हमारे सीने चल रही है, हमारी माताओं बहनों की सिंदूर मांग से सिंदूर अभी तक उजड़े हैं, अभी तक वो खून ठंडा नहीं हुआ, अभी तक चीता की लकड़ी ठंडी नहीं हुई।
11: गांव के लिए तो अमित शाह जी को रिजाइन कर देना चाहिए, उनकी फेलियर है।
12: इसमें राजनीति मत करिए, इसमें किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान से बातचीत करने की बात कल्पना में भी नहीं सोचनी चाहिए, सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। पाकिस्तान पूरे दुनिया के आतंकवाद का केंद्र बिंदु है, इससे कोई समझौता नहीं रखना
11: है। नहीं, पाकिस्तान गए थे
12: तो क्या मिला?
11: आप कहां
12: थे तो क्या मिला?
11: अरे भाई जी, पाकिस्तान गए
12: थे तो कारगिल मिला? गए थे तो क्या मिला?
11: मोदी जी जब बिरयानी खाने गए थे आप कहां गए?
12: नहीं, वो विषय वो विषय साइड में रखिए। यहाँ कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, देश मेरा देश
11: रखेंगे।
12: नहीं, मेरा देश
11: सरकार,
12: मेरा देश
11: यहाँ पर फेल करती है,
12: पाकिस्तान माफी नहीं मांगेगा। चिट्ठी न संदेश,
7: जब भी पाकिस्तान का नाम आता है,
11: आप चिट्ठी न संदेश की बात करते हैं, आप विश्व की बात करते हैं, उसका क्या मतलब है?
7: जरा जल्दी से इंडिया से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। ये तो इंडिया अलायंस के भीतर ही जब भी पाकिस्तान की बात निकलती है, के सिन्हा जी के पास भी मुझे जाना है, लेकिन उससे पहले कृष्णा हेगड़े, एनडीए के भीतर क्या क्या स्थिति लगती है? क्योंकि बातचीत अलग अलग तरीके से हो रही है, और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कृष्णा हेगड़े जी, क्योंकि मैंने दत्तात्रेय होसबले को कोट किया है इससे पहले, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह है, और उनका यह कहना है कि हां, लोगों के बीच में आपसी बातचीत होनी चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते होने चाहिए और बातचीत होनी चाहिए, आखिरकार हमारी संस्कृति शेयर करते हैं हम एक दूसरे की, एक ही इतिहास है हमारा। और उसके बाद चिट्ठी आती है। इससे पहले बैंकॉक में हम देखते हैं कि बीजेपी के नेता भी वहां पर जाते हैं, कुछ आइडियोलॉग्स वहां पर जाते हैं, एक अलग तरीके से बातचीत होती है, सेना अधिकारी अलग अलग दोनों देशों के मिलते हैं, श्रीलंका में वही चीज होती है, इंटरनेशनल फोरम पर एक दूसरे से बातचीत हो रही है, तो फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है? क्या एनडीए की यह भूमिका है कि कभी बातचीत नहीं होनी चाहिए, या एक कोशिश एक बार होनी चाहिए?
13: देखिए ये सेंसिटिव इश्यू है, ये पार्टी लेवल पे तय नहीं होता, ये केंद्र सरकार तय करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स तय करती है। बातचीत पड़ोसी से तब होती है जब पड़ोसी अच्छा हो।
7: आपकी पार्टी की भूमिका क्या है?
13: बातचीत पड़ोसी से।
7: आनंद दुबे ने कैसे बता दिया कि नहीं होनी चाहिए? आपकी बात बता दीजिएगा।
13: बिल्कुल बिल्कुल,
11: चिट्ठी तो अपील ही कर रहा
13: है। नवल जी रुकिए जरा, मैंने आपको बोलने का मौका दिया, आप जरा रुकिए। जो देश हमारे खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, जो यहाँ पर स्लीपर सेल चलाता है, पहले जो 116 लोग हैं उनको पत्र लिखे पाकिस्तान को कि ये आप बंद करे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करे, यहाँ का स्लीपर सेल जो आपने एक्टिवेट करके रखा है उसे बंद करे, डीएक्टिवेट करे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दूसरे ये 116 लोग कौन है? हमेशा मणिशंकर अय्यर को देखिए, हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, हर बार देखिए मणिशंकर अय्यर की बात पाकिस्तान के बारे में बात करती है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पाकिस्तान का समर्थन करते। तो ये लोग कौन है पहले इनके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए। अगर इनको पाकिस्तान के आवाम और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में अगर बातचीत होनी चाहिए तो लोगों के बीच में बातचीत हो ना। ये लोग कौन है जो बीच में लिख रहे पाकिस्तान के आर्मी को पत्र लिखे? हमारे गवर्नमेंट को क्यों ओपन लेटर लिख रहे हैं? पाकिस्तान के आर्मी को ओपन लेटर क्यों नहीं लिख रहे हैं लोग? तो ये लोगों की मंशा गलत है, हर बार पाकिस्तान का समर्थन करना, हर बार पाकिस्तान का पक्ष रखना।
7: और इमरान जी के पास मैं चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक मिनट, के सिन्हा जी, जो चिट्ठी भेजी गई है उस चिट्ठी को मैं पढ़ रहा था और उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है, चार मुद्दे उसमें लिखे गए और उसमें पहला मुद्दा ये है कि एक स्ट्रक्चर्ड डायलॉग शुरू होना चाहिए, इट्स हाई टाइम कि होना चाहिए। इससे पहले के जिक्र भी किए गए, 2007 में किया गया था, 99 में किया गया था, इसका भी जिक्र उसमें किया गया है। ट्रेड रूट्स खोलने की बात की गई है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने की बात की गई है कि लोगों के बीच में कल्चरल एक्सचेंज एक बार फिर शुरू होना चाहिए, उसके बाद ही दोनों देशों के बीच में नॉर्मलसी लौट सकती है और इट मेक्स अ इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उनका यह कहना है कि आज की स्थिति में इकोनॉमिकली भी यह वायबल रहेगा कि अगर हम पाकिस्तान के साथ एक बार फिर ट्रेड शुरू कर दें। क्या आपको लगता है कि इतनी सारी चीजों के बाद और भारत सरकार की पहलगाम के बाद जो भूमिका रखी गई है उसके बाद इसकी कोई भी गुंजाइश आज की स्थिति में यह रहती है या इस चिट्ठी के पीछे कुछ और मकसद आपको नजर आता है?
14: जयंत साहिल, आपने पूरे के पूरे व्याख्या की कि किस संदर्भ में ये चीजें आई हैं और आपने तीन सवाल खड़े किए थे, चिट्ठी के पीछे कौन है, क्या ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है उसी का एक्सटेंशन है, और सिंधु वाटर की बात की थी, आपने तीन मुद्दे रखे थे। तो पहले आता हूं पहले मुद्दे के ऊपर कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे है इंडस वाटर ट्रीटी का जो एब्रिगेशन हुआ है उसका सफल होना और वो आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे है पीओके जो कि भारत का जो आजाद कश्मीर की बात करते हैं ये लोग, वो वहां के लोग तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जो हमारा रेजोल्यूशन है 93 का वो कहीं ना कहीं जमीन पे दिखाई देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक संकल्प अभी के गवर्नमेंट ने ये लिया है कि 3 साल के अंदर ड्रग का जो मिनस चलता है वो खास करके पाकिस्तान, उसको खत्म कर दिया जाएगा। जैसे नक्सल का एक डेडलाइन रखा गया था 31 मार्च 2026 और मोरलेस 99% खत्म हुई उस संदर्भ में। और एक और मुद्दा है, अमेरिका के डीप स्टेट से एक कॉरिडोर ऑफ पावर के अंदर में ये बातें चल रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू होनी चाहिए। अब हुई बात क्या, मैं ये आपको बता दिया किन कारणों से, इसके पीछे कौन लोग हैं। अमन की आशा ब्रिगेड, आपने बताया ना 66 लोग हैं, इनके आप डोजियर उठा के देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर जो पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए जिससे कि हम सत्ता पे आ सके। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि धारा 130 गई तो वहां पर भारत का झंडा उठाने का कोई बचेगा नहीं, हाथ नहीं बचेंगे। वो सारी चीजें वो फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। और हमने कब रोका बात, ये तो आप देखिए ना, आपने कहा क्या कभी बात नहीं होगी, क्या है स्ट्रेटजी और वो मिलिट्री स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये कहा गया है कि यहां पर टॉक एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, ये 2016 के बाद हुई है ना, ये हमारा एक एब्सोल्युटली लाइन मिलिट्री डॉक्ट्रिन का हिस्सा है कि हम आप यदि टेरर करेंगे तो हम टॉक नहीं करेंगे, उसकी जवाब हम उस चीजों से देंगे जो मिलिट्री तरीके से। कौन कहता है कि बातचीत नहीं है, टीजीएमओ के एवरी फ्राइडे बात होती है, मिलिट्री टू मिलिट्री बात हो रही है। मगर यदि ये एक छोटी सी है ना यदि इस चिट्ठी में लिखा होता कि पाकिस्तान से अपील है कि आप टेरर को खत्म कर दें, वो तो कहते हैं कि कश्मीर जगुलर भेद है और उनके वहां के लोगों का यह कहना है कि दो मुद्दे हैं, कश्मीर की बातें और सिंधु की जल जो आपने अब्रोगेट किया है उसको बातचीत करेंगे। आप बताइए जो चीज जमीन के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर में आपने हासिल की है, जो आज आप हासिल किए हैं, उसको यदि रोकने के लिए ये लोग अमन की आशा ब्रिगेड और उनके डोजियर उठा के देख लीजिए तो जो 66 लोग हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रूज हैं उस पाकिस्तान के और उस डीप स्टेट के जो इस भारत के लिए आपको बिखरना देना चाहते हैं। क्या आपकी स्ट्रेटेजी ना चले, किसने कहा बातचीत नहीं होगी?
7: लेकिन
14: को रोकना है ना
7: भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपने जो बात कहा, आपने जो बात कही, आपने सही कहा कि अभी भी सेना, पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना के बीच में बातचीत होती है, बॉर्डर पर बातचीत होती है। लेकिन इससे पहले, पहलगाम से पहले, पठानकोट से पहले या इससे भी पहले, गुरदासपुर से पहले, मुंबई के टेरर अटैक से भी पहले, भारत और पाकिस्तान के बीच में 3 युद्ध हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बातचीत का सिलसिला थोड़ी दिन के बाद, थोड़े साल के बाद एक बार फिर शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि यह सही मौका है या आज की स्थिति में जिसका जिक्र आप कर रहे हैं पाकिस्तान का नाक दबाया है और इसके लिए बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश हो रही है?
14: देखिए, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं ना और स्ट्रेटजी आपको यील्ड करने शुरू होता है तब आप उस स्ट्रेटजी पे बढ़ते हैं आगे। उस स्ट्रेटजी को आप छोड़, आपसे एक ही गुजारिश है ना, आपके माध्यम से यदि लोग सुन रहे हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान कहता कि हमारा जगुलर वेन नहीं है, कश्मीर हमारा जगुलर वेन नहीं है और भारत के लोग डिफरेंट है, हम टू नेशन थ्योरी ले, क्यों ये बातें कहती हैं? और वो जो लोग मैटर करते हैं वहां का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, और ये कहता है कि आपको कहता है कि हमारे पास परमाणु बम है, तो ये जो न्यूक्लियर बोगी आपने तोड़ा है ऑपरेशन सिंदूर में, आप उसको पूरा का पूरा डिफीट करना चाहते हैं इस लेटर के माध्यम से, इस तरह के डिबेट? और देखिए कौन आपके चैनलों में बैठ करके इसको सपोर्ट कर रहा है, वो वही लोग हैं जो इससे पहले भी इन चीजों को सपोर्ट, क्या आपको याद नहीं है कि यही प्रधानमंत्री वो उतर गया था पाकिस्तान की धरती पर?
7: नवल किशोर जी,
14: किस लिए उतर?
7: जवाब दीजिए।
14: और आज
7: गलत टाइमिंग
14: करते हैं,
7: ये इनमें दो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं जो केके सेना उठा रहे हैं, उसमें दो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं। एक तो गलत टाइमिंग, सुन लीजिए नवल किशोर जी, सुन लीजिए, दो बातें निकल कर आती है जो मोटी मोटी तौर पर। एक गलत टाइमिंग, उनका कहना है कि अब हमें फायदा मिल रहा है जो स्ट्रेटेजी थी, और चिट्ठी से वो सारा फायदा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, गलत टाइमिंग।
11: नहीं नहीं, पता नहीं केके सिन्हा जी का ये थियरी और सिद्धांत कहां से आया कि अगर कोई अपील किया जा रहा है दोनों सरकारों से जिसमें पीस, नॉर्मलसी और कॉपरेशन है, तो ये कहां से उनको उनके बातचीत को खत्म कर रहा है या जो जो जो भी वो कहना चाह रहे हो कहां से खत्म हो रहा है? बात बिल्कुल स्पष्ट है,
14: आप गारंटी दे दें मेरे भाई, आप गारंटी चिट्ठी लिख के दे दें, नागरिक
11: अपना काम करते हैं,
14: कोई टेरर अटैक नहीं आएगा।
11: नहीं, आप
14: ये कह दें कि हमारी कोई शहादत नहीं होगी,
11: आप गारंटी
14: नहीं करेंगे,
11: आप गारंटी दे सकते हैं? आप पहले ये गारंटी दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कब क्या करेगी? आप गारंटी दे सकते हैं कि प्रधानमंत्री कब जाकर बिरयानी खा लेंगे? आप गारंटी दे सकते हैं कि आरएसएस के लोग कब क्या कह देंगे? अखंड भारत का आप बिल्कुल, आप इतिहास का पन्ना पलट के देख लीजिए, बहुत सारे उदाहरण है। गुजरात डॉक्ट्रिन पढ़ लीजिए, गुजरात डॉक्ट्रिन पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अभिषेक चौधरी का किताब जो है, वाजपेयी का जो बायोग्राफी है, वो पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको आपको बिल्कुल इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विदेश नीति के दो जो विदेश नीति के जो दो महत्वपूर्ण पक्ष है, डोमेस्टिक फैक्टर और इंटरनेशनल फैक्टर, ये दोनों फैक्टर आपको पढ़ना चाहिए, आपको मालूम ही नहीं है। आप क्या बात करते हैं,
14: डोमेस्टिक फैक्टर है ना,
11: बिल्कुल आपको मालूम ही नहीं है, आप बिना मतलब का बात कर रहे हैं। आप बताइए,
14: आप
11: पहले ये बताइए,
14: आपको सारा मालूम है,
11: बिल्कुल
14: लड़ने वाले हैं,
11: बिल्कुल मालूम है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। आप बताइए कि विदेश नीति अगर इतना ही सफल है तो सार की सफलता बताइए क्या है? पिछले 10-12 साल में जो सार है साउथ एशियन रीजनल कॉर्पोरेशन की क्या स्थिति है, आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए तो पहले, चिट्ठी तो आज पहली बार थोड़ी लिखी गई है, चिट्ठी आपको मालूम ही नहीं है कि चिट्ठी का आप क्या जानेंगे, चिट्ठी का महत्व आप तो सिर्फ भड़काना जानते हैं, आप पार्टीशन को याद
13: करेंगे,
11: लोगों को नमक छिड़कना जानते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा क्या है आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि
7: एक मिनट, ये मामला ऐसा है भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत, एक मिनट, भारत और पाकिस्तान के बीच के बातचीत का मुद्दा ऐसा है, सुनिए तो नवल किशोर जी, इमरान काजी जो मुद्दा उठाया गया है कि सिंधु का जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान के तरफ से यह पहल अलग तरीके से शुरू हो गई है, पीओके में रहने वाले जो कश्मीरी हैं उनकी हालत को देखते हुए एक बार फिर यह कोशिश शुरू हो गई है, तो ऐसी स्थिति में जो केके सिन्हा जी जिसका जिक्र कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि यह सही वक्त है चिट्ठी लिखने का?
8: जी मैंने बड़े पेशेंटली सबको सुना है, मुझे उम्मीद है कि हमें भी दो मिनट देंगे और पेशेंटली सुनेंगे
7: जी।
8: बड़ी हैरानगी होती है कि
7: बिल्कुल
8: ऑन स्क्रीन नेशनल टीवी पे डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है बहुत सारे लोगों का। डबल स्टैंडर्ड कैसे? जब चिट्ठी की बात आई, सुने प्लीज, जब चिट्ठी की बात आई तो वो एंटी नेशनल हो गए, उनके डोजियर्स हो गए, उनके खिलाफ पता नहीं क्या क्या है, वो पाकिस्तान फेवरेबल हो गए। जब वही बात आपने जनरल सेक्रेटरी आरएसएस की, जब वही इस बात आपने मोहन भागवत जी ने की, जब वही बात रिटायर्ड जनरल नरवानी जी की बात की, जब डीजीएमओ बात कर रहे हैं बैक एंड पे, तब इनकी टोन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसमें कोई बात नहीं हो रही है। और दूसरी चीज, मार्क माय वर्ड साहिल जी, नेशनल टीवी पे बोल रहा हूं, आप भी इसी चैनल पे प्रोग्राम करेंगे, दीज ऑल आर इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस वक्त मैं पूछना चाहता हूं इनसे, ये इनके स्टैंड्स कहां जाते हैं?
7: आप कह रहे हैं कि चिट्ठी के पीछे सरकार है?
8: सुनिए,
7: नहीं नहीं, एक मिनट इमरान जी, आप कह रहे हैं कि चिट्ठी के पीछे सरकार है? आप ये कह रहे,
8: सुनिए प्लीज, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी केके सिन्हा साहब ने कहा कि मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक हो रहा है, बात हो रही है, हर वीक हो रही है, मंत्री हो रही
14: है, साहब डीजीएमओ पता है क्या होता है वो, दिस इज अ हॉटलाइन,
8: तो सुनिए
14: गड़गड़ा करके ऑपरेशन सिंदूर में, सुनिए
8: सिन्हा साहब, सुनिए
14: ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ गड़गड़ा करके
8: मांगा गया, बहुत देर बोला, दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज,
14: नहीं दूसरे को मौका
8: नहीं देखा, सुनिए सिन्हा साहब प्लीज,
14: आप लोग
8: सिन्हा साहब आप पढ़े हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आप बड़ा आप जब बोल रहे थे हम सब पेशेंटली सुन रहे थे,
7: सुन लीजिए, सुन लीजिए,
8: आपको भी सुनने का पेशेंस रखना चाहिए,
7: इमरान जी की बात, उसके बाद सिन्हा की बात करेंगे, लेकिन पहले पहले पहले इमरान जी आपकी बात करते हैं, उसके बाद सिन्हा जी जी
8: साहिल जी, अखंड भारत का एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, भाजपा का है, क्या ये भी एक रास्ता नहीं हो सकता है कि आप अखंड भारत को अचीव करना चाहते हैं, क्या ये वो रास्ता वो उसमें नहीं है क्या? और यहां मैंने देखा बहुत सारे लोग गारंटी ढूंढ रहे हैं कि क्या पीस बातचीत करने के बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा, क्या कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शख्स है जो ये गारंटी देगा कि अगर हम जंग करेंगे उसके बाद यहाँ पे खून खराबा नहीं होगा, टेररिज्म नहीं होगा और पाकिस्तान की तरफ से वही हरकतें फिर से नहीं होगी? गारंटी किसी चीज की नहीं है, लेकिन हमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द कि आप किसी इंसान का कत्ल करके जाएंगे। देखिए, एसी कमरे में बात करनी बहुत आसान होती है, उन लोगों से पूछिए जो सफर करते हैं डे टू डे इस चीज में, जो सफर करते हैं, जो बैठे हुए हैं उन इलाकों पे बॉर्डर एरिया,
7: ये ठीक है, लेकिन इमरान जी आप देखेंगे कौन सा मुद्दा बड़ा रहेगा, ये शांति की बातचीत, आर्टिकल 370 पीओके में जो हो रहा है वो, या सिद्धू जल समझौता, कौन सा मुद्दा आप बड़ा बनेंगे फिर ऐसी स्थिति में?
8: नहीं देखिए, जब ये बातचीत शुरू होगी, अभी ये सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया गया है, किसी ने ये फोर्स नहीं किया है किसी चीज के लिए, एक रिक्वेस्ट लेटर डाली गई है सिविल सोसाइटी की तरफ से, आप इतना मुद्दा बना क्यों रहे हैं इस चीज का पहले?
7: केके सिन्हा जी आप जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है केके सिन्हा जी जवाब दीजिए।
14: देखिए चीजें ऐसे ही बदलती हैं, ऐसे ही डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल में चेंजेस आते हैं। आज के दिन में, और जब ये हर एक बार होता है, 1971 में 93,000 सोल्जर्स हमारे पास में थे, हमने शिमला में यही टॉक किया, 93 कर गए, केवल 56 इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं आए, हमारे पास नहीं आए, हम उन जमीनों को खो गए, उन चीजों को हट गई, क्योंकि इसी तरह के लोग जो देश में आप जब एडवांटेजियस पोजीशन में होते हैं तो उसको आपको डिफीट करना चाहते हैं। आज हम इस मुद्दे पे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं थमा है, ये केवल हॉल्टेड है टेम्पररली एंड इट इज वर्किंग, इसलिए वहां पर छटपटाहट है, कितनी भी चीज कर लें। और आपका इंडस वाटर ट्रीटी क्यों नहीं आज तक इसके ऊपर में हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी कब आया था? ये नहीं आया था 1947 में, ये आया था उस समय 65 के दो साल पहले, और ये इसको कहा गया था कि मत करो इसको, मगर किया।
15: ठीक,
14: ओके, सेम डिबेट पढ़िए उनको आप पार्लियामेंट के अंदर, प्रोसीडिंग सेम डिबेट कि आप दे देंगे तो वो लोग हो जाएंगे हमारे एक हो जाएंगे, सेम डिबेट
15: जब भी
14: करके इतने 75 साल बाद आ रही है, सेम डिबेट।
15: मेरा समय खत्म हो रहा है, कुल मिलाकर दो पक्ष इस पर साफ उभर कर सामने आते हैं। जब भी भारत पाकिस्तान के चर्चा को लेकर बातचीत शुरू होती है, खास करके पहलगाम के हमले के बाद कई सारे सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं। लेकिन ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि श्रीलंका के भीतर जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हुई, भारत सरकार के तरफ से उसका खंडन किया गया कि आज की स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भारत की भूमिका है वही कायम है, बातचीत शुरू करनी है तो सरकार तय करेगी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सरकार को भरोसा नहीं है। लेकिन एक तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले पर, इस चिट्ठी पर चुप्पी साधे हैं, लेकिन वही जम्मू कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर कह रहे हैं कि ये पीडीपी और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कुछ चाल है। और इसीलिए ये चिट्ठी आखिरकार कौन लेकर आया है और इसके पीछे कौन है, ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: presented by Canara Bank. Together we can.
1: की है फेवरेट चीज खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
7: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: हमने तब भी सवाल किया था,
4: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
3: हम आज भी सवाल करते हैं।
4: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
3: ऑपरेशन अग्नि,
4: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
3: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।

0: भारत ने पानी रोका तो बिलबिलाए बिलावल, भारत को दी परमाणु गीदड़ भभकी। अभी तो सिंधु जल समझौता सिर्फ सस्पेंड हुआ है, कहीं समझौता रद्द हुआ तो बूंद बूंद को तरसेगा। कंगाली के दलदल में धंसा पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह छटपटा रहा है। एक तरफ उसकी जनता दाने दाने को मुहताज है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिर पर बारूद का भूत सवार है। इस्लामाबाद में सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। खुद को दुनिया के सामने पीड़ित और शांति दूत दिखाने चले पाकिस्तान की पोल तब खुल गई।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

भारत ने पानी रोका तो बिलबिलाए बिलावल, भारत को दी परमाणु गीदड़ भभकी। अभी तो सिंधु जल समझौता सिर्फ सस्पेंड हुआ है, कहीं समझौता रद्द हुआ तो बूंद बूंद को तरसेगा। कंगाली के दलदल में धंसा पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह छटपटा रहा है। एक तरफ उसकी जनता दाने दाने को मुहताज है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरानों के सिर पर बारूद का भूत सवार है। इस्लामाबाद में सिद्धू जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई। खुद को दुनिया के सामने पीड़ित और शांति दूत दिखाने चले पाकिस्तान की पोल तब खुल गई जब उसके ही नेता ने भारत को परमाणु धमकी दे दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये इंटरनेशनल मंच है। जाहिर है वो सिंधु जल समझौते के मुद्दे को दुनिया भर में उठाना चाहता है, लेकिन हकीकत ये थी कि कुछ गिने चुने विदेशी मेहमानों के अलावा वहाँ कोई बड़ा वैश्विक नेता झांकने तक नहीं आया। खुद को दुनिया के सामने पीड़ित और शांति दूत दिखाने चले पाकिस्तान का ये ड्रामा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। वैसे भी दुनिया जानती है कि पहलगाम में 26 बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी हमले के बाद भारत ने इस समझौते को सस्पेंड किया है। ये बात बिलावल भी जानते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चढ़ावा चोरी मामले में आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज, चंपत के करीबी टिन्नू यादव के पास मिला 1,00,000 कैश, आरोपियों के घर से रुपया, डॉलर, ज्वेलरी की बरामदगी। बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी सड़क, राजधानी में बनाया जाएगा 6 लेन का टनल। समाजवादी पार्टी पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था खर्च, आज बन रहे एक्सप्रेसवे 2017 से पहले दंगे होते थे। चारधाम के नाम पर महाठगी, 2 गिरफ्तार, साइबर ठगी का हुआ खुलासा, बिहार के नालंदा से 2 आरोपी गिरफ्तार, वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर टिकट का लालच देकर श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। और पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच आगे आए भारत पाकिस्तान के 117 दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: मर्यादा का पहला नाम भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
3: यात्रा तब कहां चली गई थी जब कावड़ यात्रा को आप लोग रोकते थे?
4: उस ट्रस्ट में अगर किसी मुसलमान को रख देते तो ले जाकर गोली मार देते, उसको मामला खत्म हो जाता। गलती उन्होंने की, मुसलमान रखा ही नहीं।
5: देश भर के जनता ने घर घर से 10-10 5-5 रुपया दिया है राम मंदिर के लिए, उनका हिसाब तो मिलना चाहिए। साय लूट लिया करोड़ों रुपया, कहाँ गया, किसने लिया?
6: ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं है। अगर भगवान मानते ये लोग तो कभी चढ़ावे की चोरी नहीं करते।
7: हम तो माध्यम हो सकते हैं, इसी तरीके से किसी साथी ने कुछ बताया होगा, नंबर जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ेगा।
8: छोटे छोटे प्यादों को पकड़ा जा रहा है और जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको छोड़ दिया गया माल ठिकाने लगाने के लिए।
9: इसके तार ऊपर से जुड़े हुए हैं और कर्नाटक तक गए।

नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हल्ला बोल में आज चर्चा होगी कि कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र राम मंदिर के लिए न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी जान दी, लेकिन यकीन नहीं होता, लालच में अंधे कुछ लोग रामलला के मंदिर में आए चढ़ावे की चोरी से नहीं चूके, और अब तो खुद ही सामने आ रही है बात, खुद ही एक एक करके कबूल रहे हैं ये सारे चढ़ावा चोर। चढ़ावा चोरों ने अपनी समझ में फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। उन्हें यह लग रहा था कि समाज की नजर में वो लोग रामलला की सेवा में लगे हैं, शक कौन करेगा। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों की मिली भगत से वो चढ़ावा चोरी करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था। लेकिन राम जी ने चढ़ावा चोरी की जो ऐसी बुद्धि है ना, चढ़ावा चोरी वाली, उस बुद्धि को ऐसी फेरी कि वो लोग बेफिक्र होकर

अंजाम के बारे में सोचे बिना खुलकर चोरी करने लगे और फिर एक दिन उनकी चोरी का बंडा फूट गया। खास बात यह है कि जेल में जब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने पहुंची तो सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वो बोले कि उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी चोरी खुल जाएगी। सोचिए, कल्पना कीजिए, जब पुलिस पूछताछ कर रही है तो कह रहे हैं कि हमने सोचा था कि हम काफी दिन तक ये चलेगा, हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन सवाल है कि चढ़ावा चोरी का सरदार कौन है, और सवाल यह भी है कि ट्रस्ट ने राम भक्तों का भरोसा क्यों तोड़ा, ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। आज हम इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, पहले ये रिपोर्ट देखिए।

0: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रोज हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज तक कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र में भी पहुंचा जहां आरोपी अविनाश ठहरता था। संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव को वहां एक रहस्यमय बक्सा मिला जिसके बारे में शक है कि वो राम मंदिर से जुड़ा हो सकता है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर राम राज्य दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है।
1: ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमय बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। खबर है कि FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को राम मंदिर ट्रस्ट ने अविनाश शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने संविधान, आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ की है।
3: आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने को मन नहीं करता? तीसरा प्रश्न, क्या आपका राम मंदिर जाने को मन नहीं करता? चौथा प्रश्न, क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है? और पांचवा और सबसे अहम प्रश्न, क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं?
0: खबर ये भी है कि पुलिस ने जेल में जाकर 8 आरोपियों से पूछताछ की है और इस दौरान आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है अब उसे समझिए। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास काउंटिंग रूम की चाबी रहती थी, दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी, बैंक कर्मियों की मिलीभगत से चंदे की चोरी होती थी, एक आदमी चोरी करता, बाकी उसे घेर कर खड़े रहते, चोरों को पता था कैमरे कहां कहां लगे हैं, कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम दिया जाता, पहले चोरी की रकम बाथरूम में छिपाई जाती, फिर मौका देखकर बाथरूम से पैसे निकाले जाते।
1: चोरों के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल बन गया था। वो कहावत है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। काउंटिंग करने वाला इन्वॉल्व, जांच करने वाला इन्वॉल्व, मॉनिटरिंग करने वाला इन्वॉल्व, वहीं कंट्रोल रूम देखने वाला भी इन्वॉल्व। यानी कि जब सभी शामिल तो कौन पकड़ेगा और कौन रोकेगा।
0: यानी रामलला के चढ़ावे की लूट होती रही और ट्रस्ट के पदाधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल किया है। आरोपियों ने चोरी की रकम से जायदाद खरीदी ये भी कबूल किया है। आरोपियों ने ये भी माना कि उन्हें इतनी जल्दी भंडाफोड़ होने की उम्मीद नहीं थी। खास बात है कि राम मंदिर से जुड़े 3 बड़े किरदार सुर्खियों में हैं, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ FIR नहीं हुई है। इनमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के नाम शामिल हैं। आरोपी अनुकल्प और लवकुश मिश्र अनिल मिश्रा के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में टिन्नू यादव चंपत राय का बेहद करीबी रहा है। एक आरोपी सुभाष श्रीवास्तव रिटायर बैंक कर्मी है और बाकी बचे 5 की नियुक्ति भी ट्रस्ट के किसी ना किसी पदाधिकारी की सिफारिश पर ही हुई थी।
1: सूत्रों की माने तो ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले अनिल मिश्रा के सबसे अधिक 100 के ऊपर सदस्य ट्रस्ट में भर्ती करवाए थे। यानी कि उनका दबदबा ट्रस्ट में था और उनके कहने से भर्ती भी होते थे और निकाले भी लोग जा सकते थे। जो जांच पड़ताल इस वक्त चल रही है उसमें अनिल मिश्रा से जुड़ी तमाम चीजें सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़ा अनिल मिश्रा की भर्तियों का है उसके मुकाबले चंपत राय और अन्य ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आधा भी नहीं है। इस बात से साफ होता है कि अनिल मिश्रा की ट्रस्ट में कितनी चलती थी और ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें क्या अनिल मिश्रा का भी रोल आने वाले वक्त में सामने आने वाला है।
0: ऐसी खबरें हैं, सेटिंग करने में नंबर 1 थे अनिल मिश्रा। वो जिसको चाहते थे उसको नौकरी दे देते और कोई हो हल्ला भी नहीं होता। मंदिर प्रबंधन के हर स्तर पर अनिल मिश्रा ने अपने लोगों को फिट कर रखा था। जब बैंक ने काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों को हटाने की कोशिश की तो अनिल मिश्रा ही सबसे ज्यादा अड़े थे। क्योंकि उन्हें पता था कि गाज उनके लोगों पर ही गिरेगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच और पूछताछ में हुए खुलासे के बाद एक बार फिर एसआईटी जल्द ही अयोध्या आने वाली है। उम्मीद है कि आरोपियों की रिमांड लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। चर्चा की शुरुआत करते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आलोक शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मलुक नागर जनरल सेक्रेटरी स्पोक्स पर्सन आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज है जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से बरामदगी का पूरा ब्यौरा है। इन डॉक्यूमेंट्स में रुपए, डॉलर, ज्वेलरी सबका पूरा हिसाब किताब है। यानी गहने भी चुरा रहे थे, पैसा भी चुरा रहे थे, और तो और डॉलर आ रहा था। अगर विदेश से लोग आकर चढ़ावा चढ़ा रहे थे तो डॉलर भी बरामद हुआ है। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20 लाख से ज्यादा कैश की बरामदगी हुई है। अविनाश के पास से ही अमेरिकी डॉलर भी जब्त हुआ है। वहीं चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। समर्थ हमारे सहयोगी जो लगातार हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, देखिए होम एसीएस को ये जो पूरी पेपर सौंपी गई है वो रिपोर्ट हमारे पास है जिसमें एक एक का हिसाब किताब लिखा हुआ है। अनुकल्प मिश्रा के पास से कितना मिला, अब डॉलर भी मिल रहा है इनके पास से, चढ़ावे में शायद आता होगा। समर्थ तीन बड़ी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूं। एक तो आज भी खबर आ रही है कि रेड कई जगहों पर डाली जा रही है, मतलब इतने दिन बीत जाने के बाद तो अगर किसी ने गद्दे में भी छिपाया होगा ना तो वो निकालकर वापस सिल लेगा। ये समझ नहीं आ रहा कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से आगे बढ़ रही है। तीन पॉइंटेड सवाल है। एक तो जो जो मिला है, क्या वाकई ट्रस्ट ने पहले ही ये बरामदगी कर ली थी, और बरामदगी की तो फिर क्या किया उसके बाद उस पैसे का, क्या ढकने की कोशिश की गई शुरू में। दूसरा प्रश्न, एसआईटी आखिर अनिल मिश्रा को इतने बिंदुओं पर शक के घेरे में पा रही है, फिर भी नामजद क्यों नहीं किया गया है एफआईआर में। और तीसरी बड़ी बात, अब आगे क्या होगा।
1: अंजना देखिए, अगर मैं शुरुआत से आपको बताऊं इस पूरी कहानी को लेकर, ये डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास है बहुत संगीन है। इसमें काफी चीजें मेंशन है, इसमें ये तक डिटेलिंग है कि कितने नोट कौन कौन सी करेंसी के क्या क्या हैं। अगर मैं आपको जल्दी से बताऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा, रमाशंकर यादव, रमाशंकर मिश्रा, लवकुश मिश्रा, इन सब के यहां से जितनी भी बरामदगी हुई है वो सब डिटेलिंग इसमें लिखी हुई है। आपको मैं बताऊं, अगर मनीष कुमार यादव के यहां से 2 लाख के ऊपर, करुणेश प्रताप 18 लाख, अनुकल्प मिश्रा 16 लाख के ऊपर, तो ये लवलेश मिश्रा तमाम चीजें हैं जो इन डॉक्यूमेंट्स में दी गई है। और जैसा कि आपने कहा, विदेशी मुद्रा, चेन, सिल्वर की चेन, तमाम चीजें, कई ऐसी मुद्राएं हैं जो वहां से रिकवर की गई हैं। इतना ही नहीं, आज अगर रेड्स की बात करें तो पुलिस लवलेश मिश्रा के यहां पहुंची है और कुछ और अन्य जगहों पर पुलिस ने लगातार रेड दी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां, जैसा कि आपने पूछा, और ये बनता है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है। आज एक बड़ी खबर यह भी है कि एसआईटी को 15 दिन का समय और दिया गया, यानी कि जो रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट थी, प्रारंभिक रिपोर्ट तो एसीएस को जा चुकी थी, जो फाइनल रिपोर्ट जानी थी उसके लिए 1 या 2 दिन का समय शेष था। इस वजह से जब परतें खुली हैं तब मालूम पड़ा है सरकार को और पुलिस को कि असल में मामला बहुत बड़ा है। जो 8 अरेस्टिंग्स हुई हैं, हमने कई साधु संतों से यहां बात की है, ट्रस्टी जो राम जन्मभूमि के उनसे बात की है, उनका ये कहना है कि छोटी मछलियां कैद में आई हैं लेकिन कई बड़ी मछलियां हैं जो अभी भी बाहर हैं। हालांकि इस पूरे मामले में चंपत राय से सूत्रों के मुताबिक पूछताछ हो चुकी है, अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी बाकी है। अनिल मिश्रा का किरदार उस वक्त भी 2021 में आया था अंजना, जब आज तक ने इस विषय को उठाया था कि जो जमीन घोटाला हुआ, 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में महज 5-10 मिनट के भीतर में किस तरीके से बेचा गया। हालांकि उस वक्त भी चंपत राय की तरफ से कहा गया था कि जिस जो भाव उस वक्त था, रजिस्ट्री पहले कर ली गई थी, उस भाव के अनुसार बेचा गया था। लेकिन वो मुद्दा आज फिर उठ रहा है क्योंकि टिन्नू यादव का घर अगर आप देख लें तो किसी आलिशान महल से कम नहीं लगता है। तो ये जो तस्वीरें सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि नेक्सस छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इसीलिए SBI तक को पुलिस को जाना पड़ गया, SBI के मैनेजर से पूछताछ करनी पड़ गई, जहां पर यह मालूम पड़ता है कि बैंक वाले तो ये कह रहे हैं कि हमने तो भाई 3 महीने पहले आपको अलर्ट किया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है, लेकिन ट्रस्ट वालों ने कहा कि भाई ठीक है, इसको इग्नोर किया है। तो ये जो लेयर्स है ना, इस वजह से ही 15 दिन का समय मांगा गया है और इसी वजह से पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी है।
0: इसीलिए समझ लग रहा है ना कि मतलब अभी अब जाकर अगर रेड्स इस तरह की मारी जा रही है तो इन लोगों ने तो अब तक कहां कहां ये सब कुछ छिपाने की कोशिश की हुई होगी। खैर, उम्मीद करते हैं ज्यादा से ज्यादा बरामदगी हो। एक आखिरी सवाल है जो मैं फिर से चाहती हूं कि जनता भी सुने ध्यान से, क्या वाकई ट्रस्ट को बहुत पहले यह पता चल चुका था कि यह सब कुछ हो रहा है और पैसों की बरामदगी तक कर ली थी, ढकने की कोशिश की गई पूरी, जब नहीं ढक सका तब इस तरह से पूरे इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़े।
1: अंजना देखिए, इसका सीधा साधा उदाहरण यह है कि एफआईआर में देरी क्यों हुई है। अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से होना था या हुआ होता तो शायद बरामदगी और पहले हो गई होती और ट्रस्ट के द्वारा अगर हुई भी थी तो पुलिस को तुरंत सूचना दी गई होती, एफआईआर होते और जिन अरेस्टिंग्स में इतना वक्त लग गया, आप अगर 8 लोगों की जो अरेस्टिंग हुई है अगर आप डे वन से उसको कंक्लूड कर लें तो काफी देर हुई अरेस्टिंग होते होते, जबकि ये वो लोग थे जिनको ट्रस्ट बहुत आसानी से जानता था। कुछ तो रिश्तेदार भी ट्रस्ट के लोगों के बताए जा रहे हैं, कुछ आउटसोर्सिंग में उस कंपनी के थ्रू आए थे जिसको एसबीआई ने हायर किया था, तो कई ऐसे नाम है जो अभी आने बाकी है। लेकिन जो देरी हुई है उससे एक बात तो साफ है कि दाल में कुछ काला था, ऐसा लगता है ट्रस्ट को भनक तो थी या फिर उनके ही इशारे पर हो रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कई लोग इस बारे में भी साधु संत अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं कि जिनकी अरेस्टिंग हुई है वो महज एक शुरुआत है, बड़े नाम भी आने बाकी हैं जिनके इशारों पर ये छोटे जो कर्मचारी हैं जिनकी अरेस्टिंग हुई है वो काम कर रहे हैं, और उनकी जब अरेस्टिंग होगी तब असली राज खुलेगा। और शायद उसी का उदाहरण देती है एसआईटी की वो रिपोर्ट जो 15 दिन का और समय मांगती है और उसके बाद उम्मीद यहां के साधु संत करते हैं कि बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया जाए।
0: बिल्कुल, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और एक एक करके हर पन्ने पर अगर आप देखिएगा तो चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो जिसके पास से लगभग 16,82,000 रुपए बरामद किए गए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है जब आप देखेंगे कि डॉलर्स का कैसे हिसाब किताब अविनाश शुक्ला के लिए लगाया गया है। ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है, पूरा हैंडराइटिंग में अगर जूम इन करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। हैंडराइटिंग में देखिए नीचे, बिल्कुल हैंडराइटिंग में लिखा गया है कि कितने हैंड रिटन है, कितना डॉलर बरामद किया गया है, नीचे वाले हिस्से में डॉलर्स भी सोचिए, मतलब जाहिर तौर पर चढ़ावा के लिए लोग विदेशों से आकर डालते होंगे। जो नीचे से पेन से लिखा हुआ इंफॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है $100 × 8 ऐसे करके $800, फिर $200, फिर $280, $30, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, मतलब गिरने की कोई सीमा नहीं थी, यही कहा जा सकता है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, मैं आपके साथ फॉर्मर डीजीपी चुकी आप हैं विक्रम सिंह साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या समझ में आ रहा है सर आपको, ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा था? अब ट्रस्ट को पहले पता था, 5 लाख बरामद हुआ, फिर गिरफ्तारी भी होती है अविनाश शुक्ला की, उसको पकड़ने की कोशिश होती है, अविनाश शुक्ला को पकड़कर जो पुलिस ले जा रही थी हाथ में काला बैग था, वो वीडियो भी हमारे पास से दिखा दीजिए जिसमें कैश बरामद का भी दिख रहा है, 24 सेकंड का ये वीडियो, सफेद गाड़ी में आरोपी अविनाश शुक्ला की पकड़कर ले जा रही है और पता चल रहा है कि ट्रस्ट को तो पहले से ही पता था, ये चल क्या रहा है सर?
4: अंजना जी नमस्कार, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। मेरी बातें आज बहुत कटु होंगी क्योंकि मैं डे वन से कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा लीपापोती का प्रयास किया गया है, एफआईआर का न लिखना, लोगों को रिमांड पे न लेना और अभी भी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के जो गिरफ्तारी करना होगा, और क्यों नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर के कानून में इम्यूनिटी है, डिप्लोमेट हैं, ये क्या है ये इनकी गिरफ्तारी एफआईआर नहीं हो रही है? आप याद करें जब हम आपके चैनल पे एक बार बैठे थे शुरुआती दौर में, नहीं आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, बदनामी नेकनामी आपके कर्म करते, मैं नहीं करता हूं। और आज भी मैं यही कहूंगा कि जो कानून की अनिवार्यता है कि अगर आपने इस तरीके की चोट्टापना कराया, मुझे याद आ रहा आपने युवावस्था में जब हम डकैतों के यहां छापा मारते थे तो ऐसी ही बरामदगियां होती थी, सिक्के, रुपए, डॉलर, जेवरात और ये झुंझुने पूजा की मूर्तियां दी, यही लगभग वही सीन आज भी यही है कि जो डकैतों के यहां छापे में बरामदगी होती है, रिकवरी मेमो, अंजना जी दुर्भाग्य से वैसा ही बन रहा है। और आज भी हमने उन चोटों को जो 8 जेल में रिमांड पे क्यों नहीं लिया, हम ये उदारता क्यों दिखाते हैं? अब उदारता दिखी, हम एफआईआर हमने नहीं की, उदारता नंबर 1, उदारता नंबर 2 गिरफ्तारी में हमने प्रमाद किया, उदारता नंबर 3 हमने तलाशी में ढीला हवाला किया। आपने प्रारंभिक संबोधन में कहा कि अगर यही हम पहले दिन कर लेते तो इसकी 100 गुना ज्यादा बरामदगी होती, हमने नहीं किया। और आज भी जो ट्रस्ट के हैं इनके ऐसा मालूम पड़ता है कि पता नहीं ये हैं क्या राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये हैं क्या कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया उस पर विचार किया जाएगा, और 11 जुलाई की बैठक में ये ऐसे थर्ड क्लास ट्रस्ट को होना चाहिए बर्खास्त और ये सभी जाने चाहिए थे जेल, इनके ऊपर NSA लगना चाहिए, गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, इनकी चल अचल संपत्ति भी कुर्क होनी चाहिए। ये जो हम उदारता दिखा रहे हैं ये दरअसल जितनी बार हम करेंगे अंजना जी अपने पैर के कुल्हाड़ी और हम अपने कर्तव्य से के प्रति उदासीन है।
0: एक कोषाध्यक्ष भी हैं सर
4: जी,
0: इसी मंदिर के
4: जी,
0: गोविंद देवगिरी
4: जी,
0: उनसे अब वो आराम से घूम रहे हैं, वो आराम से घूम रहे हैं, और जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उंगली मुंह पे रखकर और पूरा इशारा करने लगे इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। तब
4: कैसे बोलेंगे?
0: शक इस वजह से फैलता है ना कि ये सारे आराम से इधर उधर सारे घूम रहे हैं,
4: आराम से घूम रहे हैं इस्तीफा देने के बाद। अंजना जी, इस्तीफा देने के बाद भी बेशर्मी के साथ मंदिर में कैसे घूम रहे हैं? आप और हम अगर मंदिर में जाए तो 10 नियंत्रण पर, रियल लाइफ बता रहा हूं, तो 10 अंकुश ये और वो, और आपके ऊपर तो नियंत्रण, मेरे ऊपर नियंत्रण, और ये जो है अपना खुलेआम डकैती डालने के बाद ही घूम रहे हैं। इनके ऊपर मैं यही कह रहा हूं, बिना किसी पूर्वाग्रह से, बिना किसी प्रेजिडिस के, कि जो कानून की अनिवार्यता है वो तो पूरी होनी चाहिए। एक और तथा कथित साधु थे, नहीं हम बदनाम नहीं करना चाहिए, उनका जो पास्ट था निष्पाप और निष्कलंक था, हमने कहा बड़े परम पूज्य थे, लेकिन उनके नीचे या उनके द्वारा सुल्ताना और मानसिंह डाकू पल रहे थे, उनकी बराबर की जिम्मेदारी, बराबर की जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने उस इकोसिस्टम को एक एक ईंट करके तैयार किया। अंजना जी, पीड़ा इस बात की,
0: शुक्ला जी, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि जो व्यवस्था बनाई गई उस व्यवस्था में इतने बड़े खोट दिख रहे हैं। मतलब राम मंदिर के लिए लड़ाई, राम मंदिर के लिए लड़ाई, और वो लड़ाई इसीलिए कि जैसे उन्होंने लूटा था वही काम करना था बनने के बाद मंदिर।
5: देखिए, मंदिर का उद्देश्य तो निश्चित तौर पर लूट नहीं थी, और जो कोई लूट में शामिल हुआ है वो जघन्य अपराध का भागी है, और जो कोई इसमें शामिल है, जिस स्तर का व्यक्ति भी शामिल है, वो दंड का पात्र है। राम मंदिर का निर्माण भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उत्कर्ष का पर्याय था। उस राम मंदिर में जिस तरह की चोरी दिखाई दे रही है, जिस तरह से चोरों के यहां से बरामदगियां हो रही हैं, ऐसे में जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो कड़े से कड़े दंड के पात्र हैं। लेकिन यह कहना कि राम मंदिर का उद्देश्य लूट के लिए था, मुझे लगता मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं। राम मंदिर का ऐसा उद्देश्य होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।
0: बताएंगे अनुराग भदौरिया जी, बताएंगे कि अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि मैं माध्यम बना हूं इसका, लेकिन सवाल तो आज यह है कि अब सरकार के नजरिए से अगर देखें तो SIT गठित की गई है, और वही SIT जहां जहां से जो भी बरामदगियां हो रही है वो सब बता रही है। अब जांच जब चल रही है भदौरिया जी, तो कैसे उस पर उंगली उठाइएगा?
6: देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आके घिसी पिटी बात बोलते हैं, कोई इसमें बचेगा नहीं, चाहे कितना से कितना बड़ा हो बचेगा नहीं। लेकिन मगरमच्छ तो पकड़े नहीं जा रहे, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं। आप अंजना जी बड़ी मछली बोल रहे हैं, मछली नहीं है, मगरमच्छ हैं वो, जिनके नाक के नीचे चोरी होती रही उनका तो कहीं नाम वो पता नहीं है, बट कोई छोड़ा नहीं जाएगा और बच सब जाएंगे। भाई आपको इतने दिन हो गए, 15 दिन और आपने SIT का मांग लिया, तभी तो मैंने कहा था कि SIT की जगह अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में ये इंक्वायरी हुई होती तो अब तक सब पकड़ लिए गए थे। ठीक कह रहे थे आप, इतना आपने टाइम दे दिया, इतने टाइम में तो चोर के अपने गए सामान रखेगा, सब ठिकाने लगा देंगे। मगरमच्छ जितने उसमें होंगे वो पता नहीं कहाँ कहाँ चीजें किधर लग देंगे, बाद में पाक साफ हो जाएंगे, बोले उनके यहाँ कुछ मिला ही नहीं, फिर मिलेगा ही नहीं कुछ जब इतना समय लगा दोगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से कि ये लोग जो है ना, हम लोग हमारे लिए जो प्रभु हैं, प्रभु राम के हम पुजारी हैं, और जो मगरमच्छ है ना वो प्रभु राम के व्यापारी थे, वहां पे वो व्यापार करने आए थे, वो धंधा करने आए थे, पैसा कमाने आए थे, बताओ धर्म के नाम पे धन लूट ले गए, और उसके बाद आवाज कितनी उठाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो फिर क्यों फिर पूछते हैं भाई उन्होंने क्यों उठाई? इसलिए उठाई चूंकि वो प्रभु राम और सनातनी है और सच्चे सनातनी है, क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रभु के उनकी आस्था है, चूंकि वो नवरात्र का उपास भी करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं, भव्य मंदिर बनाते हैं, कृष्ण के उपासक हैं, माँ दुर्गा के उपासक हैं, तो उन्हें पता चला ना प्रभु राम के हमारे यहाँ पे, चूंकि विष्णु के सातवें रूप तो हैं प्रभु राम, आठवें प्रभु कृष्ण है, तो उन्हीं से तो पता चलेगा ना कि कहाँ से क्या चोरी हो रही है। उनको उस बात का एहसास हुआ, आवास हुआ प्रभु राम, जैसा आप बता रही थे अंजना जी कि कहीं से तो आवास हुआ होगा, तो प्रभु राम ने ही आवास कराया होगा कि भाई हमारे यहाँ पे चोरी हो रही है, और बचा कोई सकता है तो आप ही बचा सकते हो, तो आवाज हमने उठाई नहीं, तब तो बीजेपी ने उठाई नहीं। अंजना जी आप गवाह है, बीजेपी तो आपके डिबेट में भी नहीं आती थी, हम तो कहते थे प्रभु राम की यहाँ चोरी हुई, आइए मेरी आवाज से आवाज मिलाइए, क्योंकि ये सनातन की बात हो रही है, सनातन में तो सभी सनातनी तो सभी है। फिर आप जब सभी सनातनी है यहाँ पे, ज्यादातर सनातन को मानने वाले लोग हैं, तो पर हम सनातन के सम्मान के, सनातन को बचाने की बात कर रहे थे, तो आप मेरे साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे थे? फिर आपने वहां पे ट्रस्ट में अपने ही लोग क्यों रखे? विश्व हिंदू परिषद के लोग, RSS से संबंधित हो, बीजेपी से संबंधित लोग क्यों रखे? आपने समाज के दूसरे लोगों को क्यों नहीं रखा? तभी आपके मन में शंका हो जानी चाहिए थी, देश के मन में
0: अनुराग जी क्यों नहीं रख रहे हैं? अनुराग जी अब जवाब तो सुनिए,
6: तो है नहीं कि विश्व हिंदू परिषद,
0: अरे जांच भी तो सरकार ही करा रही है ना, जांच भी सरकार ही करा रही है, तो एक बार जवाब सुन लीजिए उनसे, उसके अदालत जी को दिखाइए।
6: अंजना जी, सरकार जांच कब करा रही है? सरकार जांच तब करा रही है जब समाजवादी ने आवाज
5: उठाई। तो कह रहे थे शांत हो जाए, लगातार
0: भदौरिया जी आवाज नीचे कर लीजिए प्लीज सर। बोलिए।
5: श्रीमान अखिलेश यादव तो ये सजेशन दे रहे थे कि जिन लोगों ने श्री राम लला के चढ़ावे में से चोरी की है, आप लाइट बंद कर दीजिए, वो चढ़ावा छोड़ जाएंगे, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। ये तो जो है श्रीमान अखिलेश यादव का सलाह था। लेकिन जो कोई चढ़ावे की चोरी करेगा वो दंड का पात्र है, ये पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का भी यही रुख है। SIT भी इसी आधार पर काम कर रही है। जहां तक रही सनातन के, आज बहुत दुहाई देते हैं, सनातन को एड्स कह रहे थे आपके इंडी अलायंस के साथी, और आप चुपचाप जो है उनके जांग से जांग चटाकर बैठे हुए थे, तब आपको शर्म नहीं आ रही थी कि सनातन को एड्स कहा जा रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के आज भी अध्यक्ष हैं, वो सनातन के विरुद्ध बयान देते रहे, उनके पुत्र प्रियांक खड़गे सनातन के विरुद्ध लगातार बोलते रहे, कभी आपके मुंह से एक बार शब्द नहीं फूटा। श्री रामलला तो काल्पनिक थे कांग्रेस की दृष्टि में। तो आज भी आपको जो है श्री रामलला के मंदिर में चोरी हुई है, इस पर आप आनंद की अभिव्यक्त कर रहे हैं, आपको अत्यंत आनंद आ गया। से बाबर ने बाबरी वहां राम मंदिर लला का मंदिर तोड़कर बाबरी ढांचा कायम किया था, तो बाबरी ढांचा कायम रहे इसके लिए मोहम्मद आजम खान आपके जो नेता थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी चलाते थे, जफर याब जिलानी जो आपके एडवोकेट जनरल थे वो बाबरी वहां कायम रहे इसके लिए अंतिम दिनों तक मुकदमा लड़ते रहे, कांग्रेस के कपिल सिब्बल जो है बाबरीवादियों के साथ कंधे से कंधा लड़ाकर मुकदमा लड़ते रहे। आप तो चाहते ही नहीं थे कि वहां राम मंदिर बने, आज राम मंदिर बना, कुछ लोगों ने वहां लूट की है, और जिन्होंने लूट की है वो जघन्य अपराधी है। ऐसे जघन्य अपराधियों के अपराध पर आपकी जो खुशी का ठिकाना नहीं है, यही बताता है कि आपका बाबरवाद आज भी उछाल मार रहा है।
0: छोटा सा जवाब अनुराग जी, और ये बात सच है कि जब SIT गठित की गई, अरे सवाल तो सुनिए साहब, जब SIT गठित की गई तो अखिलेश जी ने ही कहा कि अधिकारी साधु संत से सवाल करेंगे, पूछताछ करेंगे। अरे भाई वही तो करेंगे, तभी तो SIT आज इतने लोगों से बरामदगी कर रही है, उनको आरोपी बना रही है।
6: देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी देखिए, अबे बाबर औरंगजेब इतिहास के पीछे छुपना चाहते हैं, अपना चेहरा बचाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं, इन्हीं के सरकार में और इनके ही जो लोग वहां BHP के थे उन्हीं की देखरेख में लूट हुई है ना, और आज आप बाबर औरंगजेब की आड़ में छुपना चाहते हो। आपका चेहरा उजागर हो चुका है, सुन लीजिए कान खोल के, कि आप सच को दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें जमीर में होती हैं। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करो सच को, सच मिटेगा नहीं, क्योंकि आपके ही लोग सम्मिलित थे। आपने ही ट्रस्ट बनाया था, आपने ही अपने लोगों को वहां पे घुसाया था, आपने किसी दूसरे लोगों को आने दिया उसके अंदर में? क्या यहां पे और लोग नहीं थे इस देश के अंदर में, जो आपने विश्व हिंदू परिषद RSS के अलावा कोई लोग ही नहीं मिले? जो BJP से संबंधित लोग थे वही राम भक्त थे क्या? इसलिए आपने सनातनियों के साथ धोखा किया था ना। तो प्रभु राम के यहां पे डकैती डालने के लिए या वो जो वहां पर चढ़ावा चोरी करने के लिए जो लोग वहां पे जिनकी निगरानी में चोरी हो गई, तो जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? और जिम्मेदारी लेने से भाग रहे
0: हैं, जांच कौन करेगा? अनुराग जी,
6: कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई
0: अनुराग जी
6: जाएगा?
0: अनुराग जी, जांच कौन करेगा
6: जी?
0: जांच कौन करेगा?
6: जांच माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कर लेते आप,
0: कौन करेगा?
6: इतनी देर में SIT गठित हुई है,
0: मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड भी हो, जांच तो पुलिस वाले ही करेंगे ना सर। और तो अखिलेश जी ने क्यों कहा कि साधी संतों की जांच अधिकारी करेंगे, ये क्यों कहा उन्होंने?
6: क्योंकि क्योंकि सब जानते हैं, क्योंकि जानते हैं ना वो, वो जानते हैं कि क्या जांच करेंगे।
0: आलोक जी, आलोक जी, आलोक जी, आलोक शर्मा जी, आज बड़ा सवाल, ठीक है, आज बड़ा सवाल ये है,
6: ठीक, इसके पहले भी कई SIT बनी है, अगर SIT समय से जांच हो जाती तो सब पकड़े जाते,
0: ठीक है। आलोक जी, आज सवाल ये है कि जांच नहीं हो रही थी तब भी प्रश्न खड़े हो रहे थे, अब जांच की प्रक्रिया जब आगे पड़ रही है तब भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन रिलाई तो इसी जांच पर ही करना होगा ना, आखिरकार तो पुलिस और SIT ही जांच करेगी, किसी को दोषी ठहराएगी, किसी को नहीं ठहराएगी, जो भी उनकी प्रक्रिया हो। हम लोग यहां पर बैठ के तो नहीं किसी को दोषी ठहरा सकते, हां सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे चंपत राय को लेकर, अनिल मिश्रा को लेकर, गोपाल राव को लेकर, वो सामने रख रहे हैं, और विक्रम सिंह साहब ने भी रखा।
7: देखिए अंजना जी, अगर ऐसा है कि जो पुलिस जांच कर रही है वही सब कुछ ठीक है, तो हम फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं आज तक पे बैठ के? सब उनको कर ही लेने देते हैं, वो जो करेंगे उसको माथे के लगा के हम चूम लेंगे कि साहब ये तो मतलब मोदी जी हैं तो मुमकिन है। दुर्भाग्य ये है कि आज का जो सवाल है मूल आज तक का वो है ट्रस्ट कितना भ्रष्ट। मैं कहूंगा ट्रस्ट उतना ही भ्रष्ट जितना आरएसएस और बीजेपी भ्रष्ट। ट्रस्ट ही तो चोर है, ट्रस्ट ही कंप्लेंट कर रहा है और ट्रस्ट के मेन पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर नहीं होती है। ट्रस्ट सब कुछ करता है वहां पर, ट्रस्ट ही वहां पर सारा मेंटेन करता है, लेकिन उनका नाम कहीं पर नहीं आएगा। इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ मत पूछो, बिल्कुल ये तो भगवान के रूप है भाई, हो सकता विष्णु विष्णु के अवतार हो, चंपत जी कहीं किसी के, अनिल मिश्रा हो सकता हनुमान जी के अवतार हो, इनसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि पूरा का पूरा जो प्रकरण पिछले एक महीने में आया है वो उसमें सजा की जगह बचाया कैसे जाए, अभयदान कैसे दिया जाए, उस पर काम हो रहा है। ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया, किसी के पास जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी क्यों हो, लोग सवाल पूछ रहे हैं हमसे। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसलिए हो कि पुलिस वाले डरेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा ऊपर है। अभी किसी का कोई डंडा नहीं है, अब तो जो बीजेपी और आरएसएस चाह रही है वैसे जांच करा रही है। आज तक ये ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई है, कोई भी मांग क्यों नहीं करता है, वो सीसीटीवी का बैकअप क्यों नहीं खंगाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहां सो रही है। अरे भाई आपके पास तो सब तमाम चीजें हैं, वो मोदी जी के ड्रोन जो उड़ते थे, मोदी जी कहते थे मैं ड्रोन से पकड़ लेता हूं, वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन फोर इंजन की सरकार थी और योगी जी रिकॉर्ड बना रहे थे अयोध्या जाने का। ये ऑर्गेनाइज्ड लूट थी, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थी और ये बीजेपी आरएसएस ने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया। और जिस तरह से इनको आज अचंभा हुआ कि ये लूट जल्दी पकड़ी गई, एक दिन वोट चोरी भी पकड़ी जाएगी और हम और अंजना जी आप डिबेट करेंगे, एक दिन नोटबंदी का कांड भी पकड़ा जाएगा, एक दिन पूरी तरह से पीएम केयर फंड के आंकड़े भी सामने आएंगे और हम फिर दोबारा आज तक पर बैठकर।
0: ठीक है प्रेम शुक्ला जी, एक जवाब इस पर दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगी मलूक नागर जी के पास, जवाब दीजिए इसका प्रेम शुक्ला जी।
5: देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि कोई आसमान नहीं फट रहा है, जांच होने दीजिए। ये सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है, ये मेरी भूमिका नहीं है। जहां तक अवतार की बात है तो अवतार तो फिरोज का पौत्र जो है, जिसकी जाति का ही पता नहीं है, वो परशुराम का अवतार होता है भाई। अवतार तो एक ही हुआ है, वो है फिरोज का पौत्र,
7: मैं उत्तर दूंगा।
5: उसके अलावा कोई अवतार नहीं है, बाकी सारे जो है साधारण मनुष्य हैं। और लूट तो नेशनल हेराल्ड की हुई, स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित ट्रस्ट को चाची 420 लूट ले गई और लूट लेने जाने के बाद जब कार्रवाई हुई तो कांग्रेसी प्रवर्तन निदेशालय पर मोर्चा निकाल रहे थे। चोरी और सीना चोरी इसको कहते हैं। आज भी जो राम जन्मभूमि के चढ़ावे की चोरी में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता दूर दूर तक संलिप्त नहीं पाया गया, लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षा चोरी के 420 के केस में आज भी जमानत पर छूटी अभियुक्त है। अपोजिशन लीडर लोकसभा के श्रीमान राहुल गांधी 420 के केस के अभियुक्त हैं। तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि 420 कौन है, चोर कौन है, किसने इस देश को चपत लगाई है और कौन अवतार बनने की कोशिश करता है, ये पूरा देश भलीभांत जानता है।
0: ठीक है, वो कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई इसमें संलिप्त नहीं पाया गया, फिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं?
7: क्या जो अयोध्या का मेयर था, जो अयोध्या का मेयर था उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था, बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं, हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं, बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा, लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है, एसआईटी बनाई बिना एफआईआर, एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया, पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते, जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते वो। पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दें, लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है, राहुल गांधी सोनिया गांधी किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं, क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। क्या राउस एवेन्यू ने क्लीन चिट नहीं दी? लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस दिन चंपत राय को पकड़ेंगे आरएसएस की पोल खुल जाएगी। इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा चंपत राय कहीं मरवा ना दें, सरकार के लोग मिले हुए। मुझे डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला।
0: तो आलोक जी क्या करना है, इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है?
7: बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको।
0: अच्छा शुक्रिया जी, आप सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए जो शक वो जाहिर कर रहे हैं, इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद में जाऊंगी मलुक जी के पास।
7: ना हो पता चले क्रिमिनल्स और थे वहां पर।
5: देखिए हत्याएं करने का जो
7: बीजेपी करने का भी हो सकता है,
5: हत्याएं करने का रिकॉर्ड जो है वो नेहरू गांधी का फर्जी परिवार उसके पास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे कराई गई लोग जानते हैं। ताशकंद फाइल्स बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे कराई गई थी और ललित नारायण मिश्र की हत्या की फाइल सीबीआई जो है वर्षों जांच के बाद भी खोल नहीं पाई। तो हत्यारे कौन है लोग भली भांति जानते हैं। किस तरह से संजय गांधी की भी एक्सीडेंट को लोगों ने हत्या माना और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में भी क्यों उनकी उनकी उनका जो गोली लगने के बाद दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया, ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। तो लगातार
0: अब तो मलुक नागर जी इन चंदा चोरों ने चढ़ावा चोरों ने जुर्म कबूल भी कर लिया। ठीक है अब आवाज नीचे कर दीजिए, डेविएट मत कीजिए, आज के टॉपिक पे रहिए। ये मलुक नागर जी अब तो इन चढ़ावा चोरों ने जुर्म कबूल भी कर लिया है, बताइए अब इसका क्या होगा अंजाम?
8: देखिए अंजना जी जो कह रहे हैं कि चंदा नहीं, लोगों की भावनाओं के से आस्था से जो दान किया गया है, हम पहले भी कह चुके हैं फिर कह रहे हैं, उस दान में से जिसने चोरी करी है वो दुष्ट और वो पापी है और उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं तो भी कह रहा हूं कि हमारे साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं समाजवादी के भदौरिया साहब, उन्होंने कहा वो व्यापारी है वो पुजारी नहीं है। अरे व्यापारी नहीं वो डाकू और डकैत है, और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं दुआ करते हैं कि उनके दिमाग और शरीर में इतनी अशांति हो जाए कि उन्हें प्रकृति अपने आप लीन जाए जिसने ये गंदा काम किया है। पर आप उन्हें व्यापारी कहते हो, आपके नेता कहते हैं कि क्या पुलिस साधुओं से और उनसे पूछताछ करेगी, तो आप क्या चाहते हो? और जो कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, जिस दिन सनातन धर्म के शुरुआत करी जो 3 साल के बाद अध्यक्ष बने खड़गे साहब, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कुंभ के खिलाफ बोले, डुबकी लगाए से क्या मिल जाएगा, स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, बिहार और यूपी के लोगों को नाली साफ कराने वाला बोलते थे आपके जो साथी थे, तो आप
7: समय नहीं मिला
8: उन्हें क्या बोलेंगे कि आप लोग
7: डकैतों को पकड़ने की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कहते कि पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था उनका? मतलब वो हमारे फूफा लगते हैं कि पुलिस जाकर वहां पर जाकर जेल के अंदर पूछताछ कर रही है उनसे।
8: इंदिरा जी बीच में बोलना,
0: बीच में मत बोलिए आलोक जी, बीजेपी बीच में मत बोलिए। लेकिन मलुक जी सुनिए ना, मलुक जी अरे गुरुदेव हो गया, ये सब पुरानी बात हो गई, सरकार बन गई, दो दो बार बन गई, तीसरा चुनाव आने को है मलुक जी, सत्ता आपको सौंपी उनको बेदखल कर दिया है दो बार से। पर ये कहना कि वो खुद ही मर जाए, उनको लील जाए प्रकृति, ऐसे नहीं होता ना। जस्टिस का मतलब होता है किसी ने चोरी किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी ना मलुक जी, कानून देगा ना।
8: अंजना जी कड़ी सजा मिलेगी, कोई कितना ही बड़ा हो, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो, कोई किसी भी पुजारियों में का हो, कोई कितना ही भी असरदार व्यक्ति हो, सजा
0: विक्रम सिंह साहब
8: ऐसी सजा मिलेगी जो कोई और
0: विक्रम सिंह साहब
4: ये जी अंजना जी
0: सवाल है कि भाई क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसको बदनाम मत कीजिए, जब तक पुलिस अपनी बात में आगे नहीं उनका नाम लाती है जो बरामदगियां हुई है, ये लिस्ट है और ये सच है कि इन तीन नामों में से कहीं पर बरामदगी नहीं हुई है। अब सुपरविजन के लिए मैं आपसे एकदम पुलिस के नजरिए से और अपना जो नया बीएनएस है उसके नजरिए से समझना चाहती हूं, सुपरविजन के लिए क्या इन लोगों को दोषी माना जा सकता है क्योंकि इनकी नजरों के सामने ही सब कुछ होता था, कोषाध्यक्ष थे, सारे अध्यक्ष बने हुए थे, बड़े बड़े लोग थे आराम से अंदर, मतलब इनका तो जैसे वो पूरा का पूरा जो भगवान राम का मंदिर था वो इनका साम्राज्य था, तो इन पर कुछ हाथ पड़ेगा आगे या आपको लगता है कि हो गया बरामदगी, अब तो लिस्ट विस्ट आ गया है।
4: मैं आपको कानून के दृष्टिकोण से एक उदाहरण से समझाता हूं। एक डकैतों का गिरोह था, जब डकैती डालने जाता था तो मंदिर के सामने बैठे एक साधु को प्रणाम करता था कि बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो जाएं। बाबा केवल आशीर्वाद देते थे और जब डकैत लूट के आते थे उनको थोड़ा चढ़ावा मिठाई दे देते थे। जब पुलिस ने उनको गिरोह को पकड़ा तो बाबा जी को भी कूट करके अंदर कर दिया। भाई बाबा जी का क्या लेना देना, तब बाबा जी ने डकैतों का मनोबल बढ़ाया, उनको एक सही राय नहीं दिखाई और भले ही प्रसाद खाया और नित्य प्रसाद खाते थे, हर डकैती के माल का भले ही आधा परसेंट लेते हो इसलिए वो बराबर के हिस्सेदार है। पुरानी आईपीसी में धारा 120 भी, वर्तमान में 134 बीएनएस में एक राय होकर एफआईआर में लिखी है, एक राय होकर के और गिरोह बना करके, गिरोह में चाहे कोई कत्ल करे या कोई डाका डाले या केवल वहां मौजूद रहे मूक दर्शक बना रहे, संलिप्तता बराबर की और सजा बराबर की होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्वान भी समझ गए होंगे, आप भले ही मूक दर्शक बने हो लेकिन गिरोह की जानकारी में अगर आपने गिरोह ने अपराध किया है आपकी संलिप्तता बराबर की है, 99% नहीं 100%।
0: और 5 जून को जो मैं प्रेम शुक्ला जी बार बार कह रही हूं, 5 जून 2026 की रात 8:13 का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है, सफेद रंग की कार में बैंक कर्मी पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहा है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर तौर पर ट्रस्ट को पुलिस को जानकारी थी, फिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां बरती गई, क्यों छुपाने की कोशिश हुई, और अगर ट्रस्ट को पहले से पता था तो जवाबदेही किसकी बनती है, कौन चलाता है ये ट्रस्ट, बताने की जरूरत है क्या शुक्ला जी?
5: देखिए अपराध को ढकना भी अपराध है, अगर किसी ने अपराध को ढका है तो वो भी अपराध का हिस्सेदार है और वो भी दंड का पात्र है, वो चाहे जो हो, वो ट्रस्ट के सदस्य हो या ट्रस्टी ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हो, अगर किसी ने अपराध को ढकने का काम किया है तो अपराध का वो हिस्सेदार है और अपराध के दंड का वो पात्र होगा ही होगा।
0: अनुराग जी वो कह रहे हैं कि सब दंड का पात्र होगा।
6: अंजना जी इनकी बात से तो मुझे वही याद आता है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार तुम्हारा, इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहां, वही बार बार ये कह रहे हैं कि किसी कोई बचेगा नहीं। अरे कैसे नहीं बचेगा, आपने समय से तो उनको पकड़ा नहीं, समय से तो आपने कार्रवाई की नहीं, चोरी होती रही ना जाने कितने दिनों से, अंजना जी चोरी हो रही थी, वो तो समाजवादियों ने जब वहां चढ़ावे की बात उठाई, यहां पे चोरी की बात उठाई तब तो ये शुरू शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, चंपत राय जी कह रहे थे कोई अप्रत्याशित बात समझ में सामने नहीं आई है, तब तो झुटला रहे थे ये लोग, हम लोग को भी झुटला रहे थे, वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर में कि हम लोग लगातार लड़ते रहे, बाद में इन्होंने SIT गठित हुई, फिर चोर पकड़े गए, अभी भी इन्होंने छोटी मछली पकड़ ली है, मगरमच्छ अभी भी आराम से सो रहे हैं कहीं, आराम से सो रहे हैं मगरमच्छ। अरे मगरमच्छ जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक सच नहीं पता चलेगा, कितने डॉलर थे, कितना सोना चांदी था, कितना पैसा था, कहां चला गया, कैसे लूट लिया आपने, आपको डर नहीं लगता यहां प्रभु राम से, आपको जरा सा डर नहीं है? अरे थोड़ा तो डरो प्रभु से, प्रभु का आशीर्वाद आपको तभी समझना चाहिए था यहाँ चोरी हो रही है जब समाजवादी पार्टी 2024 में जीती थी, तभी आपको समझना चाहिए था वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है, तभी हमें एहसास था कि प्रभु का आशीर्वाद है क्योंकि हम उनके आचरण आदर्श आचरण में चल रहे थे, तभी हमने आवाज उठाई कि वहां चोरी हो रही है। अब भी जाके आप नहीं जग रहे हो, इसके मतलब आपको कोई जनता की किसी भावना की कोई चिंता ही नहीं है, अभी भी आप वही बात रिपीट कर रहे हो, कोई बक्सा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं, कोई कह रहा है कि पाप पड़ जाए, कोई कह रहा है उसको कीड़े पड़ जाए, अरे किस देश में रह रहे हो भाई, आधुनिक युग में पाप कीड़े की बात कर रहे हो, कानून का राज है यहां पे, पाप कीड़ा कहां से आ गया,
9: पता नहीं अंजना कैसे कैसे प्रवक्ता बुलाती हैं जिनको यही नहीं पता इस देश में कानून का राज है और पाप कीड़ा खोज रहे हैं वहां पे। ऐसी ऐसी व्यवस्था अगर होगी देश के अंदर में तो चोर डकैत।
0: अरे अनुराग जी, अनुराग जी, उनमें तो कीड़े पड़ेंगे। अनुराग जी पूरे सम्मान के साथ आपको भी बुलाते हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं। आप भी कह रहे हैं कि आभास हो गया, लेकिन हमें अचानक पता चल गया, हमें पहले से ही आशीर्वाद मिल गया। और अब तो देखिए ना अखिलेश जी की पूजा भी कैसे कर रहे हैं आपके जो कार्यकर्ता हैं। देखिए अब तक आप आरोप दूसरे लोगों पर नेताओं पर लगाते हैं, ये देखिए ये क्या है। कुछ ना ही कहें तो भला है, क्योंकि हम आपको भी बुलाते हैं, हम दरअसल पार्टियों को बुलाते हैं, पार्टी तय करते हैं कौन से प्रवक्ता को भेजना है ना। अनुराग जी हमारी कहां चलती है,
9: आप बताइए उनको, यही नहीं।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी आज सवाल ये है,
7: देखिए मैं समझता हूं,
0: काउंटर पॉइंट्स बहुत सारे हैं इसमें लिखे हैं आलोक जी,
7: विषय है
0: काउंटर पॉइंट्स बिल्कुल, और इसीलिए लगातार कवरेज भी हो रही है क्योंकि बहुत गंभीर विषय है और इसका सच पूरा सामने आना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जहां से बरामदगियां होंगी, जिस तरह से पुलिस की जांच आगे पड़ेगी, अभी तो उसी पर रिलाई करना होगा, नहीं तो कोई भी कोर्ट में जाकर इसको आगे बढ़ा सकता है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ही जांच हो।
7: देखिए अंजना जी, करोड़ों करोड़ों की डकैती ये 14-14, 15-15 हजार की तनख्वाह लेने वाले लोग नहीं कर सकते, ये आप भी समझती हैं, मैं भी समझता हूं। 1200 शिलाएं गायब हो जाएं, क्विंटल के क्विंटल सोने आभूषण जो भी आए वो सब गायब हो जाएं, ये संभव नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि एक महीने के बाद अगर रेड होगी तो उसका क्या औचित्य रहेगा। ये सनातनियों के ऊपर, पूरी आस्था के ऊपर डाका डाला हुआ है। कौन गया कौन नहीं गया, मैं कहूं अमित शाह जी आज तक नहीं गए, उसका क्या वो है। अरे भाई लूट हो रही है, डकैती हो रही है।
0: चले वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन विपक्ष कई तरह के प्रश्न उठा रहा है और उम्मीद है कि SIT जांच से वाकई जैसा योगी जी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सच अगर अधूरा रह जाएगा इस मामले में तो माफी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों में भी जबरदस्त गुस्सा है इस मुद्दे पर। लेकिन आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ, ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कि राम मंदिर से चोरी हुआ माल किस किस की तिजोरी में पहुंचा, और इसके बाद आपको बताएंगे कि हाईवे पर हादसों की आग रोकना किसी के बस में क्यों नहीं। आखिर में आपको बताएंगे कि क्या वाकई लोगों में उस पॉइंट को देखने की होड़ लगी है जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया था। देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
3: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
3: अर्ज किया है
2: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
4: वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड ऐप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
5: सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
6: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
11: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
12: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
14: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
15: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
16: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
17: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
18: हमने तब भी सवाल किया था।
19: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
18: हम आज भी सवाल करते हैं।
19: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
18: ऑपरेशन अग्नि,
19: आज तक के ही स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
18: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
20: In association with
21: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
23: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
24: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1930।

0: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेन देन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
1: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है। क्या ये मंदिर प्रशासन का है और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुँचा था। इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि ये डॉक्टर चैतन्य का योग केंद्र है। यहाँ की प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही अविनाश के भाई अभिषेक को शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
2: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दें ताकि वो भी कुछ।
1: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
2: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।
0: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेन देन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
1: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है। क्या ये मंदिर प्रशासन का है और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है, उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब इस पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने की, चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चढ़ावा चोरी मामले में आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज, चंपत के करीबी टिन्नू यादव के पास से मिला 1,00,000 कैश, आरोपियों के घर से रुपया डॉलर ज्वेलरी जब्त। समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था पैसा खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, 2017 से पहले होते थे दंगे। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार ने बनाया प्लान, सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्रीज को तैयारी करने के लिए दिए निर्देश, एल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका। चार धाम यात्रा के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा, बिहार के नालंदा से 2 आरोपी गिरफ्तार, वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर टिकट का लालच देकर श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच आगे आए भारत पाकिस्तान के 117 दिग्गज, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की। शो की शुरुआत राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर हो रहे बड़े खुलासे से करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बड़ा खुलासा हुआ है। आज तक के पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें चढ़ावा चोरों ने अपना गुनाह कबूल कर दिया है। गिरफ्तार 8 आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा का पैसा चुराया। आरोपियों ने पुलिस को वो जगह भी बताई जहां उन्होंने चोरी का पैसा रखा हुआ था। अब पुलिस ने 8 आरोपियों के पास से वो पैसा बरामद कर लिया है। किस आरोपी के पास कितना धन और कितने गहने मिले, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: आखिरकार चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल लिया बल्कि चढ़ावे की चोरी का पैसा भी उनके पास से बरामद कर लिया गया। आज तक के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके हिसाब से मालूम चला है कि आरोपियों ने किस कदर राम मंदिर में लूट की थी। देखिए, ये हैं वो पेपर। इनमें साफ साफ लिखा है कि चढ़ावा चोरी के मामले में थाना राम जन्मभूमि में बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया, और सिर्फ कबूल ही नहीं किया बल्कि वो पुलिस को उस जगह तक ले गए जहां उन्होंने लूट की रकम और सोना चांदी रखा हुआ था। आरोपी मनीष कुमार यादव के पास से कुल 2,00,000 रुपए बरामद हुए। आरोपी करुणेश पांडे के पास 18,07,063 रुपए बरामद हुए। आरोपी अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद हुए। आरोपी रमा शंकर यादव और टिन्नू यादव के पास से 1,00,000 रुपए बरामद हुए। आरोपी रमा शंकर मिश्र के पास से 7,32,170 रुपए, 2 चांदी के सिक्के, करीब 25 ग्राम का एक पैर का बिछुआ बरामद हुआ है। आरोपी लवकुश मिश्रा के पास 14,25,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए, 1,121 अमेरिकी डॉलर, 160 ग्राम चांदी, 8.14 ग्राम सोने की चेन और 3.44 ग्राम सोना मिला है। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आरोपियों ने और कितना धन कहां छिपाया हुआ है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
0: अयोध्या पुलिस ने जेल जाकर 8 आरोपियों से पूछताछ की है और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। जांच में ट्रस्ट के 3 बड़े चेहरों की भूमिका लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़े खुलासे भी हुए हैं, खासकर अनिल मिश्रा को लेकर, जिसने अपॉइंटमेंट्स में अपनी मर्जी जताई और अपनी पसंद के लोगों को नौकरियां दी। इधर आरोपी अविनाश शुक्ला के एक ठिकाने का भी पता चला है जहां वो लूट का धन रखता था।

0: रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा यहाँ कैसे पहुँचा? क्या यह मंदिर प्रशासन का है, और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुँचा? इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि ये डॉक्टर चैतन्य का योग केंद्र है। यहाँ के प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक को यहाँ शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
1: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर, और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दे ताकि वो भी कुछ।
2: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
1: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।
0: इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है और उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। वही अविनाश शुक्ला जिसके पास से ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए बरामद किए थे। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब इस पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने, चोरी की रकम की लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए अभिषेक शुक्ला को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है। एक दिन पहले ही SIT ने जेल में अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। अब सूत्रों की माने तो टीम जांच की समीक्षा करेगी, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करेगी। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले ने विपक्षी सियासत को शक्ति से भर दिया है। पूरा विपक्ष यूपी सरकार और केंद्र सरकार को घेर रहा है। कोई दावा कर रहा है कि 20,000 करोड़ की लूट हुई है, तो कोई आरोप लगा रहा है कि इस लूटकांड में बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।

0: राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी ने विपक्ष को बीजेपी सरकार के खिलाफ चक्रव्यूह रचने का मौका दे दिया है। विपक्ष में बैठे सियासत के सारे सूरमा टूट पड़े हैं।
1: किसी साथी ने कुछ बताया होगा, हो सकता है आपका ही कोई साथी रहा हो, लेकिन हिम्मत जुटा करके प्रभु श्री राम जी के असली भक्त बन करके हमें ये फैसला और हमें ट्वीट करना पड़ गया।
2: जो लोग जय श्री राम के कहने पर लाठी चलाते थे और राम मंदिर के लिए कार सेवा करने आए हुए राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई होगी।
0: लेकिन अब समाजवादी पार्टी के आरोप और गंभीर हो रहे हैं। राम गोपाल दावा कर रहे हैं कि करीब 20,000 करोड़ की लूट हुई है और उन्हीं के दूसरे सांसद का दावा है कि लूट का पैसा अयोध्या से कर्नाटक तक बांटा गया है।
3: इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए करोड़ रुपए, पता ही नहीं किसी।
4: आप छोटे छोटे मछलियों को फंसाकर बड़े लोगों को बचाना चाहते हो। राष्ट्राध्यक्ष जी ने बड़े साफ शब्दों में संकेत किया कि इसके तार ऊपर से है जुड़े हुए हैं और कर्नाटक तक गए, ये सब चोरी का पैसा वहां तक जा रहा, बहुत बड़ा ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है।
0: फिलहाल विपक्ष फ्रंट फुट पर है और बीजेपी रटा रटाया जवाब दे रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन है, जहां एक ओर बधाइयों का तांता लगा रहा, वहीं इस मौके पर सियासी रंग भी देखने को मिला।
6: अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन के जश्न की यूपी के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आईं, तो उसमें चुनावी रंग भी देखने को मिला। कहीं श्री कृष्ण का अवतार दिखाकर हवन हुआ तो कहीं पीडीए वाला दूध बांटा गया।
7: समाजवादी दूध और कीजिए पीडीए मजबूत।
6: योगी आदित्यनाथ से लेकर मायावती तक ने अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी। वहीं जब सियासी मंच पर योगी पहुंचे तो समाजवादी पार्टी पर हमला करना नहीं भूले।
2: समाजवादी पार्टी तो जन्मजात सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन महापुरुषों के विरोधी रही है। वाल्मीकि के नाम पर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया होगा।
6: उधर अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार की खामियों की एक लंबी लिस्ट निकाली।
1: और प्रभु श्री राम जी बीजेपी के कहने से पहले हम सब लोग मानते थे और हम सब के घरों में राम दरबार रहा है और समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं। कोई ऐसा भारतीय सनातनी नहीं है जिसके घर परिवार में ये परंपरा न चलाई जाती हो, लेकिन हर चीज भारतीय जनता पार्टी तय करती है।
6: मौसम चुनावी है, ऐसे में दिन कोई भी हो सियासत का रंग चढ़ ही जाता है। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने वाली एक चिट्ठी की। चिट्ठी का मजमून कुछ ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जमी बर्फ पिघले, बातचीत, कारोबार, व्यापार चालू हो और फिर लगे हाथ जम्मू एंड कश्मीर की भी चर्चा हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि जब भारत बार बार ऑपरेशन सिंदूर जारी होने की बात कर रहा है तो ये लेटर डिप्लोमेसी वाली बेमौसम बारिश कहां से हुई?
0: भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को लिखी गई इस चिट्ठी में दोनों देशों से अमन का हाथ बढ़ाने की वकालत की गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हो, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, MFN दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाएं, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 2007 कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। यह चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन OP शाह की ओर से लिखी गई है, जो भारत की ओर से 61वें दस्तखतगार हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो।
8: पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, लोगों की आवाजाही होनी चाहिए, आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होना चाहिए।
9: संगीत को वीजा ना लेना पड़े, लिटरेचर को वीजा ना लेना पड़े, उसमें मुश्किलात ना हो, हम उसकी वकालत कर रहे हैं।
10: जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एग्जोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित का किया।
0: पिछले हफ्ते श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसी सम्मेलन के साइडलाइन में ट्रैक टू डिप्लोमेसी को लेकर कुछ चर्चा हुई और फिर एक चिट्ठी सामने आई है। हालांकि भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है, जहां पाकिस्तान को साफ संदेश है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।
5: अब बात पुणे हत्याकांड की, आखिर लोहगढ़ के किले में केतन का कत्ल कैसे हुआ? पुलिस इसी से जुड़े सबूतों की तलाश कर रही है, जहां अब तक की जांच में हत्याकांड से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं।

0: लोहगढ़ में चेतन चौधरी को लेकर पहुंची पुणे पुलिस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है। हुडी पहनने की स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज रिकॉर्ड करके सीसीटीवी फुटेज से मिलान कराया जाएगा और साबित करने की कोशिश की जाएगी कि फुटेज में दिख रहा शख्स चेतन चौधरी था। करीब 2 घंटे तक अलग अलग तरीके से सीन रिक्रिएट किए गए, जिसमें चेतन के साइज का एक डमी पुतला लिया गया। पुलिस ने चेतन से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। उसने डमी को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। तब पुलिस ने बारीकी से सिचुएशन को समझा, देखा और जाना। ठीक यही प्रक्रिया 2 दिन पहले सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर की गई थी। पुलिस ये जानने की कोशिश की है कि केतन को किसने खाई में धक्का दिया था। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को दोहराया, जिसमें केतन और सिया के पीछे पीछे चलते हुए चेतन उनका पीछा कर रहा था।
1: केतन के बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था। बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताया कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह।
0: पुलिस सूत्रों की माने तो सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने पहले से ही तय कर रखा था कि अगर दोनों इस मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है, क्या बताना है और किन बातों का खुलासा नहीं करना है।
2: मेमोरेंडम हुआ है और कुछ नहीं, बस
3: कितने का पुतला लेके गए।
2: नहीं, वो बात की अलग होती है, वो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है।
3: लेकिन ऊपर जाके क्या किया है, मतलब
2: मेमोरेंडम हुआ और कुछ नहीं।
0: आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों परिवारों ने शादी से पहले ज्योतिष मिलान भी किया था, जहां आदर्श विवाह की स्थिति बन रही थी।
4: हाँ, वो सामने वालों ने सिया का बायो डॉटर जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी। तो उनका ही सामने से फोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है।
0: बहरहाल मामले में अभी कई परते हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओंकार वाबले, पुणे आज तक।
5: आज नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान आज भारत में शौर्य की परंपरा से जुड़ी अद्भुत तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली में नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अपने पिता के पैर छुए। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल KM सेठ रिटायर्ड आर्मी वेटरन हैं, वहीं उनके छोटे भाई ने आर्मी चीफ को सैल्यूट किया। रियर एडमिरल रवनीश सेठ नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं। भारत माता की रक्षा के लिए असंख्य परिवार अपना जीवन समर्पित करते हैं और इस तस्वीर में दिख रहे पिता, पुत्र और भाई उसी गौरवशाली परंपरा के प्रतीक हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल आर्मी चीफ के पद से रिटायर हो गए, जिनकी जगह जनरल धीरज सेठ ने ली है, जो भारत के 31वें आर्मी चीफ हैं। अब बात अमरनाथ यात्रा की, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए भक्त बेताब हैं। तैयारियां इनफैक्ट पूरी हो चुकी हैं। बस 2 दिन बाद भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने की तैयारियां कर रहे हैं।
6: ए भोला शंकरा त्रिशूल डमरू हाथी संगनाचे पार्वती।
7: प्रथम पूजा और बाबा बर्फानी के दर्शन के साथ ही अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। अब श्रद्धालुओं के जत्थे बाबा बर्फानी के धाम की ओर रवाना हो रहे हैं। 3 जुलाई से श्रद्धालुओं का पवित्र गुफा तक पहुंचना शुरू हो जाएगा।
8: आप देखिए कि इनकी संख्या किस तरीके से यहां पर मौजूद है और इन लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास आप देख रहे हैं कि इनको RFID भी दिया गया है। कुछ लोग अयोध्या से अमरनाथ के लिए यहां पर आए हुए हैं।
7: इस बार यात्रा में QR कोड जारी किए जा रहे हैं, वहीं यहां भक्तों के लिए खास व्यवस्था भी की गई है।
5: अब बात बाजार की, महंगाई की मार के बीच अब LPG ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है। आज कमर्शियल सिलेंडर के साथ साथ छोटा वाला गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया। इसके अलावा क्या क्या रहा आज हाल बाजार में, इस रिपोर्ट में देखिए।
0: जुलाई की शुरुआत कमर्शियल LPG सिलेंडर और जेट ईंधन की कीमतों में गिरावट के गुड न्यूज के साथ हुई है। कमर्शियल LPG सिलेंडर में आज 183.50 रूपए की कटौती की गई है। वहीं ATF की कीमत भी 5 रूपए प्रति लीटर घटाकर 110 रूपए कर दी गई है। इससे एयरलाइंस कंपनियों की लागत कम होगी और आने वाले दिनों में हवाई टिकट भी सस्ते हो सकते हैं। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो कारोबार के दौरान खरीदारी के पॉजिटिव माहौल के बीच सेंसेक्स 444 अंक मजबूत होकर 76,923 और निफ्टी 140 अंक चढ़कर 24,006 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी अच्छे वैश्विक संकेतों और घरेलू खरीदारी के समर्थन से आई, लेकिन आज रुपए पर दबाव देखने को मिला और डॉलर के मुकाबले रुपया 67 पैसे कमजोर होकर 95.23 के स्तर पर पहुंच गया। रुपए में इस बड़ी गिरावट की मुख्य वजह डॉलर की मजबूती और विदेशी पूंजी निकासी रही। दूसरी तरफ सराफा बाजार में आज फिर गिरावट का रुख देखने को मिला, जिससे सोना 1,852 रुपए सस्ता होकर 1,39,434 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर आ गया, जबकि चांदी 4,070 रुपए टूटकर 2,21,355 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। सोने चांदी में गिरावट रुपए।
5: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। मैच 10 बजे रात में शुरू होगा। मुकाबले पर बारिश का भी साया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा।
0: क्या आज वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? क्या इंग्लैंड के खिलाफ वैभव आज करेंगे डेब्यू? आज सारी दुनिया की नजरें इंग्लैंड और भारत के

0: पहले T20 मुकाबले पर रहेंगी। इस सवाल के साथ कि क्या वैभव सूर्यवंशी 15 साल की उम्र में भारतीय क्रिकेट के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी के तौर पर करियर का आगाज करेंगे।
1: अभी तो वैभव सूर्यवंशी के खौफ से सामने वाले टीम की हालत खराब हो जाती है और खिलाने से हम उम्मीद करते थे कि इंडिया मैच जीतता।
2: गौतम गंभीर से मांग करता हूं कि ऐसे उभरते हुए खिलाड़ी को अगर पानी पिलाने के लिए रखते हैं तो ये क्रिकेट जगत के लिए बहुत बड़ा धब्बा है।
0: आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मैच के सीरीज में टीम इंडिया के 11 में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ जो गलती हो गई उसे सुधारने का वक्त है। कैसे सुधारना है अगर ये भी समझ नहीं आ रहा है तो कम से कम टीम मैनेजमेंट उस शख्स की सलाह ही मान ले जिसे पूरी दुनिया सलाम करती है।
3: अभी पहले मैच में उनको खिलाना होगा, बस बात सीधी सी है कि जो आपके फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज है उनको बाहर रखिए और वैभव सूर्यवंशी को खिलाए, बस बिल्कुल।
0: वैसे सबसे कम उम्र में भारतीय टीम की जर्सी पहनकर मैदान में उतरने का रिकॉर्ड पुरुष क्रिकेट में 16 साल 205 दिन की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम है, जबकि ओवरऑल देखें तो शेफाली वर्मा का नाम भारतीय क्रिकेटर्स की सूची में सबसे ऊपर है। अगर आज वैभव सूर्यवंशी डेब्यू करते हैं तो सबसे कम उम्र में भारतीय टीम की जर्सी पहनने वाले वो पहले खिलाड़ी हो जाएंगे। देखना यह है कि 5 T20 की सीरीज के पहले मैच में वैभव खेलते हैं या नहीं। आज तक ब्यूरो।
4: ये थी खबरें 7 तक, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: Summer Hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
3: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
4: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
3: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
5: आगे आगे,
6: अरे उधर
5: उधर,
6: करेक्ट करेक्ट,
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: देख, इतना बड़ा आदमी मुझे इन्वेस्टमेंट टिप्स दे रहा है।
9: अच्छा, सिर्फ तुझे ही दे रहा है?
8: अर्ज किया है, दूर से लगा कि एक जाना पहचाना चेहरा हंसकर सच कह रहा था, पास जाकर देखा तो झूठे वीडियो के जाल में मैं फंस रहा था। सेबी और एनएससी का कहना है किसी भी वीडियो में पलके और लिप सिंक पर ध्यान दें, सिर्फ ऑथराइज्ड सोर्सेज पे ही विश्वास करें।

0: एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: शेयर बाजार, जहां कुछ लोग सीखते रह जाते हैं और कुछ इतिहास लिख जाते हैं। आखिर बड़ा पैसा बनता कैसे है, कौन सी सोच, कौन सी रणनीति और कैसा नजरिया किसी को बनाता है बाजार का असली खिलाड़ी, इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आ रही है बिस्तक की नई पॉडकास्ट सीरीज मनी मेकर्स। यहां मुलाकात होगी बाजार के उन दिग्गजों से, उन मार्केट लेजेंड से जिन्होंने सिर्फ मार्केट को देखा नहीं बल्कि बड़े उतार चढ़ाव दिए हैं, मौके पहचाने हैं और दौलत बनाई है। जानेंगे उनकी जर्नी, बड़े फैसले, निवेश की सीख और बड़ा पैसा बनाने की सोच। मनी मेकर्स, बाजार के बड़े नाम, बड़ी सीख, सिर्फ बिस्तक पर।
4: हमने तब भी सवाल किया था,
5: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
4: हम आज भी सवाल करते हैं,
5: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
4: ऑपरेशन अग्नि,
5: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
4: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई, खबरदार सिर्फ आज तक पर।
6: जगह जयपुर कॉलेज, प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज, मौका पैरामेडिकल परीक्षा का। अचानक यहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, नाराज छात्र कुर्सियां उठाकर फेंकने लगते हैं। जानते हैं क्यों? जयपुर के इस परीक्षा केंद्र पर नकल करवा के पैरामेडिकल के 45 छात्रों को परीक्षा पास करवाने का सौदा हुआ। लाखों रुपए के बदले झुंझुनू के एक कॉलेज के 45 छात्रों को नकल से यहां परीक्षा पास करवानी थी, लेकिन एक टेंट की वजह से नकल कराने वाली सौदेबाजी खुलकर सामने आ गई। कैसे, इसलिए इस वीडियो पर गौर करिएगा। यहां कॉलेज में पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे सैकड़ों छात्र देखिए नीचे जमीन पर लगे टेंट पर ऊपर से कुर्सियां फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, क्योंकि इसी टेंट के नीचे झुंझुनू के मुकुंदगढ़ के एस करण कॉलेज के 45 फर्स्ट ईयर छात्रों को पैरामेडिकल एग्जाम में सामूहिक नकल करा के पास कराना था, जिनकी बैक आई हुई थी। पुलिस आती उससे पहले जो बच्चे ईमानदारी से पेपर देना चाहते थे उनको भनक लग गई थी कि जयपुर के प्रभा देवी मेमोरियल पीजी कॉलेज में 5.5 लाख रुपए लेकर दूसरे कॉलेज के 45 लोगों को टेंट के नीचे अलग बैठा कर नकल कराई जानी है। पूरा कॉलेज ससम्मान इन बच्चों को नकल कराने में जुट गया, बाकी बच्चों की परीक्षा तक लेट करा दी। इसके बाद हंगामा हुआ, पुलिस आई तो पता चला हाई प्रोफाइल नकल गैंग है जिसे मामा भांजे और चाचा भतीजे चलाते हैं। चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरे खेल में दो कॉलेज के संचालक, एचओडी और लेक्चरर तक शामिल हैं। जिस कॉलेज के बच्चों को नकल करानी थी उस कॉलेज के एचओडी कृष्ण कुमार अपने सगे भांजे संग साजिश रच रहे थे और जिस कॉलेज में नकल होनी थी वहां के संचालक रामकृष्ण मंडीवाल अपने भतीजे संग खेल खेल रहे थे। चारों की गिरफ्तारी करके पुलिस पता कर रही है कितना बड़ा ये नकल का रैकेट है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: चोरी मामले में आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज, चंपत के करीबी टिन्नू यादव के पास से मिला 1 लाख कैश, आरोपियों के घर से रुपया डॉलर ज्वेलरी जब्त। समाजवादी पार्टी पर बरसे सीएम योगी, कहा उनके समय में कब्रिस्तान की बाउंड्री पर होता था पैसा खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेसवे, 2017 से पहले होते थे दंगे। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार ने बनाया प्लान, सूत्रों के मुताबिक मिनिस्ट्रीज को तैयार होने को कहा, एल नीनो के कारण कम बारिश की आशंका। यात्रा के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा, बिहार के नालंदा से 2 आरोपी गिरफ्तार, वीआईपी दर्शन और हेलीकॉप्टर टिकट का लालच देकर श्रद्धालुओं को बनाते थे निशाना। पाकिस्तान की गीदर भपकी के बीच आगे आए पाकिस्तान भारत के 117 दिग्गज, पीएम मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ मारिया शकील। देर से ही सही मॉनसून शुरू हो चुका है और ज्यादातर राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग बोल रहा है कि जहां बारिश नहीं भी शुरू हुई है, आने वाले 2 दिनों में हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या जून के महीने में बारिश ना होने की वजह से जो नुकसान हो चुका है, क्या उसकी भरपाई जुलाई से सितंबर में होने वाली बारिश कर देगी। विशेष में हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये दिखाएं कि जैसे ही बारिश शुरू हुई है, क्या हर शहर में आफत भी शुरू हो गई है।
3: क्या जुलाई की झमाझम बारिश जून के घाटे को पूरा कर पाएगी? जून में मॉनसून चूका तो क्या आने वाला है सूखा? क्या मॉनसून जुलाई अगस्त सितंबर में जमकर बरसेगा या अभी और अटकेगा? क्या मॉनसून की यह बारिश हिंदुस्तान को सूखे से बचा पाएगी? मॉनसून आ चुका है, उत्तर भारत में अटका हुआ था, लेकिन जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान था, आज से उत्तर भारत में भी मॉनसून की दस्तक पड़ गई। लेकिन अभी भी ये सवाल बरकरार है कि क्या आने वाले 3 महीनों में जो बारिश होगी वो हिंदुस्तान को सूखे से बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि संकेत ऐसे ही लग रहे हैं कि इस बार भयंकर सूखा पड़ने वाला है। आपको आगे बताएंगे कि अगर सूखा पड़ा तो क्या क्या असर होगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि मॉनसून कैसे जमकर बरस रहा है। ये मुंबई की तस्वीरें हैं, यहां भी मॉनसून कम से कम 20 दिनों की देरी से पहुंचा है, लेकिन अब जमकर बरस रहा है।
4: चालू एकदम गाड़ी, एकदम चालू है बैठी गाड़ी।
5: ये दूसरी कार गया। एक और कार आ रही है।
3: ये मुंबई के वसई के बाघराल पाड़ा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। नाले में 2 कारों के बह जाने का वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि एक कार चालक ने समय रहते गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो बच गया। प्रशासन लोगों से कह रहा है कि बारिश के दौरान नालों, झरनों या पानी में डूबे हुए रास्तों पर जाने से बचें। बारिश में हादसे भी हो रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में कल भारी बारिश के दौरान सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया। इस हादसे में 11 साल के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई, जबकि कई अन्य छात्र घायल हुए हैं। बस में लगभग 12 बच्चे सवार थे, बहुत से बच्चों को गंभीर चोटें आई।
0: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर है उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी।
3: इधर आज नवी मुंबई में बारिश की वजह से हादसा हो गया। यहाँ नवी मुंबई के नेरूल में दो कॉलेज जाने वाली लड़कियों को करंट लग गया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियाँ बाइक से जा रही थी और तभी उन्हें ये करंट लगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग लड़कियों को करंट से छुड़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है।
6: नक्कीच आज इथं एक दुर्दैवी घटना घडली असं आपण बोलू शकतो। दोन मुली कॉलेजवरून येत असताना इथं ओपन वायरवर त्यांचा पाय पडून त्यांना शॉक लागलेला आहे। नशिबानी त्या सुखरूप आहेत, त्यांना जास्त इजा झालेली नाहीये, पण शॉक नंतर आता 24 तास त्यांना अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलेलं आहे आणि आपल्या पालिकेच्या फोर्टीज मध्ये त्यांना आता शिफ्ट करण्यात येणार आहे। नक्कीच अशा पद्धतीच्या घटना यापुढे घडायला नको।
3: मान्सून भले ही उत्तर भारत में देरी से पहुंचा हो, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तबाही शुरू हो चुकी है। ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं, जहां बादल फटने से तबाही मची है। किश्तवाड़ डोडा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। डोडा में कलालगिसर क्षेत्र में यह बादल फटा है, जिसके बाद फ्लैश फ्लड के हालात है, अचानक बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है भलेसा इलाका, जहां अंदरूनी गांवों को जोड़ने वाली कई सड़कें कट गई। बाढ़ का पानी अपने साथ कीचड़ और मलबा बहाकर लाया है, जिससे संपर्क टूट गया है। मानसून में तो सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ों पर ही मचती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर बरसात के सीजन में कहर टूटता है। पिछले साल उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा भी इंटरनेशनल हेडलाइन बनी। प्रशासन की तरफ से 7 लोगों को मृत घोषित किया गया, लेकिन 53 लोग लापता थे जिनका शव बरामद ही नहीं हुआ। उस आपदा में खीर गंगा में जो बाढ़ आई, उसने न केवल धराली बाजार को तबाह किया, बल्कि हर्षिल में सेना का कैंप भी इसकी चपेट में आ गया था। इस हादसे में करीब 9 सैनिकों की मौत हुई थी। अब जैसे ही मानसून शुरू हुआ है, यहाँ हर्षिल के रहने वाले लोगों को फिर से डर सताने लगा है, क्योंकि एक बार फिर पूरे हर्षिल क्षेत्र में बड़ा संकट मंडरा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि पिछले साल की आपदा के बाद हर्षिल के ऊपर एक अस्थायी झील बन गई है और उसकी वजह से भागीरथी नदी की धारा भी बदल गई है, जो खतरा पैदा कर रही है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ प्रशासनिक निर्माण जैसे कि पुलिस थाना, लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस, सेब के बगीचे, आवासीय भवन, होटल और होम स्टे सीधे खतरे की जद में है। हालात ये है कि स्थानीय लोग पूरी पूरी रात जग कर बिता रहे हैं।
7: हर्षिल वैली में 8 गांव हैं और अभी जो हर्षिल बाजार है वो पूरी तरह से खतरे की जद में है। आप लोग जानते हैं कि आपदा को लगभग 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक वहां पर जो सुरक्षात्मक कार्य है उसको जो है नजरअंदाज किया गया।
8: तो हमारी ये मांग है कि जब सरकार हमारे कोई सूद नहीं ले रहा, लेकिन आप 6 महीने का जो है मेरे ब्लड टर्नओवर को पेट का रोजी है, और जो हम नदी किनारे वाले हैं हमारे व्यवस्था करें रहने के लिए। हम खड़े नहीं रह सकते, हम 5 दिन से खड़े हैं, रात सो नहीं रहे, यही मांग हमारी।
3: अब ये लोग प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि कब जागोगे, जब यहाँ हादसा हो जाएगा। पहाड़ों पर नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। रुद्रप्रयाग में कल रात से ही लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण अलकनंदा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से लगभग 25 से 30 मीटर दूर भगवान शिव की मूर्ति है और नदी का पानी मूर्ति को छूने लगा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से 30 मीटर दूर तक फैल कर बह रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी के किनारे के सभी घाट पानी में डूब चुके हैं।
9: होने पर नदी का जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ने की संभावना है। हमारे जो लोगों से अपील है तो उसका ध्यान रखें और नदी के जो किनारे अपने मवेशी और नदी के किनारे मतलब किसी भी प्रकार से ना।
3: हिमाचल प्रदेश में भी मानसून की पहली बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ चंबा के सलूनी क्षेत्र में कई गांवों में भारी वर्षा के चलते घरों के अंदर मलबा और बारिश का पानी घुस गया। यहाँ रास्तों पर मलबा आने की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं। चंबा तीसा मुख्य मार्ग भूस्खलन की वजह से बंद हो चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: बड़ी खबर आ रही है मॉनसून को लेकर। मोदी सरकार ने पुख्ता प्लान बना लिया है। कैबिनेट में संबंधित मंत्रालयों को पीएम मोदी ने तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों के साथ तालमेल बिठाने को कहा है। आपको बता दें कि इस बार एल नीनो की वजह से कम बारिश की आशंका जताई जा रही है।

0: अब बात जून के महीने में कम हुई बारिश की। मौसम विभाग का रिकॉर्ड खुद ये बताता है कि जून में कम बारिश होने के मतलब ये नहीं है कि सूखा पड़ ही जाएगा, क्योंकि ऐसा भी बहुत बार हुआ है जब बारिश जून में कम हुई है लेकिन जुलाई से सितंबर तक के मॉनसून सीजन में बारिश का डेफिसिट खत्म कर दिया है। तो इस बार क्या होगा और मौसम विभाग क्या कह रहा है, हमारी अगली रिपोर्ट देखिए।
1: मॉनसून भले ही लेट आया हो लेकिन जमकर बरस रहा है, खास तौर पर पश्चिमी भारत में। लेकिन सवाल है कि क्या ये बारिश मॉनसून का घाटा पूरा कर पाई? क्योंकि इस बार मॉनसून डेफिसिट में है। 2026 का जून 125 साल का सबसे सूखा महीना बना है। सामान्य से 39.8% बारिश कम हुई है। इस बार जून महीने में सिर्फ 99.5 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य तौर पर इस महीने में औसतन 165.3 मिलीमीटर बारिश होती है। बताया जा रहा है कि 1901 के बाद यानी पिछले 125 साल में ये पांचवा सबसे सूखा महीना है। मौसम विभाग बता रहा है कि जहां जहां अभी भी बारिश नहीं हो रही या मॉनसून नहीं पहुंचा है वहां अगले दो दिन में बारिश शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर अब पूरी तरह से मॉनसून आ चुका है।
2: देखिए, हल्का फुल्का तो बारिश कहीं ना कहीं एनसीआर दिल्ली में हो ही रहा है। सबसे पहले बारिश की बात करें तो आज भी एक बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं, जैसे हम मानसून ट्रफ कहते हैं जो जब पूरा इंडिया कवर हो जाता है, तो अभी उसको सीजनल ट्रफ बोलते हैं। इन जनरल सीजनल ट्रफ एक बना हुआ है पंजाब से लेके ब्यो बंगाल तक। तो उसके क्या होता है कि नीचे तो वेस्टर्लीज होती हैं, ऊपर ईस्टर्लीज आते हैं, तो वो एक मानसूनल फ्लो है। तो वो बना हुआ है, उसका वर्टिकल एक्सटेंशन भी है 1 किलोमीटर तक, 0.9 किलोमीटर तक है। तो इट्स बिन पूरा का पूरा मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण आज भी ज़्यादातर हिस्से हमने कवर कर लिए। पूरा हिमालय कवर हो चुका है, पंजाब के कुछ हिस्से कवर हो गए, हरियाणा के कवर हो गए। तो आने वाले दिनों की अगर एनसीआर दिल्ली की बात करें तो आने वाले दो दिनों में हमारा अनुमान है जो पंजाब के ज़्यादातर हिस्से बचे हुए हैं उसमें से कवर होने का अनुमान है। एनसीआर दिल्ली कवर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से कवर हो जाएंगे, और इसके साथ ही अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात के भी ज़्यादातर हिस्से कवर होने का अनुमान है।
1: अब सवाल है कि क्या जून में कम बारिश होने का मतलब यह है कि सूखा पड़ने वाला है, या फिर अगले तीन महीने अगर जमकर बारिश हो गई तो क्या यह डेफिसिट की स्थिति संभल सकती है? इसे आंकड़ों से समझिए। मौसम विभाग ने 1951 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि इन सालों में 26 बार जून की बारिश सामान्य से कम रही। इनमें से सिर्फ 8 साल यानी 31% मामलों में पूरा मॉनसून सीजन भी कमजोर रहा। 15 साल यानी 58% में जुलाई से सितंबर की बारिश ने कभी पूरी कर दी और सीजन सामान्य रहा। 3 साल यानी 12% मामलों में पूरा सीजन सामान्य से भी ज्यादा बरसा, यानी करीब 69% बार कमजोर जून के बाद भी मॉनसून संभल गया। इसका साफ मतलब है कि अकेले जून की कमी से पूरे सीजन का फैसला नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि जून तो पूरा सूखा रहा। पहले तो मॉनसून आ नहीं रहा था और अब आया है तो गुजरात, कोंकण और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट बताया जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी असर दिखा रही है। गुजरात में कल रात से ही भीषण बारिश हो रही है।
0: विशेष में वक्त है, अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears, or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
3: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
2: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया के लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
4: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
5: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
8: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: क्या था आयुष का मिशन अली? चाकू रखने के पीछे आयुष का मकसद क्या था? आयुष के पासवर्ड 2047 को डिकोड करने में जुटी पुलिस। शामली पुलिस को आयुष मलिक के मोहम्मद अली बच जाने की जानकारी लगी तो उसने आयुष के घर की तलाशी दी और सर्च के दौरान घर से एक बड़ा चाकू बरामद हुआ और इस चाकू के साथ साथ आयुष की एक डायरी भी मिली जिस पर लिखा था आई एम ऑन अ मिशन। ये शब्द शामली पुलिस को खटक गए। अब सवाल ये है कि क्या आयुष किसी ऐसे मिशन पर था? क्या आयुष को अली बनाकर किसी मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था? आखिर क्या है आयुष का मिशन अली? शामली धर्मांतरण केस में पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि जब आयुष मलिक को मोहम्मद अली बनाया गया तो उसने एक ईमेल आईडी बनाई थी और इसका पासवर्ड रखा था 2047। सूत्रों की माने तो 2047 PFI का कोड वर्ड है। जब NIA समेत देश के तमाम राज्यों की पुलिस ने PFI के बरामद किए दस्तावेज में 2047 का जिक्र पाया। PFI ने 2047 नाम से एक किताब तक छपाई थी। दावा है कि PFI ने साल 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आयुष खुद ये बता चुका है कि वो पाकिस्तान के मौलाना इसरार अहमद के वीडियो बहुत देखता था। तो क्या ईमेल आईडी का पासवर्ड 2047 रखने के पीछे आयुष के मोहम्मद अली बनने का कनेक्शन जुड़ा है? अब शामली पुलिस हर सवाल का जवाब तलाश रही है। अरविंद ओझा, शामली, आज तक।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
1: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है
2: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें जिंदल साथी सील जरूर चेक करें
1: जिंदल स्टेनलेस इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है
4: कुछ तो बात है इस दिल में
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी ये आपके लिए
4: कुछ तो बात है इस दिल में
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट वो भी हर महीने
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ
9: सोच बदलो और बैंक भी
10: भारत और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है लेकिन बड़े मतलब पड़ोसी हैं कह सकते हैं हमने युद्ध भी देखा है अब आपका भी नाम उस चिट्ठी में है जो लिख रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए
11: नहीं नहीं आप एक बात रखिए आपने अभी ओपनिंग लाइन में पहलगाम का जिक्र किया पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेल रहे थे ना बीसीसीआई का निर्णय कौन ले रहा हम में से तो कोई फेवर में नहीं था उस वक्त जो आक्रोश था देश में आज तक हम नहीं जान पाए कि पहलगाम किसने किया कौन कल्प्रिट है कौन अकाउंटेबल है किसके सर पे तलवार लटकनी चाहिए चुप्पी साध ली चलिए पहलगाम से थोड़ा पीछे जाते हैं पुलवामा उसका कुछ पता चला सदन में 3 दफे मैंने पूछा कोई जवाब नहीं शून्य सन्नाटा महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य और वहां के नागरिक में फर्क यह महात्मा गांधी बता के गए थे गांधी से तो बड़ा कोई दार्शनिक भी नहीं हुआ इस देश में वो बता के गए थे ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे क्या वो मौका था हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए लिटरेचर को नहीं चाहिए हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं और अगर सिविल सोसाइटी के और कुछ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ और ने पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की तो मैं देख रहा हूं कि उसको तिल का तार बनाए हुए हैं क्यों नहीं क्यों नहीं राम माधव वाले पे कह रहे हैं डिनाई कर रहे हैं वो डिनाई कर रहे हैं 6 महीने इंतजार करिए 6 महीने भी नहीं 4 महीने ये भी पता चल जाएगा किसके इशारे पे ये तथाकथित ट्रैक टू बातचीत हो रही थी हम तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं नथिंग More, nothing less.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
2: विशेष में आज मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार सईद अंसारी के साथ।
0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: नीनो के कारण कम बारिश की आशंका, अल नीनो का है ये असर। चढ़ावा चोरी मामले में आज तक के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज, चंपत के करीबी टिन्नू यादव के पास मिला 1,00,000 कैश, आरोपियों के घर से रुपया डॉलर और ज्वेलरी जब्त। और बंगाल में सोने की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 34 करोड़ कीमत का 24 किलो विदेशी सोना जब्त, डीआरआई ने 7 तस्करों को किया गिरफ्तार।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. In association with
2: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। ये वक्त है हर बड़ी खबर से आपको खबरदार करने का। आज कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानसून में हुई देरी, बारिश में हुई कमी और आगे मानसून से होने वाली तबाही, तीनों को लेकर संबंधित सभी मंत्रालयों को पूरी तैयारी के लिए अलर्ट कर दिया है। इस बीच सबकी नजर मोदी मंत्रिमंडल के जल्द होने वाले तीसरे कार्यकाल के पहले विस्तार पर भी लगी है। इसके अलावा जहां आज हम आपको इस विस्तार पर खबरदार करने वाले तीसरे हिस्से की जानकारी देंगे। सोमवार को हमने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री 5 जुलाई या फिर 11 जुलाई के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। मंगलवार को हमने आपको बताया कि पुराने सहयोगी और बगावत करके समर्थन करने आए नए साथी सांसदों में मंत्री पद देने को लेकर क्या खबर चल रही है। तो आज तीसरे हिस्से में हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि कैसे महिला, युवा और ओबीसी, इन तीन कैटेगरीज में मंत्रियों को जगह दी जा सकती है।
1: मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार कितने युवाओं को मौका मिलने वाला है?
2: हमारे पास आज दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण टैलेंट पूल है, युवा टैलेंट पूल है, जिसके पास सपने भी हैं, संकल्प भी है, सामर्थ्य भी है।
1: जल्द होने वाले मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में अब की बार कितनी महिला सांसद शपथ लेंगी?
2: इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है।
1: 12 साल में पांचवी बार, तीसरे कार्यकाल में पहली बार, मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में पिछड़े वर्ग के कितने सांसद मंत्री बनेंगे?
2: भाजपा का मंत्र है पिछड़ों को प्राथमिकता।
1: लाल किले की प्राचीर से लेकर संसद के दोनों सदनों तक, चुनाव प्रचार के मंच से लेकर हर सभा और सम्मेलन तक, प्रधानमंत्री कहते हैं देश में केवल 4 जातियां हैं।

0: लिए किसान।
1: तो क्या इसी मंत्र को ध्यान में रखकर इस बार प्रधानमंत्री ने अपनी नई टीम का चाल, चेहरा और चरित्र तय कर लिया है? जहां सबसे पहला सवाल आता है, कितने युवा चेहरे इस बार मोदी मंत्रिमंडल में दिखने वाले हैं?
0: दिनों दिन हमारा देश युवा होता जा रहा है, युवा आबादी वाला देश है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा सुयोग है।
1: युवाओं पर फोकस करने वाले प्रधानमंत्री कितने युवा सांसद को मौका मंत्रिमंडल में दे सकते हैं, ये निर्भर करता है कि कितने युवा सांसद संसद में हैं और कितने मंत्री हैं। लोकसभा में अभी 30 साल से कम उम्र के एनडीए के केवल एक सांसद हैं, 31 से 40 साल की उम्र के एनडीए के

0: 15 सांसद हैं और 41 से 50 साल की उम्र के 39 सांसद, जबकि अभी मोदी मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत 72 मंत्रियों की संख्या में 2 मंत्री एनडीए के 30 से 40 साल के हैं, 15 मंत्री 41 से 50 साल के बीच के हैं, यानी 50 साल तक की आयु वाले 24% मंत्री हैं। तो क्या प्रधानमंत्री इस बार युवाओं की संख्या और बढ़ाकर मंत्रिमंडल की औसत आयु को कम करेंगे?
1: युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, अवसरों की कमी नहीं है, आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है।
2: हर बार मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु लगातार कम हो रही है। 2014 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 62 वर्ष थी, 2019 में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु 60 वर्ष थी, 2021 में जब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ तब ये औसत आयु घटकर 58 वर्ष हो गई, 2024 में ये औसत आयु कायम रही। क्या इस बार कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल में मोदी मंत्रिमंडल की औसत आयु कम हो जाएगी, क्योंकि 2047 में विकसित भारत पर काम करने के लिए पीएम मोदी सबको प्रेरित कर रहे हैं और चर्चा ये है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा मौका युवाओं को दिया जाएगा।
3: और आज खबर आई है कि सरकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री को एक साल का विस्तार देने का निर्णय किया है। ये अच्छे काम करने का रिजल्ट होता है, लेकिन क्या ऐसा ही विस्तार मंत्री भी पाएंगे? जहां हम सोमवार को आपको ये बता चुके हैं कि इस बार कुछ मंत्रियों की उनके खराब परफॉर्मेंस के कारण से कुर्सी जा सकती है या उनके विभाग कम हो सकते हैं, और तब सवाल ये आता है कि खाली पदों पर या जो विभाग अब बचेंगे उनमें क्या महिला सांसदों को मौका मंत्री पद पर मिल सकता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपना ही रिकॉर्ड इस मामले में तोड़ेंगे?
1: सिर्फ वक्त का इंतजार है, हर रुकावट को खत्म करके रहेंगे, हटा करके रहेंगे। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए।
0: महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी कहा जाता है कि इस वक्त संसद में बिल पास कराने के मकसद से जरूरी 2/3 सांसद तक इकट्ठा करने में जुटे हैं, क्या वो आपके मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को इतना मौका दे सकते हैं जिसके बाद विपक्ष के दांव धरे के धरे रह जाएंगे?
1: इस विश्वास के साथ अपने इस बेटे को, अपने इस भाई को दिल्ली भेजा, उस विश्वास को बढ़ाने वाला एक और काम आपके भाई ने दिल्ली में किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मोदी की गारंटी।
0: तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार में महिला कोटे को इस बार बड़ी गारंटी प्रधानमंत्री देने वाले? जहां इस वक्त महिला सांसदों की ताकत देखें तो महिला सांसद लोकसभा में कुल 75 हैं और राज्यसभा में 38, यानी कुल संख्या 113। इनमें बीजेपी की लोकसभा में 31, राज्यसभा में 20, यानी कुल 51 महिला सांसद, एनडीए की 37 लोकसभा में महिला सांसद हैं, 21 राज्यसभा में, कुल ताकत 58 महिला सांसद की। अभी का अगर हम आंकड़ा देखें तो कुल 7 महिला मंत्री मोदी मंत्रिमंडल में हैं, जिनमें 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री हैं, बीजेपी की 6 महिला मंत्री हैं, 1 सहयोगी दल अपना दल से अनुप्रिया पटेल मंत्री हैं। 2024 में महिलाओं को मंत्री बनाते वक्त 7 में से 4 मंत्री ऐसी रही जो पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल की गई। मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में 10-10 महिला मंत्री थी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 2021 में सबसे ज्यादा महिला मंत्रियों की संख्या 11 तक पहुंची, जो 2004 के बाद केंद्र में सबसे ज्यादा महिला मंत्री की संख्या रही। इस वक्त निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय है, अन्नपूर्णा देवी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, शोभा करंदलाजे जो कर्नाटक से आती है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री है, रक्षा खंड से 2024 में मंत्रिमंडल में शामिल दूसरी सबसे युवा मंत्री हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। धार से सांसद सावित्री ठाकुर महिला बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। गुजरात से लोकसभा सांसद नीमूबेन बभानिया उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अब इन सात के साथ और कितने महिला चेहरे मंत्रिमंडल विस्तार में मौका पाएंगे या फिर इन चेहरों में भी कुछ फेर बदल होगी।
2: पीएम मोदी की सोशल इंजीनियरिंग में जातियों को जोड़ना ही नहीं बल्कि महिला युवा पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। संसद के इस मानसून सत्र में सरकार महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन बिल को किसी भी हालत में पास कराना चाहती है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंत्रिमंडल विस्तार में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देकर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं।
3: विपक्ष का पूरा दांव पिछड़ों दलितों को लेकर रहता है, जिसके जवाब में लगातार सरकार ये याद कराती है कि उसने मंत्रिमंडल में किस तरह पिछले वर्ग के सांसदों को बड़ा अवसर और जिम्मेदारी दी है। तो क्या अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार में भी पिछले वर्ग से नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है?
0: साल 2014 नरेंद्र मोदी के पहले मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से 22 मंत्री शामिल होते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के मंत्रिमंडल में 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से बनते हैं। 2024 मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में ओबीसी मंत्रियों की संख्या 27 है, लेकिन क्या अब की बार पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी और बढ़ने वाली है?
4: विश्वकर्मा योजना का सबसे ज्यादा लाभ एससी एसटी और ओबीसी समाज उठा रहा है। ये शुरुआत बता रही है जो वर्ग आर्थिक प्रगति में पीछे छूट रहा था, वो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा।
0: मंत्रिमंडल विस्तार जब मोदी सरकार का जल्द हो सकता है, तब सबकी नजरें पिछड़ों की हिस्सेदारी पर लगी है। वजह कई है, जैसे पहली वजह जातिगत जनगणना की मांग करता विपक्ष, जिसकी मांग बाद में सरकार को माननी पड़ी ताकि पिछड़ों की ताकत मजबूती से सरकार के साथ रहे। दूसरी वजह पिछड़ा वर्ग जो नरेंद्र मोदी के नाम पर 2014 से बीजेपी के साथ बड़ी तादाद में एकजुट हुआ, वो 2024 में इंडिया गठबंधन के दांव से कुछ छिटका है। और तीसरी वजह आगे उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव है, जहां पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग को संदेश देना जरूरी है। और तब जहां एनडीए के अभी 26.2% सांसद ओबीसी हैं, मंत्रिमंडल में 38% ओबीसी वर्ग से मंत्री हैं। पूरे मंत्रिमंडल का हिसाब देखें तो ओबीसी 38%, 10 मंत्री एससी के यानी 14% हिस्सेदारी, 5 मंत्री एसटी के 7%, 5 मंत्री अल्पसंख्यक 7% है। तो क्या ओबीसी और एससी वर्ग के मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है?
2: 2014 का मंत्रिमंडल हो या 2019 का मंत्रिमंडल, ओबीसी जातियों का प्रभाव दिखा है। 2024 के मंत्रिमंडल में भी 38% ओबीसी जातियों से आने वाले मंत्री हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार में क्या यह संख्या और बढ़ने वाली है? कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: तो इस बार जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में किन नए चेहरों को शामिल करते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास। हिमांशु प्रकट हो गए हैं, बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु, युवा महिला ओबीसी, इन तीनों को जोड़कर किस तरह की नई सोशल इंजीनियरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल विस्तार में हिमांशु इस बार दिखा सकते हैं?
5: देखिए दो चीजें सही। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा कहते हैं ज्ञान को लेकर आके चलना चाहिए। ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, एग्रीकल्चर और साथ में नारी। तो इस चीज को प्रधानमंत्री भली बात ही जानते हैं और इसीलिए वो जितनी सोशल इंजीनियरिंग है, चाहे वो जातिगत सोशल इंजीनियरिंग हो, राजनीतिक सोशल इंजीनियरिंग हो, इन सब सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर उनकी ये जो इंजीनियरिंग है ये भारी पड़ती है। और ये इसीलिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज को भली भांति जानते हैं। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो जब भी कैबिनेट विस्तार होगा ये इसमें महिलाओं के लिए एक स्पेशल तरीके के नंबर्स देखने को मिलेंगे, ओबीसी के नंबर होंगे, यूथ के नंबर इसलिए होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हमेशा सरकार की बैठक हो, पार्टी की हो या अन्य कोई बैठक हो या किसी सम्मेलन में को संबोधित करते हो, उसमें हमेशा ये कहते हैं कि विकसित भारत जो है वो 2047 पे बढ़ना चाहिए, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। तो ऐसी अगर आपको विकसित भारत बनाना है तो युवाओं को तरजीह देनी होगी, तो युवा भी नजर आएंगे आपको, उसमें महिलाएं भी आएंगी, उसमें बैकवर्ड अति पिछड़े भी होंगे, दलित भी होंगे। ये इस तरीके का जो सोशल इंजीनियरिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा।
3: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मानशु आप, लेकिन 2004 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिलाएं रही हैं, हालांकि अभी यह संख्या हिमांशु काफी कम है। तो क्या महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन बिल कहा जाता है कि सरकार जल्द आगे ला सकती है, तो क्या हम ये माने कि महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी इस बार?
5: देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार जो है वो सजग भी है और 2023 के अंदर महिला आरक्षण बिल को पास किया गया था, लेकिन महिला आरक्षण बिल 2029 के चुनाव से पहले लागू हो, जिसमें लोकसभा में विधानसभा चुनावों के अंदर जो है महिलाओं को 33% जो है सीटों पर आरक्षण मिले, इसको लेकर जो है संविधान संशोधन होना है, जो पिछली बार जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था अप्रैल में, ये संशोधन बिल जो है वो पास नहीं हो पाया था, कानूनी रूप नहीं ले पाया था। तो ऐसे में सरकार की कोशिश है, क्योंकि विपक्ष की जिस तरीके से विपक्ष बटा है या टीएमसी के दो फैक्शन हुए या यूबीटी का एक फैक्शन जो है सांसदों का, वो एकनाथ शिंदे के साथ चला गया, दोनों ही गुटों पे अभी स्पीकर का फैसला आना बाकी है, लेकिन यह जरूर है जिस तरीके से नंबर्स की जरूरत इस, चाहे वो महिला आरक्षण बिल में संविधान संशोधन हो या अन्य संशोधन हो, डिलिमिटेशन के संशोधन हो, उसको लेकर सरकार के पास नंबर्स तक पहुंचने की जो जुगत है वो पूरी हो चुकी है और इस मानसून सेशन में जो है ये बिल पास भी होगा और उसके बाद महिला आरक्षण बिल का रास्ता 2029 के लिए साफ हो जाएगा।
3: बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी देने के लिए। तो बहुत जल्द हमें यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में जब विस्तार करेंगे तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी होगी। और अब हम आपको आम आदमी, आपके और हमारी सुरक्षा से जुड़ी चिंता पैदा करने वाली खबर से आइए खबरदार करते हैं। मुंबई, जहां का व्यक्ति देश में सबसे अधिक टैक्स देता है, सोचता है कि कम से कम सरकार हमें सुरक्षा तो देगी, लेकिन जहां राज्य से लेकर बीएमसी तक बीजेपी गठबंधन की सरकार है, सत्ता है, वहां स्कूल बस में आता बच्चा भी असुरक्षित है। 11 वर्ष के विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई क्योंकि स्कूल बस पर पेड़ गिर गया, वो पेड़ जिसे लेकर शिकायत लोग करते रहे लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी।
6: बस यहाँ सरकार बना दो, यहाँ जिता दो, इस बार वोट दे दो फिर देखना, ये सब बोलकर इंजन पर इंजन लगाकर सत्ता हासिल करने वाले कैस माँ से आंख मिलाकर कह सकते हैं हमने गलत बोला। माँ जो हाथ में खेलने वाला बैट पकड़कर इंतजार करती रही कि 11 साल का विहान श्रीवास्तव अभी स्कूल से लौटेगा, घर से फिर वो खेलने जाएगा, लेकिन विहान की माँ को नहीं पता था देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई में बच्चे स्कूल बस तक में सुरक्षित नहीं, जहां MH03CV7439 नंबर की प्राइवेट स्कूल बस से अपने साथी बच्चों के साथ विहान लौट रहा था, मंगलवार को पेड़ टूटकर गिर गया, बस को पिचका दिया, बच्चे दब गए, चीख पुकार मच गई, स्ट्रेचर पर बच्चों को इलाज के लिए लेकर भागा गया, क्रेन से पेड़ को हटाने की शुरुआत 11 साल के विहान श्रीवास्तव की, दबकर मौत हो
7: गई। इसी वैन में 10 से 12 बच्चों के दबे होने की खबर आ रही थी, लगभग 2 बजे की घटना है, पेड़ गिरने से बच्चे दब चुके थे।
6: मानसून आया, पेड़ गिर गया, क्या वाकई एक हादसा भर है, क्या विहान की मौत का कोई जिम्मेदार नहीं? तो सुन लीजिए, विहान श्रीवास्तव की मौत के जिम्मेदार मुंबई में वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों की शिकायत तक नहीं सुनी।
8: इस वक्त हम मुंबई के चेंबूर इलाके में, जहां पर ये पेड़ जो है वो अचानक कल एक स्कूल बस पे गिर गया था जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाके के लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं। ये पेड़ अच्छा खासा था पहले?
9: अच्छा था, लेकिन अभी आधा ना सूख गया था, ये
8: सूख गया था
9: नीचे से, ये देखो ना आधा से बाद खराब हो गया है, पूरा बाद हो गया है, नहीं ऐसा बड़ा था लेकिन पोखल हो गया था आधा, ऐसा लग रहा था गिरेगा कभी भी, ये
8: लग रहा है। तो कुछ कंप्लेंट हुआ?
9: दिया था सोसाइटी वाले ने, दिया था कंप्लेंट, बोल रहे थे
10: कंक्रीट वर्क जब चल रहे थे, हमने उनको बताया कि हीट के वजह से रूट्स ड्राई हो गई है और ये डिग कर रहे थे कम से कम 1.5-2 फीट, तभी एक डाउट था कि कुछ ना कुछ होने वाला है और हो गया।
8: तो आप लोगों ने किससे कंप्लेंट किया था?
10: कॉन्ट्रैक्टर से जो काम कर रहे थे। हमारे रीच इनके बियॉन्ड क्या हो सकता है रोड में? और मुझे एक डर है कि ये दसवा रोड से लेके 16 तक ऐसे काफी पेड़ हैं।
6: सोचिए, जनता शिकायत करती रही कि पुराना पेड़ है, गिर सकता है, सूख रहा है पेड़, कोई आकर देख लो, लेकिन कौन देखता। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना वाले तो सांसद तोड़ो अभियान में व्यस्त रहते हैं। बीजेपी इसी में खुश है कि राज्य से लेकर बीएमसी तक में कुर्सी तो मिली, बाकी जनता का क्या। बच्चे की जान गई तो मेयर को कार्रवाई याद आई।
11: मैंने हर वक्त कहा था कि जो मुंबई के पुराने पेड़ है उसका सर्वेक्षण करो, उसकी ताकत कितनी है, वो पेड़ आने वाले बारिश को झेल सकता है या नहीं, उसका सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। मुंबई में ऐसे काफी पेड़ है जो काफी पुराने हैं, लेकिन उसका सर्वेक्षण होना बहुत जरूरी है। तो ये आदेश, और अगर मुझे पता चला कि इधर के लोगों ने इसके बारे में लेटर दिया था तो भी महानगर पालिका ने इसके ऊपर नहीं ध्यान दिया, तो जो ऑफिसर है जो भी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित होगी।
6: ये तो हाल है, मतलब मेयर ही मान रही हैं कि इनका विभाग नाकारा है, बीएमसी के कर्मचारी निकम्मे हैं, इनकी कोई सुनता नहीं, और बीजेपी के विधायक 10 सेकंड शोक जताकर प्राइवेट स्कूल बस का मुद्दा उठाने लगे।
12: छोटी छोटी वैन होती है जिसकी क्षमता 5 लोग 6 लोग ले जाने की होती है, उसमें 20 बच्चे 25 बच्चे भर करके कई बार सड़कों पर दिखता है। तो मैं स्वयं परिवहन मंत्री से इस बारे में कुछ एक नियम बने, इस प्रकार की मैं स्वयं सदन में मांग करूंगा।
6: विहान की मौत के बाद जागने का नाटक खेला जा रहा। राज्य मानवाधिकार आयोग के पास शिकायत हुई है, बीएमसी ने जांच कमेटी बना दी है, 8 दिन में रिपोर्ट मांगी है। तब तक कुरला इलाके में और पेड़ गिर गए, कारे दब गई, गनीमत रही में कोई बैठा नहीं था। बीएमसी का क्या है, मुंबई वाले टैक्स भर भर कर देते रहेंगे, कभी इनकी मेयर के सामने ही इनका कर्मचारी गटर में गिर जाता है, कभी मेयर के कहने के बावजूद पुराने पेड़ हटाए नहीं जाते, और एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को खो देती है क्योंकि 60 से 70 साल पुराना पेड़ स्कूल बस पर गिर जाता है। और फिर यहाँ कुर्सी दे दो वहाँ जिता दो की बात करने वाली सत्ता की नींद टूटी है। हादसे का सांप जब जनता को डस लेता है तब लकीर पीटने वाली स्टाइल में देखिए कैसे चेंबूर इलाके में पेड़ की टहनियां काटी जाने लगी। काश विहान की मौत से पहले ये अपनी ड्यूटी निभा लेते।
13: We believe आज तक ऑल आर फेवरेट चैनल, सो आप आज तक से आप प्रेशराइज करके, ये अभी आपके ऊपर है।
8: कोशिश हर किसी की यही रहती है, जैसा कि लोगों ने बताया कि ये पेड़ जो है कॉन्क्रेटाइजेशन के दौरान सबको लग रहा था कि ये वीकन हो गया है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से कॉन्क्रेटाइजेशन हुआ था तो उस पर जरूर कोई ना कोई असर पड़ा था, और इसकी वजह से इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को बोला था, लेकिन इसके बावजूद कोई काम इसको पेड़ को हटाने की कोशिश नहीं की, जिसकी में अल्टीमेटली अब एक बच्चे की मौत हो गई है। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ विद्या, मुंबई आज तक।
3: और इसी मामले में एक बड़ी खबर इस समय आ चुकी है। चेंबूर में पेड़ गिरने की घटना में बीएमसी अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट गार्डन जगदीश बोईर को सस्पेंड कर दिया गया है, और सस्पेंशन ऑर्डर में साफ कहा गया है कि घटना में शुरुआती तौर पर लापरवाही दिख रही है। इस मामले को देखते हुए शुरुआती विभागीय जांच पूरी होने तक आपको सस्पेंड किया जा रहा है। कभी खुले मैनहोल में आम आदमी गिरकर जान अपनी गंवाता है, कभी अंडरपास में पानी भरने से जान आदमी गंवाता है, कभी पेड़ गिरता है तो मौत हो जाती है। यह हाल महाराष्ट्र में विभिन्न बड़ी नगर पालिकाओं का है। नवी मुंबई का हाल देखिए, जहां भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नेरुल इलाके में कॉलेज से घर लौट रही 2 छात्राएं सड़क पर पड़े खुले बिजली के तार की चपेट में आ गई। संतोष की बात यह रही कि करंट लगने के बाद भी दोनों छात्राओं की जान बच गई। हादसे के तुरंत बाद दोनों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, अस्पताल में उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई गई। इस घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और बिजली विभाग की घोर लापरवाही एक बार फिर से सामने आई। नवी मुंबई की मेयर सुजाता पाटिल ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। दोनों पीड़ित छात्राएं कॉलेज से अपने घर वापस लौट रही थी, तभी बारिश के पानी के बीच उनका पैर एक खुले हुए बिजली के तार पर पड़ गया। करंट का झटका लगते ही मौके पर कंप मच गया। घायल छात्राओं को तुरंत पास के डीवाई पाटिल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टर्स के अनुसार दोनों छात्राएं पूरी तरह से होश में हैं, बातचीत कर रही हैं, लेकिन बिजली का झटका गहरा होने के कारण उन्हें अगले 24 घंटों तक डॉक्टर्स के ऑब्जर्वेशन में अस्पताल में ही रहना पड़ेगा।
14: हम अभी ऐसे जगह पे खड़े जहां से कॉलेज के 2 छात्राओं को रास्ते से बाइक पर जाने के समय शॉक लगे, बिजली का जो झटका लगा कुछ झटके से दो छात्राएं घायल हो चुकी है। ये वही स्पॉट है जहाँ पर एक वायर खुली थी, उस खुली वायर से इसी जगह से वो छात्राएं आ रही थी, उनको बिजली का झटका लगा है। उनको इलाज के लिए अभी एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जो बेलापुर से अपने कॉलेज से आ रही थी और अपने घर की तरफ जा रही थी, इसी जगह जब उनको बिजली का झटका लगने पर वो यहाँ पर गिर गई, स्कूटी पर से जाने के समय गिर गई। यही पे सामने एक बंदा खड़ा था जिसने दौड़ते हुए उन लड़कियों को बचा के अस्पताल में दाखिल करवाया।
3: श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज एक बड़ा खुलासा हुआ। आज तक के हाथ चढ़ावा चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा लगा, जिससे पहली बार ये पता चला कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से सबसे बड़ी नकदी किसके पास से बरामद हुई। दस्तावेज के अनुसार सबसे अधिक पैसे अविनाश शुक्ला के पास से मिले। गिरफ्तार किए गए आरोपी जहां अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, तो वहीं ट्रस्ट के कर्ता धर्ताओं की बोलती बंद हो गई।
6: पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, चौथी कोशिश,
15: राम मंदिर की तो
6: पांचवी बार फिर कोशिश की गई।
15: राम मंदिर वाले मामले में सुस्ते नहीं थी।
6: छठी कोशिश, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से उज्जैन में अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल होता है, गोविंद देवगिरी चुप्पी साध लेते हैं। पत्रकारों की तरफ से 6-6 बार पूछने पर भी गोविंद देव का मौन नहीं टूटता, मानो कह रहे हो एक चुप और 100 बला को टाल दो। इसलिए उन्होंने किसी भी सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी सिवाय मुंह पर उंगली रखने के। चढ़ावा चोरी का सच जानने को देश बेकरार है, लेकिन जिस ट्रस्ट की जिम्मेदारी खाते चढ़ावे और दान की निगरानी की थी, उससे जुड़ा हर एक चेहरा चुप है। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप, तो अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो जांच के दायरे में, उनका अता पता नहीं, मीडिया के सामने नहीं आते। चंपत राय इस्तीफा देने की खबरें आई, लेकिन मौन व्रत धारण है, अब तक सामने नहीं आए। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भागते हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है।
16: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
6: जिम्मेदारों की यही चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभती। इस मामले में जहां बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई, वहीं रोज रोज पकड़े गए आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अविनाश शुक्ला से चोरी हुए चढ़ावे का पूरा हिसाब सामने आया है। इसके पास से 500 के 3,609, 200 रुपए वाले 589 नोट और 100 के 1,182 नोट छापेमारी में मिले। इस तरह अविनाश शुक्ला से कुल 20,39,220 रुपए नकद मिले। अविनाश शुक्ला से $1,121 भी मिले, जो भारतीय रुपयों में 1,06,633 रुपए होता है। इसके अलावा चांदी जैसी करीब 160 ग्राम धातु, करीब 12 ग्राम की पीली धातु की चेन और अंगूठी भी मिली। इसी तरह अनुकल्प मिश्रा से 500 के 2,853 नोट, 200 के 423, 100 के 707 नोट, 50 के 2,004 नोट मिले, जो 16,82,040 रुपए होते हैं। इसी मामले में तीसरे आरोपी लवकुश मिश्रा से 500 के 2,850 नोट मिले और उसके घर से कुल 14,28,000 रुपए बरामद हुए। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्र से 7,32,170 रुपए बरामद किए गए। वहीं मनीष कुमार यादव के घर से 2,00,000 रुपए नकद मिले हैं। इससे पहले पिछले रविवार को ही सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी हुई, जिसमें टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष से 23,00,000 रुपए बरामद किया जा चुका है। आज तक की पड़ताल में पता चला कि अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40,00,000 का घर खरीदा, तो जांच में पकड़े गए छोटे कर्मचारियों से चढ़ावे की चोरी की रकम बरामद हो रही है, लेकिन जिन लोगों पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी वो सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जबकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत के संभव हो ही नहीं सकती।
3: चढ़ावा चोरी मामले में एक संदूक की भी बहुत चर्चा है। यह संदूक मिला है आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से। इस संदूक पर राम राज्य कोड मिला, QR कोड भी है, जिसके बाद अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि जिस अविनाश शुक्ला से 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई, उसके यहाँ ये संदूक आखिर कहाँ से पहुंची।
0: अयोध्या का कौशलपुरी का योग साधना केंद्र, अयोध्या का ये घर 5 जून के बाद से चर्चा में है, लेकिन इसके चर्चित होने की ताजा वजह ये बक्सा है। सवाल है कि राम मंदिर से जुड़ा दिख रहा है ये बक्सा यहाँ कैसे पहुंचा, क्योंकि इस बक्से पर राम राज्य दान कोष का स्टिकर और एक QR कोड लगा है। इसलिए अगर ये मंदिर से जुड़ा बक्सा है तो यहाँ कैसे आया, कौन उसे लेकर आया, इस बक्से में क्या है, इस बक्से को लेकर पूछा जा रहा हर एक सवाल चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ा है, जिसके बारे में इस घर में मौजूद लोग खुलकर बताते हैं।
17: अभिषेक तो बहुत अच्छा लड़का था, उसने अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, और उसके बाद उसे ये नौकरी।
18: अविनाश को लेकर क्या नेचर रहा है, 1.5 साल आप लोगों ने देखा उसको, योगा सिखाया होगा?
17: नहीं, वो योगा मेरी क्लास, क्योंकि मेरी क्लास महिलाओं की रहती है, और वो बहुत ही मेरी ज्यादा उससे बात नहीं होती थी, बस जब मैं आती थी तो यहीं बैठा रहता था, फोन चलाता रहता था।
0: इनसे मिलिए, ये योग सिखाने वाली सीमा तिवारी हैं, जो आज तक को बताती हैं कि इस योग केंद्र के गुरुजी ने ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक को शरण दी, तब उसे नौकरी मिली। इसके बाद अभिषेक ने अपने छोटे भाई को भी यहाँ बुला लिया और वो यहाँ रहता था।
16: अयोध्या चंदा चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस तफ्तीश लगातार जारी है, और इस वक्त हम पहुंचे हैं उस योगा केंद्र जहां कुछ दिन पहले पुलिस की टीम्स आई थी और 5 लाख रुपया बरामद किया था। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ इसी योगा केंद्र में रहता और योग सीखता। आप देखें तस्वीरें तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र।
0: प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला यहाँ पर योग सिखाता था, लेकिन उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। पर चढ़ावा चोरी के बाद उसके पास से ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए बरामद किए तो ये लोग हैरान रह गए।
17: पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली, फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दे, ताकि वो भी कुछ।
16: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
17: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया, और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद पता 1.5 साल पहले करीब आया, और अभी पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है।
0: इस घर में कई बक्से हैं, लेकिन एक ही बक्सा है जो बंद है और जो राम मंदिर से जुड़ा दिखता है। आज तक संवाददाता ने इस पर लगे QR कोड के जरिए इसकी पुष्टि की।
16: आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया, तो इतना तो साफ है, जो जानकारी फिलहाल मिली है वो ये सामने आई है कि ये बक्सा उस वक्त इस्तेमाल होता था जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर जो है एक डोनेशन जो कैंप स्टार्ट हुआ था वो लिया जा रहा था।
0: बड़ी बात यह है कि 5 जून को पुलिस यहीं पर छापेमारी के लिए आई थी, उनके साथ अभिषेक शुक्ला भी था। CCTV की तस्वीरों में उससे बरामद रुपयों की तस्वीरें यहीं की थी।
16: बक्सा मैं देख रहा हूँ सामने, रहस्यमय बक्सा, ये क्या है, इसमें क्या है,
19: यहाँ रखा तो ये बक्सा तो आपसे शुक्ला जाप जब उनको मिली तो अपना खरीद के लाए हैं बक्सा, इसमें अपना कपड़ा रजाई वगैरह सब रखते थे, अब उनके भाई आ गए उसी में वो भी अपना कपड़ा वपड़ा रखा।
16: मैं इस बक्से की बात कर रहा हूँ जिसमें ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है।
19: ये जो QR कोड लगा है, ये जब राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी है, ये जब राम मंदिर के 2017-18 में बनने की तैयारी हो रही थी तो ये 71 दिन की यात्रा निकली थी
16: डोनेशन एक्सेप्शन के लिए, डोनेशन के लिए। हाँ, जब पुलिस यहाँ आई थी तब आप यहाँ मौजूद थे
19: उस दिन 5 जून को
16: जी।
19: हाँ 5
16: क्या हुआ था उस दिन बताइए।
19: उस दिन 5 जून को तो हम चाय बना रहे थे, उसके बाद पुलिस आई अविनाश को लेके, तो फिर अपना चाबी लाए, ताला खोले, ताले
16: कौन सा ताला खोला,
19: इसी में ताला बंद,
16: बड़े बक्से का ताला खोला,
19: बड़े बक्से में वो ताला वो लोग अपना बंद।
16: आइए दिखाते हैं बड़ा बक्सा एक बार हम, की जिसका ताला खोला गया है, कैमरा मैन नीरज दिखाएंगे एक बार। इस बड़े बक्से का जिक्र कर रहे हैं आप,
20: इसका जिक्र कर रहे हैं,
16: ये बक्सा किसका है,
19: इसी का,
16: किसका बक्सा है
19: ये, अभिषेक शुक्ला का।
0: एक दिन पहले ही एसआईटी ने जेल में अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। अब सूत्रों की माने तो टीम जांच की समीक्षा करेगी, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।
3: और अब महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल मर्डर से जुड़ी एक बड़ी खबर। आरोपी सिया गोयल का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें सिया फोन पर किसी से बात कर रही है। इस दौरान सिया अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है, गाली दे रही है। हम आपको वो गाली सुनवा नहीं सकते। सिया गोयल किसी पर बुरी तरह से गुस्सा हो रही है, गाली गलौज कर रही है और ये किसी पब का वीडियो है, उसके हाथ में एक बॉटल भी है। केतन अग्रवाल की मौत के बाद से सिया गोयल सवालों के घेरे में हैं। आप हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सिया गोयल को अगर केतन अग्रवाल से शादी नहीं करनी थी तो उसने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया। केतन अग्रवाल मर्डर की चर्चा आज इस समय हमारे पूरे देश में हो रही है, इस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन एक डेंटिस्ट केतन अग्रवाल को लेकर अपने वीडियो से आलोचनाओं के घेरे में आ गई हैं।
0: अगर सिया को चेतन पसंद था तो फिर उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? क्यों उसे केतन को मारना शादी के लिए ना बोलने से ज्यादा आसान लगा? पिछले कई दिनों से देश 20 साल की सिया की मानसिकता पर हैरानी जता रहा है, लेकिन केतन की हत्या का मजाक उड़ाने वाली डेंटिस्ट के वीडियो ने सबको निशब्द कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर समाज के कुछ लोगों को क्या हो रहा है। इस सवाल की ताजा वजह महाराष्ट्र के केतन अग्रवाल हत्याकांड में सोशल मीडिया पर संवेदनहीन टिप्पणी करने वाली महिला डेंटिस्ट है, जिनकी कई बातें सोचने के लिए मजबूर कर देती।
1: सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे। तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मेन। दो आदमी क्या मर रहे, मर्द समाज में डर फैला
0: हुआ। किसी के इकलौते बेटे की हत्या पर एक महिला, वो भी डॉक्टर, ऐसा वीडियो बनाएंगे, ये सोच से परे है। लेकिन लाइक्स बटोरने और फॉलोअर्स जुटाने की महाबीमारी में मानो सब कुछ जायज मान लिया गया, जिसमें लोग अपनी आत्म संतुष्टि और खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी बोल बैठते हैं। लेकिन केतन पर ऐसी घिनौनी टिप्पणी करने वाली इन डेंटिस्ट को अब ये सब करना भारी पड़ा और ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट एंड डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश की कोषाध्यक्ष और डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित करते हुए डॉक्टर मुस्कान सोनी की इंस्टाग्राम स्टोरी को आपत्तिजनक, अपमानजनक और संस्था के नैतिक मूल्यों के खिलाफ माना है। AIDSA ने अपने बयान में लिखा है कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने केतन अग्रवाल के बारे में कथित तौर पर अनुचित, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जो संगठन के संविधान, आचार संहिता और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इसी आधार पर उन्हें 5 साल के लिए संगठन की सदस्यता और पद से निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान वो AIDSA की ओर से किसी भी आधिकारिक जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर सकेंगी, न ही संगठन की बैठकों, कार्यक्रमों या गतिविधियों में हिस्सा ले पाएंगी। केतन की हत्या के बाद सिया के हवाले से यह दावा किया गया कि केतन विग लगाता था, हकलाता था, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती थी और उसने चेतन के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन आज तक की पड़ताल में केतन के गंजे होने या विग लगाने की बात गलत साबित हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर फैले इस झूठ को इस डेंटिस्ट ने सच मान लिया और न सिर्फ केतन का मजाक उड़ाया बल्कि हत्या के लिए ही केतन को दोषी तक ठहरा दिया। पर सबसे बड़ा सवाल केतन और पुरुषों को लेकर इस डॉक्टर के दिमाग में भरे जहर से जुड़ा है, जिसने सारी हदें पार कर दी और एक हत्या को भी जायज ठहरा दिया।
1: सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे। तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मेन। दो आदमी क्या मर रहे, मर्द समाज में डर फैला हुआ।
0: हंसते हुए केतन हत्याकांड की हिमायत करने वाले इस डॉक्टर का दिमाग कार्रवाई के बाद ठिकाने आ गया और अब वो इस मामले पर सफाई पेश करने लगी।
4: वीडियो इज नॉट एन अपोलॉजी के लिए बस आप लोगों को दिखाने के लिए इट इज बिकॉज आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर द वर्ड्स आई हैव यूज्ड दैट आई जस्ट यूज फॉर अ जोक और समथिंग बिल्कुल भी नहीं है विच इज वो टॉपिक बहुत सेंसिटिव है एंड अ वेरी वेरी बिग सॉरी द फीलिंग्स आई हैव हर्ट इट एंड वोंट बी रिपीटेड अगेन.
0: केतन अग्रवाल की हत्या ने समाज की हकीकत को एक बार फिर सामने ला दिया है. याद दिलाया कि शादी से इनकार करना भारत में आज भी अगर नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है. इसकी सबसे बड़ी वजह शादी से जुड़ी परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा है. शादी के वो सारे इंतजाम है जिन पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कि बेटी की ना के कोई मायने नहीं रह जाते. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी को मार दे और कोई मरने वाले का इतनी फुहड़ता से मजाक उड़ाए.
3: हम आपको लगातार जनता यानी कि आपके हमारे पैसों की बर्बादी करने वाली राजनीति से खबरदार करते हैं. तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां 300 करोड़ रुपए खर्च करके गरीबों का एक ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और राजनीति में बर्बाद हो गया.
0: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है. सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते. जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है. लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया. बात 2009 की है. जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए. 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई. बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया. पानी बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ. चोरों ने फिर खिड़की दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए. योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था. 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी. ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए. गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं. निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे. लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया.
21: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए. किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला. यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें. यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है. गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है. ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है.
0: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं. कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहाँ रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं. दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है. डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता.
22: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठ पटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं. और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी, हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटियां है सभी. यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते.
21: ऐसे सरकार ने ऐसे ही आधा बना के छोड़ दिया है.
22: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था अपना, आधा अधूरा छोड़ रखा है. और सारे तो तोड़ दिए, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए.
0: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए. बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया.
23: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए. आज वहां शिकायतें निरंतर आती है. मेरी विधानसभा में किशन बाग में और जयसिंहपुरा खोर में जेडीए फ्लैट्स में और अन्य मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं. पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी.
24: आवंटित हो नहीं पाए और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं. और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया.
0: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके. सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
2: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो, इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
0: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं, इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: यह खबर हमारी सिया गोयल की है। कल ही खबर आई थी कि शादी पक्की करने से पहले केतन अग्रवाल को सिया गोयल पर शक हो गया था। वो परिवार से पूछ रहा था कि क्या उन्होंने सिया गोयल का बैकग्राउंड चेक किया है। सिया गोयल चेतन अग्रवाल के हाथों में हाथ डाले कैफे की तस्वीरें भी सारा देश देख चुका है। इसके बाद सवाल सिया गोयल के परिवार पर उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने अपनी बेटी की जबरदस्ती शादी की। इसे लेकर सिया गोयल के पिता का नया बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।
5: आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था, नहीं था?
7: हाँ, पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके, भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन्ड करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं जरूर बात करता था, पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था।
3: जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिनों के भारत दौरे पर हमारे देश आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश, तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौते होने हैं। जापान ने भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के बाद सनाए ताकाइची का यह पहला भारत दौरा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जापान की प्रधानमंत्री आई, उनका राजकीय सम्मान किया गया, स्वागत किया गया और एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया गया। खबरदार में बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम होते हैं दोबारा उपस्थित। आप देखते रहिए आज तक।

0: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर यार
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
5: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
4: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
6: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
7: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
11: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।
12: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
13: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है।
16: पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से?
17: तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप, फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे।
18: वाह वाह वाह वाह।
17: सेबी और NSE का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरिफाइड अकाउंट या UPI पे करें।
19: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
20: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।
21: आगे आगे,
22: अरे उधर
21: उधर गया।
22: करेक्ट करेक्ट,
23: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
24: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
25: गहरी सफाई,
24: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
25: गहरी खुशबू
24: और प्यार भरी भी।
25: कैसे?
24: ये है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
26: इसीलिए फेना ही लेना।
27: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
28: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
29: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: In association with
3: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: आगे आगे
3: उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है,
6: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
5: जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।
7: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
9: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
10: सरसों से सरसों। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: हमने तब भी सवाल किया था।
12: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
11: हम आज भी सवाल करते हैं।
12: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
11: ऑपरेशन अग्नि,
12: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
11: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
0: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
1: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है, क्या ये मंदिर प्रशासन का है, और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि ये डॉक्टर चैतन्य का योग केंद्र है। यहाँ की प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही अविनाश के भाई अभिषेक को शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
2: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर, और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दे ताकि वो भी कुछ।
1: अभिषेक अविनाश को लेकर आया,
2: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।
1: अविनाश को लेकर आया,
2: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार, मैं आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ एक क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
2: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि राम मंदिर से चोरी हुआ चढ़ावा किस किस की तिजोरी में पहुंचा। अब तक जो सिर्फ

प्रतिष्ठा में यजमान बने थे। इन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। गिरफ्तार चढ़ावा चोरी के आरोपियों में इनके कई रिश्तेदार शामिल हैं। इसके बाद आपको पुणे के पास स्थित लोहगढ़ किले के बारे में बताएंगे, जहां आजकल पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये पर्यटक किला देखने नहीं बल्कि उस सनसनीखेज क्राइम स्पॉट को देखने के लिए जा रहे हैं, जहां से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया था। सोशल मीडिया ने आज उसे सिया पॉइंट का नाम दे दिया है। ये हमारे समाज में और पैर पसारते उसी डार्क टूरिज्म का कड़वा सच है, जहां लोग अतीत के गौरव से ज्यादा वर्तमान के किसी खौफनाक अपराध को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब दिख रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि देश में बार बार सड़क पर वाहनों में आग लगने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। राजस्थान के दौसा में देखिए, भीषण बस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। आज आपको बताएंगे कि जिसे दुनिया सिर्फ एक हादसा कह रही है, वो असल में सिस्टम की बेईमानी और सिस्टम का भ्रष्टाचार है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बेईमानी का वो कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे जिसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। अब तक तो सिर्फ यही बातें बाहर आई थी कि जो लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे उन्होंने जमीनें, दुकानें, महंगी गाड़ियां खरीदी थी। लेकिन आज पहली बार ये बात सामने आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कितना चोरी का पैसा बरामद किया। हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। अविनाश शुक्ला से शुरू करते हैं। ये वही आरोपी है जो चढ़ावे में मिले कैश और आभूषणों का हिसाब रजिस्टर में लिखता था। पुलिस को इसके पास से सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपए नकद बरामद हुए। 1,121 अमेरिकी डॉलर इसके पास से मिले हैं। कीमत 1,06,500 रुपए होती है। चांदी जैसी 159.54 ग्राम धातु बरामद हुई है। क्योंकि देखिए, अभी सीधा चांदी इसको पुलिस नहीं कह रही है, क्योंकि पहले जांच होगी चांदी है या नहीं है। ऐसे ही सोने के लिए भी उन्होंने अलग रंग लिखा है। 8.14 ग्राम की एक चेन बरामद हुई है, संभवतः किसी श्रद्धालु ने राम मंदिर में दान की होगी, हालांकि अभी तो चेकिंग होनी है। और इस चढ़ावा चोर के पास से पुलिस को एक सोने की अंगूठी भी मिली है, वजन 3.44 ग्राम। चढ़ावा चोर का नाम याद रख लीजिए, जिसने राम मंदिर में होते हुए भगवान श्री राम को अर्पित चढ़ावा चुराने का जिस पर आरोप है। तो ये हो गया पहला आरोपी, जो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, अविनाश शुक्ला, सबसे ज्यादा रकम जिसके पास से बरामदगी की गई है। दूसरे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है करुणेश पांडे, जो चढ़ावे में मिले नकद की गिनती का काम करता था। इसके पास से पुलिस को मिले हैं 18,07,063 रुपए कैश। सबसे दिलचस्प क्या है, 500 के 3600 नोट, 33 नोट अगला आप देख रहे हैं जो 200 रुपए का, और ऐसे ही सिक्के भी मिले हैं। अब तीसरा चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है अनुकल्प मिश्रा। चढ़ावे की गिनती के दौरान गणना कक्ष में मौजूद रहते थे। अब ये अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में मौजूद रहता था, आप चेहरा देखिए, उम्र सोचिए। मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा 16,82,000 रुपए 40 रुपए कैश, 2,853 नोट 500 के। चौथा चढ़ावा चोर का नाम है लवकुश मिश्रा, और ये भी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार है और अनुकल्प मिश्रा का जीजा। इसके पास से पुलिस को 14,25,000, ये लवकुश मिश्रा है। तो एक और रिश्तेदार मिश्रा, अनिल मिश्रा, लवकुश मिश्रा, आपने देख लिया। 500 के 2,850 नोट। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चोरी होती थी उसमें 500 के नोटों की गड्डियों में ही सबसे ज्यादा सेंध लगाई जाती थी। क्यों? कम होता था, वैल्यू ज्यादा होता। यह था कि चढ़ावे की गिनती के दौरान 500 के नोटों को अलग कर दिया जाता था। इसके बाद 500 के 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी, और आरोप है कि इन गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट्स डाल दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गिनती के बाद जब इन गड्डियों के वाउचर्स बनते थे तो उनमें यह देखा जाता था कि गड्डियां कितनी हैं। भाई 500 की इतनी गड्डियां लिख दिया गया। अब 500 की उन गड्डियों में जो वैल्यू है
वो सब में सेम है या अलग है ये तो देखा ही नहीं जा रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर ये चढ़ावा चोर

0: एक्स्ट्रा नोट 500 की गड्डियों से चुरा लिया करते थे बाद में। और पुलिस ने भी जब इनके घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से 500 के नोट ज्यादा बरामद। जैसे पांचवें चढ़ावा चोर का नाम है, जो चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं उनका नाम है मनीष कुमार यादव, जो चढ़ावे की गिनती में हर रोज मौजूद होता था। ये देखिए मनीष कुमार यादव, इसके पास से पुलिस को 2,00,000 रुपए नकद बरामद हुए, जिनमें सबसे ज्यादा 270 नोट 500 के हैं और बाकी आप देख रहे हैं 105 नोट 200 रुपए के, 400 नोट 100 रुपए के। छठे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, और लवकुश मिश्रा इसी टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था, जिसे चंपत राय ने राम मंदिर में नौकरी दी। इसके पास से 1,00,000 रुपया कैश मिला है, जिसमें 500 रुपए के 180 नोट मिले हैं, 100 रुपए के कुल 100 नोट मिले हैं। ये सारा पैसा टिन्नू यादव के हॉस्टल से बरामद हुआ, जो अयोध्या में गंगा हॉस्पिटल के पास है। सातवां चढ़ावा चोर आरोपी का नाम है रमाशंकर मिश्रा, जिसके नाम पास से 7,32,170 रुपया मिला है कैश। 2 सफेद धातु के सिक्के बरामद हुए हैं, एक बिछुआ मिला है जिसका वजन 24.72 ग्राम है। ये पुलिस ने दरअसल अब पूरी लिस्ट सौंपी है आगे, उसी से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये सब चढ़ावे का सामान था, जिसे इन चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने राम मंदिर में रहते हुए चुरा लिया। अब सोचिए कि जब ये मामला सामने आया था, तब इस देश के करोड़ों राम भक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये सच ना निकले। एसआईटी गठित हुई तब भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि इतने बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे पर हाथ साफ किया जा रहा होगा। भाई अभी तक तो पुलिस ने खुलकर तो कहा नहीं था कि इतनी बरामदगी हुई है। कभी यहां से खबर आती थी कि 5,00,000, एक बार वीडियो निकला था बस, फिर बीते दिन खबर आई लगभग 80,00,000 की। अब तो पूरा ब्रेकअप आ गया किसके पास से कितनी बरामदगी हुई है। लेकिन आज सबूतों के साथ ये चोरी साबित हो गई और आज का दिन शायद कोई राम भक्त नहीं भूल पाएगा। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये चोरी सिर्फ राम मंदिर में नहीं हुआ, ये चोरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हुई। वो जन्मभूमि जहां रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। लेकिन उस जन्मभूमि पर इन लोगों ने इतना घिनौना पाप किया, और अब तो ये खबरें किसी सूत्रों के हवाले से नहीं आ रही है, अब तो आधिकारिक रूप से पुलिस के दस्तावेजों में जो पैसा बरामद किया गया है इन आरोपियों के घर से, उन सबका पूरा लिस्ट दे दिया गया है, पूरा ब्यौरा डाल दिया गया है पुलिस के दस्तावेजों में। यह सब कुछ अब अंकित है, जिससे साबित होता है कि यह पाप हुआ। सबसे बड़ा सबूत तो यह है, ये तस्वीरें हैं जो कौशलपुरी के एक प्रतिष्ठित योग केंद्र में मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने खुद रिकॉर्ड की है। ये वही जगह है जहां चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था। जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो हमें एक संदूक मिला जिस पर राम राज्य कोष लिखा था और इस पर पेटीएम का एक QR कोड लगा था। जब हमने इस QR को स्कैन किया तो हमें राम राज्य कोष में दान देने का विकल्प दिखाई दिया, और इससे यह भी सवाल खड़े हुए कि आखिर राम मंदिर का यह संदूक यहां इस योग केंद्र में कैसे आया और क्या पुलिस ने इसी संदूक से चोरी के पैसों को बरामद किया है। पहले देखिए,
1: ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं, जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमय बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहां पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहां पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहां पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकलकर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, लेकिन ये जो राम राज्य कोष यहां पर लिखा होता है ये साफ बताता है कि कितना एक्टिव अविनाश शुक्ला जो इस वक्त जेल में है वो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि एक योगा सेंटर जहां पर वो रहता था उसका भाई अभिषेक बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा है और योग सीखता था, वो अपने भाई को 1.5 साल पहले यहाँ पर लाया, तो आखिर यहीं पर रहकर ये सारी चीजें की गई। और आप अंदाजा लगाएं श्री रामचंद्र की आस्था को लेकर जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया उस पैसे को यहाँ स्टोर किया गया।
0: अब हम एक बहुत गंभीर सवाल पूछेंगे जो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सवाल यह है कि क्या इस चोरी को मंदिर ट्रस्ट छोटा मोटा मामला बनाकर स्थानीय पुलिस की मदद से रफा दफा करना चाहता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपत राय को इस चोरी की खबर 26 मई से थी। इसके बाद 5 जून को आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या 5 जून को अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापा इसलिए मारा गया ताकि इसे छोटी मोटी चोरी का मामला बताकर बड़ी चोरी को छिपाया जा सके, और क्या ये पूरी साजिश रची जा रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में अब बड़े पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि चंपत राय के चक्कर में राम मंदिर में क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस चोरी में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को सबसे ज्यादा शक अनिल मिश्रा पर है। अनिल मिश्रा की तस्वीरें दिखा दीजिए। एसआईटी ने भी अनिल मिश्रा पर कई सवाल उठाए हैं, और क्यों उठाए हैं उसकी भी पूरी कहानी आपको बताते हैं। शक का पहला कारण यह है कि गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों में 2 आरोपी तो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। अनुकल्प मिश्रा, जिसकी नौकरी अनिल मिश्रा ने खुद लगवाई थी, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने जीजा लवकुश मिश्रा को वाराणसी की उस एजेंसी में भर्ती कराया था जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने का ठेका दिया। दूसरा कारण यह है कि जब राम मंदिर का चढ़ावा गिना जाता था तब चढ़ावे की गिनती और उससे संबंधित प्रक्रिया में अनिल मिश्रा का सीधा दखल होता था। यह भी आरोप है कि गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों ने इस चोरी में अनिल मिश्रा का भी नाम लिया। शक का तीसरा बड़ा कारण वो ये कि मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को नौकरी पर रखा था उनमें सबसे ज्यादा 125 लोगों की भर्ती अनिल मिश्रा ने की, जो उनके जानने वाले रिश्तेदार या उनके परिचित लोग थे। चंपत राय और गोपाल राव ने अपनी सिफारिश से जिन लोगों को नौकरी पर रखा उनकी संख्या अनिल मिश्रा द्वारा रखे गए लोगों की संख्या से आधी थी। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या अनिल मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन में अपनी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। शक का चौथा कारण, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी लाने की मांग की थी, तब सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? अनिल मिश्रा ने। और चढ़ावा गिनने वाले इन सभी कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया रुकवा दी अनिल मिश्रा ने। अनिल मिश्रा पर यह आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इसका शक जताया है। और एसआईटी का यह भी मानना है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति में पिछले कुछ सालों से तेजी वृद्धि हुई है। अनिल मिश्रा पर शक का आखिरी और सबसे बड़ा कारण यह है कि मंदिर ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनों को ज्यादा दाम पर खरीदा उन सभी सौदों में यही अनिल मिश्रा गवाह के रूप में शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की खरीद संबंधी फैसले सभी ट्रस्टियों की जानकारी के बिना लिए गए थे और इनमें भी अनिल मिश्रा मनमानी कर रहे थे। यहां यह भी देखिए कि अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कैसे बने, इतना महत्वपूर्ण पद कैसे मिला। डॉक्टर अनिल मिश्रा का जन्म 1958 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के पतौना गांव में हुआ था। उन्होंने 1981 में ब्रजकिशोर होम्योपैथी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो सरकारी सेवा में आ गए। होम्योपैथी डॉक्टर थे। कहते हैं कि संघ से नजदीकी के कारण वो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे। सुल्तानपुर और गोंडा जिलों में उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया। सरकारी सेवा के आखिरी सालों में वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार भी रहे। लेकिन डॉक्टर की नौकरी के साथ साथ उनके जीवन में एक और धारा लगातार चल रही थी और वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम। डॉक्टर अनिल मिश्रा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे। धीरे धीरे संगठन में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उन्होंने पहले अयोध्या में जिला कार्यवाह के रूप में काम किया, इसके बाद वो संघ के विभाग कार्यवाह बने, फिर सह प्रांत कार्यवाह बने और आखिर में अवध क्षेत्र के प्रांत कार्यवाह की जिम्मेदारी तक पहुंच गए। संघ में प्रांत कार्यवाह का पद बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के संगठनात्मक कामकाज का नेतृत्व करता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर में डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के विश्वसनीय कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे और उस समय उनके पास एक मारुति 800 कार थी जिसे वो संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे और यहीं से बीजेपी में भी उनके अच्छे रिश्ते बनते चले गए। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया उस समय डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के प्रांत कार्यवाह थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और उनके लंबे अनुभव और आंदोलन से जुड़े योगदान को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब 7 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को ही यजमान बनाया गया था और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुई तब 7 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को ही यजमान बनाया गया था और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस वक्त उन्होंने पूरे 7 दिनों तक सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया लेकिन यजमान बनने वाले यही अनिल मिश्रा आज सवालों के घेरे में है और चंपत राय के साथ बहुत जल्द पुलिस उनसे भी अब पूछताछ करने वाली है क्योंकि चंपत राय से तो पूछताछ हो चुकी है लेकिन अभी अनिल मिश्रा को नोटिस जारी हो चुका है पूछताछ के लिए। खैर इस बेईमानी पर हमें हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंगकार हरिशंकर परसाई का वो कथन याद आता है जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है कि बड़ी बेईमानी है और सोचिए उन्होंने कैसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बैठने वाली सटीक बात कही थी। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आई है जहां एक ट्रक से टक्कर होने के बाद हरिद्वार से इंदौर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। इस घटना में 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। 8 लोगों का मतलब है 8 परिवार। हम बयां नहीं कर सकते कि इन 8 परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हर कोई आपको यही बताएगा कि यह हादसा है। पुलिस भी यही कह रही है ड्राइवर को नींद की झपकी आई सड़क दुर्घटना हुई लेकिन हकीकत में ये इस घटना का आधा सच है। पूरा सच ये है कि इन 8 लोगों को बेईमानी ने जलाकर मारा है वो बेईमानी जो दीमक बन गई है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इस बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट के पैकेट से भरे कई कार्टन रखे गए थे। जब हादसा हुआ आग की लपटें इन सिगरेट के पैकेट्स तक पहुंची तो इस आग ने भयानक रूप लिया। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। अफसोस की बात यह है कि बस में सिगरेट के इन कार्टन्स को टैक्स बचाने के लिए रखा गया था यानी यहां भी बेईमानी। हमारे देश में हर रोज सड़कों पर ऐसी हजारों बसें चलती हैं जिनमें जीएसटी बचाने के लिए चोरी छिपे कई सामान भेजा जाता है और ये सिगरेट के कार्टन भी टैक्स बचाने के लिए चोरी छिपे इस बस में हरिद्वार से इंदौर भेजे जा रहे थे। अगर हम ये मान लें कि 6 कार्टन का भी इस बस के एक स्टोरेज बॉक्स में रखा गया था तो उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 30,000 रुपए की जीएसटी चोरी के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। 8 लोग जिंदा जल गए और यही है इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू। देखिए
2: सिगरेट के पैकेट्स हैं, ये सिगरेट के पैकेट्स पार्सल में रख के जा रहे थे और इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ भी था। सिगरेट के पैकेट हैं जहां देखिए वहां सिगरेट के पैकेट हैं। ये देखिए सारे पूरे डिक्की में बस में सिगरेट भरे हुए थे यानी अवैध तरीके से बस संचालक इसमें सिगरेट का परिवहन कर रहा था ज्वलनशील पदार्थ का और ये हादसा हुआ है इतना दर्दनाक। आप देखते जाइए बाहर दिखाया आप अंदर देखिए किस तरह से सिगरेट ही सिगरेट के सारे यहाँ पर पैकेट्स आपको मिलेंगे और इस तरह से कागज के बंडल हैं ये भी लेके जाए जा रहे थे जहां पर आपको दिखाई देगा। हम आपको इधर दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बार बार सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठता है, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह से बस यहां पर यमदूत बनके दौड़ रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से पूरी की पूरी बस पिघल गई है और इस तरह से जितने भी सीट हैं या जो भी फोम था वो सब पिघल गया है, बस लोहे लोहे बचे हैं यहां पर। और नीचे देखिए ये सारे सिगरेट के आपके पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो यहां पर सर्च कर रहे हैं इस मलबे में कि कहीं कोई कुछ बचा तो नहीं है।
0: तो आप देख रहे हैं ये चोरी किस तरह से सिगरेट की हुई है। तो ये घटना घटी जिसके बाद ये पता चला है विकराल रूप इस पूरी घटना का रहा। ऐसी चोरी लेकिन हर दिन होती है, इसके लिए बाकायदा रिश्वत दी जाती है। जब बिना बिल और रसीद के कोई सामान बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है तो सरकार को पता नहीं चलता कि उस सामान की बिक्री हुई है और इससे उस सामान पर भरा जाने वाला जीएसटी चोरी कर लिया जाता है। सिगरेट तंबाकू से जुड़े उत्पादों में ये चोरी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा 40% का टैक्स लगता है। अगर सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सितंबर 2025 में दिल्ली की एनफोर्समेंट टीमों ने खुद बताया था कि मजनू का टीला, अक्षरधाम, कश्मीरी गेट, आनंद विहार से जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं उनमें ऐसे सामान को चोरी छिपे भेजा जाता है जिस पर जीएसटी की चोरी होती है। और ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है और तब हो रहा है जब सब इसके बारे में जानते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब इस बेईमानी को जैसे हमारे समाज, हमारे सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है। देखिए
3: आग इतनी पकड़ गई एकदम जो पास नहीं जा सकते, हमारे आंखों के सामने लोग जल जिंदा जल गए बस के अंदर। बहुत भयंकर, बड़ा भयंकर हादसा था।
0: इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि जब ये स्लीपर बस चल रही थी तब कई लोगों ने इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। यह मुद्दा हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में उठा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकारें इस बात को समझें, बेहतर मापदंड बनाए जाएं, चाहे वो लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में आग हो जहां पर ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया या फिर ये बस। स्थानीय प्रशासन से इस मामले की जांच के लिए 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है, लेकिन हम पूछते हैं कि इस जांच का फायदा क्या है। अगर आप इस बस के आरटीओ रजिस्ट्रेशन को देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। इस झोल को आज हम एक नया नाम देना चाहते हैं, ये नाम है ऑल इंडिया बस स्कैम। ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश में एसी खटारा बसों का फर्जी ऑल इंडिया परमिट बनाया जाता है। कई बार ये परमिट पूरी तरह खरीदा गया होता है, कैसे उसे इस बस के उदाहरण से समझिए। यह बस इंदौर की मशहूर हंस ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश के किसी सुदूर इलाके में कराया गया है। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी अरुणाचल प्रदेश में जारी हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इसमें फर्जीवाड़ा क्या हुआ, तो आरोप है कि जब ऐसी बसों का रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका फुल इंस्पेक्शन किया जाता है और इन बसों की हालत इतनी खराब होती है कि अगर सही से इनकी जांच हो जाए तो इन्हें कभी ऑल इंडिया परमिट ना मिले। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोप लगता है कि एजेंट के जरिए इन बसों का दूर किसी राज्य में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और इसके लिए वहां इन बसों को फिटनेस की जांच के लिए भेजा ही नहीं जाता है। सोचिए क्या कमाल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बेईमानी कर रहे हैं, लोग बेईमानी कर पाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम उन्हें बेईमानी करने देता है। जब ऐसे लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं तो यही सिस्टम कहता है कि इस पूरे मामले की अब जांच होगी। इस घटना में एक और बड़ा आरोप यह लग रहा है कि जो ड्राइवर था उसे शराब के नशे की लत थी, इसी कारण उसे नींद की झपकी आई, हादसा हुआ। साल 2024 में हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी बस ट्रक चलाने के कारण 8,277 सड़क हादसे हुए हैं जिनमें कुल 3,204 लोगों की मौत हुई, 8,046 लोग घायल हुए। यानी हमारे देश में हर दिन 8 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि कोई बस ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई कार ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है और हमारा सिस्टम रोक नहीं पाता। अगर सिर्फ दिल्ली या आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2012 से 23 के बीच 44% सड़क हादसे नींद की झपकी आने के कारण हुए। इस हफ्ते भी लखनऊ से नोएडा जा रही एक डबल डेकर बस का यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, 4 लोग मारे गए। जबकि एक दिन पहले उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ उसमें एक कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई। उस हादसे में भी ड्राइवर को नींद की झपकी आई थी। यानी आप सोचिए कि हमारे देश में हजारों लोग इसके कारण मर जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम सिर्फ चालान का पैसा वसूल कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। आज हम एक सवाल पूछते हैं कि ट्रैफिक चालान या जुर्माने की व्यवस्था क्यों आई थी? इसलिए आई थी ना कि ताकि लोग ट्रैफिक नियमों पर गंभीरता से पालन करें, सड़क हादसे ना हो। आंकड़े बताते हैं कि इस देश में ट्रैफिक चालान से होने वाली कमाई तो दिन रात बढ़ रही है, लेकिन सड़क हादसों में कितनी कमी आई है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 18 करोड़ 14 लाख चालान जारी हुए, जिन पर 12,631 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में आया। अब चालान तो बढ़ गया, लेकिन इससे सड़क हादसों में मौतें कम नहीं हुई। 2019 से 23 के बीच ही 21,83,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई। और इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस का काम अब सिर्फ चालान काटना रह गया है? एक और कड़वा सच यह है कि सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें चालान तो काटा जा सकता है, लेकिन उनसे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश नहीं हो रही। हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी, पीछे आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई, 4 लोग मारे गए। ये देखिए, सोचने वाली बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन अगर ये कैमरे भी सिर्फ चालान करने तक सीमित हो जाएंगे तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कैसे रोका जाएगा?

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस लोहागढ़ किले से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया, उस जगह को लोग सिया पॉइंट क्यों कह रहे हैं और सिया पॉइंट को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ क्यों उमड़ रही है। लोहागढ़ किले का इतिहास 1000 साल पुराना है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की कई कहानियों के अपने को अपने अंदर समेटे है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इन कहानियों और इस इतिहास को जानने के लिए इस किले में नहीं पहुंच रहे, बल्कि वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि सिया ने केतन को किस जगह से धक्का दिया, ये जगह कैसी थी। लोहागढ़ विसापुर विकास मंच के अध्यक्ष सचिन टेकावड़े का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लोहागढ़ किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोगढ़ ये जगह है, आमतौर पर मानसून के मौसम में वीकेंड पर यहां 10,000 लोग पहुंचते थे, जबकि सामान्य दिनों में ये संख्या 800 से 1,000 के बीच रहती थी लोगढ़। लेकिन इस साल बारिश देर से हुई और इसीलिए जून में पर्यटक कम थे, लेकिन फिर केतन हत्याकांड हुआ उसके बाद लोगों का रुख बदल गया। लोहगढ़ किले के कर्मचारियों के मुताबिक कई पर्यटक अब सीधे उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो जगह कहाँ है जहां केतन को सिया ने धक्का दिया था। कुछ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ सिर्फ इसलिए वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स में इस मामले के बारे में सुना है तो उनको भी फोटो डालनी है। मुंबई, पुणे और नासिक से आने वाले युवाओं में इस घटना को लेकर बहुत उत्सुकता देखी जा रही है और इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहले कसारा घाट में ट्रैकिंग का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन लोहगढ़ मामले की चर्चा सुनी तो प्लान बदल दिया, लोहगढ़ आने का फैसला किया। और सबसे अजीब बात तो यह है कि लोग जिस जगह को सिया पॉइंट का नाम दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वहां रुककर ये देख रहे हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या था कि सिया ने केतन को यहीं से धक्का देकर मारने का फैसला किया। सोचिए, जिस किले में लोग कभी वीरता विरासत को समझने आते थे, वहां अब कुछ लोग सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो उस चट्टान को अपनी आंखों से देख सके जिसे सोशल मीडिया ने सिया पॉइंट का नाम दे दिया है। यानी लोहगढ़ भी वही है, इतिहास भी वही है, उसकी दीवारें भी वैसी हैं, बदली है तो सिर्फ लोगों की नजर जो अब अतीत की शौर्य गाथा से ज्यादा वर्तमान की एक सनसनीखेज कहानी को खोज रही है। और ऐसा करने के पीछे कई कारण है। पहला, सोशल मीडिया ने इस घटनास्थल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, मौजूदा वक्त में ये ट्रेंड बन गया है, जब किसी जगह की तस्वीरें वीडियो चर्चाएं लगातार वायरल होने लगती हैं तो अचानक लोगों की जो बकेट लिस्ट है कि भाई कहां कहां जाना है उनमें वो बकेट लिस्ट में शामिल हो जाती है और यहां भी ऐसा ही हुआ। आज लोग जब लोहगढ़ किले में पहुंच रहे हैं तो वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने उस पॉइंट को देख लिया जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया, मतलब टिक मार्क हो गया। दूसरा, ये हमारे समाज में बढ़ते डार्क टूरिज्म के बारे में बताता है जिसमें लोग चर्चित अपराधों के घटनास्थल पर जाकर वहां की चीजें देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां की फोटो वीडियो अपनी मौजूदगी दर्ज करके पोस्ट डालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब साल 2024 में मेरठ में, अगर आपको याद हो, मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत का शव नीले ड्रम में चुनवा दिया था, तब हर कोई नीले ड्रम के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था और उस वक्त नीले ड्रम का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि कई शहरों के बाजारों से नीले ड्रम की बिक्री बंद हो गई, उसकी जगह लाल हरे पीले ड्रम बाजार में बिकने लगे। कहने का मतलब यह है कि आज सोशल मीडिया के युग में ऐसी घटनाएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती है। इसके बाद कहीं घटनास्थल को देखने के लिए पर्यटक बढ़ने लगते हैं, कहीं नीले ड्रम की बिक्री पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था, आज भी जहां बड़ी घटनाएं हुई है जब लोग जाते हैं तो वो उन घटनाओं के लिए उन्हें याद रखते हैं। जैसे पिछले साल लाल किले में मेट्रो स्टेशन के पास जो कार ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद अब जब भी लोग वहां से जाते हैं तो ये सवाल पूछते हैं क्या इसी जगह पर यह हमला हुआ था। ये कई जगहों पर होता है। यहाँ एक और चीज ये देखनी होगी कि कोई घटना लगातार समाचारों या सोशल मीडिया पर छाई रहती है तो लोगों को लगता है कि अगर वो उस जगह को देख ले तो उस कहानी को बेहतर समझ पाएंगे। यानी इस मामले में लोग सिर्फ लोहगढ़ किला या सिया पॉइंट देखने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक चर्चित घटना को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को अब स्तब्ध कर रही हैं। हालांकि यहां हम ये भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो लोग लोहगढ़ किले के इस वीडियो को नया वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों की भीड़ का ये वीडियो साल 2023 का है। ये नया वीडियो, अचानक भीड़ पहुंचने का ये नया वीडियो सही नहीं है। खैर, इस सब के बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि केतन अग्रवाल को अपनी मंगेतर सिया गोयल पर पहले से ही शक था। पुलिस के अनुसार केतन ने कई बार अपने परिवार से पूछा कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई थी। उसका कहना था कि जब भी वो सिया को फोन करता है उसका फोन हमेशा बिजी आता है, और बातचीत के दौरान वो बार बार चेतन चौधरी का जिक्र करती थी। केतन को शक था कि सिया किसी और के साथ रिश्ते में हो सकती है, लेकिन परिवार ने उसे ये समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं और सिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और चेतन सिर्फ उसका दोस्त है। यही नहीं, केतन और सिया को परिवार को अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारी और बढ़ाना चाहते थे। वो केतन और सिया की शादी के बाद केतन की बहन से सिया के भाई साहिल की भी शादी करने के बारे में सोच रहे थे, और दोनों परिवारों के बीच तय हुआ था कि एक बार केतन और सिया की शादी हो जाएगी तो इस रिश्ते पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले यह घटना हो गई। सवाल यह उठता है कि अगर केतन को इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उसके परिवार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर केतन के माता पिता ने उसके शक को संजीदगी से लिया होता, पड़ताल होती, तो केतन की जान बच सकती थी, ये हत्या नहीं हो पाती। खैर, इन सबके बीच सिया गोयल का एक नया वीडियो आया है जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रही है और बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। अब शब्दों का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है। ऐसे अब शब्द हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। बहरहाल, ये घटना इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हमारा समाज भी इस पर बटा हुआ नजर आ रहा है। आज ही ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष और डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अच्छा, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वजह क्या थी? इस निलंबन का कारण ये है कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने इंस्टाग्राम पर केतन अग्रवाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और ये कहा था कि अगर केतन अग्रवाल ने अपनी हेयर विक को लेकर झूठ बोला तो इसके लिए तो उसे मरना ही था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर मुस्कान सोनी पर कार्रवाई हुई, उन्हें पद से हटाया गया। देखिए,
1: सो गाइस, क्या देख रही हूँ मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो #IHateMen दो आदमी क्या मर गए, मर्द समाज में डर फैला हुआ।
0: अब इस वीडियो को देखिए जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है और ये वीडियो काफी वायरल है। दावा है कि मेट्रो में सफर के दौरान एक लड़की उस मशहूर नॉवल को पढ़ रही थी जिसका शीर्षक है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विद इट। ये एक डार्क कॉमेडी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताब है जिसे कैटी ब्रेंट ने लिखा है, लेकिन दावा है कि इसे मेट्रो में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका वीडियो एक लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया, इसे वायरल कर दिया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते और ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं सही नहीं है। अगर एक किताब से किसी लड़की को जज किया जाएगा या उस पर सवाल उठाए जाएंगे तो ये हमारे समाज में महिला विरोधी भावना को बढ़ावा देगा, और ऐसा नहीं है कि आपराधिक घटनाएं एक वर्ग के खिलाफ होती हैं और एक वर्ग ही करती है। आज ही नोएडा से खबर आई, एक महिला को उसके हनीमून पर उसके पति ने खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की। इन दोनों की शादी 30 अप्रैल को हुई थी और हत्या की ये कोशिश 4 मई को हुई। हम मानते हैं कि केतन के साथ जो हुआ या उससे पहले जिन घटनाओं में किसी भी लड़के की हत्या की गई वो घटनाएं डराती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद हर महिला को शक की नजर से देखना या इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए फैलाना कि भाई लड़कियां अपने पतियों को मार देंगी या मंगेतरों को मार देंगी, ये कतई सही नहीं।

और अब आपको शौर्य के साथ संस्कार दिखाते हैं। ये तस्वीर देश के नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ से जुड़ी है। कार्यभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने एक ऐसे भावुक क्षण को जिया जिसने पूरे भारत का दिल जीत लिया। जब जनरल धीरज सेठ ने आर्मी चीफ के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया तब उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अपने पिता और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ को सल्यूट किया, उनके पैर छुए। आर्मी चीफ धीरज सेठ के पिता लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ 1997 में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जनरल धीरज सेठ कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। इस खास मौके पर जनरल धीरज सेठ के छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी अपने बड़े भाई और नए सेना प्रमुख को सल्यूट करते नजर आए। रियर एडमिरल रवनीश सेठ इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी हैं। देखिए इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इंग्लैंड दौरे पर गई टीम इंडिया आज अपना पहला T20 मैच खेलने जा रही है और क्रिकेट फैंस की चाहत पूरी हो गई है। आज के मैच में यह माना जा रहा है कि विस्फोटक वैभव सूर्यवंशी खेलने वाले हैं। आयरलैंड के खिलाफ हुए पिछले दोनों T20 मैचेस में वैभव सूर्यवंशी को टीम में मौका नहीं दिया गया था। थोड़ा सा इंतजार है, मुझे लगता है जैसे ही औपचारिक रूप से उनका नाम आ जाता है हम आपको ये खबर बताएंगे। लेकिन टीम इंडिया ये दोनों मैचेस हार गई थी जिसमें वो नहीं खेले थे और ये पहला जो T20 मुकाबला है वो दोनों के बीच में होने वाला है और भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस दिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए असली डॉक्टर्स के पास ही जाएं। और आज वो दिन भी है जब हम और आप मिलकर इस महान जिसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है उन डॉक्टर्स को हमेशा धन्यवाद दें जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना घर का बर्थडे देखा ना अपनी बीमारी देखी बल्कि बस मरीजों का इलाज किया, समर्पित किया है जीवन समाज के लिए। लेकिन असली डॉक्टर्स की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असली से हमारा मतलब है सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स देने वाले हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट फर्जी डॉक्टर्स की एक टोली पकड़ी गई, मोटापा कम करने के नाम पर लोगों को ठग रही थी। ऐसे तो कई सारे संदेश आपको भी आते होंगे। हमारे देश में जानते हैं हर 4 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के मुताबिक 24% महिलाएं 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं और यही वजह है कि देश में हेल्थ इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ी जिसमें सबसे ज्यादा मोटापा कम करने के उपाय बताए जा रहे हैं। लेकिन इसकी आड़ में कई ठग भी मार्केट में उतर चुके हैं जो मोटापा कम करने के नाम पर आपको चूना लगाते हैं। गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर और उस कॉल सेंटर के माध्यम से मोटापे को कम करने के नाम पर लोगों को खूब ठगा जा रहा था। सूरत पुलिस ने यहां से 150 लड़कियों 20 लड़कों को पकड़ा है जो फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट्स फर्जी डॉक्टर्स बनकर लोगों को फंसाते थे। सूरत पुलिस को अपनी छापेमारी में पता चला कि इनके शिकारों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इन लोगों के पास मोटापा कम करने हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक खास स्क्रिप्ट थी जिसे बोलकर ये लोग अलग अलग लोगों से करीब 80 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके थे। 80 करोड़। क्यूरस साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड यही नाम था और ये कंपनी 30 दिन में वजन करने का दावा करती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके विज्ञापन से जुड़ता था वैसे ही गुरुग्राम के कॉल सेंटर से उनके पास एक लड़की का कॉल आता जो खुद को हेल्थ एक्सपर्ट बताती। कॉल सेंटर की यह लड़की मेडिकल सलाह के लिए किसी डॉक्टर से कॉल कनेक्ट कर देती थी जो उसी कॉल सेंटर में मौजूद दूसरा व्यक्ति होता था। ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से खुद को डॉक्टर्स कभी हेल्थ एक्सपर्ट्स ये डॉक्टर फर्जी मेडिकल फाइल BMI जैसे कई फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर ग्राहक को डराते थे। इसके बाद मोटापा कम करने के नाम पर दवाओं की किट कंसल्टेशन की फीस का खेल शुरू होता था। लोगों का वजन कम हो या ना हो क्या मतलब, बल्कि ये हर बार अलग अलग तरीके से लाखों रुपए वसूल कर लेते थे। खास बात यह थी कि कंपनी कैश में डील करती थी। कंपनी के एजेंट ग्राहक के घर जाते थे,
कैश लेते थे, एक फर्जी हेल्थ किट दे देते थे। इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक महिला की शिकायत पर सूरत पुलिस ने जांच शुरू की। महिला की शिकायत थी कि कंपनी ने उससे 81 लाख रुपए मांगे और उसे कहा कि अगर नई दवा नहीं ली गई तो पुरानी दवा से उसे साइड इफेक्ट होगा जो घातक साबित होगा। पुलिस ने जाल बिछाकर पैसा देने के बहाने कंपनी के एक एजेंट को पकड़ा। तब जाकर गुरुग्राम के इस फर्जी हेल्थ सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इस फर्जी कंपनी के बड़े अधिकारी अभी भी फरार हैं। अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको वजन कम करना है तो किसी फर्जी एक्सपर्ट के झांसे में मत आइए, असली डॉक्टर, असली हेल्थ एक्सपर्ट के पास ही जाकर सलाह लीजिए। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी को जगह नहीं मिली है। ऐसा माना जा रहा था कि आज कम से कम उनको टीम में जगह मिलेगी। T20 मैच खेलने जा रही है भारतीय टीम, इंग्लैंड दौरे पर गई हुई है। क्रिकेट फैंस की चाहत माना जा रहा था कि पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आयरलैंड के खिलाफ हुए पिछले दोनों T20 मैचेस में वैभव सूर्यवंशी को टीम में मौका नहीं मिला था, और एक बार फिर से आज भी उनको जगह नहीं मिली है। आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी मौका नहीं है, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये माना जा रहा था कि कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी को आज मैच में उतारा जाएगा। इससे पहले जब आयरलैंड के खिलाफ भी उनको टीम में शामिल नहीं किया गया था तब भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन अब एक बार फिर से टीम में जगह नहीं मिली है। देश में सबसे बड़ा गुनाह क्या है, अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। सबसे बड़ा गुनाह है बैंकों के हजारों करोड़ रुपए डकार कर विदेश उड़ जाना, विकास के नाम पर फाइलों में करोड़ों का घोटाला कर देना, या गरीबों के हक के करोड़ों डकार जाना। शायद नहीं, क्योंकि ये काम बड़े लोग बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं, इसीलिए सिस्टम इसे इतनी जल्दी गुनाह नहीं मानता। सालों सालों तक केस चलता है। इस देश की व्यवस्था की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है अधिकारियों की मीटिंग के बाद बचे हुए कुछ बिस्किट और बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती उठा लेना। यह गुनाह इतना संगीन माना गया कि झारखंड में इसके लिए एक अदने से चपरासी की 17 साल पुरानी नौकरी छीन ली गई क्योंकि बचे हुए कुछ बिस्किट्स उठा लिए थे। झारखंड के बोकारो में रणजीत कुमार हिमांशु 2005 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी की नौकरी कर रहे थे। 17 साल तक ईमानदारी से साहबों की डांट खाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई, लेकिन फिर एक दिन इन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का निजी इस्तेमाल किया है। वो बेशकीमती सरकारी संपत्ति क्या थी, साहबों की मीटिंग के बाद बचे हुए चंद बिस्किट और थोड़ी सी चाय पत्ती। इसके लिए मार्च 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। नोटिस में चाय पत्ती बिस्किट की जगह लिखा गया सरकारी सामान का निजी इस्तेमाल। शायद साहबों को डर था कि चाय पत्ती बिस्किट जैसे सरकारी सामान का नाम लीक होने से देश की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। फिर 2 महीने बाद चंद बिस्किटों की डकैती के जुर्म में जानते हैं इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया गया। 9,950 ये थी इनकी तनख्वाह। 17 साल काम किया इस तनख्वाह पर, और 17 साल इस तनख्वाह पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी ने हार नहीं मानी। मामला अदालत पहुंचा और आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सजा बहुत ज्यादा कठोर है, पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने चपरासी रणजीत हिमांशु की बर्खास्तगी को तुरंत रद्द किया, नौकरी पर वापस रखने और 50% बकाया वेतन देने का आदेश सुनाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि गलती तो हुई थी इसलिए पूरी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी से निकालना सरासर नाइंसाफी है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी उसे सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जरा इस व्यवस्था का तराजू तो देखिए। बड़े बड़े साहब फाइलों के नीचे से चाय पानी के नाम पर करोड़ों डकार जाते हैं, वहां सिस्टम आंखें बंद रखता है, लेकिन एक चपरासी ने शाम को बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती और कुछ बिस्किट क्या जेब में रख ली, खजाने पर हमला मान लिया गया। खैर देर से ही सही, झारखंड हाईकोर्ट ने इंसाफ की चाय में चीनी बराबर कर दी। रणजीत हिमांशु को उनकी नौकरी वापस मिलेगी, लेकिन यह मामला हमारी व्यवस्था की उस दोहरी मानसिकता का सबूत है जो छोटे लोगों पर बाज की तरह झपटती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ उनके सामने यही व्यवस्था भीगी बिल्ली बन जाती है। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहे आप।

0: It's Stormy, and previously on my show, Carly Pearce shared why she loves award show season.
1: For me, celebrating the people who create country music is about celebrating each other and rooting each other on and being a country music family and community and knowing that we are the generation right now that is going to influence many generations to come.
0: Listen to the Stormy Warren Show on the Big 615 weekdays 7 a.m. to 1 p.m. Central right here on TuneIn.
2: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
3: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
4: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
2: मतलब
4: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
2: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
4: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
5: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: ये मजबूर हैं, पर आप नहीं। बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है।
7: तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें।
6: जिंदल स्टेनलेस, इंडिया'स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील।

0: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
1: गहरी सफाई।
0: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
1: गहरी खुशबू
0: और प्यार भरी भी।
1: कैसे?
0: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
2: इसीलिए फेना ही लेना।
3: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
3: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड, नाउ इन इंडिया।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: फेना पावर वॉश अब है और शक्तिशाली।
2: गहरी सफाई।
1: हाँ, पावर वॉश का कमाल।
2: गहरी खुशबू
1: और प्यार भरी भी।
2: कैसे?
1: यह है एक्टिव नीडल्स की शक्ति,
3: इसीलिए फेना ही लेना।
4: भारत और पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क हैं, लेकिन बड़े मतलब पड़ोसी हैं कह सकते हैं। हमने युद्ध भी देखा है। अब आपका भी नाम उस चिट्ठी में है जो लिख रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए।
5: नहीं नहीं, आप एक बात रखिए, आपने अभी ओपनिंग लाइन में पहलगाम का जिक्र किया। पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेल रहे थे ना, बीसीसीआई का निर्णय कौन ले रहा है? हम में से तो कोई फेवर में नहीं था उस वक्त। जो आक्रोश था देश में, आज तक हम नहीं जान पाए कि पहलगाम किसने किया, कौन कल्प्रिट है, कौन अकाउंटेबल है, किसके सर पे तलवार लटकनी चाहिए। चुप्पी साध ली। चलिए पहलगाम से थोड़ा पीछे जाते हैं, पुलवामा। उसका कुछ पता चला? सदन में 3 दफे मैंने पूछा, कोई जवाब नहीं, शून्य, सन्नाटा। महत्वपूर्ण यह है कि एक राज्य और वहां के नागरिक में फर्क, यह महात्मा गांधी बता के गए थे। गांधी से तो बड़ा कोई दार्शनिक भी नहीं हुआ इस देश में, वो बता के गए थे। ये पाखंड क्यों कि पहलगाम के बाद दुबई में क्रिकेट खेलेंगे? क्या वो मौका था? हम तो सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं। म्यूजिक को वैसे भी वीजा नहीं चाहिए साहब। सरहद को पार करने म्यूजिक को वीजा नहीं चाहिए, लिटरेचर को नहीं चाहिए। हम चाह रहे हैं वो ईज आउट करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो आप किसी के इशारे पे श्रीलंका में बैठ रहे हैं, और अगर सिविल सोसाइटी के और कुछ प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ और ने पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की, तो मैं देख रहा हूं कि उसको तिल का तार बनाए हुए हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं राम माधव वाले पे कह रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, वो डिनाई कर रहे हैं। 6 महीने इंतजार करिए, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने, ये भी पता चल जाएगा किसके इशारे पे ये तथा कथित ट्रैक टू बातचीत हो रही थी। हम तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, नथिंग मोर नथिंग लेस।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. और मशहूर होने का फॉर्मूला बदल गया है. अब हुनर की जरूरत नहीं, बस अपनी गरिमा को ऑनलाइन ट्रेंड पर चढ़ाना आना चाहिए. नमस्कार.
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स. अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना. टंकी मतलब
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज खबर चढ़ावा चोरी के खजांची की। श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोर पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आज सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित। श्री राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जांच टीम पूछताछ का ढोल तो पीट रही है और ढोल तो खूब बजा रही है, लेकिन पूछताछ का परिणाम ढाक के 3 पात। ट्रस्ट के जिम्मेदार, जिनके नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धन लुट गया, अब वही जिम्मेदार अपनी जवाबदेही से बचने की जुगत भिड़ा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ ठीकरा फोड़कर खुद को पाक साफ बता रहे हैं। तो सवाल यही है कि ट्रस्ट के इन बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका नहीं है तो फिर ये अपनी जुबान सिलकर क्यों बैठे हैं? क्या जिम्मेदारों का मौन चढ़ावा चोरी कांड पर पर्दा डालने की कोशिश का एक हिस्सा है?
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब? राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमयी बक्से से खुलेगा चोरी का राज? चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली? आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया? चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपत राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़

0: रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बुरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो राम मंदिर में, जिसने 40% कमीशन लिया? आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चहावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
2: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी, आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना बड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत से ये चोरी करना संभव बिल्कुल नहीं है। आपको चढ़ावे में चोरी करने वाले आरोपियों के ठिकाने से बरामद हुई चढ़ावे की रकम का पूरा हिसाब किताब आइए अब हम दिखाते हैं।
1: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9 नोट, $10 के 3 नोट, $5 के 2 नोट और $1 का 1 नोट शामिल है। कुल $1,121 बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
3: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
3: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, हम आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया, तो इतना तो साफ है।
2: और अब खबर मिशन 2027 की। विपक्ष अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर अपनी चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी राजनीति साध रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों का धुआंधार दौरा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी के कार्यक्रमों की रफ्तार काफी तेज हो गई है। आइए आपको दिखाएं योगी धुआंधार।
1: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
1: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती
5: है। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
1: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये आठवां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट गुर्जर मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
7: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
1: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
8: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
1: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
7: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
1: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
7: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
2: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, जेपीसी की रिपोर्ट आई है संविधान संशोधन को लेकर। ये खबर है 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट जल्द। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता, 17 जुलाई को रिपोर्ट पेश होगी, हिमांशु क्या होगा इसमें?
9: देखिये साइड, जो संविधान का 130वां संशोधन बिल है इसके अंदर जो है ये एक ऐसा संविधान में संशोधन है जिसमें अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में कोई मंत्री अगर पद पर रहते हुए किसी भी केस में चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग हो या अन्य भ्रष्टाचार का केस हो, क्रिमिनल केस हो या कोई और केस हो, अगर उसमें 30 दिन वो जेल में रहते हैं तो उनको स्वेतता अपने पद से वो मुक्त हो जाएंगे। इससे पहले इस तरीके के कई एग्जाम्पल आए हैं जब जो है जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसके ताजा उदाहरण है पिछले दिनों में। तो इस व्यवस्था में कि राजनीति में किसी भी तरीके का अगर कोई आरोप है और आप 30 दिन जेल में रहते हैं तो ऐसे में आप अपने पद से इस्तीफा ना दें तो भी आप अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा संविधान में संशोधन जो है वो लाया जाएगा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 17 तारीख को। ये इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट होगी। इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के बाद सभी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं वो अपने अपने डिसेंट या अपने अपने जो सुझाव है वो देंगे और उसके बाद।
2: बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। दशक में यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे पीओके में बगावत, आई मुनीर की शाम। आप देखते रहिए दस्तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: TuneIn is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: अरे वाह, तू भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज करती है?
5: हाँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न्स है ना।
2: गारंटीड रिटर्न्स? तेरी ट्रेडिंग ऐप ऑथेंटिक तो है ना?
5: अर्ज किया है
2: पहले, गारंटीड और हाई रिटर्न्स का भरोसा ये दिलाते हैं, फिर फेक ऐप डाउनलोड करा के अपने झांसे में फंसाते हैं।
6: वाँ वाँ वाँ वाँ वाँ।
2: सेबी और NSE का कहना है सेबी इन्वेस्टर साइट पर वेरिफाइड एप्स की लिस्ट से ही ऐप डाउनलोड करें।
7: सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
8: NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
3: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU सोच बदलो और बैंक भी।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: नहीं इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: हमने तब भी सवाल किया था।
15: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
14: हम आज भी सवाल करते हैं।
15: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
14: ऑपरेशन अग्नि।
15: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
14: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार सिर्फ आज तक पर।
16: In association with
17: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
18: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक। देखते रहिए आज तक।

0: पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने शिवलिंग की ये तस्वीरें आस्था के समंदर में तूफान पैदा कर रही हैं। बम बम भोले और महादेव के जयकारे पहाड़ों से टकराकर गूंज रहे हैं। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र गुफा के दर्शन किए और प्रथम पूजा की। मंत्रोच्चारण के साथ होने वाली इस पूजा को हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ माना जाता है। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। शंभू बैरियर से लेकर माधोपुर तक पंजाब की सीमा में आने वाले प्रमुख मार्गों पर सुरक्षा नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर वाहन की गहन जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है।
1: अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के बड़े स्तर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तैयारियां की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है। मैं बालटाल के उस रूट पर मौजूद हूं जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये वैली क्यूईटी के कमांडो हैं जो कि आपको दिखाई पड़ रहे हैं सड़कों पर और किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
0: NH-44 जहां पर अमरनाथ यात्रा के यात्री गुजरेंगे वहां वैली क्वेट के जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। टूरिस्ट कश्मीर घाटी और डल लेक घूमने के लिए आ जाते हैं, लिहाजा CRPF ने ऑपरेशन डल चलाया है। बाबा बर्फानी के दर्शनों की आस लिए अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और यात्रा को सुगम बनाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: CRPF डल लेक की भी सुरक्षा यहां पर करती है क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो यात्रा करने के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में घूमने के लिए निकल जाते हैं, खासतौर पर डल लेक में। इसलिए जो CRPF के कमांडोज हैं ये पूरी तरीके से आप चारों तरफ देख रहे हैं कि डल लेक की सुरक्षा के लिए बड़े स्तर पर यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां CRPF के कमांडो 2400 घंटे निगरानी करते हैं क्योंकि यहां खतरा काफी रहता है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा संख्या में आते हैं, साथ ही अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री भी इस पूरे इलाके में पहुंचते हैं। इस वजह से यहां पर जो CRPF के कमांडोज हैं वो ऐसे ही डल लेक में गश्त मारते हैं और गश्त के दौरान किसी भी संदिग्ध स्थिति को नजर उनके द्वारा रखा जाता है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो यहां पर अगर कोई आतंकी घटना करने की कोशिश करता है या फिर किसी और तरीके की यहां पर स्थिति पैदा होती है उससे बचाने के लिए तमाम CRPF के कमांडो यहां पर मौजूद रहते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ईरान पर फिर से बड़े हमले की तैयारी में ट्रंप। सैन्य अफसरों के साथ वॉर प्लान पर हुई बैठक। नेतन्याहू बोले तीसरी बार हमले की तैयारी शुरू। ईरान का ऐलान झुकेंगे नहीं, अब महायुद्ध लड़ेंगे। धमकी और चेतावनी में उलझ गई पीस डील। ट्रंप का खेल, क्या पीस डील हो जाएगी फेल? दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच जिस वार्ता का ऐलान ट्रंप ने खुद किया था, उसी वार्ता का डंके की चोट पर ईरान ने बॉयकॉट कर दिया। भले ही अमेरिकी डेलीगेशन वार्ता के लिए दोहा पहुंचा, लेकिन ईरानी वार्ताकारों ने अमेरिकी डेलीगेशन के साथ मिलने से साफ इनकार कर दिया। दावा किया कि जब तक अमेरिका शांति समझौते के एमओयू में मौजूद सभी शर्तों का पालन नहीं करता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अगले कुछ दिनों में अमेरिकी अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं होने वाली है। दोहा में हो रही बातचीत सिर्फ एमओयू के क्रियान्वयन और ईरान के फ्रोजन एसेट्स को रिहा करने से संबंधित तकनीकी चर्चा है, न कि राजनीतिक वार्ता। ईरान के इसी बयान को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने सिरे से खारिज कर दिया। वैंस का दावा है कि दोहा में ईरान और अमेरिकी वार्ताकारों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान झूठ बोल रहा है। वो कहेंगे नहीं नहीं, शांति वार्ता नहीं चल रही है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को लेकर तकनीकी वार्ता हो रही है। ये बातचीत करने की फारसी चाल और अंदाज है जिसे मैं समझ नहीं पाता। ईरानी क्या कहते हैं इसके हमें बहुत कम परवाह है, वो क्या करते हैं इस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। भले ही अमेरिका को तेहरान से उत्साहजनक और चिंताजनक दोनों तरह के संकेत मिले हैं, लेकिन कोई भी पक्का समझौता तभी होगा जब ईरान वास्तव में कुछ बड़े समझौते करे। भले ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने दोहा में बातचीत का दावा किया हो, खुद ट्रंप ने भी यही कहा कि दोहा में ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, लेकिन अमेरिका के दावों को कतर का बयान सवालों के घेरे में खड़ा करने को काफी है। कतर के विदेश मंत्रालय ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया है कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच कोई सीधी बैठक नहीं हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधियों की ईरानी अधिकारियों से सीधी मुलाकात तय नहीं है, लेकिन ट्रंप के प्रतिनिधि मध्यस्थों से मिलेंगे और वार्ता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। कतर ने ये भी बताया है कि ईरान के फ्रीज हुए $6 अरब अब तक उसे ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। मतलब यही है कि अमेरिका के साथ ईरान ने बातचीत को ठेंगा दिखा दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की तो ईरान भी महायुद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने हॉर्मुज और अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ईरान और अमेरिका के बीच वर्तमान चर्चा एमओयू के 14 पॉइंट समझौते को लागू करने पर केंद्रित है, न कि अंतिम समझौते पर। एमओयू के तहत नौसैनिक नाकेबंदी हटाई गई, जो ईरान के लिए बड़ी सफलता थी। इसके बाद ईरान 4 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल निर्यात कर चुका है। हुर्मुज पर ईरान और ओमान का संप्रभुत्व है। एमओयू के 60 दिनों की अवधि के बाद ईरान यहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल करेगा। ईरान परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य है और आईएईए की निगरानी में है। ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट को अपना अधिकार मानता है। एनपीटी नियमों का पालन किया जा रहा है। हम बातचीत के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन अगर बातचीत सफल नहीं होती तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं और उसी के अनुसार जवाब देंगे। ईरान न तो झुकेगा और न ही हॉर्मुज और परमाणु प्रोग्राम को लेकर पीछे हटेगा। वहीं अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स की माने तो हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले के विकल्पों पर रक्षा मंत्री और सेना के टॉप अफसरों के साथ मंथन कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ दिनों में ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन केन समेत सेना के टॉप अफसरों के साथ ईरान पर नए हमलों के विकल्पों पर चर्चा की है। मीटिंग का एजेंडा था क्या अमेरिका को कूटनीतिक रास्ता छोड़कर बड़े पैमाने पर हमले फिर से शुरू करने चाहिए। क्या हॉर्मुज पर ईरान की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कूटनीति नहीं बल्कि युद्ध नीति जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शर्तों के साथ फिर से युद्ध में जाने की इजाजत दे दी है। अगर ईरान शांति समझौते के एमओयू का उल्लंघन करता है तो एक बार फिर ईरान पर हमले की छूट है। ट्रंप यही मानते हैं कि अभी बातचीत से समाधान तलाशना है, लेकिन प्लान बी भी तैयार रहना चाहिए। वैसे इससे पहले भी ट्रंप ईरान पर बड़े हमले के संकेत दे चुके हैं।
1: And we're going after the bad ones first. We're getting them out. Last week, we signed a historic agreement to accomplish what no president has ever been able to accomplish before, that Iran will never have a nuclear weapon. We're not going to let that happen. And thanks to the power and skill of the United States Armed Forces, Iran today has no Navy, no Air Force, no anti-aircraft capability, no radar, virtually no manufacturing. Their drone capacity has been cut by 82%. Their missile capacity has been cut by 80%.
0: ट्रंप की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। कभी शांति की बात करते हैं तो कभी युद्ध की, कभी लेबनन को लेकर इसराइल को धमकाते हैं, कभी नेतन्याहू को चेतावनी देते हैं। लेकिन ट्रंप की चेतावनी के बावजूद न तो लेबनन पर इसराइल के हमले रुके और न ही नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान शांति समझौते को मंजूरी दी। उल्टा नेतन्याहू भी धमकी दे रहे हैं कि ईरान पर किसी भी वक्त इसराइली सेना तीसरी बार हमला कर सकती है। ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इसराइल स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करेगा। अगर इसराइल की सुरक्षा मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एक और अभियान चलाया जा सकता है। अगर जरूरी हुआ तो इसराइल तीसरा हमला करने के लिए तैयार है। एक तरफ नेतन्याहू ने इसराइल पर तीसरी बार हमले की धमकी दी तो दूसरी तरफ ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ रिश्ता टूटना मंजूर है, लेकिन लेबनन से अपनी सेना वापस बुलाना कबूल नहीं। मैं अमेरिकी मदद को रोकना चाहता हूं। ये किसी खैरात जैसी है और मुझे ये नहीं चाहिए। इसराइल की अर्थव्यवस्था अब छोटी नहीं रही। अमेरिका से हमें जो मदद मिलती है वो हमारी जीडीपी का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है जिसे हम खुद संभाल सकते हैं। इजरायली सेना लेबनन के इलाके से पीछे नहीं हटेगी। इसराइल ने लेबनन की सरकार की सहमति से उसकी सीमा के अंदर लगभग 10 किलोमीटर तक एक सुरक्षा घेरा बना लिया है जिससे हिजबुल्ला और ईरान बौखलाए हुए हैं। जब तक खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता हम दक्षिणी लेबनन नहीं छोड़ेंगे। जब तक हिजबुल्ला हथियारों के साथ वहाँ मौजूद है और हमें डरा रहा है हम वहीं डटे रहेंगे।
2: इन बदलती परिस्थितियों में क्या दोबारा युद्ध में जाने की तैयारी है? आइए हम आपको सीधे हमारे साथी सुमित चौधरी के पास लिए चलते हैं। सुमित, इस परिस्थिति में आगे क्या होगा?
3: सही, इस समय जब आप और मैं बात कर रहे हैं तो सबसे खास बात यह कि ईरान और अमेरिका के बीच में इनडायरेक्ट टॉक चल रही है नेगोशिएशंस में, और जो मुख्य चीजें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं वो तो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और दूसरा ईरान की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से अपनी जो एसर्ट्स हैं यानी जो अपनी संपत्ति है, अपना जो पैसा है, उसको डीफ्रीज करा सके। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके ऊपर लगातार अमेरिका फोकस किए बैठा है, अमेरिका लगातार ईरान को प्रेशराइज कर रहा है, वो है कि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए या फिर उसके लिए एक हामी भर ले और उसी को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग साइन भी कर दे। लेकिन ईरान ये मानने को तैयार नहीं। ईरान का पहला फोकस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और डीफ्रीजिंग ऑफ एसर्ट्स। ये दो मुख्य कारण हैं जिसको लेकर इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में चल रहा है। लेकिन जैसे ही इजराइल ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अपने मिलिट्री तैयारियों का लेकर जिक्र किया, ऐलान किया, उसके बाद से चीजें और ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ईरान ने भी कहा है कि अगर इस तरीके का अटैक चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या इजराइल की तरफ से हो तो वो इस एमओयू का उल्लंघन माना जाएगा और सीधे तौर पर फिर ईरान को भी एक नए वॉर के लिए आना पड़ेगा या फिर वो नए फेज ऑफ ऑपरेशंस के लिए तैयारियां करेगा। अभी के मौजूदा हालात में जो लगातार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ईरान चाहता है कि वो अपने सुप्रीम लीडर की जो फ्यूनरल सेरेमनी है 9 जुलाई तक उसको निपटा ले, उन चीजों को, परिस्थितियों को ठीक कर ले, क्योंकि करीबन 120 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है 28 फरवरी के बाद से, लगातार सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद उनकी जो सेरेमनी है, उनकी जो फ्यूनरल सेरेमनी है वो अब तक नहीं हो पाई, और ईरान उसमें अपनी ताकत भी दुनिया को दिखाना चाहता है। 40 से ज्यादा देशों से लगातार उनके डिप्लोमैट्स हो, उनके एक्सपर्ट्स हो या फिर जो स्टेट हेड्स हो, वो लगातार ईरान में पहुंचे, तो ईरान उसको बहुत शांति के तरीके से संपन्न करना चाहता है और इसीलिए लगातार वो नेगोशिएशंस में अपनी भागीदारी हो, अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि 4 जुलाई का जो इवेंट है, जो 250 साल अमेरिका के हो रहे हैं, उसको पूरा करना चाहता है और उसी के बाद लगातार वो किसी बड़े ऑपरेशन में जाने की तैयारियां करेगा या उसके बारे में विचार करेगा। लेकिन अभी ये जरूर है कि अगले 10 से 15 दिन दोनों देश नेगोशिएशंस में ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन इसी दौरान अगर इसराइल कोई बड़े एक्शन ले लेता है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर निश्चित तौर पर ईरान के लिए भी मिलिट्री परस्पेक्टिव के हिसाब से, मिलिट्री आप कह सकते हैं सिनेरियो के हिसाब से उसमें जाना उसके लिए मजबूरी बन जाएगी। और शायद इन्हीं घटनाक्रमों को देखते हुए माना जा रहा है कि शायद परिस्थितियां बहुत जल्दी बदलने वाली है।
2: बहुत धन्यवाद आपका सुमित, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, शुभ रात्रि।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
5: Talk Sport presents The S Word with Will Gavin and Master Tesfasyon.
6: We're finally giving North American football fans the show they deserve.
7: Fiery fan debate, in-depth analysis, and plenty of fun along the way.
6: We're here Monday to Friday, 8 till 10 Eastern, and every single day of the World Cup.
7: Remember, around here, we use the F Word.
6: Never the S Word.
5: The S Word, available now on TuneIn,
8: wherever you get your podcasts,
5: and on the S Word YouTube channel.
9: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
10: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU
9: सोच बदलो और बैंक भी।

0: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेन देन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
1: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है। क्या ये मंदिर प्रशासन का है और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुंचा था। इस मकान में मौजूद लोग बताते हैं कि डॉक्टर चैतन्य का योग केंद्र है। यहाँ की प्रशिक्षक सीमा तिवारी बताती हैं कि गुरुजी ने ही अविनाश के भाई अभिषेक को शरण दी और तब उसे नौकरी मिली और उसने अविनाश को भी यहाँ बुला लिया था।
2: गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ाया लिखाया, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की, उसको शरण दी उन्होंने यहाँ पर और अभी पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली। फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दें ताकि वो भी कुछ
1: अभिषेक अविनाश को लेकर आए
2: अपने भाई को अविनाश को लेकर आया।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
3: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
7: और राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में भले टिन्नू यादव सबसे बड़ा नाम हो, लेकिन बड़े खुलासे छोटी कड़ियों के हवाले से हो रहे हैं। मंगलवार को अयोध्या पुलिस ने जेल में जाकर ऐसे ही एक आरोपी अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम ने अविनाश शुक्ला से दान के पैसों के गलत इस्तेमाल और नकदी की लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे थे। पुलिस की पूछताछ इसलिए भी बहुत अहम साबित हुई क्योंकि सूत्रों के अनुसार FIR दर्ज होने से कुछ हफ्ते पहले 5 जून को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शुक्ला से 20 लाख रुपए बरामद किए थे। आज तक की टीम कौशलपुरी के उस योग साधना केंद्र तक पहुंची जहां अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था।
8: तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है और हम इस योगा केंद्र में दाखिल होंगे और आपको लेकर चलेंगे इस योगा केंद्र में और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस योगा केंद्र में है। एक रहस्यमयी बक्से की भी बात यहाँ हो रही है। ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमयी बक्सा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
7: ये पता नहीं चल पाया कि आखिर रामराज दान कोष के स्टिकर और QR कोड वाला बक्सा किसका है। क्या ये मंदिर प्रशासन का है, और अगर हाँ तो मंदिर परिसर से बाहर निजी इमारत में कैसे पहुँचा था। इस केंद्र के निवासी बताते हैं कि प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला पेशे से शिक्षक है, उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम अब इस पूरे मामले में दान चोरी करने के तरह तरह के तरीकों का पता लगाने की, चोरी की रकम के लेन देन का पता लगाने, आरोपियों को दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से रूबरू कराने और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के लिए कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है।

प्रधानमंत्री और सीएम की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपीज के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 कैश बरामद। मिशन 2027 को लेकर सीएम योगी की यूपी में धुआंधार रैलियां। सहारनपुर में अखिलेश पर साधा निशाना। बोले एसपी के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसे होते थे खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेस वेज। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा है जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पुणे पुलिस ने केतन की मौत का मजाक बनाकर रख दिया है। केतन की मौत का सच जानने के लिए दो दो बार जो डमी ट्रायल किया गया और जिसको लेकर पुणे पुलिस ने सुर्खियां बटोरी, वो सब कुछ सिर्फ तमाशा निकला। 28 जून को सिया ने पहाड़ी पर जाकर पुणे पुलिस के कहने पर जिस डमी को धक्का दिया था, वो डमी पिछले 3 दिनों से पहाड़ी के नीचे लावारिस हालत में पड़ी है। इस दौरान पुणे पुलिस या फॉरेंसिक टीम का एक भी सदस्य उसकी जांच के लिए वहां नहीं पहुंचा। अब सवाल यह है कि बिना जांच के डमी ट्रायल का नतीजा पुलिस या फॉरेंसिक टीम कैसे पता करेगी। यह तस्वीर तो याद होगी आपको, अभी 3 दिन पहले की ही तस्वीर है, जब 28 जून को पुणे पुलिस पूरे तामझाम के साथ सिया को अपने साथ लोगढ़ किले की पहाड़ी पर ले गई थी सुबह सुबह। फिर पहाड़ी की चोटी से खबर आई कि पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने केतन के कदकाठी और वजन की एक डमी तैयार की है, जिसे सिया के हाथों ठीक उसी जगह से नीचे फिकवाया गया जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। पहाड़ी से सिर्फ खबर इसलिए आई थी क्योंकि पुलिस ने उस दिन मीडिया के ऊपर आने पर रोक लगा दी थी। बाद में एक धुंधली सी तस्वीर आई जिसमें पहाड़ी से एक पुतले को नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। पुणे पुलिस का रिक्रिएशन खत्म होता है, डमी खाई में जाती है और पूरी पुलिस टीम सिया को कुछ इस अंदाज में अपने साथ नीचे लाकर मीडिया के भीड़ के बीच गाड़ी में बिठाकर चली जाती है।

0: इसके बाद हर चैनल पर खबर थी, खबर पुणे पुलिस के रिक्रिएशन और डमी ट्रायल की। लोगों को लगने लगा सच में पुणे पुलिस बहुत मेहनत कर रही है। लेकिन अब जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं और उस तस्वीर की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे देख सुनकर भी आपको बड़ी मुश्किल से यकीन आएगा। ये लोहगढ़ किले की खाई में पड़ी एक डमी है और ये तस्वीर 1 जुलाई की है, यानी आज की। जानते हैं ये किसकी डमी है, इसे किसने ऊपर से नीचे फेंका और ये यहां अब भी इस तरह लावारिस हालत में क्यों पड़ी है? तो सुनिए, ये केतन की वही डमी है जो 28 जून को पुलिस और फॉरेंसिक टीम के कहने पर सिया ने पहाड़ी से नीचे धक्का देकर फेंका था। ये डमी पिछले 3 दिनों से इस जगह पर इसी तरह लावारिस पड़ी है। पिछले 3 दिनों में पुणे पुलिस या फॉरेंसिक टीम का एक भी मेंबर यहां ये देखने नहीं आया कि डमी ट्रायल के दौरान ये डमी ऊंचाई से नीचे कहां गिरी, कितनी दूरी पर गिरी और क्या केतन की जहां से लाश बरामद हुई थी ये उसी जगह पड़ी है। हद तो यह है कि पुणे पुलिस ने इस डमी को यहां से ले जाने की अब तक जहमत भी नहीं उठाई, ये यहां यूं ही लावारिस पड़ी है। अगर इस डमी के इर्द गिर्द आप ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको क्राइम सीन वाला कोई मार्क भी नजर नहीं आएगा। जब पुलिस ही यहां नहीं आई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यहां नहीं झांका, तो क्राइम सीन के मार्क कौन लगाएगा? अब ऐसे में सवाल है कि फिर रिक्रिएशन या डमी ट्रायल के नाम पर पुलिस ने इतना तमाशा क्यों किया? तमाशे के साथ साथ सरकार का इतना खर्चा क्यों करा दिया? इस तमाशे और तमाशे के सच पर बाद में आएंगे, उससे पहले पुणे पुलिस के नए तमाशे को भी देख लीजिए। 28 जून को सिया के बाद 1 जुलाई को वही पुणे पुलिस इस बार चेतन को अपने साथ लेकर इसी किले की पहाड़ी पर उसी जगह पहुंची जहां से 18 जून को केतन को धक्का दिया गया था। एक बार फिर से डमी का तमाशा शुरू होता है। एक बार फिर से पुणे पुलिस केतन के कदकाठी और वजन का एक नया पुतला लेकर क्राइम सीन पर पहुंचती है। 28 जून को सिया थी, 1 जुलाई को चेतन। 28 जून को जो सिया से कराया गया था, 1 जुलाई को वही चेतन से करने को कहा गया, यानी केतन की डमी को ठीक उसी तरह खाई में धक्का देना। केतन ने भी धक्का देकर डमी खाई में फेंक दिया। पुलिस का काम खत्म हुआ। फिर पुणे पुलिस उसी तमाशे के साथ चेतन को लेकर नीचे आई और चली गई, पर यह बताकर गई कि वो क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने और डमी ट्रायल के लिए आई थी।
1: आज हमने सुबह चेतन चौधरी को, जो अक्यूज्ड है, उनको हम जो भी घटना स्थल है वहाँ पे रिक्रिएशन के लिए लेके गए थे और जैसी घटना हुई उसी हिसाब से हमने मेमोरेंडम में वो रिक्रिएशन किया हुआ है।
2: लेकिन कहाँ कहाँ मतलब उसको ले जाया गया, क्योंकि क्राइम में यानी कि सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि चेतन जो है सिया और केतन के पीछे है, मतलब इसी तरह से वो रिक्रिएशन किया गया है?
1: जैसी सिचुएशन थी उसी हिसाब से अक्यूज ने जैसे बताया हमने वो स्पॉट रिक्रिएट किया हुआ था क्राइम में।
2: लोहगढ़ पर कितने जो है ठिकानों पर वो रुके थे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था?
1: जैसे मैंने कहा जहाँ जहाँ वो रुके थे, जहाँ पे उन्होंने स्पॉट दिखाए वो हमने
2: ठिकानों पर रुके थे वहाँ पे।
1: वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पर जहाँ रुके थे उन्होंने हमें बताया।
2: डमी भी यूज किया है, कितने किलो का था और किस तरह से धक्का दिया गया?
1: हाँ, हमने डमी का यूज किया था। केतन जो ये हुए है इसमें उनका जो वेट था उसके वजन का हमने डमी यूज किया था उसमें।
2: लेकिन सिया को भी आपने मतलब केतन को धक्का देने का जो रिक्रिएशन किया था, अब जो चौधरी है उसको भी धक्का देने का ये किया रिक्रिएशन, मतलब ये दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर?
1: ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम अलग अलग उसमें हमने चेक किया कि कैसे कैसे सिचुएशन हुई थी।
0: तो खुद पुणे पुलिस की जुबानी आपको क्राइम सीन के रिक्रिएशन और डमी ट्रायल के तमाशे की कहानी सुना दी। अब चलिए इस पूरे तमाशे के बाहर का पूरा सच सिलसिलेवार आपको सुनाता हूँ। पहले 3 दिन से लावारिस पड़ी इस डमी जो कि सिया ने 28 जून को नीचे फेंका था, उसका सच बताता हूँ। डमी ट्रायल पुलिस क्यों करती है? चलिए केतन का ही केस ले लेते हैं। केतन की मौत पहाड़ी से नीचे गिरने की वजह से हुई। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो केतन खुद फिसल कर गिरा या उसे धक्का देकर गिराया गया। पर ये कैसे पता लगे? तो फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर पुणे पुलिस ने ठीक केतन के कदकाठी और वजन का पुतला तैयार किया। इसके बाद ये मानकर कि सिया ने ही केतन को धक्का दिया था, सिया से उस पुतले को उसी जगह से नीचे धक्का देने को कहा गया। सिया ने धक्का दे दिया, पर अब सवाल ये है कि सिया ने जिस पुतले को धक्का दिया था वो नीचे कहां जाकर गिरा, कितनी दूरी पर गिरा। जाहिर है ये जांचने के लिए पुलिस और फॉरेंसिक टीम को नीचे उस जगह पर जाकर उस पुतले को जांचना था कि वो कितनी दूरी पर गिरा।
3: हमारे यहाँ फॉरेंसिक में इम्पोर्टेंट चीज होती है दो तीन, दो किसी भी बात की सच्चाई तक जाने के लिए। सबसे पहला होता है रिकंस्ट्रक्शन, जो हम लोग सीन ऑफ क्राइम के ऊपर करते हैं। सीन ऑफ क्राइम पे एक्चुअली जो फिजिकल एविडेंस या मूक साक्ष्य होते हैं उनके आधार पे हम घटना का पुनर्निर्माण करके ये बात जानते हैं कि ये बात सच है कि नहीं। अब बात आती है रिक्रिएशन की। रिक्रिएशन में कोशिश ये रहती है कि जैसा एक्चुअली घटा वैसा का वैसा चीजें बनाई जाएं, या जैसे इस केस में पर्टिकुलरली बॉडी वेट है, आदमी की हाइट है, व्हाटएवर, तो उस तरीके से रिक्रिएशन किया जाता है। अब बात ये है कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हाइट जो है वो जो भी है पहाड़ है चुकी।
0: पर जब पुणे पुलिस और फॉरेंसिक टीम सिया के पुतला फेंकने के बाद नीचे गए ही नहीं, तो ये कैसे पता चलेगा कि धक्का देने पर नीचे केतन कहां गिरता या खुद फिसलने पर वो नीचे कहां जाकर गिरता। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुणे पुलिस ने इस डमी ट्रायल का तमाशा किया ही क्यों, जब किसी ने नीचे जाकर ये देखा ही नहीं कि पुतला कहां और किस पोजीशन में गिरा है। अब ऐसे में वो अपनी जांच रिपोर्ट में इस डमी ट्रायल का नतीजा क्या लिखेंगे? मतलब तीन दिन हो गए, बेचारा पुतला लावारिस पड़ा है, जंगल को छानकर मीडिया वाले लावारिस पुतले से मिलाए, पर क्या मजा जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम जंगल में कुछ पैदल चलकर पुतले से मुलाकात कर लेते।
3: डमी ट्रायल जो है एक इंसान के ऊपर नहीं होती है, सिमिलर वेट हाइट के व्यक्ति से डमी ट्रायल किया जाता है, और जब डमी ट्रायल किया जाता है तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि वो डमी गिरा कहाँ पर, डमी गिरा और उसके ऊपर क्या क्या निशान आए, या कहाँ कटा या कहाँ फटा या कहाँ पर स्क्रैचेस हैं उसके कपड़ों के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी व्यक्ति ऊपर से गिरा या फेंका गया तो उसकी बॉडी कहाँ मिली और हमें डमी कहाँ मिलता है, तो ये दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी किया जाना चाहिए। तो ये बात पता चलेगी कि हमने कितना सही जो है आकलन किया था। तो नीचे गिरने के बाद डमी का प्रॉपर एग्जामिनेशन होना चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने ऑटोप्सी किया होगा उनसे या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम के साथ में उसका एग्जामिनेशन डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स की बात तो छोड़ दीजिए, इंटरनल ऑर्गन्स तो जाहिर बात है डमी में नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्सटर्नल जो भी साइन है, सिम्टम्स हैं, वो उनको अकाउंट में लेना जरूरी है।
0: वैसे भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की माने तो डमी ट्रायल सच्चाई के करीब कम और तमाशा ज्यादा होता है। किसी बिल्डिंग या ऊंची इमारत से अगर कोई गिरता है तो उसके गिरने का इम्पैक्ट या वो कितनी दूरी पर गिरता है ये लगभग साफ होता है, क्योंकि बिल्डिंग या इमारतें सीधी खड़ी होती है। अगर नीचे कोई बालकनी या छज्जा हो और उससे टकरा कर कोई नीचे गिरता है तो भी उस छज्जे या बालकनी की जांच से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पहला इम्पैक्ट कहां पर हुआ था।
3: अगर कोई बिल्डिंग है तो उसमें नॉर्मली जहां प्रोजेक्शन होगा वही प्रोजेक्शन के ऊपर पहले आदमी टकराएगा, चाहे वो बालकनी हो चाहे वो कोई छज्जा हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अदरवाइज तो बिल्डिंग स्ट्रेट होती होगी।
0: पर पहाड़ पर तो डमी ट्रायल का मतलब ही नहीं बनता। एक तो पहाड़ की ऊंचाई काफी होती है, दूसरी पहाड़ बिल्डिंग या इमारतों जैसी सीधी खड़ी नहीं होती। अगर कोई शख्स पहाड़ की बुलंदी से नीचे गिरता है तो वो कभी भी सीधे नीचे खाई में जाकर नहीं गिरेगा, वजह ये कि पहाड़ से जुड़े बड़े बड़े चट्टान होते हैं। आड़े तिरछे पहाड़ों पर ये चट्टान कई कई फीट आगे की तरफ निकले होते हैं। अब पहाड़ से गिरने वाला गिरते वक्त पहले किस चट्टान से टकराया ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर वो चट्टान से टकराकर नीचे गिरा है तो जाहिर है टकराने के इम्पैक्ट की वजह से वो पहाड़ी से दूर जाकर गिरेगा। जैसे इमारत से गिरने पर अगर किसी बालकनी या छज्जे से कोई टकराता है तो उसकी तो जांच हो सकती है, क्योंकि टकराने के चलते वहां पर खून के निशान, चमड़ी, बाल या कपड़े के टुकड़े आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन खड़ी पहाड़ी पर अगर किसी चट्टान से कोई टकरा कर गिरा है तो एक तो उस चट्टान का पता लगाना और फिर उस चट्टान तक जाकर वहां से खून, बाल, चमड़ी या कपड़ों के टुकड़ों जैसे सबूतों को ढूंढना लगभग नामुमकिन है।
3: लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि इस केस में इसमें जो है पहाड़ वाले इशू है। अब पहाड़ जो है, पहाड़ की जो भी हाइट है, क्योंकि उसका सब ज्ञान मुझे नहीं है, तो जो भी हाइट है उस हाइट से जब आदमी गिरेगा, फिसल के गिरेगा या कोई धक्का मारेगा व्हाटएवर, तो जो भी प्रोजेक्शन होगा, अब बीच में चट्टान मान लीजिए कोई 6 फीट की है, 4 फीट की है, 10 फीट की है, 12 फीट की है, तो फर्स्ट हिट तो वहाँ जहाँ फर्स्ट हिट होगा वहाँ पर फिजिकल एविडेंसेस या साक्ष्य मिलेंगे, जैसे ब्लड है, फाइबर है, टिश्यू है, ये चीज़ें, हेयर है, इस तरीके की चीज़ें फर्स्ट कॉन्टैक्ट पर जहाँ वो टकराएगा वहाँ पर वो मिलेंगे। लेकिन इस केस में चूंकि हाइट बहुत है, पहाड़ का मामला है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें उस तरीके से ये एविडेंसेस खोज पाए जाएंगे।
0: अब यहाँ पुणे पुलिस ने तमाशे के चक्कर में बिना सोचे समझे पहाड़ी पर सिया और चेतन को खड़ा कर डमी ट्रायल तो कर लिया, पर उससे पुणे पुलिस के हाथ लगा किया। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर सचमुच सिया या चेतन ने ही केतन को धक्का दिया था तो वो क्यों ईमानदारी के साथ पुलिस के कहने भर से इसी ताकत के साथ डमी ट्रायल में डमी को धक्का देंगे। जानकारों की माने तो अमूमन डमी ट्रायल का फायदा कुछ हद तक तभी है जब कोई चश्मदीद ये बताए कि उसने किस पोजीशन में और किस तरह धक्का मारते देखा था। अगर खुद संदिग्ध या आरोपी के बयान पर ही भरोसा कर पुलिस ऐसे डमी ट्रायल करती है तो इसका मतलब है उसका सही नतीजा कुछ भी नहीं निकलने वाला, क्योंकि वो संदिग्ध या आरोपी कभी सच बोलेगा ही नहीं।
3: रिक्रिएशन जो है मोस्टली आदमी के दिए गए बयानों के आधार पर होता है। इसमें सबसे जो थोड़ा सा जिसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आई विटनेस। अगर आई विटनेस है तो जाहिर बात है कि वो जो कह रहा है उसके आधार के ऊपर घटना का पुनर्निर्माण किया जाएगा या उस तरीके की घटना को रिक्रिएट किया जाएगा। अब अगर आई विटनेस नहीं है तो जो संदिग्ध हैं या आरोपी हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, उनके दिए गए बयानों के आधार पर हम के ऊपर ही घटना को रिक्रिएट किया जाता है।
0: इस तमाशे का एक और सच है, डमी ट्रायल के नाम पर जिस पुतले का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कद काठी और वजन तो मरने वाले के हिसाब से बना लिया जाता है, लेकिन डमी ट्रायल के दौरान जब उसे धक्का देकर नीचे गिराया जाता है तो एक जिंदा शख्स और एक पुतले का फर्क साफ नजर आता है। एक जिंदा शख्स जब ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसके हाथ पांव अपने आप ही चलने लगते हैं खुद के बचाव के लिए, लेकिन पुतले में जान तो होती नहीं, जैसे फेंको वैसे ही गिरेगा। यानी कुल मिलाकर 2 दिनों तक लोहगढ़ किले की पहाड़ी पर पुणे पुलिस ने जो किया उसका मकसद ये पता लगाना बिल्कुल नहीं था कि केतन फिसल कर गिरा था या उसे धक्का देकर गिराया गया था, उसे सिया ने धक्का मारा था या फिर चेतन ने। क्योंकि पहली चीज तो ये कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर इस तरह का डमी ट्रायल कभी सही नतीजा दे ही नहीं सकता, और दूसरा ये कि अगर वाकई किसी नतीजे पर पुणे पुलिस ईमानदारी से पहुंचना चाहती तो कम से कम सिया या चेतन ने जिस डमी को नीचे फेंका एक बार, सिर्फ एक बार उस जगह पर जाकर उसकी जांच तो कर लेती, उसे यूं लावारिस तो न छोड़ती।
3: लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि डेड बॉडी जो भी मिली है, जहां मिली है वहां पर उसका जो ऑटोप्सी हुआ है वो ऑटोप्सी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या इंजुरीज हैं उसको, कहाँ कहाँ इंजुरीज हैं, और दूसरा उसके कपड़ों पे, हाथ पैरों के ऊपर क्या किस तरीके के एविडेंसेस आए हैं। तो जैसे मेरा अपना ये मानना है कि कपड़ा जो होता है वो फर्स्ट स्किन ऑफ द बॉडी होती है। जैसे हम फिसल के कहीं गिर जाते हैं स्कूटर पे, तो सबसे पहले जो निशान आते हैं वो हमारे कपड़ों के ऊपर आते हैं, स्किन के ऊपर जो है वो बाद में आते हैं। तो रिक्रिएशन जो भी किया गया है उसमें कितना सटीक बैठेगा मुझे नहीं मालूम।
0: वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि डमी ट्रायल के नाम पर पुलिस या जांच एजेंसियां ऐसे तमाशे अक्सर करती रहती हैं, क्योंकि इससे मीडिया के जरिए लोगों की एक सोच बनती है कि देखो पुलिस कितनी मेहनत और लगन से केस की जांच कर रही है। ठीक ऐसा ही एक तमाशा अभी महीने भर पहले देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने भोपाल में दिखाया था। सीबीआई ने तो हद ही कर दी थी। ट्विशा की मौत के मामले में जब वो ट्विशा की ससुराल की छत पर डमी ट्रायल का तमाशा कर रही थी, तब बाकायदा ये पुख्ता करना चाहती थी कि उसका ये तमाशा मीडिया के कैमरों में कैद हो। वरना अमूमन ऐसे मौके पर सीबीआई छोड़ी पुलिस भी थोड़ी बहुत पर्दादारी तो कर ही लेती है। कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले, पुणे, आज तक। सिया के पिता का कहना है कि जब केतन के साथ रिश्ते को लेकर सिया की कुंडली निकाली जा रही थी, तभी से सिया को इस रिश्ते की जानकारी थी। दोनों की कुंडली भी निकाली गई और 36 में से 27 गुण भी मिल गए। इसी के बाद सिया की रजामंदी से बात आगे बढ़ाई गई। पुणे पुलिस ने इसी रिश्ते को लेकर सिया के माँ बाप से करीब 12 घंटे तक पूछताछ की। पुणे पुलिस के इस डमी तमाशे के बीच उधर सिया के पिता ने कहा है कि वो चाहते हैं कि केतन का कातिल जो भी हो उसका पता चले और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सिया के पिता प्रवीण गोयल और उनकी पत्नी से पुणे पुलिस ने करीब 12 घंटे तक पूछताछ की थी। इससे पहले सिया के भाई साहिल गोयल से भी पुलिस पूछताछ कर चुकी है। यानी कुल मिलाकर सिया के पूरे परिवार का पुणे पुलिस से आमना सामना हो चुका है।
4: हम सुबह 11:30 बजे पहुंच गए थे, हमें रात को 11:30 बजे छोड़ा। कम से कम यानी कि 11:30-12 घंटे पूरी तहकीकात की है पुलिस ने हमारे साथ। उन्होंने जो जो क्वेरीज पूछी, हमने जो जो हमें पता था वो हमने सब क्वेरीज दी है उनको। पूरा स्टेटमेंट भी दिया है मैंने भी और मेरी मिसेस पूजा गोयल ने भी, और वो अच्छे से तहकीकात कर रहे हैं। मैं तो बस यही बोलूंगा कि उनको जल्द से जल्द इस बारे में अपराधी का पता चले और उन्हें सख्त से सजा दी जाए।
0: सिया के माँ बाप से पूछताछ के दौरान पुलिस असल में रिश्तों की पहेली को समझना चाहती थी। पुलिस ये जानना चाहती थी कि क्या सिया का रिश्ता केतन के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ तय हुआ था, और क्या वो लोग सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में जानते थे। क्योंकि अभी तक की जो कहानी सामने आ रही है उसके हिसाब से पुलिस की थ्योरी ये है कि सिया ने केतन की बजाय चेतन से शादी करने के लिए ही केतन का कत्ल कर दिया।
5: आपको ये भी पूछा गया होगा एग्जैक्टली कि क्या आपको इस पूरे मामले में मालूम था नहीं था?
4: हाँ पूछा मैंने, पर मुझे इस मामले की कोई भी जानकारी नहीं है। अगर कुछ मुझे पता चलता तो मैं कुछ ना कुछ एक्शन लेता था और कुछ ना कुछ सामने वाले से बात करके भाई ये रिश्ता थोड़ा यानी कि पोस्टपोन करते हैं, ऐसे ऐसे कोई बात आई है मेरे सामने तो मैं जरूर बात करता था। पर मेरे सामने बिल्कुल भी 1% भी यानी कि कोई बात लीक नहीं हुई जिससे मैं ये मन में भी लेके आता था।
0: सिया के पिता ने यह भी बताया कि सिया की शादी उससे पूछ कर तय की गई थी। यहाँ तक कि शादी से पहले सिया और केतन की कुंडली भी निकाली गई थी। दोनों परिवारों के ज्योतिषियों ने सिया और केतन की कुंडली देखने के बाद ये बताया था कि दोनों के 36 में से 27 गुण मिल रहे हैं, जो कि शादी के लिए बहुत अच्छा है।
6: केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले जनवरी में दोनों की कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हुआ, इसलिए दोनों परिवार के ज्योतिषी को बुलाया गया था। सिया और केतन के 27 गुण मिलते हैं और ये शादी आदर्श मानी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा।
4: हाँ वो सामने वालों ने सिया का बायोडाटा जन्म कुंडली मांगी थी तो मैंने दे दी थी, तो उनका ही सामने से फोन आया था कि ऐसे ऐसे 27-28 गुण कुछ मिल रहे हैं और हमारी तरफ से हाँ है। मैंने बोला था ठीक है भाई साहब, आप खुद ही कुंडली मिला लीजिए और देख लीजिए। तो उन्होंने बताया था कुछ 27-28 गुण मिल रहे, तो उनकी हाँ हो गई।
0: फिलहाल इस केस की जांच के लिए अब पुलिस के पास 3 जुलाई तक की मोहलत है। 3 जुलाई को सिया और चेतन की पुलिस कस्टडी की मियाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद उम्मीद यही है कि दोनों न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए जाएंगे। कैमरामैन गोपाल हार ने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बाबले। पुणे आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देख
7: TuneIn is bringing together your music, news, sports and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
8: continue to face political pressure to reach a peace deal,
7: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
9: हमने तब भी सवाल किया था।
10: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खूब फटकार लगाई है।
9: हम आज भी सवाल करते हैं।
10: लखनऊ में भी दर्दनाक हादसे में 15 लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। दिल्ली जैसा हादसा लखनऊ में हो गया और लखनऊ जैसे हालात कभी भी दिल्ली में बन सकते हैं।
9: ऑपरेशन अग्नि,
10: आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हमने आपको दिखाया कि बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कोचिंग और लाइब्रेरी चलाई जा रही है। आग लगने की स्थिति में अगर ये बंद हो जाए तो फिर अंदर फंसे लोग कैसे निकलेंगे।
9: आज तक के स्टिंग में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई। खबरदार, सिर्फ आज तक पर।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का। हर माँ का भरोसा, प्यार से

0: प्रधानमंत्री और सीएम की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट तैयार। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपीज के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 कैश बरामद। मिशन 2027 को लेकर सीएम योगी की यूपी में धुआंधार रैलियां। सहारनपुर में अखिलेश पर साधा निशाना। बोले एसपी के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री पर पैसे होते थे खर्च, आज बन रहे हैं एक्सप्रेस वेज। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा है जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट के साथ आए सचिन अहिर, बने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति। निर्विरोध जीता चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सचिन अहिर के शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले, उद्धव की पार्टी में कोई रहने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने मायूती छोड़कर एनसीपी कांग्रेस से दोस्ती कर ली थी, जिससे पार्टी में संतोष था। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई चेंबूर हादसे में एक छात्र की मौत पर एक्शन। बीएमसी की लापरवाही पर एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया। पुणे के तनहत्या कांड की जांच तेज हुई। लोहगढ़ किले पर चेतन के साथ रिक्रिएट किया गया पूरा क्राइम सीन। गुजरात के कच्छ में भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। 89 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, सरकारी जमीन कब्जे से कराई गई मुक्त। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में कल तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना। महाराष्ट्र में लगातार बारिश का दौर जारी। नवी मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। अकोला में अगले 5 दिन भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। पूर्णा नदी में छोड़ा गया है पानी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में भर गया है पानी, लोगों की बढ़ गई है मुश्किलें। गुजरात में नवसारी में भारी बारिश का देवदार डैम से के 20 गेट्स खोले गए, 19 गांवों को अलर्ट जारी किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश का कहर, मकान की दीवारें नहीं, बड़ा हादसा टला। महाराष्ट्र के वसई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बहाव से नाले में बह गई थी 2 कारें, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के स्मार्ट सिटी सूरत में भारी बारिश से सड़कों पर की पोल खुली, गड्ढों के बीच फंस गई थी स्कूल वैन। वलसाड में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरे हुए गंदे पानी से होकर लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर। गुजरात के वापी में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी में फंस गए वाहन। नवी मुंबई के नेरूर इलाके में जलभराव में अंडरपास अंडरग्राउंड तार में आया था करंट। बाइक सवार 2 छात्राओं को सड़क पर पैर रखते ही लगा जोरदार झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर 3 मंजिला इमारत गिरी, सड़क पर फैला भारी मलबा। वलसाड में हाईवे पर चलते कंटेनर ट्रक में लगी थी भीषण आग, धुएं का गुबार दूर तक नजर आया, सड़क पर लंबा जाम लगा। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 दिन के बाद एक मजदूर की मौत हुई। सुरक्षा मानकों की बिना अनुमति के चलाई जा रही थी कंपनी के फरार मालिक पर दबिश। गुजरात के जामनगर में मंदिर की दान पेटी तोड़कर चोर ने 15,000 रुपए की चोरी कर डाली, सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें सामने आई। मेबी डू डाई डू का नया ट्रेलर रिलीज किया गया। बिना शोर हुमा कुरैशी ने मचाया कोहराम, 3 जुलाई को फिल्म रिलीज की जाएगी। वेब सीरीज रक्तांचल का फर्स्ट लुक जारी किया गया। यूपी के पूर्वांचल में 80 के दशक में माफिया और टेंडर राज पर आधारित है यह फिल्म। फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लॉकअप 2 में एंट्री करेंगी कंगना रनौत, जनता की आवाज के तौर पर आएंगी नजर। डॉन 3 विवाद के बीच अब प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे रणवीर सिंह, दिखाएंगे जॉम्बीज की दुनिया। वेलकम टू द जंगल का जलवा फिल्म ने 4th दिन 9.5 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। फिल्म ने अब तक 82 करोड़ का कलेक्शन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। इस वक्त बड़ी और अहम खबर, सबसे पहले आपको बता दें, सूत्रों से खबर मिल रही है कि शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी और कांग्रेस के बीच मर्जर की बात चल रही है और अभी यह बातचीत महाराष्ट्र की इकाई तक ही सीमित है। खबर यह है कि एनसीपी आलाकमान यानी कि शरद पवार अभी मर्जर को लेकर पार्टी के अंदर राय ले रहे हैं, मशविरा कर रहे हैं, और अगर महाराष्ट्र में डील हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के जो शीर्ष नेता हैं उनके नेतृत्व में मोहर लग जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भी कांग्रेस और एनसीपी के मर्जर की बातचीत दोनों ही दलों के बीच आई थी। सारी जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम जुड़ गए। राहुल, क्या जानकारी है और क्या कह रहे हैं सूत्र, कब तक मुहर लग सकती है इस पर?
2: बताया जा रहा है कि फिलहाल जो महाराष्ट्र इकाई है कांग्रेस पार्टी की और एनसीपी की, फिलहाल दोनों चर्चा कर रहे हैं और जो चर्चा में जो मुख्य एजेंडा है वो ये है कि किस प्रकार से मर्जर किया जाए। बताया जा रहा है कि मर्जर एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि इसके अंदर आपको दो तिहाई ऑफिस बेयरर से लेकर एमएलए और एमपी तमाम लोगों को मर्ज कराना होता है। इसमें जो एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बातचीत जारी है। जैसे ही चीजें तय हो जाएंगी महाराष्ट्र के अंदर दोनों पार्टियों के बीच में, उसके बाद जो टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टी की वो बैठेगी और इस पे अंतिम मोहर लगाएगी। ऐसा नहीं है कि पहली बार बातचीत हो रही है, 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद भी ये बातचीत हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनावों की वजह से ये बात रुक गई थी और फिर दोबारा शुरू हुई है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इस प्रकार के रूमर्स उड़ रहे हैं कि एनसीपी के जो विधायक हैं ये सांसद हैं वो जा सकते हैं। ऐसे में आप ये सोच सकते हैं कि एक तरीका भी है कि उनको रोका जाए और पार्टी को इंटैक्ट रखा जाए और पूरी तरीके से मर्ज करा दी जाए कांग्रेस पार्टी में।
0: बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मुंबई में बादल गरज रहे हैं। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में आज सुबह से जोरदार बारिश हुई है, लेकिन बारिश अपने साथ लेकर आई है हादसे। नवी मुंबई में एक स्लैब गिरने से एक शख्स की मौत हुई है जबकि उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई है। नवी मुंबई में ही बारिश के दौरान दो लड़कियों को करंट भी लगा है। वहीं कल चेंबूर में स्कूल बस पर एक पेड़ गिरा था, आपको याद होगा, जिसमें छात्र की जान चली गई थी, कई बुरी तरह से घायल हुए थे। और आज इस मामले में बीएमसी के दो अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है।
3: हर बारिश की यही कहानी, मुंबई पानी पानी। एक बार फिर मूसलाधार बारिश में मुंबई की रफ्तार थाम दी। देखिए मुंबई में हर बारिश में डूबने वाले अंधेरी सबवे का क्या हाल हो गया है। बीएमसी के दावों के बावजूद फिर अंधेरी सबवे को पार करना मुंबई वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। नवी मुंबई का हाल भी जुदा नहीं दिखा, यहाँ भी लगातार बारिश के बाद जलजमाव लोगों के जी का जंजाल बन गया। मुंबई के बीकेसी इलाके में भी बारिश की वजह से लोग बेबस दिखे। बारिश की वजह से गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे कई इलाकों में जाम लग गया। भले ही मुंबई में मॉनसून करीब दो हफ्ते की देरी से आया, लेकिन अब मुंबई में बादल झूम के बरस रहे हैं। ये मुंबई के वसई के बाघाल पाड़ा इलाके की तस्वीरें हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए। नाले में दो कारों के बह जाने का वीडियो वायरल है। बताया जा रहा है कि एक कार ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी से बाहर कूदकर जान बचाई। प्रशासन लोगों से कह रहा है कि बारिश के दौरान नालों, झरनों या पानी में डूबे हुए रास्तों के पास जाने से बचें। बारिश में हादसे भी हो रहे हैं। मुंबई के चेंबूर में 30 जून को बारिश के बाद सड़क किनारे एक बड़ा पेड़ स्कूल बस पर गिर गया था। इस हादसे में 11 साल के छात्र विहान श्रीवास्तव की मौत हो गई थी, जबकि 5 बच्चे घायल हैं। बस में 18 बच्चे सवार थे। घायल बच्चों में भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद बीएमसी की मेयर ऋतु तावड़े ने भी मौके पर पहुंचकर कहा था कि वो अब बच्चे की मां से कैसे नजर मिला पाएंगी। आज मेयर ऋतु तावड़े ने एमवेस्ट वार्ड के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गार्डन जगदीश भोईर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा है कि घटना में पहली नजर में लापरवाही साफ दिख रही है।
4: बहुत ही दुखदायक ऐसी घटना है। मुझे को महापौर ने एक माँ के नाते भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बच्चे घर से निकले थे स्कूल जाने के लिए या खुद स्कूल से घर पे जा रहे थे और इस तरह से ये पेड़ गिरा। मुझे उस माँ को फेस करने के लिए डर लग रहा है जिसका बच्चा आज गया है। ये बहुत ही गंभीर घटना है और यहाँ पे मैंने सभी अधिकारी को बोला है कि ट्रिमिंग तो हुआ था यहाँ पे, जैसे ही घटना हो गई हमारे मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर्स है, पुलिस प्रशासन है, अग्निशामक दल है, 108 नंबर की रुग्णवाहिक है, हर चीज मदद करने के लिए यहाँ पे आई है। मैं खुद भी यहाँ पे आई हूँ, यहाँ से मैं जैन हॉस्पिटल जा रही हूँ। घटना को देखते हुए अभी मुझे पता चले, अभी अधिकारी के पास से मैंने कहा तो कहा गया कि ट्रिमिंग हुआ था, लेकिन मैंने हर वक्त कहा था कि जो मुंबई के पुराने पेड़ है का सर्वेक्षण करो, उसकी ताकत कितनी है, वो पेड़ आने वाले बारिश को झेल सकता है या नहीं।
3: स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि उन्होंने सड़क कंक्रीट कर रहे कॉन्ट्रैक्टर से शिकायत की थी कि पेड़ खोखला हो रहा है और उसे हटा देना चाहिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया।
5: मुंबई के चेंबूर इलाके में मंगलवार दोपहर अचानक जब तेज धूप निकली हुई थी और उस समय तेज हवाएं भी नहीं चल रही थी, अचानक ये एक पेड़ गिर गया एक स्कूल वैन के ऊपर जो बगल से गुजर रही थी। स्कूल वैन में कुछ बच्चे थे, 13 बच्चों में से कुछ अभी घायल हैं, लेकिन एक बच्चे विहान श्रीवास्तव की इस पूरे हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। फिलहाल मुंबई में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो मेयर है उन्होंने वादा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जरूर होगी, लेकिन यहां इस वक्त इलाके के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि दरअसल 2-3 महीने पहले इस सड़क का कॉन्क्रीटाइजेशन किया गया था। कॉन्क्रीटाइजेशन के दौरान ये जो पेड़ है ये खोखला पाया गया था, इसकी जड़ें खोखली पाई गई थी, लेकिन उस समय कॉन्ट्रैक्टर ने इस पूरे वाक्य के बारे में कुछ नहीं किया। और उसके बाद भी जब मॉनसून से पहले, दरअसल हर साल मॉनसून जब आता है, बरसात जब आती है, उससे पहले जो पेड़ हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है, उनको छांटा जाता है, लेकिन इस पूरे सड़क पे कई पेड़ों को छांटा गया, लेकिन इस पेड़ के जो जड़ है उस पर नज़र नहीं टिकाई गई, और जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। और अब लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी पेड़ हैं शहर में उन सब की जाँच पड़ताल अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो बरसात का जो मौसम है वो बिना किसी होनी के गुजरे।
3: इधर नवी मुंबई में भी बारिश की वजह से हादसा हो गया। नवी मुंबई में नेरुल में दो कॉलेज जाने वाली लड़कियों को करंट लग गया। बताया जा रहा है कि ये लड़कियां बाइक से अस्पताल जा रही थी और तभी उन्हें करंट लगा। तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ लोग लड़कियों को करंट से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है।
6: त्या सुखरूप आहेत, त्यांना जास्त इजा झालेली नाहीये, पण शॉक नंतर आता 24 तास त्यांना अंडर ऑब्झर्वेशन ठेवलेलं आहे आणि आपल्या पालिकेच्या फोर्टीज मध्ये त्यांना आता शिफ्ट करण्यात येणार आहे। नक्कीच अशा पद्धतीच्या घटना यापुढे घडायला नको।
3: नई मुंबई में बारिश की वजह से एक और हादसा हो गया। कामोठी सेक्टर 10 में साई सिद्धि सोसाइटी में एक फ्लैट का 6 मंजिला स्लैब गिरने से 39 साल के सुरेश लोखंडे की मौत हो गई और उनकी 12 साल की बेटी वेदिका लोखंडे घायल हो गई है। इस हादसे से पूरे इलाके में मातम पसरा है। स्थानीय लोग बिल्डिंग की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब सुरेश लोखंडे और उनकी बेटी बेडरूम में सो रहे हैं, तभी बेडरूम में स्लैब का एक हिस्सा अचानक गिर गया। घायल वेदिका लोखंडे का MGM हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मुंबई में DN नगर मेट्रो स्टेशन के पास भी बारिश के दौरान एक पेड़ गिर गया, जिससे कई घंटे आवाजाही प्रभावित है। वैसे मौसम विभाग ने 1951 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि इन सालों में 26 बार जून की बारिश सामान्य से कम रही। इनमें से सिर्फ 8 साल यानी 31% में पूरा मॉनसून सीजन भी कमजोर रहा। 15 साल यानी 58% में जुलाई से सितंबर की बारिश ने कमी पूरी कर दी और सीजन सामान्य रहा। 3 साल यानी 12% में तो पूरा सीजन सामान्य से भी ज्यादा पानी बरसा, यानी करीब 69% बार कमजोर जून के बाद भी मॉनसून संभल गया। इसका साफ मतलब है कि अकेले जून की कमी से पूरे सीजन का फैसला नहीं होता।
7: मुंबई के लिए अगर बात करेंगे विशेषकर, तो आज के डेट में अगर देखते हैं तो करीब करीब नॉर्मल के आसपास हम पहुंच गए हैं, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है तो उनमें तो अभी भी डेफिशिएंसी है। लेकिन जैसे अभी कमिंग वीक है, पूरा जुलाई का अगर मैं कहूँ, फर्स्ट वीक के 7-8 तारीख तक जो है, तो बहुत अच्छी बारिश जो कोंकण गोवा है उसमें वो मिलती रहेगी, और इसके साथ साथ जो मध्य महाराष्ट्र है, घाट रीजन से, उसमें भी बहुत अच्छी बारिश मिलेगी, और जो नॉर्थ के भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य महाराष्ट्र के या कोंकण एंड गोवा के, और इसी तरह विदर्भ रीजन भी जो है, तो उनमें भी अच्छी बारिश जो है लगातार इस वीक जो है वो मिलने वाली है। तो काफ़ी जो हमारी डेफिशिएंसी है जो जो जून में रही है, जुलाई का तो वो मैं समझता हूँ कि इस वीक में ज़्यादा रहेगा, सामान्य से ऊपर रहेगी बारिश जो है, लेकिन जो जून की डेफिशिएंसी वो भी कुछ हद तक कवर होगी अगर सीजन की हम बात करते हैं तो।
3: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और दक्षिण भारत के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी मौसम विभाग की चेतावनी का असर दिख रहा है। गुजरात में मंगलवार रात से ही भीषण बारिश हो रही है। गुजरात के अमरेली में तो 2 दिनों से बरसात हो रही है। पहली बारिश की वजह से ही सावरकुंडला की नदी में बाढ़ आ गई थी और तुरंत ही हनुमान जी के पास बना चेक डैम ओवरफ्लो हो गया था। गुजरात के डांग जिले में हो रही बारिश के चलते नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है। नवसारी में अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ते ही गणदेवी तालुका में देवधर टाइडलर डैम के 20 गेट खोले गए। इस डैम के कुल 40 गेट हैं और फिलहाल पहली ही बारिश में 20 गेट खोल दिए गए हैं। बांध के गेट खुलने पर अंबिका नदी के किनारे बसे 19 से ज्यादा गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई से विद्या और दीपेश त्रिपाठी के साथ नीलेश पाटिल, नवी मुंबई आज तक।
0: अब बात करेंगे पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में। केतन हत्याकांड को लेकर आज एक बार फिर से आरोपी चेतन चौधरी की मौजूदगी में पुलिस ने लोहगढ़ किले में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। 18 जून को हुई वारदात को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आज पुलिस ने चेतन चौधरी से केतन के पुतले को खाई में धक्का देने को कहा। इससे पहले 28 जून को पुलिस ने सिया के साथ क्राइम सीन रिक्रिएट किया था और हैरानी की बात यह है कि यहां कई पर्यटक और स्थानीय लोग उस धक्का पॉइंट को देखने के लिए पहुंच रहे हैं जहां से केतन को खाई में धक्का दिया गया था।
3: पुणे पुलिस पहली दफा 4 दिन पहले इस लोहगढ़ किले में सिया के साथ पहुंची थी और अब आज दूसरी बार चेतन को लेकर पहुंची। लोकेशन वही, मर्डर मिस्ट्री वही, सवाल भी करीब वही जो सिया से हुए थे। केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस आज सुबह करीब 8 बजे लोहगढ़ किले में पहुंची। जांच अधिकारी चेतन को लेकर सीन पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की पड़ताल की। सोमवार को जब चेतन और सिया को पुणे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था तो दलील दी थी कि अभी लंबी जांच करनी है और सबसे अहम ये कि चेतन को क्राइम सीन पर ले जाकर रिक्रिएशन करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह सिया की मौजूदगी में पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया था। अदालत से रिमांड मिलने के 2 दिन बाद आज पुलिस सुबह लोकगढ़ किले में पहुंची। पुलिस के साथ आज भी एक पुतला था। पुतले का वजन ठीक केतन के जितना, लंबाई भी ठीक उतनी ही, बस फर्क सिर्फ ये था कि आज सिया की जगह चेतन था। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आज पुलिस ने चेतन से कहा कि वो पुतले को खाई में धक्का दे। उसने डमी को करीब 350 फीट गहरी खाई में धक्का दिया। तब पुलिस ने बारीकी से सिचुएशन को समझा, देखा और जाना। ठीक यही प्रक्रिया सिया को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने दोहराया था। एक बार फिर उस जांच प्रक्रिया के जरिए पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि केतन को किसने खाई में धक्का दिया था। क्राइम रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने उस घटनाक्रम को दोहराया जिसमें केतन और सिया के पीछे पीछे चलते हुए चेतन उनका पीछा कर रहा था।
8: सिया जो है उसका ऑलरेडी रिक्रिएशन हुआ है और उसके बाद यानी वड़गांव सत्र न्यायालय में सिर्फ चेतन के रिक्रिएशन के लिए जो है पुलिस कस्टडी मांगी गई थी और आज उसको सुबह 8 बजे यहां पर लाया गया। पूरी तरह पुलिस बंदोबस्त था और उसके बाद यानी 2.5 घंटे तक ये जो क्राइम रिक्रिएशन है चला है। इसके बाद इस चेतन को जो है लोनावला ग्रामीण पुलिस ने पुलिस संरक्षण में अभी पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और भी उससे पूछताछ होगी क्योंकि 2 दिन के बाद जो है वो पुलिस कस्टडी जो है खत्म होने वाली है और उसके बाद ही मतलब अभी भी पुलिस कर रही है और इस पूछताछ में बहुत सारे खुलासे और कुछ बातें जो है सामने आ सकती है।
3: 28 जून को पुणे पुलिस सिया को लेकर किले में पहुंची थी। करीब 2 घंटे तक वहां रिक्रिएशन किया था। अब चेतन के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद पुलिस को भरोसा है कि कई अहम तथ्य सामने आएंगे जिससे जांच को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
9: चेतन को ऊपर रिक्रिएशन ऑफ सीन के लिए लेके गए थे, उसने सभी सीक्वेंस इवेंट्स बताए हैं, क्या क्या हुआ था उसके, उसकी अभी तपास आगे चल रही है, इन्वेस्टिगेशन इज ओवर, अभी तपास कर रहे हैं।
10: लेकिन ऊपर जो पुतला लेके गए थे वो कितने किलो का था और किस प्रकार से रिक्रिएशन किया गया?
9: चेतन की बॉडी के हिसाब से था, उस वेट के हिसाब से हमने पुतला रखा था, बाकी उसने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताए हैं कि क्या क्या हुआ है, उस हिसाब से हमने मेमोरेंडम वगैरह किया।
3: इस तफ्तीश के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों की माने तो सिया अग्रवाल और चेतन चौधरी ने पहले से ही यह तय कर रखा था कि अगर दोनों इस मामले में पकड़े जाते हैं तो उन्हें क्या कहना है, क्या बताना है और किन बातों का खुलासा नहीं करना है। तय प्लान के मुताबिक दोनों खुद को तैयार कर चुके थे। ऐसे में पुलिस को शक है कि पूछताछ के दौरान दोनों के दिए जवाब भी उसी साजिश के तहत हो सकते हैं। हालांकि अधिकारी कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं।
8: अभी रिक्रिएशन किया गया, क्या क्या हुआ है और कितने घंटे तक
11: मेमोरेंडम हुआ है और कुछ नहीं। बस
8: कितने का पुतला लेके गए?
11: नहीं वो बात की अलग होती है, वो इन्वेस्टिगेशन की बात होती है।
8: तो ऊपर जाके क्या किया है, मतलब
11: और कुछ नहीं,
12: गेट एनालिसिस किया गया
11: था? नहीं नहीं नहीं, वो बात की इन्वेस्टिगेशन की बात है, दैट एज पर रिक्रिएशन जो होता है वो सिचुएशन एज पर हिज लीड्स।
8: कितने किलो का ये पुतला था और किस प्रकार से मतलब ऊपर से धक्का दिया,
11: दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो इट कैन नॉट बी डिस्क्लोज, ऐसा नहीं कर सकते।
3: सिया और चेतन ने जो किया उस पर जांच जारी है, लेकिन ये भी सामने आया है कि केतन अग्रवाल और सिया गोयल की शादी तय होने से पहले जनवरी महीने में दोनों की कुंडली मिलाने का कार्यक्रम हुआ था। इसके लिए परिवार के ज्योतिषी को बुलाया गया था। ज्योतिषी ने बताया कि दोनों की कुंडली में 27 गुण मिल रहे हैं, तो ये आदर्श विवाह हो सकता है। इसी वजह से दोनों परिवार रिश्ते को लेकर सहमत हो गए, लेकिन यहाँ कुंडली काम ना आई। केतन को सिया और चेतन ने मिलकर मार डाला। अब पुलिस दोनों के खिलाफ सबूत जुटाने में जुटी है। श्री कृष्ण पंचाल, पुणे, आज तक।
0: लोहगढ़ किले में रिक्रिएशन के दौरान पुलिस को जो भी कामयाबी मिली हो, जो भी सुराग मिले हो, लेकिन सवालों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जांच के दौरान सामने यह आया कि केतन को पहले से सिया पर शक हो चुका था। वो अपनी मंगेतर और चेतन की करीबी के बारे में जान चुका था। उसने अपने परिजनों से भी शादी तय करने को लेकर सवाल पूछे थे। सवाल अब यह है कि अगर घर वाले उसकी बात सुनते तो क्या केतन की जान बच सकती थी?
3: सिया पर केतन का शक बना उसकी हत्या की वजह। सिया बेनकाब हुई तो रची हत्या की साजिश। सिया चेतन एक दूसरे के करीब, केतन को लगाया ठिकाने। हत्या के 12 दिन बाद एक ऐसा खुलासा जो इस मर्डर मिस्ट्री की जांच में काफी अहम है। खुलासा ये कि केतन अग्रवाल जान गया था कि सिया की असलियत क्या है। वो जान चुका था कि उसकी मंगेतर उसे नहीं बल्कि किसी और को प्यार करती है। केतन को पता लग चुका था कि सिया चेतन के बहुत करीब है। इसी साल केतन और सिया की शादी तय हुई थी। फरवरी में सगाई हो चुकी थी, नवंबर में दोनों साथ फेरे लेने वाले थे, अटूट रिश्ते की डोर में बंधने वाले थे। लेकिन सगाई के बाद केतन को ऐसे सच का पता चला जिस पर वो खुद भी यकीन नहीं कर रहा था। लिहाजा वो मौत से पहले बार बार घरवालों से सवाल पूछ रहा था। उसने अपने घरवालों से सिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए थे। पुलिस सूत्रों की माने तो केतन ने सिया के बैकग्राउंड के बारे में अपने घरवालों से पूछा था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने शिकायत पत्र में यह दावा किया है। अपने बेटे का जिक्र करते हुए विशाल अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि सिया चेतन के बहुत करीब थी। केतन को इसका शक हो चुका था। केतन ने आशंका जताई थी कि उसकी मंगेतर किसी और को चाहती है। उसने परिवार वालों से ये भी पूछा था कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बैकग्राउंड की ठीक से जांच की गई थी। केतन ने घर वालों से बताया था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का नाम लेती थी। केतन ने ये भी कहा था कि जब भी वो सिया को कॉल करता था उसका फोन अक्सर व्यस्त रहता था।
13: अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए।
3: जांच में जुटे पुलिस अधिकारियों के हवाले से खबर है कि 6 जून को बाली ट्रिप रद्द होने के बाद केतन ने अपने पिता से बात की थी। शिकायत की थी कि सिया छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती है। तब विशाल अग्रवाल ने केतन से कहा था कि अभी कम उम्र है इसलिए शायद वो ऐसा बर्ताव कर रही होगी। तब विशाल अग्रवाल ने केतन को भरोसा दिया था कि वो उसे समझाएंगे। सिया पर केतन का शक गहरा हो चुका था। शायद यही उसकी मौत की वजह बनी, क्योंकि 18 जून को हत्या से 4 दिन पहले भी सिया और केतन लोहगढ़ किले में उसी जगह गए थे। उस दिन भी केतन को चट्टान से धक्का देने की कोशिश की थी। गनीमत रही कि 14 जून को केतन ने झाड़ी को पकड़कर अपनी जान बचा ली थी। हालांकि तब केतन के सवाल करने पर सिया ने सांप होने का झूठा शोर मचाया और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उसने केतन को बचाया है।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: मुंबई में गणपति महोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। बप्पा की मूर्तियां बनाने वाले कार्यशालाओं की रंगत बढ़ने लगी है। मिट्टी से बनी मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। हमारी टीम ने ऐसी ही एक जगह का जायजा लिया जहां गणेश जी की प्रतिमा की बुकिंग के लिए तमाम बड़े मंडल पहुंच रहे हैं।
16: 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर मुंबई सहित पूरा महाराष्ट्र देश गणेश उत्सव धूमधाम से मनाने को तैयार है और उन कार्यशालाओं की रंगत बढ़ गई है जहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं उनकी मूर्ति बनाई जाती है। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के परेल इलाके के एक ऐसे कारखाने में जो न केवल प्रसिद्ध है बल्कि मुंबई का सबसे बड़ा कार्यशाला माना जाता है जहां पर गणेश जी की प्रतिमाएं बनती हैं। तस्वीरों में देखें कि किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर अपने पंडाल के लिए गणेश जी की मूर्ति की बुकिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। कार्यशालाओं में काम भी शुरू है और धीरे धीरे इस तरह से जो बड़ी प्रतिमाएं हैं गणेश जी की वो बननी शुरू हो गई है। जो लोग यहाँ देखने के लिए पहुँच रहे हैं मूर्ति में उनमें कॉलेज के बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में हैं। इस बार जो खबर है वो ये कि ज़्यादातर मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्तियों की डिमांड है और इसमें कितनी ज़्यादा सच्चाई है और क्या कुछ खास बात भी बाहर निकल कर आएगी, क्या डिमांडिंग है, क्या ट्रेंड चल रहे हैं और किस तरह की मूर्तियों को लेकर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कि उस तरह से ही बननी चाहिए। हमारे साथ इस समय इस कारखाना के जो मूर्तिकार हैं वो राजू शिंदे साहब हैं। बहुत स्वागत आपका गणपति बप्पा
17: मोरिया
16: मंगल मूर्ति
17: मोरिया।
16: आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं आप।
17: यस डेफिनेटली।
16: अच्छा तो देखिए मैंने एक चीज जो अभी नोट की है कि मिट्टी की मूर्तियों की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है लेकिन स्पेशली आप तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं आप बनाते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि मिट्टी से बने या क्या डिमांड आ रही है, क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी लोग मांग रहे हैं?
17: जैसे कि मिट्टी की बड़ी मूर्ति बन सकती है बट वो पॉसिबल नहीं बनाना क्योंकि जो टाइमिंग हमें मिलता है शॉर्ट पीरियड मिलता है अभी गणपति को 2.5 से 3 महीने बचे हुए हैं और 2.5 से 3 महीने में मिट्टी की मूर्ति बन नहीं सकती है। इसमें POP ही एक अपने लिए ऑप्शन है जो ये कम कालावधि में बड़ी से बड़ी मूर्तियां खड़ी कर सके। मिट्टी की जो मूर्ति होती है बनती है उसको बनाने में काफ़ी टाइम जाता है देन सूखती भी नहीं है और क्रैक भी हो जाती है तो उसकी
16: बारिश का सीजन
17: यस यस बारिश का सीजन तो मॉइस्चर में वो मूर्ति सूखती नहीं है और जब सूखी है तो क्रैक भी हो जाती है तो विसर्जन तक उसका बहुत सारा रिस्क होता है कि आप मूर्ति विसर्जन अच्छे से कर पाओ या नहीं कर पाओ क्योंकि कहीं भी वो डैमेज हो सकती है। इसके लिए हमारे लिए ऑप्शन यही है कि POP की मूर्तियां बनाए।
16: अच्छा जितने भी ऊंची ऊंची मतलब 20 फीट 25 फीट 30 फीट वो सारे पंडाल वाले भी यही डिमांड कर रहे हैं?
17: यस यस यस पंडाल वाले भी यही डिमांड कर रहे हैं कि मिट्टी की मूर्ति जो बनेगी उसकी कॉस्टिंग उनको परवड़ेगी नहीं, बहुत हाई कॉस्टिंग होगी उसकी मिट्टी की मूर्ति की और POP की मूर्तियां उनको कॉस्टिंग में परवड़ती है तो वो सब ज्यादा डिमांड POP का ही है।
16: आप देखें किस तरीके से परेल का सबसे बड़ा कारखाना है जहां इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं और मूर्तियों को बनाने का काम यहां पर शुरू है। आपको बता दें कि तमाम बड़े बड़े जो पंडाल हैं वो बृहन मुंबई महानगर पालिका में रजिस्टर अपना कराते हैं कि हमें भी बड़ी मूर्ति जो है वो स्थापित करनी है। इस बार POP की डिमांड है और जिस तरीके से मूर्तिकार शिंदे ने बताया कि POP जो है वो पर्यावरण को नुकसान नहीं देगी लेकिन फिर भी जो घरेलू मूर्तियां हैं वो तो अभी भी मिट्टी से बनाई जा रही हैं और फैमिली वाले इसी तरह की डिमांड कर रहे हैं।
0: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
18: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। तीनों यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब बिना मंजूरी। भारत में फीचर लॉन्च नहीं। प्रेजेंटेड

जापान के पीएम ताकायची 3 दिन के लिए आधिकारिक दौरे पर पहुंचने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के पीएम ताकायची के बीच व्यापार, सेमीकंडक्टर, खनिज, रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का भी लक्ष्य। भारत जापान बिजनेस फोरम में जापान के 150 से ज्यादा उद्योगपति हिस्सा लेंगे। दोनों ही देशों के बीच निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने पर चर्चाएं। पाक की गीदड़ भभकी के बीच आगे आए भारत पाकिस्तान के 117 दिग्गज। प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को पत्र लिखकर बातचीत की अपील की गई। मॉनसून को लेकर मोदी सरकार का एक्शन प्लान, सूत्रों के मुताबिक मंत्रालयों की तैयारी करने के निर्देश। अलनीनो के कारण कम बारिश की आशंकाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। दिल्ली और यूपी में 14,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी। राष्ट्रीय राजमार्ग 148 पर 6 लेन सड़क सुरंग निर्माण को मंजूरी। दिल्ली में द्वारिका एक्सप्रेसवे को असंध कुंज के नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी ये सड़क। करीब 7,000 करोड़ की लागत का पूरा होगा 8.1 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। उत्तर प्रदेश को भी मिली केंद्र सरकार से विकास की सौगात। यूपी में नेशनल हाईवे 34 के कानपुर कबराई सेक्शन के निर्माण को मंजूरी। 4 से 6 लेन वाला होगा ये 117.7 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस कंट्रोल्ड सेक्शन। 7,000 करोड़ से भी ज्यादा होगी इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत। व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार। का टेलीग्राम की तरह गलत इस्तेमाल की आशंका है। नए फीचर से यूजर नेम की भी चैट होगी। व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को नोटिस भेजा, 3 दिन में जवाब मांगा। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं किया जाएगा। नीट पीजी परीक्षा 2026 की तारीख का ऐलान। 30 अगस्त को एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। एमबीईएमएस ने पीजी 2026 परीक्षा के लिए जारी की है एडवाइजरी। सेंटर आवंटन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आधार पर नहीं होगा, फॉर्म सबमिट के बाद बदलाव नहीं। नक्सल मुक्त भारत के बाद अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपीज के साथ हाई लेवल मीटिंग।

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से मिले रुपए डॉलर ज्वेलरी। टिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश जब्त। इटावा में एसपी नेता रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, बोले राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला, बड़े नाम शामिल हैं पर जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच रही है आज। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले सीएम योगी ने एसआईटी जांच का समय बढ़ा दिया है, 15 जुलाई तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले राम मंदिर दान मामले में निष्पक्ष जांच होगी, अखिलेश यादव गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश में। अयोध्या के वकील बार एसोसिएशन चढ़ावा चोरी मामले में आज ट्रस्टियों के खिलाफ थाना राम जन्मभूमि में दर्ज करवाएंगे केस। मिशन 2027 को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के दौरे पर, करीब 613 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी ने सरसावा से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया गया। सहारनपुर में सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा, बोले एसपी के समय कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होते थे पैसे, आज बन रहे एक्सप्रेसवे, 2017 से पहले दंगे हुआ करते थे। पश्चिम बंगाल में बागी टीएमसी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंचा, बागी गुट का चुनाव चिन्ह पर दावे को लेकर ईसीआई की जो फुल बेंच है उससे मुलाकात। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने 10 बागी विधायकों के दिल्ली दौरे को बीजेपी प्रायोजित बताया, कहा बीजेपी ममता बनर्जी के नेताओं को निशाना बना रही है और पार्टी में फूट डालकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश में है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बीजेपी समर्थकों पर आरोप, बोली नादिया जिले में मुझ पर फेंके गए अंडे और बैंगन, जहां पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी सांसद डोला सिंह को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, दोनों ही पक्षों में जमकर नारेबाजी और हंगामा। उद्धव ठाकरे को छोड़कर शिंदे गुट के साथ आए सचिन अहिर, बने महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति, निर्विरोध जीता चुनाव। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले सचिन अहिर के शिंदे गुट में शामिल होने पर बोले, उद्धव की पार्टी में कोई रहने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें महायुति छोड़कर एनसीपी कांग्रेस से दोस्ती कर ली थी, जिससे पार्टी में संतोष। महाराष्ट्र विधानसभा में मुंबई चेंबूर हादसे में एक छात्र की मौत पर एक्शन, बीएमसी की लापरवाही पर एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया। पुणे के तहत हत्याकांड में जांच तेज हुई, लोहगढ़ जिले किले पर चेतन के साथ रिक्रिएट किया गया पूरा क्राइम सीन। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए पेट्रोल और डीजल वाहनों का दौर धीरे धीरे खत्म करने की तैयारियां शुरू, राजधानी में लागू हुई नई ईवी पॉलिसी। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने पर मिलेगी सब्सिडी, 2,25,000 रुपए तक की एक्स शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक दोपहिया पर पहले साल अधिकतम 30,000, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए तक की सब्सिडी। नई नीति के तहत दिल्ली में खरीदे और रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहनों को जीवन भर के लिए 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मिलेगी। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत और BS6 से नीचे के सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी, सिर्फ सीएनजी, ईवी, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहनों को छूट मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर, जून में 1.94 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, पिछले साल से 14% ज्यादा। गैस सिलेंडर की बड़ी कीमतों पर थोड़ी सी राहत मिली, देश में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 183 रुपए तक की कमी, 5 किलो का छोटू सिलेंडर भी सस्ता। जुलाई के पहले दिन देश भर में कई बड़े बदलाव लागू, पासपोर्ट फीस बढ़ी, रेलवे, आधार, बैंकिंग से जुड़े नए नियम प्रभावी। बीते हफ्ते से बंद पड़ी ईपीएफओ की डिजिटल सेवाएं फिर से बहाल हुई और आरबीआई का नया फ्रेमवर्क लागू। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने गार्ड ऑफ ऑनर के बाद पिता को किया सल्यूट, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी मौजूद थे। इंडिगो ने इकोनॉमी क्लास के यात्रियों के लिए शुरू किए इंडिगो लाइट फेयर, इसके तहत यात्री सिर्फ उन सेवाओं के लिए पैसे देंगे जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों के साथ धान की रोपाई में हिस्सा लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना महोत्सव का रंगारंग आयोजन, मशहूर कवियों और शायरों ने बांधा समा। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 42 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मॉनसून के चलते केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाओं पर 5 जुलाई तक लगी रोक, केदारनाथ धाम के लिए 8 हेली सेवाओं को संचालित किया जा रहा था। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, नदी के किनारे बनी भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंच गया पानी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे से सभी घाट पानी, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट पर। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है, लोगों से नदियों और नालों के किनारे जाने की मनाही। अरुणाचल प्रदेश के कई पन्योर जिले के दौरे पर शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया गया।
हिमाचल के लगभग सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में मानसून के अत्यधिक सक्रिय रहने की संभावना। शिमला में भी हुई राहत की बारिश, तापमान में गिरावट से पहाड़ियों पर छाई धुंध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हुई मूसलाधार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट से लोगों को हो रहा है ठंड का एहसास। उत्तरी कश्मीर में बांदीपुरा जिले की तुलेल घाटी में बादल फटने से खेती की जमीन और मवेशियों को नुकसान हुआ। अचानक से आई बाढ़ में बहा जमीन का बड़ा हिस्सा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जमकर हुई बारिश, कई जगहों पर भूस्खलन भी हुआ। डोडा में बादल फटने के बाद सड़कों पर आया था मलबा, कई गांव का संपर्क टूटा, फसलों को भारी नुकसान। प्रशासन की लोगों से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में तेज होगी प्री मानसून की गतिविधियां। दिल्ली के साथ साथ आसपास के प्रदेशों में भी कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। महाराष्ट्र में लगातार बारिश का दौर जारी है। नवी मुंबई समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरी अंडरपास में पानी भर गया था, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में अगले 6 जुलाई तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक मुंबई में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश का कहर, मकान की दीवारें नहीं, बड़ा हादसा टला। मुंबई के वसई में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बहाव के नाले में बही गई थी 2 कारें, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुजरात के स्मार्ट सिटी सूरत में भारी बारिश से सड़कों की खोल गई है पोल, गड्ढे में फंसी बस और स्कूल वैन। वलसाड में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरे गंदे पानी से होकर लोग आवाजाही करने के लिए मजबूर। गुजरात के वापी में भी भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर पानी में फंस गए वाहन। अरुणाचल प्रदेश असम में भारी बारिश के बाद गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है, प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अलर्ट पर। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में जलभराव, अंडरग्राउंड तार में आया था करंट, बाइक सवार 2 छात्राओं को सड़क पर पैर रखते ही लगा जोरदार झटका। नागपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान जर्जर 3 मंजिला इमारत गिरी, सड़क पर फैला भारी मलबा। वलसाड में हाईवे पर चलते हुए कंटेनर में ट्रक में भीषण आग लगी थी, धुएं का गुबार दूर तक नजर आया, सड़क पर लंबा जाम। गुजरात के खेड़ा में पटाखा फैक्ट्री धमाके में 3 दिन के बाद एक मजदूर की मौत हुई, सुरक्षा मानकों को बिना अनुमति के चलाई जा रही थी कंपनी। देहरादून के विकास नगर में 2 मंजिला आवासीय भवन में भीषण आग लगी, मकान पूरी तरह से जलकर खाक हुआ, कई मवेशी भी जिंदा जले। बिहार के सहरसा में सोते समय शख्स की पीट पीट कर हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने टायर में लगाई थी आग, सड़क जाम किया। उज्जैन में शिप्रा नदी में आरती के दौरान दीपक बेचने वाली महिलाओं और पुजारियों के बीच विवाद हुआ, दोनों ही पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। और नाव में अज्ञात वाहन की टक्कर से बुलेट नाले में गिरी थी, बारात से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत हुई। राजस्थान के पाली में अस्पताल में डॉक्टर की कुर्सी पर मिल गया था सांप, मरीजों में मच गई अफरा तफरी। गाजियाबाद में मामूली से रोडरेज विवाद के बाद युवक की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या, मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में कार में हथियार लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हुआ, सोना बेचकर लोहा खरीदने की कही गई बात। मुरादाबाद में बारिश के बीच पेड़ के नीचे गिरे खड़े 5 लोगों पर आकाशीय बिजली गिरी, 2 की मौत हुई, 3 की हालत गंभीर। अमृतसर में ड्रोन से हथियार तस्करी मॉड्यूल का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार, 7 पिस्तौल, 40 कारतूस बरामद। भोपाल में चाय स्टॉल चलाने वाले इलेक्ट्रिक भट्टी से करंट लगने से मौत हुई, करीब 10 दिन से चल रहा था इलाज। गुजरात के जामनगर में मंदिर की दानपेटी तोड़कर चोर ने की थी 15,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बेबी डू डाई डू का नया ट्रेलर रिलीज किया गया, बिना शोरूमा कुरैशी ने मचाया कोराम, 3 जुलाई को फिल्म रिलीज होगी। वेब सीरीज रक्तांचल का फर्स्ट लुक जारी किया गया, यूपी के पूर्वांचल में 80 के दशक में माफिया और टेंडर राज में आधारित है फिल्म। फराह खान और रितेश देशमुख के साथ लॉकअप 2 में एंट्री करेंगी कंगना रनौत, जनता की आवाज के तौर पर नजर आएंगी। डॉन 3 विवाद के बीच अब प्रलय की शूटिंग शुरू करेंगे रणबीर सिंह, दिखाएंगे जॉम्बीज की दुनिया। वेलकम टू द जंगल का जलवा, फिल्म के 4th दिन 9.5 करोड़ रुपए की कमाई, फिल्म ने अब तक 82 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। जनवरी के रिकॉर्ड हाई से सोने की कीमतों में करीब 20% और चांदी में 43% की गिरावट, बीते करीब 6 महीनों में सेंसेक्स में 11% और निफ्टी में 8.6% की गिरावट आई है। जून में सामान्य से करीब 40% कम बारिश होने के खरीफ की बुवाई 23% घट गई है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल के 236 लाख हेक्टेयर के मुकाबले अब तक लगभग 183 लाख हेक्टेयर की बुवाई। इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% करने के बाद सोने की डिमांड में 70% की भारी गिरावट देखी गई। मई में करीब 25 टन के मुकाबले सोने की डिमांड सिमट कर जून में महज 7.5 टन पर आई। जून में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार में सुस्ती दर्ज की गई, HSBC और
S&P ग्लोबल के मुताबिक मई में 55 के मुकाबले जून में मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 54.2 पर आया। RBI ने चेतावनी दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होने वाले साइबर हमले भारतीय बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बने। बैंकों के कर्मचारियों की साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कंपनी और खुद को आर्थिक फायदा पहुंचाने के आरोपों पर कही बड़ी बात। बोले, मैं पैसे संभालने वाले लोगों से कभी नहीं बात करता। साथ ही कहा, शेयर बाजार में तेजी से सभी को हो रहा है फायदा। ईरान के शीर्ष वार्ताकार मोहम्मद कलीवाफ का बड़ा बयान का, जब तक MOU की शर्तों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं, हॉर्मुज पर हमारा पूरा अधिकार। वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीन के अधिकारियों का इसराइल पर आरोप, धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह नियंत्रण चाहता है इसराइल। यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में रूसी सेना का भीषण हमला, ड्रोन हमले के बाद लगी थी भीषण आग, कई इमारतें तबाह हुई, दुकानें और कैफे भी जले। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बड़ा बयान का, यूरोप को अपनी सुरक्षा को लेकर उठानी होगी आर्थिक जिम्मेदारी। आयरलैंड पहुंची यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का आयरलैंड की अध्यक्षता के तौर के यूक्रेन के दौरान यूक्रेन की यूएस सदस्यता पर होगी बातचीत। इस वक्त आयरलैंड के पास है यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता। पाकिस्तानी हमलों के जवाब में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ISIS के ठिकानों को एयर स्ट्राइक से निशाना बनाया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी भी दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पार्टी के 105वें स्थापना दिवस पर सेना को मजबूत करने की कसम खाई, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी के अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में 20 प्रांतों में भीषण तूफान की खबर, एक शख्स की जान गई, कई घर और गाड़ियां तबाह हुई, कुछ शहरों में बाढ़ जैसे हालात। फीफा वर्ल्ड कप में हार के बाद दो दिग्गजों ने कोच पद से इस्तीफा दिया। नीदरलैंड्स के मुख्य कोच रोनाल्ड कोमैन और उरुग्वे के मुख्य कोच मार्सेलो बिएल्सा ने छोड़ा पद।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि राम मंदिर से चोरी हुआ चढ़ावा किस किस की तिजोरी में पहुंचा। अब तक जो सिर्फ बातें थी, अब वो आधिकारिक दस्तावेज बनकर सामने आ गई हैं, जिनमें चढ़ावा चोरों के घर से मिले रुपए, पैसे, डॉलर, आपने सही सुना है, डॉलर भी थे इनके घर में, जेवरात, पूरी सूची जारी कर दी गई है। आज इसका पूरा हिसाब आपको बताएंगे। इन लोगों के ठिकानों से लाखों रुपए मिले हैं जो भक्तों ने प्रभु श्री राम को समर्पित किए थे। किसी ने अपनी मेहनत की कमाई का पैसा, अपने गले से चेन उतारकर अंगूठी, सब भगवान को अर्पित किया था, जा रहा था इनके घर, लेकिन इन लोगों ने उससे अपनी जेब, अपनी तिजोरी भरकर घिनौना पाप किया। कल हमने आपको चंपत राय की कुंडली दिखाई थी, आज आपको अनिल मिश्रा के बारे में बताएंगे। ये वही अनिल मिश्रा है जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बने थे। इन पर चढ़ावा चोरी में शामिल होने के आरोप लग रहे हैं। गिरफ्तार चढ़ावा चोरी के आरोपियों में इनके कई रिश्तेदार शामिल हैं। इसके बाद आपको पुणे के पास स्थित लोहगढ़ किले के बारे में बताएंगे, जहां आजकल पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये पर्यटक किला देखने नहीं बल्कि उस सनसनीखेज क्राइम स्पॉट को देखने के लिए जा रहे हैं, जहां से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया था। सोशल मीडिया ने आज उसे सिया पॉइंट का नाम दे दिया है। यह हमारे समाज में और पैर पसारते उसी डार्क टूरिज्म का कड़वा सच है, जहां लोग अतीत के गौरव से ज्यादा वर्तमान के किसी खौफनाक अपराध को अपनी आंखों से देखने के लिए बेताब दिख रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि देश में बार बार सड़क पर वाहनों में आग लगने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। राजस्थान के दौसा में देखिए, भीषण बस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया, 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। आज आपको बताएंगे कि जिसे दुनिया सिर्फ एक हादसा कह रही है, वो असल में सिस्टम की बेईमानी और सिस्टम का भ्रष्टाचार है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बेईमानी का वो कच्चा चिट्ठा दिखाएंगे जिसका पूरा हिसाब किताब हो रहा है। अब तक तो सिर्फ यही बातें बाहर आई थी कि जो लोग चढ़ावे की चोरी कर रहे थे, उन्होंने जमीनें, दुकानें, महंगी गाड़ियां खरीदी थी। लेकिन आज पहली बार ये बात सामने आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से कितना चोरी का पैसा बरामद किया। हम आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। अविनाश शुक्ला से शुरू करते हैं। ये वही आरोपी है जो चढ़ावे में मिले कैश और आभूषणों का हिसाब रजिस्टर में लिखता था। पुलिस को इसके पास से सबसे ज्यादा 20,39,220 रुपए नकद बरामद हुए, 1,121 अमेरिकी डॉलर इसके पास से मिले हैं, कीमत 1,06,500 रुपए होती है। चांदी जैसी 159.54 ग्राम धातु बरामद हुई है, क्योंकि देखिए अभी सीधा चांदी इसको पुलिस नहीं कह रही है, क्योंकि पहले जांच होगी चांदी है या नहीं है। ऐसे ही सोने के लिए भी उन्होंने अलग रंग लिखा है। 8.14 ग्राम की एक चेन बरामद हुई है, संभवतः किसी श्रद्धालु ने राम मंदिर में दान की होगी, हालांकि अभी तो चेकिंग होनी है। और इस चढ़ावा चोर के पास से पुलिस को एक सोने की अंगूठी भी मिली है, वजन 3.44 ग्राम। चढ़ावा चोर का नाम याद रख लीजिए, जिसने राम मंदिर में होते हुए भगवान श्री राम को अर्पित चढ़ावा चुराने का जिस पर आरोप है। तो ये हो गया पहला आरोपी, जो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, अविनाश शुक्ला, सबसे ज्यादा रकम जिसके पास से बरामदगी की गई है। दूसरे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है करुणेश पांडे, जो चढ़ावे में मिले नकद की गिनती का काम करता था। इसके पास से पुलिस को मिले हैं 18,07,063 रुपए कैश। सबसे दिलचस्प क्या है, 500 के 3600 नोट, 33 नोट, अगला आप देख रहे हैं जो 200 रुपए का, और ऐसे ही सिक्के भी मिले हैं। अब तीसरा चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है अनुकल्प मिश्रा। चढ़ावे की गिनती के दौरान गणना कक्ष में मौजूद रहते थे। अब ये अनुकल्प मिश्रा गणना कक्ष में मौजूद रहता था, आप चेहरा देखिए, उम्र सोचिए, मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, 16,82,000 रुपए 40 रुपए कैश, 2,853 नोट 500 के। चौथा चढ़ावा चोर का नाम है लवकुश मिश्रा, और यह भी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार है और अनुकल्प मिश्रा का जीजा। इसके पास से पुलिस को 14,25,000, ये लवकुश मिश्रा है, तो एक और रिश्तेदार मिश्रा मिश्रा, अनिल मिश्रा, लवकुश मिश्रा आपने देख लिया, 500 के 2,850 नोट। यह हमने आपको पहले भी बताया था कि जो चोरी होती थी उसमें 500 के नोटों की गड्डियों में ही सबसे ज्यादा सेंध लगाई जाती थी। क्यों? कम होता था, वैल्यू ज्यादा होता। यह था कि चढ़ावे की गिनती के दौरान 500 के नोटों को अलग कर दिया जाता था। इसके बाद 500 के 100 नोटों की गड्डियां बनाई जाती थी और आरोप है कि इन गड्डियों में एक्स्ट्रा नोट्स डाल दिए जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गिनती के बाद जब इन गड्डियों के वाउचर्स बनते थे तो उनमें यह देखा जाता था कि गड्डियां कितनी हैं। भाई 500 की इतनी गड्डियां लिख दिया गया। अब 500 की उन गड्डियों में जो वैल्यू है वो सब में सेम है या अलग है ये तो देखा ही नहीं जा रहा था। और इसी बात का फायदा उठाकर ये चढ़ावा चोर एक्स्ट्रा नोट 500 की गड्डियों से चुरा लिया करते थे बाद में। और पुलिस ने भी जब इनके घर और दूसरे ठिकानों पर छापा मारा तो वहां से 500 के नोट ज्यादा बरामद। जैसे पांचवें चढ़ावा चोर का नाम है, जो चढ़ावा चोरी के आरोपी हैं उनका नाम है मनीष कुमार यादव, जो चढ़ावे की गिनती में हर रोज मौजूद होता था। ये देखिए मनीष कुमार यादव, इसके पास से पुलिस को 2,00,000 रुपए नकद बरामद हुए जिनमें सबसे ज्यादा 270 नोट 500 के हैं और बाकी आप देख रहे हैं 105 नोट 200 रुपए के, 400 नोट 100 रुपए के। छठे चढ़ावा चोर के आरोपी का नाम है रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, और लवकुश मिश्रा इसी टिन्नू यादव का भतीजा है। टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर था जिसे चंपत राय ने राम मंदिर में नौकरी दी। इसके पास से 1,00,000 रुपया कैश मिला है जिसमें 500 रुपए के 180 नोट मिले हैं, 100 रुपए के कुल 100 नोट मिले हैं। ये सारा पैसा टिन्नू यादव के हॉस्टल से बरामद हुआ जो अयोध्या में गंगा हॉस्पिटल के पास है। सातवां चढ़ावा चोर आरोपी का नाम है रमाशंकर मिश्रा, जिसके नाम पास से 7,32,170 रुपया मिला है कैश, 2 सफेद धातु के सिक्के बरामद हुए हैं, 1 बिछुआ मिला है जिसका वजन 24.72 ग्राम है। ये पुलिस ने दरअसल अब पूरी लिस्ट सौंपी है आगे, उसी से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और ये सब चढ़ावे का सामान था जिसे इन चढ़ावा चोरी के आरोपियों ने राम मंदिर में रहते हुए चुरा लिया। अब सोचिए कि जब ये मामला सामने आया था तब इस देश के करोड़ों राम भक्त यही प्रार्थना कर रहे थे कि ये सच ना निकले। एसआईटी गठित हुई तब भी कोई ये नहीं सोच रहा था कि इतने बड़े स्तर पर राम मंदिर के चढ़ावे पर हाथ साफ किया जा रहा होगा। भाई अभी तक तो पुलिस ने खुलकर तो कहा नहीं था कि इतनी बरामदगी हुई है। कभी यहां से खबर आती थी कि 5,00,000, एक बार वीडियो निकला था बस, फिर बीते दिन खबर आई लगभग 80,00,000 की। अब तो पूरा ब्रेकअप आ गया किसके पास से कितनी बरामदगी हुई है। लेकिन आज सबूतों के साथ ये चोरी साबित हो गई और आज का दिन शायद कोई राम भक्त नहीं भूल पाएगा। सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि ये चोरी सिर्फ राम मंदिर में नहीं हुआ, ये चोरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में हुई। वो जन्मभूमि जहां रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और जो इस देश के लिए सबसे ज्यादा पवित्र है। लेकिन उस जन्मभूमि पर इन लोगों ने इतना घिनौना पाप किया, और अब तो ये खबरें किसी सूत्रों के हवाले से नहीं आ रही है, अब तो आधिकारिक रूप से पुलिस के दस्तावेजों में जो पैसा बरामद किया गया है इन आरोपियों के घर से, उन सबका पूरा लिस्ट दे दिया गया है, पूरा ब्यौरा डाल दिया गया है पुलिस के दस्तावेजों में। यह सब कुछ अब अंकित है जिससे साबित होता है कि यह पाप हुआ। सबसे बड़ा सबूत तो यह है, ये तस्वीरें हैं जो कौशलपुरी के एक प्रतिष्ठित योग केंद्र में मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने खुद रिकॉर्ड की है। ये वही जगह है जहां चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुआ अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक शुक्ला के साथ रहता था। जब हमारी टीम यहां पर पहुंची तो हमें एक संदूक मिला जिस पर राम राज्य कोष लिखा था और इस पर पेटीएम का एक QR कोड लगा था। जब हमने इस QR को स्कैन किया तो हमें राम राज्य कोष में दान देने का विकल्प दिखाई दिया। और इससे यह भी सवाल खड़े हुए कि आखिर राम मंदिर का यह संदूक यहां इस योग केंद्र में कैसे आया और क्या पुलिस ने इसी संदूक से चोरी के पैसों को बरामद किया है। पहले देखिए,
1: ये आपको मैं बक्सा दिखाने जा रहा हूं जहां पर आपको दिखाई पड़ेगा ये एक रहस्यमय बक्सा है। आप अगर देखें तो यहां पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है। हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पर QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, लेकिन ये जो राम राज्य कोष यहां पर लिखा होता है ये साफ बताता है कि कितना एक्टिव अविनाश शुक्ला जो इस वक्त जेल में है वो इस पूरे तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर सवाल ये उठता है कि एक योगा सेंटर जहां पर वो रहता था, उसका भाई अभिषेक बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा है और योग सीखता था, वो अपने भाई को 1.5 साल पहले यहाँ पर लाया, तो आखिर यहीं पर रहकर ये सारी चीजें की गई। और आप अंदाजा लगाएं श्री रामचंद्र की आस्था को लेकर जिन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया उस पैसे को यहाँ स्टोर किया गया।
0: अब हम एक बहुत गंभीर सवाल पूछेंगे जो मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर बड़े प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। सवाल ये है कि क्या इस चोरी को मंदिर ट्रस्ट छोटा मोटा मामला बनाकर स्थानीय पुलिस की मदद से रफा दफा करना चाहता था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंपत राय को इस चोरी की खबर 26 मई से थी। इसके बाद 5 जून को आरोपी अविनाश शुक्ला के ठिकाने से 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या 5 जून को अविनाश शुक्ला के ठिकाने पर छापा इसलिए मारा गया ताकि इसे छोटी मोटी चोरी का मामला बताकर बड़ी चोरी को छिपाया जा सके, और क्या ये पूरी साजिश रची जा रही थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में अब बड़े पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। एक दिन पहले हमने आपको बताया था कि चंपत राय के चक्कर में राम मंदिर में क्या क्या हुआ, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस चोरी में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के सदस्य अनिल मिश्रा भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पुलिस को सबसे ज्यादा शक अनिल मिश्रा पर है। अनिल मिश्रा की तस्वीरें दिखा दीजिए। SIT ने भी अनिल मिश्रा पर कई सवाल उठाए हैं, और क्यों उठाए हैं उसकी भी पूरी कहानी आपको बताते हैं। शक का पहला कारण यह है कि गिरफ्तार हुए 8 आरोपियों में 2 आरोपी तो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार हैं। अनुकल्प मिश्रा, जिसकी नौकरी अनिल मिश्रा ने खुद लगवाई थी, जबकि अनुकल्प मिश्रा ने अपने जीजा लवकुश मिश्रा को वाराणसी की उस एजेंसी में भर्ती कराया था जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने का ठेका दिया। दूसरा कारण यह है कि जब राम मंदिर का चढ़ावा गिना जाता था तब चढ़ावे की गिनती और उससे संबंधित प्रक्रिया में अनिल मिश्रा का सीधा दखल होता था। यह भी आरोप है कि गिरफ्तार हुए सभी 8 आरोपियों ने इस चोरी में अनिल मिश्रा का भी नाम लिया। शक का तीसरा बड़ा कारण वो ये कि मंदिर ट्रस्ट ने जिन लोगों को नौकरी पर रखा था उनमें सबसे ज्यादा 125 लोगों की भर्ती अनिल मिश्रा ने की, जो उनके जानने वाले रिश्तेदार या उनके परिचित लोग थे। चंपत राय और गोपाल राव ने अपनी सिफारिश से जिन लोगों को नौकरी पर रखा उनकी संख्या अनिल मिश्रा द्वारा रखे गए लोगों की संख्या से आधी थी। इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या अनिल मिश्रा ने मंदिर प्रबंधन में अपनी व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। शक का चौथा कारण, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों को हटाकर नए कर्मचारी लाने की मांग की थी तब सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, अनिल मिश्रा ने, और चढ़ावा गिनने वाले इन सभी कर्मचारियों को बदलने की प्रक्रिया रुकवा दी अनिल मिश्रा ने। अनिल मिश्रा पर यह आरोप हम नहीं लगा रहे बल्कि सूत्रों के मुताबिक SIT ने अपनी रिपोर्ट में इसका शक जताया है, और SIT का यह भी मानना है कि अनिल मिश्रा की संपत्ति में पिछले कुछ सालों से तेजी वृद्धि हुई है। अनिल मिश्रा पर शक का आखिरी और सबसे बड़ा कारण यह है कि मंदिर ट्रस्ट ने जितनी भी जमीनों को ज्यादा दाम पर खरीदा उन सभी सौदों में यही अनिल मिश्रा गवाह के रूप में शामिल थे। नाम ना बताने की शर्त पर ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन की खरीद संबंधी फैसले सभी ट्रस्टियों की जानकारी के बिना लिए गए थे और इनमें भी अनिल मिश्रा मनमानी कर रहे थे। यहां यह भी देखिए कि अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कैसे बने, इतना महत्वपूर्ण पद कैसे मिला। डॉक्टर अनिल मिश्रा का जन्म 1958 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के पतौना गांव में हुआ था। उन्होंने 1981 में ब्रिज किशोर होम्योपैथी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो सरकारी सेवा में आ गए। होम्योपैथी डॉक्टर थे। कहते हैं कि संघ से नजदीकी के कारण वो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहे। सुल्तानपुर और गोंडा जिलों में उन्होंने होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया। सरकारी सेवा के आखिरी सालों में वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार भी रहे। लेकिन डॉक्टर की नौकरी के साथ साथ उनके जीवन में एक और धारा लगातार चल रही थी और वो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम। डॉक्टर अनिल मिश्रा बचपन से ही संघ से जुड़े रहे। धीरे धीरे संगठन में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उन्होंने पहले अयोध्या में जिला कार्यवाह के रूप में काम किया। इसके बाद वो संघ के विभाग कार्यवाह बने, फिर सह प्रांत कार्यवाह बने और आखिर में अवध क्षेत्र के प्रांत कार्यवाह की जिम्मेदारी तक पहुंच गए। संघ में प्रांत कार्यवाह का पद बहुत बड़ा होता है क्योंकि वो पूरे क्षेत्र के संगठनात्मक कामकाज का नेतृत्व करता है। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर में डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के विश्वसनीय कार्यकर्ताओं में गिने जाते थे और उस समय उनके पास एक मारुति 800 कार थी जिससे वो संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अयोध्या में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे और यहीं से बीजेपी में भी उनके अच्छे रिश्ते बनते चले गए। जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया उस समय डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के प्रांत कार्यवाह थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने 5 फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और उनके लंबे अनुभव और आंदोलन से जुड़े योगदान को देखते हुए उन्हें ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया। जनवरी 2024 में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब 7 दिन तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी को ही यजमान बनाया गया था और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उस वक्त उन्होंने पूरे 7 दिनों तक सभी धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया लेकिन यजमान बनने वाले यही अनिल मिश्रा आज सवालों के घेरे में हैं और चंपत राय के साथ। बहुत जल्द पुलिस उनसे भी अब पूछताछ करने वाली है क्योंकि चंपत राय से तो पूछताछ हो चुकी है लेकिन अभी अनिल मिश्रा को नोटिस जारी हो चुका है पूछताछ के लिए। खैर, इस बेईमानी पर हमें हिंदी साहित्य के सबसे बड़े व्यंगकार हरिशंकर परसाई का वो कथन याद आता है जिसमें एक बार उन्होंने कहा था कि हर आदमी बेईमानी की तलाश में है और हर आदमी चिल्लाता है कि बड़ी बेईमानी है। और सोचिए उन्होंने कैसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर बैठने वाली सटीक बात कही थी। ये तस्वीरें राजस्थान के दौसा की हैं जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आई है जहां एक ट्रक से टक्कर होने के बाद हरिद्वार से इंदौर जा रही स्लीपर बस में आग लग गई। इस घटना में 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। 8 लोगों का मतलब है 8 परिवार। हम बयां नहीं कर सकते कि इन 8 परिवारों पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। हर कोई आपको यही बताएगा कि यह हादसा है, पुलिस भी यही कह रही है, ड्राइवर को नींद की झपकी आई, सड़क दुर्घटना हुई। लेकिन हकीकत में ये इस घटना का आधा सच है। पूरा सच ये है कि इन 8 लोगों को बेईमानी ने जलाकर मारा है, वो बेईमानी जो दीमक बन गई है। अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो इस बस के स्टोरेज बॉक्स में सिगरेट के पैकेट से भरे कई कार्टन रखे गए थे। जब हादसा हुआ आग की लपटें इन सिगरेट के पैकेट्स तक पहुंची तो इस आग ने भयानक रूप लिया। 8 लोग जिंदा जलकर मर गए। अफसोस की बात यह है कि बस में सिगरेट के इन कार्टन्स को टैक्स बचाने के लिए रखा गया था, यानी यहां भी बेईमानी। हमारे देश में हर रोज सड़कों पर ऐसी हजारों बसें चलती हैं जिनमें जीएसटी बचाने के लिए चोरी छिपे कई सामान भेजा जाता है और ये सिगरेट के कार्टन भी टैक्स बचाने के लिए चोरी छिपे इस बस में हरिद्वार से इंदौर भेजे जा रहे थे। अगर हम ये मान लें कि 6 कार्टन का भी इस बस के एक स्टोरेज बॉक्स में रखा गया था तो उसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 30,000 रुपए की जीएसटी चोरी के लिए, 30,000 की जीएसटी चोरी के लिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, 8 लोग जिंदा जल गए। और यही है इस घटना का सबसे दर्दनाक पहलू। देखिए,
2: सिगरेट के पैकेट्स हैं, ये सिगरेट के पैकेट्स पार्सल में रख के जा रहे थे और इस तरह से ज्वलनशील पदार्थ भी था। सिगरेट के ही सिगरेट के पैकेट हैं, जहां देखिए वहां सिगरेट के पैकेट हैं। ये देखिए सारे पूरे डिक्की में बस में सिगरेट भरे हुए थे, यानी अवैध तरीके से बस संचालक इसमें सिगरेट का परिवहन कर रहा था, ज्वलनशील पदार्थ का। और ये हादसा हुआ है इतना दर्दनाक, आप देखते जाइए, बाहर दिखाया आप, अंदर देखिए किस तरह से सिगरेट ही सिगरेट के सारे यहाँ पर पैकेट्स आपको मिलेंगे। और इस तरह से कागज के बंडल हैं, ये भी लेके जाए जा रहे थे, जहाँ पर आपको दिखाई देगा, हम आपको इधर दिखा रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बार बार सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल उठता है, लेकिन सवाल उठता है कि किस तरह से बस यहाँ पर यमदूत बन के दौड़ रहे हैं सड़कों पर, किस तरह से पूरी की पूरी बस पिघल गई है। और इस तरह से जितने भी सीट हैं या जो भी फोम था वो सब पिघल गया है, बस लोहे लोहे बचे हैं यहाँ पर। और नीचे देखिए ये सारे सिगरेट के आपके पैकेट्स नजर आ रहे हैं। ये पुलिस वाले हैं जो यहाँ पर सर्च कर रहे हैं इस मलबे में कि कहीं कोई कुछ बचा तो नहीं है।
0: तो आप देख रहे हैं ये चोरी किस तरह से सिगरेट की हुई है। तो ये घटना घटी जिसके बाद ये पता चला है विकराल रूप इस पूरी घटना का रहा। ऐसी चोरी लेकिन हर दिन होती है, इसके लिए बाकायदा रिश्वत दी जाती है। जब बिना बिल और रसीद के कोई सामान बसों के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचता है तो सरकार को पता नहीं चलता कि उस सामान की बिक्री हुई है, और इससे उस सामान पर भरा जाने वाला जीएसटी चोरी कर लिया जाता है। सिगरेट तंबाकू से जुड़े उत्पादों में ये चोरी इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा 40% का टैक्स लगता है। अगर सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो सितंबर 2025 में दिल्ली की एनफोर्समेंट टीमों ने खुद बताया था कि मजनू का टीला, अक्षरधाम, कश्मीरी गेट, आनंद विहार से जो बसें दूसरे राज्यों में जाती हैं उनमें ऐसे सामान को चोरी छिपे भेजा जाता है जिस पर जीएसटी की चोरी होती है। और ये सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में हो रहा है, और तब हो रहा है जब सब इसके बारे में जानते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब इस बेईमानी को जैसे हमारे समाज, हमारे सिस्टम ने स्वीकार कर लिया है। देखिए
3: बस ना आए लग गई और सर हमारे सामने सर जिंदा जल गई सर सर चिल्लाती थी सर बचा नहीं पाए उसको
4: आग इतनी पकड़ गई एकदम जो पास नहीं जा सकते हो हमारे आंखों के सामने लोग जल जिंदा जल गए बस के अंदर बहुत भयंकर बड़ा भयंकर हादसा था
0: इस घटना का। एक और दर्दनाक पहलू यह है कि जब यह स्लीपर बस चल रही थी तब कई लोगों ने इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। यह मुद्दा हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में उठा रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकारें इस बात को समझे, बेहतर मापदंड बनाए जाए, चाहे वो लखनऊ में उस कोचिंग सेंटर में आग हो जहां पर ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया, या फिर ये बस। स्थानीय प्रशासन से इस मामले की जांच के लिए 8 लोगों की एक टीम बनाई गई है, लेकिन हम पूछते हैं कि इस जांच का फायदा क्या है। अगर आप इस बस के आरटीओ रजिस्ट्रेशन को देखेंगे तो इसमें भी बहुत बड़ा झोल है। इस झोल को आज हम एक नया नाम देना चाहते हैं, ये नाम है ऑल इंडिया बस स्कैम। ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे देश में एसी खटारा बसों का फर्जी ऑल इंडिया परमिट बनाया जाता है। कई बार ये परमिट पूरी तरह खरीदा गया होता है, कैसे उसे इस बस के उदाहरण से समझिए। ये बस इंदौर की मशहूर हंस ट्रेवल्स कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश के किसी सुदूर इलाके में कराया गया है। इसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी अरुणाचल प्रदेश में जारी हुआ है। अब आप पूछेंगे कि इसमें फर्जीवाड़ा क्या हुआ, तो आरोप है कि जब ऐसी बसों का रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका फुल इंस्पेक्शन किया जाता है, और इन बसों की हालत इतनी खराब होती है कि अगर सही से इनकी जांच हो जाए तो इन्हें कभी ऑल इंडिया परमिट ना मिले। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोप लगता है कि एजेंट के जरिए इन बसों का दूर किसी राज्य में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, और इसके लिए वहां इन बसों को फिटनेस की जांच के लिए भेजा ही नहीं जाता है। सोचिए क्या कमाल हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग बेईमानी कर रहे हैं, लोग बेईमानी कर पाते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम उन्हें बेईमानी करने देता है। जब ऐसे लोग जिंदा जलकर मर जाते हैं तो यही सिस्टम कहता है कि इस पूरे मामले की अब जांच होगी। इस घटना में एक और बड़ा आरोपी लग रहा है कि जो ड्राइवर था उसे शराब के नशे की लत थी, इसी कारण उसे नींद की झपकी आई, हादसा हुआ। साल 2024 में हमारे देश में शराब पीकर गाड़ी बस ट्रक चलाने के कारण 8,277 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें कुल 3,204 लोगों की मौत हुई, 8,046 लोग घायल हुए। यानी हमारे देश में हर दिन 8 लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि कोई बस ड्राइवर, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई कार ड्राइवर शराब पीकर गाड़ी चला रहा होता है और हमारा सिस्टम रोक नहीं पाता। अगर सिर्फ दिल्ली या आगरा यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2012 से 23 के बीच 44% सड़क हादसे नींद की झपकी आने के कारण हुए। इस हफ्ते भी लखनऊ से नोएडा जा रही एक डबल डेकर बस का यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ, 4 लोग मारे गए। जबकि एक दिन पहले उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ उसमें एक कार में सवार 5 लोगों की मौत हो गई, उस हादसे में भी ड्राइवर को नींद की झपकी आई थी। यानी आप सोचिए कि हमारे देश में हजारों लोग इसके कारण मर जाते हैं लेकिन हमारा सिस्टम सिर्फ चालान का पैसा वसूल कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। आज हम एक सवाल पूछते हैं कि ट्रैफिक चालान या जुर्माने की व्यवस्था क्यों आई थी? इसलिए आई थी ना कि ताकि लोग ट्रैफिक नियमों पर गंभीरता से पालन करें, सड़क हादसे ना हो। आंकड़े बताते हैं कि इस देश में ट्रैफिक चालान से होने वाली कमाई तो दिन रात बढ़ रही है लेकिन सड़क हादसों में कितनी कमी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के मुताबिक 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2023 के बीच 18 करोड़ 14 लाख चालान जारी हुए जिन पर 12,631 करोड़ रुपए का जुर्माना सरकारी खजाने में आया। अब चालान तो बढ़ गया लेकिन इससे सड़क हादसों में मौतें कम नहीं हुई। 2019 से 23 के बीच ही 21,83,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई और इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या हमारी ट्रैफिक पुलिस का काम अब सिर्फ चालान काटना रह गया है। एक और कड़वा सच ये है कि सड़कों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं उनमें चालान तो काटा जा सकता है लेकिन उनसे सड़क हादसों को रोकने की कोशिश नहीं हो रही है। हाल ही में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एक गाड़ी रिवर्स हो रही थी, पीछे आ रही गाड़ी से जोरदार टक्कर हुई, 4 लोग मारे गए। ये देखिए, सोचने वाली बात है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 150 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं लेकिन अगर ये कैमरे भी सिर्फ चालान करने तक सीमित हो जाएंगे तो सड़क हादसों में होने वाली मौतों को कैसे रोका जाएगा।

खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जिस लोहागढ़ किले से सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया, उस जगह को लोग सिया पॉइंट क्यों कह रहे हैं और सिया पॉइंट को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ क्यों बढ़ रही है। लोहागढ़ किले का इतिहास 1000 साल पुराना है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज और पेशवाओं की कई कहानियों के अपने को अपने अंदर समेटे हैं। लेकिन आज बहुत सारे लोग इन कहानियों और इस इतिहास को जानने के लिए इस किले में नहीं पहुंच रहे, बल्कि वो ये देखने के लिए जा रहे हैं कि सिया ने केतन को किस जगह से धक्का दिया, ये जगह कैसी थी। लोहागढ़ विसापुर विकास मंच के अध्यक्ष सचिन टेकावड़े का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लोहागढ़ किले पर आने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लोगढ़ ये जगह है, आमतौर पर मानसून के मौसम में वीकेंड पर यहां 10,000 लोग पहुंचते थे, जबकि सामान्य दिनों में ये संख्या 800 से 1,000 के बीच रहती थी लोगढ़। लेकिन इस साल बारिश देर से हुई और इसीलिए जून में पर्यटक कम थे, लेकिन फिर केतन हत्याकांड हुआ उसके बाद लोगों का रुख बदल गया। लोहगढ़ किले के कर्मचारियों के मुताबिक कई पर्यटक अब सीधे उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि वो जगह कहाँ है जहां केतन को सिया ने धक्का दिया था। कुछ लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ सिर्फ इसलिए वहां पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल्स में इस मामले के बारे में सुना है तो उनको भी फोटो डालनी है। मुंबई, पुणे और नासिक से आने वाले युवाओं में इस घटना को लेकर बहुत उत्सुकता देखी जा रही है और इन युवाओं का कहना है कि उन्होंने पहले कसारा घाट में ट्रैकिंग का कार्यक्रम बनाया था, लेकिन लोहगढ़ मामले की चर्चा सुनी तो प्लान बदल दिया, लोहगढ़ आने का फैसला किया। और सबसे अजीब बात तो यह है कि लोग जिस जगह को सिया पॉइंट का नाम दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो वहां रुककर ये देख रहे हैं कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या था कि सिया ने केतन को यहीं से धक्का देकर मारने का फैसला किया। सोचिए, जिस किले में लोग कभी वीरता विरासत को समझने आते थे, वहां अब कुछ लोग सिर्फ इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो उस चट्टान को अपनी आंखों से देख सके जिसे सोशल मीडिया ने सिया पॉइंट का नाम दे दिया है। यानी लोहगढ़ भी वही है, इतिहास भी वही है, उसकी दीवारें भी वैसी हैं, बदली है तो सिर्फ लोगों की नजर, जो अब अतीत की शौर्य गाथा से ज्यादा वर्तमान की एक सनसनीखेज कहानी को खोज रही है। और ऐसा करने के पीछे कई कारण है। पहला, सोशल मीडिया ने इस घटनास्थल को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, मौजूदा वक्त में ये ट्रेंड बन गया है। जब किसी जगह की तस्वीरें, वीडियो, चर्चाएं लगातार वायरल होने लगती हैं तो अचानक लोगों की जो बकेट लिस्ट है कि भाई कहां कहां जाना है, उनमें वो बकेट लिस्ट में शामिल हो जाती है। और यहां भी ऐसा ही हुआ है। आज लोग जब लोहगढ़ किले में पहुंच रहे हैं तो वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि उन्होंने उस पॉइंट को देख लिया जहां से सिया ने केतन को धक्का दिया, मतलब टिक मार्क हो गया। दूसरा, ये हमारे साथ समाज में बढ़ते डार्क टूरिज्म के बारे में बताता है, जिसमें लोग चर्चित अपराधों के घटनास्थल पर जाकर वहां की चीजें देखना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर चल रही इस बहस का हिस्सा बनना चाहते हैं, वहां की फोटो, वीडियो, अपनी मौजूदगी दर्ज करके पोस्ट डालना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब साल 2024 में मेरठ में, अगर आपको याद हो, मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत का शव नीले ड्रम में चुनवा दिया था, तब हर कोई नीले ड्रम के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता था। और उस वक्त नीले ड्रम का ऐसा खौफ पैदा हुआ कि कई शहरों के बाजारों से नीले ड्रम की बिक्री बंद हो गई, उसकी जगह लाल, हरे, पीले ड्रम बाजार में बिकने लगे। कहने का मतलब यह है कि आज सोशल मीडिया के युग में ऐसी घटनाएं लोगों के बीच चर्चा का विषय बनती है। इसके बाद कहीं घटनास्थल को देखने के लिए पर्यटक बढ़ने लगते हैं, कहीं नीले ड्रम की बिक्री पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं होता था। आज भी जहां बड़ी घटनाएं हुई हैं, जब लोग जाते हैं तो वो उन घटनाओं के लिए उन्हें याद रखते हैं। जैसे पिछले साल लाल किले में मेट्रो स्टेशन के पास जो कार ब्लास्ट हुआ था, उस आतंकी हमले के बाद अब जब भी लोग वहां से जाते हैं तो ये सवाल पूछते हैं, क्या इसी जगह पर ये हमला हुआ था। ये कई जगहों पर होता है। यहाँ एक और चीज ये देखनी होगी कि कोई घटना लगातार समाचारों या सोशल मीडिया पर छाई रहती है तो लोगों को लगता है कि अगर वो उस जगह को देख लें तो उस कहानी को बेहतर समझ पाएंगे। यानी इस मामले में लोग सिर्फ लोहगढ़ किला या सिया पॉइंट देखने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक चर्चित घटना को अपने अनुभव का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को अब स्तब्ध कर रही हैं। हालांकि यहां हम ये भी कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो लोग लोहगढ़ किले के इस वीडियो को नया वीडियो बताकर शेयर कर रहे हैं वो गलत जानकारी दे रहे हैं।
लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या जरूर बढ़ी है, लेकिन पर्यटकों की भीड़ का ये वीडियो साल 2023 का है। ये नया वीडियो, अचानक भीड़ पहुंचने का ये नया वीडियो सही नहीं है। खैर, इस सबके बीच सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि केतन अग्रवाल को अपनी मंगेतर सिया गोयल पर पहले से ही शक था। पुलिस के अनुसार केतन ने कई बार अपने परिवार से पूछा कि क्या शादी तय करने से पहले सिया के बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई थी। उसका कहना था कि जब भी वो सिया को फोन करता है उसका फोन हमेशा बिजी आता है, और बातचीत के दौरान वो बार बार चेतन चौधरी का जिक्र करती थी। केतन को शक था कि सिया किसी और के साथ रिश्ते में हो सकती है, लेकिन परिवार ने उसे ये समझाया कि चिंता की कोई बात नहीं और सिया का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है और चेतन सिर्फ उसका दोस्त है। यही नहीं, केतन और सिया को परिवार को अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारी और बढ़ाना चाहते थे। वो केतन और सिया की शादी के बाद केतन की बहन से सिया के भाई साहिल की भी शादी करने के बारे में सोच रहे थे, और दोनों परिवारों के बीच ये तय हुआ था कि एक बार केतन और सिया की शादी हो जाएगी तो इस रिश्ते पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले ये घटना हो गई। सवाल ये उठता है कि अगर केतन को इस रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उसके परिवार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अगर केतन के माता पिता ने उसके शक को संजीदगी से लिया होता, पड़ताल होती, तो केतन की जान बच सकती थी, ये हत्या नहीं हो पाती। खैर, इन सबके बीच सिया गोयल का एक नया वीडियो आया है जिसमें वो किसी से फोन पर बात कर रही है और बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। अब शब्दों का इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही है।

0: ऐसे अपशब्द हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। बहरहाल ये घटना इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हमारा समाज भी इस पर बटा हुआ नजर आ रहा है। आज ही ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एंड सर्जन्स एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष और डेंटिस्ट डॉक्टर मुस्कान सोनी को तत्काल प्रभाव से 5 साल के लिए निलंबित कर दिया गया। अच्छा, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वजह क्या थी? इस निलंबन का कारण यह है कि डॉक्टर मुस्कान सोनी ने इंस्टाग्राम पर केतन अग्रवाल के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था और यह कहा था कि अगर केतन अग्रवाल ने अपनी हेयर विग को लेकर झूठ बोला तो इसके लिए तो उसे मरना ही था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद डॉक्टर मुस्कान सोनी पर कार्रवाई हुई, उन्हें पद से हटाया गया। देखिए,
1: सो गाइस, क्या देख रही हूं मैं कि पुणे का जो लौंडा था उसके बाल ही नहीं थे, तो अब ऐसे झूठ बोलोगे तो मरोगे ही ना। सो हैशटैग आई हेट मैन। दो आदमी क्या मर रहे, मर्द समाज में डर फैला हुआ।
0: अब इस वीडियो को देखिए जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हो रहा है और ये वीडियो काफी वायरल है। दावा है कि मेट्रो में सफर के दौरान एक लड़की उस मशहूर नॉवल को पढ़ रही थी जिसका शीर्षक है हाउ टू किल मैन एंड गेट अवे विथ इट। ये एक डार्क कॉमेडी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर किताब है जिसे कैटी ब्रेंट ने लिखा है, लेकिन दावा है कि इसे मेट्रो में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका वीडियो एक लड़के ने रिकॉर्ड कर लिया, इसे वायरल कर दिया। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते और ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं सही नहीं है। अगर एक किताब से किसी लड़की को जज किया जाएगा या उस पर सवाल उठाए जाएंगे तो ये हमारे समाज में महिला विरोधी भावना को बढ़ावा देगा और ऐसा नहीं है कि आपराधिक घटनाएं एक वर्ग के खिलाफ होती हैं और एक वर्ग ही करती है। आज ही नोएडा से खबर आई, एक महिला को उसके हनीमून पर उसके पति ने खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की। इन दोनों की शादी 30 अप्रैल को हुई थी और हत्या की ये कोशिश 4 मई को ही। हम मानते हैं कि केतन के साथ जो हुआ या उससे पहले जिन घटनाओं में किसी भी लड़के की हत्या की गई वो घटनाएं डराती हैं, लेकिन इन घटनाओं के बाद हर महिला को शक की नजर से देखना या इस तरह की बातें सोशल मीडिया के जरिए फैलाना कि भाई लड़कियां अपने पतियों को मार देंगी या मंगेतरों को मार देंगी, ये कतई सही नहीं।

और अब आपको शौर्य के साथ संस्कार दिखाते हैं। ये तस्वीर देश के नए आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ से जुड़ी है। कार्यभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने एक ऐसे भावुक क्षण को जिया जिससे पूरे भारत का दिल जीत लिया। जब जनरल धीरज सेठ ने आर्मी चीफ के रूप में गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त किया तब उनका परिवार भी वहां पर मौजूद था। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद अपने पिता और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ को सल्यूट किया, उनके पैर छुए। आर्मी चीफ धीरज सेठ के पिता लेफ्टिनेंट जनरल केएम सेठ 1997 में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के पद से रिटायर हुए थे। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जनरल धीरज सेठ कैप्टन के पद पर कार्यरत थे। इस खास मौके पर जनरल धीरज सेठ के छोटे भाई रियर एडमिरल रवनीश सेठ भी अपने बड़े भाई और नए सेना प्रमुख को सल्यूट करते नजर आए। रियर एडमिरल रवनीश सेठ इंडियन नेवी में वरिष्ठ अधिकारी हैं। देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे है और इस दिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए असली डॉक्टर्स के पास ही जाएं। और आज वो दिन भी है जब हम और आप मिलकर इस महान जिसे नोबल प्रोफेशन कहा जाता है उन डॉक्टर्स को हमेशा धन्यवाद दें जिन्होंने अपनी जिंदगी में ना घर का बर्थडे देखा ना अपनी बीमारी देखी बल्कि बस मरीजों का इलाज किया, समर्पित किया है जीवन समाज के लिए। लेकिन असली डॉक्टर्स की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि असली से हमारा मतलब है सोशल मीडिया पर हेल्थ टिप्स देने वाले हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा मत करिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट फर्जी डॉक्टर्स की एक टोली पकड़ी गई, मोटापा कम करने के नाम पर लोगों को ठग रही थी। ऐसे तो कई सारे संदेश आपको भी आते होंगे। हमारे देश में जानते हैं हर चार में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के मुताबिक 24% महिलाएं 23% पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। और यही वजह है कि देश में हेल्थ इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ी जिसमें सबसे ज्यादा मोटापा कम करने के उपाय बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई ठग भी मार्केट में उतर चुके हैं जो मोटापा कम करने के नाम पर आपको चूना लगाते हैं। गुरुग्राम में एक कॉल सेंटर और उस कॉल सेंटर के माध्यम से मोटापे को कम करने के नाम पर लोगों को खूब ठगा जा रहा था। सूरत पुलिस ने यहां से 150 लड़कियों 20 लड़कों को पकड़ा है जो फर्जी हेल्थ एक्सपर्ट्स फर्जी डॉक्टर्स बनकर लोगों को फंसाते थे। सूरत पुलिस को अपनी छापेमारी में पता चला कि इनके शिकारों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। इन लोगों के पास मोटापा कम करने हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी एक खास स्क्रिप्ट थी जिसे बोलकर ये लोग अलग अलग लोगों से करीब 80 करोड़ रुपए की वसूली कर चुके थे। 80 करोड़ क्यूरस साइंस एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड यही नाम था और ये कंपनी 30 दिन में वजन करने का दावा करती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इनके विज्ञापन से जुड़ता था वैसे ही गुरुग्राम के कॉल सेंटर से उनके पास एक लड़की का कॉल आता जो खुद को हेल्थ एक्सपर्ट बताती। कॉल सेंटर की यह लड़की मेडिकल सलाह के लिए किसी डॉक्टर से कॉल कनेक्ट कर देती थी जो उसी कॉल सेंटर में मौजूद दूसरा व्यक्ति होता था। ये अलग अलग व्यक्ति अलग अलग नामों से खुद को डॉक्टर्स कभी हेल्थ एक्सपर्ट्स, ये डॉक्टर फर्जी मेडिकल फाइल BMI जैसे कई फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर ग्राहक को डराते थे। इसके बाद मोटापा कम करने के नाम पर दवाओं की किट कंसल्टेशन की फीस का खेल शुरू होता था। लोगों का वजन कम हो या ना हो क्या मतलब, बल्कि ये हर बार अलग अलग तरीके से लाखों रुपए वसूल कर लेते थे। खास बात यह थी कि कंपनी कैश में डील करती थी। कंपनी के एजेंट ग्राहक के घर जाते थे, कैश लेते थे, एक फर्जी हेल्थ किट दे देते थे। इस गैंग का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक महिला की शिकायत पर सूरत पुलिस ने जांच शुरू की। महिला की शिकायत थी कि कंपनी ने उससे 81 लाख रुपए मांगे और उसे कहा कि अगर नई दवा नहीं ली गई तो पुरानी दवा से उसे साइड इफेक्ट होगा जो घातक साबित होगा। पुलिस ने जाल बिछाकर पैसा देने के बहाने कंपनी के एक एजेंट को पकड़ा। तब जाकर गुरुग्राम के इस फर्जी हेल्थ सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इस फर्जी कंपनी के बड़े अधिकारी अभी भी फरार है। अगली बार जब भी आपको लगे कि आपको वजन कम करना है तो किसी फर्जी एक्सपर्ट के झांसे में मत आइए। असली डॉक्टर असली है।

कर विदेश उड़ जाना, विकास के नाम पर फाइलों में करोड़ों का घोटाला कर देना, या गरीबों के हक के करोड़ों डकार जाना? शायद नहीं, क्योंकि ये काम बड़े लोग बड़ी आसानी से अंजाम दे देते हैं, इसीलिए सिस्टम इसे इतनी जल्दी गुनाह नहीं मानता। सालों सालों तक केस चलता है। इस देश की व्यवस्था की नजर में सबसे बड़ा गुनाह है अधिकारियों की मीटिंग के बाद बचे हुए कुछ बिस्किट और बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती उठा लेना। यह गुनाह इतना संगीन माना गया कि झारखंड में इसके लिए एक अदने से चपरासी की 17 साल पुरानी नौकरी छीन ली गई, क्योंकि बचे हुए कुछ बिस्किट्स उठा लिए थे। झारखंड के बोकारो में रणजीत कुमार हिमांशु 2005 से जिला ग्रामीण विकास एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट पर चपरासी की नौकरी कर रहे थे। 17 साल तक ईमानदारी से साहबों की डांट खाई, पानी पिलाया, चाय पिलाई, लेकिन फिर एक दिन इन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने सरकारी संपत्ति का निजी इस्तेमाल किया है। वो बेशकीमती सरकारी संपत्ति क्या थी? साहबों की मीटिंग के बाद बचे हुए चंद बिस्किट और थोड़ी सी चाय पत्ती। इसके लिए मार्च 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। नोटिस में चाय पत्ती बिस्किट की जगह लिखा गया सरकारी सामान का निजी इस्तेमाल। शायद साहबों को डर था कि चाय पत्ती बिस्किट जैसे सरकारी सामान का नाम लीक होने से देश की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए। फिर 2 महीने बाद चंद बिस्किटों की डकैती के जुर्म में जानते हैं इनकी नौकरी से इनको बर्खास्त कर दिया गया। 9,950 ये थी इनकी तनख्वाह। 17 साल काम किया इस तनख्वाह पर, और 17 साल इस तनख्वाह पर काम करने वाले इस संविदा कर्मचारी ने हार नहीं मानी। मामला अदालत पहुंचा और आखिरकार झारखंड हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि सजा बहुत ज्यादा कठोर है, पूरी तरह गलत है। कोर्ट ने चपरासी रणजीत हिमांशु की बर्खास्तगी को तुरंत रद्द किया, नौकरी पर वापस रखने और 50% बकाया वेतन देने का आदेश सुनाया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि गलती तो हुई थी, इसलिए पूरी क्लीन चिट नहीं मिलेगी, लेकिन नौकरी से निकालना सरासर नाइंसाफी है। चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जरा इस व्यवस्था का तराजू तो देखिए, बड़े बड़े साहब फाइलों के नीचे से चाय पानी के नाम पर करोड़ों डकार जाते हैं, वहां सिस्टम आंखें बंद रखता है। लेकिन एक चपरासी ने शाम को बची हुई थोड़ी सी चाय पत्ती और कुछ बिस्किट क्या जेब में रख ली, खजाने पर हमला मान लिया गया। खैर, देर से ही सही, झारखंड हाईकोर्ट ने इंसाफ की चाय में चीनी बराबर कर दी। रणजीत हिमांशु को उनकी नौकरी वापस मिलेगी, लेकिन यह मामला हमारी व्यवस्था की उस दोहरी मानसिकता का सबूत है जो छोटे लोगों पर बाज की तरह झपटती है, लेकिन बड़े मगरमच्छ उनके सामने यही व्यवस्था भीगी बिल्ली बन जाती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मशहूर होने का फॉर्मूला बदल गया है, अब हुनर की जरूरत नहीं, बस अपनी गरिमा को ऑनलाइन ट्रेंड पर चढ़ाना आना चाहिए। नमस्कार।

0: राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद, चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब? राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल, क्या रहस्यमयी बक्से से खुलेगा चोरी का राज? चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली।

0: आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यू मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की दाग के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
1: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
0: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
2: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति बन गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
3: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिलीभगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
1: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
1: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
3: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
0: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
0: चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं, बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी काफ सहायक हो जाती है।
5: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
6: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
5: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
0: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
7: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, इस सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
0: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे, तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
8: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण, राम मंदिर में
8: भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
5: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
0: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
5: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
3: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों का ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल अब यह कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर वसूली नहीं होनी चाहिए क्या?
9: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है, सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है, जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, पानी बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ, चोरों ने फिर खिड़की दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था, 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए थे। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं, निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे, लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
10: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए, किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है, गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
9: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहाँ रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं, दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
11: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठ पटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटिया है सभी, यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते।
10: सरकार ने ऐसे ही आधा बना के छोड़ दिया है?
11: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था, अपना आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिया, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
9: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहाँ से निकाल दिया।
12: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है मेरी विधानसभा में, किशन बाग में और जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए फ्लैट्स में और अनगिनत मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
13: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने, उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं। और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
14: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
15: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो, इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
14: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं, इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 30 दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे। अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है। अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है। चंपक राय ने मौन व्रत रखा है। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
0: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
1: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9 नोट, $10 के 3 नोट, $5 के 2 नोट और $1 का 1 नोट शामिल है। कुल $1,121 बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमय बक्से का खुलासा हुआ है।
2: अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहाँ अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
2: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
0: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
1: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है, ये करोड़ों हिंदुओं की 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
1: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
5: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
7: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
5: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है,
7: और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
1: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये आठवां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट गुर्जर मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
8: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
1: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गरजे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
9: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
1: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
8: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
1: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
8: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
0: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
1: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
9: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
7: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
10: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ सजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
1: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
0: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शमत आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
1: पीओके में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कन्फर्म।
11: एक जिंदगी कोशिश करके लोगों को दो।
1: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
11: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है।
1: पाकिस्तान के उन मेहनत कशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की ये आवाज उठी है, जिस पीओके में आसिफ मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
12: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
1: और बौखलाए आसिफ मुनीर ने पहले JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि JAAC के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
11: हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं, ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए और फिर तुम हमारी मिनतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो
1: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
13: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं, तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता, बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकों के लिए निकलते हैं, तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा।
1: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाए, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
14: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे, रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
15: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग, एग्जोडस जिसे कहेंगे, कश्मीरी पंडित्स का किया।
1: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है, जिन्होंने भारत की तरफ से 61वें दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी।

0: अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद, चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब? राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल, क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज? चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली? आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी, यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है, चंपत राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे जो है बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति हो गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर

0: अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
1: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी, आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1,121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2,853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2,004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमय बक्से का खुलासा हुआ है।
2: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहाँ अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
2: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, हम आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
1: अक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
0: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
3: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है, ये करोड़ों हिंदुओं की 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
0: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
4: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
5: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती
4: है। इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
0: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट गुर्जर मुस्लिम दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है, इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
5: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
0: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
6: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
7: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
0: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
7: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
1: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
0: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
6: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
0: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
7: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
8: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए। और उन्हीं का प्रिय एसओ, सजातीय एसओ, पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
0: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
1: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों का ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल अब यह है कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर वसूली नहीं होनी चाहिए क्या?
9: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है। सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है। जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पानी, बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ। चोरों ने फिर खिड़की, दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं। निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे, लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
8: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए। किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है। गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
9: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहां रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं। दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
10: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठ पटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी, हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटिया है सभी, यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते।
8: ऐसे सरकार ने ऐसे ही आधा बना कर छोड़ दिया है।
10: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था, अपना आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिए, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
9: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया।
11: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है। मेरी विधानसभा में किशनबाग में और जयसिंहपुरा खोर में जेडीए फ्लैट्स में और अन्य मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
12: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं, और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
9: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
13: तो पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो, इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
9: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं, जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं, इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
1: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए डॉलर जूडी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे। अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों है। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है। अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है। चंपत राय ने मौन व्रत रखा है। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति हो गया, उस चोर को आप बचा रहे हो राम मंदिर में, जिसने 40% कमीशन लिया? आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
0: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
1: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9 नोट, $10 के 3 नोट, $5 के 2 नोट और $1 का 1 नोट शामिल है। कुल $1,121 बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमय बक्से का खुलासा हुआ है।
2: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहाँ अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
2: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, हम आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
0: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
1: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है, ये करोड़ों हिंदुओं की 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
1: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
5: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
7: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
5: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
1: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये आठवां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
8: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
1: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
9: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
1: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
8: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
1: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
8: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
0: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
1: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
9: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है, संसाधन और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
7: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
10: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ, सजातीय एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
1: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
0: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शमत आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
1: में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कन्फर्म।
11: एक जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो।
1: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
11: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है।
1: पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की ये आवाज उठी है, जिस पीओके में आसिफ मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
12: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
1: और बौखलाए आसिफ मुनीर ने पहले JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि JAAC के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
11: हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो
1: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
13: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं, तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता, बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं, तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा।
1: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाएं, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
14: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे, रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
15: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एग्जोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित का किया।
1: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है। जिन्होंने भारत की तरफ से 61वें दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तेज दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए डॉलर ज्वेलरी जब्त। तीनों यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर

0: भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज? चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली? आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी, वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी, यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया? चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
1: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
0: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
2: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो है बोरे भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति बन गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
3: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिलीभगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच।

0: लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1,121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2,853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2,004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमय बक्से का खुलासा हुआ है।
1: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
1: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
2: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
0: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
3: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
0: चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं, बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
4: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
5: राम की भक्ति ऐसे काल नेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
4: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
6: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
4: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
0: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
7: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
0: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे, तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
8: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
4: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे
5: आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
0: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
5: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
2: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
0: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
8: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है, संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
0: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था,
6: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
9: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ, स्वजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप, और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
0: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
2: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों का ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल अब यह कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर वसूली नहीं होनी चाहिए क्या?
10: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है। सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है। जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पानी बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ। चोरों ने फिर खिड़की दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए थे। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं। निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे, लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
9: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए। किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतू हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है। गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
10: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहां रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं। दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
11: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठ पटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी हम जैसे लेडीज सारी पड़ी रहती है, बहू बेटिया है सभी। यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते है।
9: सरकार ने ऐसे ही आधा बनाकर छोड़ दिया है।
11: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था, अपना आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिया, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
10: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया।
12: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है मेरी विधानसभा में, किशनबाग में और जयसिंहपुरा खोर में, जेडीए फ्लैट्स में और अनगिनत मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
13: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं, और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
10: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
14: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता, ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है। अब इसका कैसे निस्तारण हो इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
10: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी न आ जाएं। इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा आज तक। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब बिना मंजूरी। भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आज सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी। अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है, तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमयी बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति बन गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
0: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
1: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1,121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
2: अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहाँ अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
2: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
0: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
1: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
1: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
5: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
7: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
5: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया।
1: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये आठवां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
8: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
1: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
9: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
1: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
8: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
1: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
8: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
0: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
1: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
9: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है, संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
10: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
11: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ, सजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
1: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
0: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शमत आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
1: पीओके में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कंफर्म।
12: एक जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो।
1: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
12: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहते हैं कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है।
1: पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की आवाज उठी है। जिस पीओके में आसिम मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
13: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
1: और बौखलाए आसिम मुनीर ने पहले जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जेएएसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को जेएएसी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
12: हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो
1: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
14: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं, तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा से सब बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं, तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा।
1: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी बाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाएं, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर प्रेम पद पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मभोज की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
15: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे, रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
16: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एक्सोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित्स का किया।
1: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है, जिन्होंने भारत की तरफ से 61 दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। तिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब बिना मंजूरी। भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आज सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार, उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी। अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है, तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के

0: उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देवगिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की दांत के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देवगिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
1: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
0: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
2: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति बन गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा? ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
3: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 36

0: 3109 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
1: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
1: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
2: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
0: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
3: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
0: चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं, बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
4: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
5: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
4: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
6: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
4: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
0: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
5: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
0: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे, तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
7: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
4: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
0: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
4: अखिलेश जी आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
2: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
0: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
7: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद न हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
0: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
4: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
8: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है, सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ, सजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
0: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
2: राजस्थान में 300 करोड़ खर्च करके गरीबों का ऐसा घर बना जो घटिया निर्माण और सियासत में बर्बाद हो गया। सवाल अब यह है कि जनता के 300 करोड़ रुपए लगाने वाले जिम्मेदार लोगों से इस पैसे की बर्बादी का कारण पूछकर वसूली नहीं होनी चाहिए क्या?
9: दूर से देखेंगे तो लग सकता है कि वाह क्या नजारा है, सोचने लगेंगे आप कि काश यहाँ जमीन मिल जाती तो घर बना लेते। जयपुर के बेहद खूबसूरत इलाके किशनबाग में बना ये राजीव नगर है, लेकिन पास चलकर देखिए तब समझ आएगा यहाँ जनता के पैसों की बर्बादी करके सरकारी सियासत से बने वो खंडहर खड़े हैं, जो बने जनता के नाम पर, लगा जनता का पैसा लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं आया। बात 2009 की है। जयपुर की झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए 100 बीघा में 300 करोड़ रुपए खर्च करके तीन जगहों पर 4000 मकान राजीव गांधी नगर योजना में बनाए गए। 2013 में सभी मकानों की लॉटरी निकली, लेकिन आवंटन से पहले तब की गहलोत सरकार चली गई। बीजेपी सरकार में योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पानी, बिजली और सड़क का इंतजाम नहीं हुआ। चोरों ने फिर खिड़की, दरवाजे और सरिया तक उखाड़ लिए। योजना में 30% पैसा केंद्र दे रहा था। 2014 में केंद्र में सरकार बदल गई तो उसने भी ये योजना बंद कर दी। ज्यादातर मकान गहलोत राज में तब मुस्लिम समुदाय को आवंटित हुए थे। गहलोत सरकार जब तक 2018 में लौटी तो ये मकान रहने लायक बचे नहीं। निर्माण इतना घटिया कि ढहने लगे। लिहाजा 2.25 लाख में जिनको आवंटन होना था उन्होंने लेने से मना कर दिया।
8: जनता की गाढ़ी कमाई के 100 करोड़ स्वाहा हो गए। किसी गरीब को आज तक मकान नहीं मिला। यहाँ पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहने लगे तो बीजेपी सरकार ने इसका तोड़ निकाला है कि यहाँ पर जो घुमंतु हैं या बिना घर वाले हिंदू हैं वो आकर रह सकते हैं जब तक चाहें। यानी पूरा मामला ये अब सांप्रदायिक हो गया है। गरीबों के रहने के मकान के नाम पर जिस तरह के मकान बने हैं उसमें कोई रह भी नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता है। ठेकेदार ने पूरी तरह से एक जर्जर ढांचा खड़ा किया है जिसमें रहने के नाम पर कोई सोच भी नहीं सकता है।
9: इन खंडहर नुमा मकानों में पुराने कपड़ों के बदले बर्तन बेचने वाले गुजरात से आए कुछ परिवार अवैध रूप से रहते हैं। कहते हैं कि स्थानीय विधायक ने कहा है जाकर वहां रह लो, लेकिन न पानी है न बिजली, खुले में शौच जाते हैं। दिन भर अफीम और ड्रग्स लेने वालों का डेरा यहाँ रहता है। डरते हैं लेकिन रह लेते हैं क्योंकि किराया नहीं पड़ता।
10: इसमें सारे नशेड़ी गंजेड़ी सारे आते हैं इसमें, और उठ पटांग जैसा भी होता है ऐसा सारा काम भी होते हैं, और जैसा आते हैं ऐसा सुइया बुया सभी नशेड़ी हम जैसे लेडी से सारी पड़ी रहती है, बहु बेटिया है सभी। यहाँ रात को हम आ भी नहीं सकते।
8: ऐसे सरकार ने ऐसे ही आधा बना के छोड़ दिया है।
10: सरकार ने तो पता नहीं पूरा बनाया था, अपना आधा अधूरा छोड़ रखा है, और सारे तो तोड़ दिया, तोड़ गेट बेट सारे उखाड़ उखाड़ के ले गए।
9: अपराधियों का अड्डा ऐसा कि पाकिस्तानी आतंकी ने इन्हीं मकानों में रहकर समय गुजारा और डॉक्यूमेंट बनवाए। बीजेपी सरकार ने अवैध कब्जा किए लोगों को यहां से निकाल दिया।
11: उसमें कुछ अवैध रूप से लोग बस गए और कब्जा कर लिए। आज वहां शिकायतें निरंतर आती है। मेरी विधानसभा में किशनबाग में और जयसिंहपुरा खोर में जेडीए फ्लैट्स में और अन्य मुख्यमंत्री आवास योजनाओं में इस प्रकार के लोग बस गए थे, कब्जा कर लिए थे, जिनको निकालने का हम लोग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने कई लोगों को डिटेन किया, उनमें निकाला भी,
12: आवंटित हो नहीं पाए। और अब इन्होंने फर्जी तरीके से जिन लोगों के लिए सर्वे होकर के सर्वेदारियों के लिए फ्लैट बने उनकी बजाय वहां ये चल रहा है कि वहां के लोकल विधायक हर किसी को उसमें डाल रहे हैं, और बिना जवाब जाके पूछोगे तो वो नाम लेंगे कि भी इन्होंने बसा दिया हमको, इन्होंने बसा दिया।
9: जयपुर में ऐसे 4000 मकान बने जिनमें से 3000 खाली पड़े और खंडहर हो चुके। सरकार ने योजना को बंद कर दिया क्योंकि अब इतने मकानों को तोड़ने या नए सिरे से रिपेयर करने में 100 करोड़ से ज्यादा फिर खर्च होंगे। मंत्री कहते हैं इन मकानों को ठीक करने में ज्यादा पैसा लगेगा, जिसके लिए कोशिश हो रही है।
13: को पुनः रहने योग्य बनाने के लिए फिर एक भारी धनराशि की आवश्यकता। ऐसे में ये प्रकरण लंबे समय से लंबित है, अब इसका कैसे निस्तारण हो इसके संबंध में गंभीरता से विचार कर कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।
9: बड़ा सवाल है कि गरीब अब भी झुग्गियों में रह रहे हैं जबकि उनके नाम पर हजारों करोड़ की सरकारी जमीन और सैकड़ों करोड़ जनता के पैसे बर्बाद हो गए। अब इन जगहों की सुरक्षा पर पैसे खर्च होने लगे। सरकार ने तय किया कि इन जगहों पर अपराधी ना आ जाएं। इसके लिए स्थानीय चौकी खोली जाएगी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। तिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आज सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमयी बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देव गिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप है। अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड है। चंपक राय ने मौन व्रत रखा है। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं। तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
2: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
1: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
3: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो यहाँ बोरे भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति बन गया, उस चोर को आप बचा रहे हो? राम मंदिर में जिसने 40% कमीशन लिया, आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
1: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
0: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
1: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें 100 डॉलर के 8 नोट, 50 डॉलर के 2 नोट, 20 डॉलर के 9 नोट, 10 डॉलर के 3 नोट, 5 डॉलर के 2 नोट और 1 डॉलर का 1 नोट शामिल है। कुल 1,121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2,850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए। टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1,386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1,003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तों ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमयी बक्से का खुलासा हुआ है।
2: अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
1: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहाँ अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
2: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
0: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
1: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
4: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
1: चुनौती बड़ी है लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
5: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
6: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी काफ सहायक हो जाती है।
5: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
7: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
5: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया।
1: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये आठवां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
8: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
1: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गर्जे तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
9: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
1: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
8: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
1: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
8: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
0: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
1: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
9: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
1: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए। एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था।
7: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
10: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के बड़े अधिकारी की दीवाल थाने से मिली हुई है सोचिए, और उन्हीं का प्रिय एसओ सजाती एसओ पैसे लेते के पकड़ा गया, बताइए आप। और दूसरों कह रहे हैं कि 12 बजे सो के उठते हैं, तो अपनी आंख खोल के तो देखो।
1: 2027 के मिशन इलेक्शन में सीएम योगी कानून व्यवस्था, दंगे और माफिया राज को खत्म करने का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुत्व की पिच पर चढ़ावा चोरी के काट के लिए मथुरा कृष्ण जन्मभूमि पर अखिलेश को चैलेंज दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव का मुख्य फोकस पसंदीदा पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर है। आज तक ब्यूरो।
0: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि जेएएसी की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की शमत आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
1: पीओके में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कंफर्म।
11: एक जब बाइज़त जिंदगी वहां पर कोशिश करके लोगों को दो।
1: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
11: किसी ने वो बंदर के हाथ में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहते हैं कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है।
1: पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की ये आवाज उठी है। जिस पीओके में आसिम मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया, अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
12: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
1: और बौखलाए आसिम मुनीर ने पहले जेएएसी के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि जेएएसी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को जेएएसी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
11: हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो
1: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
13: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं, तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा से सब बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकों के लिए निकलते हैं, तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा।
1: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाएं, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर प्रेम पद पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मभोज की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
14: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे, रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
15: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एक्सोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित्स का किया।
1: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है, जिन्होंने भारत की तरफ से 61 दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
0: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: तीस दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए, डॉलर, ज्वेलरी जब्त। टिन्नू यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार, उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी। अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है, तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमय बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप यही है कि पूरे मामले में बड़े पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों के मिलीभगत के संभव नहीं है। सवालों के कटघरे में खड़े हैं राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी। वही गिरी जो चढ़ावा चोरी के सवाल पर जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रख कर चले गए। क्या गोविंद देव गिरी की चुप्पी के पीछे चढ़ावा चोरी से जुड़े कई राज छिपे हुए हैं? क्योंकि जैसे ही गिरी से चढ़ावा चोरी का सवाल पूछा गया तो जवाब देने के बजाय मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कुछ यूं मीडिया के कैमरों से आगे निकल गए, गाड़ी में बैठे और बिना जवाब दिए चले गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ट्रस्ट के खाते

0: है कि जिस ट्रस्ट के खाते चढ़ावे और दान की निगरानी में कोषाध्यक्ष की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है, वही कोषाध्यक्ष दान चोरी विवाद पर चुप क्यों हैं? दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी ट्रस्ट के संपूर्ण वित्तीय प्रबंध, मंदिर से जुड़े खातों की पारदर्शिता और राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की निगरानी करना है। मतलब यही है कि मंदिर में आने और जाने वाले एक एक रुपए का हिसाब रखने की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी के कंधों पर है। सवाल यही है कि कोषाध्यक्ष की नाक के नीचे से चढ़ावे की चोरी होती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी। यही वजह है कि कोषाध्यक्ष की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल यही है कि सब कुछ जानते हुए भी गोविंद देवगिरी ने आंखें बंद रखी या फिर अपनी जिम्मेदारी को सही तरह से नहीं निभाया। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप हैं, अनिल मिश्रा अंडरग्राउंड हैं, चंपक राय ने मौन व्रत रखा है, गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भाग रहे हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दीनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं।
1: बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर।
0: जिम्मेदारों की चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभ रही है, क्योंकि राम मंदिर में राम का धन लूटा गया और राम धन की निगरानी का जिम्मा संभालने वाले मौन हैं।
2: मैनेजमेंट चंपत राय जैसे बड़े चोर का है, जिसने हजारों करोड़ रुपए लूट लिया, उसको आप बचा रहे हैं? उस गोपाल राव को बचा रहे हैं जो है बोरे भर भर भर के नोट ले जाता था? वो अनिल मिश्रा जो अरबपति होने गया, उस चोर को आप बचा रहे हो राम मंदिर में, जिसने 40% कमीशन लिया? आपके ही चीजें चीख चीख करके आपके ही ट्रस्ट के लोग काम करने वाले बोल रहे हैं, आप उनकी आवाज दबा रहे हो, हत्या की धमकी दे के आप छिपा रहे।
0: भले ही चढ़ावा चोरी कांड में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों पर अब तक गाज नहीं गिरी है। ये तब है जब आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चढ़ावे से चोरी की गई रकम के एक हिस्से की आरोपियों से बरामदगी हो चुकी है। सवाल यही है कि आरोपियों के आकाओं पर कानूनी शिकंजा कब कसेगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक फैसला नहीं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा, लेकिन इस्तीफे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। गोपाल राव राम मंदिर के प्रबंधन की अहम कड़ी, लेकिन राव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव, लेकिन अभी तक कोषाध्यक्ष तक जांच की आंच नहीं पहुंची।
3: सवाल ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका पर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तारी आरोपियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। बरामद हुई रकम इतनी बड़ी है कि बिना पदाधिकारियों के मिली भगत से चोरी करना संभव ही नहीं है।
0: राम मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे की खुल्लम खुल्ला लूट हुई। आरोपियों ने दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की, वो भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के दावों के बीच। लेकिन आरोपियों की निशानदेही पर बरामद हुई चढ़ावा चोरी की रकम के बारे में सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। चढ़ावा चोरों से कुल 79,85,493 रुपए कैश बरामद हुए। चढ़ावा चोरों से कुल 1,181 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए। चढ़ावा चोरों की निशानदेही पर कुल 21,548 नोटों की बरामदगी हुई। मतलब रामधन को चढ़ावा चोरों ने जमकर लूटा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर चढ़ावे की चोरी से जुटाई गई बड़ी रकम बरामद की गई है। 500 के 3609 नोट, 200 के 579 नोट, 100 के 1182 नोट, 50 के 5 नोट, 20 के 21 नोट, 10 के 5 नोट, कुल भारतीय नोट बरामद 20,39,220। अविनाश शुक्ला ने राम मंदिर के चढ़ावे में चढ़े अमेरिकी डॉलर पर भी हाथ साफ किया था, जिसमें $100 के 8 नोट, $50 के 2 नोट, $20 के 9 नोट, $10 के 3 नोट, $5 के 2 नोट,

0: एक डॉलर का एक नोट शामिल है। कुल 1121 डॉलर बरामद, यानी करीब 1,00,000 रुपए। ठीक ऐसे ही अविनाश के ठिकाने से 159 ग्राम चांदी, 8 ग्राम सोने की चेन, 3 ग्राम सोने की अंगूठी मिली है। आरोपी लवकुश मिश्रा, टिन्नू यादव और रमाशंकर मिश्रा के ठिकाने से चढ़ावे से चोरी की गई रकम का एक हिस्सा बरामद किया गया है। लवकुश मिश्रा 500 के 2850 नोट, यानी कुल 14,25,000 रुपए, टिन्नू यादव के ठिकाने से 500 के 180 नोट, 100 के 100 नोट, यानी कुल 1,00,000 रुपए की बरामदगी। रमाशंकर मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 1386 नोट, 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, 50 के 14 नोट, 20 के 12 नोट, 10 के 1003 नोट, यानी कुल राशि 7,32,170 रुपए। राम भक्तो ने अपनी आस्था नोट की शक्ल में दान पेटियों में डाली थी, लेकिन राम के दुश्मनों ने आस्था के साथ सीधा विश्वासघात किया, क्योंकि गैंग्स ऑफ चढ़ावा चोरों ने सिंडिकेट बनाकर चोरी को अंजाम दिया। आरोपी करुणेश पांडे के ठिकाने से 500 के 3600 नोट, 200 के 33 नोट, 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, 5 के 21 सिक्के, 2 के 23 सिक्के, 1 के 7 सिक्के, यानी कुल राशि 18,07,063 रुपए बरामद हुए। ठीक ऐसे ही अनुकल्प मिश्रा की निशानदेही पर 500 के 2853 नोट, 200 के 423 नोट, 100 के 707 नोट, 50 के 2004 नोट, 20 के 2 नोट, यानी कुल बरामदगी 16,82,040 रुपए। आरोपी मनीष यादव ने भी दोनों हाथों से चढ़ावे की चोरी की। मनीष यादव के पास से बरामद हुए 500 के 278 नोट, 200 के 105 नोट, 100 के 400 नोट, यानी कुल राशि 2,00,000 रुपए। अभी जांच जारी है। चढ़ावे की रकम बरामद करने के लिए जांच टीम ने सलाखों के पीछे पहुंच चुके आरोपियों से पूछताछ की है। इसी बीच आरोपी अविनाश शुक्ला के एक रहस्यमय बक्से का खुलासा हुआ है।
1: अब बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था, क्या जो 5,00,000 रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहां पर चल रही हैं। लेकिन बक्से में आखिर क्या था, ये एक बड़ा रहस्य अपने आप में बना हुआ है।
0: ये बक्सा उस योग केंद्र में रखा है जहां अविनाश अपने भाई के साथ आता है। योग केंद्र में राम मंदिर से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिले हैं, जिनमें QR कोड लगा बक्सा भी शामिल है।
1: हम कोशिश करेंगे एक बार QR जो कोड है उसको अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और एक बार देखें कि आखिर क्या इसमें निकल कर सामने आता है। मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूं और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहां पर इसको QR करने की कोशिश करता हूं। जब मैं इस पे QR करता हूं तो आपको मैं दिखाऊंगा यहां पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है।
2: पक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को आधार बनाकर चुनावी पिच तैयार कर रहा है और केंद्र में मोदी और यूपी में सीएम योगी को टारगेट कर अपनी सियासत को साधा जा रहा है। तो सीएम योगी पूरी तरह से 2027 के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। एक तरफ से सीएम योगी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में धुआंधार दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष पर प्रहार भी कर रहे हैं।
0: 2027 चुनाव का पूरा प्लान तैयार, सीएम योगी धुआंधार। एक्शन मोड में सीएम योगी, अखिलेश ने भी बना ली रणनीति। चढ़ावा चोरी पर विपक्ष सवार, हिंदुत्व की पिच पर योगी धारदार। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट सीएम योगी ने निकाल ली। 2027 का विधानसभा चुनाव कैसा होगा, ट्रेलर आ गया है। जब 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तब पॉलिटिक्स से लेकर पब्लिक के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हालांकि चढ़ावा चोरी कांड में एक्शन भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष इसे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहा है।
3: ये 8 लोगों की गिरफ्तारी या जिस तरह की पूछताछ की जा रही है, ये सब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। राम मंदिर में, प्रभु श्री राम के दरबार में कोई चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी जैसी साधारण चोरी नहीं हुई है। ये करोड़ों हिंदुओं की, 145 करोड़ के इस देश की आत्मा पर प्रहार है।
0: चुनौती बड़ी है, लेकिन सीएम योगी जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, तो बताने के लिए काफी है कि न सिर्फ यूपी के सीएम 2027 विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक्शन मोड में आ चुके हैं, बल्कि तैयारी भी पूरी है। पिछले एक सप्ताह में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों के दौरे कर रहे हैं, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं का संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा अटैक कर रहे हैं। योगी का मिशन इलेक्शन क्लियर है।
4: साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी।
5: राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी का सहायक हो जाती है।
4: इन लोगों को विभाजन के बावजूद भी
6: मुसलमानों की चिंता थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी, हिंदुओं की चिंता नहीं थी।
4: डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज दे रही है, और समाजवादी पार्टी देती थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया वन माफिया।
0: अब सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी में अचानक सहारनपुर का दौरा किया और 620 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। बड़ी बात यह है कि सीएम योगी पिछले कुछ महीनों में कई बार सहारनपुर आ चुके हैं। जनवरी से अब तक उनका ये 8वां दौरा है। सहारनपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। यहाँ जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों का सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों पर प्रभाव डालता है। इसलिए सहारनपुर से सीएम योगी ने पश्चिमी यूपी के दंगों को आधार बनाते हुए समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया।
5: 17 के पहले सहारनपुर में दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, मेरठ में दंगे होते थे, अलीगढ़ में दंगे होते थे, मथुरा में दंगे होते थे। दंगा कर्फ्यू हमारी नियत बन चुकी थी। केराना से प्लान होता था, कांदला से प्लान होता था, ये सभी क्षेत्र हिंदू विहीन कर दिए गए थे।
0: सहारनपुर में योगी समाजवादी पार्टी पर गरजे, तो लखनऊ में अपने जन्मदिन के मौके पर अखिलेश यादव ने राम और संविधान पर बीजेपी को घेरा।
7: यूं तो हम कहें कि मर्यादा का पहला नाम तो पहला भगवान प्रभु श्री राम है और दूसरा नाम मर्यादा का संविधान है, और भारतीय जनता पार्टी तो दोनों को दगा दे रही है।
0: सीएम योगी ने सहारनपुर से पहले रामपुर में भी 690 करोड़ की 102 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो वोटरों के बीच राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे की काट निकालने के लिए हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग भी कर डाली।
4: 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं।
0: सीएम योगी पिछले कुछ दिनों में लखनऊ में जनता दरबार से लेकर नोएडा, आगरा, हाथरस, मथुरा, पीलीभीत, मुरादाबाद, देवरिया, ललितपुर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ का दौरा कर चुके हैं। खास बात यह है कि इन दौरों पर हजारों करोड़ रुपयों की विकास परियोजनाओं का ऐलान किया गया है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि लगातार हो रहे ये दौरे केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने, जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा भी है।
5: अखिलेश जी, आप की सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है।
8: अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।
2: 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति अखिलेश यादव ने भी बनाई है। चुनाव में अभी 7-8 महीने का वक्त है। अखिलेश यादव इस बार सत्ता में वापसी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास और सीक्रेट मेगा प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश को मथने की तैयारी है।
9: हालांकि अखिलेश कहते हैं कि वो अभी अपनी रणनीति के बारे में नहीं बताएंगे, फिलहाल उनका पूरा फोकस चढ़ावा चोरी पर है।
7: उनके लिए खतरा तो ये कि दान या चंदा बंद ना हो जाए, क्योंकि ये चुनाव के लिए बड़ी ताकत बनकर के आ रही है, संसाधन, और भ्रष्टाचार करके ही सरकार बनाना और फिर सरकार बना के भ्रष्टाचार करना, तो ये लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो रहा है।
9: मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है, ये इससे पता चलता है कि बीजेपी के सहयोगियों ने भी अखिलेश पर वार करना शुरू कर दिया है। योगी सरकार के सहयोगी और सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने टॉन्ट मारते हुए अखिलेश को जन्मदिन की बधाई दी और एसी और पीसी यानी एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति करने वाला नेता बताया। ओपी राजभर ने एक पोस्ट में लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सलाह यही है कि आप अपनी आलसी और आराम तलबी वाली जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर निकलिए, एसी और पीसी वाली राजनीति का जितना जल्दी हो सके त्याग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आलस से बाहर निकलकर गांव देहात की पगडंडियां भी नापिए। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम योगी ने भी अखिलेश पर तंज मारते हुए कहा था कि वो 12 बजे सोकर उठते हैं, जनता की पीड़ा क्या समझेंगे, और जवाब अखिलेश ने भी दिया था,
10: बबुआ को समय पे जगने की आदत हो, 12 बजे सोकर के उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां।
11: मुख्यमंत्री जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर उन्हें हमारी जानकारी है तो हमें भी तो उनकी जानकारी होगी। मुख्यमंत्री जी की दीवाल और वहां पर पुलिस कमिश्नर के,
2: जिस जमीन को पाकिस्तान अपनी बताता है, अब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वालों ने ऐलानिया कह दिया है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान अधिकतर कश्मीर के रावलकोट में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC की अगुवाई में चल रहे आंदोलन से अब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की क्षमता आ चुकी है। अब ऐसे में पाकिस्तान ने JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर के साथ 600 से ज्यादा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का शोर नहीं थम रहा।
9: पीओके में बगावत का एटम बम, मुनीर की शामत कन्फर्म।
12: एक जिंदगी पर कोशिश करके लोगों को दो।
9: पीओके से उठी आवाज, अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं पीओके। पीओके के नेता शौकत मीर नवाज पर मुनीर ने रखा 1 करोड़ का इनाम। बौखलाए मुनीर ने पीओके में नेताओं और 600 लोगों को उठवा लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अब आवाम मांग रही है आजादी। वो पीओके जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है और पाकिस्तान जिसे अपनी जमीन बताता है, जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। जिस पीओके को पाकिस्तान ने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है,
0: आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। अब इसी पीओके से आवाज उठी है कि पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है।
12: किसी ने वो बंदर की आंख में माचिस दी थी, उसने सब चीजों को आग लगा दी थी। इन्होंने इनके हाथ में किसी ने मोबाइल दे दिया, ट्विटर दे दिया, जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी का होता है। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के उन मेहनत कशू मजदूर उसे वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुद्दी भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो।
0: पीओके में रावलकोट की ईदगाह से पाकिस्तान से आजादी की यह आवाज उठी है। जिस पीओके में आसिफ मुनीर ने महंगाई और हक मांग रहे बेगुनाह लोगों पर गोलियां चलवा दी, 27 लोगों का कत्लेआम करवा दिया। अब उस पीओके की जम्मू कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने आंदोलन को और तेज कर दिया है।
13: पहली क्यादत अगर अरेस्ट होगी तो दूसरी क्यादत मौजूद है, दूसरी अरेस्ट होगी तो तीसरी क्यादत मौजूद है। हमने हर चीज का हमने भी प्रॉपर इंतजाम करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम हमारे साथ है, एक मैंडेट हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कामयाब हों।
0: और बौखलाए आसिफ मुनीर ने पहले JAAC के प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर और बाकी नेताओं की सूचना देने वालों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा और फिर शौकत नवाज मीर समेत 600 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि JAAC के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत केस भी दर्ज किए गए हैं। सरकार ने 5 जून को JAAC पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश कम नहीं हो रहा है।
12: धरना दे के बैठे हुए हैं, ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारी मिनतें करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो कि तजारती रास्ते फिर बाकी इख्तियार कर लिए जाए। इसलिए गुजारिश ये है हालात को नॉर्मल करने के लिए हुक्मरानों को, ये आवाम की स्टेट है, यहाँ पर कोई मार्शला नहीं है, यहाँ पर कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते, कश्मीर के आवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे।
0: आपको बता दें कि गिलगित बाल्टिस्तान के बाद 27 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पीओके की विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, इनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन पीओके की जनता अपने हक के लिए जंग लड़ रही है। महंगाई, बिजली और बेरोजगारी पर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ गरज रही है और इसी हक के लिए उन्हें मुनीर का कहर झेलना पड़ रहा है।
14: 3-4 साल से हम अपने हक के लेने के लिए निकलते हैं तो आप हमें बदले में शहादत देते हो। हम आटा सस्ता, बिजली सस्ती जैसी बुनियादी हकूक के लिए निकलते हैं तो हमें आप बदले में लाशें देते हो। खून रंग लाएगा, इनकलाब आएगा।
0: अब पाकिस्तान पीओके में बुरी तरह से घिरा है। पीओके वालों ने खुद अपनी आजादी की घोषणा कर दी है। इस बीच पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ाने की वकालत करने के लिए एक चिट्ठी लिखी है। बड़ी बात यह है कि इस चिट्ठी में 56 पाकिस्तानी और 61 भारतीयों के हस्ताक्षर हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से बहाल हों, दोनों देशों के उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएं, सामान्य वीजा सेवा शुरू हो, व्यापार के लिए अटारी वाघा खुले, मुजफ्फराबाद लाहौर सेवा शुरू हो, समझौता थार एक्सप्रेस चालू हो, करगिल स्कर्दू रूट पर यात्रा हो, हवाई क्षेत्र खोला जाए, मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा वापस दिया जाए, करतारपुर नीलम घाटी शारदा पीठ खुले, मीडिया पत्रकारों पर प्रतिबंध हटाए जाए, जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात हो, 2004 से 7 के कश्मीर फ्रेमवर्क पर बात हो। वो पाकिस्तान दोस्ती चाहता है जिसने पहलगाम में नरसंहार किया। वो पाकिस्तान भारत के साथ अमन की आशा रखता है जो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस की भाषा जानता है। जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब पीएम मोदी दर्जन बार कह चुके हैं कि खून पानी साफ नहीं बहेगा, तो फिर पाकिस्तान से दोस्ती का सवाल ही कहां उठता है। भारत सरकार ऐसी चिट्ठियों वाली पहल को सिरे से नकार रही है।
15: वाजपेयी जी कहते थे आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते, बातचीत कर लीजिए। जब वो बातचीत करते थे रास्ते और खोलिए। जो आरएसएस की लीडरशिप है, जैसे होस बोले है या भागवत जी है, तो वो भी कहते हैं कि बातचीत करना जरूरी है पाकिस्तान के साथ, आवाजाही होनी चाहिए, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक रियलाइजेशन है।
16: उनकी अगर बैक हिस्ट्री देखी जाए, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान में बैठे ऐसे लोगों के लाडले रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में उस विमर्श को जन्म दिया था, जिस विमर्श ने यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग एक्सोडस जिसे कहेंगे कश्मीरी पंडित्स का किया।
17: ये चिट्ठी सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के चेयरमैन ओपी शाह की ओर से लिखी गई है, जिन्होंने भारत की तरफ से 61 पे दस्तखत किए हैं। भारतीय पक्ष से फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मणिशंकर अय्यर, आरजेडी के मनोज झा, टीएमसी के तमाम नेता और पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत के हस्ताक्षर हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी समेत 56 पाकिस्तानी शहरी भी हैं, जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में बातचीत हो। आज तक ब्यूरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

मंदिर कैसा होना चाहिए, मंदिर का रंग क्या हो, मंदिर की दिशा क्या हो, मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र कैसे हों, और मंदिर जागृत कैसे हो, कैसा हो आपके घर का पूजा स्थान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।

0: तेज दिन जेल में रहने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जा सकती है कुर्सी। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट में तैयारी। मानसून सत्र में पेश हो सकता है विधेयक। नक्सल मुक्त भारत के बाद अगला टारगेट तैयार। अवैध घुसपैठ के खिलाफ अमित शाह बनाएंगे प्लान। 9 जुलाई को सभी राज्यों के डीजीपी के साथ हाई लेवल मीटिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ा खुलासा। आज तक को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेजों में आरोपियों के पास से रुपए डॉलर ज्वेलरी जब्त। तीनों यादव से 1,00,000 रुपए कैश बरामद। शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस में मर्जर की तैयारियां। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में सहमति बनने पर दिल्ली में लगेगी मुहर। फिलहाल राज्य स्तर पर बातचीत जारी। और व्हाट्सएप के नए यूजर नेम फीचर पर केंद्र सरकार की सख्ती। मेटा कंपनी को भेजा नोटिस। 3 दिन में मांगा जवाब। बिना मंजूरी भारत में फीचर लॉन्च नहीं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच की आंच सिर्फ 8 आरोपियों तक सीमित है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ट्रस्ट के जिम्मेदार उनकी नाक के नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का धन लूटते रहे, अब वही जिम्मेदारी। अपने जवाबदेही से बचने की जुगत में भिड़े हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह कि ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों की चोरी कांड में कोई भूमिका है नहीं है तो जुबान सिलकर क्यों बैठे हुए हैं।
1: चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष की बोलती बंद। चढ़ावा चोरी पर ट्रस्टी ने नहीं खोली जुबान। चंपत और अनिल मिश्रा पर एक्शन कब। राम मंदिर के खजांची की भूमिका पर सवाल। क्या रहस्यमयी बक्से से खुलेगा चोरी का राज। चढ़ावा चोरी के खजांची की खुलेगी कुंडली। आरोप